ओम शांति। हम सभी ने इस संगम युग पर ये जान लिया कि मैं कौन हूँ और मेरा कौन है।

कार दे दिया है कि मैं तुम्हारा हूं। कहां हम कहते थे हे प्रभु हम तो तुम्हारे चरणों के दास हैं, और कहां वो कहता है बच्चे तुम तो मेरे नैनों के नूर हो, तुम तो मेरे दिल तख्त नशीन हो, तुम तो मेरे हो। तो स्वयं भगवान मेरा हो गया, हमने तो इसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। तो सोचो मेरा कौन, वो जो सर्वशक्तिवान है, वो जो भाग्य विधाता है, जो जगत नियंता है, जो ज्ञान का सागर है, जो सृष्टि का बीज रूप है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता है, वो मेरा है। इससे बड़ा नशा और क्या हो सकता है। दुनिया में यदि किसी का नाता किसी बड़े आदमी से होता है तो लोग धमकी भी दिया करते हैं, तुम्हें पता है फलाना मिनिस्टर हमारा अपना है, फलाना कमिश्नर हमारा अपना है। और हमारा अपना कौन? स्वयं भगवान। हम उसकी छत्र छाया में सदा सुरक्षित हैं। तो इस नशे को बढ़ाते जाएंगे साथ साथ। मैं कौन हूं, विचार करें, मैं कौन हूं? वही जिनकी मंदिरों में पूजा हो रही है, सर्वशक्तिवान की संतान, सभी शक्तियों से संपन्न, इस सृष्टि का आधार मूर्त और उद्धार मूर्त, कल्प वृक्ष की जड़ें, जहान का नूर। मैं भी कोई साधारण नहीं, मैं एक महान आत्मा। एक समय आएगा जिसके भाग्य को देखकर लोग बहुत ईर्ष्या करेंगे, संसार में अत्यधिक भाग्यवान हूं। तो यदि हम इस नशे में रहते हैं, मैं कौन हूं और मेरा कौन है, तो सांसारिक सभी नशे उतर जाते हैं, हमारे जीवन में डिविनिटी आने लगती है, हमारा चित्त शांत और आनंद से भरपूर रहने लगता है। तो हम जितने बड़े हैं और जितने बड़े बाप के बच्चे हैं, उतना ही बड़ा दिल भी हम रखें और उतने ही नम्र चित्त होकर भी रहें। महान वही है जो बहुत नम्र चित्त हो, जो झुककर चलता है, वही सबको उठा सकता है, आगे बढ़ा सकता है। और जो अकड़ कर रहता है वो तो जहां तहां टकराता रहता है। तो हम बड़े हैं, अपने बड़प्पन को सदा कायम रखें, हमें अपने बड़प्पन में स्वयं ही स्थिर रहना है, तो संसार भी हमें उसी नजर से देखेगा। तो आज सारा दिन हम एक बहुत अच्छे ड्रिल करेंगे। मैं हूं कौन? मास्टर ज्ञान सूर्य, जिसके प्रकाश से ये जग प्रकाशित हो रहा है, जिसके प्रकाश से जग का तिमिर हट रहा है। मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, अपने को मस्तक के बीच चमकता हुआ मास्टर ज्ञान सूर्य देखेंगे, और मुझसे चारों ओर गोल्डन किरणें फैल रही हैं, बहुत तेजस्वी। मेरे सम्मुख हैं स्वयं ज्ञान सूर्य शिव बाबा, उनको अपने सामने देखें, उनकी तेजस्वी किरणें सामने से मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ में समा रही हैं। वे परम धाम से नीचे उतरकर मेरी आंखों के सम्मुख आ गए हैं। बस इस बहुत पावरफुल स्थिति का आनंद लें, इससे विक्रम विनाश होंगे, आत्मा बहुत पवित्र बन जाएगी। ओम शांति।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। अमृतधारा प्रोग्राम में मैं भक्ति आप सभी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है, सुस्वागतम। सुबह के इस सुंदर समय पर, मंगल समय पर, हम हमेशा ही सुविचार सुनते हैं और हमारे मन को फिर से एक बार तरोताजा करते हैं। तो चलिए, आज का सुविचार बहुत सुंदर है। कहा गया है, आज जो कुछ आपका है पहले किसी और का था और भविष्य में किसी और का हो जाएगा, इसीलिए परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस बात को सदा ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, कितनी सुंदर बात है, हम सुबह उठने से रात सोने तक ये मेरा है, ये मेरा है करते रहते हैं और उस पर अधिकार भी जताते हैं। लेकिन क्या सचमुच मेरा मेरा करते हमने अपने आसक्त भाव को बढ़ा तो नहीं दिया? श्रीमद् भागवत कथा जिसमें भागवतकारों ने अनासक्त भाव किस प्रकार से श्री कृष्ण ने राधा के साथ और गोपिकाओं के साथ बनाए रखा और उनको भी सिखाया, इसका बहुत सुंदर वर्णन हम सुन रहे हैं। तो चलिए, इसी सिलसिले में स्टूडियो में उपस्थित ज्ञानेश्वर जी का भी हम स्वागत करते हैं। ज्ञानेश्वर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद भक्ति जी, और आपको और हमारे रेडियो मधुबन के सभी श्रोतागण को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और ढेर सारी शुभकामनाएं। भक्ति जी, आज कुछ मेरा है और कल किसी और का होगा, ये कल्पना ही बड़ी सुंदर भी है और अगर हम उसे पालन करें, उसे आचरण करें, तो हमारी जिंदगी भी बहुत खुशहाल रहेगी। ये जब आप सुना रहे थे सुविचार, तब मेरे मन में विचार आया कि पुराने जमाने में हवेली हुआ करती थी और पुरानी हवेली को कोई बेचते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से बेचते थे। लेकिन आजकल की फ्लैट की संस्कृति आ गई, बंगलों की संस्कृति आ गई, डुप्लेक्स की संस्कृति आ गई और अपना पुराना फ्लैट जो है लोग चेंज करते हैं, अपना फ्लैट बेचते हैं, दूसरे फ्लैट में जाते हैं या बंगलो लेते हैं। फिर क्या हो गया, जिस फ्लैट में मैंने जिंदगी के कुछ पल गुजारे, कुछ साल गुजारे, उसके साथ मेरी अटैचमेंट थी, जिस क्षण में मैंने उसको बेच दिया, दूसरे को दे दिया, तो क्या हो गया, जो मेरा था वो दूसरे का हो गया। लेकिन जब दूसरे का हो गया, उसे वो अपना लगने लगा और फिर क्या, मैं दूसरे फ्लैट में जाता हूँ, अगर वो भी मैंने किसी से परचेस किया है तो वो भी चेंज होता गया, अपनापन, आसक्ति वो इतनी बदलती है। और फिर जब मैं नया घर में जाता हूँ तो पुराने घर की बड़ी मुश्किल से याद आती है, ऐसे नहीं कि मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ, लेकिन उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। तो ऐसे ही देह जो है हमारे, हमने कितने बदल दिए होंगे हमें पता नहीं, इतने 84 जन्म हो गए हमारे और इसके साथ साथ हमने देह भी बदल दिए, लेकिन उसकी याद नहीं है तो उसका दुख भी नहीं है। जो अपना देह जो है वो पुराना है, वो मेरा मेरा मैं कहता हूँ, जब उसे छोड़ देता हूँ तो मुझे ये विश्वास है कि नया अच्छा देह मिलेगा तो क्या होगा, वो भी अच्छा लगेगा। तो बहुत आध्यात्मिक विचार है, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए प्रेरणा देने वाला विचार है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल ज्ञानेश्वर जी, आपने ठीक कहा। मुझे लगता है कि ये परिवर्तन सृष्टि का नियम है। भगवत गीता का ये जो सुविचार है ये तो बहुत सुंदर है और श्रीमद् भागवत कथा में भी भागवतकारों ने इन बातों को बहुत ही अच्छे रीति से बताया है। ज्ञानेश्वर जी, आपने तो फ्लैट का, मकान का, बंगलों का उदाहरण दिया, ये तो आसान है, लेकिन हमारे जो रिश्ते हैं उनके साथ ये समझना और ये समझते हुए स्नेह रखना लेकिन मोह नहीं रखना, ये सच्चा अध्यात्म है। दोस्तों, भक्ति की बहुत सारी बातें जो है वो कभी कभी हम सुनते तो है लेकिन आचरण में लाना मुश्किल होता है। तो चलिए, अब समय हो गया है एक सुंदर कहानी सुनने का कि भक्ति करते हुए भी कभी कभी भगवान को अपने स्नेह रज्जू में बांधना, ये सचमुच केवल एक गोपी नहीं कर सकती, लेकिन कोई आम इंसान भी कर सकता है। सुनिए कथा को। एक थे साधु और उनका न कोई आश्रम था, न कोई धर्मशाला थी और न कोई ठिकाना था। जहां रात होती थी वही ठहर जाते थे और भिक्षा से जो कुछ मिलता था पहले भगवान को भोग लगाते थे और फिर स्वयं ग्रहण करते थे। ऐसी उनकी दिनचर्या चल रही थी। एक बार एक गांव में रुके थे। वहां वृंदावन की दो गोपियां भी रहती थी जिन्होंने कभी भी भगवान के दर्शन नहीं किए थे, न कभी मंदिर गई थी। लेकिन प्रातः दही मक्खन गागर में भरकर ले जाती थी, बेचती थी और अपनी गृहस्थी में मगन रहती थी। इन दो गोपियों का आपस में बहुत सख्य था, एक दूसरे की सखी थी। उन्होंने ये सुन रखा था कि साधु संत जो है वो भगवान के बहुत बड़े भक्त है और उनके पास जो झोली होती है उसमें भगवान रहते हैं। एक दिन दोनों अपना दही दूध बेचकर यमुना के निकट आई। वहां क्या देखती है कि एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या वंदन हेतु स्नान करने गए हैं और झोली एक वृक्ष के नीचे रखी हुई है। दोस्तों, आगे क्या होता है आपका कौतूहल जरूर जागृत होगा, तो अपने मन में ही सोचिए। लेकिन हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेड लाइट होने पर हमेशा अपनी गाड़ी रोक लेना चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ाना चाहिए। ऐसा ना करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों आइए, कथा के बारे में आपका कौतूहल तो जागृत हुआ ही होगा, लेकिन अभी हम सुनते हैं आगे क्या होता है। तो दोनों सखिया देखती है कि एक साधु अपनी झोली रखकर संध्या वंदन हेतु स्नान करने गए हैं। झोली एक वृक्ष के नीचे रखी है। उनको बड़ी उत्सुकता हुई और उनको मालूम था कि साधु संतों की झोली में भगवान है, तो चलो देखते हैं भगवान कैसे हैं। इस दृष्टि से दोनों ने चुपके से झोली उठाई और सारा सामान बिखेर दिया, परंतु भगवान नहीं मिले। तभी क्या हुआ, उनकी नजर एक डिब्बे पर पड़ी। डिब्बा खोला तो देखा लड्डू गोपाल डिब्बे में बंद है। एक सखी बोली दूसरी को, अरे यही भगवान है। दूसरी बोली, कितने निर्दयी है यह सन्यासी, देखो ना भगवान को बंद करके रखा है। तो पहली सखी बोली, देखो बेचारे भगवान के हाथ पैर सब टेढ़े हो गए हैं, क्योंकि बंद करके रखा है ना, हाथ पैर हिलाने की भी उनको जगह नहीं है। अब दोनों सखियां आपस में ये बोलती गई और दोनों ने प्यार से लड्डू गोपाल को उठाया। बोली, भगवान जी आप तो परेशान हुए होंगे ना, अभी परेशान मत होना, आपके हाथ पैर हम सीधे करते हैं। कर लो आपके हाथ पैर सीधे, अभी डिब्बे से बाहर आ गए हो और अभी हम आपको दूध दही खिलाते हैं। हाँ लो, भूखे भी कब के होंगे ना। तो दोनों ने भगवान की मूर्ति को सीधा करना शुरू किया। भगवान को भी उनकी सरलता पर बहुत मजा आ रहा था। भगवान आनंद ले रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। जब वे थक गई लेकिन हारी नहीं, तो भगवान को हारना पड़ा। दोस्तों लड्डू गोपाल की मूर्ति सीधी हो गई, भगवान सीधे खड़े हो गए। दोनों ने भगवान को नहलाया, दही खिलाया और बोली, अब लेटो थोड़ा, आराम भी तो करो। वह सीधी मूर्ति तो डिब्बे में नहीं जा सकती थी। इतनी सारी बातें होने तक महात्मा जी आ गए, तो दोनों डर कर भाग गई। महात्मा जी ने सोचा, ये दोनों कुछ लेकर तो नहीं भागी। वह भी उनके पीछे दौड़े, लेकिन वो इतनी जोर से भाग रही थी कि महात्मा जी उन तक पहुंच नहीं पाए। बेचारे लौट आए, देखते हैं झोली तो ऐसी पड़ी है, हतप्रभ रह गए। भगवान लड्डू गोपाल वहां हंसकर खड़े थे। अब महात्मा जी सारी बात समझ गए और भगवान के चरणों में गिर कर रोने लगे। वह खोजते हुए उन गोपियों के घर गए, उनके भी चरण पकड़कर गदगद होकर कहने लगे, सचमुच आप तो दोनों धन्य हो, आज तुम्हारे कारण मुझे भगवान के दर्शन हो गए। मैं तो जीवन भर सत्संग करता हुआ गांव से इस गांव से उस गांव तक घूमता रहा, लेकिन मैंने कभी लड्डू गोपाल को सरल नहीं किया और मैं खुद भी सरल नहीं बन पाया। दोस्तों नौधा भक्ति, सचमुच नौधा भक्ति में कितनी शक्ति है, भगवान को भी सीधा करने की। या भगवान को सीधा करना है या हमें सरल स्वभाव रखना है। भगवान तो भाव और सरलता पर तो रिझते ही है, लेकिन हम अगर जीवन में सरलता का गुण अपनाएं, तो मुझे लगता है कि ये कहानी सुनने का सचमुच ही बहुत ज्यादा महत्व होगा।
2: बिल्कुल भक्ति जी, कहानी सुंदर भी है और सरल भी है, और मुझे लगता है कि अगर भगवान को सरल करना है तो हमारा स्वभाव भी सरल होना चाहिए। इस रीति से कि जैसे लड्डू गोपाल को उन्होंने सरल किया,
1: अच्छा
2: वैसे अगर हमारा स्वभाव सरल है तो भगवान भी सरल हो जाते हैं, लेकिन हमारा स्वभाव टेढ़ा है तो भगवान भी टेढ़े हो जाते हैं। टेढ़ा होना इसका मतलब दुर्लभ हो जाते हैं, मिलते नहीं है। सत्संग करना अच्छा है, हर एक की आस्था का विषय है। ऐसे नहीं कि सत्संग नहीं करना चाहिए, लेकिन सत्संग के साथ साथ अगर हमारी भावना श्रेष्ठ है तो उसका ज्यादा महत्व है। भक्ति में, सत्संग में, अध्यात्म में जब भगवान के बारे में हम बातें करते हैं, तब अगर हमारी आस्था अच्छी है, हमारे भाव सरल है, तो भगवान को प्राप्त करना सरल है, ऐसा मैं समझता हूँ। बहुत ही अच्छी कथा है।
1: बिल्कुल दोस्तों, सचमुच सरलता गुण जिस पर सब मेहरबान होते हैं, फिदा होते हैं, और भगवान भी हमारे सरलता के गुण को देखकर अपना भी स्थान बदलते हैं। सचमुच दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ हम लेते एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: चांद मिश्रा, आप सुन रहे रेडियो मधुबन, सुनते रहे सुनाते रहे जन जन तक प्यार बरसाते रहे।
1: रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, श्रीमद् भागवत कथा भी नौधा भक्ति से भरी हुई है और अभी तक हमने जो देखा जिसमें गोपिकाएं जो है वो अपने स्नेह रज्जू में किस प्रकार से भगवान को बांधती है, भगवान भी बहुत प्यार से बंध जाते हैं। श्री कृष्ण जी का बहुत ही सुंदर वर्णन दशम स्कंद का जो 29वां अध्याय है उसे लेकर 33वां अध्याय तक हर प्रकार की गोपिकाओं की रास पीड़ा बताई है जिसमें श्रृंगार रस है। वैसे देखा जाए तो नौधा भक्ति वैसे ही नौधा रस भी है, नौ रस भी है। उन नौ रसों में श्रृंगार रस सर्वश्रेष्ठ रस माना जाता है, तो उसमें बहुत सुंदर रीति से उसका वर्णन है। लेकिन अगर सार रूप में कहे तो श्रीमद् भागवत के ये पांच अध्याय उसके पांच प्राण माने जाते हैं। ज्ञानेश्वर जी, पांच अध्याय पंच प्राण है, मुझे लगता है इस पर थोड़ी चर्चा होनी चाहिए, चिंतन होना चाहिए, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो पंच कर्मेंद्रिया, पंच ज्ञानेंद्रिया या पंच प्राण शब्द हम कई बार यूज करते हैं। तो ये पांच अध्याय पंच प्राण है, ये जो भागवतकार लिखते हैं मुझे लगता है कि इसका मतलब न केवल गोपिकाएं और श्री कृष्ण की और श्री राधा की श्रृंगार कथा का वर्णन है, लेकिन यह पंच प्राण अर्थात हर प्रकार की जो भक्ति है उसका भी एक बहुत सुंदर लीलया वर्णन किया है।
2: बिल्कुल भक्ति जी, मुझे लगता है कि आपने जैसे पंच प्राण का वर्णन किया और रास और महारास, रास लीला, बहुत सारा वर्णन ये पांच अध्याय में है। ऐसा लगा कि अगर भगवान को हमें याद करना है तो याद में तड़प होनी चाहिए, याद में व्याकुलता होनी चाहिए। और ये व्याकुलता या तड़प कैसी आएगी, जब हम प्रेम के बंधन से भगवान से बांध लेते हैं। और इसलिए यहाँ श्री कृष्ण जी को पुरुष के रूप में दिखाया है और गोपिकाओं को स्त्री के रूप में दिखाया है। स्त्री और पुरुष, इनके संबंध के बारे में जब हम बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है, देखिए कुमारी होती है, विवाह नहीं होता, लेकिन मंगनी हो जाती है। जब मंगनी हो जाती है तो पति और पत्नी एक दूसरे पति पत्नी बने नहीं है, अभी विवाह बाकी है, लेकिन फिर भी एक बार मंगनी होने के बाद वो कन्या को या उसके होने वाले पति को एक दूसरे को याद करना मुश्किल नहीं लगता, वो तो बहुत आसान है, स्वाभाविक है। और ये जो तड़प है वो तड़प यहाँ दिखाई गई है, और ये तड़प जब होती है तो भगवान को याद करना बड़ा आसान हो जाता है, नहीं तो भले महान योगी जो होते हैं वो भी तरसते हैं भगवान को कैसे याद करें। तो ये एक बंधन है, ये रिश्ता है, वो बहुत प्यारा रिश्ता है गोपिया और श्री कृष्ण जी का, भगवान और भक्त का। तो भक्त अगर भगवान को उसी रूप में अगर याद करे तो बहुत आसान है, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल दोस्तों, कितना सुंदर वर्णन है कि पंच प्राण है। अब आगे भागवतकार लिखते हैं कि भगवान की श्री कृष्ण जी की परम अंतरंग लीला, निज स्वरूप भूता गोपिकाएं, और जो हृदय की शक्ति थी भगवान की वो है श्री राधा, उसके साथ होने वाली भगवान की दिव्य अति दिव्य क्रीड़ा इन अध्यायों में कही गई है। ज्ञानेश्वर जी, दिव्य शब्द जो है वो मुझे लगता है कि देवता से बना हुआ है। तो यहाँ भले हमने मनुष्य के रूप में गोपिकाओं को देखा, लेकिन यहाँ जो प्रकृति और पुरुष, हमारे पंच प्राण जिसको कहते हैं, तो प्रकृति और पुरुष एक दूसरे के साथ कैसे उनके संबंध है उसकी दिव्यता बताई गई है।
2: बिल्कुल।
1: और यहाँ रास शब्द का बहुत सुंदर अर्थ भागवतकार लिखते हैं, वो कहते हैं रास शब्द का मूल रस है, और रस स्वयं श्री कृष्ण जी ही है, इसीलिए रसो वै सहा इसीलिए रास शब्द आया।
2: अच्छा।
1: तो जिस दिव्य क्रीड़ा में एक ही रस अनेक रसों के रूप में होकर अनंत अनंत रस का समास्वादन करे, एक रस ही रस समूह के रूप में प्रकट हो जाए, स्वयं ही आस्वाद्य आस्वादक लीला धाम और विभिन्न प्रकार के रूप में क्रीड़ा करे, तो उसका नाम रास है। ज्ञानेश्वर जी, हम कहते हैं कि एक दूसरे से हम रास आते हैं, या राशि शब्द भी यूज करते हैं। तो ज्ञानेश्वर जी, जैसे एक दूसरे के मन के भाव जानना, जिसको हम कहते हैं कि इनके साथ मेरी बहुत अच्छी ट्यूनिंग है, तो इस प्रकार से यहाँ भक्त और भगवान का रिश्ता दिखाया है, अर्थात श्री कृष्ण जी और गोपिकाओं का रिश्ता दिखाया है। और हर प्रकार से अगर हम ये चित्र कभी भी देखते हैं, तो वो रास करते हुए ही दिखाई देता है। मुझे लगता है कि कितना सुंदर गुह्य अर्थ इसमें बना हुआ है।
2: बिल्कुल। और भक्ति जी, मुझे लगता है कि एक रस स्थिति, अगर दोनों रिश्ते में रस है, रसास्वाद हम कर सकते हैं, तो वो रस तो अलग होता है और वो महारास हो जाती है। और यही वर्णन मेरे ख्याल से श्रीमद् भागवत कथा में किया गया है कि श्री कृष्ण जी और गोपिका, गोपिकाओं के मन में जितना प्रेम है अपने परमेश्वर के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति, भगवान श्री कृष्ण जी के प्रति, उतना ही प्यार श्री कृष्ण जी का गोपिकाओं के तरफ है। तो दोनों तरफ से प्यार अगर एक समान है, एक रस है, तो फिर एक रस स्थिति होती है, ऐसा मुझे लगता है।
1: बिल्कुल। दोस्तों, हम शब्द का प्रयोग तो जरूर आज तक करते आए कि एक रस होना चाहिए, परमात्मा को याद करते हुए हमारी स्थिति एक रस होनी चाहिए, लेकिन एक रस माना एक में ही सर्व रसों का स्वाद लेना, उसको कहते हैं। ये कितनी सुंदर बात भागवतकारों ने सुंदर और खूबी से स्पष्ट की है। चलिए दोस्तों, आगे भी जरूर चिंतन करेंगे, भागवत कथा का रसास्वादन करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखिए, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा। इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे, किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहाँ और ठीक करने की उंगली भी यहाँ। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुनते रहो, मुस्कुराते रहो। दोस्तों, तो भगवान की यह दिव्य लीला, इस दिव्य लीला भगवान के दिव्य धाम में दिव्य रूप से निरंतर हुआ करती है। ज्ञानेश्वर जी, निरंतर हुआ करती है कहाँ है, माना आज भी हम सच्ची सच्ची गोपी बनकर उस दिव्य रास का, दिव्य लीला का अनुभव कर सकते हैं। बस उसके लिए चाहिए दिव्यता। दोस्तों, आगे भगवतकार कहते हैं कि यह भगवान की विशेष कृपा से प्रेमी साधकों के हितार्थ कभी कभी भगवान भी अपने दिव्य धाम के साथ ही भूमंडल पर भी अवतीर्ण होता है, जिसको देखकर, जिसको सुनकर एवं गाकर तथा स्मरण करते हुए, चिंतन करते हुए अधिकारी पुरुष जो है वो रस स्वरूप भगवान की इस परम रसमयी लीला का आनंद ले सकता है और स्वयं भी भगवान की लीला में सम्मिलित होकर स्वयं को कृतकृत्य कर सकता है। मुझे तो लगता है ज्ञानेश्वर जी, हमने कई बार कृतकृत्य शब्द भी यूज किया है।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन कृतकृत्य होना, इसका सही अर्थ मुझे लगता है कि भागवतकार ही बता सकते हैं। आगे वो कहते हैं, ये जो पंच अध्याय है उसमें क्या क्या है, वंशी ध्वनि है, गोपियों के अभिसार है, श्री कृष्ण के साथ उनकी बातचीत है, मन का रमण है, श्री राधा जी के साथ अंतर्धान होना, पुनः प्रकट होना और गोपिकाओं के द्वारा दिए हुए वसन आसन पर विराजना। इतना ही नहीं, गोपिकाओं के कूट प्रश्न का उत्तर भी देना, उनके साथ रास नृत्य करना, रास क्रीड़ा करना, जल केली करना और वन विहार का आनंद लूटना, ये सारे जो भगवान ने कर्तव्य किए, वो सारे जो मानवी भाषा में है परंतु

0: सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: ज्ञानेश्वर जी, कभी कभी हमारे भी मन में कितने सारे प्रश्न होते हैं और हमको लगता है कि हम अगर भगवान से पूछे तो क्या भगवान उन प्रश्नों के उत्तर देगा। लेकिन यहाँ स्वयं भागवतकार लिखते हैं कि बस एक का रस होकर भगवान के साथ अपने मन की बुद्धि की तार जोड़ो तो भगवान से आपको हर प्रकार की प्राप्ति हो सकती है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये।
1: बिल्कुल भक्ति जी, जैसे आपने कहा कि पंच प्राण और पांच अध्याय ये हार्ट ऑफ द भागवत कहते हैं या सोल कहते हैं, आत्मा जो है भागवत कथा की जो आत्मा है ये पांच अध्याय में है। ऊपर ऊपर से तो लगता है कि ये श्रृंगार है गोपिका और श्री कृष्ण जी का, लेकिन अगर ध्यान से देखे उसके अंदर झांक के देखे तो बहुत बड़ा अध्यात्म उसमें है। मुझे तो लगता है कि भगवान को अगर मुझे पाना है तो मानव के रूप में भी अगर मैं उसे याद करूं, लेकिन मानव के रूप में याद करते समय मुझे भी देहभान छोड़ना है। ऐसे कहते हैं कि गोपिकाएं नाचती रहती थी तब उन्हें भान नहीं था, वस्त्र का भान नहीं था, अपने कुमकुम का भान नहीं था, काजल का भान नहीं था, रोती थी तो काजल उनके गाल पे आता था। ऐसी वर्णन बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो जब मैं देहभान छोड़ के भगवान को प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ तो भगवान भी देहधारी बन के हमारे पास आते हैं और फिर क्या होगा, हम उनके सान्निध्य का, उनके निकटता का अनुभव कर सकते हैं। तो ये सब अनुभव की बातें हैं। हम अगर हमारे देहभान में आ गए तो अनुभव नहीं हो पाता। हम फिर क्या करेंगे, मंत्रों का उच्चारण करेंगे, गीतों का गायन करेंगे, लेकिन वो जो भावना है वो भावना नहीं आ पाती। उस भावना पाने के लिए मुझे देह का भान छोड़ना चाहिए और आत्यंतिक भगवान के साथ प्रेम होता है तब ये सब कुछ संभव है, ऐसा मुझे लगता है।
0: बिल्कुल, इसीलिए दोस्तों भागवतकारों ने, और कहां भी आप देखो, गोपी और श्री कृष्ण, ये जो दोनों की जोड़ी है वो कितनी हर प्रकार से हर तरह से भक्ति में वर्णनातीत हो गई है। चलिए दोस्तों, हम सच्ची गोपी जरूर बने और भगवान को भी हमारे साथ वो रिश्ता जोड़ने के लिए आना ही पड़ेगा और आकर उसको भी वही हम आनंद देना पड़ेगा, ये जरूर मन में रखे। चलिए दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ मैं भक्ति अपने वाणी को विराम देती हूँ। हम मिलेंगे फिर से अमृत धारा में। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

मैं हूं जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, पूर्व सेनाध्यक्ष इंडियन आर्मी, और आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

याद रखें, एक बाइक पर कभी भी दो से ज्यादा लोग एक साथ ना जाएं। यह एक दंडनीय अपराध है। सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों। समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कहा जाता है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक पड़ती नहीं हथौड़ी की चोट, तब तक पत्थर भी भगवान नहीं होता। जितनी हथौड़ियां पड़ती हैं हमें समस्याओं के रूप में, परिस्थितियां जितनी ज्यादा हमारे सामने आती हैं, उतनी ही ज्यादा हम निखरते चले जाते हैं। जैसे किसी सोने को आग में डाला जाता है तो वो तपता चला जाता है, निखरता चला जाता है, उसकी चमक दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाती है। इसी प्रकार यदि जीवन में कोई समस्या या परेशानी आती है तो हमारा व्यक्तित्व और निखर कर सामने आता है और हम एक ऐसे शख्स के रूप में समाज के सामने आते हैं जिसे लोग दिनों दिन याद करते हैं, अपनी प्रेरणा के रूप में, अपने आदर्श के रूप में स्वीकार करते हैं। समाधान कार्यक्रम इसीलिए आपकी समस्याओं में आपके साथ रहता है ताकि आप अपनी हिम्मत ना हारें, हौसला ना हारें और बढ़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर। और लक्ष्य की ओर हमें हमेशा ले चलते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। प्रता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू
0: प्रता जी। एक सुंदर चीज से आज शुरुआत करना चाहूंगा। हमारे पास कानपुर से रेखा रॉय जी ने कॉल किया था और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि ओम शांति, मैं अपने दिन की शुरुआत आपका कार्यक्रम देख कर ही करती हूँ। मुझे यह कार्यक्रम बहुत पसंद है। जिस दिन ये नहीं देख पाती हूँ उस दिन लगता है कि जैसे मैंने कुछ मिस किया है। तो एक बहुत ही प्यार भरा फोन कॉल उनकी तरफ से था। और साथ ही उन्होंने पूछा कि मेरे हस्बैंड मुझे पॉलिटिक्स में देखना चाहते हैं और कहते हैं कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में तुम बहुत अच्छा कार्य कर सकती हो, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड भी नहीं है और मैं बिजनेस करती हूँ। कृपया बताएं कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए।
1: देखिए, अगर समाज सेवा का लक्ष्य है धन कमाने का नहीं
0: जी,
1: क्योंकि आजकल राजनीति में लोग धन कमाने बहुत जा रहे हैं, कहते ये हैं कि हम सेवा करेंगे, जन कल्याण करेंगे, परंतु वो लक्ष्य पीछे छूट जाते हैं। अगर हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नेतागण सचमुच जन कल्याण को अपना लक्ष्य बना लें, धन को नहीं, तो धन तो उन्हें बहुत मिलेगा ही, लेकिन वो सच्चे अर्थों में नेता कहलाएंगे। तो अगर इनकी इच्छा ही है, इनके पति की इच्छा है कि राजनीति में जाएं, लेकिन और कोई लक्ष्य नहीं है, लोगों को सुख देना, उनकी समस्याओं को हल करने में उन्हें मदद करनी है, कुछ दिशा निर्देश करनी है समाज को, तो इन्हें अवश्य चल जानी चाहिए। लेकिन बस अपने अंदर ईश्वरीय शक्तियां और बढ़ाएं ताकि जिस फील्ड में ये जाएं उस फील्ड में इनको सहज सफलता मिले।
0: बिल्कुल। और ये जो कह रही हैं कि कॉन्फिडेंस इनका नहीं है, तो शायद ईश्वरीय शक्तियों के माध्यम से और इस सुंदर लक्ष्य के माध्यम से भी आत्मविश्वास हासिल
1: कर सकेंगे। बिल्कुल, आत्मविश्वास हासिल करेंगे। लेकिन जैसा आजकल सभी पॉलिटिशियंस ही कहते हैं, हमारे पास बहुत लोग आते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत डर्टी पॉलिटिक्स हो गई है, इनको इसलिए पॉलिटिक्स में जाना चाहिए कि ये उसे स्वच्छ पॉलिटिक्स बनाए, क्लीन कर दें उसे। तो ऐसे अगर लोग राजनीति में चले जाते हैं जो राजनीति को क्लीन करें, जो वहां कुछ नैतिकता का आदर्श प्रस्तुत करें, जो धन का जो लोभ और स्वार्थ मनुष्य के लिए हो गया है इससे जरा ऊपर उठकर संसार को दिखाएं, तो ये सचमुच राजनीति को भी एक दिशा निर्देश देने वाली बात होगी।
0: बिल्कुल प्रता जी, ये जो एक मेल हमारे पास आया है, ये आकांक्षा जी लिख रही है, कहती है, ओम शांति, वी वॉच योर प्रोग्राम रेगुलरली एंड हैव गॉट टू लर्न मेनी थिंग्स। Please look into our problem and tell us what can be done. My daughter had a minor operation for liver cyst 6 years ago. Due to negligence of doctors and also due to lack of oxygen during operation, she didn't get conscious after operation and went into coma. Now she is recovering to the extent of sense of touch, even moves her eyeballs, but she is still unable to talk or do any activity. Please suggest some Raj Yoga method.
1: देखिए, बात तो बड़ी ही क्या कहें, दुर्भाग्य की है। 6 साल हो गए, न मनुष्य जिंदा है न मृत है, और उसकी सेवा भी करनी पड़ रही। जब कोई उसे देखता होगा, उनके परिवार जन, तो कैसी फीलिंग होती है मनुष्य को, हम समझ सकते हैं।
0: और भ्राता जी, फुल कोमा में होते हैं तो एक अलग बात होती है, ये सेमी कोमा में है तो उम्मीद भी है।
1: उम्मीद भी और... है। नहीं नहीं, हम इनकी उम्मीदों के साथ हैं और हमारा विश्वास है, जैसा कि हम स्पिरिचुअल पावर के रिजल्ट देख रहे हैं, तो हर समस्या को हल करने में ये शक्ति सक्षम है। तो अगर ये सेमी कोमा में है तो ये इससे बाहर आ सकती हैं, हमें पूर्ण विश्वास है। जो भी इनमें से राजयोग मेडिटेशन करते हैं, ईश्वरीय ज्ञान लेते हैं, तो मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कुछ बहुत सुंदर बातें, और बहुत ही सिंसियरली, बिल्कुल विश्वास के साथ ये ऐसा अभ्यास करेंगी तो बहुत गुड रिजल्ट मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेंगे। पहली चीज, इनको भोजन पानी जो कुछ भी दिया जाता है, जैसे भी दिया जाता है, उसको चार्ज कर दिया जाए और चार्ज इस संकल्प से किया जाए कि पानी को या भोजन को दृष्टि देकर 7 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। इसकी चर्चा हम करते आ रहे हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, ही इज ऑलमाइटी, देयरफॉर वी आर मास्टर ऑलमाइटी। इससे पानी में शक्तियां भर जाएंगी और वो जो उसके देह में जाएगा तो वो बहुत सारी जो सो गई हैं चीजें, कॉन्शियस में नहीं है, उनको एक्टिव करेगा। एक चीज ये करनी है, रेगुलर करनी, बहुत अच्छी तरह से करनी है। हो सके तो इससे पहले आधा घंटा मेडिटेशन कर लें, मेडिटेशन के बाद पानी को चार्ज करें। दूसरी चीज, क्योंकि सारा सिस्टम ब्रेन से कंट्रोल्ड है और डॉक्टर की कुछ भी गलती हुई हो वो तो देखो एक खेल है, कुछ ना कुछ चलता है संसार में, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता
0: जी।
1: तो जो भी राजयोग का अभ्यास करते हैं उनको इसके ब्रेन को एनर्जी देकर उसको एक्टिव बनाना है, ताकि ब्रेन का कोई भी हिस्सा जो इनएक्टिव हो रहा है वो पुनः एक्टिव हो जाए। और उसका तरीका होगा कि दोनों हाथ ऐसे मलते हुए 3 बार संकल्प करें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। तो इनके दोनों हाथों से बहुत अच्छी एनर्जी वाइब्रेट आउट होने लगेगी, बहुत अच्छी। देखो मेरे हाथ आपस में अट्रैक्ट हो रहे हैं
0: जी।
1: तो 3 बार ये अभ्यास करके मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ और ये ब्रेन के दोनों तरफ रख दें, संकल्प करें, पावरफुल एनर्जी इसके ब्रेन को जा रही है और ये संकल्प कर दे, ब्रेन एक्टिव हो जाए
0: जी,
1: ब्रेन परफेक्टली काम करने लगे। ऐसा 1 मिनट हाथ यहाँ रखेंगे, ऐसा 5 बार करेंगे, सवेरे 5 बार शाम को, यानी 10 मिनट इनके ब्रेन को एनर्जी देनी है विद फुल कॉन्फिडेंस कि इनका ब्रेन फुल्ली एक्टिव हो रहा है। तीसरी चीज इन्हें करनी है, क्योंकि देखिए जो कुछ भी किसी मनुष्य के साथ होता है, भले ही हम गलती या नेग्लिजेंसी डॉक्टर्स की देखें या कुछ और कारण हमें दिखाई देता हो, पर फाइनल कारण हरेक के कर्मों का है। जो कर्म फिलोसोफी में विश्वास करते हैं, विश्वास न भी करें तो ये तो परम सत्य है कि जैसा जिसने किया उसको फल मिलता है, या जो कुछ हमारे साथ हो रहा है उसके जिम्मेदार हमारे कहीं ना कहीं पास्ट के कर्म हैं। तो उन पास्ट के विकर्मों को नष्ट करने के लिए जो भी इनमें से राजयोग करते हैं उनको 1 घंटा पावरफुल राजयोग मेडिटेशन करना होगा, रेगुलर ये करेंगे, बिल्कुल पावरफुल्ली करेंगे। पावरफुल्ली का अर्थ है कि और संकल्प न चले, मन अच्छी तरह एकाग्र हो जाए, ये ऐसे संकल्प के साथ बैठे कि हमें इस आत्मा को पूरी मदद करनी है। और चौथी बात भी एक ये कर सकते हैं, उसके पास खड़े होएं, उसको आत्मा देखें और खुद को अभ्यास करें, मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं 7 बार
0: जी,
1: और वहीं से इनको वाइब्रेशंस दे, जैसे मुझ आत्मा से उस आत्मा को शक्तियों की किरणें जा रही हैं, और फिर संकल्प दे, हे आत्मा जागृत हो जाओ, उठो, इस सेमिकोमा से बाहर आ जाओ, तुम तो चेतन आत्मा हो, तुम में बहुत शक्तियां हैं, अब निकलो इससे। ये रोज वाइब्रेशंस भी देंगे और थॉट्स भी देंगे। तो ये चारों प्रयोग करते रहने से निश्चित रूप से 21 दिन में हमें पूर्ण विश्वास है, अगर ये बिल्कुल सिंसियरली, ऑनेस्टली और एकाग्रता के साथ करेंगे

0: तो 21 दिन से ज्यादा नहीं लगेंगे और यह आत्मा बाहर आ जाएगी।
1: चलिए, हमारी हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं इनके लिए व्रता जी। 6 वर्ष से पूरा परिवार इंतजार कर रहा है, तो सभी का बहुत ज्यादा प्यार भी है, तो निश्चित रूप से इन अभ्यासों से जल्दी वो इससे बाहर आ जाएं। हम भी अपनी तरफ से दुआ करेंगे। व्रता जी, आगे भी इन्होंने ऐड किया था कि उनका जो बेटा है, मतलब जो कॉमा में है, वो इस चीज पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता है कि उनकी जो माँ है अब फिर से वापस अपनी लाइफ में आ पाएंगे, अर्थात वो वैसी ही रहेंगी जैसी हैं। तो उसकी इस नेगेटिव थॉट को हम कैसे पॉजिटिव करें, ये भी इनका प्रश्न है।
0: देखिए, वो तो नेचुरल है, वो 6 साल हो गए बेचारा इंतजार कर रहा है, देख रहा है, वो बड़ा हो गया है अब,
1: जी।
0: तो उसके मन में कोई उम्मीद न रहे, ये बड़ा नेचुरल सा है।
1: लेकिन ये नेगेटिविटी भी पता जी कहीं ना कहीं
0: हाँ,
1: प्रभाव तो
0: परंतु
1: डालती
0: जो
1: होगी।
0: ये प्रभाव है हमारे राज्यों के,
1: जी
0: इसकी शक्ति के आगे ये नेगेटिविटी ज्यादा काम नहीं करेगी। लेकिन बच्चे हैं, उनको भी अगर सिखा दिया जाए कि तुम भी अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, कि तुम्हारी मम्मी ये बाहर आने वाली फिर से तुम्हारे सामने वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी, तो इनके पॉजिटिव संकल्प भी काम करेंगे। और ये मेडिटेशन न भी करते हो, कम से कम प्रेयर तो अवश्य किया करें।
1: बिल्कुल प्रथा जी, हमारे पास जो अगला मेल आया है, ये मेल है नेहा जी का। ये कहती हैं कि माय नेम इज नेहा, आई एम फ्रॉम नागपुर। मैंने लास्ट 6 मंथ पहले से पीस ऑफ माइंड आपका चैनल देखना स्टार्ट किया है। आई एम क्वाइट हैप्पी विद इट। मैं पहले काफ़ी सेंसिटिव नेचर की हुआ करती थी, जस्ट कुछ टाइम पहले ही मैं अपने इस नेचर को कंट्रोल कर पाई हूँ। मुझे छोटी छोटी बातों का टेंशन हो जाया करता था, नाउ आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल इट, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं बार बार अपने इस संकल्प से भटक जाया करती हूँ। लोग मुझे गुस्सा दिलाने में सफल हो ही जाते हैं। पास्ट में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो चुकी है इसके कारण, पढ़ाई में भी मन नहीं लगता, लेकिन अभी मैं इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर में हूँ, तो मेरा कॉन्सेंट्रेशन बना रहे और मैं इन चीज़ों से बाहर निकल पाऊँ, उसके लिए मुझे कुछ उपाय बताएं। नेहा जी,
0: हाँ देखिए, नेहा को मैं कहूँगा कि सेंसिटिव नेचर मनुष्य की भविष्य के लिए अच्छी नहीं होती, और वर्तमान में वो उसको इतनी नाजुक बना देती है कि हर बात फील होगी, हर जगह इमोशनल होके कहीं गुस्सा होगा, कहीं मूड ऑफ होगा, यानी हमारी जो मनोस्थिति है वह दूसरों के हाथ में चली जाती है। जैसा उनसे आए वैसे हम बन जाएं, वो कुछ गलत बोल दें तो हम बस खुशी हमारी खत्म हो गई, हमारा मूड बिगड़ गया, किसने महिमा कर दी तो हम फूले नहीं समा रहे हैं। तो ये जो सेंसिटिविटी है ये मनुष्य के लिए सचमुच खतरनाक है। इन्होंने अभी ईश्वरीय ज्ञान लिया है, पहले तो इनको ईश्वरीय ज्ञान के बल से अपने मन को पावरफुल करना, ज्ञान पहले, मेडिटेशन अलग चीज। ये ज्ञान के जो महावाक्य हैं रोज सुने, उन पे अच्छा चिंतन करें, तो जब मनुष्य ज्ञान का चिंतन करता है, ये चिंतन भी उसे बल प्रदान करता है, और ज्ञान का चिंतन उसके विचारों में शक्ति भरता है, मुख्य बात ये होती है
1: जी।
0: तो इसको ये रेगुलर बढ़ाएं, रोज कम से कम आधा घंटा अपने को एकांत में दें और अपने से बात करें कि तुम भगवान की संतान, तुम दूसरों के अधीन क्यों हो गए? दूसरे चाहे तुम्हें रुला दें, दूसरे चाहे तुम्हें हंसा दें, तुमने अपने जीवन की बागडोर, अपनी खुशी की बागडोर, अपनी शांति की बागडोर दूसरों के हाथों में क्यों दे दी है? निकलो इससे बाहर। तो अपने से इस तरह बात करेंगे, इसको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन कहते हैं
1: जी।
0: अपने से इस तरह बात करेंगी तो बल आता जाएगा आत्मा में। दूसरी बात, ये हर बात को लाइटली लेना सीखें। जो बहुत सेंसिटिव होता है वो हर बात को बड़ा सीरियसली लेता है, इसलिए हर बात का इफेक्ट उसके ऊपर आ जाता है। हल्के रूप से ले, किसने कुछ कहा, मुस्कुरा के आगे बढ़ जाए, अरे कोई बात नहीं, ये तो लोग कहते ही रहते हैं, कहा तो क्या हुआ, हमारे कल्याण के लिए कहा होगा, हल्के रूप से लें उसको, तो इससे इनकी ये सेंसिटिव नेचर समाप्त होती जाएगी। लेकिन रोज इनको कम से कम इस नेचर के लिए आधा घंटा राजयोग का अभ्यास करना चाहिए, और साथ में अपने को ये संकल्प देना होगा, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सेंसिटिविटी से मुक्त हूँ। सवेरे उठकर भी ये रोज ज्यादा नहीं तो 7 बार ये अभ्यास करने लगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं बहुत पावरफुल हूं, सेंसिटिविटी से मुक्त हूं, तो ये अभ्यास करने से ये स्वमान है शक्तिशाली बनेंगे और आधा घंटा रोज मेडिटेशन अवश्य करेंगे तो बहुत जल्दी, समय नहीं लगेगा, मुश्किल से 3 मास लगेंगे और इन्हें लगेगा कि मुझसे ज़्यादा पावरफुल कोई नहीं है, कोई बात इन्हें अफेक्ट नहीं करेगी, इनका मूड एक रस रहेगा और जो ये पढ़ाई पढ़ रही हैं उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, फिर इनकी एकाग्रता बनी रहेगी, ये दूसरों की बातों को, दूसरों के वाइब्रेशंस को, उनके व्यवहार को बस निष्प्रभावी बना देंगे अपने को उनसे, उनका इफेक्ट इन पर नहीं आएगा, बल्कि
1: पावरफुल हो जाएंगे,
0: बल्कि ये होगा कि फिर इनके वाइब्रेशंस दूसरों को प्रभावित करने लगे।
1: बिल्कुल, वास्तव में होना भी यही चाहिए भ्राता जी, यदि हम शक्तिशाली हैं तो दूसरों के ऊपर हमारा प्रभाव पड़ेगा और हम यदि कमजोर हैं तो निश्चित रूप से दूसरों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है।
0: कन्याओं में ये कमजोरी देखी जाती है तो बहुत ही सेंसिटिव रहती हैं, बस किसी ने कुछ कहा और वो जैसे छुई मुई का पेड़ होता है ना, शरम बूटी भी कहते हैं उसको, इन्हें हाथ लगा और मुरझा गई, तो ये स्थिति वास्तव में पूरे जीवन के लिए अच्छी नहीं रहती है, इससे बाहर निकलेंगे इन 3 चीजों के अभ्यास।
1: बिल्कुल प्रता जी, एक फोन कॉल की ओर मैं आपको लिए चलता हूँ। 2 फोन कॉल हमारे पास एक जैसे ही थे, एक बैंगलोर से था और एक उड़ीसा से था, और इन दोनों का एक ही प्रश्न था कि जो मेरे पति की जो दृष्टि वृत्ति है दूसरी महिलाओं के लिए ठीक नहीं है, उन्हें बोलो तो वो कहते हैं कि तुम खामखा शक करती हो, गुस्सा भी करते हैं, उन्हें हम कैसे ठीक करें?
0: ये समस्या आजकल बढ़ती जा रही है संसार में, मनुष्य के अंदर वासनाएं बढ़ रही हैं तो किसी के भी देह की ब्यूटी उसको अट्रैक्ट करती है, उसका ध्यान उनकी ओर जाता है, अट्रैक्शन होता है, और यही कारण है कि संसार में रेप के केस भी बहुत बढ़ते जा रहे हैं। तो मनुष्य की दृष्टि आत्मिक न होकर दैहिक हो गई है, वो दूसरों के गुण, उनकी बुद्धि, उनकी शक्तियों को नहीं देखता, केवल उनके देह को देखता है, और ये वासनाएँ उसे कहीं ना कहीं धोखा अवश्य देती हैं, उसे कमजोर करती हैं, फिर उसकी ग्लानि कराती हैं, फिर जब उसकी ग्लानि होगी चारों ओर फिर उसकी मनोस्थिति बहुत बिगड़ जाएगी। और एक नारी के लिए जिसका पति ऐसा हो, जिसको दिखता हो कि इसकी ये मनोवृत्ति है, नारी में थोड़ी शक की नेचर भी होती है, होगा कम वो सोचेगी ज्यादा, लेकिन वो बहुत दुखी रहने लगती है और उसका दुख आजकल लोगों को सोचने की बहुत आदत है। मेरे पास लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, उन्हें पहला संकल्प क्या होता है, मेरा पति मुझे छोड़ के इनको ना अपना ले। ये समस्या, ये संकल्प उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है और इसमें उनके अनुमान लगते जाते हैं और वो परेशान होती जाती है। नो डाउट ये एक बहुत बड़ी समस्या आजकल है कि मनुष्य की वृत्तियां बहुत दूषित हो गई हैं, बहुत सेक्सुअल हो गया है और वो अपने सेक्स के पीछे ही सब कुछ नष्ट कर देना चाहता है, न उसे परिवार की चिंता रहती, न बच्चों की चिंता होती, न वो माँ बाप का ध्यान करता है। अब इनको जो कुछ करना है उसके लिए देखिए कुछ विधियां हो सकती हैं, इन्होंने राजयोग तो सीखा ही होगा तभी इनको इस चीज का हुआ कि इसका समाधान क्या है। एक तो ये उन्हें पवित्र भोजन खिलाएं और पवित्र भोजन बनाने का तरीका वही है कि भोजन पर दृष्टि डालते हुए याद करें मैं परम पवित्र आत्मा हूं। जब भोजन बन भी जाए तो उस सारे को वाइब्रेशंस दे दें, कम से कम 7 बार संकल्प कर दें मैं परम पवित्र आत्मा, और फील करें मेरे नैनों से प्योर एनर्जी भोजन में समा रही है, और फिर संकल्प करें ये आत्मा जब इस पवित्र भोजन को खाए तो इसकी दृष्टि वृत्ति पवित्र हो जाए। इसका बहुत बड़ा प्रभाव होगा, ये सचमुच एक ऐसा तरीका है जो दूसरों की मनोवृत्तियों को आराम से बदला जा सकता है, लेकिन विश्वास के साथ इसको करते रहें। कभी कभी मनुष्य सोचता है 2 दिन कर लिया कुछ हो तो रहा नहीं, ये नहीं, करते रहें लगातार, 21 दिन करें फिर 21, 3 मास तक तो करना ही है, एक प्रयोग। दूसरा प्रयोग सबकॉन्शियस लेवल पर इसको ठीक करना है और उसका तरीका है कि जब वो व्यक्ति सोया हो, ये जल्दी उठती होंगी तो 5 बजे का टाइम निश्चित करें और एक 5 मिनट उनको प्योर वाइब्रेशंस दें, और प्योर वाइब्रेशंस देने का तरीका है मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, या मैं आत्मा पवित्रता की देवी हूँ और मुझसे पवित्र किरणें निकलकर उस आत्मा को जाने, जैसे एक फोकस जा रहा है यहाँ से उस आत्मा को, 5 मिनट ही अभ्यास करेंगे, फिर माइंड टू माइंड उससे बात करें, तुम तो एक पवित्र आत्मा हो, तुम तो बहुत अच्छी आत्मा हो, तुम तो मुझसे बहुत फेथफुल हो, लॉयल हो, तुम बहुत रॉयल भी हो, तुम औरों की ओर क्यों देखते हो, हमारा और तुम्हारा आपस में बहुत प्यार है, तुम किसी की ओर न देखो, तुम तो पवित्र आत्मा हो, आत्मा हो जाओ। इस तरह के संकल्प रोज माइंड टू माइंड उसको देंगे, तो जो संकल्प ये देंगे जब वो व्यक्ति उठेगा, तो क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इनको स्वीकार कर लिया है, तो उसको यही संकल्प आने लगेंगे, और जिस क्षण उसको रियलाइज होने लगेगा कि ही इज रॉन्ग, बस उस मोमेंट की देरी है कि नहीं मुझे नहीं करना चाहिए। मान लो मेरी बहनों की ओर कोई कुदृष्टि से देखे, मेरी पत्नी की ओर कोई कुदृष्टि से देखे, तो मुझे कैसा लगेगा। जिस दिन बस ये अवेयरनेस हो जाएगी, चेंज हो जाएगा। तीसरी भी एक बात इनको करनी है, 15-20 मिनट रोज उस आत्मा के कल्याण के लिए राजयोग मेडिटेशन करें फिक्स करके। तो राजयोग मेडिटेशन में इतनी अच्छी पावर है कि दूसरों में चेंजेस लाता है, और इनका मन भी शांत होगा, और वो भी किसी अधोपतन से बच सकेंगे।
1: पता जी, एक चीज विशेष करके इस केस में ये भी हो सकता है क्या कि कई बार जब इस प्रकार की हमारे मन में बात आ जाती है कि सामने वाला ऐसा कर रहा है जो मेरा इतना नजदीकी है, मेरा पति है, हमारे व्यवहार में कहीं ना कहीं ऐसी कटुता आ जाती है, व्यवहार में ऐसा परिवर्तन आ जाता है, तब कहीं जाकर के जो गुस्से वाली बात है पतियों की तरफ से,
0: जरूर नहीं उनकी ये गलती हो रही हो बार बार। मान लो किसी की ओर भी देखता है तो इसे शक होगा कि इसकी कुदृष्टि है,
1: क्यों
0: तो सब जगह तो जरूर नहीं उसका दोष हो, लेकिन एक नारी को क्योंकि वहम ज्यादा होता है, और वो अगर उसको बार बार बोलती है तो कोई मनुष्य को ये बात बहुत फील होती है, क्योंकि ये चरित्र की बात है, और उसका गुस्सा करना फिर बड़ा लाजमी हो जाता है, नेचुरल सा हो जाता है। तो इनका भी ये कर्तव्य है कि ये इस तरह की बातें बार बार न करें, अगर करनी भी है तो स्वमान जगाए उनका, तुम बहुत अच्छे हो, तुम महान हो, तुम्हारे विचार बहुत महान है, हमारा दोनों का आपस में बहुत प्यार है, तुम्हें कहीं नहीं देखना है, अब कभी मौका देख के जब उनका अच्छा मूड हो ऐसे कह दिया करें, तो उनका गुस्सा भी नहीं होगा, नहीं तो इनका क्या होगा, आपस में क्लेश बढ़ता जाएगा और ये दूरी पैदा करेगा, और ये दूरी फिर भविष्य के लिए अच्छी नहीं।
1: बिल्कुल, कई बार बातें यदि ऐसी नहीं होती है तो सामने वाले व्यक्ति का ईगो हर्ट होता है कि बात ऐसी है नहीं, और ये खामखा इस प्रकार की बात।
0: कभी कभी ऐसा भी होता है कि बात होती नहीं, लेकिन दूसरे का केवल शक होता है, और फिर सबसे बुरी चीज ये होती है कि इसका प्रभाव बच्चों पर बहुत बुरा आता है। बच्चे सब कुछ रीड करते हैं आजकल, बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं और कई बहुत बुद्धिमान हैं, मम्मी पापा क्या कह रहे हैं, क्या हो रहा है, उनकी सब समझ में आता है, फिर उनमें उदासी आएगी, घर में खुशी का माहौल नहीं रहेगा, तो टोटल भविष्य के लिए बच्चों के भी समझो एक बहुत ही बुरी चीज हो जाती है, इसलिए मातृशक्ति को इससे बच के रहना चाहिए।
1: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रता जी आज की तमाम चर्चाओं के लिए, हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छे अच्छे सुझाव दिए हैं, समाधान दिए हैं, निश्चित रूप से उनकी जो भी समस्याएं उन्होंने हमारे सामने रखी है दूर होंगे और वो खुशहाल होंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, जीवन वास्तव में संघर्षों से भरा हुआ तो है ही, कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा कलयुग में जिसके पास कोई समस्या ना हो, समस्याओं से जूझ ही रहा है हर एक व्यक्ति, लेकिन एक बात, एक आशा हर एक अपने मन में अवश्य रखे कि यदि समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य है, और समाधान कार्यक्रम के माध्यम से लगातार हम यही प्रयास कर रहे हैं कि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की, चाहे वो व्यक्तिगत है, पारिवारिक है, सामाजिक है, आर्थिक है, या फिर किसी भी प्रकार की बीमारी के रूप में समस्या आ गई है, उसे हम समाधान के माध्यम से आप तक पहुंचाएं। हमारा लक्ष्य यही है कि आपका जीवन खुशहाल हो, आपके जीवन में मुस्कान लौट आए, आप हमेशा खुश रहें, क्योंकि परमात्मा ने आपको प्रसन्नता के लिए पैदा किया है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप आज के दिन प्रसन्न रहें, खुश रहें, और अपने चारों ओर प्रसन्नता बांटें।

राम राम, सुप्रभात, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग आबू। सुबह की पहली चाय के साथ एक नई उम्मीद, नई ऊर्जा और मुस्कान की एक नई वजह लेकर के आपके अपने रेडियो मधुबन 107.8 एफएम पर गुड मॉर्निंग आबू का आगाज हो चुका है, जहां सुबह होगी थोड़ी जानकारी भरी और थोड़ी मनोरंजक, थोड़ी आध्यात्मिक और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर, इन्फॉर्मेशन से भी भरपूर। तो अपने दिन की शुरुआत कीजिए एक प्यारी सी मुस्कान के साथ, क्योंकि याद रखिए सुबह जैसी होगी दिन वैसा ही रंग लेगा। तो मैं हूँ आपकी आज शुभा और आप सुन रहे हैं 107.8 एफएम पर कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये हनुमान भजन आप सभी के लिए।

0: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
1: 24 घंटे का व्रत रखें, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे सामने वाले का व्यवहार कैसा भी हो, मेरा मन वाणी और व्यवहार शांत और प्रेम से भरपूर। सिर्फ 24 घंटे का व्रत रखें तो भी हमने सृष्टि की कितनी सेवा की, और जो चीज़ हम एक दिन कर सकते हैं हम उसको हर रोज कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे पास पावर है।
0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: पुनः आप सभी का स्वागत है, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग गाबू और मैं हूँ आरजे शुभा। दिन की शुरुआत हो समय की सही पहचान के साथ, क्योंकि हर दिन अपने साथ एक नई संभावना लेकर के आता है। तो आइए आज के दिन विशेष के बारे में जानते हैं, पंचांग के बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले एक हमारे श्रोता बंधु हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो, नमस्ते, रेडियो मधुबन पर आपका स्वागत है।
3: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी, कैसे हो?
2: ओम शांति, गुड मॉर्निंग, बढ़िया, आप कैसे हैं?
3: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, और हमेशा की तरह आज का भी समाधान रेडियो द्वारा हमारे आदरणीय दादाजी का सवालों का बहुत ही अच्छा जवाब हमेशा की तरह आज भी सुनने को मिला। और दीदी, ज्यादा करके मैं मेरे लिए क्या उपयोगी है उसके तरफ ज्यादा ध्यान देता हूँ। तो आज का एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, हम हमारा रिमोट दूसरों के हाथों में दे देते हैं, सेंसिटिव हो जाते, पल में वो बोलते ना, पल में टोला, पल में राजा, पल में दादासी, पल में आसी, हंसने लगते खुश होते और पल में दुखी हो जाते, तो हम स्थिर नहीं होते। तो इसके ऊपर जो दादाजी ने इलाज परफेक्ट बताया, और आज
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका कॉल करने के लिए सुभाष भाई, शुक्रिया, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत समाधान कार्यक्रम के लिए कह रहे थे कि ये कार्यक्रम उन्हें अच्छा लगा, और जैसे बहुत सारे पॉइंट्स आदरणीय सूरज भाई जी ने बताया समाधान के अंतर्गत, और नाजुक स्वभाव को भी हम कैसे डील करें, उसे सशक्त कैसे बनाएं, इस कार्यक्रम में आपने जाना। रूपेश जी ने बहुत अच्छे से सवाल पूछे। चलते हैं फिर से हम पंचांग की ओर। शक संवत 1948 भाद्रपद शुक्लाष्टमी शनिवार है, आज विक्रम संवत 2083 है, अंग्रेजी तारीख है 19 सितंबर सन 2026, सूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु है, राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर के 10:30 तक, अष्टमी तिथि दोपहर 3:26 तक, उपरांत नवमी तिथि का आरंभ है। मूल नक्षत्र अगले दिन तड़के 1:43 तक, उपरांत पूर्व आषाढ़ नक्षत्र का आरंभ है। आयुष्मान योग दोपहर 2:29 तक, उपरांत सौभाग्य योग का आरंभ है। बवकरण दोपहर 3:26 तक, उपरांत बालवकरण का आरंभ है। चंद्रमा दिन रात धनु राशि पर संचार करेगा। सूर्योदय का समय 6:08 पर रहा है, सूर्यास्त का समय 6:22 पर होगा, चंद्रोदय का समय दोपहर 1:48 पर, और चंद्र अस्त का समय रात्रि 11:45 पर है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:39 तक रहेगा। अमृत काल शाम को 6:31 से रात्रि 8:19 तक रहेगा। राधा अष्टमी मध्यान्ह पूजा मुहूर्त है, सुबह 11:01 से दोपहर 1:28 तक। जुड़ी हुई थी हमारे आज के पंचांग के साथ। आज सुनीता विलियम्स इनके जन्म दिवस भी है, बर्थडे है, इनके बारे में भी जानेंगे कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं वो। ये भारत के गुजरात के अहमदाबाद से ताल्लुक रखती हैं। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: नमस्कार, मैं हूँ हरमीत सिंह।
1: दुनिया बनाई मैंने हाथों से।
0: वन ऑफ द मीत ब्रदर्स अंजन, म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड सिंगर्स फ्रॉम द फिल्म ओ माई गॉड।
1: मिट्टी से नहीं जज्बातों से।
0: और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। और इस वक्त हमारे साथ एक हमारे साथी जुड़े हैं फिरोज भाई फ्रॉम पालनपुर से, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो नमस्ते गुड मॉर्निंग। हेलो फिरोज भाई आप मुझे सुन पा रहे? हेलो हेलो, फिर वक्त उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है और कोशिश फिर से करने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं फिरोज भाई को अगर वो हमें सुन रहे हैं। तो अभी वक्त हो चला है वेदर रिपोर्ट का, जानते हैं कि मौसम का मिजाज क्या है, आपके अंचल में क्या कुछ हालचाल है, क्या रिमझिम हो रही है या बारिश ज़्यादा है, आप हमें कॉल करके बता सकते हैं 94-14-15-14-15 पर। आइए चलते हैं हम राजधानी जयपुर की ओर। राजधानी जयपुर में 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है। यहाँ पर बादल छाए रहेंगे आसमान पर, बारिश होने की संभावना नहीं है। उदयपुर में आज बारिश होने की संभावना 50% से ज़्यादा है, दिन के समय रात्रि के समय नहीं है। 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 23 डिग्री तक जा सकता है। आबूरण में 36 डिग्री अधिकतम, न्यूनतम 24 डिग्री। और यहाँ पर भी आज के दिन के समय 50% तक संभावना है थोड़ा बहुत बारिश होने की, लेकिन रात्रि के समय नहीं है। माउंट आबू में 20 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है। रात्रि के समय बारिश होने की बिल्कुल संभावना नहीं है, दिन के समय थोड़ा बहुत बारिश होने की संभावना है।

0: 50% तक संभावना है। पाली जिले में 36 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 24 डिग्री तक जा सकता है और यहां पर बारिश होने की संभावना है 55% तक दिन के समय। जोधपुर में 36 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है, बारिश होने की संभावना बहुत ही कम है यहाँ पे। सूरत में 31 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 25 डिग्री तक जा सकता है, जोरदार बारिश होने की संभावना है दिन के समय भी और रात्रि के समय भी सूरत में। मेहसाना में 26 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 36 डिग्री तक जा सकता है, बारिश होने की संभावना 55% तक है दिन के समय। राजकोट में 32 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 24 डिग्री तक जा सकता है, दिन के समय 60% तक बारिश होने की संभावना है, रात्रि के समय 65% तक संभावना है बारिश होने की। आगे की मौसम जानकारी हम जानेंगे, इस मोड़ पर एक श्रोता मित्र है, उनसे बात करते हैं। हेलो,
1: नमस्कार दीदी, पालमपुर से फिरोज भाई जी। बोल रहा जी, फिरोज भाई,
0: ओम शांति, नमस्ते जी। कट हो गया था फोन, बताइए कैसे हैं आप?
1: अब एकदम अच्छे हैं, और राधाष्टमी और गणेश बापा मौर्या की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं, और सभी रेडियो मधुबन परिवार और आपको भी मंगल कामनाएं, आपका
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी।
1: जी, और दूसरा बहन जी के जो क्रोध के बारे में जो प्रोग्राम में हमने सुना थोड़ा
0: जी,
1: के क्रोध करो, लेकिन क्रोध करने के बाद में भी अपने को कोई ऐसा दिमाग में खुशी का आ जाए तो उसमें खुशी भी रखनी है और क्रोध को मिटा देना है
0: जी। क्रोध को मिटा देना है जी जी जी।
1: हाँ, क्रोध को मिटा ही देना है, फिर अपने को खुशी में रहना है। और दूसरा के हर वक्त सोते टाइम, खाते टाइम, बैठने के टाइम या नौकरी हो तो इसमें भी मालिक का शुक्रिया मानना चाहिए और उसका रटन करना चाहिए यार। और
0: उसमें
1: अपने इनके सानिध्य में अपना श्वासोश्वास ही इनका सानिध्य में रहना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। और सभी रेडियो मधुबन परिवार की मालिक तंदुरुस्ती रखे, ऐसे मेरे मालिक से प्रार्थना है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद फिरोज भाई, आपका दिन भी अच्छा हो, शुभ हो, शुक्रिया शुक्रिया। ये थे हमारे फिरोज भाई, जिन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सबके जीवन में सुख समृद्धि आए और मंगल कामनाएं उन्होंने की, और इसके साथ साथ खुशी होनी चाहिए, खुश रहना चाहिए सदैव क्रोध के जगह पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे चलते हुए वेदर रिपोर्ट्स की ओर फिर से लौटते हैं। गांधीनगर अहमदाबाद में 26 डिग्री तक न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक जा सकता है, यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, बारिश होने की संभावना सिर्फ 60% तक है। राजधानी दिल्ली के बारे में बात करें तो 35 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 36 डिग्री तक जा सकता है, बारिश होने की संभावना नहीं है। कोलकाता में 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 23 डिग्री तक जा सकता है, 80% तक संभावना है बारिश होने की यहाँ पर। बेंगलुरु में 32 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 21 डिग्री तक जा सकता है, यहाँ पर भी बारिश होने की 55% से ज़्यादा संभावना है। मुंबई में 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम 27 डिग्री तक जा सकता है, 70% तक बारिश होने की संभावना है यहाँ पर। चेन्नई में 34 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 26 डिग्री तक जा सकता है, बारिश होने की संभावना 72% तक है। बादल छाए रहेंगे आसमान पर चेन्नई में, और वहीं पर जिला सिरोही के बारे में बात करें तो 33 डिग्री तक अधिकतम तापमान, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री तक जा सकता है, बादल छाए रहेंगे आसमान पर, 50% से ज़्यादा संभावना है बारिश होने की। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी वेदर रिपोर्ट्स के साथ। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रेडियो माधुबन 107.8 FM।

8:03 रेडियो मधुबन की घड़ी पर, और अभी मदन भाई का कॉल था ऑफलाइन, और जिन्होंने कहा कि अभी गाड़ी में बैठ करके वो अपने कार्यस्थल पे जा रहे हैं, तो सभी को शुभकामनाएं दिया, सभी को नमस्ते कहा है। आइए चलते हैं हम आबूरोड रेलवे स्टेशन की ओर, जानते हैं कि आबूरोड रेलवे स्टेशन पर आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियाँ। गाड़ी संख्या है 12547 और ये गाड़ी आगरा कैंट से गांधीग्राम तक जाने वाली है। 8:32 पर 7 मिनट देरी से चलती हुई आबूरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। वहीं पर गाड़ी संख्या है 14702 अरावली एक्सप्रेस 8:30 पर आबूरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। गाड़ी संख्या 04174 और ये ट्रेन ऑन डिमांड है, ये वेरावल से चलती हुई प्रयागराज तक जाएगी। ये गाड़ी 8:45 पर आबूरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। गाड़ी संख्या है 12461 वंदे भारत एक्सप्रेस 9:05 पर आबूरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। गाड़ी संख्या है 16210 अजमेर एक्सप्रेस 9:10 पर पहुंचने वाली है। जम्मू तभी साबरमती एक्सप्रेस 19224 9:45 पर पहुंचेगी। जोधपुर बेंगलुरु सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20693 10:10 पर पहुंचेगी। जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20496 10:30 पर पहुंचने वाली है। बांद्रा टर्मिनस से भगत की कोठी तक जाने वाली एक्सप्रेस 22965 11:05 पर पहुंचने वाली है। योगा एक्सप्रेस 19032 31 मामूली देरी से चलती हुई 11:21 पर पहुंचने वाली है। 11:30 पर दौलतपुर गांधीनगर एक्सप्रेस 19412 पहुंचने वाली है। गांधीग्राम से जोधपुर जाने वाली एक्सप्रेस 14822 11:40 पर आबूरोड रेलवे स्टेशन पर पहुंचने वाली है। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी आबूरोड रेलवे स्टेशन पर अब से 4 घंटे तक आने वाली गाड़ियों के बारे में जानकारियाँ। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: उससे हूँ। आप सब सुन रहे हो रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
1: वेलकम बैक, सुन रहे हैं आप कार्यक्रम गुड मॉर्निंग आबू, और आज सुनीता विलियम्स जी के जन्म दिवस भी है। सुनीता विलियम्स महिला एक व्यक्तित्व अनेक की सच्ची कहानी है। सुनीता विलियम्स नौसेना पोत चालक, हेलीकॉप्टर पायलट और प्रशिक्षित पायलट, पेशेवर नौसैनिक, गोताखोर, तैराक और इसके साथ साथ धर्मार्थ धन जुटाने वाली, यानी कि सोशल सर्विस भी करती है, पशु प्रेमी भी है, मैराथन धाविका भी है और अंतरिक्ष यात्री एवं विश्व कीर्तिमान धारक भी हैं। एक साधारण व्यक्तित्व से ऊपर उठकर सुनीता विलियम्स ने अपनी असाधारण व्यक्तित्व को पहचाना और कड़ी मेहनत की, आत्मविश्वास के बल पर भरपूर उसका उपयोग किया और अपनी असाधारण सफलता से उन्होंने उन लोगों के लिए एक प्रतिमान तैयार किया है जो उनके पदचिन्हों पर चलना चाहते हैं। ये सफलता उन्होंने अपनी स्नेही और सहयोगी परिवार और मित्रों के सहयोग से प्राप्त किया है। उनकी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार द्वारा उन्हें विज्ञान एवं अभियांत्रिक क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 2008 में। इनका जन्म हुआ था 19 सितंबर 1965 को अमेरिका के ओहियो राज्य में यूक्लिड नगर स्थित क्वीवलैंड में, और इनके पिता डॉक्टर दीपक एन पांड्या एक जाने माने विज्ञानी एमडी, और जिनका संबंध भारत के गुजरात राज्य से, और सुनीता जी के माता जी का नाम है बॉनी जालकर पांड्या। और जो कि स्लोबनिया की है। सुनीता विलियम्स का एक बड़ा भाई जॉय थॉमस पांड्या और एक बड़ी बहन डायना एन पांड्या भी हैं। और जब सुनीता जी एक साल की थी तो उनके पिता 1958 में अहमदाबाद से अमेरिका के बोस्टन में आकर के बस गए थे। तो ये कुछ सुनीता विलियम्स जी के बारे में हमने कहानी जाना। तो कैसे कि वो नौसेना पोत चालक से लेकर के अंतरिक्ष यात्री तक बने। उनके जन्मदिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज महिलाएं अंतरिक्ष यात्री भी हैं, तो अगर हमारे आसपास महिलाएं हैं उन्हें हम कमतर आंकते हैं, तो फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है कि हर कोई इंसान है, इंसान के अंदर एक एनर्जी है जिसे हम सभी जानते हैं, इसको आत्मा कहते हैं। तो सबको हम इक्वली ट्रीट करें। किसी की शारीरिक क्षमता अधिक होती है तो किसी की मानसिक क्षमता अधिक होती है, लेकिन जब हम ट्रेनिंग्स लेते हैं तो हम अपनी क्षमताओं को बढ़ा भी सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खुद से सच्चा संवाद करें, क्योंकि दुनिया के सभी उत्तर आपके भीतर ही छिपे हैं। मैं हूं आपका हम सफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में मिला जुला रुख रहा। निफ्टी 75.80 अंकों के बढ़त के साथ, जबकि सेंसेक्स लगभग सपाट बंद हुआ। मेटल, सीमेंट, मीडिया, रियल्टी और फाइनेंशियल शेयरों में खरीदारी बाजार को सहारा मिला, जबकि इंफ्रा, मशीन टेक्नोलॉजी, आईटी शेयरों पर दबाव बना रहा। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें, आईटी शेयरों पर दबाव बना रहा। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 19.63 अंक यानी कि 0.03% गिर कर के 74,294.96 पर बंद हुआ। निफ्टी 5,075.80 अंक यानी कि 0.33% बढ़ करके 23,346.40 पर बंद हुआ। निफ्टी में लगातार तीसरे सत्र में बढ़त दर्ज की गई। सप्ताह के दौरान 0.22% की गिरावट आई, लगातार छठी वीकली गिरावट है। वीकली गिरावट अगर देखा जाए, साप्ताहिक गिरावट, और वहीं पर ब्रॉडर मार्केट के अनुसार बेंचमार्क इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन किया। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में 1.73% और निफ्टी स्मॉल कैप 100 में 1.74% बढ़ोतरी भी हुई है। तो इस प्रकार से कल बाजार का रुख रहा है। आइए चलते हैं हम गोल्ड रेट्स के बारे में, जानते हैं कि भारतीय सरवा बाजार में क्या कुछ रेट्स चल रहे हैं। 24 कैरेट गोल्ड की बात करें तो यहाँ पर 1,78,323 रुपये है 10 ग्राम के हिसाब से, और 22 कैरेट स्टैंडर्ड गोल्ड 10 ग्राम के हिसाब से 1,63,477 है। बेस वैल्यू 1,41,710 रुपये है, लेकिन मेकिंग चार्जेस GST मिला करके इतना है और थोड़ा बहुत वैरी कर सकता है हमारे शहर में। बात करें अगर हम चांदी के बारे में, तो चांदी है पर किलोग्राम के हिसाब से भी हम देखें तो 2,50,100 रुपये। प्लैटिनम की प्राइसेस 10 ग्राम के हिसाब से 55,120 रुपये हैं। पेट्रोल और डीजल के ऊपर भी नजर डालते हैं। चलते हैं पेट्रोल और डीजल के दामों के ऊपर नजर डालने के लिए।

राजस्थान में पेट्रोल प्रति लीटर 113 रुपये और 19 पैसे, तो लगभग अजमेर में 112 रुपये 31 पैसे हैं, बीकानेर में 114 रुपये 15 पैसा और भीलवाड़ा में 113 रुपये 66 पैसा है। सिरोही में 114 रुपये 14 पैसे हैं, 21 पैसों की बढ़ोतरी हुई है पेट्रोल पर लीटर। और वहीं पर राजधानी जयपुर में डीजल है 98 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर और सिरोही में है 99 रुपये 12 पैसे, यहाँ पर भी 19 पैसे की बढ़ोतरी हुई है डीजल प्रति लीटर। एलपीजी की बात करें तो 14.2 केजी डोमेस्टिक है 945 रुपये 50 पैसे और कमर्शियल है 2776 रुपये हमारे राजस्थान में। तो लगभग सिरोही की बात करें तो 971 रुपये तो डोमेस्टिक है घरेलू गैस और जो कमर्शियल के लिए यूज़ होता है बिजनेस के लिए वो 2845 रुपये 50 पैसे, लगभग 9 रुपये 50 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। तो ये कुछ पेट्रोल डीजल और एलपीजी के बारे में हमने बातचीत की और सीएनजी लगभग 97 रुपये 50 पैसे हैं हमारे राजस्थान में।

आइए मुद्रा परिवर्तक के बारे में बात कर रहे थे। एक यूएसडी के मुकाबले इंडियन करेंसी से 95 रुपये और 96 पैसे हैं, एक यूरो के मुकाबले 110 रुपये और 20 पैसे हैं, एक जीबीपी के हिसाब से 128 रुपये 54 पैसे और एक ईयूडी के हिसाब से ऑस्ट्रेलियन डॉलर की बात करें तो 68 रुपये 31 पैसे, एक रियाल के हिसाब से 25 रुपये 54 पैसे आदि हैं। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी वर्ल्ड करेंसीज वर्सेस इंडियन रुपीज। सुनते रहिए रेडियो माधुबन 107.8 FM। सुनते हैं यहाँ पर एक और गाना जो राधा जी के साथ जुड़ी है, फिर हम वापस आएंगे इस गाने के उस पार।

0: सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: प्लेटफॉर्म पर चलते समय ध्यान रखें कि यदि कोई गाड़ी रनिंग थ्रू पास होती है उस समय प्लेटफॉर्म के किनारे पर न चलें, जिससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। तब एक छोर से दूसरे छोर पर जाने के लिए पैदल पुल का इस्तेमाल करें। रेलवे लाइन क्रॉस करना कानूनी अपराध है व इससे आप अपनी जान गंवा सकते हैं।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: आप सभी का स्वागत है रेडियो मधुबन 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। आइए जानते हैं कुछ बातें जो जुड़ी हुई हैं हमारे आसपास के क्षेत्रों के साथ। ये बातें इन्फॉर्मेशन हम आपको पहुंचा रहे हैं सिरोही आबू रोड भास्कर के जरिए। और सेमी हाई स्पीड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का संचालन करने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के लगभग 67 पदों पर भर्ती शुरू की गई है और इसमें पर्यवेक्षक एक और कनिष्ठ अनुरक्षक के पद शामिल हैं। अभ्यर्थी 9 अक्टूबर तक योग्यता के अनुसार इसमें आवेदन कर सकते हैं। विकसित भारत जन सेवा अभियान 2026 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में शिविरों का आयोजन होगा। अभियान के अंतर्गत प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर 19 से 25 सितंबर तक शिविर का आयोजन समय 9:30 बजे से शाम को 6 बजे तक अथवा कार्य समिति समाप्ति तक किया जाएगा। पंचायत समिति मुख्यालय पर विकास अधिकारी शिविर के प्रभारी भी होंगे। इसके साथ साथ निजी स्कूलों के मासिक निरीक्षण के आदेश पर विरोध के बाद विभाग ने शैक्षणिक सत्र में कम से कम एक बार निरीक्षण करना अनिवार्य किया है। सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों का 31 दिसंबर तक कम से कम एक बार निरीक्षण पूरा करना होगा। माउंट आबू में 3 इंच तो देलदर में 2 इंच बारिश हुई है और अब तक सिरोही में औसत बारिश भी नहीं हो पाई। जिले के सभी बांध अभी सूखे पड़े हैं। माउंट में धूप बारिश का खेल, तापमान 17 डिग्री। और इसके साथ साथ सिरोही माउंट आबू रोड में तस्वीर साफ। मंडार पिंडवाड़ा में निर्दलीयों की भूमिका अहम रही है। सिरोही नगर परिषद में कांग्रेस बोर्ड बनाने के सबसे करीब बहुमत के नंबर भी। कांग्रेस को 23 वोट मिले हैं, भाजपा को 10 और अन्य को 2 वोट मिले हैं। शिवगंज में भाजपा को 18 सीट के साथ बहुमत के बाद क्रॉस वोटिंग का खतरा है और पिंडवाड़ा में फुट से बड़ा खतरा। दोनों ही पार्टियों को क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। भाजपा 7 और कांग्रेस 13 है, अन्य 5 है। मंडार में भाजपा 7, कांग्रेस के पास 6 सीट और निर्दलीय बनेंगे किंग मेकर। और इसके साथ साथ माउंट आबू की बात करें तो यहां पर कांग्रेस 7, भाजपा 15 और अन्य है 3। तो आबू रोड में बढ़त के बावजूद भाजपा को क्रॉस वोटिंग का डर है। तो सीटों के अगर नगर पालिका 40 सीटों में 20 सीटों के साथ भाजपा ने बढ़त बना ली है, वहीं पर इसके बावजूद भी पार्टी में चल रही अंदरूनी खींचतानी अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए क्रॉस वोटिंग का डर सबको सता रहा है। तो सभापति चुनाव के लिए आरओ ने चुनाव चिन्ह आवंटित किए और 21 सितंबर को होंगे मतदान। आबू रोड कमेटी की जांच रिपोर्ट में खुले का भुगतान भी नियम विरुद्ध किया गया। बिना टेंडर 10 लाख से ज्यादा रुपए खर्चे और जांच में प्रशासक और बीडीओ दोषी, रिकवरी होगी। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई है हमारे आसपास के साथ। मंडी के और रुख करें तो महाराजा श्री उमेद सिंह कृषि मंडी में शुक्रवार को क्या भाव रहा। अनाज में गेहूं है 2700 रुपये से 3350 रुपये तक पर क्विंटल, वहीं पर बाजरा है 2350 से 2600 प्रति क्विंटल। अगर तेलों के बारे में बात करें तो सरसों है 2771 से 2931 प्रति क्विंटल। मूंगफली का तेल है 2875 से 3100 रुपीस प्रति क्विंटल। और दलहन में मूंग है 650 रुपये से लेकर के 8282 रुपये पर क्विंटल और चना वहीं पर 5500 से लेकर के 6175 प्रति क्विंटल है। रेवदर में 24 घंटे में 19 मिलीमीटर बारिश हुई है। और इसके साथ साथ गोली चौरा व्यापार मंडल 12वें गणपति महोत्सव के 5वें दिन सुबह शाम हुई यहाँ पर आरती। और बात करें अगर सिरोही जिले के बारे में, राजकीय महाविद्यालय सिरोही में 14 से 18 सितंबर तक आयोजित हिंदी दिवस सप्ताह का शुक्रवार को समापन हुआ। भाबरी में प्राथमिक अध्यापक संघ का शैक्षिक सम्मेलन आज से शुरू है। कुंडा मामाजी मंदिर के पास साधु पर हमला करने वाले 2 आरोपी को पकड़े गए। नगर पालिका बुरोड उषा कंवर ने नाम वापस लिया। भाजपा और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। साक्षरता शिविर में बैंकिंग सुविधाओं की जानकारी दी गई। सिरोही के मांडवा स्थित राजकीय आईटीआई कॉलेज में वित्तीय साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। तो ये कुछ बातें जुड़ी हुई थी हमारे आसपास के साथ। और वहीं पर अगर जॉब्स की बात करें तो PGIMER में नर्सिंग ऑफिसर के 243 पदों पर भर्ती निकली है और लास्ट डेट है 3 अक्टूबर 2026। और pgimer.edu.in पर जा कर के आप फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं पर UKSSSC में 553 पदों पर भर्ती निकली है। तो और यहाँ पर जो वेबसाइट है वो है ssc.uk.gov.in पर जा कर के आप अपने फॉर्म भर सकते हैं। और रोजगार के अवसर हैं SSC CHSL भर्ती 2536 पदों पर भर्ती निकली है। और 12वीं पास की बहाली के लिए वैकेंसी है। 7 अक्टूबर लास्ट डेट है। और रेलवे में पैरामेडिकल स्टाफ के 560 पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप RRBAPPLY यानी कि RRBApply.gov.in पर जाकर के अधिक जानकारी ले सकते हैं। लास्ट डेट है 14 अक्टूबर। तो बाकी की जानकारी हम आपको कल पहुंचाएंगे। रेडियो मधुबन 107.8 FM सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और यहीं पर मैं रुकना चाहूँगी, फिर मुलाकात होगी अगले कड़ी में। 9 बजे आप सुनेंगे आशियाना। आशियाना में आप खेल सकते हैं अंताक्षरी। आपका दिन शुभ मंगलमय हो। कुछ शेयरों के बाद आप सुनेंगे ऑल इंडिया रेडियो के सौजन्य से समाचार प्रभात। नमस्ते।

0: को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ आज से जापान में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों में चयनित 51,000 युवाओं को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इस अवसर पर वे नवनियुक्त अभ्यर्थियों को संबोधित भी करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: 20वां रोजगार मेला देश भर के 45 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसके तहत नवनियुक्त कर्मचारी केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में कार्य करेंगे। इनमें वित्त, रेल, गृह, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रक्षा मंत्रालय शामिल है। इस 20वें रोजगार मेले के साथ ही लगभग 12,75,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र मिले हैं। रोजगार मेला युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने और देश की विकास यात्रा में उनकी ज्यादा भागीदारी सुनिश्चित करने पर सरकार के लगातार ध्यान को दर्शाता है। अनुपम मिश्र के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता के भविष्य विषय पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन कर रहा है। इसमें पर्यावरण विशेषज्ञ और सर्वोच्च, उच्च तथा जिला न्यायालयों के न्यायाधीश और विभिन्न मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल होंगे। सम्मेलन में 17 देशों के प्रतिष्ठित न्यायाधीश और न्यायिक प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं। ये सम्मेलन न्यायिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक ज्ञान, पर्यावरण से जुड़ी सुशासन प्रक्रियाओं और संस्थागत अनुभवों के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करेगा। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर गठित संयुक्त संसदीय समिति की पहली बैठक कल नई दिल्ली में आयोजित की गई। लोकसभा सांसद संजय जायसवाल की अध्यक्षता में हुई बैठक में गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने समिति के सदस्यों को विधेयक के प्रावधानों की जानकारी दी। बैठक के बाद श्री संजय जायसवाल ने कहा कि बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई और सदस्यों ने कई प्रश्न उठाए।
2: बहुत ही अच्छे से कॉर्डियल वे से पूरी मीटिंग चली। सभी सांसदों ने अपने अपने प्रश्न पूछे। हमें मैंडेट यही मिला हुआ है कि विंडो सेशन से पहले हमें अपनी रिपोर्ट दे देनी है। हम निश्चित देने में सफल हो पाएंगे। होम मिनिस्ट्री के तरफ से ब्रीफिंग थी। जाहिर बात है कि पहली ब्रीफिंग हमेशा डिपार्टमेंट की होती है, तो जो पैरेंट डिपार्टमेंट है उसने अपनी सारी ब्रीफिंग की।
0: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नोएडा, हापुड़, गाजियाबाद, मेरठ और बुलंदशहर सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जुड़े राज्य के 8 सीमावर्ती जिलों में वायु गुणवत्ता सुधार के लिए एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। बैठक के बाद श्री यादव ने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कार्य योजनाओं पर चर्चा की गई।
3: व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर जो ओल्ड व्हीकल है उनको निदान किया जाए। नई ईवी पॉलिसी में बसों की हमने समीक्षा करी, उसके साथ ही प्रदूषण सर्टिफिकेट की अनिवार्यता के विषय पे हमने करी। एग्रीगेटर वाहन है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी और व्हीकल पॉल्यूशन को लेकर के क्या और प्रभावी कार्य किए जा सकते हैं उसकी समीक्षा करी। इस क्षेत्र में आने वाला जो इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है उसमें हमने देखा है कि 80% इंडस्ट्रीज ने OCMs और APD जो है वो लगा ली है।
0: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं।
4: चलते फिरते खबरों से जुड़े रहिए। expert@airnewshindi को फॉलो करें और PB शब्द पर आकाशवाणी समाचार सुने।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक जीवन में 25 वर्ष पूरे कर रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा से राष्ट्र सेवा के मंत्र और निरंतर समर्पण से जुड़ा रहा है। सेवा और सुशासन की इसी सोच के साथ सरकार वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में लगातार काम कर रही है। समावेशी विकास और सामाजिक सशक्तिकरण के इन प्रयासों से लोगों के जीवन में बदलाव आ रहा है। इसी कड़ी में प्रस्तुत है वर्ष 2020 से शुरू हुई भारतीय अंतरिक्ष नीति पर हमारी विशेष श्रृंखला।
5: स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स की वजह से स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफी सुधार देखा जा रहा है। IIT मद्रास

0: के इंजीनियरों की टीम द्वारा शुरू किए गए स्पेस स्टार्टअप गैलेक्स आई इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। इस स्टार्टअप ने दुनिया का पहला एप्टो एसएआर सैटेलाइट मिशन दृष्टि विकसित किया है। गैलेक्सी आई के सीईओ और को फाउंडर सूर्य सिंह ने आकाशवाणी से खास बातचीत में स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों के फायदों के बारे में बताया है।
1: सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और ज्यादा फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है। इसमें 1,000 करोड़ रुपए का स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल हैं। इससे हमारी जैसी नई कंपनियों को मुश्किल चुनौतियों का सामना करने, भारत में अहम टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम को अगले चरण में ले जाने के लिए सार्थक योगदान का आत्मविश्वास मिलता है।
0: गैलेक्सी आई के सीईओ सूर्य सिंह का कहना है कि स्पेस सेक्टर में हुए सुधारों ने प्राइवेट कंपनियों और इंडस्ट्रीज के लिए वैल्यू चेन के रास्ते खोल दिए हैं। साथ ही इन स्पेस इंडस्ट्री को मंजूरी दिलाने और इसरो की सुविधाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल जानकारी तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। इससे हमें सैटेलाइट सिस्टम और मिशन ऑपरेशन के क्षेत्र में अपनी इन हाउस क्षमताएं बढ़ाने में भी मदद मिल रही है। इसके अलावा सरकार टेक्नोलॉजी ट्रांसफर R&D और जरूरी फंडिंग के जरिए इस सेक्टर को सपोर्ट कर रही है, जिसमें स्पेस सेक्टर वेंचर कैपिटल फंड और स्पेस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड जैसी पहल शामिल है। उन्होंने कहा कि नई कंपनी के लिए इससे मुश्किल चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी और भारत में जरूरी टेक्नोलॉजी विकसित करने और भारत के स्पेस प्रोग्राम के अगले चरण में अहम योगदान देने में भी मदद मिल रही है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
2: भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू के साथ भारत और कनाडा के बीच समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते को गति देने के लिए बैठक की। दोनों पक्षों ने बातचीत में तेजी लाने और जल्द से जल्द समझौते को अंतिम रूप देने की अपनी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। समग्र आर्थिक साझेदारी समझौते से वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा आर्थिक सहयोग के अन्य क्षेत्रों में नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है। भारत को स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया के नवीनतम बिजनेस क्लाइमेट सर्वे में 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता के मामले में पहला स्थान मिला है।
3: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि वैश्विक अस्थिरता के बीच भारत का कारोबारी माहौल स्थिरता, विकास और कारोबार सुगमता के लिए नया मानक स्थापित कर रहा है। ग्लोबल बिजनेस क्लाइमेट सर्वे 2026 में 41 बाजारों के बारे में जानकारी दी गई है। ये सर्वेक्षण विदेशों में कारोबार करने को लेकर स्वीडिश कंपनियों के अनुभव और दृष्टिकोण को सामने रखता है। इसका उद्देश्य प्रमुख स्वीडिश निर्यात बाजारों में आर्थिक प्रदर्शन, कारोबारी संभावनाओं और कामकाज की परिस्थितियों की तुलना के लिए एक उपलब्ध कराना है। समाचार कक्ष से मैं हिमांशु कांडपाल।
2: वर्ष 2025-26 में भारत का सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात वार्षिक आधार पर 8.2% बढ़कर $221 अरब से अधिक हो गया है। रिजर्व बैंक के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी आधारित सेवा निर्यात पर जारी वार्षिक सर्वेक्षण में यह जानकारी दी गई।
1: वार्षिक सर्वेक्षण के लिए 7,569 सॉफ्टवेयर निर्यात कंपनियों से संपर्क किया गया था, जिनमें से 2,363 कंपनियों ने जवाब दिया। कुल अनुमानित सॉफ्टवेयर निर्यात में इन कंपनियों की हिस्सेदारी लगभग 89% थी। पिछले वर्ष के दौरान भारत में कुल सॉफ्टवेयर निर्यात में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग यानी BPO सेवाओं का हिस्सा सबसे ज्यादा रहा था। भारत के सॉफ्टवेयर निर्यात के लिए 54% से अधिक की भागीदारी के साथ अमरीका सबसे बड़ा केंद्र बना रहा। 31.8% के साथ यूरोप दूसरे स्थान पर था। ब्रिटेन की हिस्सेदारी 15.4% थी। रिजर्व बैंक ने यह भी बताया कि भारतीय कंपनियों की विदेशी सहयोगी कंपनियों का स्थानीय सॉफ्टवेयर व्यापार वर्ष 2025-26 में $14 अरब से बढ़कर लगभग $18 अरब हो गया। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
2: मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने पूर्वी राजस्थान, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, केरलम और माहे में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। आज गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर आंतरिक कर्नाटक और लक्षद्वीप में गरज चमक के साथ आंधी चलने की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज शाम उत्तरी अंडमान सागर और उससे सटे इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके प्रभाव से 22 सितंबर के आसपास ओडिशा में खासकर दक्षिणी हिस्सों में वर्षा की संभावना बढ़ सकती है।
4: बंगाल की खाड़ी में बन रहे कम दबाव के क्षेत्र के कारण इस महीने की 22 तारीख के आसपास उड़ीसा में फिर से बारिश होने की संभावना है। मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये सिस्टम आज शाम के आसपास उत्तरी अंडमान सागर और उसे सटे इलाकों में बन सकता है। उम्मीद है कि ये धीरे धीरे और मजबूत होगा और अगले 3-4 दिनों में पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ते हुए दक्षिण उड़ीसा उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों की तरफ बढ़ेगा। जैसे जैसे ये सिस्टम तट के करीब आएगा दक्षिणी उड़ीसा में बारिश बढ़ने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
2: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बताया है कि अमेरिका ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। इसके साथ ही ग्रीनलैंड को खरीदने की ट्रंप की बार बार की मांगों को लेकर महीनों से चल रहा तनाव समाप्त हो गया है। समझौते के अंतर्गत ग्रीनलैंड पर डेनमार्क का अधिकार बना रहेगा। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि इस समझौते से अमरीका को ग्रीनलैंड में सुरक्षा और अन्य सभी जरूरतों पर स्थायी नियंत्रण मिल जाएगा। जापान के आइची नागोया में 20वें एशियाई खेलों का भव्य उद्घाटन आज भारतीय समयानुसार दोपहर 2:30 बजे से पालोमा मिजुहो स्टेडियम में होगा। दो बार की ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर और शॉटपुट खिलाड़ी तजिंदर पाल सिंह तूर उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। एशियाई खेल आज से 4 अक्टूबर तक चलेंगे। भारत के 500 से अधिक खिलाड़ी 37 खेल स्पर्धाओं में हिस्सा लेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं निखिल कुमार।
5: जी विशाल, तृणमूल कांग्रेस के दोनों गुटों को नए नाम और चुनाव चिन्ह आवंटन आज के अधिकतर अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, ममता को दोहरा झटका, बगावत के चलते निर्वाचन आयोग ने पार्टी का चुनाव चिन्ह किया जब्त। नवभारत टाइम्स के शब्द हैं, बंगाल में खेला तृणमूल में अब फुटबॉलर वर्सेस लिफाफा। पंजाब केसरी का कहना है, निर्वाचन आयोग का ये फैसला दो उपचुनावों के लिए, अंतिम निर्णय बाद में। दो न्यायाधीशों की पीठ जाएगी एनटीए मुख्यालय। जनसत्ता के अनुसार एनटीए मामले की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने कहा, सुधारों को देखने के लिए खुद जाएंगे राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी। पीठ ने मामले में मांगी है प्रगति रिपोर्ट। वायुसेना को तेजस की मिली अंतिम खेप। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL ने भारतीय वायुसेना को 20 तेजस विमानों की डिलीवरी का अनुबंध पूरा किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युद्ध की बदलती तस्वीर को देखते हुए स्वदेश में विकसित प्रौद्योगिकी समय की मांग। रेटिंग एजेंसियों मोडीज और जेफरीज ने भारत का ग्रोथ अनुमान बढ़ाकर किया 7%। दैनिक भास्कर लिखता है, ईरान युद्ध और महंगे कच्चे तेल के बीच 5 महीने में भारत की ग्रोथ स्टोरी की तस्वीर बदली। पंजाब के अमृतसर में ASI की गोली मारकर हत्या, दैनिक ट्रिब्यून के पहले पन्ने पर है। ड्यूटी के दौरान दो हमलावरों ने वारदात को दिया अंजाम। विपक्षी दलों ने आम आदमी पार्टी सरकार को निशाना बनाते हुए राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। 17 साल में सबसे सूखा रहा 2026 का मानसून। राजस्थान पत्रिका के अनुसार अलनीनो के लगातार बढ़ते असर से देश में 346 जिले प्रभावित, खरीफ उत्पादन घटने की आशंका।
2: धन्यवाद निखिल। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 20वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पर्यावरण और जलवायु गतिशीलता का भविष्य विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। भारत और कनाडा ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते की वार्ता को गति देने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। स्वीडिश चैंबर ऑफ कॉमर्स की रिपोर्ट, 41 वैश्विक बाजारों में व्यापारिक सुगमता में भारत पहले स्थान पर। रिजर्व बैंक ने कहा, भारत में सॉफ्टवेयर सेवाओं के निर्यात में वर्ष 2025-26 में वार्षिक आधार पर 8.2% की वृद्धि। और 20वें एशियाई खेलों का शुभारंभ
6: अभी बजा है सुबह के 9।
2: इसके साथ ही समाचार
6: एक मिनट का समय स्वयं को दे।
7: शांत

राधा के नाम में प्रेम की मिठास है, राधा के नाम में प्रेम की मिठास है, राधा के चरणों में भक्ति का एहसास है। जिस हृदय में बस जाए राधा का प्यार, उसके जीवन में खिल उठे खुशियों के हजार बहार, खुशियों के हजारों बहार। तो राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ। आशियाना यो बड़ धूम धामसु, आशियाना आशियाना आयो बड़ा धूम धामसु, जुड़ जाई जो श्रोता बड़ा ही चाव।

अंताक्षरी में मिल के धूम मचाना, आशियाना आया बड़ा धूम धाम सु, जुड़ जा जो बद सब

0: रुको। हाँ जी, थोड़ा अपना प्यारा सा मुखड़ा दिखाना शीशे के बाहर झांक के। हैं
1: जी, कहिए। अरे ये क्या कर रहे हो?
0: और मेरे भाई, और जिस चीज का कोई फायदा नहीं उसको रखने का फायदा क्या? और तेरे पास चश्मा होते हुए तेरे को रेड लाइट नहीं दिखती तो फायदा की?
1: पर रोड तो खाली थी, कोई था ही नहीं।
0: ये क्या बात हुई भाई, हैं? इसका मतलब तो ये है कि दुकान पर अगर मालिक नहीं होगा तो तुम बिना पूछे उसका सामान उठाओगे? कोई बॉस नहीं होगा ऑफिस में तो तुम उसकी कुर्सी पे सो जाओगे? और रोड पे कोई हो न हो, सड़क के नियम कायदे कानून कभी नहीं टूटेंगे। और वैसे भी ये तो है मेरी सड़क, और मुझे कहते हैं हवलदार कड़क।
2: रेड लाइट होने पर हमें अपनी गाड़ी रोक लेनी चाहिए और उसे ग्रीन होने पर ही आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा न करके हम अपनी और दूसरों की जान खतरे में डाल सकते हैं। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।
3: जहां कृष्ण का नाम है वहां राधा का प्रेम है, जहां कृष्ण का नाम है वहां राधा का प्रेम है, जहां राधा का प्रेम है वहां भक्ति का नेम है। राधा कृष्ण केवल नाम नहीं, राधा कृष्ण केवल नाम नहीं, मन को परमात्मा से जोड़ने वाला एक सुंदर भाव है। तो पुनः आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आइए आज राधा अष्टमी के इस पावन अवसर पर हम राधा जी के जीवन से निस्वार्थ प्रेम, समर्पण और मधुरता का संदेश ले और अपने जीवन में भी प्रेम एवं सद्भाव के रंग भरे। तो आप सभी को राधे राधे। तो राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे इसका औचित्य क्या है, जानेंगे आप सभी। एक छोटे से दृष्टांत के साथ सुनाना चाहूंगी। हिंदू पुराणों की माने तो एक दिन देवी राधा स्वर्गलोक घूमने चली गई। वे वापस लौटी तो उन्होंने श्री कृष्ण जी को सखी विरजा के साथ घूमते देख लिया। ये देख करके वे बड़ी क्रोधित हो गई। उन्होंने विरजा का काफ़ी अपमान किया जिससे वह नदी बन गई। सुदामा ने विरजा के साथ हुए इस व्यवहार के लिए राधा को अनुचित ठहराया, जिससे राधा ने उन्हें दानव योनि का श्राप दिया। सुदामा ने भी राधा को मनुष्य योनि का श्राप दिया। सुदामा शंखचूड़ दानव बने जिनका वध भगवान शिव ने किया। राधा ने पृथ्वी पर जन्म लेकर कृष्ण के वियोग का कष्ट सहा और एक गोपी बन करके उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। श्राप की वजह से वो श्री कृष्ण के वियोग में उन्होंने कष्ट भी उठाया और उसके बाद जब श्राप का समय पूरा हुआ तो फिर से उनको श्राप से मुक्त भी किया गया और वापस उनको स्वर्गलोक भेज दिया। तो इस तरह की मान्यता है, इस तरह की वंदितियाँ है जो आपके समक्ष रखी है। और आइए फिर से सुनेंगे एक गीत। पर हाँ, ये भी कहना चाहूँगी कि राधा अष्टमी ये भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है जो आज के दिन है। पहले जो आठम आई थी वो श्री कृष्ण जन्माष्टमी थी, ये आठम है, ये राधा जन्माष्टमी है। इस दिन विशेष रूप से बरसान आके चले हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहेंगे। हेलो, हाँ जी, ओम शांति, नमस्कार।
4: हाँ, एक साथी मित्र की भजन बोलता हूँ।

के देने बाकी है, उसके बाद अंताक्षरी आरंभ करेंगे, तब आप जरूर जुड़िएगा और अपने पसंद के भजन सुनाइएगा, ठीक है। तो यही कहना चाहूंगी कि इस दिन विशेष रूप से बरसाना के राधा रानी मंदिर में पूजा पाठ भक्त लोगों का जमावड़ा लगता है और इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है। आइए राधा अष्टमी की पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और सुन लेते हैं गीत। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।

बहुत गाने मैंने हिंदी में भी गाया था, लेकिन तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, सिंहली, सुवरिया, सो मेनी लैंग्वेजेस मैंने गाए थे। मैं एस जानकी प्लेबैक सिंगर बोल रही हूँ। एफएम रेडियो नाम है मधुबन, इसमें बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम्स आता है, आप जरूर सुनना चाहिए, प्रेम से सुनिए। आप सुनते रहना, मुस्कुराते रहना।

0: धन धन ए मारी मक्कड़ माता धम्म काकी राबड़ी। धन धन ए मारी मक्कड़ माता धन काकी राबड़ी। ऊपर रखी राबड़ी ने नीचे रखी थापड़ी। धन धन ए मारी मक्कड़ माता धन काकी राबड़ी। तो इन पंक्तियों से आप समझ गए होंगे कि आज मैं आपको किस पर नुस्खे देने वाली हूँ। जी हाँ, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में बहुत ही सुंदर आपको घरेलू नुस्खे देने वाली हूँ मक्का पर। ठीक है कि मक्का, जिसको मक्की भी कहते हैं, कौन सी बीमारी ठीक करता है, स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदा करता है, जानेंगे आप। लेकिन हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके, उनसे बात कर लेते हैं। चलिए, रख दिया है, फिर से जुड़ सकते हैं। तो देखिए, अगर पेशाब में जलन हो तो ताज़ा मक्का के भुट्टे जल में उबाल लीजिए, उस पानी को छान लीजिए, फिर उसमें मिश्री मिला करके पीजिएगा। इससे गुर्दे की कमजोरी, पेशाब की जलन में काफ़ी राहत मिलेगी। तो ताज़ा मक्का के भुट्टे जल में उबाल लीजिए, उस पानी को छान लीजिए, फिर उसमें मिश्री मिलाकर पीना है आपको, तो पेशाब की जलन में शांति मिलेगी। पथरी की तकलीफ है तो क्या करेंगे? पथरी की समस्या में मक्के के मखोली है, जिसको डिंडू कहते हैं, ठीक है, इसकी राख मूत्रल होती है। इसके रोग दशानुसार व्यवहार करने से पथरी गल करके मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। तो मक्के के मखोलिए, जिसको हम डिंडू कहते हैं, डिंडू की राख मूत्रल होती है। इसके रोग दशा के अनुसार व्यवहार करने से पथरी गल करके मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाती है। मोटापा बढ़ाने के लिए मक्का के भुने हुए फुल्ले खाइए, जिसको आजकल की भाषा में क्या कहते हैं, पॉपकॉर्न। जो दुबले पतले लोग हैं और वो चाहते हैं कि उनका मोटापा बढ़े, थोड़े से मोटे हो जाए, तो मक्का के भुने हुए फुल्ले खाइएगा, मतलब पॉपकॉर्न खाइएगा। पहले तो घर पर ही तड़काते थे, थोड़ा सा घी डाल करके मक्का डाल देते थे कढ़ाई में, और वह हिलाते जाते थे, और वो फूल फूल करके, फूट फूट करके कढ़ाई से बाहर आ जाते थे, मस्त घर पर ही फूल जाते थे। लेकिन आजकल तो रेडी खरीदने लगे हैं, पर वो आपके ऊपर छोड़ा है। अगर बहुत दुबले पतले हैं, मोटा होना चाहते हैं, तो आप मक्के के फुल्ले खाइएगा। जुकाम खांसी कुकर खांसी है तो मक्का के भुट्टे को पीस लीजिए, उसमें आवश्यकता के अनुसार सेंधा नमक मिला लीजिए, फिर एक चौथाई चम्मच सुबह सुबह और दोपहर को रात्रि में लीजिएगा। क्या करेंगे, जुकाम है, खांसी है, कुकर खांसी है, तो मक्का के भुट्टे को पीस लेना है, उसमें आवश्यकता के अनुसार सेंधा नमक मिला लेना है, और रोज़ एक चौथाई चम्मच सुबह सुबह खाली पेट और दिन के समय में और रात्रि में, दिन में तीन बार लीजिएगा। ठीक है, तो जुकाम खांसी कुकर खांसी ये सब ठीक हो जाएगा। गुर्दे की सूजन है तो भुट्टे के बालों के समान ही डंठलों का काढ़ा लीजिएगा, तो इससे सूजन ठीक हो जाएगी। गुर्दे की सूजन है तो भुट्टे के बालों के समान ही डंठलों का काढ़ा बना करके पीजिएगा, गुर्दे की सूजन में राहत मिलेगी। और लास्ट उपाय बहुत ही सुंदर है, सुजाक वस्तिशोथ, मतलब है वस्तिशोथ। तो मक्का के भुट्टे के कोमल ताज़ा रेशों, जो ऊपर के बाल निकलते हैं ना, उनका काढ़ा बना करके पीजिएगा, इससे इस वेदना का नाश होगा, मूत्र खुलकर आएगा, और वस्तिशोथ व सुजाक में लाभ होगा। तो सुजाक और वस्तिशोथ है तो मक्का के भुट्टे के कोमल ताज़ा रेशे, जो ऊपर के बाल होते हैं उसे कहते हैं, इसका काढ़ा बनाकर हम क्या करते हैं, बाल निकाल करके फेंक देते ना, तो अगर ये तकलीफ है तो इसका काढ़ा बना करके पीजिएगा, इससे वेदना का नाश होगा, मूत्र खुल करके आएगा, और वस्तिशोथ पे सुजाक में काफ़ी राहत मिलेगी। तो ये हुए घरेलू उपाय। अब आइए आज के थीम की तरफ बढ़ेंगे। आज अंताक्षरी कार्यक्रम है, और अंताक्षरी में आज की थीम है राधा रानी के भजन और गणपति जी के भजन, क्योंकि आज राधा अष्टमी भी है और गणपति जी के दिन तो चल ही रहे हैं, तो आप सुना सकते हैं दोनों पर ही। हेलो,
1: हाँ दीदी नमस्ते, सदर जयपुर का जटाना से, कैसे हो दीदी?
0: हाँ जी नमस्ते, हम अच्छे हैं, आप सुनाइए।
1: बस अच्छे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, काम कर रहे हैं। आज शनिवार है तो अच्छा दिन है, आज सभी मित्र तो तैयारी कर रहे हैं और जुड़ने की, और मेरे फिरोज भाई तो जल्दी जल्दी आ ही गए, तो चलो कोई बात नहीं, हमारा सबको मित्रों को इंतजार है और आज के दिन का अंतरराष्ट्रीय का
0: जी।
1: सुना दूं मैं?
0: हाँ जी
1: सुना दूं?
0: बिल्कुल, आपसे आगाज कर लेते हैं अंताक्षरी की, सुना दीजिए।
1: चलो तो गणपति जी के पहले गाने की शुरुआत मैं कर देता हूँ।
0: हाँ जी।

0: देवता सिद्धि सिद्धि नया ज्ञान मारा देवता मेरे करोड़
1: बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई, बहुत बहुत आभार। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, आगाज हो गई है अंताक्षरी की आपके द्वारा। अब यहीं पर एक गीत सुनकर के पुनः लौट रहे हैं, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

0: रेडियो मधुबन हमारे जीवन को सुखमय व समृद्धशील बनाता है। सभी प्रोग्राम्स को बेहतरीन अंदाज में नवीनता को लिए बेहतरीन क्वालिटी के साथ
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 मेगाहर्ट्ज पर, 107.8 एफएम पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में सुभाष भाई महाराष्ट्र से जुड़ चुके हैं। नमस्ते सुभाष भाई।
3: सभी दोस्तों को, श्रोता भाई बहनों को राधा अष्टमी और गणपति बाप्पा की बधाई, और सुभाष भाई का सभी को प्यार भरा नमस्कार दीदी। और मैं ये गीत गाता हूँ, राधा ये सच्चाई सबको बताए, राधा ये सच्चाई सबको बताए, श्याम पिया कल मेरे सपने में आए, श्याम पिया कल मेरे सपने में आए। थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति।
2: बहुत बहुत आभार सुभाष भाई, बहुत सुंदर आपने भजन सुनाया इसके लिए। तो अभी मधु जी जुड़ चुके हैं। नमस्ते मधु जी।
4: हाँ जी,
2: हाँ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सुना सकते हैं अपने पसंद का भजन राधा रानी या गणपति जी पर।
4: जी जी जी, मैं सुना रही हूँ।
2: हाँ जी, हाँ जी, सुना दीजिए।

0: तेरा लाडला, मिट्टी का बनाया होगण, बनाया होगण श्री गोरा तेरा लाडला।
1: बहुत बहुत आभार मधु जी आपका। और अभी और हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो, हाँ जी नमस्ते। नमस्ते सुरेश भाई, कैसे हैं आप?
2: मैं सुनाता हूँ, बहुत अच्छे हैं। और राधाष्टमी की भी सभी मित्रों को नमस्ते दीदी। हम भी राधा रानी के मंदिर गए हैं बरसाना में, बहुत बड़ा मंदिर है।
1: जी जी, बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत ही बड़ा,
2: बहुत बहुत बड़ा और ऊंची चौड़ाई पर जो मंदिर है वो थोड़ा सा चढ़ने में दिक्कत भी है, लेकिन फिर भी हम तो गए थे वहाँ और बहुत अच्छा मंदिर है, देखने लायक है
1: जी।
2: तो वहाँ की जो मंदिर की जो सभी जो पूर्ण की है तो बहुत अच्छा है, वहाँ का नजारा भी बहुत होता है, ऊपर से देखते हैं तो पूरा बरसाना दिखता है।
1: जी जी जी जी,
2: बहुत अच्छा मंदिर है। तो चलो मैं एक गाना और सुना दो गणपति जी का।
1: हाँ जी हाँ जी, सुना दीजिए।
2: जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाति पार्वती पिता महादेवा, माता जाति पार्वती सीता महादेवा। नमस्ते दीदी,
1: बहुत बहुत आभार आपका सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, बहुत सुंदर भजन सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। अंताक्षरी कार्यक्रम आरंभ हो चुका है, आप अपने पसंद का भजन सुनाने के लिए जुड़ सकते हैं रेडियो मधुबन से। नंबर इस प्रकार है 9414151415। हेलो, हाँ जी, ओम शांति फिरोज भाई। हाँ जी,
3: कभी राम बने के कभी श्याम बने के चले आना प्रभु जी से।

0: गाना राधा साथ लेके मुरली हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले आना।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका जी। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, बहुत ही सुंदर भजन आपने सुनाया है। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और देखिए आप फोन कॉल्स करते ही रहिए, हम बात कर रहे थे, ये थोड़े ना कि नहीं उठाएंगे। आप थोड़ा सा तो धैर्यता बनाए रखिए, हम आपका फोन क्यों नहीं उठाएंगे, हम बैठे ही इसीलिए है। तो आप अंताक्षरी में ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़िएगा। आज की थीम बड़ी सुंदर है, कितनी सुंदर थीम है। गणपति जी के दिन चल रहे हैं, गणपति जी के भजन और राधे रानी के भजन, क्योंकि आज है राधा जी का जन्मोत्सव। और जैसे कि सुरेश भाई भी बता रहे थे, जिन्होंने देखा है बरसाने का मंदिर राधा रानी का, वो तो सचमुच वृंदावन और बरसाना में तो राधा ही राधा है। मतलब सब राधे से ही शुरुआत करते हैं, जैसे हम यहाँ जय श्री कृष्ण यहाँ नमस्कार करते, उधर नमस्कार नहीं कुछ नहीं, राधे राधे। कोई भी मिलते है तो राधे राधे से ही शुरुआत करते। हेलो
2: जी।
1: हाँ जी नमस्ते मधु जी।
2: हाँ जी नमस्कार जी।
1: हाँ जी

0: गजरा लाल हमारे राधा रानी के।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका मधु जी।
0: जी
1: तो बहुत ही सुंदर भजन सुना आप सभी ने राधा रानी का। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षर में जुड़ करके आप अपने पसंद का भजन सुना सकते हैं। भाई कोई भी आपको थीम नहीं दे रहे हैं इसलिए आप जरूर जुड़िएगा। हेलो,
2: हाँ नमस्ते दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ओम शांति।
1: हाँ जी नमस्ते, ओम शांति फिरोज भाई।
2: गणपति राया करु तारी सेवा, पाई माला गो गणे, पाई माला गो गणेश देवा, पाई माला गो गणे।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर तो हम गुनगुनाते रहते हैं और आप ज़रूर जुड़ने की कोशिश करिएगा। थीम बहुत ही सुंदर है, सरल थीम है। क्या सोच रहे हैं? हेलो
2: जी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ जपाना।
1: हाँ जी नमस्ते, नमस्ते सुरेश भाई।
2: सुनाता हूँ गणपति का गाना। गणपति आयो बापा निधि सिद्धि लायो, गजानंद आयो निधि सिद्धि लायो, गजानंद आयो निधि सिद्धि लायो, गणपति आयो बापा निधि सिद्धि लायो।
1: जी बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। यहाँ पर चलिए आप जुड़ो, तब तक मैं भी सुना देती हूँ।

0: राधे राधे। हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी मधु जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी।
0: हाँ जी सुना दीजिए।
1: हाँ, हाय लंबे लंबे बाल राधा रानी के, हाय लंबे लंबे बाल राधा रानी के, मेरी माँ को बिन

0: आए काले काले माँ राधा रानी के।
1: बहुत बहुत आभार आपका। हाँ जी, तो ये थे मधु जी आबू रोड से, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। भले हमारे लिमिटेड श्रोता बंधु जुड़ रहे हैं, फिर भी कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। मैं तो कहूँ नए नए को भी, मैं तो कहती रहती हूँ कि जुड़िएगा। पहले तो हमारे आबूराज में टूरिस्ट लोग घूमने आते, वो भी जुड़ते थे। आजकल तो हमारे टूरिस्ट लोग लगता है कि रेडियो से मन उब गया है। तो ठीक है, अगर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम, इस कार्यक्रम को, तो आप भी अंताक्षर में जुड़ सकते हैं, जो भी गेस्ट है वो। हेलो, ये क्या हो गया? कोशिश करते रहिएगा, आपका फोन बार बार कट रहा है, लेकिन फिर भी करते रहिए। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी मधु जी, ये क्या आवाज आ रही है? टू टू टू टू टू टू।
2: हाँ, ये डबल डबल लगा दिखता आपसे।
1: मेरे से डबल नहीं लगा, मैं क्यों डबल लगाऊंगी?
2: नहीं, ये तो मेरी आवाज आ रही है आपको?
1: आपकी आवाज भी आ रही है, साथ में टू टू टू टू की भी आवाज आ रही है कमला जी।
2: हाँ, टू टू की आवाज आ रही है, मेरे को भी आपकी भी आवाज आ रही है और टू टू की आवाज भी आ रही है, तो आपको लगाती हूँ।
1: नहीं नहीं, बोलिए, आप जुड़ गए तो बोलिए।
2: हाँ,
1: आपके फोन से ही आवाज है।
2: कमला बेन।
1: हाँ जी कमला जी, आपके फोन से आवाज आ रही है, क्योंकि दूसरे श्रोता जुड़ रहे हैं उनके फोन से इस तरह आवाज नहीं है। चलिए फिर से आप कोशिश करिएगा, आपने काट दिया है लगता, तो फिर से आप कोशिश करिएगा। आप जो भी जुड़ते हैं अपने फोन का भी ध्यान रखें। हेलो,
2: हाँ जी,
1: हाँ जी, चलिए सुना दीजिए कमला जी, आपके तो ऐसी तरह आवाज आएगी, सुना दीजिए, कोई बात नहीं।
2: जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, लड्डूवन के भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश,
1: जय गणेश, जय गणेश देवा। जी बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे कमला जी भीलवाड़ा से। आप देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। हेलो, ये क्या हो रहा है?

0: बीच बीच में आ
1: अभी
0: रही
1: अभी
0: है।
1: जा रही है मेरे बराबर। हाँ
0: हाँ जी हाँ जी। तो
1: बोले नंदलाला
0: राधा क्यों
1: राधा
0: गोरी मैं क्यों काला।
1: काला। धन्यवाद धन्यवाद
0: जी
1: धन्यवाद
0: बहुत बहुत
1: बहुत बहुत।
0: आभार आपका भूरीलाल जी। तो ये थे भूरीलाल जी मानपुर से। बहुत ही उमंग उत्साह से आप जुड़ते हैं, तो इसी तरह आप भी जुड़ सकते हैं और अंताक्षर में भाग ले सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं। आज की थीम बड़ी अच्छी है, राधा रानी के भजन और गणपति जी के भजन। प्रथम आने वालों को यथा योग्य पारितोषिक भी दिया जाएगा, परंतु शर्त यह है, कंडीशन यह है कि 15 दिन के अंदर आपको रेडियो मधुबन के स्टूडियो में आना होगा। हेलो।
2: हाँ जी
0: हाँ जी मधु जी नमस्ते,
2: नमस्कार जी।
0: सुना दीजिए जी।
2: हाँ जी मुरली हाँ राधे से बतलाए, मुरली हाँ राधे से बतला।

0: मोतियनी दई कड़वाए मुरलिया राधे से बतला मुरलिया से बतला।
1: बहुत सुंदर मधु जी, बहुत बहुत आभार। चलिए, मोरलिया से याद आया है, साथ ही साथ एक प्रश्न पूछ लेते हैं। बांसुरी का नाम बांसुरी क्यों पड़ा, ये आज का प्रश्न है, साथ में आपको जवाब भी देना है। ठीक है, जो श्री कृष्ण जी बांसुरी बजाते हैं और राधा रानी मगन हो जाती है, तो बांसुरी का नाम बांसुरी क्यों पड़ा। हेलो,
2: नमस्कार।
1: हाँ जी, नमस्कार नमस्कार बुरेलाल जी।
2: राजा का मन जिया राजा जी का दिल धड़का राजा जी का दिल धड़का जमुना किनारे बाजे बांसुरिया। धन्यवाद सर।
1: ओके, बहुत बहुत आभार आपका बुरीलाल जी। तो ये थे बुरीलाल जी मानपुर से, बहुत ही सुंदर आपने भजन सुनाया है। अब आप भी जुड़ सकते हैं और अपनी पसंद का भजन सुना सकते हैं। भाई, अंताक्षरी कार्यक्रम बहुत ही सरल है, फिर भी नहीं जुड़ते हैं तो दोष हमको नहीं देना। अगर हम थोड़ा सा टफ देंगे तो फिर आप कहोगे कि अरे ये क्या कर दिया दीदी ने, जब इतने सरल अंताक्षर में भाग नहीं ले रहे आप तो फिर टफ कैसे देवे। नहीं तो बीच में से शब्द निकाल के दो तो उसका आनंद ही अलग होता है, लेकिन आप लोग तो संकुचाते हैं। इतने से में इतनी सरल अंताक्षरी है, हम सफर में जाते कहीं पर भी जाते हैं, अगर फैमिली के साथ ये या फिर फ्रेंड्स के साथ जाते तो क्या करते हैं, सफर में अंताक्षरी करते जाते हैं ना, तो बस उन दिनों को याद करके या भजन सुना सकते हैं। हेलो,
3: नमस्ते दीदी, सुरेश भाई बोलता हूँ बेटाना।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई, नमस्ते।
3: तो सवाल का जवाब दे दूँ?
1: हाँ जी दे दीजिए।
3: चलो, तो बांसुरी का नाम बांसुरी की पड़ा क्योंकि वो बांस से बना था इसलिए।
1: अच्छा, देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है, हम जरूर बताएंगे।
3: गाना बता दूं मैं, फूलों से भरा है दरबार गजानंद आ जाना महाराज।
1: सुरेश भाई ये हो गया, तुरंत ही आप चेंज कर दीजिए, ये हो गया।
3: अच्छा चलो, हाँ
1: जी।
3: मीठे रस से भरी हो रे राजा रानी लागे, राधा रानी लागे मन खारो खारो मन खारो खारो जमुना जी नो पानी लागे। मीठे रस से भरी हो रे राधा रानी लागे, राधा रानी लागे। नमस्ते दीदी
1: जी, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई झोटाना से, अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94।

0: 14 14 14। और बहुत ही सुंदर थीम है आज की, और साथ ही साथ प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है। बांसुरी का नाम बांसुरी क्यों पड़ा? हेलो।
1: हाँ नमस्कार जी, पालनपुर से फिरोज बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: हाँ जी, ओम शांति। नमस्ते फिरोज भाई।
1: हाँ एक गीत गाता हूँ।
0: हाँ जी।

0: झोली कंधे धरी उसने चूड़ी भरी, झोली कंधे धरी उसने चूड़ी भरी, गलियों में शोर मचाया,
1: शाम चूड़ी बेचने आया।
0: राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, मोहन को तू

0: अच्छा फिरोज भाई, आज का प्रश्न भी पूछा है। आज का प्रश्न है, बांसुरी का नाम बांसुरी क्यों पड़ा?
1: बांसुरी का नाम बांसुरी इसके लिए पड़ा कि जो बांबू के अंदर से, जो बांस के अंदर से ही बनाई जाती है वो बांसुरी, उसे कुछ में से बनाई नहीं जाती, वो बांसुरी वो बांस में से ही बनाई जाती है, उसी वजह से उसको बांसुरी बोला है।
0: अच्छा, देखते हैं आपका जवाब सही है गलत है। आप कार्यक्रम सुनिएगा, लास्ट में सुनाएंगे, ठीक है? हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, और अब आप वो फिर भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक लेकर के पुनः लौटेंगे, तो बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में। पर अब कैसे जाए, हमारे श्रोता बंधु जुड़ना चाहते हैं, उनको निराश नहीं कर सकते। हेलो, चलिए फोन भी कट गया, और ले लेते अभी ब्रेक। तो सुनते रहो, मुस्कुराते रहो, रेडियो मधुबन 107.8 FM।
2: श्री रामचंद्र जी महाराज के भरे दरबार में विभीषण ने ताना मारा, ऐ बजरंगी क्या तेरे मन में भी राम है? हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा,

एक खास जिम्मेदारी, इस पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए। आपातकालीन स्थिति के साथ उन्हें लंबे समय के पुनर्वास के लिए मदद भी करता है चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बच्चे या बड़े जो उनकी सहायता करना चाहते हैं डायल कर सकते हैं 1098 अपने फोन से। सजग रहिए, सुरक्षित रहिए। रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना, और आशियाना में हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी,
1: शांति दीदी।
0: ओम शांति सुभाष भाई, नमस्ते।
1: भाई बहनों को नमस्कार। और आज का सवाल का जवाब, बांसुरी का पहला नाम माँ नंदा, सम मोहिनी यानी प्रेम खुशी का प्रतीक है, इसीलिए। और एक कहानी झूठी भी है कि कृष्ण दर्शन के लिए शिव जो भगवान थे, उन्होंने ये एक खिलौना के रूप में वो उनको दिया था, ये भी कहानी है। तो सभी को नमस्कार। और

0: गणपति बापा का जय जयकार। थैंक यू, शुक्रिया, ओम शांति।
1: बहुत बहुत आभार आपका सुभाष भाई। तो ये थे महाराष्ट्र से सुभाष भाई, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना। आशियाना में अंताक्षरी कार्यक्रम चल रहा है। आप जुड़ सकते हैं और अपने पसंद का भजन सुना सकते हैं, राधा रानी का भजन सुना सकते हैं, गणपति जी का भजन सुना सकते हैं। आज का प्रश्न भी बहुत ही सुंदर है, बांसुरी का नाम बांसुरी क्यों पड़ा? हेलो,
2: हाँ जी नमस्ते, सुरेश भाई बोलता हूँ जताना से।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई,
2: मैं राधा जी का गाना सुनाता हूँ।
1: हाँ जी, हाँ जी,
2: राधा की तमन्ना।

0: तमन्ना है कि काना मुझे मिल जाए, आए श्याम मेरे राम, राधा की तमन्ना है कि काना मुझे मिल जाए।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के हैं 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षर में भाग ले सकते हैं। आज का प्रश्न बहुत ही सुंदर है, बांसुरी का नाम बांसुरी क्यों पड़ा? और यहाँ चलिए चंदलाइन हम भी सुना देते हैं, पर हमारे श्रोता बंधु जुड़ रहे हैं तो हम नहीं बोलेंगे। हेलो,
2: हाँ जी,
1: हाँ जी मधु जी, नमस्ते।
2: नमस्ते जी,
1: जी सुनाइए।
2: राधे नाम की उड़ी चुनरिया, राधे नाम की उड़ी चुनरिया, चाहे इत उत

0: चाली रे। हेलो,
1: हाँ नमस्ते भाई, बोल रहा हूँ।
0: हाँ जी
1: शांति।
0: नमस्ते। ओम शांति फिरोज भाई।
1: और ये अपने सुभाष भाई ने भी अच्छा गाया,
0: जी
1: गणपति
0: हाँ जी हाँ जी हाँ
1: जी का,
0: हाँ
1: गणपति
0: जी
1: जी
0: जी
1: का। वो महाराष्ट्र के हैं इसी वजह से, और महाराष्ट्र में धामधूम से जो गणपति का त्योहार मनाया जाता है।
0: जी जी जी
1: एक
0: बिल्कुल
1: गीत
0: सही
1: गाता
0: कहा
1: हूँ।
0: आपने। हाँ जी
1: राधे का रूप किशोरी मुरली दर मारो, व्योम बिहारी ससियर ने हूँ नानकड़ो तारो। हूँ राधे का रूप किशोरी, हूँ राधे का रूप किशोरी।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। अब देखते हैं कौन झूठते और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415। क्या बात है भाई, आज इतने सुंदर थीम है उसके बावजूद भी हमारे श्रोता बंधु ऐसे जुड़ रहे हैं कंटिन्यू, लेकिन वो ही के वो ही, कोई नए नहीं जुड़ रहे हैं तो कहाँ व्यस्त हो गए हैं। अच्छी बात है, जितने बिजी उतने ईजी, लेकिन ये अंताक्षरी कार्यक्रम भी बार बार नहीं होता है, और ये आपके नॉलेज को ही बढ़ाएगा और आपके मुख को खोलेगा, है ना। जो बोल नहीं पाते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही सुंदर मंच है रेडियो मधुबन का, इसके जरिए आप आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर देख के कोई ऐसे तो नहीं है कि अरे भाई अटक गए भटक गए तो कोई सजा दे देगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। हेलो
1: जय माता दी, जय श्री रेडियो
0: जी, जय श्री हरि, नमस्ते।
1: मधुबन सुनने सुनाने वाले सभी भक्तों को आज के दिन की ढेरों शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं।
0: जी
1: और कल अपने तेजा दशमी है,
0: जी
1: वीर तेजा दशमी, तो
0: जी
1: बस दिन की सबको शुभकामनाएं। परसों तो देव झूलने एकादशी के दिन सभी मिलेंगे, मगर कल तेजा दशमी की शुभकामनाएं।
0: जी
1: और बस क्या चल रहा है अपने
0: राधा
1: बाकी
0: रानी के
1: क्वांटिटी में?
0: भजन और गणपति जी के भजन।
1: किसके किसके? हाँ
0: राधा रानी, आज राधा अष्टमी है।
1: राधा अष्टमी है आज, बिल्कुल उसकी भी ढेर सारी शुभकामनाएं सबको।
0: जी
1: और बस अभी मैं तो ठीक है, सुनाता हूँ
0: जी
1: गणपति जी का, सुनाता हूँ।
0: सुनाइए।
1: गण

0: मैं थान सिमरू बुजानंद देवा बचन और पूरण बारा जियो सरस्वती माता थाने सर धान सिमरू हृदय करो नीओ जीवारा जियो निगरानी वारू बोले माते।
1: जी बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई पिंडवाड़ा से। अब देखते हैं कौन छुटते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। हेलो
2: हेलो।
1: हाँ जी नमस्ते।
2: नमस्कार मेरी ओम शांति।
1: ओम शांति। ज्ञानेंद्र जी बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं?
2: विक्रम कुशवा बोल रहे
1: हैं। अच्छा विक्रम भाई, विक्रम भाई बहुत बहुत स्वागत आपका रेडियो मधुबन में। कैसे हो?
2: ये आवाज टूट टूट के आ रही है दीदी।
1: हाँ ये समझ में नहीं आ रहा, सभी के फोन से नहीं आ रही है। अभी आपने लगाया तो टूटू आ रही, बाकी दूसरों से बात हो रही तो नहीं आ रही है।
2: अच्छा।
1: हाँ जी सुना दीजिए आप अपने पसंद का गीत। और आज का प्रश्न है बांसुरी को बांसुरी क्यों कहते हैं? जी
2: बांसुरी को बांसुरी दीदी वो बात की होती है।
1: ये क्या हुआ, अपने आप आवाज़ बंद हो गई है? तो फिर से आप लगा सकते हैं विक्रम भाई और बात कर सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। और आप जुड़ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं और आज का प्रश्न का जवाब दे सकते हैं और अंताक्षर में आप अपने पसंद का गीत सुना सकते हैं। ओम गणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट

0: पामोरिया। हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते, सूरज भाई लोकांत थाना से।
0: हाँ जी सुरेश भाई, देखिए आप सभी बात कर रहे हैं तो कोई टूटू की आवाज नहीं, और पता नहीं क्यों
1: पता नहीं क्या हुआ रहा है, कभी कभी ऐसा कोई फन में होता है किसी के।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: तो बहुत ज्यादा हो जाती है
0: जी।
1: तो मैं एक गाना सुना दूं, राधा रानी का।
0: हाँ जी।
1: राधा बेसी जा मारा गाडा मातन तेरू डाकुर मेरा मा, तने लाल चटक चुंदड़ी ले आपू, तने लाल चटक चुंदड़ी ले आपू, तू कई मामला कंकाऊ राधा राधा बेसी जा मारा गाडा मात।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से। अब देखते हैं कौन जुड़ते और अंताक्षर में भाग लेते हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और आप जुड़ने की कोशिश जरूर करिएगा। आज के दिन तो हमारे बहुत सारे भक्तजन बरसाना पहुंच गए होंगे, मथुरा वृंदावन। जिधर देखो उधर राधे राधे माई राधे माई पूरा ही वातावरण है। वैसे तो उधर 12 महीना राधे राधे ही जपते हैं, लेकिन भाई आज उनका दिन है तो फिर आज तो खास होगा ही। हेलो,
2: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ, ओम शांति।
0: हाँ जी नमस्ते फिरोज भाई।
2: भाद्र बट भरिया गिरिवर हरिया, प्रेम पसरिया तन सरिया, मथुरा में गरिया फेरन फरिया, खूब जावरिया वत करिया, ब्रजवास विसरिया काज न सरिया, मन नहीं थरिया हुहारी, पहरा दे प्यारी हूँ बलिहारी, गोकुल आवो ए गिरधारी रे गिरे गोकुल आवो गिरधारी।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है अंताक्षरी कार्यक्रम, और क्या बात है, हमारे श्रोता बंधु कहाँ खो गए हैं। हेलो, आवाज टकरा रही है बीच बीच में, टू टू की आवाज, बीच बीच में मेरी ही आवाज वापस रिटर्न होना। देखिए आज सुंदर से थीम है ना, दिन भी खास है तो परीक्षाएं भी होती है, ठीक है, लेकिन घबराना नहीं है, जुड़ते रहना है, कोशिश करेंगे तो जरूर लगेगा और ये सारी समस्याएं भी दूर हो जाएगी। जो घबरा करके फिर हार मान लेते हैं और सोच लेते हैं कि बस अब हमें नहीं करना है फोन, हमारा तो लगता ही नहीं, या ऐसी गड़बड़ हो जाती है, तो होती है टेक्निकल चीज़ें हैं, लेकिन समस्या का समाधान भी तो होता है ना, यही चीज़ें हमें पार भी लेके जाती है। हेलो
3: हेलो,
0: हाँ जी सुभाष भाई नमस्ते।
3: Hello.
0: नमस्ते।
3: एक गीत गा रहा हूँ।
0: हाँ जी।

0: दिन आया। शुक्रिया सभी को, नमस्कार।
1: जी बहुत बहुत आभार आपका। तो ये थे सुभाष भाई महाराष्ट्र से, और अब आप भी जुड़ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। प्रश्न मतलब बहुत ही सुंदर है, आज का प्रश्न है बांसुरी को बांसुरी क्यों कहा जाता है, तो ये आज का प्रश्न है, जवाब जरूर दीजिएगा और अंताक्षर में भाग जरूर लीजिएगा। छम छम छम बाजेला हमरी पायलिया, सखी हमरी पायलिया, कैसे भर लाऊं सखी यमुना गगरिया, यमुना के तीर तीर कदम की गछिया, गछिया पर बैठ शाम फेरे बांसुरिया, सुन के बांसुरिया सखी हो गई बावरिया, मैं तो हो गई बावरिया, कैसे भर लाऊं सखी यमुना गगरिया। हेलो,
2: हाँ जी,
1: हाँ जी मधु जी नमस्ते।
2: नमस्ते जी।
1: हाँ जी सुना दीजिए।
2: हाँ जी, चुआ करे कमाल गणेश जी के मंदिर में, चुआ करे कमाल गणेश जी के मंदिर में, गेहूं खा गयो चावल खा गयो, गेहूं खा गयो चावल खा गयो, खा गयो चने की दाल गणेश जी के में, खा गयो चने की दाल गणेश जी के मंदिर में, चुआ करे कमाल गणेश जी के मंदिर में।
1: बहुत सुंदर। अच्छा आज के प्रश्न का जवाब भी देंगे क्या
2: जी?
1: आज का प्रश्न है बांसुरी को बांसुरी क्यों कहा जाता है,
2: बांसुरी
1: क्यों कहा जाता है?
2: क्योंकि कन्हैया जी को बहुत प्यारे।
1: अच्छा ठीक है
2: जी।
1: ओके, तो ये थे मधु जी, और देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के हैं 94-14-15-14-15, और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। हमारे जितने भी श्रोता बंधु जुड़ रहे हैं बहुत उमंग उत्साह से जुड़ रहे हैं, और बहुत ही सुंदर सुंदर भजन सुना रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा है। जो जितने जुड़ रहे हैं वो जुड़ते रहें, और नए भी जुड़ना चाहें तो उनका भी हम तो स्वागत ही करेंगे। हेलो हेलो, नमस्ते।
3: नमस्ते, मैं बोल रही हूँ।
1: अच्छा मधु जी, आप थोड़ा सा इंतजार करिए, दूसरे जुड़ जाए, एक आध फिर आप जुड़िएगा, ठीक है?
3: जी जी जी।
1: हाँ जी, थैंक यू। तो ये थे मधु जी, देखिए कितनी उत्सुकता है, ऐसी उत्सुकता हर एक में होनी चाहिए, तभी तो मजा आता है ना अंताक्षरी कार्यक्रम का। ऐसी ठंडी ठंडे कोई मजा आता है क्या? रंग मत डारे रे सावरिया मारो गुजर मारे रे, रंग मत डारे रे, मैं गुजरी नादान गुजर है मारो मत वारो रे, रंग मत डारे रे। हेलो,
4: हेलो जी, नमस्कार जी।
1: हाँ जी नमस्कार, नमस्कार। अच्छा ये भी देखिए, ये भी एक साधना है बुरीलाल जी। जी जी जी जी जी
4: जी
1: जी जी जी जी
4: जी
1: मन ही मन क्यों जले राधिका काना, तो है सबका प्यारा वृंदावन का किशन कन्हैया। जी बुरीलाल जी बहुत सुंदर, आज के प्रश्न का जवाब देंगे। बुरीलाल जी आंधी की तरह आकर के तूफान की तरह चले जाते हैं, चलिए अच्छी बात है। और अब आप भी कोशिश करिएगा जुड़ने की, यहाँ पर हमें भी चंद लाइनें याद आ रही हैं। न

0: सुंदर गोली कपोले श्याम को लागे प्यारो प्यारो जादूगारो सावरियो राधा पर जादू कर गयो। हेलो
1: पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: हाँ जी ओम शांति। नमस्ते फिरोज भाई, सुना दीजिए।
1: कृष्ण कृष्ण।
0: हाँ
1: बोल माँ बोल माँ बोल मारे राधा कृष्ण बीना बिजू बोल मारे आकर शेरणी नो स्वागत जी ने कड़बोली मुड़ो रे गोल माँ गोल मारे बोल माँ बोल माँ बोल मारे राधा कृष्ण बीना बिजू बोल मारे।
0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, बहुत ही सुंदर आपने भजन सुनाया है और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है अंताक्षरी कार्यक्रम, तो हम इसको और भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अभी लेते हैं एक ब्रेक, बने रहिएगा कार्यक्रम आशियाना में, सुनते रहो मुस्कुराते रहो रेडियो मधुबन 107.8 FM।

मैं हूं जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी ओंकारानंद सरस्वती जी परमात्मा मठ प्रयागपीठ से आप सभी सुन रहे श्रोताओं को ब्रह्मा कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन से रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा शुभ प्रेम। ओम शांति।

0: है, तो राधा अष्टमी की पुनः आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हेलो,
1: नमस्कार।
0: हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। क्या बात है, क्या बात है बुरीलाल जी, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार आपका। आज के प्रश्न का जवाब बोले उसके पहले तो आप रख ही देते हैं, तो फिर सुन रहे हैं तो जरूर ध्यान दीजिएगा, बांसुरी को बांसुरी क्यों कहा जाता है? बांस की बांसुरिया कानो बड़ो इठलाए, बांस की बांसुरिया

0: पर तो। हेलो
1: माता जी, जय श्री हरि।
0: हाँ जी, जय श्री हरि।
1: मैं सुनाता हूँ
0: जी
1: वाला गीत।
0: हाँ जी,

0: यहाँ ले चल। हेलो
1: हेलो हेलो।
0: हाँ जी मधु जी, सुना दीजिए।
1: हाँ जी। चुम्मक चुम्मक राधा चली, कन्हैया जी को प्यारी लगी। चुम्मक चुम्मक राधा चली,

0: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार मधु जी। तो ये थे मधु जी आबू रोड से। अब देखते हैं कौन जुड़ते और अंताक्षरी में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। देखिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, देखते ही देखते समय तीव्रता से आगे बढ़ता जा रहा है। आप क्या सोच रहे हैं? अरे भाई, बहुत कम समय बचा है आपके पास जुड़ने के लिए, तो जुड़िएगा जरूर। अभी जिन्होंने चांस नहीं लिया वो भी चांस ले सकते हैं। हेलो, हाँ जी, ओम शांति, नमस्ते।
1: गणपति बापा बोरिया आते बरस में जल्दी आना।

0: प्यारा, जय गणपति प्यारा।
1: बहुत बहुत आभार, शुक्रिया फिरोज भाई। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से। अब देखते हैं कौन जुड़ते हैं और अंताक्षर में भाग लेते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षर में भाग ले सकते हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है मेरे प्यारे श्रोता बंधुओं। वो कहते हैं ना कि भाई क्वालिटी चाहिए, क्वांटिटी नहीं होगी तो चलेगा, क्वालिटी चाहिए, और सारे गीत क्वालिटी वाले ही सुनने को मिल रहे हैं। लेकिन हम तो भाई चाहते हैं कि हमारे और भी श्रोता बंधु जुड़े और वो भी आज मन के उद्गार सभी के सामने निकाल दे। हेलो
2: दीदी, नमस्ते।
1: नमस्ते सुरेश भाई,
2: गाना सुनाता हूँ मैं।
1: हाँ जी हाँ।

0: जी बहुत बहुत आभार सुरेश भाई। तो ये थे सुरेश भाई जोटाना से, और अब आप जुड़ सकते हैं। समय तीव्रता से आगे बढ़ता जा रहा है, बहुत कम समय आपके पास बचा है। जो भी इस समय का लाभ उठाना चाहे तो वो तो उठाएंगे ही, इसलिए कोशिश करिएगा जुड़ने की। नंबर तो आप सभी जानते हैं, हम बार बार दोहराते रहते हैं, 9414151415 पर आप फोन कॉल्स कर सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी मधु जी सुना दीजिए।
1: हाँ जी, राधा के जन्मदिन पे आई रे मैया दे दो बधाई, राधा के जन्मदिन पे आई रे मैया दे

0: गवाई रे मैया दे दो बधाई।
1: क्या बात है, बहुत सुंदर। अच्छा, आज के प्रश्न का जवाब देंगे मधु जी?
0: हाँ जी बोलिए।
1: जवाब मिला आपको? बांसुरी का बांसुरी क्यों कहा जाता है?
0: बांसुरी का नहीं मिला जी।
1: अच्छा ठीक है, कोशिश करते रहिए। ठीक है
0: जी, जी, जी।
1: हाँ जी, तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, समय भी तीव्रता से आगे बढ़ता जा रहा है। देखिए आज तो आप जाइएगा वृंदावन, मथुरा वृंदावन, बरसाना में तो धूम ही धूम है, राधे राधे है, राधेमय सब बन गए हैं और बहुत ही सुंदर वहाँ पर आज के दिन भक्तों की बहुत भीड़ पड़ती। वैसे तो आपने आप गए या नहीं गए नहीं पता, लेकिन बहुत भीड़ रहती है 12 महीना, लेकिन आज खास दिन है तो टू मच भीड़ रहती है। हेलो,
2: हाँ नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा हूँ।
1: हाँ जी नमस्ते, नमस्ते फिरोज भाई। हाँ जी,
2: लाल की जय। गोकुल गाम माने वृंदावन ना गाम मा यमुना घाट मान गिरधारी ना जसुदा ना जायो मा कण सायो ने मारो मोरारी राधा जी नी भार्या ने पांडवो ने तार्या करो ने मार्या मोरारी कहे राधे प्यारी ने बलिहारी गोकुल आवो गिरधारी कहे राधे कृष्ण जसोदा न जाया गोकुल आवो
1: गिरधारी रे जी रे
2: आवो गिरधारी।
1: ओ मने एकली जानी ने कान छेड़ी रे, मने एकली जानी ने कान छेड़ी रे, पछी कह दऊ जसोदाना कान मारे, ओ पछी कह दऊ जसोदाना कान मारे। तो बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज भाई, आपने भी म्यूजिक का साथ दिया है, आपके लिए ढेर सारी तालियां तो बनती ही है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से, और देखिए बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और हमारे जो भी श्रोता बंधु जुड़ रहे हैं बहुत उमंग उत्साह से जुड़ रहे हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर भजनों की प्रस्तुतियां दे रहे हैं। आज का थीम भी बड़ी सुंदर है, राधा रानी के भजन और गणपति जी के भजन। हेलो
3: नमस्कार दीदी, नमस्कार।
1: हाँ जी नमस्कार भूरीलाल जी।
3: रुग्ण हरण मंगल मूर्ति मोरिया, अगले वर्ष जल्दी आना, मंगल मूर्ति मोरिया अगले वर्ष जल्दी आना।
1: क्या बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर जी, बहुत बहुत आभार। देखिए मेरे प्यारे श्रोता बंधु, मथुरा वृंदावन की विशेषता आप देखिए कि वहाँ पर जहाँ श्री कृष्ण हैं वहाँ राधे जी साथ है, हर मंदिर राधे कृष्ण जी के बने हुए हैं, कृष्ण जी कहीं पर भी अकेले नहीं है वहाँ पर। तो ये जबकि हम कहते हैं कि श्री कृष्ण जी की पत्नी रुक्मणी जी है, फिर ये राधे जी कौन है? लेकिन कितना निस्वार्थ प्रेम यहाँ पर बताया गया है, कितना निस्वार्थ प्रेम की राधा रानी ने सभी को दिया ही दिया, अपना नहीं सोचा। तो इसके पीछे भी बहुत ही सुंदर कहानी है। हेलो, हाँ जी नमस्ते।
4: नमस्कार, नमस्कार बहन जी, कंचन भाई।
1: हाँ जी कंचन भाई, कहाँ खो गए थे?
4: कॉल नहीं लगता बहन जी, करीबन अब तो एक घंटे से कॉल कर रहा
1: हूँ। अच्छा।
4: बिल्कुल कॉल नहीं लगता। अच्छा। हमारे पुराने श्रोता है ना, वो लगातार कॉल कर रहे हैं तो कॉल नहीं लगता।
1: नहीं, बीच बीच में गैप भी है, बीच बीच में गैप भी मिल रहा है।
4: हाँ
1: हाँ, बीच बीच में गैप भी चल रहा है। मैं खुद भी कितने भजन मैंने सुना दिए।
4: हाँ पर नहीं लगता, मेरा लगता था लेकिन सामने से आवाज नहीं आती थी आपकी।
1: अच्छा जी जी जी, आज गड़बड़ चल रही है फोन की उधर से जी।
4: हाँ क्या पता क्या हो गया है, मैंने सोचा ऑफलाइन है ऑनलाइन
1: नहीं, अभी ऑन एयर है। अच्छा, आज का प्रश्न भी पूछा है, बांसुरी को बांसुरी क्यों कहते हैं? मैंने गीत के माध्यम से जवाब भी दे दिया है।
4: आहा, दे दिया।
1: हाँ जी,
4: तो मैं सुनता तो था लगातार, ये सुनता था प्रोग्राम तो।
1: अच्छा,
4: हाँ जवाब देने की कोशिश करेंगे।
1: जी जी जी,
4: हाँ तो एक भजन सुनाते थे साथ में।
1: हाँ जी हाँ जी।
4: मुठ महल मावसिया गणेशा, उनका दर लो ध्यान भक्ति, पर जीवाना काम जी, अर्जु मूरख तारो मटो नहीं रे अभी, मान मूरख तारो टो नहीं रे अहंकार भक्ति, गुरु पीरो ना काम जी।
1: जी जी, बहुत बहुत आभार कंचन भाई,
4: क्योंकि मुझे पता है कि सभी भजन आएगा ही होंगी।
1: अच्छा,
4: तो दो चार भजन हमारे पास है, लेकिन कॉल नहीं लगता, जो किसी को श्रोता को पास नहीं है।
1: अच्छा, तो आप बिल्कुल जुड़ते रहिए, कोशिश करते रहिए, फोन लगेगा। ठीक है, अभी लगा ऐसे लगेगा,
4: अब तो टाइम पूरा होने वाला,
1: लेकिन अभी मैं ब्रेक नहीं ले रही हूँ, अभी है आपके पास 10 मिनट है, 12 मिनट है, आप जुड़ते रहिए। ठीक है, आपके उमंग उत्साह को देख करके हमने ब्रेक लेने का कैंसिल किया है, अब यहाँ पर कोई ब्रेक नहीं लेंगे, आप जुड़ते रहिए और अंताक्षरी में भाग लेते रहिए। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है मेरे प्यारे श्रोता बंधु, और अगली बार तो थीम चेंज हो जाएगी, इसलिए जितना लाभ लेना हो, आनंद लेना हो, आज ले लीजिए। हेलो
5: हेलो,
1: हाँ जी मधु जी, नमस्ते।
5: नमस्कार जी।
1: हाँ जी
5: हाँ जी,
1: सुना दीजिए।
5: सुना दूं
1: जी,

0: जी
1: बहुत सुंदर बहुत बहुत आभार आपका मधु जी, तो बहुत ही सुंदर रंग जमा दिया मधु जी ने, तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। अब कौन जुड़ रहे हैं भाई, क्या बात है, हेलो। चलिए निराश मत होइए, फोन कट जाता है फिर से कोशिश कर लीजिए, क्योंकि फोन तो भाई किसी का सगा नहीं है, कब कट जाता है कब जुड़ जाता है कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो, कोशिश भी कर रहे हैं लेकिन पता नहीं क्यों जो भी कर रहे हैं उनका क्यों बार बार कट रहा है, नहीं समझ में आ रहा। हेलो, कोशिश करते रहिए, ठीक है, निराश मत होइए, लगेगा, लग के ही रहेगा, अच्छे संकल्प के साथ फिर से कोशिश करिएगा। हेलो, तो देखिए बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, जैसा कि आपको बताया गया है कि देखिए श्री, चलिए हेलो, बहुत कोशिश की है लेकिन आज शायद आप का क्यों कट रहा है। हेलो, जो इतना तो फोन कटता नहीं है, अगर कोई बात नहीं करना चाहे तो नहीं करे फोन, बाकी करिएगा। हेलो, दूसरों का भी समय जा रहा है, जो दूसरे जुड़ना चाहते हैं उनको जुड़ने दीजिएगा, क्योंकि आपका फोन बार बार कट रहा है, तो आप कोशिश मत करिएगा, क्योंकि बार बार फोन नहीं कटता है। हेलो, हेलो, नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? अब इसको क्या कहेंगे, जुड़ गए फिर भी बोले नहीं, क्या कहेंगे आप? जो बात करना चाहते जो भजन सुनाना चाहते वो ही जुड़िएगा, बाकी मत जुड़िएगा, ठीक है, क्योंकि हम नंबर नहीं देखते हैं लैंडलाइन में, सीधा नंबर उठा देते हैं। तो अगर किसी भी कारणवश कट रहा है तो बेड लक, बाकी जानबूझकर मत काटिएगा। हेलो,
2: हाँ नमस्ते दीदी, सुरेश भाई बोलते हैं जटाना से।
1: हाँ जी नमस्ते सुरेश भाई
2: जी, राधा जी का गाना सुना था
1: जी, आपका तो एक ही बार लग गया ना?
2: पहली बार लग गया
1: जी जी जी,
2: जब लगा तो तुरंत लग गया
1: जी जी जी, तो चलिए अच्छी बात है,
2: कोशिश करते हैं लेकिन पता नहीं क्या होता है, टू टू टू आवाज भी आती है और फोन से लगता नहीं है, बात होती नहीं रही आपकी, पता नहीं क्या बात है
1: जी।
2: चलो मैं सुना दो गाना।
1: हाँ जी,
2: राधा ढूंढ रही किसी को मेरा शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, सबको पूछ रही किसी ने मेरा शाम देखा, शाम देखा देखा घन शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा।
1: ये इसके इतर जैसे है, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा, शाम देखा गन शाम देखा, राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा शाम देखा।
2: राग नहीं आता था इसलिए
1: जी जी जी, चलिए
2: लेकिन अब आ गए आपने,
1: बहुत बहुत आभार। हाँ जी नमस्ते, तो देखे ऐसी किमन देती है कि राधा जब बड़ी हुई तो उनके माता पिता ने रायन नामक एक वेश्य के साथ उनका संबंध निश्चित कर दिया। उस समय राधा घर में अपनी छाया को स्थापित करके खुद अंतर ध्यान हो गई। उस छाया के साथ ही उक्त रायन का विवाह हुआ। इसी श्लोक में आगे बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण की माता यशोदा का वह रायन सगा भाई था, लेकिन वो छाया के साथ उनका विवाह हुआ, न कि श्री राधा जी के साथ, है ना, इस तरह की भी किंवदंतियां है। पर बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, अब आपके पास 7 मिनट है, 7 मिनट में जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं और अंताक्षरी में भाग ले सकते हैं। नंबर रेडियो मधुबन के है 94-14-15-14-15। बरसाने की गलियों में प्रेम का दीप जलाया, राधा रानी ने जग को भक्ति का पाठ पढ़ाया, नहीं चाहा कोई धन दौलत नहीं चाहा मान, कृष्ण प्रेम में अर्पित कर दिया अपना तन मन प्राण, कृष्ण प्रेम में अर्पित कर दिया अपना तन मन प्राण। हेलो, हेलो नमस्ते,
2: हेलो,
1: हाँ जी कंचन भाई नमस्ते,
2: नमस्कार नमस्कार बहन जी, टाइम है कि पूरा हो गया?
1: हाँ हाँ है, अभी 6 मिनट 7 मिनट है।
2: एक क्वेश्चन करना है सब बहन, सुना? ठीक
1: है, राधा रानी सुनाइए।
2: जा जा रे ओ कृष्ण कन्हैया जा जा जा, नथी हवे तू।

જી બહુ સરસ બહુ સરસ. હા સુરેશભાઈ સુના દીજે. નમસ્તે રેનુકાબેન કો.

0: ताराना राधा का श्याम दीवाना।
1: बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार आपका मधु जी। तो ये थे मधु जी आबू रोड से, और अब देखते हैं लास्ट में जो भी जुड़ना चाहते हैं कोई भी जुड़ सकते हैं। हेलो, जो भी जुड़ते हैं तुरंत आप काटिए ताकि दूसरे जुड़ सके। तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है, कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है और देखते हैं लास्ट में मौके पर चौका कौन लगाता है। नहीं तो फिर हम तो बैठे ही है भाई, हम सुना देंगे। चलिए हमारे श्रोता बंधु जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: नमस्कार दीदी, पालनपुर से फिरोज भाई बोल रहा
1: हूँ। हाँ जी, ओम शांति। नमस्ते फिरोज भाई। हाँ जी,
2: आंबे आंबे बोले कोल कोयलड़ी ने वरना बोले मोर, आंबे बोले कोयलड़ी ने वनमा बोले मोर, राधा जी नी दर्शनी नो सामर्थ्य चोर चोर चोर, नागर नंदा जी ना लाल नागर नंदा जी ना लाल, राज रमन ता मारी न थड़ी खोवाणी कोई नहीं जड़ी हो

0: hoy me serio yo a gracias Raman Samari Nathan Kowani Ji
1: Ji, bahut bahut shukriya Firoz bhai. हाँ जी, बहुत सुंदर. तो ये थे फिरोज भाई पालनपुर से. और बस अब कार्यक्रम समाप्त. अगला कार्यक्रम सुनना है ना आप सभी को पंडिताइन. तो बस आज के लिए इतना ही. बहुत सुंदर आज का कार्यक्रम चला है और जितने जुड़े हमारे श्रोता बंधु बहुत उमंग उत्साह से जुड़े हैं. बहुत सुंदर. तो सभी को धन्यवाद देना चाहूँगी दिल से. बाकी आज का विचार भी बहुत ही सुंदर था. आज का नुस्खे जो दिए हैं वो भी अच्छे थे. और फिर अंताक्षरी में जुड़े हैं उनका नाम भी लेना चाहूँगी. देखे एक दो पॉइंट आगे पीछे हुए हैं लेकिन सभी ने अच्छी कोशिश की है. सुरेश भाई झोटाना से जुड़े हैं, 11 बार प्रस्तुतियाँ दी आपने. फिरोज भाई पालनपुर से आप 10 बार जुड़े हैं. सुभाष भाई महाराष्ट्र से आपने 3 प्रस्तुतियाँ दी है. कमला जी भिलवाड़ा से 1 बार जुड़े हैं. भूरीलाल जी मानपुर से आपने 6 बार प्रस्तुतियाँ दी है. सुरेश भाई पिंडवाड़ा से 3 बार जुड़े हैं आप. विक्रम भाई कुशवा जुड़े हैं मध्य प्रदेश से लेकिन आपका फ़ोन कट गया था. कंचन भाई मंडाली से जुड़े हैं 3 बार. रेणुका बहन झोटाना से जुड़े हैं 1 बार. और आज के विनर हैं मधु जोशी आबू रोड से, 13 बार आप जुड़े हैं. तो आपके लिए पहले तो मधु जी के लिए ढेर सारी तालियां. फिर आप सभी भी जुड़े बहुत ही उमंग उत्साह से जुड़े और बहुत सुंदर सुंदर भजन छंद और मोर की आवाज और सब कुछ अच्छा सुनाया. इसके लिए भी ढेर सारी तालियां. और आज के प्रश्न का जवाब सही दिया है एक तो सुरेश भाई जोटाना से, फिरोज भाई पालनपुर से और फिर हाँ आप दोनों ने ही जवाब दिया है. तो आप दोनों के लिए ढेर सारी तालियां. आप दोनों का सही जवाब है. बाकी सुभाष भाई का तो भाई बास मैंने भजन सुना दिया था. बास की बांसुरिया काना बड़ा इतरावे. तो जो बांस से बनती है बांसुरी उसका नाम भी बांसुरी पड़ गया. बांस से बनी इसलिए ठीक है. और आज का मीठा मोती है जब हृदय शुद्ध और स्वच्छ हो जाता है तब वचन भी शुद्ध हो जाते हैं. तब मुख से मीठे आनंद भरे बोल निकलते हैं. अब मैं उषा माहेश्वरी आप सभी से अनुमति चाहूंगी. सोमवार को फिर मिलेंगे. तब तक के लिए राम राम सा, जय श्री कृष्ण सा, गणी खम्मा सा. सुनते रहो, मुस्कुराते रहो. रेडियो मधुबन 107.8 FM.
2: जय श्री राम.

0: हे दिव्य औषधियों के संरक्षक देवताओं, मैं केसरी नंदन वायुपुत्र हनुमान आपको प्रणाम करता हूं। देवताओं के परम मित्र प्रतापी महाराज दशरथ के पुत्र वीरवर लक्ष्मण, देवताओं के शत्रु राक्षस राजपुत्र मेघनाथ के हाथों शक्ति लगने से घायल अवस्था में मूर्छित पड़े हैं। इस समय उनके प्राण संकट में हैं। मैं श्री राम प्रभु की आज्ञा से, वैद राजसूषण के कहने से यहां आया हूं। आप मुझ पर कृपालु हो, मुझे आज्ञा दें कि मैं अपने स्वामी का कार्य सिद्ध कर सकूं।
1: हनुमान, हम तुम्हारी विनम्रता से प्रसन्न हैं। तुम्हारा हेतु धर्म में है, तुम जो चाहो इस पर्वत से मिल जाएगा।

0: नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, शनिवार की सुप्रभातम। परमा पंडिताइन आपका प्रोग्राम पंडिताइन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती है। आज शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम बहुत सुंदर एक कहानी से, दिल की दूरी। गंगा नदी के तट पर एक शांत सुबह थी, हल्की हल्की हवा बह रही थी। अब सूर्य की सुनहरी किरणें जल की लहरों पर चमक रही थी। पक्षियों की मधुर आवाज वातावरण को दिव्य बना रही थी। यही शांत माहौल में एक सन्यासी अपने कई शिष्यों के साथ स्नान करने आए। सभी ध्यान और साधना के भाव में डूबे रहे, तभी अचानक वातावरण में एक कर्कश शोर गूंज उठा। पासी को एक परिवार के कुछ सदस्य, जो अभी कुछ क्षण पहले हंसते बोलते थे, अचानक किसी छोटी सी बात पर क्रोधित हो उठे। बात बढ़े लगी और फिर वो एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्लाए लगे। तट का सारा सन्नाटा और शांति जैसे टूट गई। सन्यासी ने ये दृश्य देखा और ठहर गया। उसने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम बता सकते हो कि लोग अब क्रोधित होते हैं तो इतना जोर जोर से काहे चिल्लाते हैं? शिष्य कुछ देर सोच में पड़ गए, फिर एक ने सावधानी से उत्तर दिया, गुरुदेव, शायद इसलिए क्योंकि क्रोध में हमारी शांति खो जाती है। सन्यासी मुस्कुराया, परंतु उसने पुनः प्रश्न किया, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति खड़ा है तो उस पर चिल्लाकर काहे बात की जाए, वो तो बिना चिल्लाए भी सुन सकता है। इस बार शिष्य एक दूसरे को देखे लगे। कुछ ने उत्तर देना चाहा, लेकिन कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं रहा, वो और भी उलझ गए। सन्यासी ने तट की ओर देखा, कुछ कदम आगे चला, फिर शांत आवाज में बोला, जब दो लोग क्रोधित होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये दूरी दिखाई नहीं देती, लेकिन दिलों के बीच एक मानसिक खाई पैदा हो जाती है। वो जितने अधिक क्रोधित होते जाते हैं, दिल उतने ही दूर होते जाते हैं। और जब दिल दूर होते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि सामने वाले को सुनाने के लिए उसे जोर से बोलना पड़ेगा, इसलिए क्रोध में मनुष्य चिल्लाता है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे, वो प्रत्येक शब्द अपने अंतर में उतार रहे थे। सन्यासी ने अपनी बात आगे बढ़ाई, अब सोचो, जब लोग प्रेम में होते हैं तो क्या वो चिल्लाते हैं? नहीं, वो धीरे धीरे बोलते हैं। काहे कि उस समय उनके दिल करीब होते हैं, उनके बीच कोई दूरी नहीं होती। कभी कभी तो वो बस फुसफुसाकर भी एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। और जब प्रेम अत्यधिक बढ़ जाता है, जब दो हृदय पूर्णतः एक हो जाते हैं, तब उन्हें बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल एक दूसरे को देख कर ही वे सब कह देते हैं। कारण ये कि तब दिलों के बीच की दूरी शून्य हो जाती है। शिष्य मौन हो गए। उन्हें ये शिक्षा अत्यंत सुंदर, सरल और गहरी लगी। वो कुछ समझते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे पहली बार उन्होंने दिलों की दूरी का अर्थ समझा हो। इस बीच तट पर चिल्ला रहा परिवार भी धीरे धीरे शांत हुई गवाह। कुछ देर बाद वो लोग एक दूसरे से क्षमा मांगते नजर आए। शायद प्रकृति ने उनके लिए भी कोई संदेश भेज दिया था। सन्यासी ने जल में कदम रखते हुए कहा, जीवन में किसी से प्रेम, सम्मान और शांति बनाए रखने का आधार यही है कि दिलों के बीच दूरी न बनने पाए। जब भी क्रोध आए तो इस सोचो कि कहीं ये दूरी बढ़ तो नहीं रही, और यदि दूरी बढ़ने लगे तो तुरंत स्वयं को संभाल लेना चाहिए। काहे कि चिल्लाने से समस्या हल नहीं होती, केवल दिल और दूर हो जाते हैं। शिष्यों ने हाथ जोड़कर गुरु को नमन किया। आज हेलो,
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग दीदी,
0: ओम शांति। गुड मॉर्निंग भैया, एकदम ठीक हूँ। आप कैसे हो?

0: पूरा मौन में चला जाता था, नहीं तो चिल्लाने लग जाता था। पर अभी रेडियो मधुबन के प्रोग्राम सुनते सुनते दिल का प्यार बढ़ने लगा और शांत रहने लगा क्रोध में भी।
1: क्या बात है।
0: और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और यदि आपको रेडियो मधुबन परिवार सभी छोटे भाई बहनों को राधे अष्टमी, राधा का जन्मदिन और गणपति बाप्पा मोरिया पुरचा वर्षी लौकरिया और सभी को बधाई शुभ भावना। ओम शांति दीदी।
1: ओम शांति भैया। तो शिष्यों ने हाथ जोड़कर गुरु को नमन किया। आज उन्हें क्रोध का सबसे सरल और शानदार सिद्धांत समझ आया था। गंगा का पवित्र जल तट पर लहरें मार रहा था, मानो स्वयं भी कह रहा हो, जहाँ मन शांत वहीं जीवन सुगंधित। जब दिल करीब होते हैं आवाज़ धीमी हो जाती है, और जब दिल दूर होते हैं आवाज़ ऊंची हो जाती है। इसलिए जीवन में क्रोध से पहले दिलों की दूरी को समझो, क्योंकि रिश्तों को बचाने के लिए आवाज नहीं दिल की निकटता चाहिए। आप क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि साधु संन्यासी अपने जीवन में जो जप तप करते हैं उसके अनुसार ही तो उनके जीवन में ऐसी सत्यता घटती है, और इस सत्यता हमारे लिए सही में जीवन में बहुत उपयोगी होती है। बीता हुआ समय सीख है, आने वाला समय नई संभावना, दोनों को गहराई से सोचे और जीवन में आगे कदम बढ़ाएं। जिंदगी में जो है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि वक्त के पास हर चीज को याद बना देने की ताकत है। कल को कहेंगे वो फोटो टंगी है ना, वो हमारे दादाजी थे। अरे आज दादाजी है, तब तक तो उनका मान सम्मान कर लो। तो भाई वक्त के पास हर चीज को याद बना देने की ताकत है। जो स्वयं को जीत लेता है वो जीवन के हर चुनौती जीत सकता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रोकता, इसलिए हर पल को संयम, सत्य और आत्म कल्याण में लगाओ। परमात्मा का सच्चा प्यार उही महसूस कर सकता है जेके दिल आईने की तरह साफ और हर प्रकार के छल कपट से दूर हो। हर अधूरी इच्छा दुख नहीं होती, हर अधूरी इच्छा दुख नहीं होती। कभी कभी वही हमें मिली हुई खुशियों की कीमत समझाती है। देखिए भाई बहन, छोटी छोटी बात है लेकिन जीवन में गौर करने लायक है। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। शिकायत करने वाला कमी देखता है और शुक्रगुजार इंसान कृपा देखता है। मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और कर्म श्रेष्ठ हो तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए सुनना सीखिए, समझना सीखिए और सबसे बढ़कर छोड़ना सीखिए। क्या छोड़ना है? लेट गो, जाने दो। बात कोई बात हुई है, अहंकार लेके ना बैठो। दो चीजें कभी मत छोड़ना, उम्मीद और प्रयास। एक रास्ता दिखाती है का उम्मीद, और दूसरा मंजिल तक पहुंचाती है का प्रयास। तो ये दो बातें कभी छोड़िएगा नहीं जिंदगी से। कीचड़ का कारण भी जल है, कीचड़ का कारण भी जल है, कीचड़ का निवारण भी जल है। उही तरह मन को दूषित करने वाला भी मन है और मन को पवित्र करने वाला भी मन है। प्यार सम्मान और अपमान, प्यार सम्मान और अपमान तीनों एक प्रकार का निवेश है। जितना आप दूसरों को दीजिएगा आपको उससे कई गुना अधिक वापस मिलेगा। समझ गए तो? अरे भाई काहे नहीं समझेंगे, हमारे भाई बहन तो बहुत समझदार है और इतने सालों से रेडियो मधुबन से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं तो बाबा की शिक्षा से और 24 घंटे अच्छी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, तो बहुत समझदार हो गए। चलिए भाई ये बात पे एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पे, सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। सुनिएगा ये गीत बहन जी को, रिनुक

0: पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: हमारे मन की क्वालिटी कैसे है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है, इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना, तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे, बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना, हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर, वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार। बहुत पुराने विचार, बासी विचार, अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है। धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स, इस बात को चेक करना कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसकी क्वालिटी कैसी है। देखिए, सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है। और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत बहुत जरूरी है।
2: एक कॉलेज का छात्र रहा, जेका नाम रहा रवि। हमेशा वो बहुत चुपचाप सा रहता रहा, किसी से ज्यादा बात नहीं करता रहा, इसलिए उका कोनो दोस्त भी नहीं रहा। वो हमेशा कुछ परेशान सा रहता था, पर लोग उस पर कोनो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन वो क्लास में पढ़ रहा था, उसे गुमसुम बैठा देखकर अध्यापक महोदय उसके पास आए और क्लास के बाद मिलने को कहा। क्लास खत्म होते ही रवि अध्यापक महोदय के कमरे में पहुंचा। रवि, मैं देखता हूँ कि तुम अक्सर बड़े गुमसुम और शांत बैठे रहते हो, न किसी से बात करते हो और ना ही किसी चीज में रुचि दिखाते हो, इसलिए इसका सीधा असर तुम्हारी पढ़ाई पे भी साफ नजर आ रहा है, इसका क्या कारण है? अध्यापक महोदय ने पूछा। रवि बोला, मेरा भूतकाल का जीवन बहुत ही खराब रहा है, मेरी जिंदगी में कुछ बड़ी ही दुखदायी घटनाएं हुई हैं, मैं उन्हीं के बारे में सोचकर परेशान रहता हूँ और किसी चीज में ध्यान केंद्रित नहीं न कर पाता हूँ। अध्यापक महोदय ने ध्यान से रवि की बातें सुनी और मन ही मन उसे फिर से सही रास्ते पर लाए का विचार करके रविवार को घर पे बुलाया। रवि निश्चित समय पर अध्यापक महोदय के घर पहुंच गवा। रवि, का तुम नींबू शरबत पीना पसंद करोगे? अध्यापक ने पूछा। जी, रवि ने झिझकते हुए कहा। अध्यापक महोदय ने नींबू शरबत बनाते वक्त जानबूझकर नमक अधिक डाल दिया और चीनी की मात्रा कम ही रखी। शरबत का हेलो, ओम शांति। सूरज भाई कैसे हैं?
3: एकदम अच्छे। और आपने जो किया कि क्रोध क्रोध क्रोध में हमेशा अपने को शांत रहना है, तो क्रोध भी चेहरे तो भी अपने को सामने वाले को अपने इसको अच्छा लगे ऐसा बर्ताव करना है,
2: चिल्ला के नहीं बोलना है।
3: कैसा है कि बहन जी के बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, जब बनी बन के बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं।
2: क्या बात है,
3: भले हजार होते अपने को शांत रहना है, उसको सामने वाले को अच्छा लगे ऐसा अपने को बर्ताव करना है।
2: जी बिल्कुल सही तो बात,
3: सामने वाला भी वो समझ जाएगा नहीं कोई अपन गलत है।
2: हाँ, नहीं तो बात और बढ़ जाती है, हम जवाब देते हैं तो, और फिर हमारा सुर बोलने का वो भी ऊँचा होते जाता है।
3: जी,
2: बहुत अच्छा।
3: ओम शांति, ओम शांति, सभी रेडियो मधुबन परिवार को आगे राधे छठ की, राधे राधे आठम की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और एक गणपति जी का एक गीत बोलता हूँ, गणपति आयो बापा विधि सिद्धि लायो, सदानंद आयो निधि
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, थैंक यू भैया। तो सुना भाई, सभी भाई, आज राधा जयंती की हम भी आप सबको को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और गणपति बप्पा के दिन तो चल ही रहे हैं, सभी गणपति बप्पा के ये 10 दिन की जो उत्सव चल रही है उसकी भी दिल से बहुत बहुत बधाई आप सबको। तो हम सुना रहे थे कि रवि को उन्होंने शरबत दिया तो अध्यापक महोदय पूछे, क्या हुआ, तुम्हें ये पसंद नहीं आया का? जी वो इसमें नमक थोड़ा अधिक पड़ गया है। रवि अपनी बात कह ही रहा था कि अध्यापक महोदय ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, ओहो कोनो बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ, अब ये कोनो काम का नहीं रहा। ऐसा कहकर अध्यापक महोदय गिलास उठा ही रहते कि रवि ने उन्हें रोकते हुए कहा, नमक थोड़ा सा अधिक हो गया है तो क्या, हम इसमें थोड़ी और चीनी मिला दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक रवि, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। अब इस स्थिति की तुम अपनी जिंदगी से तुलना करो। शरबत में नमक का ज़्यादा होना जिंदगी में हमारे साथ हुए बुरे अनुभव की तरह है। और अब इस बात को समझो, शरबत का स्वाद ठीक करने के लिए हम उसमें से नमक नहीं निकाल सकते, इसी तरह हम अपने साथ हो चुकी दुखद घटनाओं को भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। पर जिस तरह हम चीनी डालकर शरबत का स्वाद ठीक कर सकते हैं, उसी तरह पुरानी कड़वाहट और दुखों को मिटाए के लिए जिंदगी में भी अच्छे अनुभव की मिठास घोलनी पड़ती है। यदि तुम अपने अतीत का ही रोना रोते रहोगे तो ना तुम्हारा वर्तमान सही होगा और ना ही भविष्य उज्जवल हो पाएगा। अध्यापक महोदय जी ने अपनी बात पूरी की। रवि को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने मन ही मन एक बार फिर अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रण लिया। अक्सर बंद होते हुए दरवाजे की तरफ इतनी देर तक देखते रहते हैं कि हमें खुलते हुए अच्छे दरवाजों की भनक तक नहीं लगती और हमारा जीवन दुखों के सागर में ही डूबा रह जाता है। जरूरी है कि हम अपनी पुरानी गलतियों या फिर तकलीफों को भूलना सीखें और जिंदगी को फिर से नई दिशा की ओर मोड़ें। आशा करते हैं आप भी पुरानी बातों को भुलाकर कहीं ना कहीं जिंदगी में नई मिठास को खोलेंगे। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, जो हो गया सो हो गया, नए से शुरू करें। उसे तो नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन अच्छी बातें सोचेंगे तो वो बुरी बातें या दुखी वाली बातें हल्की हो जाएगी। जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, और जब सब कुछ होता है तो व्यवहार की परीक्षा होती है। आपके पास कुछ नहीं, इंसान देखता है इसमें कितनी धैर्यता है, ये उबलता तो नहीं, खौलता तो नहीं, बिगड़ता तो नहीं। और जब आपके पास सब कुछ होता है तो इंसान देखता है इसके पास सब कुछ है लेकिन इसका व्यवहार कैसा है। ये दोनों परीक्षा होती है ऐसे वक्त में। रिश्ते जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं, रिश्ते जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। जोड़ने से पहले 2 बार सोचे और तोड़ने से पहले 100 बार। फिर से सुन लीजिएगा, रिश्ते जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। जोड़ने से पहले 2 बार सोचें और तोड़ने से पहले 100 बार। कहे कि एक बार टूट गया कच्चा धागा प्रेम का तो फिर वो नहीं जुड़ता, और मिलता भी है तो गठान पड़ जाती है। सुनाए है ना रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए, मिलेगा भी तो गांठ पड़ी होगी। हमारे पास का है ये महत्वपूर्ण नहीं ना है, लेकिन हमारे साथ कौन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम तो कहते हैं भगवान जी से, परमात्मा जी से ज़्यादा कौनो इम्पोर्टेंट नहीं है। वो परमात्मा को, खुदा को अपना दोस्त बना लीजिए जिंदगी में, देखिएगा कदम कदम पे वो आपके साथ चलता है कि नहीं। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहें। कोई आपका सम्मान करे या ना करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। देखिए भाई, आज शनिवार है, हनुमान बाबा का दिन है, तो हे अंजनी पुत्र, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आ जाए, दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। कई बार दुख में इंसान परमात्मा को भूल जाता है, इसलिए ऐसी प्रार्थना करें। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है कि नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा टैलेंट है अपने आप को शांत रखना किसी भी परिस्थिति में। हेलो,
4: हाँ दीदी, आपका राठौर परिवार का प्रोग्राम का एक शेर किशन भाई का याद आ गया।
2: अच्छा,
4: रिश्तों की पंखुड़ियाँ,
2: रिश्तों की पंखुड़ियाँ
4: खूबसूरत होती है
2: जी।
4: एक साथ मिल गए तो सुंदर फूल बन जाता है, जो नीचे से सारा और ऊपर से उजाला देता है
2: जी।
4: धन्यवाद दीदी, नमस्कार।
2: नमस्कार भैया, नमस्कार, थैंक यू। चलिए भाई, ये बात गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बतियाएंगे। मैं इंजीनियर के पास आ गई तो

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें, धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।
2: इंसान उसी पर गुस्सा करता है, लड़ता है, टोकता है और रोकता है जिसे वो प्यार करता है, वरना इस मतलबी दुनिया में आप सही करते हो या गलत किसी को का फर्क पड़ता है। बच्चों को सिर्फ सुख नहीं, संस्कार की विरासत भी दें। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। संस्कार भी एक वसीयत है जो दुनिया को बताती है कि हमारे पूर्वजों ने हमें का दिया है। मौत के बाद स्वर्ग मिलेगा, मौत के बाद स्वर्ग मिलेगा, इस उम्मीद से इंसान पूरी जिंदगी बहुत प्रयास करता है। कोई उपवास करता है, कोई दान धर्म करता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, तो कुछ लोग भगवान से मन्नतें मांगते हैं। स्वर्ग जैसे कोई नई हाउसिंग सोसाइटी जैसा लगता है, जहां एक छोटा सा फ्लैट पाने के लिए पुण्य के अंक पॉइंट्स जमा करने पड़ते हैं। लेकिन एक पल ठहर कर ये भी तो सोच लीजिए, का पता शायद हम पहले से ही स्वर्ग में जी रहे हों। सुबह उठते ही एक बार अपने आसपास ध्यान दीजिए, एक बटन दबाओ तो अंधेरा रोशनी में बदल जाता है, दूसरा बटन दबाओ तो पंखा घूमने लगता है, तीसरा बटन दबाओ तो ठंडी हवा पूरे कमरे में भर जाती है, नल खोलो तो पानी बह लगता है, गैस जलाओ तो कुछ ही मिनटों में खाना तैयार, जेब से मोबाइल निकालो तो पूरी दुनिया आपकी हथेली में आ जाती है, हजारों किलोमीटर दूर रहे वाले आपके प्रिय लोग भी कुछ ही सेकंड में आपके सामने दिखाई देते हैं। इतनी सारी अद्भुत सुविधाएं, लेकिन हम इसे बहुत सामान्य समझते हैं। हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे ये सब हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो। अरे भाई, एक बार कल्पना कीजिए, 200 साल पहले का कोई राजा आज आपके घर आए तो शायद वो अपने राजमहल में वापस भी ना जाना चाहे। वो आश्चर्य से पूछेगा, ईका गर्म पानी और ईका ठंडी हवा, ईका है पूरी दुनिया की जानकारी, ईका 10 मिनट में घर आने वाला खाना। तब वो हंसकर कहेगा, मैंने पूरी जिंदगी राज किया, युद्ध जीते, बेहिसाब संपत्ति हासिल की, लेकिन ऐसी सुविधाएं मुझे कभी नहीं मिली। ये बिल्कुल सच है। आज एक आम इंसान भी कई सुविधाओं के मामले में पुराने जमाने के सबसे शक्तिशाली राजाओं से भी ज्यादा अमीर है, फिर भी हम खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि इंसान को जो मिल जाता है उसकी कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। एसी चालू है, आनंद नहीं है, बंद होता है तभी तकलीफ होती है, मोबाइल है आनंद नहीं है, नेटवर्क चला जाए तो लगता है दुनिया ही खत्म हो गई, अपना घर है संतोष नहीं है, पड़ोसी का घर बड़ा है इसका दुख है, अपनी गाड़ी है तृप्ति नहीं है, दूसरे की गाड़ी बड़ी है उसकी चिंता है। यानी इंसान अपने स्वर्ग में खड़ा होकर दूसरे के स्वर्ग से अपनी तुलना करके दुखी होता है। लेकिन इसी पृथ्वी पर एक दूसरी दुनिया भी है। आज भी लाखों लोग एक घड़े पानी के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। लाखों परिवारों के पास पक्का मकान तक नहीं है। दिन में दो वक्त का खाना भी तय नहीं है। बच्चों के सपने स्कूल की चौखट तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं। शरीर ढकने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं हैं। हम जिसे सामान्य समझते हैं वे सुविधाएं ही दूसरों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। हमें एसी का रिमोट ना मिले तो गुस्सा आता है। उन्हें धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव तक नहीं मिलती। हम डाइट चार्ट ढूंढते हैं, वे लोग अगले वक्त का खाना कैसे मिलेगा ये सोचते सोचते सो जाते हैं। तब समझ आता है स्वर्ग और नर्क मौत के बाद मिलने वाली जगह नहीं है, वे यही हैं, इसी पृथ्वी पर, इसी शहर में, इसी सड़क पर। कभी कभी एक ही दीवार की दो तरफ। एक घर का बच्चा अपना नया मोबाइल थोड़ा स्लो होने पर चिड़चिड़ा।

0: नहीं निकल पाते। इंसान की सबसे अजीब आदत ये है कि उसके पास जो नहीं है उसका हिसाब वो रोज करता है, लेकिन उसके पास जो है उसका हिसाब वो कभी नहीं करता। हर रात सोने से पहले बस 5 बातें लिख कर देखिए। पहला, आज मैं सांस ले रहा हूँ, आज मैं सांस ले रहा हूँ। दूसरा, आज मेरे पास पीने के लिए पानी है। तीसरा, आज मुझे खाना मिला। चौथा, आज मेरे पास रहने के लिए एक घर है। पांचवा, आज मेरे अपने मेरे साथ हैं। शायद हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। शायद स्वर्ग कोई जगह नहीं है, वो एक अनुभव है। वैसे नरक भी कोई जगह नहीं है, उस अनुभव को भूल जाना ही नरक है। हमारे पास जो है उसके लिए कृतज्ञ होना ही स्वर्ग है। जो मिला है उसे भूलकर शिकायतों में जीना ही नरक है। मौत के बाद क्या होता है ये कोई पक्के तौर पर नहीं जानता, लेकिन जीते जी हमें ये सुंदर पृथ्वी, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए अन्न, प्यार करने वाले हमारे लोग और एक बटन दबाने से मिलने वाली अनगिनत सुविधाएं मिली हैं। इतना सब होने के बावजूद अगर हम हमेशा दुखी रहें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और का होगा। शायद ईश्वर भी हंसकर कहता होगा, मैंने तुझे स्वर्ग में ही रखा है, लेकिन तू वहां भी शिकायतों का दफ्तर ही खोल कर बैठा है। इसलिए आज से शिकायतें मत कीजिए, कृतज्ञता गिनिए, क्योंकि कृतज्ञता वाले दिल में ही सच्चा स्वर्ग होता है। देखिए भाई, सारा कुछ खेल हमारे सोच का है। अगर सोचे तो इन गहरी बातों को सही में, इसमें बहुत बहुत यह है। हम खुद जब इन बातों को पढ़ रहे थे तो हम कहा कि सही, जिस किसी ने लिखा उसको 1000 से लूट करते हैं, कि सही में आज हमारा जीवन स्वर्ग है। 200 साल पहले बैलगाड़ियों में चलते थे, कुछ मील जाने के लिए कितने दिन लगते थे, आज हजारों किलोमीटर 2 घंटा में हवाई जहाज में पहुंच जाते हैं। और सब चीज साइंस ने कितनी सुखमय कर दी है कि शायद स्वर्ग में भी इतना सुख होगा कि नहीं, अभी ये कम है स्वर्ग से। लेकिन इंसान जो मिल जाता है उसकी वैल्यू नहीं करता है, कीमत नहीं करता है, जो चीज नहीं है उसके पीछे भागते रहता है, दौड़ते रहता है। ईश्वर का शुक्रिया करने के लिए 10 नायाब कारण, 10 कारणों से उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। टायर चलने पर घिसते हैं, लेकिन पैर के तलवे जीवन भर दौड़ने के बाद भी नए जैसे रहते हैं। इसके लिए क्या करिए, परमात्मा जी को शुक्रिया अदा करिए। दूसरी बात, शरीर में 75% ये जो शरीर है हमारा 75% पानी से बना है, 75% पानी शरीर में है। फिर भी लाखों रोम कूपों के बावजूद एक बूंद भी लीक नहीं होता। कितने लाखों हमारे शरीर में छेद है, लेकिन वो पानी एक बूंद भी कहीं से नहीं टपकता। इसके लिए क्या करिए, परमात्मा जी का शुक्रिया अदा करिए। तीसरा, कोई भी वस्तु बिना सहारे नहीं खड़ी रह सकती, लेकिन ये शरीर खुद को संतुलित रखता है। इसके लिए परमात्मा जी को शुक्रिया अदा कीजिए। चौथा, कोई बैटरी बिना चार्जिंग के नहीं चलती, लेकिन हृदय जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना रुके धड़कता है। इसलिए परमात्मा जी का शुक्रिया अदा कीजिए। हेलो,
1: हाँ नमस्ते दीदी, सरद भाई बोलता हूँ, बताना से कैसे हो दीदी?
0: एकदम ठीक है, आप कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे और हमारे सभी साथी मित्र भी साथ अच्छे होंगे
0: जी।
1: और बहुत अच्छी बात बताई दीदी कि हम देखो इतने साल भी हम चलते फिरते रहते, कई सारे हमारे जूते घिस गए हैं, टूट गए हैं, घिस गए हैं
0: जी।
1: हमारा जो पैर है, हाथ है, वही ना वही थे। तो इतनी परमात्मा की कितनी कृपा है, फिर भी हम परमात्मा को याद नहीं करते, परमात्मा का धन्यवाद नहीं मानते। जैसे आपने बताया कि हमारे शरीर में कितना ही पानी है, पानी ही पानी भरा है, लेकिन एक टिंपो भी बाहर नहीं आता है।

0: जी
1: तो यदि तो परमात्मा की कृपा है दीदी, तो बस हम इतनी सुविधा है फिर भी हम जिसका है इसकी कदर नहीं करते, और
0: जो नहीं
1: नहीं
0: है
1: है
0: उसके पीछे
1: इसके पीछे
0: दौड़ते
1: तो हम
0: हैं।
1: भाग रहे हैं, भाग रहे हैं।
0: हाँ
1: कितनी सुविधा है आज हमारे, जैसे आपने कई सारी मतें बताई कि हजारों किलोमीटर दूर है फिर भी हम अभी सामने देख पाते हैं
0: जी
1: और बात भी कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कहीं जाना है तो हम 1 घंटे में कहीं हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं।
0: अरे ज्यादा
1: तो
0: साल नहीं है, 30-40 साल पहले ये मोबाइल नहीं निकला था तो टेलीग्राम आता था, तार आता था कोई भी
1: हाँ
0: बात में,
1: हाँ
0: हमारे सामने
1: बिल्कुल
0: ही सामने की बात है।
1: बिल्कुल सही बात है।
0: हाँ
1: हमारे तो बताता था जब जब पोस्ट कार्ड आता था दो टपाल तार में आते थे ना, तो
0: हाँ
1: 8 दिन के बाद हम
0: पूरा
1: पता
0: गांव
1: लगता था,
0: घबरा
1: 8 दिन
0: जाता
1: बाद हमको
0: था। हाँ
1: जवाब मिलता था। तो
0: कि तार आना
1: यदि
0: मतलब
1: कितनी,
0: किसी की डेथ हुई, ये ज्यादा समझते थे, है
1: हाँ
0: ना।
1: समझते थे। तो ये इतनी सुविधा आज आ गई है कि हम 1 सेकंड में यहाँ हम समाचार देख लेते हैं, सामने वालों
0: जी
1: को भी देख लेते हैं।
0: जी शुक्रिया,
1: तो परमात्मा का शुक्रिया करो, नाम
0: हम
1: लो
0: स्वर्ग
1: व्यक्त
0: में रह
1: रूप
0: रहे हैं अभी
1: बिल्कुल
0: ना।
1: नमस्ते, ओम शांति,
0: ओम
1: ओम
0: शांति।
1: शांति।
0: थैंक यू भैया। तो देखिए भाई, आज हमारे सभी भाई बहन सुन भी रहे हैं और फुनवा भी करके बता रहे हैं, बहुत खुशी होती है। इसलिए तो और नई नई बात सोचते हैं, ढूंढ ढूंढ के लाएं और वो बात हम आपस में शेयर करें। तो कोई भी वस्तु बिना सहारे नहीं खड़ी रह सकती, लेकिन ये शरीर खुद को संतुलित रखता है। ईवी के लिए परमात्मा का धन्यवाद अदा करें। कोई बैटरी बिना चार्जिंग के नहीं चलती, लेकिन हृदय जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना रुके धड़कता है, इसके लिए परमात्मा जी का धन्यवाद अदा करें। कोई पंप हमेशा नहीं चल सकता, लेकिन रक्त पूरे जीवन भर बिना रुके शरीर में बहता रहता है, इसके लिए परमात्मा जी का शुक्रिया अदा करें। छठवीं बात, दुनिया के सबसे महंगे कैमरे भी सीमित हैं, लेकिन आंखें हजारों मेगापिक्सल की गुणवत्ता से हर दृश्य कैद कर सकती है, इसके लिए परमात्मा जी का धन्यवाद अदा करिए। कोई लैब हर स्वाद टेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन जीभ बिना किसी उपकरण के हजारों स्वाद पहचान सकती है, इसके लिए भी परमात्मा जी का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद अदा करें। आठवीं बात, सबसे एडवांस सेंसर भी सीमित होते हैं, लेकिन त्वचा हर हल्की से हल्की संवेदना को महसूस कर सकती है, वो परमात्मा जी का धन्यवाद अदा कीजिए। कोई भी यंत्र हर ध्वनि नहीं निकाल सकता, लेकिन कंठ से हजारों फ्रिक्वेंसी की आवाजें पैदा हो सकती है, इसके लिए भी परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद अदा करें। कोई डिवाइस पूरी तरह ध्वनियों को डिकोड नहीं कर सकती, लेकिन कान हर ध्वनि को समझकर अर्थ निकाल लेते हैं, इसके लिए भी उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। ईश्वर ने हमें जो अमूल्य वस्तुएं दी हैं, उनके लिए उसका आभार मानिए और उससे शिकायत करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हर रोज सुबह हमारा जागना अपने आप में एक चमत्कार है, इसलिए उस सर्वशक्तिवान ईश्वर का धन्यवाद करें। ये तो कुछ बातें, 10 बातें हम सुनाए, लेकिन अगर गिनिएगा तो हजारों बातें ऐसी होगी जिसके लिए हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए, लेकिन हम का करते हैं। फिर वही बात, जो चीज मिल गई उसकी वैल्यू नहीं, जो चीज नहीं है उसके लिए भागते रहते हैं। जब कुछ ना हो तो हमने कहा धैर्य की परीक्षा होती है, जब सब कुछ होता है तो व्यवहार की परीक्षा होती है। जिंदगी में इन बातों को अपनाइए और जीवन को सुखमय बनाए। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। आशा करते हैं आप इन सब बातों पे सुन तो रहे हैं, और हम तो जानते हैं बहुत सारे भाई बहन लोग तो फिर हमको सुनाते भी हैं, काहे कि उनको याद रहता, फिर वो दूसरों को सुनाते हैं, तो ऐसे ही तो अच्छी अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचती है। और यही तो हम सोच कर तो आपको हम सुनाते हैं कि ये बात आप याद कर लें और दूसरों को भी शेयर करें, जिन्होंने ये प्रोग्राम नहीं सुना हो तो उनका भी भला हो जाए। ये अच्छी खाना देंगे तो एक टाइम पेट भर जाएगा, लेकिन अच्छी बात देंगे तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। इसलिए जितनी अच्छी अच्छी बात कर सकते उतनी अच्छी अच्छी बात कर ले, अच्छी बात किसी को सुना दें ताकि उनके जीवन में कोई चेंज आ जाए, और वही चेंज तो इंसान को आगे बढ़ाता। तो भाई टाइम हो गया है और घड़ी कह रही परमा पंडितायन अपनी कथा को अभी यहीं पर विराम दो, तो कल 11 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया जब गाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो तब मेहरबानी करके शौचालय का उपयोग ना करें, जिससे स्टेशन परिसर में गंदगी फैलती है। इसमें रेलवे की सहायता करें।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: राम राम रतन भाई, राम राम।
1: ओहो राम राम भाई कंचन, राम राम। आप भाई आओ, तबियत तो हवे।
0: हाँ तबियत तो आऊ है। और थारे लहर जीव राजी, और थारे लहरिया ने सोण और भी गणे हो गयो बारे हो राजी।
1: बात है ओला दो मारे लेरियो ला दो, आज लेरिया पे लगा दो जालर, लगा दो लूमा चार ला दो।
0: वाह वाह, लगा दो लूमा चार, यानी खाली लेरियो नहीं लानो है बल्कि लूमा भी लगा,
1: लूमा भी लगानी
0: है। वाह वाह, बहुत सुंदर। ज्ञान की अपना गीत है जहाँ संस्कृति और संस्कृति की झलक दिखाई दे।
1: बिल्कुल कंचन। तो गावरी बाता कार्यक्रम में अपना सगला श्रोता बंधु रो स्वागत करा हा। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM,
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो कंचन, तो बिल्कुल सही क्यों है कि अपनी संस्कृति की पहचान गीता माध्यम से केड़ो बढ़िया तरीको हो गए है।
0: बिल्कुल, और अपनी राजस्थान की धरा तो ज्ञान है कि अठे की हर चीज पे एक न एक तो गीत बने हुई है।
1: हाँ, हर चीज पे। वो लेरियो को तो भाई अपने महत्व है भाई, लेरियो तो राजस्थान की पहचान है,
0: अपनी जीवन शैली में एक अंग है।
1: अंग है, जान अपने नहीं कहवा कि भाई उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, या अपने राजस्थान का नाक है। हाँ। राजस्थान का नाक है, वैसे नहीं लेरियो भी अपने राजस्थान के पेरवेश में नाक है।
0: बिल्कुल, लेरियो बंदेज ये सबका ये राजस्थान की शान है। यानी जठे भी बंदेज हो लेरियो दिखाई दे जावे, कोठे भी आपा गएड़ा हो तो पत्तो लागी जावे कि अमुक अमुक व्यक्ति तो राजस्थानी दिखे।
1: हाँ, पैरवेश तो इठा पड़ जावे। और देख कंचन, मतलब खाई बात करा आपा कटी घ्यावा, चलो अपना घावरा महीने तो अपना लोगा की कदर नहीं होवे। बेटी परानंद ससुराल में जावे, पियर को कुत्तो दिखे तो बिना हौला।
0: काई कावत कही है तू भी।
1: तो विदेश या एडी जगह पे चले जावा जटे अपना पियर उन ससुराल खूब दूर है, बटे अपना पियर को या अपना ससुराल को कोई मल जावे तो केड़ो जीव राज्य हो जावे। पेरवेश आप परिचय करवा की कोशिश करा रहे हैं। साड़ी लेंगो पेर रखा या को परिचय कराए तो अपना राजस्थान रहा,
0: अपने राजस्थान का है। बिल्कुल सही कही भाई। और देखो आपने लहरियो और बंदेश की बात खाली अपने राजस्थान में और हिंदुस्तान में ही नहीं हुआ, विदेश में भी मैं कई बार देखूं कि भी आजकल तो कई यूट्यूब और इंस्टाग्राम को जमानो है, मीडिया पे देखूं मैं।
1: हाँ।
0: ये सब राजस्थानी लोग जो बाहर चले गए, नहीं बाहर चार भी मैं देखूं कि कई जना तो लहरियरी साड़ी नहीं पहने, ओढ़नी पहने पूरी पूरी ढाई पटकी वाली।
1: जबकि देख कंचन, ओढ़नी छोड़न साड़ी भी छूट गई, ड्रेसा भी छूट गई, जेंसन एड़ा पेरा लाग गया।
0: सही बात, आपने अठा परिवर्तन आ गया।
1: हाँ।
0: पर वे विदेश में जाकर भी अपनी संस्कृति बारे अच्छी लाग रही है, ये वास्ते वे आज भी उन्हें एक्सप्लोर कर रहा है।
1: देख कंचन, जैसे मुगी विदेश के थूकी चाल विदेश, ठीक है, वो तो पूरा राजस्थानी परिवेश में जीन की तो थाने अतरो नहीं लागी, पर थारे जैसे बहु आई के बच्चे बेटी है जो वटी नहीं बड़ी भी वटीली संस्कृति देखी तो विने राजस्थानी कल्चर घणो हौ लागी।
0: वो बिल्कुल सही बात है।
1: डाले क्यों नहीं लेरियो पहनो, साड़ी पहनो, घर में अच्छो लागे, चनिया चोली पहनो, साड़ी लेंगो पहनो, वाने हौ लागी, क्योंकि आपा तो जी चुक्या,
0: आपा जी चुक्या,
1: आपा ने ठा है कि आपनो पेरवेश का ही है, आपने तो खून में बसोड़ो है, तो वटी ने आपा ने अतरो नहीं लागे पहना, पर अपनी आवा वाली पीढ़ी ने लागे कि नहीं वो वेणो छावे तो कह रही विदेश में अतरो क्रेज है, तो क्रेज हो ही ना भाई, वह संस्कृति देखी नहीं तो वे देखोगो और अपनाओ को घणो शौक रहे,
0: अपनाओ को घणो शौक रहे। और देखे मैं देखिए कि ज्ञान भी कहे कि ई ओढ़नी ने आप सामान्य नहीं मानो।
1: हाँ,
0: जिन्हें आप जान भी इच्छा हो व्या नहीं पहन लेवा,
1: अपने राजस्थान की शान है भाई लेरियो।
0: हाँ? लेरियो शान है, और वो ओढ़वा की तरीका पे बात कर रही है।
1: हाँ,
0: हाँ। ई को अदब है कि भाई हाँ आप ये मत मानो कि मैं सिर पर ओढ़ रखी हूँ तो मैं पर्दा प्रथा ने महत्व दे रही हूँ। अठे पर्दा प्रथा ने महत्व देने वाली बात नहीं है, आ मर्यादा की प्रतीक है, आ संस्कृति की प्रतीक है। और मैं देखूं कि भाई कतरी मोटी बात कही है, तो बोले ओ ओढ़नी नहीं है, जिन्हें इच्छा हो तो थे गले में डाल लो, और इच्छा हो तो चाहे साड़ी की तरह पहन लो। आ एक अटूटे राजस्थानी संस्कृति के रिश्ता ने व्यक्त करवा को माध्यम है।
1: बिल्कुल, तो कंचन पहला थन ठाए केड़ा लेरिया चलता। हाँ, मैंने आज भी याद है क्योंकि मोटी मम्मी दादी सान सब पेरता एक जेड़ो कलर गुलाबी कलर डार्क गुलाबी कलर अनवी का महीने सफेद
0: सफेद लहरिया होता हाँ। ओ बिल्कुल सही कही
1: साड़िया भी एडी चाली लुगड़ा भी एडी चालिया पहले कंचन पॉलिस्टर को ज्यादा चालता पॉलिस्टर सिफोन पॉलिस्टर हाँ यहाँ पे लेरिया वेता
0: अच्छा
1: पहुंचे धीरे धीरे अमेरिकन चालियो
0: अच्छा
1: अमेरिकन की साड़िया पे चालियो ठीक है आज तो आप खरीदो प्योर पे कई अच्छो लागे ले रहे हो प्योर पे जो आज का समय में जो प्योर की साड़ी पे ले रहे हो चाले ना मैं तो कहूँ सब बेस्ट
0: सही बात
1: आप पहना तो ये अपना शरीर के वो कहिए न तो सर के फिसलन नहीं है भी पे प्योर में मैंगो आवे भाई प्योर
0: प्योर मैंगो
1: अपना शरीर लागे का आप कहीं पेन रखे और बिल्कुल लाइट वेट वर्क वाली भी खरीद लो फिर भी सोबर
0: बिल्कुल सही और देखो भाई पहले तो कही है लाल पीला गुलाबी यही रंग होता ज्यादातर
1: और लेरिया में ज्यादा गुलाबी कलर पसंद करता
0: गुलाबी रंग पसंद करता लेकिन अब का ये कि नई जनरेशन के फैशन के वास्ते की भी ठीक है कि सब लोग गुलाबी रंग नहीं नहीं पसंद करे ये वास्ते अभी तो इंग्लिश कलर भी आ गया
1: इंग्लिश कलर मिक्सिंग कलर मस्त मस्त कलर चल
0: हाँ
1: नहीं वास्ते ले जाना पड़े छोरियान लारे के लो भाई था के पसंद कर लो
0: सही बात है
1: क्योंकि पहले तो कटे 100-200 में अच्छो अच्छे ले रहे आ जाता आज 100-200 में तो एक ब्लाउज पीस ही नहीं आवे ब्लाउज पीस का ही 1000-1000 रुपया ब्लाउज का लागे
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: और ले तो 10-10, 12-12 हजार का ले रहा वे
0: बिल्कुल सही है अब तो कही है की समय बदल गयो महंगाई होगी पर अपनी संस्कृति जान की त्यान
1: संस्कृति आज भी अपने जो कल्चर जिंदा है
0: अब देख
1: को है चुंदड़ी को है
0: सही बात है देखे नई नवेली ने आपा वो लहरियों को कतरो क्रेज हुआ नई नवेली के वास्ते
1: हाँ अरे नई नवेली भाई सावन महीनो आवे अदरतियों रखो अब अदरतिया में तो लेरियो रखे
0: लेरियो रखे
1: क्योंकि क्रेज तो है ही है कि भाई हाँ अब त्योहार पैसा भी पहले के दे रहे भाई माँ के तो अदरतियों आई छोरी के लेरियो आई
0: ओ लहरिया की जिक्र बहुत बड़ो हुआ है वो भी देखो है मारी ससुराल से लहरियो आये हो है मारी बेटी को लहरियो आये हो
1: देखो तो सुनीता ये भी अपनी परंपरा देखो पढ़ने जदि पड़ला में चुंदड़ आवे और पचे पढ़ने बाद जो अदरतियो रखे सावन का अदरतिया में आवे लहरियो
0: लहरियो आवे
1: और कणगोर का अदरतिया में आवे मोटड़ो
0: मोटड़ो सही बात
1: मोटड़ो जिन्हें बंदेज भी कहवा तो मतलब कड अच्छी परंपरा है हरेक का नाम है
0: हाँ।
1: और कनी त्योहार पे कई रखनो या ठा है
0: और जब टाबर होवे तो
1: टाबर होवे तो वो तो पियर आवे पीलियो
0: पीलियो
1: हाँ, वो पियर को होवे
0: वो तो पियर को होवे
1: वो ससुराल को नहीं आवे और ससुराल वाला जो अदरत्यो रखे बहू के वो तो बहू के रेवे पाछो घर को घर में आवे बहू का माँ बाप ने तो पाछो अदरत्यो भेजनो पड़े ससुराल में तो सासु ननन का लिए जमाई का लिए सब का लिए कपड़ा लता घणो खर्चो हो जावे
0: घणो ही खर्चो हो जावे भाई और देखो अपनी बेटी ना आपा अच्छा देवे और सास ननन दे वाने आपा हल्का नहीं दे सका अच्छो ही को नहीं लागे अपनी बेटी ने तो पछे भी आपा थोड़ा सोचन दे देवा पर भाई सास को भी बड़ो भारी काम हुआ
1: बिल्कुल सही बात है और भाई आपने बेटी ने तो फिर भी हल्को दे दो
0: वो ही तो
1: सासू नंदा ने अगर आप हाउ नहीं देवो तो पहले तो नाराजी घना वेतन भेज देता अगले जो माँ के तो नहीं छावे
0: और भी आपा भी जाना कि भी मन में कठे ने कठे तो वो भावना आई जावे
1: हाँ।
0: तो ये वास्ते अच्छे से अच्छे देवा की कोशिश करा
1: अरे कंचन पहले तो संयुक्त परिवार वेता माँ बाप को तो गणी टाट पोली वेती
0: सही बात
1: ताकि सबकी रोको परिवार में नानी सास मामी सास वो लगान घर का सब परिवार
0: सब परिवार
1: सासू जी नंदा देरानी जेठानी पाचा हौजी के देरानी जेठानी काक्या सासू जी बढ़िया सासू जी चाचा सासू जी मामिया सासू जी
0: बताओ कतरा हो जातो
1: आगे हुई है कि वो दो साड़ी नहीं छावे कतरी छाई जावे पहले तो संयुक्त परिवार आज तो वही एक

0: बेटों ने एक बेटी, ज्यादा ज्यादा के तो दो बेटा के दो बेटी, ये गाँव होता तो वे भी कोई नहीं।
1: सही बात है।
0: और पहली तो छह छह सात सात बेटा बेटी है, हर एक के मान लो मारो उदाहरण दे, ठीक है मारे पांच भाई, तो मारे पांच ही भाई और पांच ही भाभीया के कपड़ा लाना था क्या, ठीक है
1: और माता जी के
0: बेना, तो मारी बेना के लाना, पचम मारा माँ बाप के लाना, अभी मारा हारा में पांच का क्या हौजी है, दो का क्या हौजी है, तो वाके सबके लाना, पाचा दादिया हौजी है वाके भी लाना, पाचा भुआ हौजी है, मासिया हौजी है, मामिया हौजी है, वाके भी लाना।
1: बोलो कतरो जीणो ले
0: कतरो वे जावे,
1: कतरो जाते
0: मारा पियर को अन खुद का घर को।
1: मैं तो ज्ञान को भी धीरे धीरे थोड़ो सो कम तो हुई हो है,
0: घणो कम हुओ
1: है ना,
0: घणो कम अबे तो घर वाला के रख दे तो मोटी बात है।
1: हाँ और बस अतरो ही होने चाहिए, ठीक है कि जो बिल्कुल नजदीक नजदीक का रिश्ता है वाने अपनी भावना से लाना चाहो तो वो बात दूसरी है, और भी नहीं तो तीसरी चौथी ने पीढ़ी ने ना आपा देवा की बात करे तो भी वो थे, अगर आपकी भावना ही है तो थे खरीदन पे ना दो,
0: बस आप रख दो ना सामने वाला पे, क्यों अतरो डालो,
1: क्यों अतरो डालो,
0: बेटी दीदी वो कोई कम है,
1: बस वही तो।
0: चलो भाई कंचन आप ही थोड़ा भावना में बह गया, आ जाओ एक आचो गीत सुन ला।
1: सही बात है भाई,
0: तो
1: थोड़ा भावना को विषय हो।
0: हाँ तो आप सुन रहे रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM,
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हम लोग, जैसे कि कल हमने मैं ही सफलता हूं इसका दूसरा पार्ट सुना, आज हम लोग सेल्फ जो खुद से बातचीत करने की जो आदत है उसको बनाए रखने के लिए आज का जो विषय है सेल्फ टॉक कैसे करें, खुद से खुद कैसे बात करें, इस विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं। तो आइए एक एक्सपीरियंस आज करेंगे हम लोग, जैसे कि हम टॉक नहीं, आज एक अनुभूति आप करने वाले हैं, क्योंकि एक प्रोसेस है मेडिटेशन का खुद से बात करने का, वो प्रोसेस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए फिर से राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी जी, और मैं चाहूँगा कि आज जो आप विशेष प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयरिंग करने वाले हैं कि खुद से कैसे बातचीत करें। जी,
1: हम पिछले दिनों से बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर ही खुशी है, आनंद है, प्यार है, लेकिन उसको अनुभव कैसे किया जाए। अपने मैसेजेस में हमने कुछ थॉट्स दिए, जब हम उन थॉट्स को करते हैं, थॉट्स क्या हैं, एक शब्दों का समूह है, और हमने ये भी जान लिया है कि शब्द हमारे मन को प्रभावित करते हैं, हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स पॉजिटिव इफेक्ट लाते हैं, खुशी मिलती है, शांति मिलती है, नेगेटिव शब्द बुरा प्रभाव डालते हैं दिमाग के ऊपर भी, शरीर के ऊपर भी। तो एक तो प्रयोग शायद आप लोग कर भी रहे होंगे या कईयों ने किए भी होंगे कि एक विचार के द्वारा हम अपने में उस खुशी का आह्वान करें, शांति का आह्वान करें। लेकिन कई तरह के व्यक्तित्व होते हैं, उनमें एक तरह की विधि काम नहीं करती है, लेकिन दूसरी विधि अपने अंदर उस सफलता, खुशी, आनंद को प्राप्त करने की है, सेल्फ पॉजिटिव टॉक, जिसे हम आत्म सकारात्मक बात भी कहते हैं। तो चलेंगे आज हम आपको स्वयं से स्वयं कैसे बात करना, अपने आप से बात करके अपने अंदर उस खुशी को, आनंद को, शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो केवल और केवल आपके ऊपर ही निर्भर करता है। आइए आज हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक प्रयोग करेंगे। जैसे साइंस के स्टूडेंट होते हैं, उनको थ्योरी बताई जाती है, थ्योरी के बाद वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो थ्योरी तो आप सब लोग जान ही गए हैं कि हम कौन हैं, मेरा वास्तविक अनादि स्वरूप क्या है, अनादि गुण क्या हैं, लेकिन अभी हमें आज उनको अनुभव करना है दूसरी विधि के द्वारा। तो हम चलेंगे इस यात्रा के ऊपर जिसको हम सेल्फ पॉजिटिव टॉक कहते हैं। उसके लिए आप थोड़ा अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। हम जब प्रयोग करते हैं तो उसके लिए कुछ तैयारी करते हैं, तो इसके लिए तो मैं समझता हूँ आपको विशेष तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा अनुभव मैं समझता हूँ शायद ही ज़िंदगी में कभी किसी ने किया होगा। उसके लिए पहले अपने आप को अलर्ट कर लीजिए, अगर मन में कोई आलस आ रहा है या आपको नींद आ रही है तो पानी पी लीजिए, आँखों में छींटे मार लीजिए और कोशिश कीजिए कमर को सीधा रखें। कोई भी काम कर रहे हों तो उस काम को छोड़ करके बैठ जाएँ केवल अगले 10 और 15 मिनटों में, और आप स्वयं एक साइंसदान बनकर स्वयं के ऊपर ही प्रयोग करेंगे। शरीर आपका एक लैब का काम करेगा और आपका मन जो है वो आपका साइंटिस्ट का काम करेगा। तो अपने मन के द्वारा अपने ऊपर आप प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं हम इस प्रयोग की ओर, आगे बढ़ते हैं। हम म्यूज़िक भी चलाएंगे, ये म्यूज़िक आपको मदद करेगा एकाग्रता लाने में, और आप अगर इसे रोज़ सुबह शाम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी कमर को सीधा रखिए, अगर किसी को भी कमर में प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है तो, बल्कि आप लेट के भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने स्वयं से बात करनी है। तो सबसे पहले आप अपने ध्यान को अपने पैरों की ओर लेके आएं। फर्स्ट ऑफ ऑल पे अटेंशन टू योर फीट और ऐसा अनुभव करें कि मेरे पांव बिल्कुल हल्के हो रहे हैं। हल्का छोड़ दें अपने पैरों को।

ये हल्कापन पैरों से होते हुए धीरे धीरे मेरे टांगों के नीचे वाले हिस्से की ओर बढ़ रहा है और मेरे काफ मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, टांगों के नीचे वाला हिस्सा हल्का हो रहा है।

ये हल्कापन टांगों के ऊपर वाले हिस्से की ओर बढ़ रहा है। अनुभव करें दैट माई थाइज आर रिलैक्सिंग। हल्कापन पेट के नीचे वाले हिस्से की ओर बढ़ रहा है। एंड नाउ यू फील दैट माई एब्डोमन इज रिलैक्सिंग। पेट के नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल हल्का हो गया। यह हल्कापन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अनुभव करें दैट माई चेस्ट एरिया, मेरा छाती वाला हिस्सा बिल्कुल हल्का हो गया है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर शोल्डर्स। अनुभव करें कि मेरे गर्दन के मसल्स बिल्कुल हल्के हो गए, रिलैक्स हो गए हैं।

अनुभव करें कि गर्दन के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, फेस मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। ढीला छोड़ दें अपने सारे शरीर को, मेरा सारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। Now you feel that my whole body has completely relaxed. I'm very calm, very quiet, very cool. जैसे हवा बिल्कुल हल्की होती है, ऐसा मेरा शरीर भी हवा की तरह बिल्कुल हल्का हो गया।

मेरे शरीर का कोई भार नहीं, आई एम वेटलेस। अभी अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क के मध्य में एकाग्र करें और देखें अपनी सांसों को। जैसे आप सांस को अंदर ले रहे हैं, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। जैसे ही आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, आपके मन में कोई भी तनाव, चिंता, परेशानी, दुख सांसों के द्वारा बाहर जा रहा है। If there is any tension, pressure in your mind, it's going out as you're

और जैसे ही आप सांस को अंदर ले रहे हैं, आपको गहन शांति की अनुभूति हो रही है। As you are breathing in a cool breeze,

अभी अपने ध्यान को प्रकृति के मध्य में एकाग्र करेंगे. ट्राई टू कंसंट्रेट इन द सेंटर ऑफ योर फोरहेड. देखें अपने आप को मस्तिष्क के मध्य में. मैं एक चमकता हुआ बहुत सुंदर दिव्य सितारा हूं. आई एम ए ब्यूटिफुल डिवाइन शाइनिंग स्टार इन द सेंटर ऑफ माई फोरहेड. जैसे सितारे सबको शांति देते हैं, ऐसे मैं भी एक शांति का सितारा हूं.

कम से कम 30 सेकंड तक इसी संकल्प में रहेंगे, मैं बहुत सुंदर दिव्य शांति का सितारा हूँ। देखें उस सितारे को,

अगर आपका मन कहीं और जा रहा है तो वापस उसे इसी विचार में लेके आए, अपने मन से बात करें, ऐ मन आज तू मेरा दोस्त बन जा, तुझे जीवन में वास्तविकता में जो चाहिए शांति आनंद प्रेम, आज मैं तुझे वो देने वाला हूं, इसलिए तू आज मेरे साथ रह। अगर आपको नींद आ रही है तो आंखों को खोलें और अपने मन को इसी विचार में रमन करें कि मैं बहुत सुंदर दिव्य चमकता हुआ शांति का सितारा।

जैसे ही 10 से लेकर 1 तक काउंट किया जाएगा, 10 से लेकर 1 गिनती की जाएगी, आप अपने अंदर उस गहर शांति में, परम शांति में खो जाएंगे, समा जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 आप अपने अंदर उस गहन शांति में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। 4, 3, 2, and 1 आप खो गए उस गहन शांति में, परम शांति में जो आपके अंदर है, जो कि आप स्वयं खुद हैं। That's what I am, that's what is my reality.

मजाले इस शांति का, एक अजब सी शांति जो जिंदगी में आपने अभी तक कभी अनुभव नहीं की। वाहरे मैं आहा।

अभी ऐसा अनुभव करेंगे एक बहुत बड़ा दिव्य सा सुंदर सितारा आपकी आंखों के बिल्कुल सामने है। जैसे आप एक सितारे हैं, वो भी एक बहुत सुंदर दिव्य सितारा है, बहुत बड़ा सितारा है। उससे सात रंगों की तरंगे निकलकर आप में समा रही हैं। जैसे आप अपने मन की बात अपने दोस्त से करते हैं, अपने संबंधी से करते हैं, अपने माता पिता से, घर वालों से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, ऐसे ही आज हम उस सितारे से अपने मन की बात करेंगे। किसी भी संबंध के साथ जो आपको अच्छा लगता है या अपने जीवन में मिस करते हैं, अगर किसी की मदर नहीं है उसको माँ बनाकर उससे बात करेंगे, किसी का सच्चा दोस्त नहीं है, सच्चा साथी नहीं है, उससे दोस्त बनाकर बात करेंगे। जैसे मैं शांति का सितारा हूं, मेरा दोस्त मेरी माँ, या मेरा बच्चा, जिन माताओं बहनों का कोई बच्चा नहीं है उसको बच्चा बनाकर उससे बात कर सकते हैं। जैसे मैं शांति का सितारा हूं, वो भी शांति का सागर है, उससे मन की बातें करेंगे। ऐसी बात जो जिंदगी में आज तक आपने किसी से भी शेयर नहीं की, किसी को बताया नहीं उसके बारे में, जिसको सोचकर आपके मन में चिंता परेशानी हो जाती, या उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने आपको जिंदगी में बहुत दुख दिया, चिंता दी, परेशान किया, जिसके बारे में सोचते ही आपका मन दुखी हो जाता, परेशान हो जाता। वो कोई भी हो सकता, बचपन से लेके अब तक, घर में आपके माँ बाप, भाई या बहन, आपके रिश्तेदारों में से कोई भी, या स्कूल में टीचर, कॉलेज में प्रोफेसर, आपके पड़ोसी, आपके बिजनेस में आपका बिजनेस पार्टनर, नौकरी पर आपका बॉस, कोई भी हो सकता है। उसके बारे में उस दिव्य सितारे को सब कुछ बता दें। टेक योर ओन टाइम, समय लें कम से कम एक मिनट, अपने मन की बात सब उसको बता दें।

जैसे जैसे आप अपने मन की बात उस सितारे को बताते जा रहे हैं, आपका मन हल्का होता जा रहा है। ऐसा अनुभव करें कि मन से कोई बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा कोई पत्थर पड़ा हुआ था, उतर गया, बोझ उतर गया, बिल्कुल हल्के हो गए आप। और उस सितारे से प्यार की तरंगे निकलकर आप में समा रही हैं। वो सितारा आपको बहुत प्यार कर रहा है, क्योंकि जिससे आप मन की बात करते हैं उसका प्यार हमें नेचुरली मिलता है। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, ऐसे वो सितारा भी मुझे बहुत प्यार कर रहा है। और उसी प्यार के कारण जिस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, तंग किया, परेशान किया, उसको भी दिल से माफ कर देंगे कि उसने जाने अनजाने में मुझे तंग किया। अगर पिताजी ने आपको दुख दिया, मारा बचपन में, तो शायद वो भी मेरा भला ही चाहते थे, अज्ञानवश उन्होंने ऐसा किया। लेकिन मन में उनके ऐसा नहीं था, किसी टीचर ने मेरे को बहुत बुरी तरह मारा तो वो भी अज्ञानवश, क्योंकि वो भी शायद मेरी भलाई ही चाहते थे कि मैं जीवन में अच्छा बनूं। या अगर किसी ने जानबूझकर भी किया तो उसको ये जानकर के जैसे मैं शांति का सितारा हूं, वो भी शांति का सितारा है, उसको दिल से माफ कर देंगे। जैसे ही आपने उसको माफ किया, वो सितारा आपको और प्यार कर रहा है, और उसके प्यार में खो गए आप।

अभी चलेंगे और देखेंगे मेरे पास क्या क्या भौतिक वस्तुएं हैं, मेरे पास क्या क्या मटेरियल गुड्स हैं। मेरा घर है, चाहे अपना है, किराए पर है, एक कमरे का है, दो कमरे का है। मेरे पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाड़ी है, जो भी है। मेरे वस्त्र हैं,

आपने जीवन में कभी अनुभव नहीं की, उसका मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर में खुशी का संचार हो रहा है। वाह रे मैं ही शांति हूं, मैं ही प्रेम हूं। खुशी मेरा निज गुण है

मेरे पास सब वस्तुएं प्राप्त हैं जो मुझे जीवन जीने के लिए चाहिए। मेरे जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, क्लास फेलोज हैं, मेरे टीचर्स, वर्क प्लेस पे मेरे साथी सब अच्छे हैं। जैसे मैं शांति का सितारा हूं, ऐसे सभी शांति के सितारे हैं। जैसे ही आपने ये संकल्प किया, आप में खुशी और बढ़ गई। मैं स्वयं से संतुष्ट हूं, सफल हूं। ये मैं हूं, ये मेरा असली रूप है, ये मेरे गुण हैं।

रोज अगर हम शाम को 10 से 15 मिनट और सुबह जब हमें समय मिले स्नान के बाद या उठते ही आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास के द्वारा अपने आप में शांति, प्यार और खुशी का अनुभव कर सकते हैं।

ओम शांति ओम शांति। धीरे धीरे अभी अपने पाँव की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। अगर आपकी आंखें बंद है तो आंखों को खोलेंगे और सारा दिन इसी याद में, इसी स्मृति से काम करेंगे। कि मैं शांति का सितारा हूँ, प्यार का सितारा हूँ, खुशी का सितारा हूँ। और इस प्रयोग को सारा दिन करते रहेंगे और जो अनुभव होगा उसको डायरी पे लिखेंगे। थैंक यू। ओम शांति।

नमस्कार। चलिए, आशा करूंगा कि आप सभी को बड़ा ही अच्छा लगा होगा इस यात्रा में। खुद से कैसे बात करें और खुद की यात्रा कैसे करें, ये सारी बातें आपको प्रैक्टिकली राजेश जी ने करके बताया। तो इसका अब रोज आप प्रैक्टिस करें, सुबह या शाम जैसा भी आपको टाइम मिलता है, और देखिए 21 दिन में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। प्रयोग करते रहें और अनुभव करते रहें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते।

0: पता है मुझे गेम्स बहुत पसंद है।
1: हाँ मुझे भी बहुत पसंद है। शिक्षा तुम्हें पसंद है गेम्स?
2: हाँ मुझे भी गेम्स पसंद है।
0: तुम्हें कौन से गेम्स पसंद है? मुझे तो फुटबॉल और क्रिकेट ज्यादा अच्छे लगते हैं।
1: मुझे तो सारे गेम्स अच्छे लगते हैं, कुछ भी खेलने के लिए दे दो। ओके, तो यहाँ पे लग रहा है खेल कूद की सिर्फ बातें हो रही हैं, पर गर्मी की छुट्टियों में तो असल में बाहर जाके खेला जाता है। क्या बातें हो रही हैं भाई?
0: गेम्स के बारे में बातें हो रही हैं।
1: गेम्स गेम्स किसको नहीं पसंद? ऐसा कोई है क्या जिसको नहीं पसंद होगा?
0: पता नहीं, हो भी सकते हैं।
1: हो सकता है। वैसे जब बड़े हो जाते हैं ना तो सच में ऐसा लगता है कि काश बच्चे होते और सारे गेम्स खेल सकते। तो चलिए एक काम करते हैं, बच्चों की दुनिया में आज गेम्स के ऊपर ही बातें करते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जो आप लोग गेम्स खेलते हैं उनको। तो स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। और हमारे साथ आज कौन कौन है बच्चों की दुनिया में?
0: मेरा नाम राघव है, मैं 6th क्लास में हूँ।
2: मेरा नाम शिक्षा है, मैं 10th क्लास में हूँ।
3: मेरा नाम शिवांशी है, मैं क्लास 10th में हूँ।
1: ओके, तो आप लोग को कौन कौन से गेम्स खेलना बहुत बहुत पसंद है?
0: मुझे तो सब गेम्स अच्छे लगते हैं, पर उनमें से मुझे सबसे ज्यादा क्रिकेट और फुटबॉल ही अच्छा लगता है।
1: क्रिकेट और फुटबॉल अच्छा लगता है? ओके, और शिवांशी को?
3: दीदी मुझे हाइड एंड सीक और क्रिकेट।
1: ओके,
2: मुझे खो खो, क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह ये सारे गेम अच्छे लगते हैं।
1: हाँ खो खो भी अच्छा लगता है, और शिवांशी को तो भाई हाइड एंड सीक भी अच्छा लगता है। राघव को नहीं अच्छा लगता हाइड एंड सीक?
0: लगता है,
1: थोड़ा कम अच्छा लगता है।
0: नहीं अच्छा लगता है मेरे को।
1: छुपना अच्छा लगता है कि पकड़ना अच्छा लगता है?
0: छुपना।
1: नई नई जगह ढूंढ लेते हो क्या छुपने की?
0: दीदी
3: हाइड एंड सीक खेलने का तो मुझे रात को ही आता है, रात को जब सारी गली की लाइटें बंद होती है और छुपे होते हैं।
1: रात को खेलते हो आप लोग?
3: हाँ जी रात को ही खेलते हैं, दिन में हम नहीं खेलते। रात को खेलने में जो मजा आता है ना वो तो बस कोई मिलता ही नहीं है।
1: ढूंढना बड़ा मुश्किल हो जाता होगा।
3: 1-2 घंटे तक ऐसे ढाई चलती रहती है। हाँ
1: 1-2 घंटे तक?
3: हाँ जी कोई मिलता ही नहीं जल्दी, पता नहीं कहाँ कहाँ छुपते हैं।
0: कभी कभी तो 1 घंटे की ढाई के बाद ढप्पा हो जाता है, तो उसको वापस 1-2 घंटे की ढाई देनी पड़ती है।
1: हाँ फिर से वापस से करना पड़ता होगा। लेकिन अंधेरे में ऐसे कहाँ छुप जाते हो? के लिए डर नहीं लगता छुपने में?
0: नहीं डर नहीं लगता,
1: बिल्कुल नहीं लगता। ओके
3: दीदी घर पे चाहे अंधेरे से डर लग जाए पर खेलने के टाइम पे कभी नहीं लगता।
1: खेलने के टाइम नहीं लगता अंधेरे में डर?
3: खेलने के टाइम पे तो बस छुपना है, बस नहीं किसी को
1: पकड़ ना पाए।
3: हाँ
1: कहाँ है सीक्रेट प्लेसेस आप लोगों की छुपने की?
3: दीदी बता देंगे तो फिर छुपेंगे कहाँ पे?
1: हाँ ये बात भी सही है, लेकिन संभल के छिपा करो, किसी ऐसी जगह नहीं जाना जहाँ पे कोई ना हो एकदम।
0: दीदी हमारी सब जगह ही सेफ होती है।
1: ये अच्छी बात है, सेफ्टी के साथ खेलना चाहिए ना कोई भी गेम। और शिक्षा खेलती है हाइड एंड सीक की नहीं?
2: हाँ खेलते हैं। हम सब बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, फिर हम जब छुपते हैं ना सब लोग पकड़ में आ जाते हैं, बस मैं नहीं मिलती।
1: अच्छा?
2: हाँ क्योंकि मैं पतली हूँ तो मैं ना किसी भी चीज के बगल में जाके खड़ी हो जाती हूँ, वहाँ पे अंधेरा होता है और मैं ना बैठ जाती हूँ, वहाँ पे दिखाई नहीं देती किसी को।
1: तो आपको ढूंढ नहीं पाते?
2: नहीं ढूंढ पाते। तो मुझे तो मजा आता है क्योंकि है ना कोई मुझे ढूंढ नहीं पाता, तो मुझे तो हाइड एंड सीक पसंद है बहुत।
1: हाइड एंड सीक तो हमने भी बहुत खेला है, बहुत खेलते थे हमेशा, कहीं ना कहीं छुप जाओ फिर ढूंढते रहो। और ये तो ऐसा गेम है ना कि 3-4 लोगों में खेल सकते हो, ज्यादा लोगों में भी खेल सकते हैं, है ना? आप लोग कौन कौन खेलता है हाइड एंड सीक जब खेलते हो तब?
0: मैं भी खेलता हूँ।
1: और किस किस के साथ खेलते हो आप?
0: मैं अपने दोस्तों के साथ खेलता हूँ।
1: अच्छा, और आप लोग?
3: हम तो दीदी गली के सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं, छोटे बड़े जो भी मतलब खेलना चाहे। जब पहली बारी आ जाती है ना हाइड एंड सीक की बारी देने की, तब तो बुरा लगता है कि हाँ नहीं खेलना चाहिए था, पहली बारी आ गई है।
1: और कैसे सिलेक्ट करते हो कि कौन किसकी आएगी पहली बारी?
3: पूछते हैं।
1: हाँ ओके, मतलब हम भी यही करते थे, अभी भी यही होता है। और कौन कौन से गर्मी की छुट्टियों में कौन से गेम्स खेलते हो? कोई ऐसे गेम्स है?
2: आइस वाटर।
1: आइस वाटर खेलते हो?
2: हाँ सब बच्चे छोटे छोटे इकट्ठे कर लेते हैं।
1: हाँ?
2: जो भाग नहीं पाते उनको भी इकट्ठा कर लेते हैं। वो बैठ के ताली बजाते हैं कि ये वाली दीदी जीतेंगी।
1: अच्छा?
2: हम रेस लगाते हैं जब गली शांत हो जाती है ना, गाड़ी नहीं चलती, हम सब बच्चे रेस लगाते हैं।
1: अच्छा?
2: हाँ।
1: अरे वाह, रेस लगाना भी अच्छा है वैसे तो। और बर्फ पानी या आइस वाटर खेलते हो आप लोग?
0: हाँ खेलते हैं
3: दीदी। हमारे तो लोहा लक्कड़ भी खेलते हैं गेम।
1: लोहा लकड़ी क्या होता है
3: दीदी? इसमें ना गली में ना मतलब लोहा या लकड़ी को हाथ लगाना होता है।
1: okay.
3: और किसी के घर का नाम बोलते हैं कि हाँ मतलब मेरे घर को जाके टच करके आओ, और जब कोई लोहा या लकड़ी को छोड़ देगा तब उसको पकड़ना है, अगर उसको पकड़ लिया तो वो ढाई देगा, नहीं तो जब सारे बच्चे उधर पहुंच जाएंगे फिर मैं दूसरा घर बताऊंगी, ऐसे ऐसे जब अगर वो बीच में से जंजीर भी बना सकते हैं,
0: अगर वो अगर अपा उसको पकड़ रहे होंगे तो अगर अपा उसको पकड़ रहे होंगे तो ना अगर अपा लोहे को हाथ लगा लेंगे या फिर लकड़ी को हाथ लगा लेंगे तो वो हमें ढाई नहीं कर सकता।
1: अच्छा तो ये बात है, तो पकड़ के रखना पड़ता है।
3: हाँ जी, लोहा या लकड़ी को ऐसे पकड़ के रखना पड़ता है।
1: ओके
0: दीदी हम तो ऐसे करते हैं, मैं तो पकड़ता ही नहीं, वो किसी और को पकड़ने में बिजी होता है, इतना मैं भाग के पकड़ के आ जाता हूँ।
1: ओके अच्छा जल्दी जल्दी भागते हो आप। और जब पकड़ना होता है तब पकड़ लेते हो?
0: हाँ पकड़ लेता हूँ।
1: आप लोगों ने वो खेला है टिप्पी टिप्पी टॉप खेला है क्या, व्हाट कलर यू वांट?
0: हाँ
3: हमारे उधर बोलते हैं कटी पतंग तेरा कौन सा रंग,
1: कटी पतंग तेरा कौन सा रंग।
3: हाँ
1: तो फिर क्या बोलते हैं उसके बाद?
3: मैं ना ऐसे जो मतलब जो
0: कलर
3: जिनमें ढाई नहीं होती ना वो बोलते कटी पतंग तेरा कौन सा रंग, जो ढाई दे रहा होता है ना वो कलर बताता है, फिर उस कलर को टच करना होता है, अगर कोई टच नहीं कर पाता तो उसको पकड़ते हैं।
1: हाँ ये वाला गेम तो हम भी बहुत खेलते थे, लाल बोला तो लाल ढूंढ के ही लाना है कहीं से भी, और जल्दी जल्दी भागो।
0: दीदी अगर किसी के एक टी शर्ट में लाल रंग हो तो हम तो उसको पकड़ लेते थे,
1: हर कोई उसे कहीं पकड़ लेगा ना।
3: कई बार तो वो गिर भी जाता था।
1: इतने सारे बच्चे एकदम से पकड़ेंगे।
2: और हम जब खेलते हैं ना अगर मेरे पास वो कलर होता है तो मैं तो भगती हूँ, क्योंकि मेरे पास है।
1: हाँ।
2: अब मैं भगती हूँ, सब मेरे पीछे भगते हैं मुझे पकड़ने के लिए।
1: हाँ तो उनको डिफिकल्ट हो जाता है वो कलर फिर पकड़ना, ना कोई तो पकड़ा जाएगा। हाँ।
3: कलर भी ऐसा बोलना पड़ता जो पूरी गली में बहुत मुश्किल से मिलेगी।
1: अच्छा ऐसा कौन सा कलर होता है?
3: वो तो ग्रे कलर होता है सबसे ज्यादा,
1: ग्रे मुश्किल होता है ढूंढना। आपको आसान लगता है ग्रे? हाँ तो फिर राघव की टी शर्ट में होता है तब तो आप अपनी टी शर्ट को पकड़ सकते हो, है ना? आज वाली टी शर्ट में ढूंढ रहे हो आप, आज तो पर्पल कलर की है।
3: दीदी हम तो भूतों वाले भी गेम खेलते हैं।
1: अच्छा ये कौन सा गेम है?
3: एक तो है पीपल के पेड़ की भूतनी।
1: अच्छा
3: नलके वाली भूतनी, एक अंडा। हाँ। भूत।
1: अच्छा ठीक है, ये क्या होता है इसमें, करते क्या?
3: अंडा भूत ऐसे है कि एक तो कोई पहले टीवी दीदी उस गेम में ना जिस मतलब जिसमें ढाई होती है ना वो पहले न्यू मतलब रिपोर्टर बनता है, वो बताता है कि आपके शहर में अंडा भूत घूम रहा है, तो रात को अपने सारे खिड़की दरवाजे बंद करके रखना, सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस बंद करके रखना।
1: ओके
3: फिर उसके बाद घर की लाइट चली जाती है और टीवी चलता रहता है, आज रात को 12 बजे अंडा भूत आएगा, ये लाइन बार बार रिपीट होती है।
1: अच्छा।
3: फिर उसके बाद थोड़ी एक्टिंग करनी होती है, फिर टीवी का जो प्लग होता है उसको उतार देते हैं।
1: अच्छा
3: उसके बाद पहले दूध वाला आता है, फिर दूध वाला आता है तो कहते मतलब बाहर तो भूत होता है पर अब अंदर वाले कहते कौन है, फिर बाहर वाले कहते दूध वाला, फिर ऐसे दूध दे के चला जाता है, फिर आता है सब्जी वाला, फिर तीसरी बार किसी का दोस्त बन के आता है, तो दोस्त बन के आता है तो वो गेट खोलते तो सारे एक मतलब अंडा भूत सबका नाम पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, वो सारे अपना गलत नाम बताते हैं, पर जब सारे लोग उससे पूछते ना वो कहते अंडा भूत, फिर सारे भाग जाते तो किसी को पकड़ना होता है, फिर वो बनता है।
1: अच्छा मतलब किसी को भी भूत बना सकते हो जिसको पकड़ा।
3: हाँ जी।
1: ओके तो ये कौन कौन खेलता है गेम? राघव खेलते हैं? और ये क्या घर में खेलते हो गए? तो?
3: नहीं गली में बाहर।
1: अच्छा गली में खेलते हो।
3: नलके वाली भूतनी भी है, उसमें एक बच्चा है वो नरका बनता है।
1: अच्छा
3: एक चलाता है और सारे पानी पीते हैं, फिर जो नरका चला रहा होता है वो लास्ट में पानी पीता है, और जब वो पानी पीता है वो कहता है ये तो खून है, फिर सारे भागते हैं, फिर उनमें से कोई भूत बनता है।
1: अच्छा तो भूत कौन बनता है जो पकड़ा जाता है?
3: हाँ।
1: ओके बाप रे इतने खतरनाक खतरनाक गेम्स कहाँ से ढूंढ के लाए हो तुम लोग?
0: दीदी खुद इन्वेंट किया है।
1: खुद इन्वेंट किए हुए गेम्स?
3: नहीं पहले से प्रथा चलती आ रही है।
1: प्रथा चलती आ रही है? बाप रे ये वाली तो मैंने नहीं सुनी।
3: कभी आप भी हमारे साथ खेलना।
1: अरे बाप रे भूत बनना पड़ेगा फिर तो। अच्छा ओके तो आप लोग के पास तो बड़े सारे गेम्स है, तो फिर सारे तो आउटडोर गेम्स है, फिर क्या घर के अंदर भी खेलते हो आप लोग?
3: हाँ जी दीदी घर के अंदर भी खेलते हैं।
1: क्या खेलते हो घर के अंदर?
0: दीदी 13-in-1 गेम है हमारे पास, उसमें ही सब खेल लेते हैं।
1: वो क्या होता है 13-in-1?
0: मतलब एक उसमें 13 गेम्स होते हैं, इन वन बॉक्स में होते हैं, वो मैग्नेटिक होते हैं, मतलब नॉर्मल से जैसे लूडो होती है वैसे।
1: अच्छा लूडो होता है मतलब उसमें?
0: लूडो होता है अलग, सांप सीढ़ी होती है, सब मतलब 13 अलग अलग गेम्स होते हैं।
1: ओके
3: कई बार घर पे बैठ के बिजनेस खेलते हैं। बिजनेस हो गया और आउटडोर गेम्स भी घर के अंदर खेलते हैं, कभी पकड़म पकड़ाई भी खेलते हैं, कभी सोफे के ऊपर चढ़ गए, कभी बेड के ऊपर चढ़ गए,
1: डांटनी पड़ती है फिर सोफे के ऊपर चढ़,
3: वो तो लड़ाई लड़ाई में होती है ना पकड़म पकड़ाई तो.
1: अच्छा लड़ाई लड़ाई में गेम हो जाता है.
3: हाँ जी
2: दीदी ये बीच में गंदा सा गाना गाने लग जाती है ऐसे हिम शम शाह शहनशाह, फिर मुझे पकड़ना आती है.
3: दीदी थोड़ा गेम का मूड बनाने के लिए करना पड़ता है.
1: सही बात है ना, म्यूजिक से गेम और अच्छा हो जाता नहीं लगा.
3: और फनी म्यूजिक की तो बात ही अलग है.
1: हाँ फनी म्यूजिक की तो बात ही अलग है, तो फिर आपको हंसाने के लिए करती है वो. देखो
3: कितना ध्यान रखती हूँ मैं,
1: कितना ध्यान रखती हूँ. तो आप लोग लूडो और सांप सीढ़ी वगैरह भी खेलते हो अभी?
3: हाँ जी.
1: आप लोगों ने वो खेला है क्या गिट्टियों से जो खेला जाता है, उसमें छोटे छोटे पत्थर होते हैं उसे उछालना होता है फिर हाथ पे पकड़ना होता है, वो खेला है कभी?
3: नहीं स्टेपू में खेला है.
1: नहीं कंचे नहीं होते, छोटे छोटे पत्थर होते हैं और उसको उछालना होता है फिर हथेली से. नहीं हाँ कौड़िया होती है, कौड़िया भी छोटे छोटे पत्थर होते हैं एक्चुअली, वो उछालना होता है फिर आपको. हाँ मतलब एक बार में चार पकड़ने हैं, कभी सात पकड़ने हैं, ऊपर उछाल के फिर हाथ से पकड़ने होते हैं. वो आप लोगों ने नहीं खेला होगा ना शायद.
3: खेला है स्टेपू में, खेला है स्टेपू में जब होता है ना चार खाने वाला स्टेपू, उसमें खुद का घर बनाने के लिए कभी हाथ में पत्थर लेके चलना होता है, कभी उल्टे हाथ पे कभी सिर पे ऐसे. उसमें
1: वो पिट्टू फोड़ की बात कर रहे हो क्या?
3: नहीं स्टेपू.
1: उसमें क्या होता है?
3: मतलब पहले तो नॉर्मली चल रहा होता है कि पहले लंगड़ी टांग चलना है, फिर डिस्को चलना है, फिर कृष्णा चल रहा है, फिर खुले पैर, फिर ये सब होने के बाद फिर जब घर बनने की बारी आती है ना, जब सारा कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद सात खेल होते हैं उसमें.
1: अच्छा
3: मुंह बंद करके लंगड़ी लंगड़ी पैर से हार, कभी सीधे हाथ में पत्थर रख के, मतलब एक भी पत्थर नीचे नहीं गिरना चाहिए, पत्थर रख के फिर उल्टे हाथ पे, फिर मतलब कोनी के बीच में, कभी सिर पे कभी कंधे पे ऐसे रख के चलना होता है.
1: ओके तो बहुत सारे गेम्स हैं आप लोगों के पास खेलने के लिए.
3: हाँ जी
1: तो फिर वीडियो गेम्स खेलने का तो फिर टाइम ही नहीं मिलता होगा, इतने सारे तो अच्छे अच्छे गेम्स हैं आपके पास.
3: दीदी क्यों वीडियो गेम्स आके खराब करने, बाहर ही खेलते हैं हम तो,
1: है ना, बाहर खेलने में ज्यादा मजा आता है. क्या कहते हो राघव?
0: बाहर खेलने में ज्यादा मजा आता है.
1: तो फिर आप नहीं खेलते वीडियो गेम्स?
0: खेलता हूँ कभी कभी.
1: क्या खेलते हो उसमें गेम्स, क्या क्या खेलते हो कुछ बताओ?
3: माइनक्राफ्ट खेलता है, रोब्लॉक्स खेलता है, ब्लॉक्स फ्रूट खेलता है.
1: और क्या खेलते हो? तो बस राघव को पसंद है वीडियो गेम्स खेलना अकेले.

0: खेलते हो कि साथ में खेलते हो किसी के?
1: मेरे भाई के साथ खेलता हूँ।
0: ओके, हाँ शिक्षा?
2: मुझे भी वीडियो गेम्स पसंद है। मैं भी खेलती हूँ, जैसे कि जब घर में कोई होता नहीं है, छोटे भाई लोग हैं उनके साथ खेलती हूँ। वो अगर चले जाते हैं अपने दोस्तों के साथ खेलने, तो वीडियो गेम ही खेलती हूँ।
0: अच्छा,
2: हाँ। बाकी घर पे जैसे कि हैं भाई लोग हैं सब लोग, बहन वगैरह, तो हम लूडो, चेस, सांप सीढ़ी ये सब खेलते हैं घर के अंदर।
3: शिवांशी भी खेलती है, वो ऐसे ही बोल रही है। दीदी वो मेरे साथ सब खेलती है, माइनक्राफ्ट, लूडो।
4: दीदी वो पहले खेलती थी,
3: दीदी अब भी खेलती है,
0: अभी इतना मजा नहीं आता।
4: फोन पहले तो मैं पूरा टाइम ऐसे फोन में ही खेलती थी, इतना बाहर खेलने में मजा नहीं आता था। फिर अब मेरी पहले जितनी भी फोन में गेम्स थी ना, सारी डिलीट करती अब तो।
0: अच्छा,
4: अब बस बाहर ही खेलते हैं।
0: बाहर खेलने में वैसे ज्यादा मजा तो आता है।
2: हाँ।
0: है ना?
4: फोन में बैठे बैठे ना ऐसे लगते कि एक तो आंखें खराब हो जाएंगी, और अकेले खेल रहे, अकेले खेलने में क्या मजा।
0: हाँ ये तो है, खेलना तो सबके साथ अच्छा लगता है, है ना?
2: हाँ।
3: अकेले नहीं खेलता।
0: अकेले नहीं खेलते?
3: दीदी मल्टीप्लेयर होता है।
0: मल्टीप्लेयर होता है तो किसके साथ खेलते हो फिर?
4: दीदी खेलता तो सिंगल प्लेयर है, बट ऑनलाइन अपने भाई के साथ खेलता।
0: अच्छा, ऑनलाइन खेलते हो। तो उसमें क्या करना होता है? आजकल तो बड़े सारे गेम्स आ गए हैं।
3: दीदी मैं तो कोई भी रैंडम सी गेम खेल लेता हूँ, जब मेरा कोई मतलब जो मैं रोज खेलता वो खेलने का मन नहीं होता। तो
0: रैंडम गेम मतलब कैसी रैंडम गेम?
3: मतलब कोई भी ऐसे
4: रैंडमली कोई भी आंख बंद करके चूज कर ली।
0: अच्छा ओके। कोई फेवरेट गेम है आपकी?
3: हाँ है।
0: कौन सी?
3: छुपन छुपाई।
0: और वीडियो गेम में?
3: माइनक्राफ्ट और रोब्लॉक्स।
0: उसमें क्या होता है?
4: बस चीजों को माइन करना होता है और क्राफ्ट करना होता है।
3: दीदी झूठ बोल रही है, उसमें बहुत सारी ग्राइंडिंग होती है, मुझे इसीलिए ग्राइंडिंग गेम्स अच्छी लगती है, मैं इसीलिए वो खेलता, वरना मैं वो भी नहीं खेलता।
0: चलो, मतलब आपको अपने माइंड को यूज करना अच्छा लगता है। अच्छा, घर वालों के साथ कौन कौन गेम्स खेलता है?
3: दीदी मैं खेलता हूँ।
4: दीदी मैं भी खेलती हूँ।
2: मैं भी खेलती हूँ।
0: क्या खेलते हो घर वालों के साथ?
3: मैं कभी कभी लूडो खेलता हूँ, कभी चेस खेलता हूँ।
0: अरे वाह, चेस भी खेलना आता है, वेरी गुड। और आप लोग क्या खेलते हो?
2: हम तो मम्मी जब फ्री होती है ना, काम करके बैठ जाती है, तो मम्मी वैसे तो नहीं खेलती, मम्मी को बड़ी मुश्किल से मनाते हैं, मम्मी प्लीज आप खेलो, आप कभी खेलते नहीं हो। फिर मम्मी के साथ सांप सीढ़ी वगैरह, मम्मी यही गेम खेलते हैं, तो यही खेलते हैं उनके साथ। या फिर वो 16 पर्ची होते हैं ना।
0: 16 पर्ची, वो क्या होता है?
2: हाँ, 16 पर्ची में ऐसा होता है कि ना उसमें 16 पर्ची बनानी होती है, चार चार पर्ची सेम होती है।
0: ओके।
2: और उन पर्चियों को बंद करके हम एक साथ मिक्स कर देते हैं, फिर उनको हम नीचे रख देते हैं। कोई चार लोग होते हैं, चार लोग उनमें से चार पर्ची उठाते हैं, अलग अलग आती है, फिर अलग अलग पर्ची को दिखाते नहीं है, हम दूसरे को पास करेंगे, दूसरा दूसरे को पास करेगा, ऐसे करते करते जिसकी भी चार सेम हो जाती है वो बोल देता है 16 पर्ची थप। उसके फिर जितने नंबर की पर्ची होती है, पर्ची पर जैसे कि 500 लिखे हैं, तो वो उतने मार्क्स हो जाते हैं उसके, जिसके अच्छा। सबसे ज्यादा होता है वो गेम जीत जाता है।
0: ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। और ये
2: ऐसे चोर पर्ची,
3: उसमें राम लक्ष्मण सीता ऐसे
0: लिख देते हैं नाम अलग अलग, है ना? और एक जैसे चाहिए चारों पर्चियाँ।
4: हाँ। राम आए तो 1000, सीता आए तो 900।
0: अच्छा, ऐसे नंबर दे दिए जाते हैं। ओके, ये तो बड़ा मजेदार है, इसमें तो कोई चीज भी नहीं चाहिए, बैठे बैठे खेल भी सकते हैं।
2: ऐसे घर पे जब मम्मी चिल्लाती है तो हम जैसे कि चार ही लोग होते हैं, कुछ खेलना नहीं है, जैसे 16 पर्ची खेलने का मन नहीं, तो उसी के जैसे चोर पर्ची खेल लेते हैं। उसमें भी चार पर्ची होती है सिर्फ, एक पे चोर सिपाही, एक पे राजा, एक पे मंत्री लिखा होता है। चोर के 0 नंबर होते हैं, राजा के 1000 होते हैं, ऐसे नंबर होते हैं,
0: चोर को ढूंढना होता है ना इसमें।
2: हाँ, फिर उसमें 4 पर्ची होती है, कोई भी एक उठा लेता है। जो राजा होता है वो बोलता है, राजा पूछता है कहना मंत्री कौन है, मंत्री बोलता है जी सरकार मैं हूँ, फिर बोलता है चोर सिपाही का पता लगाओ, फिर वो अंदाजे से बोलता है कि ये चोर है। अगर वो चोर होता है तो है ना उसको मंत्री को नंबर मिलते हैं और सिपाही बच जाता है। ऐसी उसमें
3: रानी होती है तो
4: अगर उसने सिपाही को बोल दिया कि वो चोर है तो सिपाही के तो 700 ही लगेंगे, पर मंत्री के 0 लग जाएंगे।
0: ये वाला गेम तो कितना पुराना है पता है, राजा वजीर चोर सिपाही, ये गेम तो मतलब हम भी खेलते थे, हमारे मम्मी पापा भी खेलते थे उनके बचपन में,
4: अकबर बीरबल के जमाने का,
0: बहुत बहुत समय से चला रहे ये गेम।
4: दीदी हम तो कप प्लेट ताजमहल भी खेलते हैं।
0: कप प्लेट ताजमहल,
4: ये क्या होता है? ऐसा ही होता है, बस पेयर्स बनाने होते हैं।
0: अच्छा, इसमें पेयर्स बनाते हैं,
4: बस इसमें 3 लोग चाहिए।
0: अच्छा,
4: ये तीन लोग हैं फिर उनमें से उठाएंगे एक पर्ची तो एक का पेयर तो नीचे रहेगा जिसका पेयर बनेगा उनको मार्क्स मिलेंगे.
0: ओके तो आप लोगों के पास बड़ी इंटरेस्टिंग गेम्स है.
4: एट प्रेजेंट तो अभी मम्मी और के साथ तो लूडो खेलते हैं पर जब कोविड आया था ना उस टाइम पूरे दिन हम ऐसे खेलते थे सारे घर पे ही थे किसी को कोई काम नहीं था. रात को खाना खाने के बाद लूडो खेलते थे फिर हम पर्चियां बनाते तो उस टाइम ज्यादा लोग होते थे ना तो कप प्लेट ताजमहल झाड़ू पोछा थप्पड़ मुका सारे ऐसे ऐड करके फिर उसको खेलते थे.
0: ओके
4: फिर रात को 12-1 बजे तक सोते थे फिर आराम से
0: खेल के
4: तो फिर सुबह उठ के वापस कैरम कभी लूडो.
0: हाँ कैरम खेलने में बड़ा मजा आता है ना. है ना निशाना लगाना होता है किसका निशाना अच्छा लगता है.
4: दीदी कभी कभी ना मतलब जो रानी की गीटी होती है ना चली गई होती है बट जो उसके बाद वाली गीटी जो जानी होती है वो कभी नहीं जाती.
0: हाँ ये बड़ा मुश्किल होता है क्वीन लेने के बाद जो कवर लेना होता है ना उसका वो ना जाए तो बड़ा बुरा लगता है.
3: दीदी वो बहुत आसान होता है.
0: आसान होता है आपको आसान लगता है.
4: दीदी इसका तुक्का भिड़ता है ना हमारी तो पूरी पॉइंट पे पड़ी होती है ना तो भी नहीं जाती हमारी तो.
3: दीदी तुक्का नहीं मिलता अगर इधर गिटी है और अप्पा को उधर मारनी है तो इसके सीधा कोने में मारनी चाहिए तो वो उधर सीधा होल में जाएगी.
0: निशाना लगाना आता है आपको. अरे वाह तो उसमें तो कैरम में भी मजा आता है लूडो में भी मजा आता है बड़े सारे गेम्स है मतलब जो घर के अंदर भी खेले जा सकते हैं विदाउट फोन. आप लोगों ने आज तो इतने सारे गेम्स बता दिए अब मन करने लगा है कि कुछ खेल ही लिया जाए है ना. तो जो हमारे दोस्त सुन रहे हैं हमें अगर आपको भी अच्छे लगे इनमें से कोई गेम्स या कुछ और एडिशनल गेम्स हैं आपके पास तो आप हमें बता सकते हैं मैसेज व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर. हमारा नंबर है 94-14-15-14-15 यानी कि 9414-15-14-15 और अगर समय मिले तो फोन में मत गवाइए आप लोगों के साथ घर वालों के साथ दोस्तों के साथ ये मजेदार गेम्स खेल लीजिए और यकीन मानिए आपको उससे कई गुना ज्यादा मजा आने वाला है ना. और ये मुझे लगता है बड़ों को भी याद आ गए होंगे ये वाले गेम्स तो फिर अपने लिए भी समय निकालिए और खुद बच्चा बन जाइए है ना. बच्चों की दुनिया होती ही इतनी सुंदर है लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है गुड बाय कहने का तो हम लेते हैं इजाजत और दोस्तों से कहते हैं बाय बाय
5: बाय बाय.
0: रेडियो मधुबन 107.8 FM
5: सुनते रहो मुस्कुराते रहो.
6: अरे कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो.
7: अरे
6: कवि राजा कविता के मत अब कान मरोड़ो धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो. शेर शायरी कवि राजा ना काम आएगी कविता की पोथी को दीमक खा जाएगी.
7: अरे
6: भाव चढ़ रहे नाज हो रहा महंगा दिन दिन भूख मरोगे रात कटेगी तारे गिन गिन.
7: अच्छा
6: इसीलिए कहता हूँ भैया ये सब छोड़ो धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो. अरे छोड़ो कलम चलाओ मत कविता की चाकी घर की रोकड़ देखो कितने पैसे बाकी. अरे कितना घर में घी है कितना गरम मसाला कितने पापड़ बड़ी मंगोड़ी मिर्च मसाला कितना तेल नोन मिर्ची हल्दी और धनिया कवि राजा चुपके से तुम बन जाओ बनिया. अरे पैसे पर रच काव्य भूख पर गीत बनाओ.
7: सच है
6: पैसे. अरे पैसे पर रच काव्य भूख पर गीत बनाओ गेहूं पर हो गजल धान के शेर सुनाओ.
7: जवाब
6: नोन मिर्च पर चौपाई चावल पर दोहे सुकवि कोयले पर कविता लिखो तो सोहे.
7: अरे
6: कम भाड़े की खोली पर लिखो कव्वाली. खोली पर लिखो कव्वाली झन झन करती कहो रुबाई पैसे वाली.
7: अच्छा
6: शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है. शब्दों का जंजाल बड़ा लफड़ा होता है कवि सम्मेलन दोस्त बड़ा झगड़ा होता है.
7: अच्छा
6: मुशायरों के शेरों पर रगड़ा होता है पैसे वाला शेर बड़ा तगड़ा होता है. कहता हूँ मत किससे सर फोड़ो धंधे की कुछ बात करो कुछ पैसे जोड़ो.
8: नमस्कार मैं हूँ रवीना टंडन और आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो.
9: आप सुन रहे हैं जीवन को पलटाने वाली एक अद्भुत जीवन कहानी.

भाग 9। दोस्तों, पुरुष लोग यदि पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं, तब तो वो घर बार छोड़कर सन्यास करके स्त्री को विधवा और बच्चों को यतीम बनाकर चले जाते हैं। परंतु कन्याएं माताएं यदि घर में रहते हुए सेवा करते हुए यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहें, तो क्यों उन देवियों और शक्तियों पर ऐसा जुल्म व सितम होता है? हाँ, अब तक तो संसार की ऐसी ही चाल रही है। लोग एक ओर तो हर वर्ष नवरात्रि के पर्व में पवित्र कन्याओं को जगदम्बा मानकर पूजते हैं और उनके चरण धोते हैं, और जब प्रैक्टिकल रीति से कन्याएं इस उत्तम व्रत का मनसा वाचा कर्मणा पालन करके उस पवित्र पद को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करती हैं, तो वे उनके हाथों पर हथौड़े मारते हैं और उन्हें एक पशु की तरह मोटी मोटी जंजीरों में बांध देते हैं। वह रे इंसान, तो अपनी दौलत और जवानी के नशे में चूर होकर इतने अत्याचार करता है कि तुझे नेकी और बदी, अच्छाई और बुराई का भी भेद भूल जाता है। क्या तुझे यह भी ख्याल नहीं रहता कि आखिर एक दिन सब मिट्टी में मिल जाना है? गरीब और अबला माताओं पर तू इतना अत्याचार क्यों करता है? क्या तुझे कवि की कही हुई ये लाइनें याद नहीं है? दौलत के झूठे नशे में हो चूर, गरीबों की दुनिया से रहते हो दूर, अजी एक दिन ऐसा आएगा कि जब सब मिट्टी में मिल जाएगा। माटी ही घर और सब माटी, माटी का तन बन जाएगा, हाँ माटी में सब मिल जाएगा। ऊंचे आसमान से भी ऊंची तेरी आस है, पर कभी सोचा नहीं कि गिनती के तेरे सांस है। इसका तो हिसाब कर, अंगूठा उंगलियों पे रख, कितने खर्च कर रहा है भलाई में, कितना तू लगा रहा है बुराई में। भलाई का फल रह जाएगा, बाकी सब मिट्टी में मिल जाएगा। उन अत्याचारों के विषय में ब्रह्मा कुमारी गंगा जी, जो कि कानपुर में ईश्वरीय विश्वविद्यालय की इंचार्ज थी, उन्होंने कहा है, ओम मंडली में जाने से मेरी खुशी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। वहां का वातावरण ही ऐसा शुद्ध होता था कि आत्मा को शांति का अनुभव होता था। अंतरात्मा में ऐसा महसूस होता था कि जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ रही है। ओम मंडली में जो ज्ञान दिया जाता था, उससे मन विषय विकारों से हट जाता था और नेकी और पवित्रता के मार्ग पर लग जाता था। वहां ज्ञानामृत का प्याला पीने वाले स्वयं को देह रूपी मिट्टी का पुतला नहीं मानते थे, बल्कि वे खुद को एक अविनाशी आत्मा मानते थे। इसलिए मैं भी देह अभिमान को छोड़कर देही निश्चय बनने का अभ्यास करती थी। इसके फलस्वरूप हमारी उपराम वृत्ति और ईश्वरीय लगन को देखकर हमारे लौकिक संबंधी घबराने लगे। वे सोचने लगे कि यदि ये इन्हीं बातों में रमन करती रहेगी तो ना मालूम आगे चलकर क्या होगा, इसलिए इस मार्ग से इन्हें हटाना चाहिए। उन्हें ओम मंडली में जाने वाली अन्य कन्याओं माताओं तथा पुरुषों के संबंधियों से यह भी मालूम हुआ था कि ओम मंडली में जाने वाले नरनारी विषय विकारों को छोड़ देते हैं और पवित्र जीवन व्यतीत करते हैं। अब हमारी माता जी को और हमारे भाई बांधवों को आसुरी स्वभाव वाले लोगों ने भड़काया और उन पर दबाव डाला कि इन्हें ओम मंडली में जाने से रोको। वे कहते थे, ये लोग विषय भोग नहीं करेंगी तो सृष्टि कैसे बढ़ेगी? यह तो कोई निराला ही सत्संग है, जहां जाने वाले लोग ब्रह्मचर्य का पालन करने लग जाते हैं, अतः इन्हें सत्संग में नहीं जाने देना चाहिए। ये लोग पागल हैं जो सत्संग में पवित्रता की चर्चा सुनकर ब्रह्मचर्य का पूरी तरह से पालन करने लग जाते हैं। इस प्रकार कई गंदे संस्कारों के लोग हमें पागल समझते थे, परंतु हम अपने मन में उन्हें पागल समझती थी, क्योंकि वे प्रतिदिन ओम जय जगदीश हरे इस प्रकार की आरती करते हुए विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा ऐसे गीत गाते थे और मैं मूरख खल कामी ऐसे स्वयं को कहते थे, परंतु प्रैक्टिकल जीवन में काम महाशत्रु को छोड़ते नहीं थे। वे भगवान की मूर्ति के सामने तो स्वयं को ही मूर्ख खलकामी मानते थे, परंतु घर में आकर हम लोग जो काम विकार को नरक का द्वार मानते थे, उन्हें पागल कहते थे। उस समय हमारे मन में यह आवाज उठती थी, बंदे कहते मुझको पागल, मैं कहती हूँ बंदे पागल, अहम आत्मा निश्चय मुझको, माया इन्हें भरमाती है, कौड़ी बिना मैं बादशाह, वे माया पीछे मरते हैं, वे काम क्रोध को छोड़ न सकते, अब हमसे भी झगड़ते हैं।
देही अभिमानी जीवन धन मोरा, ओम का ताज है मेरे सिर पर, देह अभिमानी गुलाम बने हैं माया की टोपी उनके सिर पर, ज्ञान सरोवर नहाती मैं वे विषय गर्त में गिरते हैं, दैवी जन्म है मुझको हासिल वे दुखी हो भटकते हैं। अतः हम उनको कहती थी कि आप हमें सत्संग में जाने से क्यों रोकते हैं, अगर हमारे जीवन में कोई बुराई आई हो तो आप हमें बताइए, हम घर का सारा कामकाज करती हैं, फैशन नहीं करती हैं, सिनेमा नहीं जाती हैं, मांस मदिरा का प्रयोग नहीं करती हैं, किसी से लड़ती झगड़ती नहीं है, फालतू घूमती भी नहीं है, फिर भी आपने हम में क्या बुराई देखी है जो आप हमें सत्संग में जाने से रोकते हैं। वे हम में कोई बुराई तो नहीं बता पाते, उनके मन में तो बस यही था कि ये निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ कर रही हैं और हमें इनका विवाह अवश्य कराना है। अतः उन्होंने मुझे अब सत्संग में जाने से रोकना शुरू किया। उन्होंने कई बार कोठरी में बंद करके ताला लगाया और कई बार खाना भी नहीं दिया, कई बार मारा भी, परंतु हमें जो अविनाशी सुख का आधार मिला था हम उसे कैसे छोड़ सकती थी। हम बार बार ओम मंडली के सत्संग में जाती थी, हमारे मन में तो ये शब्द गूंजते थे, ओम मंडली की गत न्यारी बहनों, ओम मंडली की गत न्यारी, ओम मंडली जब से निकली गीता ज्ञान की सुगंधी फैली, विराट गुलशन बना है भारी री बहनों, तीव्र वेगी अर्जुन सम होकर ब्रह्मा ज्ञान से मोह नष्ट कर बनो ज्ञान भंडारी री बहनों, ब्रह्मा ज्ञान की शंख ध्वनि कर ओम के अर्थ के रथ पर चढ़कर मनवश करो महतारी री बहनों। अतः हमने अपने माता पिता को स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि भोजन न करने के बिना तो हम रह सकती हैं, परंतु हम ज्ञानामृत पिए बिना नहीं रह सकते, इसलिए हमें सत्संग में जाने दिया करो। उन्होंने देखा कि यह टलती नहीं है, अतः उन्होंने एक जादू टोने वाले को बुलाकर कहा। उन्होंने कहा कि इस पर जादू हो गया है, इस पर से जादू उतारो। उसने जादू निकालने की कोशिश की, कई मंत्र पढ़े और घोलकर मुझे जबरदस्ती पिलाए, परंतु ईश्वरीय जादू के आगे मनुष्य का जादू कहां काम करता है। आखिर उसने अपने मन से हार मान ली, क्योंकि वह समझ गया कि इसको तो प्रभु की सच्ची प्रीत लगी है। अब हमारे लौकिक संबंधियों को हम पर बहुत गुस्सा था। हम ओम मंडली से ईश्वरीय ज्ञान के जो लिखित पन्ने ले आती थी, जिन्हें कि हम वाणी अथवा मुरली कहती थी, वे मुझे पढ़ने नहीं देते थे। मैं शांत समाधि में बैठती थी तो भी वे विघ्न डालते थे और मुझे बैठने नहीं देते थे। वे मुझ पर बहुत गुस्सा करते थे और सितम ढाते थे, परंतु वे हम पर जितना जितना अत्याचार करते उतना उतना हमें ऐसा महसूस होता कि ये सब स्वार्थ के संबंध है। हम सोचते थे कि पता नहीं ये किस प्रकार के लोग हैं, यह कैसा जमाना है, यह कैसा संसार है, क्या इनको ज्ञानामृत अच्छा नहीं लगता, इन्हें विषय विकारों की मोहनी माया ने इतना मोहित कर लिया है। तब हमारे मन से ये शब्द निकलते थे, अहो माया पुरुषों को क्यों नचाती हो पिलाकर विषय रस बोतल, विकारी क्यों बनाती हो अजब इसरार तेरी फांसी, भुलाया सबने निज देश फंसाकर मोह अपने में दुख की चक्की में पिसाती हो। तब हमें श्रीमद् भागवत में गोपियों के चरित्र याद आते, जो कि हम बचपन से ही सुनती चली आ रही थी। उसमें हमने पढ़ा था कि भगवान की मुरलियां सुनकर गोपियां मस्त हो जाती थीं और वे भागकर भी पहुंच जाती थीं, परंतु उनके लौकिक संबंधी उन्हें रोकते थे। तब हम ये वृतांत पढ़कर सोचा करती थी कि क्या गोपियों को भगवान की बांसुरी सुनाई देती थी और उनके संबंधियों पुरुषों आदि को क्यों सुनाई नहीं देती थी, या उन्हें रसीली मालूम नहीं होती थी। अब हमने अपने प्रैक्टिकल अनुभव से जाना कि हम तो ज्ञान मुरली को सुनकर अतीन्द्रिय सुख से फूले नहीं समाती हैं, परंतु हमारे लौकिक संबंधी भाई बांधव आदि हमें मुरली सुनने के लिए जाने से रोकते हैं। अतः हम स्वयं को बहुत ही भाग्यशाली समझती थी कि हम वही ज्ञान गोपिकाएं हैं। अतः स्वयं ज्ञानामृत न पीने के कारण हमारे लौकिक संबंधी हम पर जो अत्याचार करते थे उसे हम खुशी खुशी सहन करती थी। एक दिन मेरी लौकिक माता जी को विचार आया। उन्होंने सोचा कि इस कन्या का विवाह कर दिया जाए ताकि इसका मन सत्संग से हटकर संसार की बातों की ओर, खाने पीने की ओर, पहनने और भोगने की ओर लग जाए। लेकिन मैंने उन्हें कहा, माताजी, मैं तो ज्ञान मीरा हूं,
मेरा तो एक गिरधर गोपाल ही है, दूसरा कोई नहीं है। मैं तो उसी की हो चुकी हूँ। मेरे मन की सगाई प्रभु से हो चुकी है, अब दूसरे किसी से कैसे होगी। मैंने तो मन में मोहन को बसा लिया है, अब दूसरे किसी के लिए स्थान ही कहाँ रहा है। मेरी ये बातें सुनकर मेरे लौकिक संबंधियों को बहुत क्रोध आया। उन्होंने एक बार तो ऐसा मारा कि क्या कहूं। वे बोले, जब तक तुम शादी के लिए हाँ नहीं करोगी तब तक तुम्हें मारते रहेंगे और मार मार कर तुम्हें खत्म कर देंगे। बोलो अपने मुख से कि मैं शादी करूंगी। मैंने कहा, मैंने तो आपको अपने मन की सच्ची बात कह दी है। मैं मीरा बन चुकी हूँ, मैं गिरधर गोपाल की हो चुकी हूँ। अब मैं विकारी शादी नहीं करूंगी। परंतु हमारी पवित्रता की बातें उन्हें समझ में नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने एक दिन मुझे अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जंजीरों में बांध दिया। परंतु मेरे लिए वह अंधेरी कोठरी भी रोशन थी। उन्होंने मुझे भोजन देना भी बंद कर दिया। दो तीन दिन के बाद मुझे भूख तो अवश्य लगी, परंतु उतनी ही प्रभु से मेरी लगन तीव्र हुई। अंदर ही अंदर मैं प्रभु से कहने लगी, हे प्रभु, आप तो कन्हैया लाल हैं, आपने हम कन्याओं की रक्षा करने में इतनी देर क्यों लगाई। देखो तो हम पर ये लोग कितना सितम ढाते हैं, प्रभु मेरी लाज बचा लो। हे प्रभु, हमें इन विकारी संबंधियों की जंजीरों से छुड़ाओ। प्रभु जी तुम राखो लाज हमारी, मन की बात छिपी नहीं है तुमसे गोवर्धन गिरधारी। माया ने था जाल बिछाया और पिंजरा था लोहे का, मन पंछी उसमें फंसा था, किस्मत में था रोने का। अब इन बंधनों से तुम ही छुड़ाओ, सुनो दया के भंडारी, रखो लाज हमारी। इसी बंधन में मैं एक विचित्र अनुभव करने लगी। विरह वेदना में डूबी मैं देह की सुध-बुध भूल गई थी। मुझे अपने सामने श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए दिखाई दिए। बस उस सुंदर मूर्त को देखते देखते ही मैं तड़पती हुई आत्मा तृप्त हो गई। मुझे मन ही मन में बहुत हर्ष हुआ। मुझे सूक्ष्म आवाज में वे बोलते हुए नजर आए। उन्होंने कहा, अब तुम्हारे बंधन जल्दी कट जाएंगे, घबराओ नहीं, अब मैं साकार हो चुका हूँ। इस अनुभव के साथ साथ मुझे अंदर ऐसा भी अनुभव हुआ कि मुझे भूख प्यास बिल्कुल नहीं है। मुझे तो सब कुछ मिला हुआ ही है। मेरा शरीर पहले भी कमजोर था और निर्बल था, अब कई दिन भूख प्यास के कारण और भी क्षीण हो चुका था। परंतु इस साक्षात्कार के बाद अब मुझे आत्मिक शक्ति का विशेष अनुभव हो रहा था और देह की दुर्बलताएं नहीं भास रही थी। 3 दिनों के बाद द्वार खोलकर लौकिक संबंधियों ने फिर से मुझसे पूछा, अब बताओ क्या सोचा है, शादी करोगी ना? देखो अपना हट छोड़ दो, एक बार अपने मुंह से कह दो कि मैं ओम मंडली में नहीं जाया करूंगी और मैं शादी करूंगी। मैंने कहा, आप ये क्या कह रहे हैं, आपने अभी तक हमें पहचाना नहीं। देखो मेरी बात सुनो, इस लगन की अग्नि बुझने वाली नहीं है, यह दबाने से दबने वाली नहीं है। हाँ, अगर मैं इस लगन में शरीर छोड़ दूं तो मैं आत्मा तो प्रभु की स्मृति में स्थित होकर स्वर्ग के द्वारे आऊंगी ही, परंतु आप एक काम जरूर करना, मेरी लाश को एक बार ओम मंडली के सत्संग के द्वार के सामने से जरूर ले जाना। वे आश्चर्यचकित होकर तथा कुछ निराश, कुछ रुष्ट और कुछ क्रुद्ध होकर कहते, तुम अभी तक भी नहीं बदली, क्या तुम मानोगी नहीं? मैं कहती, देखो मैं इतनी कायर नहीं हूं जितना आपने मुझे समझा है। हम सितम सहन करने वाली कन्याएं माताएं हैं, हम वही कन्याएं माताएं हैं जिनके लिए किसी कवि ने कहा है, हर दुख सहन करने वाली, मुख से कुछ न कहने वाली, त्याग और सेवा में जो दुनिया से न्यारी है, धरती के धीरज वाली, ये भारत की नारी है, ये भारत की नारी है। गंगा जैसी निर्मल है, जमुना जैसी काया, ऐसी देवी अपने सिर पर ले ले दोष पराया, ये कुर्बानी करने वाली और मरजीवा बनने वाली, जिसके बलिदानों के आगे दुनिया हारी है, धरती के धीरज वाली, यह भारत की नारी है, यह भारत की नारी है। अतः आप अत्याचार कर लो, हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। हमने इस ज्ञान के बल पर प्रभु के प्रेम के लिए धीरज करना तथा अत्याचार सहना भी खूब सीख लिया है। परंतु देखो
कहीं इन अत्याचारों का परिणाम आपको न भोगना पड़े, क्योंकि हमारे रक्षक स्वयं भगवान हैं। हमें आप पर इसलिए दया आती है कि आप प्रभु को नहीं पहचानते और हमें भी नहीं समझते, और हमें मार मार कर पाप अपने सिर पर मोल लेते हो। उन्होंने मुझे फिर जंजीरों में बांध दिया। लगभग 2 मास तक मेरी ऐसी ही हालत रही। उसके बाद क्या हुआ, यह अगले भाग में सुनिए।

0: नमस्कार दोस्तों, रेडियो मधुबन 100.8 एफएम पर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम यशस्वी भारत में। हम हमेशा भारत की ऐसी यशस्वी लोगों के साथ रूबरू होते हैं और जानते हैं उनका क्या योगदान है, उनकी अपनी फील्ड में ऐसा क्या एक्सलेंसी किया है भारत को यशस्वी बनाने में। चलिए दोस्तों, आज हम बातचीत करते हैं समीर शेंदे जी से। आप एक्स सेकेंड इन कमांडर है होमगार्ड्स के, और इसके साथ साथ आपने बहुत सारे प्रेसिडेंशियल अवार्ड्स भी जीते हैं और वर्तमान समय में एक ऐसी स्कूल की व्यवस्था आपने बनाई है जिसका आप सुनेंगे तो सोचेंगे कि बिना किताबों का कोई स्कूल हो सकता है क्या। ताजुब है ना। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि उन्होंने जो ग्रुप ऑफ स्कूल्स बनाए हैं, जैसे गैलेक्सी एजुकेशन सोसाइटी है, और आप डायरेक्टर है यूनिवर्सल कमर्शियल सर्विसेज की, फाउंडर डायरेक्टर है शाइनिंग स्टार्स कॉन्सेप्ट स्कूल CBSE की, और उसके साथ साथ आप फाउंडर भी हैं ब्लूबेरी बिजनेस इंटरनेशनल। इस तरीके से बहुत सारी वैरायटी सेवाओं की आप धनी हैं। तो बातचीत करते हैं और उससे पहले हम स्वागत करते हैं समीर शिंदे जी को आज के इस कार्यक्रम यशस्वी भारत में। समीर जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में और रेडियो मधुबन में।
1: थैंक यू।
0: ये बहुत खुशी की बात है कि आज हम आपसे स्टूडियो में रूबरू हो पा रहे हैं, लेकिन हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि इतनी सारी वैरायटी आप सेवाएं कर रहे हैं और आप किसी का फाउंडर है, किसी का CEO है, किसी का डायरेक्टर है, तो इतनी सारी बिजनेसेस एक बार कैसे आप हैंडल कर लेते हैं?
1: दीदी, मुझे एक बात बताते हुए बड़ा मुझे हर्ष हो रहा है कि एक वाक्य रतन टाटा जी ने कहा था, आप जीवन में व्यवसाय मत करिए, आप ऐसा काम करिए जिससे समाज का कुछ ना कुछ फायदा हो। तो आप मेरे प्रोफाइल में जितनी सारी चीजें देख रहे हैं, ये सारी चीजें मैंने ब्रेड एंड बटर के साधन के लिए नहीं की। मैं जब समाज में घूम रहा था, जब मैंने देखा जहां पर जो मुझे प्रॉब्लम नजर आ रहा था, उसी बात को पकड़ के मैंने उस एरियाज में काम करके उस एरिया को मैंने बेहतरीन बनाने का प्रयास किया। वो चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, जिसमें मैंने पिछले 12 वर्ष में लगभग 5000 लोगों को रोजगार दिया है यूनिवर्सल कमर्शियल सर्विसेज के माध्यम से, वो चाहे फिर शिक्षा का क्षेत्र हो, जहां पर मैंने देखा कि 3 साल के छोटे बच्चों के ऊपर इतना प्रेशर डाला जाता था जिसकी कोई आवश्यकता नहीं थी, तो वहां पर मुझे लगा कि काम करना चाहिए, फिर वहां पर मैंने काम किया। और ऐसी अन्यत्र बहुत सारी चीजें जहां पर अभी हम देख रहे हैं कि आज ब्रह्म कुमारीज में जिस तरीके से काम हो रहा है पूरे अक्रॉस द ग्लोब, तो एक व्यक्ति से ये कार्य का निर्माण हुआ। वैसे समाज में हर व्यक्ति का ये परम कर्तव्य है कि उसने अपने सामने जो भी चीजें दिख रही है उसको अनदेखा न करे, और जहां जहां मुझे ऐसी चीजें दिख रही थी कि यहाँ पर फोकस देके ध्यान करने की जरूरत है, वो फील्ड में मैंने काम किया। लेकिन आज मेरा पूरा का पूरा फोकस शिक्षा पर है। अगर आप मुझे पूछेंगे कि आप आने वाले समय में और ज्यादा कहाँ फोकस करना चाहेंगे, तो मेरा इसमें उत्तर यही रहेगा कि शिक्षा के जैसा कोई कार्य नहीं है। आप एक व्यक्ति को एक बार शिक्षित कर दो, पूरे जीवन भर उसके जीवन में प्रकाश में रहेगा।
0: जी, सो ये जो आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं, उसके पीछे एक बहुत लंबी जर्नी है। तो सर, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं, आपकी कहानी आपकी जुबानी कि वो सफर कहाँ से वैसे शुरू हुई है, बचपन से आपको ऐसी क्या चीजें इन्फ्लुएंस किया है जो आज यहाँ पर हम आपसे बैठे हैं, समीर शिंदे जी जो डायरेक्टर CEO फाउंडर ये सारी पदों को, और आपने प्रेसिडेंट से भी अवार्ड लिया है, तो फिर वो जो छोटा सा नन्ना सा बच्चा जो समीर शिंदे जी और आज एक CEO है, इस बीच का जो सफर है उसके बारे में थोड़ी सी झलकी
1: जी। ऐसा बोला जाता है कि आप जितना ज्ञान में डुबकी लगाएंगे उससे और थोड़ा सा खालीपन महसूस होता है। ऐसा लगता है कि और भी कुछ हो लाइफ में हासिल किया जा सकता है, या और भी ज्ञान इसके भी आगे कुछ है। मुझे याद है कि मैं मेरी जब प्री प्राइमरी और प्राइमरी की जब शिक्षा चल रही थी, तो एक नन्हे से बालक के दिमाग में जीवन का उतना विजन नहीं रहता, लेकिन वो जैसे जैसे आगे बढ़ता है, मतलब कक्षा 10वीं तक तो उसके लाइफ में सिर्फ माता पिता और मित्र रहते हैं, और तब इतने समस्याएं भी लाइफ में नहीं रहती। लेकिन असली समस्या चालू होती है जब पहली बार वो बोर्ड के एग्जाम देते हैं, और वहां से उसकी जीवन की शुरुआत होती है। तो ऐसा नहीं था, ऐसा बोला गया है कि एक सफल व्यक्ति के पीछे बहुत सारी असफल कहानियां होती हैं। तो मेरा अर्ली डेज का जो शिक्षा थी वो उतनी सफल नहीं थी। आई वॉज अ मोस्ट एवरेज स्टूडेंट इन माई स्कूलिंग डेज। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि क्या मेरा लाइफ ऐसे ही बीतते रहेगा कि और आगे कुछ मैं कर सकता हूँ। तो मैं जब 12वीं कक्षा में था तब तो मुझे कुछ मार्क्स कम आए, कुछ सब्जेक्ट में मुझे काफ़ी कम, लोअर देन एक्सपेक्टेशंस आए। तो उससे मेरे घर वाले थोड़े नाराज हो गए कि देखो मेरे घर में जो मेरी सिस्टर थी वो तो मेरिट थी और मुझे बिल्कुल बिलो एवरेज मार्क आए। तब मैंने किताब पढ़ी, उस किताब का टाइटल था आत्मविश्वास की कुंजी, और उसके लेखक थे स्वेट मॉडर्न। उनकी एक लाइन का मेरे मस्तिष्क पर बहुत ही गहरा असर हुआ। उन्होंने कहा कि आपके अंदर हिम्मत हो और आत्मविश्वास हो तो आप पहाड़ों को भी हिला सकते हो। तो मैंने कहा यह क्या बात हुई, अपनी बुद्धिमत्ता तो उतनी आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन ये तो कह रहे कि आप आगे बढ़ सकते हैं, तो ऐसी कौन सी बात है। तो वहां से मुझे ऐसा लगता है मेरे जीवन ने एक टर्निंग पॉइंट लिया, और उस दिन से मैंने किताबें पढ़ना चालू की। और दीदी मुझे ये बताते हुए बड़े गर्व महसूस हो रहा है कि आज मेरे पास लगभग लगभग 4000 किताबें हैं। आज भी मैं यहाँ पर हेडक्वार्टर में आया हूँ माउंट आबू के, जहाँ पर वर्ल्ड समिट चल रही है। आज सुबह से मैं सिर्फ एक ही काम कर रहा हूँ कि मैं सारी अच्छी अच्छी किताबें मैंने चुन चुन के ली है आज। तो जिस तरह से एक हनी भी क्या करती है कि मधुमक्खी के छत्ते पे जाने से पहले हर एक फूल से वो अपना अपना ये निकालती है, मधु निकालती है, वैसे मैंने मेरे लाइफ में क्या किया कि जहां से मुझे जो प्राप्त हो सके वहां से मैंने वो प्राप्त किया, और उसका इम्प्लीमेंट मैंने रियल लाइफ में लेना चालू कर दिया। एक आम अवधारणा है कि आप एक अच्छा शिक्षण ले लेते हैं, अच्छी डिग्री ले लेते हैं, तो आपको बेसिक हर घर में यही कहानी होती है कि पहले अच्छी शिक्षा हो, फिर अच्छी नौकरी हो, और फिर अच्छे घर में इसके या बहू लेकर आए। तो ये जो आम अवधारणा है, इससे भी आगे मुझे ऐसा लगता था कि इससे भी आगे जीवन है। पहले तो मेरे मन में था कि शादी ना करें, मैंने शादी नहीं की थी, लेकिन उसके बाद मेरे जीवन में जो मेंटर्स आए, गुरु आए, उन्होंने कहा कि आपको शादी करके ही समाज सेवा करनी पड़ेगी। क्योंकि जितने लोगों की शादियाँ होती है वो बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, वो अपना परिवार, अपने बाल बच्चे बीवी, यहीं तक उनकी विचारधारा केंद्रित हो जाती है। लेकिन मेरा जो पहले से विचारधारा थी कि वसुधैव कुटुंबकम, ये जो वसुधा है, ये जो ब्रह्मांड है, ये पूरी एक परिवार की जैसे है, ये आपस में जितने मतभेद है ये इंसान ने तैयार किए हैं। और जैसे जैसे ये मेरी विचारधारा बढ़ती गई, एक अच्छा कनेक्शन मेरा समाज के साथ में बढ़ते गया, और फिर मैंने पहले ही जैसे आपको कहा कि आपका पैशन ही आपका प्रोफेशन बनता है। मतलब जो अच्छा ड्राइंग बचपन से बना रहा था वो एक अच्छा चित्रकार बनता है, जो बचपन से म्यूजिक में जिसका रुचि है वो अच्छा म्यूजिशियन बन सकता है। तो मुझे लोगों से मिलके, लोगों से बातें करके बड़ा मजा आता था। तो फिर मेरी जो सारी जीवन जो बना, फिर यही आधार रहा कि लोगों से मिलते मिलते मेरे व्यवसाय खड़े होते गए, जिसमें मैंने सबसे पहले यूनिवर्सल कमर्शियल सर्विसेज की स्थापना की, और फिर वहां से मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा।
0: सो ये जो यूनिवर्सल कमर्शियल सर्विसेज है, इसमें क्या होता है सर, क्या करते हैं आप इसका?
1: इसकी भी एक रोचक कहानी है कि मैंने लगभग 2000 में मुझे होमगार्ड्स का ऑफर आया कि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं समाज में, और उस होमगार्ड का जो वो पद दिया जाता था, समाज के किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को दिया जाता था, उसके पहले मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था। तो वो एक अच्छा बायोडाटा था मेरा। तो एज अ सोल्जर पहले मैंने ज्वाइन किया, और मेरी पहली एग्जाम हुई मुंबई में घाटकोपर में, वहां पर मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन का पद मिला, इसमें 3 स्टार मुझे मिले। ये कार्य करते करते मुझे 3 साल हो गए, और 3 साल के बाद मेरा काम देख के मुझे पहला मेरा प्रमोशन मिला डेप्यूटी कमांडेंट का, जो कमांडेंट की एक स्टेज नीचे होता है। कुछ काम के वजह से मेरे जो कमांडेंट थे वो छुट्टी पे चले गए, और 45 दिन के लिए मेरे पास चार्ज आया। तो मैंने क्या किया, पूरे डिस्ट्रिक्ट में जनता का दरबार लगाया, और सब जगह में गया, और सब लोगों ने मुझे कहा कि सर हमारे पास जॉब नहीं है, हमें रोजगार तो मिलता है लेकिन कब मिलता है, गणेश उत्सव, नवरात्रि उत्सव या फिर ईद, ऐसे वक्त रोजगार मिलता है, लेकिन बाकी दिन में हम लोग खाली रहते हैं। तो मैंने कहा आपको रोजगार मैं दूंगा। तो देखिए वही बात है कि समाज में जो चीज चाहिए वो देना चाहिए आपको, ना कि आपको अपने हिसाब से। और मेरी रुचि भी थी और वहां पर मैंने एक गवर्नमेंट का लाइसेंस रजिस्टर्ड किया जिसको पसारा लाइसेंस बोला जाता है। ये जो पसारा एक्ट है ये सोसाइटी पुलिस के साथ में पैरेलली काम करती है। आप आपकी सिक्योरिटी यूनिफॉर्म दे सकते हो, बैचेस दे सकते हो और गवर्नमेंट को सारा इसका रिपोर्टिंग करना पड़ता है कि आपके पास में कितने गार्ड्स हैं। तो मेरी इसकी शुरुआत से दो गार्ड से हुई थी, 2012 से मैंने इसकी शुरुआत की थी और इसका कारवा बढ़ते बढ़ते बढ़ते लगभग 500 के करीब ये गार्ड पहुंच गए सिर्फ 12 साल में। और इन दिनों में मुझे इस बात का बड़ी खुशी है कि लोग आते थे जाते थे और कारवा बनते गया और लगभग 5000 से भी ज़्यादा लोगों को अभी तक इस प्लेटफॉर्म से हमने रोजगार दिया और आगे भी इसका काम जारी ही है।
0: जी, और जैसे आपका वो नन्हे से बालक के अंदर स्काउट्स एंड गाइड्स का जो रुझान थी जिस कारण से आपको 1992 में शंकर दयाल शर्मा जी ने आपको बेस्ट स्काउट ऑफ महाराष्ट्र का भी पुरस्कार दिया है, तो जब आप उस नन्हे से बालक के रूप में प्रेसिडेंट हाउस में गए उस समय की क्या जर्नी रही है और आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है?
1: ये बात तो सच में मुझे बड़ा बताते वक्त खुशी महसूस हो रही है। बचपन में अगर आपको कोई बड़ी अच्छी चीज देखने को मिलती है तो उसका गहरा असर पूरे जीवन भर रहता है। मैं जब पहली बार राष्ट्रपति भवन गए तो हमको सारे प्रोटोकॉल समझाए गए कि राष्ट्रपति के सामने आपको कैसे जाना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और वो जब पुरस्कार देंगे तब आपको कैसे खड़े रहना है वगैरह वगैरह। और वो सारा जो मंजर था वो मेरे दिमाग में आज भी ऐसे सामने आ रहा है। जब पहली बार मैंने देखा शंकर दयाल शर्मा जी राष्ट्रपति भवन से जैसे पहली बार बाहर आए, तो देश का राष्ट्रपति बाहर आता है तब तब राष्ट्रगान होता है, तो वो राष्ट्रगान की जो गूंज है आज भी मेरे कानों में पहुंच रही है। तो इतना मुझे मतलब गर्व से ये बात मुझे लग रहा था कि क्या बात है, ये है हमारा देश और ये है देश के राष्ट्रपति। और दूसरी बात, जब आप देश के इतने बड़े मुकाम पहुंचे ऐसे व्यक्ति से आप मिलते हो तो उनका जो औरा है, उनका जो आभा मंडल है, उनसे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रीति से आपके जीवन पर उसका प्रभाव पड़ता है। तो वो नन्हे से बालक जो टीन एजर्स पे था उसका असर उस बालक के दिल पे पड़ गया कि जीवन में श्रेष्ठ सफलता तभी हासिल की जा सकती है जब आप कुछ करते हो। तो लगभग लगभग मैंने मेरे स्कूलिंग डेज में 100 से ऊपर कैंप्स किए जिसमें हमको हर चीज पढ़ाई जाती थी, मतलब इट्स

0: स्टार्ट्स फ्रॉम बेसिक डिसिप्लिन, टाइम मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग. आप खाना कैसे पकाना चाहिए, आपका जो टेंट है वो कैसे सजाना चाहिए, ड्रिल एंड डिसिप्लिन एंड एवरीथिंग. और वो हमारी जो एग्जाम थी वो इतनी हार्ड थी, जिसमें सबसे पहले राष्ट्रपति अवार्ड से पहले आपको राज्यपाल अवार्ड प्राप्त करना पड़ता है, वो कंडीशन थी उसकी. तो पहले मुझे जो है वो, तब हमारे राज्यपाल हुआ करते थे पीसी अलेक्जेंडर साहब, तो पहले मुझे राज्यपाल अवार्ड मिला. और जैसे आपको वो अवार्ड मिलता है देन यू आर क्वालिफाइड फॉर राष्ट्रपति अवार्ड. तो वो दोनों अवार्ड के बीच की जो कहानी थी वो बहुत डिफिकल्ट थी, क्योंकि पुणे में हमारे प्रेसिडेंट अवार्ड की एग्जाम हुई थी और वहां पर जो एग्जामिनर जो लोग बैठे थे उन्होंने बहुत ही स्ट्रिक्टली वो एग्जाम ली. लेकिन उसके बाद जो हमारे प्रोफाइल में वो जो बात लग गई कि प्रेसिडेंशियल अवार्ड विनर, तो मेरे लाइफ पर उसका बहुत अच्छा गहरा प्रभाव पड़ा और मेरे सारे जीवन में उसकी बहुत अच्छी गहराई और सफलता मुझे मिली. तो अर्ली डेज का किया हुआ जो कर्म रहता है वो लाइफ टाइम काम में आता है. अगर आपके जीवन की शुरुआत अच्छी होती है तो पूरे जीवन पर उसका असर अच्छा हो सकता है. इसलिए जब भी आप कोई कर्म करते हो तो उसका प्रभाव, अच्छा करेंगे तो अच्छा होगा, बुरा करेंगे तो बुरा.
1: जी सही कहा आपने. इसलिए बचपन से हम सभी को माँ बाप यही सिखाते हैं कि बुरा ना देखो, बुरा ना बोलो और बुरा ना सुनो. और यहाँ पर हमें आध्यात्मिक मार्ग में ये सिखाते हैं कि बुरा ना सोचो.
0: सही.
1: क्योंकि ये तीनों चीज़ों की शुरुआत होती है सोच से, देखना सुनना बोलना. अगर हम बुरा सोचना ही बंद कर देते हैं तो फिर बुरा देखना सुनना भी बंद हो जाता है. तो शिंदे जी, जैसे आपने एक लंबे अरसे की सक्सेसफुल लाइफ की लीड की है आपने, कभी ऐसा हुआ आपके जीवन में कोई उतार चढ़ाव या फेल्यूर्स आए, आपने फिर उसको हैंडल करना पड़ा?
0: देखिए, देयर इज नो शॉर्टकट ऑफ सक्सेस.
1: हाँ जी.
0: और जैसे हम लोग देखते ना ईसीजी, जब हमारा ब्लड प्रेशर काउंट किया जाता है तो उसमें उतार चढ़ाव ही रहता है.
1: जी जी.
0: तो लाइफ इज लाइक दैट.
1: यस.
0: तब आप जब सोचते हो कि मैं लाइफ में आगे बढ़ूं और बहुत अच्छा सफलता मुझे मिले, और दूर से जब किसी सफल व्यक्ति को लोग देखते हैं कि यार इसके जीवन में तो कितनी अच्छी ऊंचाई को छू रहा है, लेकिन अगर ऐसी कोई किताब रहती है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्री बना सकता था कोई, कि उसके लाइफ के दुख दर्द और उसने जो हार्डवर्क किया उसका अगर कोई फिल्म बना सकता था तो वो रियल फिल्म होती थी जीवन की. आमतौर पर क्या होता है, लोगों को सिर्फ सक्सेस स्टोरीज दिखती है, लेकिन सक्सेस स्टोरीज के पीछे वो जो हजारों रातें, मतलब थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड्स, जैसे अपन बोलते हैं ना कोई स्कॉर्पियो जब आपको काटता है तो कितना दर्द होता है, तो वैसे एक सफल इंसान के पीछे इतने बार उसको तकलीफ होती है, लेकिन वो हर बार वो बाउंस बैक जो करना सीख जाता है. सफल और असफल इंसान में, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, इज दैट लिटिल एक्स्ट्रा. वो जो एक्स्ट्रा काम करता है, जैसे आमतौर पर जब मैं बिजनेस पे जाता था या जब मैं जॉब भी करता था, लोगों की जॉब की शुरुआत या बिजनेस की शुरुआत 10 बजे हुआ करती थी और मैं 7 बजे घर से निकल जाता था.
1: अच्छा.
0: तो 3 आवर्स बिफोर मेरा काम होता था.
1: जी.
0: जहां पर लोग 6 बजे काम बंद करते थे वहां पर मैं रात को 10 बजे काम करता था.
1: ओके.
0: तो वो जो एक्स्ट्रा माइल मेंटेलिटी जो होती है कि आपको जब लॉन्ग जर्नी करनी है या आपको अबव एवरेज जाना है तो अबव एवरेज आपको काम भी करना पड़ेगा. ये मेरे पढ़ने में ये बात आई थी कि अगर आपको अबव एवरेज जीवन करना है तो एवरेज लोग 10 से 6 काम करते हैं, तो आपको 6 से रात को 12 बजे तक काम करना पड़ेगा, तब आप अबव एवरेज जाएंगे. तो ऐसा मैंने लगभग मेरे 30 साल में, मुझे पता नहीं कि जिस दिन मैं रात को बेड पर सोता हूँ मेरे शरीर में दर्द ना हो. नो पेन नो गेन. अगर जिस दिन आपके शरीर में दर्द नहीं है, इसका मतलब वो दिन आपने काम किया ही नहीं. और लोगों को मैं, मतलब एक आम अवधारणा है कि हार्डवर्क का भी कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. आज हम देखते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी कितना काम करते हैं, वो ट्रैवल करते हैं 4 घंटा 3 घंटा, वो सिर्फ फ्लाइट में सोते हैं, देश विदेश में घूमते हैं, तो ऐसे देश को चला नहीं रहे. वैसे एक इंसान जब अपने खुद की लाइफ को भी लीड कर रहा है, यू आर द CEO ऑफ योर लाइफ. आपसे मिलने के बाद आप किसी को कैसा इंप्रेशन देते हो, वो क्या आपको लाइफ टाइम ध्यान में रखेगा या आपको भूल जाएगा, ये 1-5 मिनट में आप उसको क्या इंप्रेशन दे रहे हो इस पर डिपेंड करता है. तो मैंने दीदी जब भी एक दिन का इस्तेमाल 24 घंटे जिसमें होते हैं उसका इतना बेहतरीन इस्तेमाल किया, इतने लोगों से मैंने कनेक्टिविटी बनाई, कि आज लोग मुझे बोलते कि तूने इतना सारा नेटवर्क कैसे बनाया, तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि मैं लोगों से मिलता हूँ, और मैं जब मैं किसी को मिलता हूँ तो उसमें मेरी अपनेपन की भावना होती है। तो ऐसे करते करते करते करते जिस फील्ड में काम किया उस फील्ड में एकदम जीरो टू टॉप मोस्ट लेवल, और जिस फील्ड में हमने काम किया उस फील्ड में पूरा ध्यान लगन और मनन से, मतलब R&D करके काम किया। मतलब कोई भी काम अगर आप एवरेजली करते हो तो लोग आपकी कदर नहीं करेंगे, लेकिन वही काम अगर आप रिसर्च करके करते हो और लोगों के सामने रिसर्च पब्लिश करते हो कि देखिए इसके पीछे ये चीजें हैं, तो लोग आपके पास में आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सफलता प्राप्त करने के लिए नॉर्मल वैसे सफलता नहीं मिलेगी, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं देश में, लेकिन अगर आपको उसके ऊपर जाना है तो आपको आपके अंदर से चीजें निकालनी पड़ेगी, आपका USP दिखाना पड़ेगा लोगों को कि आपके अंदर यूनिक कौन सी चीजें हैं। आप किसी के कॉपी कैट करके कभी भी बड़े व्यक्ति नहीं बन सकते।
1: जी सही बात है। सो शिंदे जी, आपने जीवन में इतनी सारी उतार चढ़ाव की जो एसेंस है उसको जीवन के अनुभव को आप अपने आप के लिए एक शिक्षा बनाया, और वो शिक्षा को आपने याद रखा और अब मुश्किलों को भूल गए हैं और उसे आप आगे बढ़ते गए हैं। तो ये जर्नी कब शुरू हुआ कि जहाँ पे आपने स्कूल की व्यवस्था बनाई है, स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट किया, जहाँ पर बिना किताबों का स्कूल चलता है?
0: मुझे कई बार लोग बोलते हैं कि आपने इतने कम समय में जीवन की शुरुआत की और मेरा जीवन मोस्टली आध्यात्मिक रहा है। मुझे याद है कि मैं 16-17 साल से मैं बाहर, मेरी एक बैग घर पे अटैची भर के रहती थी। तो मेरे जीवन का जब कोई चैप्टर लिखा जाएगा या जब मैं फ्यूचर में मेरी ऑटोबायोग्राफी बनेगी, उसमें सबसे बढ़िया पेजेस जो रहेंगे वो शिक्षा के रहने वाले हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि शिक्षा ही वो जरिया है जिसके वजह से आप समाज की निर्मित या नव निर्माण आप कर सकते हो। फिर से इसकी भी कहानी है कि मुझे ऐसा क्यों लगा कि भाई शिक्षा में, ये इट वॉज नॉट रिटन इन माई पर्सनल गोल बुक कि मैं शिक्षा में आऊंगा या ऐसा कुछ काम करूंगा। जैसे गांधी जी को साउथ अफ्रीका में जब ट्रेन से धक्के मार के उतारा गया, निकाल दिया गया, तो नेगेटिव जो धारणा रहती है, एक तो रहता है रिवेंजफुल एटीट्यूड या अभी के अभी मैं जवाब दे दूं इनका। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, तभी के तभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने वहां से एक लेसन लिया, जैसे मुझे यहां पर नेगेटिवली इन लोगों ने ट्रीटमेंट दिया, मैं मेरे देश के लोगों को गुलामगिरी से मुक्त करूंगा। तो ऐसे मेरे जीवन में जब मेरी शादी हुई और मुझे मेरा जो बेटा, बड़ा बेटा एक स्कूल में पढ़ता था, और वहां पर मैंने वहां का जो माहौल देखा, मुझे लगा कि इतने एडोलसेंस एज में बच्चों को इतना ज्यादा प्रेशर नहीं देना चाहिए। वो एक बात मेरे सबकॉन्शियस माइंड में गई, मैंने कहा इस पे काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि समाज में दो तरह के लोग हम देखते हैं, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, या फिर उसमें आप कुछ कर सकते हो तो करके दिखाओ। वन डे आई वॉज सिटिंग इन माई ऑफिस, बहुत जोर से बारिश गिर रही थी बाहर, मैंने कहा क्या किया जाए। तो मेरे अंदर के अंदर आत्मा से मुझे आवाज आई कि शिक्षा में काम करने की जरूरत है, आप शिक्षा में काम करिए। उस आवाज को मैंने नहीं दबाया, उसको और उसकी जो अग्नि है प्रज्वलित की, और मैंने मेरी एक डायरी निकाल के लिखना चालू किया कि आज के दौर में समाज में किस तरह के स्कूल की जरूरत है। इसमें सबसे पहले मैंने कुछ बातें लिखी, मैंने कहा इसमें नॉन कंपैरिजन एजुकेशन पॉलिसी आनी चाहिए। जब देखते हैं कि एक क्लास में 30-40 बच्चे पढ़ते तो कंपैरिजन होती है, तो बच्चों को कंपैरिजन पसंद नहीं है। एवरी चाइल्ड इज अ यूनिक क्रिएशन ऑफ गॉड, तो मैंने कहा कंपैरिजन नहीं चाहिए। दूसरा, इनके ऊपर प्रेशर नहीं चाहिए, ये जैसे है, क्योंकि एक बच्चा जो है वो उमलती हुई कली है, आप जितना उनको प्यार से प्रेम से पढ़ाएंगे उतना वो फुल बेहतरीन बनने वाला है, तो हम उन पर कोई प्रेशर नहीं डालेंगे। तीसरा, सेल्फ लर्निंग प्रोसेस हम लाएंगे, मतलब आप देखिए हर घर में बच्चों के पीछे माता पिता ऐसे डंडा लेके पढ़ते हैं कि पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, तो सिर्फ पढ़ाई करके बोलने से बच्चे लोग पढ़ाई नहीं करते, तो ऐसी कौन सी चीज है जिससे वो खुद होके पढ़ाई करने लगेंगे। और चौथा चीज हमने इंट्रोड्यूस की हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, जिसमें हार्वर्ड गार्डनर ने एक थ्योरी इंट्रोड्यूस की, देयर आर 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का बेस हमने इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हर कोई मैथ में ठीक अच्छे नहीं है, हर कोई लैंग्वेज में अच्छे नहीं है, कोई म्यूजिक स्मार्ट है, कोई स्पोर्ट्स स्मार्ट है, कोई किसी का कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, किसी का मैथ अच्छा है। तो जिसमें जो चीज अच्छी है उसको वो चीज पढ़ने में आप प्रमोट करो। तो ये सारी अवधारणाएं हमने किताब इस पर लिखी और इसमें दो डिवाइड किया कि प्री प्राइमरी एजुकेशन अलग है और प्राइमरी अलग है, मतलब 3 से 6 साल का जो टाइम है ये अलग है। तो प्री स्कूल का अलग हमने एक सिलेबस डिजाइन किया और प्राइमरी का एक अलग डिजाइन किया, जो गवर्नमेंट के तरफ से नॉमिनेटेड सिलेबस रहता है। प्री स्कूल के लिए गवर्नमेंट का ऐसा कोई वो नहीं है बॉदरेशन, आप अपने हिसाब से पढ़ा सकते हैं। इसमें हम लोगों ने मोंटेसरी मेथड को इंट्रोड्यूस किया और आज मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष होता है कि आज से लगभग 11 वर्ष पहले हमने जो वर्धा में पहली प्री स्कूल इंट्रोड्यूस की थी, जिसमें नो स्कूल बैग और नो होमवर्क। एक बच्चा जब स्कूल में आता था वो सिर्फ अपना टिफिन लेके आता था और बाकी सारी की सारी शिक्षाएं हम लोग स्कूल में करते थे। और मुझे याद है कि सबसे पहले वर्धा में लोगों ने मुझे कहा था कि आपके स्कूल में होमवर्क नहीं है, किताबें नहीं है, फिर भी शिक्षा कैसी होगी? तो उसका जवाब मैंने दिया कि आप एक साल आप हम पर ट्रस्ट करके देखिए। और दूसरे वर्ष से मुझे जो रिस्पॉन्स मिला वो इतना बढ़िया मिला, 10 एडमिशन की मल्टीपल एडमिशंस, और आज हम लोग वर्धा में टोटल 5 स्कूल चला रहे हैं, जिसमें 4 प्री स्कूल है और एक बड़ी स्कूल है CBSE, जिसमें 1st to 12th तक के बच्चे पढ़ रहे हैं।
1: ये बात तो अच्छा है कि आपको प्रेरणा मिली शिक्षा के जगत में काम करने की, लेकिन जब स्कूल में किताबें नहीं लेके आते हैं तो बच्चे पढ़ते क्या है?
0: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, हमारे प्राचीन गुरुकुल पद्धति में जब शिक्षाएं होती थी, आपको क्या लगता है तब के बच्चे किताबें लेके आते थे क्या?
1: बात तो सही है।
0: अरे हमारे देश में हमने 0 दिया वर्ल्ड को हमारे ऋषि मुनियों ने,
1: यस।
0: क्वांटम फिजिक्स दिया हमारे ऋषि मुनियों ने,
1: यस।
0: हवाई जहाज दिया हमारे ऋषि मुनियों ने। अब हुआ ये कि यहाँ से हमारी चीजें पाश्चिमात्य देश में चली गई और उन्होंने उसको ब्यूटीफुली पैकिंग करके हमारे सामने पेश की, और 150 वर्ष हमारे देश में जो अंग्रेजों का राज चला उसमें हम लोगों का जो माइंडसेट है वो चेंज हो गया पूरा। तो हमारी गुरुकुल पद्धति पर जो अंग्रेजों ने सबसे पहले ये जो खत्म कर दिया, उनको पता था कि आप भारतीय लोगों पर कभी राज नहीं कर सकते जब तक आप इनकी शिक्षा पद्धति नहीं चलाएंगे। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि तब भारत वर्ष में 118,000 गुरुकुल थे, मतलब जितने गांव थे उतने गुरुकुल थे। और इस गुरुकुल में क्या नहीं पढ़ाया जाता था? एस्ट्रोनॉमी, इंजीनियरिंग, मतलब ये एटॉमिक्स के सारे सब्जेक्ट, एस्ट्रोलॉजी, क्या नहीं पढ़ाया जाता था। हमारे शरीर के भीतर जितने सारे केंद्र बिंदु है, मूलाधार से लेके स्वादिष्टान और सहस्रार तक, ये सारा इनके माध्यम से, योग के माध्यम से उनको ये सारा पढ़ाया जाता था। मेडिटेशन का आधार लिया जाता था। धन्वंतरी शास्त्र जो है, हमारे सुश्रुत जो है सबसे पहले सर्जन होकर गए, सर्जरी के वो सबसे बड़े मास्टर थे। तो ये सारी पद्धतियां तब कोई किताबें नहीं थी।
1: सही बात।
0: तब किताबें नहीं थी, तब शब्द से उनको ज्ञान दिया जाता था, स्पर्श से सिखाया जाता था। तो हमने यही चीज इंट्रोड्यूस की स्कूल में, और ये चीज मुझे बताते हुए बड़े हर्ष हो रहा है कि हम लोगों ने सेंसोरियल वे से बच्चों को पढ़ाया। अब सेंसोरियल में कितने सेंसेस है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, 5 सेंसेस है। तो शब्द से हम पढ़ाते हैं, सेंसोरियल मतलब स्मेल से हम लोग, हमारे पास स्मेलिंग की एक्टिविटीज है, टच की एक्टिविटी है। अब एक बच्चे को जब सैंड पेपर पे आप ए पढ़ाते हो, ए पढ़ाते हो दो उंगली के माध्यम से, दिस इज ए, तो ये जो दो उंगली से जो बच्चा ट्रेसिंग पेपर पे ए करता है ना, लाइफ टाइम उसके दिमाग में मेमोरी प्रिंट हो जाती है। ऐसे हम लोग उनको स्मॉल ए टू जेड पढ़ाते हैं, और ऐसे हम लोग उनको कर्सिव भी पढ़ाते हैं, ये सैंड पेपर पे पढ़ाते हैं। तो ये सेंसोरियल ऑर्गन जो है ना, ये सबसे बड़े कारीगर साबित होते हैं। और अध्यात्म भी यहाँ कहा गया है कि अगर आपने आपके कर्मेंद्रियों पर अगर काबू कर लिया तो आपको बुद्धत्व प्राप्त हो सकते हैं। इसी तरह से अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में भी बच्चों को सेंसोरियल के थ्रू एजुकेशन देंगे, तो वो बच्चा कल का एक बहुत बड़ा जिम्मेदार नागरिक भी बनेगा और प्रबुद्ध भी बनेगा। हर क्षेत्र में उसकी एक वैल्यू रहेगी और वो जहाँ पर जो काम करेगा उसका इनर नॉलेज रहेगा।
1: जी सर, ये जो आप बात कह रहे हैं ये बातें तो मॉन्टेसरी स्कूल में, जो प्राइमरी स्कूल में जब बच्चा आता है उस समय ये सभी चीज़ें मीनिंगफुल रहता है और समझ सकते हैं कि ये बेसिक एजुकेशन जो हम उसको दे रहे हैं वो सिर्फ रट करके आगे बढ़ने की बात नहीं, लेकिन वो सेंसेस के द्वारा समझ के करने की बात है। लेकिन क्या जब बच्चा बड़ा होता है, जब 12वीं कक्षा तक पढ़ता है आपके स्कूल में, तब भी यही बिना किताबों का होता है या फिर उस समय तो फिर आप वो जर्नी कैसी है?
0: ये भी अगेन इट्स अ वेरी माइलस्टोन क्वेश्चन। देखिए 3 से 6 साल का जो एजुकेशन है वो इनफॉर्मल एजुकेशन है। इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, इसमें चॉक्स भी नहीं है, बुक्स भी नहीं है, बोर्ड भी नहीं है, किताब भी नहीं है, फिर भी पढ़ाई है। तो हम लोग क्या करते हैं कि वी प्रिपेयर अवर स्टूडेंट्स फॉर स्टैंडर्ड फर्स्ट। अब देखिए जितने भी गवर्नमेंट के सिलेबस है वो फर्स्ट से चालू होते हैं। अब फर्स्ट से चालू होता है उसका फॉर्मल एजुकेशन। तो हम लोगों ने स्कूल में ऐसा सिस्टम बनाया कि सारे उनके अलग अलग ये बनाए कबर्ड्स जहाँ पर उनका सारे बुक्स रखते हैं हम लोग। किताबें साल में एक बार स्कूल में लेकर आ जाते हैं, प्रॉपरली उनका नेम और उनका सारा किताब पर लिखा जाता है और एक जगह उनके रखे जाते हैं। डेली उनके पास में हम लोग सिर्फ 2 बुक्स देते हैं। देखिए गवर्नमेंट ने ये भी बात बोली है कि आप बच्चों का स्कूल बैग का जो वेट
1: है
0: कम करिए, इसके पीछे क्या प्रॉब्लम है? आप देखिए दीदी, पिछले कई सालों में बच्चों को अभी जो सीनियर बन रहे सर्वाइकल के प्रॉब्लम आ रहे हैं, स्पॉन्डिलेसिस के प्रॉब्लम आ रहे हैं, जॉइंट्स के प्रॉब्लम आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस हैवी स्कूल बैग। अच्छा गवर्नमेंट ने इसका GR भी निकाला है लेकिन इम्प्लीमेंट कितने लोग करते हैं ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम लोगों ने जेन्युइनली उसको इम्प्लीमेंट किया, स्कूल में सारे बुक्स रखे और एक ऐसा टाइम टेबल बनाया जिसमें लैंग्वेज भी हो, साइंस भी पढ़े, मैथ्स भी पढ़े और हफ्ते में 2 दिन बुक्स घर पे जाए। पेरेंट्स को भी हम लोग फर्स्ट डे पेरेंट्स मीटिंग लेके अब समझाते हैं हमारा पढ़ाने का तरीका यह है। दूसरी बात, किसी विधि को जब आप क्लासरूम में समझाते हो तो वो विधि बच्चे भूल सकते हैं लेकिन यही विधि जब वो करके देखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग, अगर मैंने आपको चाय की विधि कैसे करना ये अगर थ्योरी में लिख कर दिया और वही आपको कहा कि चाय ऐसी बनती है तो प्रैक्टिकल करने के बाद आप चाय बनाना कभी नहीं भूलेंगे।
1: जी
0: ठीक है। हमारे बच्चों को ये बात पता नहीं कि हम एक जमाने में हम लोग चूल्हे पे खाना पकाते थे।
1: जी
0: हम लोग एक्सपीरियंशियल लर्निंग में ये पढ़ाते हैं स्कूल में बच्चों को। दीदी बच्चों को हमने सलाद कटिंग से लेके रॉ फूड क्या होता है, फिर त्योहारों के साथ में जैसे राखी आती है उसके साथ में हमारा क्या सिलेबस है, पोला आता है उसके साथ में क्या है, दिवाली है तो उसके साथ में क्या है, इसका पूरा एक्सपीरियंशियल लर्निंग का मॉडल बनाया। लैंग्वेज में एक लेसन है जैसे बकरी की शादी, हिंदी का लेसन है। एक्चुअल उस दिन बकरी की शादी होती है स्कूल में।
1: अच्छा।
0: बच्चे लोग मस्त कपड़े पहन के आते हैं, मिठाइयां लाते हैं, शादी लगाते हैं और उसके बाद सेकंड डे उस टॉपिक पर उनकी टेस्ट होती है ओरल एंड रिटन।
1: ओके
0: दीदी आप सुन के हैरान रहेंगे, बच्चे लोग इतने बढ़िया तरीके से लिखते हैं, इतना बढ़िया से एक्सप्लेन करते हैं। ये वातावरण हमने स्कूल में बनाया। ये जानकर आप हैरान होंगे कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं अभी और बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना चाहिए। असली शिक्षा जो चालू होती है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं जिसको थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है, वो होता है 7th स्टैंडर्ड। बस वहां से हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना चालू, लेकिन एक्सपीरियंशियल लर्निंग वे हम लोग कभी नहीं छोड़ते, एक्सपीरियंस देके ही पढ़ाते।
1: तो फिर 7वीं कक्षा के बाद स्कूल में बुक्स लेके जाते हैं।
0: अभी हम लोगों का स्कूल जो है वो नर्सरी से चालू हुआ था, अभी हम लोग नेचुरली 6th स्टैंडर्ड तक पहुंच गए।
1: ओके
0: अभी हर साल एक एक क्लास ऐड होती
1: जाएगी। आपने जो कहा कि वो 12वीं कक्षा तक आपका
0: परमिशन गवर्नमेंट की 12th तक आ गई है।
1: ओके
0: लेकिन हमारे जो स्टूडेंट वो नेचुरली एक एक क्लास
1: अपग्रेड करते जा रहे हैं।
0: जी
1: ओके वेरी नाइस वंडरफुल सर। सो जिस तरीके से आपने ये शिक्षा पद्धति को इंट्रोड्यूस किया है तो कहाँ से आपने ये आइडिया लिया कि हमें इस तरीके से पढ़ाना चाहिए? और जब आप एक कन्वेंशन स्कूल से एक अलग तरीके से हटके पढ़ाते हैं तो फिर पेरेंट्स की सपोर्ट कैसे रही, समाज में आपके लिए सपोर्ट कितना मिला और कहीं पे आपको कॉन्फ्लिक्ट्स या इस तरीके से सामना करना नहीं पड़ा?
0: नहीं आप देखिए, आप किसी के बच्चे को जब आप इस तरह से पढ़ाते हैं तो हमको समाज से इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिला
1: जी।
0: और कुछ स्कूलों ने फिर हमको फॉलो करना भी चालू किया कि इस तरीके से अगर हम पढ़ाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो जहां तक सवाल है, पेरेंट्स का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आया, सभी लोगों ने अप्रिशिएट किया कि यस इसी डायरेक्शन में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। आपने एक सवाल मुझे पूछा कि भाई आपने ये कहाँ से किया, तो सबसे पहली बात तो यही है कि हम लोग सिर्फ रूटीन्स पर चलते हैं या जिस तरीके से सारी बातें चल रही है उसी बातों पर हम लोग कदम रख के आगे बढ़ते हैं। हमने ऐसा नहीं किया, हम लोगों ने एक एक स्टैंडर्ड में R&D की हमारी खुद की, एक एक सब्जेक्ट की R&D की, ये टॉपिक बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग वे में कैसे पढ़ाना चाहिए। तो इसके लिए हमने कुछ बातें की, वो मैं बताना चाहता
1: हूँ। जी जी जी,
0: वो बात में सबसे पहले नंबर की बात है कि हम लोगों ने एक थिंक टैंक का कल्चर इंट्रोड्यूस किया टीचर्स के लिए, और एक स्कूल में हमारा एक जर्नल रखा है जिसमें डेली टीचर को एक क्रिएटिव आइडिया नोट डाउन करना है सब्जेक्ट को लेके। अब उसका असर यह हुआ कि 250 डेज में 250 आइडियाज आ गए हमारे पास
1: जी।
0: दूसरा, एवरी टीचर को साल में 2 एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज उनकी सब्जेक्ट की कंपलसरी बनाना हमारे स्कूल में मैंडेटरी है, और वो उन्होंने अपना रिसर्च करके सबमिट करना है विद थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, वो आना चालू हो गई। तो इससे क्या हुआ कि हमारा जो मॉड्यूल है स्कूल का वो हर साल अपग्रेड होता गया, और हर साल नई नई एक्सपीरियंशियल एक्टिविटीज आती गई सब्जेक्ट्स को लेके, और नया नया आते गया, और इससे हमारा सिलेबस बहुत अच्छे प्रॉपरली डिजाइन।
1: मतलब अगर आप CBSE बोर्ड को फॉलो भी कर रहे हैं, लेकिन उसी सिलेबस को कैसे आप एक्सपीरियंशियल तरीके से बना सकते हैं, बच्चों को प्रैक्टिकली समझ में आए, घर जाने के बाद उनको होमवर्क के बोझ से फिर वो पढ़ाई के प्रति जो रुचि है या रुझान है उसमें कमजोरी ना कम ना हो, उसके ऊपर आपने ये बहुत अच्छा ध्यान रखा है। जब आप एजुकेशन फील्ड में हैं और आज के समय में भारत में देखा जाए तो एजुकेशन एक बिजनेस बन गया है, तो इस चीज का बैलेंस कैसे करते हैं आप?
0: ये देखिए, संसाधन करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है। बीच में कोरोना भी आ गया था और उस वक्त लोगों के पास में पैसे नहीं थे, तो सबसे पहले स्कूल किसने ओपन करना चाहिए और किसने नहीं ओपन करना चाहिए ये सवाल आना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, शिक्षा ये व्यवसाय हो ही नहीं सकता, ये वो पवित्र काम है विद्यादान का। ऐसा माना गया है कि 3 जो क्षेत्र है वो स्वयं परमात्मा ने बनाए, जिसमें पहला है डॉक्टर्स। डॉक्टर्स को एंजल्स ऑफ गॉड कहा गया है, कि जब किसी पेशेंट बीमारी आती है तो बोलते कि अब
1: भगवान,
0: तो आप भगवान, आप ही हो सब कुछ। दूसरा, जुडिशरी, जब कोई न्यायाधीश के कुर्सी पे बैठ जाता है तो उनको भी हम भगवान के रूप में देखते हैं, क्योंकि पहले उनके आंखों पर पट्टी बांध दी जाती थी कि भाई न्याय देवता है, तो वो भी जो प्रोफेशन है वो गॉड्स का प्रोफेशन है। और तीसरा, शिक्षा का, क्योंकि एक पीढ़ी को अगर गलत दिशा में पढ़ाया जाए, एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं मैं कि
1: जी।
0: अगर आप 2-व्हीलर से ट्रैवल कर रहे हो और गाड़ी चलाने वाले में फॉल्ट है तो 2-3 लोगों की जान जा सकती है। अगर आप 4-व्हीलर चला रहे हो और उसको अच्छे से 4-व्हीलर नहीं चला रहे तो 4-5 लोगों की लाइफ खतरे में है। अगर आप हवाई जहाज चला रहे हो तो 300 लोगों की जान खतरे में है। और अगर आप एक टीचर हो और वो भी अगर आपके भीतर वो टीचर को पढ़ाने की अगर खूबियां नहीं है और बच्चों को अपने रॉन्ग वे में पढ़ाया तो पीढ़ियों का नुकसान हो सकता है, पीढ़ियों का,
1: देश का भविष्य भी है।
0: इसीलिए अब्दुल कलाम जी ने उनकी किताब में लिखी ये बात, सिर्फ और सिर्फ उच्च जिनके भीतर प्रतिभा है ऐसे ही व्यक्तियों ने टीचर बनना चाहिए। और दूसरी वे में अगर ये बात मैं आपको कहूं, सिर्फ और सिर्फ अच्छे विचारधारा, उच्च मानसिकता और आध्यात्मिकता के, जिन्होंने अपने जीवन का मूल्य आध्यात्मिकता के ऊपर पूरी विचारधाराएं बनाई, ऐसे लोगों ने स्कूल का निर्माण करना चाहिए। स्कूल ये व्यवसाय हो ही नहीं सकता। और ऐसे स्कूलों से जब बच्चे बाहर निकलते वो आप देखेंगे

0: कि वो भविष्य खतरे में है। वो बच्चों को सिर्फ यांत्रिक की पढ़ाई पढ़ाई जाती है, वो अंदर से नर्चर्ड नहीं है। इसलिए शिक्षा का पूर्ण आधार जो है वो विद्यालय होता है, और विद्यालय जो होना चाहिए वो आत्म संशोधन का केंद्र बिंदु होना चाहिए, जहां पर अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग बच्चों को तैयार करना चाहिए, और एक शिक्षक पूर्ण रूपे न वहां पर समर्पित भाव से, ना कि सैलरी के लिए, ना कि धन के लिए, समर्पित भाव से। और ऐसे चीजों पर हमने बहुत काम किया। मैंने खुद अभी तक हजारों वर्कशॉप की टीचर्स पर जी। अगर मैं सिर्फ टीचर्स ट्रेनिंग पे बात करूं तो मैं पूरा दिन बात कर सकता हूं। एक अध्यापक कैसे होना चाहिए, एक टीचर कैसे होना चाहिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए
1: जी।
0: तो मेरा ऐसा मानना है इसमें संतुलन होना चाहिए। जितना आपको लगता है उतना फीस लीजिए, जितना खर्चा उतना खर्चा कीजिए, आपके टीचर्स को भी अच्छे से तनख्वाह दीजिए और बच्चों को भी अच्छे से पढ़ाइए।
1: बहुत सुंदर सर। तो अभी हम कार्यक्रम की अंत की ओर पहुंचे हैं। हम एक छोटा सा गेम खेलना चाहते हैं आपके साथ, एक रैपिड राउंड, जहां पे जो एक शब्द के सवाल है उसका भी हम एक शब्द या फिर एक वाक्य में आप उस चीज का जवाब दें। सेवा क्या है?
0: समर्पण, आत्मसमर्पण, पूर्ण रूपे में
1: जी। भारत क्या है?
0: संस्कृति
1: जी। बहुत सुंदर। शिक्षा क्या है?
0: शिक्षा की परिभाषा मैं एक लाइन में बताना चाहता हूँ
1: जी।
0: एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी इन अ मैन।
1: वंडरफुल, बहुत सुंदर। पेरेंट्स का रोल क्या है?
0: गाइड। एक पेरेंट अपने बच्चों को अगर गाइड करते रहेंगे तो बच्चा ऑटोमेटिक गंतव्य तक पहुंच जाएगा
1: जी।
0: डोंट इंटरफेयर इन देयर लाइफ
1: जी। विद्यालय
0: आत्म संशोधन का केंद्र। हु एम आई, मैं कौन हूं
1: जी। बहुत सुंदर। समीर शिंदे जी कौन है?
0: आई बिलीव ऑन क्रिएटिविटी।
1: ओके।
0: क्रिएटिविटी का मतलब है टू क्रिएट एक्टिविटी। आई ऑलवेज क्रिएट समथिंग फॉर द सोसाइटी, इन वन लाइन।
1: बहुत सुंदर सर। आपकी इतनी जीवन की उपलब्धियां और इतनी व्यस्ततम समय से आपने बहुत अमूल्य समय लेकर के आज यहाँ पर आए हैं। आध्यात्मिकता से जुड़ने का आपने एक प्रयास किया है, तो शिक्षा का, अध्यात्म का, विद्यालय का क्या कनेक्शन है?
0: बहुत बड़ा गहरा कनेक्शन है। शिक्षा, अध्यात्म और विद्यालय, तो ये ट्रायंगल आपने बनाया। दूसरा ट्रायंगल हमने भी बनाया, टीचर, स्टूडेंट और पेरेंट।
1: जी।
0: तो शिक्षा का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा
1: जी।
0: जितनी बार उसको पढ़ाएंगे उतनी बार उसके जीवन का अंधकार नष्ट होगा। अध्यात्म का मतलब है कि हु एम आई, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे जाना कहाँ है
1: जी।
0: और विद्यालय का रोल जो है इन सब बातों का संतुलन बनाए रखना। ये तीनों बिंदु अगर आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो ये कनेक्टिंग डॉट बन सकता है
1: जी।
0: जैसे रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद जी को बनाया, वैसे ही जैसे अब्दुल कलाम जी ने उनके नारायण मूर्ति जो शिक्षक थे चौथी कक्षा में, जैसे एक राष्ट्रपति को बनाया, वैसे हर स्कूल से एक देश का राष्ट्रपति निकल सकता है, एक देश का पंत प्रधान निकल सकता है, एक देश का सरपंच निकल सकता है और एक देश का समाज सेवक निकल सकता है। तो तीनों के केंद्र बिंदु, उसके जीवन में समन्वय संतुलन अगर साधना हो तो ये कनेक्टिंग डॉट करना ही होगा। और इसमें सबसे ज्यादा आज के दौर में दो चीजें बताना चाहूंगा मैं, बच्चे का स्पिरिचुअल क्वेश्चन पावरफुल होना चाहिए और बच्चे का इमोशनल क्वेश्चन पावरफुल होना चाहिए, बाकी चीजें ऑटोमेटिक आ जाए।
1: बहुत सुंदर सर। व्यक्तिगत रूप से आप अपने आप को आध्यात्मिकता से कैसे जोड़ते हैं?
0: हमारे भारत में विदेश से लोग आते हैं अध्यात्म सीखने के लिए।
1: सही बात है।
0: और आज ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि हमने हमारे देश की संस्कृति को और अध्यात्म कैसे पकड़ के रखना चाहिए। उन लोगों ने हमारे यहाँ पर अगर पीएचडी की और हुए माइक को भी देखा, आत्म साक्षात्कार भी किया, मैंने अपने आप को ये सब करते वक्त एक ही चीज देखी कि जब हम किसी के सामने आते हैं तो हमारा ओरा बात करता है, ना कि आपकी जब मुख से आप बात करते हैं। और आपका ओरा तब बनता है जब आप गहरी ध्यान में डुबकी लगाकर बाहर आते हो, और वो गहरा ध्यान तब लग सकता है जब आप ईश्वर के साथ में कनेक्शन बनाते हैं। क्योंकि परापश्यन्ति मध्यमा और वैखरी वाणी के चार प्रकार जो है, जिसमें परावाणी ईश्वर की वाणी बोली गई। परावाणी में इंसान का शब्द नहीं चलता है, वैखरी से कंठ से वो बात करता है, लेकिन परा की जो वाणी है वो ईश्वर की है। तो परावाणी प्राप्त करना है आपको, ईश्वर के साथ में कनेक्शन बना के रखना पड़ेगा। तो ऐसा कहा गया है कि पावर ऑफ एसोसिएशन, आप जैसा एसोसिएशन करेंगे वैसे आप बनते जाते हो। अगर आप निरंतर ईश्वर के साथ सानिध्य बना के रखते हो तो धीरे धीरे धीरे वो ईश्वर तुमको समहाउ किसी ना किसी से मिलाते रहेगा, किसी ना किसी से ज्ञान देता रहेगा, और कभी कभी वो डायरेक्टली आपसे बात भी करेगा। वो जो बात करता है वो वाइब्रेशन से बात करता है, और उसकी अनुभूति मैंने ली है। और शिक्षा में मैंने जो भी आज काम किए हैं वो किसी कॉपी नहीं की है, परमात्मा ने मुझे जो भी उसके बारे में ज्ञान देते थे वैसा वैसा मैं करते गया। तो इन शॉर्ट, विदाउट स्पिरिचुअलिटी आप कुछ भी नहीं कर सकते। ईश्वर से संबंध बना के रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट।
1: बहुत सुंदर सर, इसी मैसेज के साथ आज के इस कार्यक्रम को भी हम यहाँ पे विराम करते हैं। आप इतने बहुमूल्य समय लेकर के हमारे बीच में आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: थैंक यू
1: सो मच। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे समीर शिंदे जी को। आप एक एजुकेशनिस्ट हैं, बिजनेसमैन भी हैं और यूनिवर्सल पीस एम्बेसडर भी हैं। तो ऐसे बहुत सारे उपलब्धियों के धनी समीर शिंदे जी को आपने अभी तक सुना है। तो ऐसे ही अनुभवों को आप सुनते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे रेडियो मधुबन 107.8 FM पर।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। अपने भीतर के अंधकार को समझिए, क्योंकि वहीं से प्रकाश निकलेगा। और जो व्यक्ति खुद पर विजय पा लेता है, वह सबसे बड़ा विजेता बनता है। मैं हूं आपका हमसफर आरजे रमेश। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, आप सुन रहे ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोता मित्रों का स्वागत है। संगीत का मूल्य मानव जीवन और प्रकृति के साथ कितना है, ये हम जानेंगे। जैसे एक छोटा शिशु जब सारा दिन खेल पाल करके थक जाता है, तब माँ से चाहता है कि वो उसे लोरी सुनाकर सुला दे। एक बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को भी हम संगीत सुनाकर बहला सकते हैं। मन और तन दोनों ही हर पल संगीत से स्वस्थ रख सकते हैं। तो आइए, संगीत के बारे में और जानकारी देने के लिए हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है श्यामली जी। श्यामली जी, संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: हम भी सबको नमस्कार करते हैं।
0: श्यामली जी, आज आप कौन सा राग लेकर आए?
1: हाँ, आज हम लेकर आए हैं एक बहुत अच्छा राग, नाम है जौनपुरी।
0: जौनपुरी,
1: यस।
0: अच्छा,
1: तो जौनपुरी ऐसा राग है, इसको ठाट जो है आशावड़ी, शायद पहले भी लिसनर जो है वो सुना है कि आशावड़ी एक राग भी है, ठाट भी है, राग भी है। ठाट में गा और नी कोमल है, लेकिन जब आशावड़ी राग बन जाते हैं तब है जाने का टाइम का नी वर्जित है, आवरोहन में कोमल नी कोमल गा होता है। लेकिन ये जौनपुरी राग में जैसे सारे मा पा धा नी सा, आशावड़ी राग में सारे मा पा धा सा डायरेक्ट धा से सा लगता है।
0: अच्छा,
1: और आने का टाइम दोनों में एक ही है, हम इसमें अंतर कर सकते हैं, लेकिन ठाट आशावड़ी है, ठीक है।
0: okay.
1: तो यही ऐसे राग हमने लाए हैं। समय जो है 9 से 12, अर्थात दिन में दूसरा प्रहर।
0: अच्छा,
1: हम ये गा सकते हैं।
0: हाँ जी,
1: तो ठाट भी, इसको मैंने पहले कह दिया कि ठाट है आशा

0: चौड़ी और जाति जो है सार्व संपूर्ण, मतलब जाने के टाइम गा यूज नहीं होता है, गा वर्जित है
1: जी,
0: और आने का अवरोहण में सात्सरी प्रयोग होता है।
1: ओके।
0: इसमें गा और नी कोमल है, ठीक है। इसका जो प्रकृति जो है बहुत शांत प्रकृति का है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा गा के सुनाते हैं
1: जी,
0: ठीक है। थोड़ा मैं क्या करती हूँ, आशावड़ी राग भी थोड़ा करके दिखाऊंगी, उसके बाद जनपुरी, तब
1: डिफरेंस पता
0: डिफरेंस पता चलता है। पहले हम कर रहे हैं आशावड़ी राग
1: जी।

0: अरहुन अवरहुन पकड़ हम बता दिया। एक बात है, वादी सर जो है धा है, संवादी है गा।
1: अच्छा
0: ठीक है। अभी आज हम पहले सिखाएंगे इसका विलंबित राग बड़ा ख्याल। तो बड़ा ख्याल के लिए, विलंबित ख्याल के लिए लिसनर को किताब पेन से बैठना है, लिखना है
1: जी।
0: वही 12 मात्रा की है, एक ताल की है। 12 मात्रा मतलब 48 मात्रा है। तो 48 मात्रा की जो गीत है बंदी के लिए जो स्वरलिपि हम अभी देते हैं, ठीक है। चार मात्रा मुकरा है, एक साथ लिखना है। जैसे जैसे हम बोलते जाएंगे वैसे वैसे लिखते जाएंगे। नी और गा कोमल है, ध्यान रखना है, गा और नी कोमल है।
1: ठीक है,
0: शुरू करते हैं। पाधा मापा, पाधा एक साथ, मापा एक साथ, रेमा पाधा एक साथ, मापा एक साथ, मतलब एक एक मात्रा, चार मात्रा है ना। पाधा मापा रेमा पाधा मापा एक साथ है। सा ऊपर की सा है, सा में सोम है। पहले शुरू करती हूँ। पाधा मापा रेमा पाधा मापा सा आ नी धा पाधा नी धा पा पाधा मापा रेमा पाधा मापा गा आ रे ए सा आ धा नी। ये जो धा नी है ये मंद्र सर की है, नीचे का है। धा नी सा आ रे मा पाधा पा आ मा पा धा नी सा सा। ये जो सा है ऊपर की सा है, रे ए सा आ। ये जो रे है सा है ऊपर की सा है, नी धा आ पा आ। फिर से पाधा मापा रेमा पाधा मापा सा आ। हम जैसे जैसे बोलते जाएंगे, अगर वो उसे जैसे हम जहाँ जल्दी बोल रहे हैं, मतलब कि एक मात्रा में दो स्वर है
1: साथ साथ में।
0: साथ साथ पाधा एक साथ है, मापा एक साथ है, रेमा पाधा एक साथ है, मापा मतलब एक एक मात्रा है, लेकिन उसमें दो स्वर चार स्वर है। कभी भी तीन स्वर भी हो सकते हैं।
1: आपकी बोलने की गति के ऊपर भी ध्यान
0: भी ध्यान देखना है
1: जी, जी।
0: कि आगे बढ़ते हैं ना।
1: हाँ जी।
0: फिर से हम करते हैं। पाधा मापा रेमा पाधा मापा सा आ नी धा पाधा नी धा पा पाधा मापा रेमा पाधा मापा गा आ रे ए सा आ धा नी सा आ रे मा पाधा पा आ मा पा धा नी सा रे ए सा आ नी धा आ पा आ। ये है स्थाई का स्वरलिपि
1: जी।
0: अंतरा भी दे देते हैं। चार मात्रा मुकरा है, मा पा पा धा धा नी नी सा आ नी सा। ये जो सा है ऊपर की सा है, सा में सौम है। फिर से बोलती हूँ। मा पा पा धा धा नी नी सा आ नी सा रे रे सा सा सा रे मा गा रे सा। ये जो है सब ऊपर की है, नी सा रे रे सा नी धा सब ऊपर की है, रे रे सा जो है ऊपर की है। पाधा पाधा नी धा पा पाधा मापा रेमा पाधा मापा मागा आ रे सा धा धा पा पा धा नी सा सा। ये जो सा है ऊपर की सा है, रे ऊपर की है, रे ए नी धा पाधा नी धा पा। फिर से मैं बोलती हूँ। मा पा पा धा धा नी नी सा आ नी सा रे रे सा सा सा रे मा गा रे सा नी सा रे रे सा नी धा पाधा पाधा नी धा आ पाधा मा पा रे मा पाधा मा गा आ रे सा धा धा पा पा धा नी सा सा रे ए नी धा पाधा नी धा पा। ये स्थाई अंतरा के जो स्वरलिपि है हमने दे दिया है।
1: तो ये स्वरलिपि जो आपने लिखवाई है,
0: हाँ जी,
1: इसके ऊपर अभ्यास करना।
0: हाँ, अभ्यास करना। बात हम धुन में बैठा देंगे।
1: अच्छा, तो धुन में बिठाने के लिए भी हमको ये बाय हार्ट करना पड़ता है।
0: हाँ, हाँ जी।
1: श्यामली जी, जौनपुरी राग की आपने जो स्वरलिपि दी, इसी के साथ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आगे जौनपुरी राग के बारे में आपसे जरूर जानेंगे। तब तक के लिए ब्रेक में हम अपने श्रोता मित्रों को सुनाना चाहते हैं इसी राग से संबंधित एक प्यारा सा मीठा सा गीत। श्रोता मित्रों, आप इस गीत का आनंद लीजिए और हम पुनः लौटते हैं संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो।

0: पुनः आप सभी श्रोता मित्रों का संगीत की दुनिया इस कार्यक्रम में स्वागत है। ब्रेक से पहले हमने श्यामली जी से जौनपुरी राग की शुरुआत की और शुरुआत में उन्होंने हमको आशावरी राग और जौनपुरी राग के बीच में क्या डिफरेंस है ये हाँ भी बताया
1: जी।
0: साथ साथ में उसकी स्वरलिपि भी हमने देखी। आगे श्यामली जी आप हमें क्या सिखाना चाहेंगे?
1: हाँ, हमने जो स्वरलिपि दे दिया इसको धुन में बैठाना है ना।
0: हाँ जी,
1: अभी धुन में बैठाती हूँ। ठीक है,
0: ओके।

0: हमने जो स्थाई अंतरा जो स्वर लिपि दिया है
1: उसको
0: धुन में बैठा दिया, एक्यूरेट माने ग्रामेटिकली मैथमेटिकली चलना है।
1: अच्छा,
0: एक एक मात्रा, इसलिए मैं ऐसे सिखा रही हूँ। ऐसे जब हम करते हैं, जो बड़े बड़े महारथी वो ताल को एकदम अपना लेते हैं, जब वो प्रेजेंट करते हैं उसमें ध्यान नहीं है कहाँ वो दो मात्रा है कहाँ तीन मात्रा है, वो अपने हिसाब से करते हैं। लेकिन अभी जो लिसनर सीख रहे हैं
1: जी,
0: नए नए सीख रहे हैं, उसके पास थोड़ा कठिनाई ये
1: सीखने के समय।
0: हमने क्या किया, एकदम ग्रामेटिकली मैथमेटिकली इसको सुर में बैठा दिया, एकदम चार चार मात्रा करके 48 मात्रा में बैठा
1: अगर
0: दिया।
1: अगर ध्यान से उन्होंने किया होगा, हाँ, अभ्यास
0: होगा
1: तो वो भी कर पाएंगे।
0: नी और गा जैसे जैसे हमने किया है, जैसे बोल दिया करेंगे, तब तबला के साथ एकदम एक्यूरेट चल सकता है।
1: अच्छा।
0: और इसके लिए मस्ट है आकार सहयोग।
1: हाँ।
0: जितना आकार करेंगे उसमें बैठ जाएंगे। पहले मैं आप बताया है कि जितना करेंगे आकार अंदर में बैठ जाएंगे, जब हम बंदिश देंगे वो आसानी से वो कर सकते हैं।
1: अच्छा, तो ये तो आपने स्वर लिपि को धुन में बिठा दिया।
0: हाँ जी।
1: अब आगे आप हमें क्या सिखा रहे हैं?
0: हाँ, मैं सिखा नहीं रही हूँ, मैं सुनाना चाहती हूँ।
1: अच्छा।
0: कैसे ये जो राग है, छोटा सा बंदिश करती हूँ, बहुत अच्छा बंदिश है।
1: अच्छा,
0: तो करके सुनाती हूँ
1: जी।

0: जौनपुरी राग की छोटी सी बंदिश आपने सुनाई।
1: हाँ जी।
0: श्यामली जी, समय देता है हमको इजाजत, फिर भी सुने बिना तो हम आपको जाने की इजाजत नहीं दे सकते। जाते जाते आज आप हमें क्या सुनाने वाले?
1: हाँ, बहुत अच्छा एक फिल्म है, दो बदन।
0: दो बदन, अच्छा।
1: इसमें लता जी का बहुत अच्छा एक गीत है, लो आ गई उनकी याद।
0: वो नहीं आए।
1: वो नहीं है।
0: वाह,
1: मैं सुनाना चाहती हूँ जौनपुरी।

0: जी।
1: तब भी इसमें थोड़ा मिश्र है, मैं सोचती मिश्र है तब भी चलता है हिंदी,
0: पूरा जौनपुरी नहीं है।
1: जौनपुरी है
0: मैक्सिमम,
1: मैक्सिमम है, थोड़ा मिश्र है। ठीक है
0: जी।

0: वाह, बहुत सुंदर।
1: थैंक यू। कोशिश कर सकते हैं
0: जी। और ये गीत के जो बोल हैं,
1: कितना सुंदर,
0: जिसने भी लिखे हैं
1: जी,
0: सच में इतनी भावना भरे बोल।
1: हाँ जी,
0: जिसकी याद में उसने ये गाए हैं या लिखत है, बहुत सुंदर,
1: बहुत सुंदर।
0: श्यामली जी, इसी के साथ लेते हैं हम इजाजत, फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। श्रोता मित्रों, आपके कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, कुछ पूछना चाहते हो संगीत के विषय में, रागों की श्रृंखला में कुछ जानकारी लेना चाहते हैं, आप तुरंत हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9414151415। फिर से रिपीट करती हूँ, हमारा नंबर है 9414151415। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन

0: प्रकृति बेटा, पृथ्वी पर तुम्हें क्या करना है तुम्हें पता है ना?
1: मुझे लोगों को प्यार से इंस्पायर और लाइफ के लिए एजुकेट करना है, ताकि वो नेचुरल रिसोर्सेज का उपयोग कर इस पृथ्वी को बचाए रखे।
0: इसमें तुम्हारी मदद करेंगी ये तीन चीजें। पहली, टियारा ऑफ फ्लावर्स, जो तुम्हें हमेशा हैप्पी और एनर्जेटिक रखेंगे। दूसरा, ये बैज ऑफ लाइफ, जो लोगों को पर्यावरण के लिए लाइफ जीवन शैली की याद दिलाएगा। जब वे प्रकृति की रक्षा करेंगे तो प्रकृति उनकी रक्षा करेगी। तुम ये बैज उन लोगों को भी दे सकते हो जो हमारे प्लैनेट की बेहतरी के लिए योगदान करते हैं। और तीसरा, ये बैग ऑफ होप, जब भी कोई एनवायरनमेंट को हार्म करे तो तुम इसमें से इको सस्टेनेबल अल्टरनेटिव निकाल कर उसे देना।
1: ओके, अब मैं अपने मिशन पर चलती हूँ।

0: पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार।
1: दोस्तों, जीवन में मुस्कुराना कितना जरूरी है और मुस्कुराते हुए लोग कितने अच्छे लगते हैं। कभी कोई उदास होता है तो ढूंढते हैं कुछ ऐसे लोगों के पास जाएं ताकि हमारी चेहरे की रेखाएं बदल जाएं, मुस्कान आ जाए। ऐसे लोग हमारे इर्द गिर्द होते हुए भी हम कभी ये नहीं सोचते हैं उनके जीवन में उन्होंने ऐसा क्या किया जो उनका जीवन इतना सुखमय है या फिर इतना खुशहाल है या सदा मुस्कुराहट उनके चेहरे पे होती है। यही सारी रहस्यों को जानने के लिए आज हम कार्यक्रम लेके आए हैं। जीना इसी का नाम है। दोस्तों, रेडियो मधुबन 107.8 FM पर लगातार आप इस कार्यक्रम के जरिए कुछ योगियों के अनुभवों को सुन रहे हैं। उनके जीवन में वो परिवर्तन कैसे आया और वो अपने जीवन को इस तरीके से कैसे बनाया ताकि लोगों को लगे कि वाह, क्या जीवन जिया इन्होंने। तो दोस्तों, आज हम स्वागत करते हैं आदरणीय रूपेश भाई जी को। आप ब्रह्म कुमारी मुख्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उनकी जो अलौकिक यात्रा है कब और कैसे कहां शुरू हुई जानते। रूपेश भाई, आपको रेडियो मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी मैं दिल से नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ आज के सुंदर से कार्यक्रम में।
1: जी, तो रूपेश भाई, हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि आप अभी वर्तमान में तो एक अलौकिक जीवन जी रहे हैं, लेकिन आपकी जो जीवन की यात्रा कब और कहाँ से कैसे शुरू हुई, आपने कौन से परिवार में जन्म लिया, आपके भाई बहने, और आपने जब जन्म लिया तो समय का क्या माहौल था, आपके परिवार में धार्मिक थे या अध्यात्म के रुचि रखने वाले थे, तो ये सारी बातें हम जानना चाहेंगे।
2: जी जी, मेरा जन्म छत्तीसगढ़ बिलासपुर में हुआ। तब तो MP हुआ करता था मध्य प्रदेश। 8 फरवरी 1976 में बर्थ हुआ मेरा और एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। पिताजी अकाउंटेंट थे और घर का माहौल ठीक है, सामान्य रूप से भक्ति भाव वाला ही था। माताजी बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक थे और हम चार भाई बहन हैं, 3 भाई 1 बहन और मैं सबसे छोटा हूँ उनमें। तो छोटा होने के नाते वैसे सबका लाडला रहा छोटे को वैसे भी बहुत प्यार मिलता है। तो बिलासपुर में रहना हुआ, उसके बाद पिताजी का ट्रांसफर हो गया तो हम अंबिकापुर चले गए, वो भी छत्तीसगढ़ में ही है। तो वहीं मेरी स्कूलिंग आदि सभी अंबिकापुर में ही हुई। और जब मैं 10th स्टैंडर्ड में था तभी एक जैसे एक परिवर्तन का भाव जीवन में अचानक से आने लगा। मन में एक प्रश्न उठने लगा कि आखिर ये संसार है क्या, किसने रचा है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो वैसे तो माताजी के साथ थोड़े से आध्यात्मिक स्थानों पे जाना होता था लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं। और पढ़ाई में वैसे मेरी बहुत रुचि थी, मेडिकल करने का लक्ष्य था, इसीलिए मैंने बायो भी लिया था। लेकिन वही 10th के बाद थोड़ा थोड़ा एक वैचारिक परिवर्तन आने लगे। मुझे लगा कि नहीं, संसार को समझना और संसार के लिए मैं ऐसा क्या करूं जो जिसकी आज संसार को ज़रूरत है। तो एक चीज़ विशेष लगती थी कि आज जैसे एक नैतिक मूल्यों का ह्रास होता चल रहा है समाज में। आज धन है, वैभव है, भौतिकता से हम संपन्न होते चल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं आध्यात्मिक रूप से, कहीं ना कहीं नैतिक रूप से एक मनुष्य नीचे की ओर जा रहा है। तो इस बात की ओर ज्यादा ध्यान जाने के कारण लगा कि क्यों ना कुछ नैतिक या आध्यात्मिक रूप से किया जाए, लेकिन उसका मार्ग क्या हो ये पता नहीं था। और ईश्वर की भी एक तलाश, सत्य की एक तलाश बहुत तीव्र रूप से मेरे अंदर आ गई थी, ना जाने कहां से। वो कहते हैं ना, कई बार गॉड का कुछ कॉल होता है तो एक भूमिका वो बना रहे होते हैं। तो सत्य क्या है, ईश्वर क्या है, ये जानने की बहुत ज्यादा इच्छा उत्पन्न होने लगी। तो कभी मैं पहाड़ पे चला जाता था, कभी एकांत में चला जाता था और अपने अंदर से ही कोशिश करता था कि वो चीज निकल करके आए। कभी गुरुओं से मिलना होता था लेकिन वो चीज आ नहीं पा रही जिसकी मुझे तलाश थी। जानता भी नहीं था कि क्या चाहिए एग्जैक्टली, लेकिन फिर भी जिससे मुझे संतोष मिले, तृप्ति मिले। और तभी एक प्रदर्शनी लगी हुई थी ब्रह्मा कुमारीज की ओर से। मम्मी तो वैसे भी इन सब चीजों में रुचि रखती थी, तो उन्होंने वो देखा, प्रवचन हुआ, फिर उन्होंने कहा कि यहाँ ऐसा ऐसा है, आप चलें। फिर जब ब्रह्मा कुमारीज में आना हुआ तो पहले दिन से ही एक परिवर्तन,
1: मम्मी के साथ साथ में
2: जी वो लेकर के आई तो हम फिर साथ आए, फिर ब्रह्मा कुमारीज के बारे में जाना। और जिसकी फिर तलाश थी ना, एक कहें कि प्यास थी, एक अतृप्ति थी अंदर जो जागृत हुई थी, वो लगा कि नहीं, वो यहीं से मुझे सब कुछ प्राप्त होगा। तो अंदर की एक तृप्ति अंदर की जो एक प्यास का बुझना उसकी अनुभूति मुझे यहाँ।
1: जी, तो जैसे आप आए थे ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में, तो उस समय आपकी क्या उम्र थी?
2: उस समय मैं था 15-16 ईयर्स की एज थी मेरी, और उसके दो साल के बाद ही फिर मैंने ये निर्णय कर लिया कि मुझे अब जैसे पूरी तरह से अध्यात्म के रंग में रंगना है अपने जीवन को इस मार्ग में, क्योंकि एक था एक जो चाहना थे कि नहीं कुछ ऐसा किया जाए जिसकी जरूरत है आज समाज को। अंदर से मेरी भी एक रुचि अध्यात्म की ओर एक बढ़ ही गई थी, तो भगवान को जानना, खुद को जानना और खुद को विश्व की सेवा में लगाना, ये
1: आदर्श भी थे आपके जीवन।
2: वैसे विवेकानंद जी को मैं बहुत पढ़ा करता था और वो बहुत ही जैसे प्रभावित किया करते थे, लगता था कि जीवन हो तो ऐसा जैसे ईशो का नाम ही है ना, जीना इसी का नाम है, तो लगता था कि सच में जीना तो इनका ये है, ऐसा होना चाहिए जीवन जो अपने लिए नहीं, क्योंकि कितने सक्षम थे, कितने योग्य थे, कितने बुद्धिमान थे विवेकानंद जी, लेकिन वो चाहते तो क्या कर सकते थे, लेकिन उन्होंने समाज की सेवा को चुना या मानव जाति की सेवा को चुना और अध्यात्म को के पद को चुना, क्योंकि उन्हें भी लगता था कि अध्यात्म ही हमारी नींव है, यही हमारी संस्कृति है, और ये जब तक भारतवासियों के लोगों के जीवन में नहीं आएगा तब तक हम भारत को विश्व गुरु नहीं बना सकते, एक विकसित राष्ट्र नहीं बना सकते। बाहरी तौर से विकसित भले हो जाएं, लेकिन पहले विकसित तो अंतर मन से होना है, तो मेरे आदर्श रहे, उनको मैं बहुत पढ़ा करता था। और यहाँ विद्यालय से जुड़ने से पहले एक बार मन ये भी मैंने बना लिया था मैं रामकृष्ण मिशन ज्वाइन करूंगा, क्योंकि वो मेरे आदर्श थे, मुझे अच्छा लगता था, लगता था कि उनकी एक बात, वैसे बहुत सारी बातें हैं उनकी, लेकिन एक बात बहुत दिल को छूती थी, वो कहा करते थे कि हम इंसान हैं और यदि हम भी जीव जंतुओं की तरह वनस्पतियों की तरह पैदा हुए हैं, हम भी बड़े हुए, हमारा भी विवाह हुआ, हमारी भी दो चार संतानें हुई और हम भी कालकल्पित हो गए, मृत्यु के ग्रास बन गए, तो हम में और जीव जंतुओं में क्या अंतर रहा? आप इंसान हैं, मानव हैं और जीव मंडल के सर्वोच्च प्राणी हैं, तो जरूर आपको जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए जो लगे कि मैंने समाज के लिए, मानव जाति के लिए कुछ किया। तो वो बात बहुत छूती थी और इसीलिए संन्यास या अध्यात्म की ओर चलने की और रुझान जो है वो तेज हो गए थे।
1: So, जब आप और आपकी माताजी दोनों कोर्स वगैरह करने लगे और ज्ञान मार्ग में चलने लगे, तो फिर बाकी आपके पूरी परिवार वाले आपके सपोर्ट में थे?
2: धीरे धीरे उन सब ने ज्वाइन कर लिया।
1: अच्छा, क्योंकि माँ की बात माननी पड़ेगी।
2: हम लोगों का पूरा परिवार, हमारा कोर्स जो है लगभग एक महीने चला। अच्छा। वो इसलिए क्योंकि जस्ट दो तीन दिन का कोर्स होता था, उसके बाद एक ज्वाइन कर लेता था, तो फिर से पहले से वो कहते थे अच्छा ये आ गया, फिर से पहले से शुरू करते हैं, फिर तीन चार दिन के बाद दूसरा, तो ऐसे करके लगभग एक महीने तक वो पूरा ही साप्ताहिक कोर्स हम लोगों का चलता रहा और सभी ने बहुत हृदय से स्वीकार किया, क्योंकि लगता है सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती, सत्य में शक्ति होती है, सत्य हमें अनुभूति कराता है, सत्य हमारे हृदय को छूता है। तो वही स्थिति हम सबकी थी, कोई मन में द्वंद्व नहीं, कोई मन में प्रश्न नहीं, सभी ने सत्य को हृदय से स्वीकार किया कि नहीं सचमुच यही जीवन जीने का सही मार्ग है और इसी की आवश्यकता आज हर एक इंसान को है यदि आप सुख शांति में जीवन जीना चाहते हैं तो।
1: जी, तो जैसे आपने कहा कि आप 15-16 साल की उम्र में इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में है और आपको ये ज्ञान बहुत ही स्पष्ट और सही लगा कि यही जीवन का सही मार्ग है, फिर आपने वो भी कहा कि उसके दो साल के बाद आपने ये भी संकल्प कर लिया कि मुझे अभी जीवन को मानवता की सेवा में समर्पित करना है, तो फिर क्या आपको आसानी से अनुमति मिल गई थी?
2: जैसे मैंने एक शब्द यूज किया था कि भगवान का जब एक बुलावा होता है ना, एक जो गॉड्स कॉल है वो इतना तीव्र होता है कि उसके रास्ते में आने वाले सारे व्यवधान दूर हो जाते हैं। जैसे हम भक्ति में देखा करते थे ना कि जस्ट श्री कृष्ण के फादर उनको लेके बस यमुना में चल पड़ते हैं बस, और वो यमुना नीचे रास्ता बनाती चलती है, क्योंकि वो एक ईश्वरीय लीला दिखाते हैं। तो यहाँ पे भी मुझे लगता है कि ये मेरा अपना प्रयास नहीं था, ठीक है अंदर की मेरी एक चाहना एक प्यास थी जो मुझे ये मार्ग मिला, लेकिन ईश्वर की कहीं ज्यादा इच्छा थी, मुझे वो लगता है कि नहीं ये मेरा है और इसकी जरूरत मुझे है, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए इतना प्रबल था। मैं आपको बताऊं, मैं बुक वर्म था, मतलब मेरे हाथ में किताब होती होती थी, इवन प्ले ग्राउंड में भी ना, मैं जब फुटबॉल खेला करते थे हम लोग तो मैं गोलकीपर बन जाता था, वो इसलिए ताकि मैं अपने किताब के साथ
1: गोल पकड़ते थे या फिर साथ,
3: अब जो बॉल है, नहीं नहीं वो तो यदा कदा ही आएगा, वो कभी बीच में रहता है, यहाँ वहां रहता है, जब मेरे पास आएगा तो मैं अलर्ट हो जाऊंगा। तो कभी हमारे टीचर भी कहा करते थे, किसी कोई पूछता था कि रुपेश कहाँ मिलेगा, तो कहते थे कि देख लेना जा करके, जिसके हाथ में किताब हो वो रुपेश है। मतलब ऐसी मेरी छवि थी, किताब से जुड़ा हुआ, इतना बुक वर्म, और ऐसा कि नहीं बनना है तो एक अच्छा डॉक्टरी का भी पेशा, इसलिए कि वो सेवा भाव है ना, कि औरों के लिए सेवा है, औरों के हम काम आते हैं। लेकिन वही मैंने कहा ना, जो ऐसा बुक वर्म हो, किताब से इतना चिपका हुआ हो, जिसको ऐसा उसके अंदर ये भाव डाल देना कि नहीं, इससे भी कहीं ज्यादा जरूरत किसी और चीज की है, मुझे या संसार को है, क्योंकि नैतिकता और आध्यात्मिकता आज के समय की पुकार है। और जब जब समय की पुकार होती, कितने ऐसे युवक थे जो अच्छे अच्छे फील्ड में रहे होंगे, जब देश को आवश्यकता थी, महात्मा गांधी जी ने या सुभाष चंद्र बोस ने जब पुकारा कि अब मातृभूमि को तुम्हारी जरूरत है, उन्होंने भी तो त्याग किया ना, उनके भी मन में सपने थे, कोई डॉक्टर बनना चाहता होगा, कोई और कुछ करना चाहता होगा। यदि उन्होंने वो त्याग नहीं किया होता तो देश आज भी आजाद नहीं होता। तो यही भाव मन में था कि आज संसार को, वो भी एक विकृतियों से जकड़ी हुई है ना, अब उसे भी आजाद कराने की जरूरत है, तो किसी ना किसी को तो सामने आना पड़ेगा, क्यों नहीं मैं।
1: मुझे तो कोई भी द्वंद नहीं लगता है इस बात में, क्योंकि भले आप फिजिकल डॉक्टर नहीं बन पाए, लेकिन आप एक स्पिरिचुअल डॉक्टर बन पाए, लोगों की चेहरे पे मुस्कुराहट से दिल की दर्द को दूर करने का काम करते हैं।
2: जी शुक्रिया, ये भी परमात्मा का आशीष है।
1: जी, तो जैसे आप अभी समर्पित हुए हैं और आपको वो प्रेरणा थी कि मुझे देश की सेवा करना है, जब समय के अनुसार, जब देश ने जिसको जैसे पुकारा और वो देश की सेवा करने चले, तो जब आप ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए और अब बहुत ही छोटे उम्र में थे, वेरी यंग एज, उसमें बहुत ही रेबेलियस थिंकिंग भी होती है, क्रांतिकारी विचार ऊर्जामयी होते हैं, और ऊपर से आप मेडिटेशन करते हैं तो और भी ज्यादा ऊर्जा का संचार होता है।
2: जी जी,
1: तो क्या कार्य करते थे आप और क्या क्या सीखा आपने समर्पित जीवन में?
2: जब मैं वहां से चला था, मन में एक भाव आया, जैसे हमने इस सत्य ज्ञान को समझा, तो कि अब ये जीवन ईश्वर के लिए या विश्व सेवा के लिए है। तो जब मैं वहां से चला छत्तीसगढ़ से माउंट आबू के लिए कि अब समर्पित होना है, तो मन में एक ही भाव था कि वहां ईश्वर के घर में जो भी कार्य मिलेगा, जो भी सेवा मिलेगी, वो

0: सेवा हम करेंगे, लेकिन रहेंगे ईश्वर के पास ही, उसके साथ ही, खुद को जानेंगे समझेंगे, ईश्वर को समझते हुए ईश्वर की सेवा करेंगे। तो कोई ऐसी चीज थी नहीं कि हम पर्टिकुलर की हाँ ये चीज हमें मिले तो हम जाएंगे, या हमें ये स्थान मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो मन में यही था कि जो होगा ईश्वर जो देंगे, जो कहते हैं ना कि ईश्वर जैसे बिठाए जो खिलाए, ऐसा एक भाव मन में था। तो आए तो किचन से शुरुआत है। जैसे हमारे यहाँ उस समय ज्ञान सरोवर का निर्माण हो रहा था और जो भी आते थे पहले किचन में ही जाते थे, तो किचन की सेवाएं, तो वहां पे किचन में रह करके मैंने अपनी सेवाएं शुरू की। और बड़े भाग्यशाली रहे कि हमारे वरिष्ठ भ्राता आदरणीय सूर्य भाई जी, उनकी देख रेख में इस अध्यात्म की गहराई में उतरने का बहुत सुंदर अवसर मिला। तो किचन की सारी सुंदर सेवाओं को सीखते सीखते वही सेवाएं करते करते आगे बढ़ते चले। फिर तो और बहुत सारी आप जानते हैं कि मुझे लगता है कि जो ईश्वर को समर्पित रहते हैं ना, इस भाव से रहते हैं कि आपको मुझे जैसे यूज करना है आप करो, तो वो उसके लिए खुद ही मार्ग खोलने लगते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे नहीं एक छोटा बच्चा होता है, वो नहीं सोचता कि उसको क्या करना है, ज्यादा नहीं सोचता, उसके पेरेंट्स सोचते हैं कि हाँ मतलब इसको किस स्कूल में डालना है, कहाँ ले जाना है, क्या कराना है, तो पेरेंट्स सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि मैंने खुद को ऐसे अर्पित करके रखा भगवान को कि आपको जो कराना हो आप कराना, मैं अर्पित हूँ। तो उन्होंने हर प्रकार के और मार्ग खोलते गया मेरे लिए, चाहे वो अच्छा प्रवचन करने की बात हो, लोगों के बीच जाने की बात हो, और मैं उतना नहीं किया करता था, लेकिन हाँ अलग अलग जो रैलियां होती हैं उन सब में भाग लेने की बात हो, इन सब का द्वार उन्होंने खोला। तो मुझे लगता था कि मेरा एक दोस्त आया जब मैं यहाँ सरेंडर हो गया था, तो 3-4 साल के बाद, वो भी थोड़ा सा जुड़ा हुआ था, उसने देखा कि मैं किचन में काम कर रहा हूँ, तो उसने कहा रुपेश तू जीवन भर किचन में ही काम करता रहेगा ऐसे। तो मैंने तो खैर इस विषय में सोचा नहीं था, लेकिन मुझे ये लगा कि शायद इसने भगवान को, अध्यात्म को, सेवा भाव को नहीं समझा है। जहाँ सेवा भाव होता है ना, वहाँ छोटे कार्य बड़े कार्य ये नहीं होते, वहाँ छोटा बड़ा कुछ होता ही नहीं, सेवा अपने आप में ही बड़ी चीज है, समर्पण अपने आप में ही बड़ी चीज है। तो ईश्वर ने फिर बहुत कुछ दिया, बहुत आगे बढ़ाया, मैं समझता हूँ कि विश्व के मंच पर आने का उन्होंने भाग्य दिया। तो आप ईश्वर को अर्पित होते हैं, ईश्वर आपके लिए सारे मार्ग खोल देता है, मैं तो ऐसा अनुभव करता
1: हूँ। तो रुपेश भाई ये बताइए कि आपको कौन सी ऐसी चीजें लगी कि अगर मैं संस्था में नहीं आया होता तो शायद ही मैं ये चीजें सीख पाता, और यह आपकी योगी जीवन की ये जो 40 वर्ष रहे हैं, इसमें आपने कौन सी ऐसी प्राप्तियां या अपने जीवन में वो परिवर्तन देखते हैं?
0: देखिए, यदि जीवन में अध्यात्म नहीं है तो भले ही आप संसार में हैं, अच्छे से आप आगे बढ़ जाते हैं, बड़े पदों पर पहुंच जाते हैं, आपके पास धन धान्य हो सकता है, सुविधाएं हो सकती हैं आपकी योग्यता के आधार पर, लेकिन मुझे लगता है जब तक जीवन में अध्यात्म नहीं होता या ईश्वर नहीं होते, तो वो चीजें आपको सुकून नहीं देती, वो आपके अहम को बढ़ाती हैं, वो आपके मैंपन को बढ़ाती हैं, वो आपकी तृष्णाओं इच्छाओं को और भी ज्यादा बढ़ाती चलती हैं। फलतः व्यक्ति भागता ही रहता है उन चीजों के पीछे, 99 का चक्कर जिसको कहते हैं, एक और चाहिए, एक और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, थोड़ा और चाहिए, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं। लेकिन जैसे ही व्यक्ति इस मार्ग से में से जुड़ता है, तो वैसे ही ना उसके अंदर एक तृप्ति और संतोष आ जाता है, वो आगे से आगे बढ़ता ही है, उन्नति करता है, लेकिन संतोष के साथ करता है, खुशी के साथ करता है, इच्छा और चाहनाओं के साथ नहीं करता। मुझे लगता है कि यहाँ आने के पश्चात, वहां मैं जितना ज्यादा महत्वाकांक्षी था, तो यहाँ भी वो उसका रूप परिवर्तित हुआ, लेकिन उसमें एक समर्पण का भाव, उसमें एक ये भाव जागृत अवश्य हो गया कि नहीं, ईश्वर को अर्पित करके अब मुझे जीवन को आगे बढ़ना है। तो ये जो समर्पणता का भाव है, ये जो नम्रता का भाव है, या जहां से आपने शुरुआत की थी कि आप मुस्कुराते रहते हैं, या आपके जीवन में एक सुंदर मुस्कान है जिसे आप बांटते रहते हैं, तो मुझे लगता है ये चीजें शायद मैं यदि यहाँ नहीं होता तो ये चीजें मेरे जीवन में नहीं होती, जो निरंतर मुझे लगता है ये भगवान के द्वारा दिया हुआ एक गिफ्ट है, बहुत बड़ी गिफ्ट है। बहुत सारी लिस्ट हो सकती है कि उन्होंने क्या क्या दिया, लेकिन एक ये चीज, जिसे मैंने कहीं पढ़ा था कि आपके चेहरे पे जो आपकी मुस्कान है वो ईश्वर का हस्ताक्षर है, इसे किसी भी कारण से मिटने ना दें। तो मुझे लगता है कि भगवान ने परमानेंट मार्कर से ये हस्ताक्षर मेरे चेहरे पे कर दिया है, और ये प्राप्ति मुझे यही हो सकती थी, आध्यात्मिक जीवन से ही हो सकती थी। वहां मैं ये नहीं कर सकता था।
1: अगर ऐसा गिफ्ट मिलना है, परमात्मा का हस्ताक्षर आपके चेहरे पे, तो लोगों को क्या करना चाहिए?
0: मुझे लगता है कि केवल एक चीज यदि सभी कर लेना, अपने आप को अर्पित करें उन्हें मन से, हम तेरे हैं। भक्ति में वैसे भी हम गाते थे ना, तेरा तुझको अर्पण, और ये भी कहते हैं जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम, लेकिन केवल गाते हैं। मुझे लगता है केवल एक चीज ये कर लेना, अपने आप को अर्पित कर दे, हम तेरे हैं, तुम्हारे हैं, ये भाव ही मुस्कान ले आता है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है तू चिंता मत कर, मैं बैठा हुआ हूँ। तो कोई आपके लिए सब कुछ कर रहा है, नहीं बड़े से बड़ा कार्य है, जिम्मेवारी है, और भगवान कह रहे हैं तू चिंता मत कर मैं बैठा हुआ हूँ, तो क्या होगा, चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी, आप हल्के हो जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति बोझिल होकर के अपने मुस्कान को भूल गया है ना, ये काम है, वो काम है, ये करना है, वो करना है, और इसने हमारी मुस्कान को छीन लिया है। बस इसने जीवन दिया है उसे करने दें, और निमित्त भाव से ट्रस्टी बन करके चलते चले ना, आपकी मुस्कान हमेशा कायम रहेगी।
1: वो कौन सा मोड़ था या कौन सा पल था जिस दिन आपको या उस समय आपको लगा कि यही जीना है, इसी को जीना कहते हैं, या जीना इसी का नाम है?
0: शुरुआत में मैं पुनः चलूंगा, जब मुझे ये ज्ञान प्राप्त हुआ, हम लोगों का कोर्स जैसे मैंने कहा थोड़ा सा लंबा ही चला, लेकिन मुझे लगता है पहले ही दिन जब कोर्स हुआ और मैं बाबा के रूम में बैठा, मेडिटेशन रूम में, जहां परमात्मा से एक रूबरू, मुझे एक गहरी फीलिंग थी कि ये ट्रांसलेट नहीं है, लेकिन खुद भगवान ही सामने बैठे हुए हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा, और शायद लोगों को भी, अपने हमारे दर्शकों को भी हो सकता है इन पे विश्वास हो ना हो, लेकिन अध्यात्म में ये चीजें बहुत होती हैं कि बस वहां मेडिटेशन करते करते ना, इतने आंसू मेरे अंदर से आने लगे, इतना आंसू, इतना आंसू, इतना आंसू, मुझे खुद भी लग रहा था कि आंसू क्यों आ रहे हैं, लेकिन बाद में ये रियलाइज हुआ कि व्यक्ति के आंसू राइट तभी आते हैं जब उसका मिलन उस चीज से हुआ हो जिसकी तलाश उसको सदियों से हो। आपका बच्चा यदि वर्षों से बिछड़ गया है और जब वो आपको मिलेगा तो आपकी फीलिंग कैसी होगी? क्या आप अपने आंसू रोक पाएंगे? कोई कहे ना कहे, लेकिन वो स्वतः ही बाहर आते हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि जिस ज्ञान के, जिस सत्य के, जिस परमात्मा को मुझे तलाश थी ना, वो मुझे मिल गया। और सचमुच वो मिला तभी वो आंसू आए ना, किसी ने कहा नहीं कि चलो तुम रो, क्योंकि मेडिटेशन में बैठने के बाद रोना होता है, ये किसी ने कहा नहीं, ये स्वतः स्फूर्त था। और उसी दिन मैंने ये निर्णय कर लिया कि नहीं, कि यही सत्य, और इसी मार्ग पर चलते हुए इस सत्य का साक्षात्कार सभी को कराना है। वो एक सबसे बड़ी एक टर्निंग पॉइंट थी मेरी लाइफ की, जो एक मेडिकल की ओर बढ़ने वाला एक स्टूडेंट एक ऐसे आध्यात्मिक डॉक्टर बनने की ओर बढ़ चला, जो मन में जो विकृतियां है लोगों के, उसे दूर करने में कुछ अपना योगदान दे सके।
1: बहुत सुंदर। मुझे लगता है आंखों की जो आंसू है वो हमारी इमोशन का एक एक्सप्रेशन है
0: जी।
1: जरूरी नहीं व्यक्ति दुखी होता है तभी वो आंसू बहाता है, कभी खुशी में भी आंसू आते हैं, कभी जब संतुष्ट हो जाता है, जैसे आपने कहा जिनसे हम बिछड़े हुए हैं और ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढ रहे, और जब अचानक मिलता है तो वो शब्द नहीं आते हैं, वो इमोशन आंसू के रूप में एक एक्सप्रेशन होता है कि आपसे मिलके हमें खुशी हुई या तृप्त हुए हैं, और जो हमारा जो खोज था वो खत्म हुआ है और हम अभी मिल गए हैं। बाद में धीरे धीरे फिर वो बातें आने लगती है।
0: वो पहले तो वो जो भाव है उस भावना में हम बह जाते हैं, और वो बहुत सुखद अनुभूति होती है। हाँ। क्योंकि उसमें कोई व्यापार नहीं है, वो कोई लेन देन नहीं है, वो बहुत शुद्ध, जैसे एक स्मृतियां हैं, शुद्ध भाव है, हृदय के भाव है, जिसमें बहना व्यक्ति के लिए यादगार होता है और जीवन को बदलने वाला होता है पूरी तरह से।
1: So, अगर आप अपनी पूरी जीवन यात्रा को देखते हैं और कोई एक शब्द से अगर आप कहते हैं कि आपका पूरा जीवन उसे जुड़ा हुआ है, तो वो कौन सा शब्द है जो आपके पूरे जीवन को दर्शाता है?
0: एक शब्द यदि ढूंढ के मैं कहूँ तो मुझे लगता है कि परमात्मा साथ,
1: कंपेनियन ऑफ गॉड
0: जी। ये मुझे लगता है कि मैं अपने पूरे जीवन को यदि थोड़ा सा डिस्क्राइब, मतलब इस रूप में करना चाहूँ कि कौन सी ऐसी चीज रही जिसने मुझे छुआ, मुझे बदला, या जिसके साथ मैं हमेशा रहना चाहूंगा, या जिसे मैं अपनी पहचान बनाना चाहूंगा, वो यही कि एक ऐसा शख्स जो भगवान के साथ रहता है, जो भगवान का दोस्त है, जो भगवान का मददगार है, जो भगवान की इच्छाओं आशाओं को पूर्ण करने वाला है, या फिर जैसे ईश्वर की जो सृष्टि

0: सकते हैं आपके जीवन से। बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए।
1: जी, दिल से आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मुझे स्टूडियो में बुलाने के लिए और हमारे सभी रेडियो मधुबन के श्रोताओं से जुड़ने के लिए। दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी श्रोताओं का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, यहीं पे हम विराम लेते हैं, फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए रेडियो मधुबन 107.8 FM।

नमस्कार, मैं हूं बसवराज बबलेश्वर और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में, नई दुनिया नया जमाना। इस कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। साथियों, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हम इस कार्यक्रम को प्रमोट करते हैं। आप सभी को हर शनिवार ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग पर्यावरण को लेकर बातें करते हैं। पर्यावरण में जैव विविधता जो है, उसको कैसे हम सही उपयोग करके, उसको छोटी छोटी जीव कितना काम करते हैं, और हम उनके अगर सहयोग करें, उनकी रक्षा करें, तो हमारा पर्यावरण कितना अच्छा हो सकता है। और जब पर्यावरण अच्छा होगा तो हमारा जीवन कितना बेहतर हो सकता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसी बात को हम लोग समाज में एक जागृति लाने के लिए नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम में पर्यावरण पर बातें करते हैं। तो आज के हमारे खास मेहमान हैं, वैसे आप हिंदी लिटरेचर में विशेषज्ञ हैं, और साथ ही साथ आपने जो है खास पत्रकारिता और पर्यावरण को लेकर काम किया है, और महाराष्ट्र में आप रहते हैं, और अभी मीडिया कॉन्फ्रेंस में आपका आना हुआ, और आते ही हमारी मुलाकात हुई और आपसे बातचीत हुई, तो मुझे अच्छा लगा कि आप पर्यावरण विशेषज्ञ भी हैं। तो हम चाहेंगे कि आज के इस एपिसोड में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करूं, क्योंकि महाराष्ट्र भर में आप जो है पर्यावरण पर अपनी वक्तव्य देते हैं, और पत्रकार बंधुओं के साथ आपका हमेशा जुड़ाव रहता है। तो जयपाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद।
0: ओम शांति। जी, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, और हमारे सभी श्रोता बंधुओं को अपना परिचय दीजिए।
1: मधुबन जो FM चैनल है, उसके सभी श्रोताओं को मैं सत श्री अकाल
0: जी, जी
1: सलाम वालेकुम और नमस्कार कहता हूँ।
0: नमस्कार।
1: मैं प्राध्यापक डॉक्टर जयपाल पाटिल, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जिला रायगढ़ से हूँ, और समंदर के बगल में सरखेल कान्होजी आंगरे करके जो आरमार के प्रमुख थे शिवाजी महाराज के, उन्हीं के गांव का अलीबाग का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं पत्रकारिता 40 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं निजी किसान हूँ। मेरी खेती है, आम की खेती है, सब्जी लगाते हैं हम लोग, धान बनाते हैं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि हम लोग पेड़ लगाते हैं।
0: जी जी जी।
1: मेरी हर साल जहाँ भी मेरा बर्थडे रहता है, तो मैं स्कूल के बच्चे लोगों को बीज लगाने के लिए देता हूँ, पौधा लगाओ। हर घर के सामने, हर गांव के बाजू में, स्कूल के बगल में आप पेड़ लगा दीजिए, ताकि आगे के लिए, पर्यावरण के लिए भी, और अपने को जरूरत है प्राणवायु, वो मुफ्त में मिलेगा। वो इसीलिए बच्चों को सिखावट देता हूँ कि पेड़ लगाओ, उनकी निगरानी करो, और यही माता पिता इन लोगों ने अपने बच्चों को यही सिखावट देना चाहिए कि जीवन में एक बार तो एक पेड़ लगा दीजिए, ताकि पर्यावरण को हानि न पहुंचे। ये सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि जहां भी मौका मिले, हमारे यहाँ की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो अनगणित योजना देती है किसान भाइयों को, उसका लाभ लेके पौधे लगाओ। जहां भी जमीन अपनी उजाड़ है वो मत रखो, ताकि पौधे लगा के, बीज लगा के, उससे कमाई भी ले लो, आमदनी भी बढ़ाओ, और प्रसन्नता भी मिल सकती है। एक बार प्राणवायु काफी उत्पन्न हो गया तो अपने को जरूरत नहीं, धान तो पिकती है, फल फ्रूट तो होते हैं, तो पर्यावरण का महत्व हर जगह में होना चाहिए, ऐसे का सुझाव है।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा लग रहा है। तो आइए, जैसे कि आज के समय में हम लोग इस नए टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं, मोबाइल वर्ल्ड में जी रहे हैं, एप्लीकेशन वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो ऐसे में पर्यावरण की तरफ कहीं ना कहीं हमारा जो है ध्यान कम है, आकर्षण कम है, तो इसको लेकर आपका क्या विचार है, बताइए जयपाल सर।
1: इसलिए क्या करना चाहिए
0: जी,
1: मैं स्कूली के बच्चों को सिखाता हूँ आपदा प्रबंधन। यही भी मैं आदिवासी बंधुओं का जो आश्रम शाला बोला जाता है, आदिवासी शाला, उसमें कई हजारों लोगों को मैंने सिखावट दी है। वो जंगल में रहते हैं, और उनके माता और पिता वो काम के वास्ते जंगल, उनके मकाने जंगल में रहती है, वो काम के वास्ते नीचे आते हैं, और जब भी जाते हैं घर में तो बच्चों को खाऊं लेके जाते हैं, फिर मछली लेके जाते हैं, सामान लेके जाते हैं। तो जाते समय क्या होता है, उनके जो पिताजी है उनको थोड़ा आदत रहता है बीड़ी सिगरेट पीने की, तो मैं बच्चे लोगों को सिखाता हूँ कि देखो पिताजी अगर कौड़ी के ऊपर आते हैं जंगल के ओर से तो उनको क्या बताने का, आप वो जो श्रम परिहार के लिए बीड़ी पीते हो कोई बात नहीं, लेकिन घर में आके पियो, क्योंकि जंगल का एरिया जब रहता है साहब तो उसमें होता है जो माचिस है उसकी तिल्ली जब ऐसी काड़ी पिटी उगाते हैं तो बुझती नहीं है, वो घर जाने के दौर में वो नीचे डाल देते हैं और यही गड़बड़ होता है पूरे जंगल में, जो आग लग जाती है छोटी छोटी और बड़ी हो जाती है, तो ये पर्यावरण को प्राणी मात्र को और सभी को नुकसान होता है। तो मैं आदिवासी लोगों को बच्चों को यही सिखाता हूँ कि पिताजी को यही कहना है, आप जब भी घर में आओ तो आपका जो क्या वो बचपन से जो आदत है वो छूट नहीं सकती, तो वो करो प्यार भरा, लेकिन बच्चे लोगों को यह सिखावट देना चाहिए कि पर्यावरण के लिए हित के लिए हर माँ बाप ने उनको सिखाना चाहिए, स्कूल के टीचर लोगों ने यही बताना चाहिए कि पेड़ लगाओ। ये अभी बारिश के मौसम में हमारे महाराष्ट्र की सरकार तो पेड़ की झाड़ ही देती है उगाने के लिए, तो उनको वो लगाओ ताकि पर्यावरण ठीक रहेगा, ऐसा मेरा कहना है। और ये मोबाइल के जमाने में आजकल हर आदमी बंदा ये मोबाइल से बच्चे लोगों को इतनी परेशानी है कि पूछो मत, कि पिताजी को एक ऐसा उनको तकलीफ होता है, आंखों का तकलीफ होता है। हमारे जमाने में हम 70 साल के उम्र के हो गए तो आईना कम 50 साल के बाद लगती थी, अभी आप मानोगे नहीं कि छोटा बच्चा वो मोबाइल यूज करता है तो उनको इतना बड़ा बड़ा कांच का आईना लगाना पड़ता है। तो ये सुविधा हर बच्चे को हर माता पिता ने ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है सबके लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और जिस तरह से आप बच्चों को गाइड करते हैं और प्राध्यापक रहे हैं आप, तो निश्चित तौर पे बच्चों को बताना आपका फर्ज बनता है। और पर्यावरण को लेकर आज के समय में टेक्नोलॉजी को देखते हुए जैसे कि हमने बातें की हैं, तो पेड़ लगाना सब चाहते हैं लेकिन ये अब जो है मुमकिन क्यों नहीं है?
1: जी
0: जी जी, जी, जी बताइए।
1: तो एक तो मैंने आश्रम स्कूल के बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो उनको एक सुझाव दिया है, जो भी बाउंड्री के ऊपर पेड़ लगाया जाते हैं, जब बच्चा खाना खाता है साहब और वो उसका वो जो प्लेट है ना वो धोता है, तो मैंने सुझाव दिया है कि जो भी प्लेट धोना है तो जहाँ आपने पेड़ लगाया है वहीं जाके वो पेड़ अपना थाली धो लो, ताकि वो पूरा एक कटोरा भर पानी आराम से वो पेड़ को मिलता है। आपने बताया कि पानी की बहुत दिक्कत है कई जगह में, तो पानी का यूज कम करो लेकिन पेड़ में ज्यादा लगाओ, पेड़ के लिए पानी का यूज ज्यादा करो ताकि आगे के लिए वो अपना अच्छा है, पर्यावरण के लिए बहुत मेहनत हो सकती है, ऐसा मेरा सुझाव मैं देता हूँ। अभी मानना न मानना यह काम हर स्कूल के टीचर लोगों ने करना चाहिए कि बच्चों लोगों को हाथ भी धोना है तो कोई फूल का पेड़ है, कोई आम का झाड़ है, इमली का झाड़ है, तो उसी से हाथ जाके धो लो उसके नीचे में, ताकि पानी का सही उपयोग हो सकता है।
0: जी जी जी, एक और बात मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप पर्यावरण के प्रति जो है जागरूकता आपको कब आई, कब ऐसा एहसास हुआ कि हाँ ये चीजें पर्यावरण से जुड़ी हुई है? जी
1: मैं पत्रकारिता के जरिए में कोंकण में हमेशा घूमता हूँ लेक्चर देने के लिए, तो रास्ते में एक बुढ़ा आदमी एसटी जो हमारे रहते महामार्ग में वो जेब से ऐसा ये निकालता था बीज और ऐसा फेंक देता था। मैं पत्रकार होने के नाते मैं गौर से देखा, बाबूजी ये आप क्या डालते हैं? तो बोलते है ये काजू है ना, हमारे कोकर में कैसी हो काजू बहुत होता है, तो घर में जब भी हम काजू खाते हैं लोगों के परिसर के लोगों को उनके घर से भी मैं बटर के लाता हूँ और ये मेरे थैली में रहता है, और जब भी मैं जंगल के बाजू से जाता हूँ तो यही काजू फेंक देता हूँ, और आप यकीन नहीं करोगे चिपलून करके गांव है उसके जंगल में काफी काजू लगे कैसे, तो लोग बताते ये भाई साहब ने काजू फेंक दिए थे ना, ये भी होते हैं। ये जब मैंने गौर से देखा क्यों ना अपन कॉलेज में स्कूल में लड़के लोगों को सिखाते, तो उनको बता देने का है कि हर बीज जमा करो, यानी हमारे यहाँ आम है हापुस आम फेमस रहता है और काजू फेमस रहता है, तो उसके बीज रहता है तो उसका सही उपयोग करना है, वो डालो जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ डालते रहो ताकि वो पौधे उग जाते हैं। और जिस दिन मेरी 60 साल की उम्र होगी तो मेरा जो बर्थडे का कार्यक्रम रहता है उसमें डिजास्टर लोगों को मैं सिखाता हूँ।
0: अरे वाह।
1: तो जो भी लोग आता है तो उनको वो गुलाब ये फूल जो रहता है ना सर, वो गुलाब का फूल 10 रुपए को होता है। तो मैंने क्या करूँ कि हर बंदा कोई आएगा उसको पेड़ देना है लगाने के लिए।
0: जी जी।
1: हमारे यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इतना बेहतरीन काम करता है। अब पत्रकार होने के नाते बड़े बड़े अफसर बोलते पाटिल साहब आपका कार्यक्रम रहता है ना ये पेड़ लेके जाओ सबको दे। और मुझे मैं सब मेरे पत्रकार वकील सब भाइयों को बताता है एक तो तुम ये फेंकने वाले जो गुलदस्ता रहता है काफी महंगा रहता है 150-200 रुपए का, आप ये मतलब एक तो बच्चे लोगों को किताब दे दो पढ़ने के लिए, इधर एक झाड़ दे दो। आजकल हमारे जिला में सब अफसर लोग हर कार्यक्रम के लिए
0: एक पेड़ देते हैं।
1: इतना बढ़िया काम हो रहा है। मैं नामो मात्र था बताने वाला, लेकिन आज हर बंदा वो आपका स्वागत, आप आए तो आपको पेड़ ही देगा। तो इतना अच्छा हो गया कि लोगों को मालूम पड़ता है कि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है, भारत सरकार पर्यावरण के बारे हित के लिए कितना काम करती है। तो हम पढ़े लिखे जो लोग हैं उन्होंने ये सोचना चाहिए आगे की सोच कि अगर सुजलाम सुफलाम देश करना है तो पौधा लगाना जरूरी है। और हर आदमी ने जहाँ भी कार्यक्रम हो, क्या होता है स्वागत समारंभ रहता है, कहीं बर्थडे रहता है, शादी का माहौल रहता है, तो पैसे का पॉकेट देने के वजह से एक अगर उनको
0: पौधा दे दे
1: उससे में तो भी ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं।
0: हाँ, हाँ,
1: वो अगर लगा देना तो अपना काम देश के हित का काम हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे हम कोकण में रहते हैं महाराष्ट्र में, तो हमारे यहाँ इमली का एक पेड़ है जो आप हमेशा दाल में सब्जी भाजी में
0: डालते हैं।
1: वो एक इमली अगर पेड़ लगावे तो आपका 3 पीढ़ी के लिए उसका फायदा होता है। तो इमली का झाड़ लगाओ ऐसा लोगों को हम लोग कह लेते हैं। तो पौधे लगाओ और आनंद ले लो ताकि देश के पर्यावरण के हित में अपना भी एक छोटा सा समाज हित हो जाएगा, एक काम हो जाएगा। ऐसा हर बंदे ने करना चाहिए ऐसा मेरा ख्वाहिश है पर्यावरण के लिए।
0: जयपाल सर बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हम जो है पर्यावरण को समृद्ध कर सकते हैं और पर्यावरण को समृद्ध करना हमारे अपने ही हाथों में है। हम कई बार ये सोचते हैं कि भाई पर्यावरण को तो भगवान करेगा या फिर कुदरत अपने आप जो है करेगा। बिल्कुल कुदरत अपने आप भी करता है और भगवान का भी ब्लेसिंग मिलता है, लेकिन जब तक हम इस धरती पर रहने वाले अगर उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो भगवान और या कुदरत चाहे भी तो पनपेगा नहीं। इसलिए हमें जो है हमको जागरूक होना है। जब हम इस विषय को लेकर थोड़ा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और साथ में मिलकर जब काम करना शुरू करेंगे तब जाके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। क्योंकि आज हमने पर्यावरण की चिंता छोड़ दी है, उसके बारे में मंथन नहीं करते हैं, हम मिलकर बात नहीं करते हैं। आप देखिए कितने सारे लोग नुक्कड़ पे बैठते होंगे, पानी पीते होंगे, चाय पीते होंगे या बातें करते होंगे, लेकिन पर्यावरण की बातें करते हैं क्या? पर्यावरण की रक्षा की बातें करते हैं क्या? क्या चलो आज संडे का दिन छुट्टी है, चलो हम मिलके 1-8-10 पेड़ अपने गांव के आंगन में लगाते हैं, अपने शहर के किनारे पे लगाते हैं, क्या ऐसी बातें होती है क्या? अगर नहीं होती हैं तो हम और आप सब दोषी है इसके, क्योंकि हमने कभी पर्यावरण पर चर्चा ही नहीं की, हमने कभी बातें ही नहीं की और हमने कभी उसको अमल में लाया ही नहीं। इस वजह से आज अकाल, बाढ़, इन सभी सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये हमारे हाथ में है कि हमें बाढ़ जैसे सिचुएशन में रहना है या फिर अकाल जैसे सिचुएशन में रहना है, या हमें एक समतुल वातावरण में रहना है जहाँ पर हवा, पानी, पेड़ पौधे सब कुछ उपलब्ध हो और सब हरा भरा हो। ये निर्भर करता है हमारी सोच पर, हमारी एटीट्यूड पर, हमारी विचारधाराओं में। तो इस कार्यक्रम का मकसद ही हमारा ये है, नई दुनिया नया जमाना, जिसमें हम पर्यावरण को लेकर चर्चा करते हैं और आपके लिए खास जयपाल सर जैसे महान व्यक्तियों को जो पर्यावरण पे काम किया है उनको लेकर आते हैं ताकि उनके आइडियाज, उनके विचार आप तक पहुंचें और आप भी चाय नुक्कड़ पर जब बैठेंगे या नुक्कड़ पर बैठकर जब चाय पीते होंगे तब इस चर्चा को ज़रूर आप भी शुरू करें और आपस में शेयरिंग करें कि अगर कोई बंदा चिपलून गोवा के पास में जो काजू फल खाने के बाद उसके जो बीज बसते हैं उसको अपने साथ लेकर घूमता हो और वो पेड़ लगाने के लिए वो बीजों को ट्रेन से या फिर अपने रास्ते में जाते समय जो फेंक कर वो ये शुभकामना करता है कि भाई ये पेड़ हो जाए और लोगों को सुख दे, तो अगर कोई एक बंदा भी पहल करता है तो अगर उससे जंगल में अच्छे पेड़ निर्माण होते हैं या अच्छे पेड़ लग जाते हैं तो आप और हम क्यों नहीं। ऐसा कहा जाता है जो हमारी चिमनी होती है स्पैरो वो भी तो काम करता है पेड़ लगाने का, वो बीज खाती हैं और बीज का वेट करती हैं और उससे पेड़ उग जाते हैं। आप देखते हैं कभी कभी बारिश के बाद जो है आपके खिड़की पर ग्रीनरी आ जाती है, तो ये किसने किया कारोबार, है ना? क्या आपने तो नहीं सोचा होगा पर्यावरण को, खिड़की के ऊपर पेड़ आना या ग्रीनरी आना ये काम है हमारे स्पैरो का या चिमनी का। तो पक्षियों को हमारा ख्याल है, भगवान ने देखो वो खुद आके लगा नहीं सकते, अदृश्य शक्ति है, लेकिन उन्होंने ऐसे पक्षियों का निर्माण किया जो पेड़ लगाकर आपको और हमको जीवित रख रहा है। भाई हमसे ज्यादा हमारे जीवन का जो रक्षक है वो चिमनियां हैं, पौधे हैं, और ये सारे जो जीवन रक्षक पशु जो है ईश्वर ने पहले से निर्मित करके रखा है। उनको पता है मनुष्य इतना जो है कब भटक जाएगा, तो उसका जीवन सत्यानाश ना हो, उसको जो है फिर भी सब कुछ मिले, इसके लिए उन्होंने पहले से छिपा के ये सारे खजाने रखे। तो हमें भारत देश या फिर पर्यावरण में कितनी विविधता है, फिर की जैव विविधता है, उसको हमें रक्षित करना है। आज हम लोग ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पर आंगन नहीं कुछ नहीं, तो वहाँ पर पेड़ तो पनपेगा नहीं लेकिन पक्षी भी नहीं आता है ना। पहले तो आंगन में पक्षियाँ चहचहाती थी, बच्चे पक्षियों के साथ खेलते थे, वो जमाना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बीता हुआ जमाना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जयपाल सर से फिर बातें करते हैं, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत, तब तक आप और हम मिलकर चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे कि कैसे हम पेड़ों को और ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं और पक्षियों को ज्यादा से ज्यादा जो है स्पेस दे सके हम, उनको जीवित रहने के लिए उनको भी स्पेस दे सके और आने वाली पीढ़ी को भी स्पेस दे सके ताकि वो भी अच्छा जीवन बेहतर जीवन जी सके। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम में। और आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं। शायद गाने के साथ साथ आपने चिंतन मनन किया होगा कि कैसे हम अपने पर्यावरण को समृद्ध कर सकते हैं, पेड़ पौधों को हरियाली जो है बना के रख सकते हैं। ये हम जो है अगर पेड़ पौधे हैं तो उसको अगर थोड़ा सा भी बारिश के पहले जब अकाल जैसा सिचुएशन आता है तो अगर पानी देते हैं तो वो पेड़ हरा भरा रहता है, लेकिन पानी देने का काम भी हमें ही करना है, तब हम जो है पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसी विषय को लेकर। रायगढ़ और चिपलून और अलग अलग जगह पे हमारे जयपाल सर ने काम किया है पर्यावरण पर, वह अनुभव सुनते हैं। तो आप सभी की तरफ से फिर एक बार जयपाल जी को सुनते हैं। जी, स्वागत है आपका।
1: नमस्कार भाई बहनों।
0: हाँ हाँ,
1: मैं रायगढ़ जिले का अलीबाग का किसान हूँ।
0: जी जी जी,
1: मेरी खुद की खेती है। उसमें मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से हम लोग को आम के पेड़ दिए जाते हैं। तो काम ही करना है तो अपने खुद के तरफ से करना चाहिए। लोगों को सिखावट देना तो काम रहता है, लेकिन अपना खेत में हम लोगों ने मेरे एक जगह में 60 नारियल के झाड़ लगा दिए। हर महीने में हम लोग खेती भी बनाते हैं सब्जी की। दूसरी जगह में भी हमने 18 आम के झाड़ लगा दिए। लोग कृषि डिपार्टमेंट के लिए देखने को आते हैं कि कहाँ लगाए, तो हम लोग आपस में दिखाते हैं कि यहीं से शुरुआत करो। अपने को सरकार अगर सब देती है, पेड़ देती है, उसके लिए खत देती है, कंपाउंड के लिए वॉल कंपाउंड के लिए पैसे देती है, सब काफी योजना भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से हम लोग को दी जाती है। तो हमने खुद के खेती में पहला काम किया, फिर लोगों को सिखावट देना चालू किया। स्कूल के बच्चे लोगों को जब बातें देते हैं, अभी देखो बारिश में अपना जो खेत का कंपाउंड रहता है उसी में अगर फूलों की कटेरी झाड़ रहते हैं।
0: जी जी जी, कांटे वाले पेड़,
1: उसको लाल पीला कलर के ऐसे
0: फूल लगते हैं।
1: तो जैसे ही आप खेत पे कोई भी बंदा आए तो उसको अच्छा लगता है। अपने खेती में अगर हरा भरा माहौल दिखाई पड़ा तो दिन के काम करने में नई उम्मीद आती है। तो ये प्रैक्टिकल होता है।
0: बिल्कुल,
1: अभी
0: बिल्कुल।
1: जिस दिन मैं खेती मेरा डेवलप चालू किया तो मेरे एक भाई जो विज्ञान के कोंकण कृषि विद्यापीठ में कार्यरत है, उन्होंने बताया, भैया ये जो पेड़ है ना, ये जैसे ही इंसान के मापस है, क्यों इसको अगर संगीत लगाएंगे हरिनाम भजन तो वो पेड़ ऐसे डुलते हिलते है। मैं पत्रकार हूँ, हम नारद मुनि, मैं यकीन नहीं किया, लेकिन वो काफी पढ़े लिखे, डॉक्टरेट किया उन्होंने कोंकण कृषि विद्यापीठ में, मैंने करेंगे। तो मैं भी सुबह में अपना बड़ा स्पीकर को लगा देता, भगवान का नाम, हमारे यहाँ विठल माउलू को हम लोग ज्यादा मानते
0: है,
1: तो उसके गाने काफी रहते है, तो दिल को उमंग आती है, अच्छा लगता है, दिमाग प्रसन्न हो जाता है। वो बड़ी जोर से वो खेत में लगा देने का, तो उस गाने से पशु पक्षी वो भी आते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। वो पर्यावरण में आपने जो बताया पक्षी, और वो बीज लेके इनके खेत पे उनके खेत में जहाँ भी जाओ वहाँ पेड़ बरसात में आती है। तो सर जी, आप खेत में संगीत सुनने में लगेंगे तो पौधे जो हमारा जो काम है तो बढ़ जाते हैं, उसकी अच्छी तरह से प्रगति हो जाती है और फल भी ज्यादा मिलते हैं। तो ये लोगों को हम लोग सिखाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बच्चे लोगों को वही नारा देते हैं, और आज के लोगों को शिक्षा में हम लोग बताते हैं कि बच्चे लोग को चित्रकला स्पर्धा आप लेते हैं।
0: जी, जी।
1: तो उसमें एक हम लोग हमारे जमाने में 40 साल पहले 50 साल पहले स्कूल में हम चित्रकला करते थे तो टीचर महोदय क्या बोलते थे, अरे पेड़ पे पंछी बैठा है, ऐसा चित्र निकालो। तो हमारे दिमाग में हम कैसे भी, अभी भी मैं आपको निकाल दे सकता हूँ। तो ये बच्चों आजकल मोबाइल के जमाने में
0: वो चीज है,
1: मोबाइल लेके वो किधर पंछी और पेड़ देखता है, वो तो गूगल पे ही देखते रहता है। हर बंदे ने बच्चे लोगों को चित्रकला स्पर्धा लेना चाहिए, उनको अवार्ड दे दो ताकि उनके दिल में पेड़ के पौधे के लिए बारे में, अरे ये है क्या। आप अंग्रेजी स्कूल के बच्चों को अगर आप ये नारियल का देश नारियल का पेड़ है, बोले कैसा है क्या है। हम लोग जब बच्चे थे तो हमको हर हमारे दादाजी माताजी सब सिखाते थे, इस पेड़ को ये बोला जाता है, इस पेड़ को ये बोला जाता है। अब मैं मेरा फार्म हाउस में लोगों को इनवाइट करता हूँ तो पर्यावरण के लिए ये पेड़ का नाम ये है, इसको तुलसी बोला जाता है, इसको ये बोला जाता है, हर चीज लोगों को हम लोग बताते हैं ताकि हम लोग अगर गुजर जावे, हमारी दादी दादा थे वो फौरन इस पेड़ में जरा कुछ लगा है, चाकू लगा है, उस जमाने में डॉक्टर नहीं थी 40 साल पहले, लेकिन माता जी वो चूना लगा के ऐसा करेगी, जैसे खांसी हो रही तो इधर चूना लगाती थी, खांसी 2 दिन में जाती थी। तो ये पौधे का जो क्या यूज है, वापर है, वो लोगों को जानकारी होना चाहिए आज के जमाने के लोगों को, ताकि पर्यावरण ठीक से रह सकता है। और अब यह भी करो, सब लोगों को उसमें आपने जैसा बताया कि सब गपशप लगाने बैठते हैं, तो मैं हर सीनियर लोगों को बताना चाहता हूँ, आपका जिस दिन बर्थडे रहता है उस दिन आपके जितने भी रिश्तेदार आते हैं, जितने भी फ्रेंड लोग आते हैं, उनको उनको एक छोटा पौधा दे दो। मैं गर्व के साथ करूंगा कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, इनका काफी ध्यान रहता है। हमारे महाराष्ट्र में एक बहना है, वो फेरे करके मैडम, उसको पद्मश्री से नवाजा है, उसके घर में पूरे बीज ही बीज, मानो कि आप मधुबन के संपादक आ गए तो चाय के साथ आपको वो बीज ही देगी।
0: अच्छा,
1: हाँ, आप जाएंगे तो ये जरा पौधे लगा देना दो चार। तो ऐसे भी काम करने वाले लोग
0: हैं।
1: हाँ जी, तो हर आदमी, हम सीनियर सिटीजन लोगों ने ये काम, अभी पेंशन मिलता है, शाम के कोने पे बैठते हैं, टंगल मंगल करते हैं, चाय पीते चले जाते हैं, ऐसा मत करो। जितने भी नौजवान आते काफी पढ़े लिखे, उनको बुलाओ, उनको पर्यावरण का महत्व बता दो कि पेड़ लगाने से क्या होता है, ये सिखावट दे दो, तो तुम्हारा काम देश के हित के लिए हो जाएगा, ऐसा मेरा खुद का कहना है।
0: बिल्कुल,
1: मुझे जब समय मिलता है तो कोई भी बोलेगा, हो सकता है आप भी अभी बुजुर्ग है तो लोग क्या बोलेंगे, आगे हम कुछ हमारे मराठी में बोलते शानपण सिखाने के लिए आ गया। ऐसा मत करो, लेकिन ये जो देश के हित के लिए नहीं, अपने के अपने प्राणवायु जो चाहिए अपने को, वो बचत होना चाहिए। प्रदूषण काफी हो गया, डेवलपमेंट होता है वो देश के हित का है, लेकिन उसमें पानी खराब हो जाता है, हवा भी खराब हो जाती है। अभी देखो कल परसों नेपाल में जो हादसा हो गया, काफी लोग रोना आता है, काफी लोग, मैं डिजास्टर का काम करता हूँ, पानी में बह गए, कई लोग मरे, मुंबई के सब लोग जा गए, हमारे साथी आप 3 साथ में है तो एक चला गया। ऐसे दुर्भाग्य घटना होती है, तो ये पर्यावरण के हित के लिए सभी लोगों ने अभी जागरूक होना चाहिए। अरे मेरा निजी काम है, मैं देश में रहा हूँ, मैं प्रथम देश कर करके बताना चाहिए, और ये पर्यावरण का काम हर बंदे ने करना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का सब लोगों को सुझाव है।
0: जी जी जी, कोई एग्जाम्पल वगैरह दो ना, जैसे कि आप महाराष्ट्र में जो काम किया है अलीबाग में वगैरह, तो इस तरह से कोई बच्चे, स्कूल के बच्चे कुछ एग्जाम्पल स्थापित किया हो आपके लेक्चर के बाद, ऐसे कुछ उदाहरण हो तो वो बताइए, ताकि प्रैक्टिकल हमारे यहाँ भी कुछ कर सके बच्चे।
1: मैं स्कूल में ज्यादा लेक्चर देता हूँ, मैं शिक्षक बहना और बहनों को ये सुझाव दूंगा कि पर्यावरण हित के लिए आप स्कूल में चित्रकला स्पर्धा जो आयोजित किया जाता है, तो उसमें पेड़ पौधे जिनकी नाम लोगों को मालूम नहीं, गांव के किसान भाइयों को, किसान बहनों को मिलो, इस पेड़ को क्या बोला जाता है, वड बोला जाता है, इसको क्या बोलता है, इमली बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ये सब आप उनसे सीखो, उसका याद करो, और बच्चे लोग को सिखाओ, उनको चित्रकला स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा ले लो कि हमने अगर पेड़ नहीं लगाए तो क्या हो जाएगा। ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बच्चों में बढ़ोतरी करो, ताकि वो बड़े जब जब हो जाएंगे तो अपना काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं यही भी स्कूल में जाता हूँ तो पहले उनको, कभी कभी टीचर लोग को गुस्सा आता है, पेड़ के नाम जानकारी चाहिए हर बंदे को, जो ज्यादा मुझे पेड़ के नाम बता, उनको मैं चॉकलेट खिला देता हूँ, बहुत अच्छा लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, हाँ ये जानकारी है। अब क्या हो गया, हमारे जिला परिषद के स्कूल है, वो हर गांव में रहते हैं, खेड़े गांव में, तो वहाँ का जो माहौल है, वहाँ की जो जमीन है, उसके बगल में हमारे कई आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त रहते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे लोगों को, किसान के लड़के होते हैं तो जो खाली जमीन में सब्जी उगाते हैं, वो बच्चे लोगों को सिखाते हैं तुम उगाओ, सर को तो मालूम रहता है, टीचर को मालूम रहता है, वो काम करना है, उनको बढ़ोतरी दे दो कि छोटा सब्जी कैसा उगाने का, कैसा बीज डालने का, क्या क्या करने का, ये बच्चे को अगर सिखाएंगे हम लोग, तो बच्चा सर आता है पहली कक्षा में तो सातवीं कक्षा, सात साल तो रहता ही उधर,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो एक तो पेड़ लगा, उसको बोलेगा लोटा भर पानी, जैसा तुम आओगे पानी पीने का समय हो गया, एक ही लोटा खाली जाके वो पेड़ को लगाओ, और वो पेड़ को वो बच्चे का नाम देने का साथ, वो जब भी बड़ा हो जाएगा
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: कभी कभी सर वो स्कूल में आएगा, और मैंने लगाया हुआ पेड़ कितना बड़ा हो गया, कितना मोटा हो गया, फल लग गए क्या, ये सब आने वाले जो स्कूल में बच्चे हैं उनको सिखाएगा, ताकि उनमें भी बढ़ोतरी हो जाए कि हम लोग ने भी एक पेड़ लगाना चाहिए, चाहे कहीं भी लगाओ, मंदिर के पास लगाओ, स्कूल में लगाओ, घर के बाजू में लगाओ, लेकिन हर साल में एक पेड़ लगाना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: तो ही पर्यावरण के लिए सरकारी अफसर तो काम करते हैं, वो अपने को बताते हैं, लेकिन मैं मेरा देश के हित के लिए और मेरे प्राणवायु मेरे खुद के लिए मैं अगर काम करूं तो बहुत बढ़िया हो सकता है, ऐसा मेरा खुद का सुझाव सर है।
0: जी जी जी जी, चलिए जयपाल सर, बहुत ही अच्छी बात है आपने बता दिया, और मुझे लगता है कि हमारे सभी जो श्रोता बंधु हैं, जो विद्यार्थी मित्र हैं, टीचर हैं, वो अगर सुन रहे हैं तो वो इस तरह का जो है एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। जब दूसरी कक्षा या पहली कक्षा में बच्चे आते हैं तो उनके हाथों से पेड़ लगाना, बीज देना, उन्हें बीज लगा देना और उनको फिर उसकी जिम्मेवारी देना, जब तक वो स्कूल पढ़ रहे हैं तब तक जो है निश्चित तौर पर अपना काम करते रहे और पानी देते रहे, तो सात साल में वो पेड़ भी बड़ा हो जाएगा, उसको भी खुशी होगा और बच्चे को उसके लिए आप सम्मानित भी कर सकते हैं कि इस बच्चे ने इस तरह से मेहनत किया करके। आइए साथियों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर नई दुनिया नया जमाना, इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और निश्चित तौर पर आपको अच्छा लग रहा है, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और हमारे साथ जयपाल सर हैं जिनसे बातें हो रही हैं। नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं जहाँ पर हम लोग पर्यावरण को लेकर बातचीत करते हैं। और पर्यावरण में आप चाहे ना चाहे लेकिन आपको कभी ना कभी पर्यावरण के लिए काम करना ही होगा, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो पर्यावरण की मार भी हमें ही मिलने वाली है। जिस तरह से आज सिचुएशन है पूरे राजस्थान में, अभी 2026 चल रहा है, 2 महीने से बिल्कुल बारिश नहीं है जबकि इस समय बारिश का टाइम है। और देखेंगे न्यूज़ में हम लोग की चारों तरफ पानी ही पानी है, नेपाल में पानी और भी दिल्ली में अभी भी बारिश अच्छी हो रही है, महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, लेकिन राजस्थान के कुछ बनासकांठा के एरिया में बिल्कुल 2 महीने से पानी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, हो सकता है कि अगर पानी बरसे नहीं तो अकाल सिचुएशन भी हो सकता है। तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा नौबत हम सभी को ना मिले या ना आए, इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। तो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा और अगर हम स्कूल टाइम से ही पेड़ लगाने की आदती हो जाते हैं तो वो हमारे आदत में एक, जैसे ना हर व्यक्ति को कोई ना कोई आदत होती है, किसी को ज़्यादा बोलने की आदत होती है, किसी को कम बोलने की आदत होती है, किसी को चाय पीने की आदत होती है, किसी को नहीं होती, कोई गुटखा खाता है कोई नहीं खाता है, तो इस तरह की आदतें हैं हमारी। तो वैसे ही हमें जो है, हमें अपने जीवन में एक आदत बना लेनी चाहिए कि जहाँ भी खाली जगह दिखे वहाँ पेड़ लगाए बस। तो आप देखेंगे कि पूरा ऐसा करने से हम भारत को जो है समृद्ध कर सकते हैं और अकाल जैसी नौबत को बचा सकते हैं। तो आइए जयपाल सर, मैं चाहूँगा कि पर्यावरण के लिए और क्या बताना चाहेंगे आप।
2: जी, भारत देश तो आपको जानकारी है कृषि प्रधान देश है। हर बंदे का अपना अपना गांव में निजी खेती रहता है।
1: जी जी जी।
2: पढ़े लिखे होने के नाते हम गांव छोड़ के शहर में जाते हैं, कहीं दूरी पे भी जाते हैं।
1: जी
2: तो
1: जी।
2: गांव में हमारे माताजी और पिताजी रहते हैं, बोल सकते हैं वो बूढ़े होते हैं, लेकिन अपनी जो खेती है वो ऐसे ही ओसार मत रखो। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और आपके निजी राजस्थान सरकार के कृषि मंत्रालय के तरफ से हर किसान भाई को अपनी खेती डेवलप करने के लिए कई योजना रखे हैं। अपनी मेहनत करो और उसके साथ चंदा की जो जरूरत है वो सरकार आपको देती है, लेकिन आपके खेती में आप पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने के लिए आपको वो गड्ढा मारने के लिए, तार कंपाउंड के लिए और पेड़ भी खरीदने के लिए चंदा दिया जाता है सरकार के तरफ से। तो ये करो, आप नौकरी के लिए कहीं लंबे हो तो भी वहां से जरा अपना गांव में आओ और अपने खेती में वो पेड़ लगाने का काम करो। और आपको इतना आनंद मिलेगा कि पूछो मत। आप सभी को मालूम है जो इजराइल देश है, अपने पड़ोसी खास दोस्त है, वहाँ पानी नहीं, कम पानी पड़ता है। और अपने देश में दिल्ली में महाराष्ट्र में इधर बाढ़ आई उधर बाढ़ आई, कई जगह में पानी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन पानी का सही इस्तेमाल करना सीखो। क्या होता है आज के जमाने में, आप पढ़े लिखे होने से आपके कई दो चार चाकी वाहन दो चाकी वाहन हर एक बंगले के हर मकान के बाहर चार चार खड़ी रहती है। आपको ध्यान आता है कि आप सुबह में जब बेबी को बोलते हैं जरा गाड़ी साफ करना का है, तो आपके नल में आप पाइप लगाते हो और नल पाइप से गाड़ी धोना चालू करते हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में पारसी समाज के बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, पैसे वाले, और उनके पास कई गाड़ियां रहती है, कई नौकर भी रहते हैं। आप उन गौर से देखेंगे तो सुबह में वो पारसी भाई खुद बाल्टी लेके अपनी गाड़ी खुद साफ करता है एक बाल्टी से। हम लोग क्या करते हैं, राजस्थान के भाई हो महाराष्ट्र के हो सभी, वो पाइप से पानी का बहुत अपव्यय करते हैं, वो ठीक करना नहीं चाहिए। पानी का सही उपयोग करो जैसा इजराइल में, पूरा वर्ल्ड में इजराइल के जो ये है खेती का प्रयोग वो बहुत बढ़िया है और हमारे भी हमारी जमीन बहुत बढ़िया है। आप नौकरी के साथ में अगर किसान अपना पारंपरिक जो बिजनेस है धान लगाने का पेड़ लगाने का ये काम करो ना, आपको आमदनी हो जाएगा। ये मैं क्यों बताता सर, मैं भी नौकरी करता था, मैं गवर्नमेंट का रेलवे पायलट था, मेरी खेती से लंबा रहता था, लेकिन मुझे खेती से इतना लगाव है, बाप जादी की खेती है, हम मछली की भी खेती करते हैं, हम आम की भी खेती करते हैं, उससे इतना आनंद मिलता है कि खुद ने उगाया हुआ खाना सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहता है। अभी आजकल क्या होता है, खाद भी न डालना उसको सेहत के लिए ठीक नहीं। मैं आपके सामने बैठा हूँ कि तंदुरुस्त आदमी, आपके खेत में उगाया हुआ सब्जी आप खाएंगे, जैसे मैं माउंट आबू में आया हूँ, आज मैं यहाँ रोजाना 5 दिन से खाना खाता हूँ, यहाँ की सब्जी खाता हूँ, दाल खाता हूँ, ये सब यही उगाया जाती है। ये आप सब लोग मेरे पत्रकार भाइयों को मैंने बताया, आप जाके खेती देखो, अंगूर देखो, सब्जी देखो माउंट आबू की, वो बाहर से नहीं आते। तो यही का उपयोग हम लोग किसान करके करना करेंगे घर में अपना, तो ये देश के पर्यावरण के हित का ही काम है ना। और आपका आरोग्यम धन संपदा, आप खुद किसान ने वो पौड़ा लेके अगर खेती में काम करोगे, आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली व्यायाम हो जाएगा, आप तंदुरुस्त होते जाओगे, खाना भी बढ़िया खाओगे। और इसीलिए आप सभी को बता सकते हैं कि मैंने ये आम लगाया है, मैं जो मेरे दोस्त लोगों को, पत्रकार लोगों को हर साल मेरे घर के आम में जब देता हूँ तो उनको कितना आनंद होता है, वो देखने के लिए आते। क्या होता है, आदमी का भी आदमी है, वो सोचता है सही में है क्या। आप भी हमारे इधर अगर महाराष्ट्र में आवे तो मेरा अलीबाग, मेरा नाम यहाँ से ले लो, मधुबन से आपका स्वागत है हमारे खेत पे। हमारे यहाँ काजू बोला जाता है, 2000 काजू का झाड़ है मेरे मौसी के लड़के के खेती में, मेरे पास आम है, आपको खिला देंगे। हमारा खुद का सब्जी हम बनाते हैं, उगाते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। तो मैं लोगों को सुझाव दूंगा कि आप जमीन खाली मत रखो। आपके राजस्थान गवर्नमेंट आपको पैसा देती है बीज के लिए, सब्जी के लिए, भारत सरकार भी देती है, उसका सही उपयोग करके आप अपना खेती हरियाली से एक हरियाली करो, ताकि आपको भी आनंद मिलेगा और आपका देश के हित के लिए काम भी हो जाएगा ना, चंदा भी मिलेगा आपको। और आनंद जो है हरियाली देख के आपके आंखों को, आंखों में इतना बढ़पन आता है, अरे क्या सब हरा भरा है, आप भी आपका जमीन हरा भरा कर सकते हैं। ये लोगों को सिखावट देने के वजह से आप अपना खुद का काम करो और सरकार को नमस्ते करो, जो सरकार भले कोई हो लेकिन योजना किसानों की है। अभी वे कल आया तो हमारे यहाँ के किसान भाई जो है सब आनंदी है। हमारे यहाँ स्पर्धा रहती है, हमारे गवर्नमेंट स्पर्धा करती है कि आपने कितना भाग उगाया है, कितने फल उगाए हैं। सरकार हमारी बड़प्पन से सम्मान करती है, ये सम्मान लोगों के लिए अच्छा रहता है। क्यों? कि उनको इनको सम्मान मिला, मुझे भी ज्यादा काम करना चाहिए, तो अपना खेती डेवलप करो सरकार के जरिए से, और लोगों को भी बताओ कि ये काम करने से पर्यावरण को तुम्हारा ही छोटा सा हित शामिल हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
2: जी।
1: चलिए जयपाल जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बता दिया, आशा करूंगा हमारे सभी किसान भाइयों को और जो विद्यार्थी मित्र हैं उनके लिए आपका ये आज का ये कार्यक्रम, आपकी बातें उनके काम की है और जो लोग काम करेंगे उनको पर्यावरण के प्रति जो है अच्छा काम तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम पूरे भारत के लोगों के लिए भी एक शुद्ध हवा यानि एक ऑक्सीजन जो है निर्माण करने में सहयोगी बनते हैं। तो मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और जाते जाते जयपाल सर से कहूंगा एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे, एक संदेश क्या देना चाहेंगे।
2: संदेश ऐसा है कि आप जब भी मौका मिले तो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का जो सेंटर है
1: जी जी जी
2: माउंट आबू में एक बार जरूर आना। क्या होता है कि आदमी बात करता है, कई लोगों को आदमी का विश्वास नहीं रहता है, तो यहाँ के प्रैक्टिकल देखो, यहाँ के कैसी खेती किया जाता है। मैं तो सबका अनुरोध करूंगा और धन्यवाद दूंगा पंत प्रधान महोदय को
1: जी जी जी
2: कि यहाँ जो अपने जो बाबा है उन्होंने आगे की सोच करके जो सोलर प्रोजेक्ट यहाँ बिठा है जर्मन कंपनियों के जरिए से
1: जी जी
2: वो देश का पहला प्रोजेक्ट

0: उनको आशा व्यक्त करो कि मुझे एक बार माउंट आबू जाना है, आप हमारे यहाँ हर कैटेगरी के सम्मेलन यहाँ होते हैं, तो आपको अनुरोध है आप एक बार राजस्थान में आइएगा और यहाँ का अनुभव लीजिएगा, ऐसा ही मैं आपको कहूंगा। ओम शांति।
1: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जयपाल जी, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया, जहाँ से आप सीख रहे हैं, जहाँ से आपको अच्छी अनुभूति हो रही है, आपने सबको आह्वान किया कि यहाँ पर आएं और यहाँ पर किसी भी तरह से आएं, चाहे किसान सम्मेलन में आएं या मीडिया सम्मेलन में आएं, लेकिन आकर जो है अनुभव करके जाइए और पर्यावरण के लिए काम करें, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं साथियों अगले शनिवार को नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा। जय हिंद जय भारत। ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। साथियों, आज जीवन कौशल इस कार्यक्रम में हम लोग बातें करने वाले हैं बहुत ही सुंदर करियर के बारे में, वीडियो एडिटिंग के बारे में। साथियों, मैं कहानी सुनाता हूँ एक आपको कार्यक्रम की शुरुआत में ही। एक बहुत ही अच्छा एडिटर रहे हैं हमारे राजस्थान में, जिनका नाम है राहुल। अब ये बंदा जो है एक छोटे से कस्बे में रहता था, उसके पास ना महंगा कैमरा था ना फिल्म का कोई साधन या फिल्म वालों से कोई संपर्क। बस उसके पास था तो एक पुराना उसका लैपटॉप और सीखने की एक तीव्र इच्छा थी। साथियों, दोनों चीज़ें ज़रूरी है एक वीडियोग्राफर के लिए। राहुल ने यूट्यूब से वीडियो एडिटिंग सीखनी शुरू कर दी। शुरुआत में वह शादी के वीडियो और स्थानीय कार्यक्रमों के वीडियो एडिट करके लोगों को देता था। लोग बहुत कम पैसे देते थे, कई बार काम की कद्र भी नहीं होती थी, लेकिन राहुल सीखने के ललक से, इच्छा की वजह से वो करते रहता था और वो कभी हार नहीं माना कि मुझे इसकी कीमत मिलनी चाहिए। जो जितना देता, कम देता, ज़्यादा देता, वो रख लेता। अब इससे क्या हो गया, उसका अनुभव बढ़ा और उसकी प्रैक्टिस, पकड़ अच्छी हो गई वीडियो एडिटिंग के फील्ड में। और एक दिन उसने एक छोटी सी सामाजिक डॉक्यूमेंट्री बनाई, गांव की बदलती सुबह। अब ये टाइटल काफी लोगों को पसंद आया। उसने साधारण फुटेज में भावनात्मक संगीत और सटीक कट्स के जरिए ऐसी कहानी रची कि वीडियो वायरल हो गया। बस साथियों, फिर क्या था, आज राहुल एक नामी OTT प्लेटफॉर्म के लिए वीडियो एडिटर बन गया है और वो गर्व से कहता है, मेरे पास कैमरा नहीं था लेकिन मेरी दृष्टि, विजन क्लियर थी। साथियों, वीडियो एडिटिंग के लिए आपको अपनी दृष्टि, विजन क्लियर चाहिए। कैमरा हो ना हो, सेकेंडरी बात होती है। तो आइए आज हम लोग वीडियो एडिटिंग के बारे में बातें करेंगे, इस करियर के बारे में। आज का युग विजुअल मीडिया कहते हैं, दृश्य माध्यम का युग है। आप देखिए आपके हाथ में जो मोबाइल फ़ोन है, सारा दिन आप इसे यूज़ कर दें। सोशल मीडिया है, OTT प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब है, वेब सीरीज़ है, फिल्में हैं, विज्ञापन है, न्यूज़ चैनल्स है, हर जगह आप देखिए, जहाँ भी वीडियो का ही बोलबाला है। लेकिन कैमरे के सामने दिखने वाली चमक दमक के पीछे जो व्यक्ति कहानी को आकार देता है, भावनाओं को गहराई देता है और साधारण फुटेज को प्रभावशाली कहानी में बदलता है, वो है वीडियो संपादक, वीडियो एडिटर। साथियों, वीडियो एडिटर बनना आसान भी नहीं लेकिन मुश्किल भी नहीं। आप इसे जितना समझ के करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो आइए, वीडियो संपादन केवल कट पेस्ट का काम नहीं है बल्कि ये कला है, तकनीक है और संवेदनशीलता का एक सुंदर संगम है। जितनी गहराई से दृश्यों को आप क्रिएट करेंगे उतना वो टाइम टेकिंग रहता है, लेकिन काम अच्छा बन के सामने आता है। तो साथियों, ये एडिटिंग बहुत छोटा सा लगता है लेकिन ये बहुत बड़ा काम कर देता है। किसी भी स्टोरी को लोगों को आसानी से समझाने में वीडियो एडिटिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। भाई, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। आज आप सुनाए हैं रेडियो 101.07.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आप सभी का करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और हम बात कर रहे हैं वीडियो एडिटर के बारे में। साथियों, वीडियो संपादक कौन होता है, वीडियो एडिटर कौन होता है? एक ऐसे प्रोफेशनल को वीडियो एडिटर कहते हैं जो रिकॉर्ड किए गए वीडियो फुटेज को चुनकर क्रमबद्ध तरीके से उसको रखता है और फिर अनावश्यक हिस्से को हटाकर साउंड, म्यूजिक, एफेक्ट्स, ट्रांजेक्शन और रंग, कलर गार्डनिंग के माध्यम से एक प्रभावशाली वीडियो तैयार करता है। सरल शब्दों में बताएं तो वीडियो एडिटर कहानी का अदृश्य निर्देशक भी होता है ना साथियों? आप देखिए, वीडियो एडिटर का शायद नाम आपको पता पड़े या ना पड़े, आप पूरे फिल्म में आप डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, इनके नाम जरूर देखते हैं, लेकिन इन सभी को प्रत्यक्ष करने का काम एक वीडियो एडिटर बखूबी करता है ना, कमाल की बात। तो वीडियो संपादन क्यों है एक बेहतरीन करियर, इस पर आप अगर सोच रहे होंगे तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के समय में डिजिटल युग की बढ़ती मांग है। आप देखेंगे हर ब्रांड, संस्थान, व्यक्ति अपनी पहचान वीडियो के माध्यम से बना रहा है। ऐसे में कुशल वीडियो एडिटर की मांग तेजी से बढ़ रही है। दूसरा है क्रिएटिव स्वतंत्रता, यानी ये करियर उन लोगों के लिए बहुत आदर्श है जिन्हें कहानी कहना, संगीत साजना साझा करना और विजुअल से खेलना पसंद है। तीसरा, फ्रीलांसर और जॉब दोनों के अवसर यहाँ पर भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। आप किसी चैनल, प्रोडक्शन हाउस, न्यूज चैनल, एजेंसी में नौकरी कर सकते हैं या फिर आप घर से फ्रीलांसर के रूप में प्रोजेक्ट भी लेके काम कर सकते हैं। चौथी बात आती है अच्छी कमाई की संभावना। अनुभव और स्किल बढ़ने के साथ कमाई भी कई गुना बढ़ जाती है साथी। अब बात करते हैं वीडियो संपादन बनने के लिए, वीडियो एडिटर बनने के लिए कौन से स्किल की ज़रूरत है। एक तो पहला तकनीकी स्किल होना चाहिए आपको, एडोब प्रीमियर प्रो, ये सॉफ्टवेयर, फाइनल कट प्रो, डा विंसी रिजॉल्व, आफ्टर इफेक्ट्स, अवीड मीडिया कंपोजर, ये सारे वीडियो एडिटिंग टूल सॉफ्टवेयर है जिसके माध्यम से आप अपने आप को अच्छा जो है वीडियो एडिटर का काम करने के लिए सक्षम है। ये सारे सॉफ्टवेयर आपको वीडियो एडिट करने के लिए हेल्प करता है। दूसरा है रचनात्मक सोच, स्टोरी टेलिंग की समझ होनी चाहिए, टाइमिंग और रिदम का ज्ञान होना चाहिए, भावनाओं को दृश्य में ढालने की क्षमता होना चाहिए। कई बार हम किसी भावना को दृश्य में लाते हैं लेकिन उसे समापन करना भी, फेयर आउट करना भी आना चाहिए, वो भी कहाँ और कैसे करना चाहिए एक सोच के आधार पर आप कर सकते हैं। आप जब रचनात्मक सोच रखते हैं तो आप त्रिवेणी रूप से सोचते हैं, एक आप अपना कंप्यूटर में वो किस तरह से दिख रहा है, दूसरा पिक्चर में कैसे दिखेगा और तीसरा लोग इससे क्या समझेंगे। तो इस त्रिकोणी भावनाओं को अगर समझ लेते हैं तो चीज़ें अच्छी बन जाती हैं। तीसरी बात आती है यहाँ पर साउंड और म्यूज़िक की समझ, बैकग्राउंड म्यूज़िक का सही उपयोग करें, डायलॉग क्लियरिटी हो, साउंड इफेक्ट की टाइमिंग प्रॉपर मैच किया जाए, धैर्य और एकाग्रता। आखिरी में आता है साथियों, यहाँ पर एक वीडियो एडिटर को हमेशा धैर्य रखना ज़रूरी है। वीडियो एडिटिंग एक धैर्य का काम है, कई घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठकर सूक्ष्म बदलाव करने पड़ते हैं और कभी कभी बहुत टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन चीज़ अच्छी बन के निकल के आती है। इसीलिए धैर्य और एकाग्रता का होना वीडियो एडिटर में बहुत बहुत ज़रूरी है। तो आइए यहाँ पर लेते एक छोटा सा ब्रेक, सुनते एक बहुत ही प्यारा संगीत आप सबके लिए। सुनते रहो, मस्कराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। और आप सुन रहे हैं वीडियो एडिटिंग के बारे में। साथियों, हमने काफ़ी अच्छी बातें समझ ली है। इसमें जो कौशल की ज़रूरत होती है, जो टेक्निक की ज़रूरत होती है, वो आप एक बार समझ ले, फिर से एक बार नोट डाउन करें तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। जहाँ पर आप टेक्निकी कौशल एडोब प्रीमियम प्रो, फाइनल कट प्रो, डाविंची, आफ्टर इफेक्ट, एविड मीडिया कंपोजर, ये सारे सॉफ्टवेयर है जिसको अच्छी तरह से आपको सीखना है। दूसरी बात, रचनात्मक सोच हो, स्टोरी टेलिंग, रिदम, टाइम, भावनाएं, समय पर कैसे आ जाए, ये चीज़ें देखनी है। साउंड और म्यूज़िक की समझ, धैर्य और एकाग्रता, ये चीज़ें आपके जीवन में एज ए एडिटर इनबिल्ट होना चाहिए तो आप अच्छा कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम लोग शिक्षण और परीक्षण के बारे में। वीडियो संपादन बनने के लिए, संपादक बनने के लिए किसी एक डिग्री की बाध्यता नहीं है। आप किसी भी एक स्ट्रीम के माध्यम से इन चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे मास कम्युनिकेशन, इसमें आप मास्टरी करो तो आपका एडिटिंग इसमें आ जाता है, वीडियो एडिटिंग इसमें आ जाता है। फिल्म मेकिंग में भी, मीडिया स्टडीज़ में भी आता है, या फिर ऑनलाइन कोर्स, ये भी एक कला सीख सकते हैं। यहाँ पर सबसे ज़रूरी है प्रैक्टिस और पोर्टफोलियो बनाना। जब आप इस तरह से प्रैक्टिस करके पोर्टफोलियो अपना बनाते हैं तो आप बहुत अच्छा कर पाते हैं। करियर की बात करें तो हम लोग इसमें ये सारी चीज़ें जब आपको समझ में आ जाता है, कोर्सेस कर लेते हैं, किसी भी एक स्ट्रीम में आप मास्टरी हासिल करो, क्या होगा कि जब आप YouTube पे या फिर किसी भी जगह पे, किसी भी स्ट्रीम में, ऑनलाइन पोर्टल में वीडियो डालना चाहते हैं तो वहाँ पर चांस ये होता है कि आपको जल्दी कमाई भी मिल सकती है, लेकिन उसके लिए आपका वीडियो एडिटिंग जो कला है वो उसमें मास्टरी आपकी होनी चाहिए। इसलिए जब पढ़ाई के दौरान आप हर चीज़ को बारीकी से सीखें। अगर आपको वीडियो में इंटरेस्ट है तो वीडियो एडिटिंग को ध्यान से सुने, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, टीचर से पूछते रहे और सर बना बना के आप उनको प्रैक्टिस करते रहे उनके साथ में। और अगर आपको ऑडियो एडिटिंग की ज़रूरत है तो आप उसमें मास्टरी कर सकते हैं, या आपको न्यूज़ एंकरिंग की बात अच्छी लगती है तो वो कर सकते हैं। लेकिन हर चीज़ के लिए प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। साथ ही यहाँ पर करियर अपॉर्चुनिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा है। आप देखेंगे कि आप एक वीडियो एडिटर बन जाते हैं या अच्छा काम करते हैं तो आप फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में काम कर सकते हैं, YouTube चैनल और डिजिटल क्रिएटिव वर्क्स के लिए काम कर सकते हैं, न्यूज़ चैनलों में काम कर सकते हैं, विज्ञापन एजेंसियों में काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट कंपनियों में काम कर सकते हैं, कॉर्पोरेट वीडियो और डॉक्यूमेंट्री बनाने में आप हेल्प कर सकते हैं, रेडियो और आध्यात्मिक संस्थानों के वीडियो प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि किस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं उनके बारे में बताना। तो ये सारी चीज़ें करियर अपॉर्चुनिटीज़ में आती है। साथ ही जब आप इन चीज़ों को अच्छी तरह से कर लेते हैं तो आपके लिए स्काई इज़ द लिमिट ना, आपको खुद को नहीं पता होगा कि आप कितने आगे पहुँच सकते हैं। अगर आपके पास एडिटिंग का काम आता है तो छोटे से लेकर बड़ा तक का अवसर आपके पास होता है। कोई आपको शॉर्ट फिल्म लेके आया है और वो बोलेंगे इसको एडिट करो, कोई आपके पास सीरियल लेके आया है उसको एडिट करने के लिए कहेंगे, कोई आपके पास बड़ी फिल्म भी लेके आए होंगे, लेकिन एडिट करने के बाद पता चलता है कि कितनी बड़ी फिल्म है। इस तरह आप जो है अपना कार्य करते हुए अपने आप को साबित कर सकते हैं और एक अच्छा करियर विकल्प आपके पास बना रहता है। इसके साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप कर सकते हैं साइड बाय साइड, जैसे स्क्रिप्ट लिखना और स्टोरी एक्यूरेट, स्टोरी में थोड़ा सा एडिशनल करेक्शन करके भी उसको अच्छा बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है एक एडिटर के पास बाद में जब शूट करके क्लिप्स या शॉर्ट्स उनके पास आते हैं तो ऑप्शन उनके पास बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो आइए साथियों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सबके लिए। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। चलिए साथियों, मैं आप सभी को कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे हम लोग पहुँचे हैं, जहाँ पर हम लोग अर्निंग के बारे में, चुनौतियों के बारे में और अनुभव के बारे में बातें करते हैं। तो साथियों, यहाँ पर मैं एक और प्रेरणादायी कहानी से जोड़ना चाहूँगा आपको। नेहा नाम की एक लड़की मध्यम परिवार से आती थी। अपने माता पिता चाहते थे कि वह कोई सुरक्षित नौकरी कर ले, लेकिन नेहा को बचपन से ही फिल्में देखने का और उन्हें समझने का शौक था। तो कॉलेज के दिनों में उसने एक छोटा सा कैमरा खरीदा और कॉलेज इवेंट्स के वीडियो एडिट करके पोस्ट करने लगी। कई बार उसे ये सुनना पड़ा कि ये सब क्या टाइम पास है आपका। नेहा ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, हार नहीं मानी। उसने ऑनलाइन कोर्स किया, रात रात भर एडिटिंग सीख ली। एक दिन उसका बनाया हुआ शॉर्ट फिल्म एडिट एक फिल्म फेस्टिवल में चुन लिया गया। आज नेहा एक जानी मानी विज्ञापन एजेंसी में सीनियर वीडियो एडिटर है और अपनी माँ से कहती हैं, हर कट में आपका विश्वास जुड़ा है माँ। साथियों, इस करियर में चुनौतियाँ ये हैं कि लंबे समय तक काम करना पड़ता है, क्लाइंट की बार बार बदलती डिमांड होती है, समय सीमा का दबाव होता है, आँखों और स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन जो व्यक्ति इन सभी इसी काम को जुनून से करता है, दिल से करता है, उसके लिए ये चुनौतियाँ सीखने के अवसर बन जाती हैं। अब जाते जाते मैं ये भी बताऊंगा आपको कि भाई कितनी कमाई हो सकती है। साथियों, इस करियर में भी 15,000 से शुरू होकर 30,000 हर महीने मिल सकते हैं और अनुभव होने के बाद आपके पास आता है विकल्प 50 से 1.5 लाख तक का प्रति महीना आपका पैकेज बनता है। और फिर OTT प्रोजेक्ट है या फिल्म है, फ्रीलांसिंग है, इसमें आपको जो है जैसा वहाँ का डिमांड होगा वैसे वो चीज़ें उतने पैसे आपको मिल जाएंगे। साथियों, 1.5 लाख आपको अनुभव के बाद प्राप्त होता है। अगर आप फ्रीलांसर बनके करते हैं तो आप जितना करेंगे उतना कमाएंगे, 2-3-4 लाख, है ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी कला और लोगों से कनेक्ट होने की क्षमता कितनी है। साथियों, निष्कर्ष यही है कि वीडियो संपादन का करियर सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि एक रचनात्मक यात्रा है। यह उन लोगों के लिए है जो पर्दे के पीछे रहकर भी दुनिया को प्रभावित करना चाहते हैं। आज जब हर कहानी वीडियो बनाना चाहती है, तब एक कुशल वीडियो एडिटर की जरूरत पहले से ही कहीं ज़्यादा है। अगर आपके पास धैर्य, कल्पना और सीखने की लगन है, तो वीडियो एडिटिंग आपके लिए एक उज्जवल भविष्य का द्वार खोल सकती है। साथियों, तो चलिए, आशा करूँगा आज वीडियो एडिटिंग के बारे में हमने काफ़ी कुछ सुना जाना और ये एक रचनात्मक यात्रा है आपकी। आप इस पर खो जाइए, डूब जाइए और लोगों को एक अच्छी चीज़ निकाल के दीजिए। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नई बातें लेकर। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम, नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं।
1: मैया मोरी मैं नहीं मां खायो,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: ये देखो, इल्मो ने शाहीन के लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार कर लिया, एकदम परफेक्ट।
1: वाह, ये गत्ते और रस्सियों से बनी गुड़िया तो दूर से ही चमक रही है,
0: है ना? ये इल्मो को बहुत बहुत पसंद है पापा। अगर आज इल्मो का बर्थडे होता तो इल्मो भी अपने लिए यही बनाता,
1: और शायद शाहीन को भी उतना ही पसंद आएगा। चलो जल्दी से तौफीक चाचा के यहाँ चलते हैं।
0: चलो ये। वाह, गुब्बारे! ओह शाहीन, इल्मो और पापा आ गए, और साथ में लाए शाहीन के लिए ये खास गिफ्ट। हैप्पी बर्थडे शाहीन।
1: जन्मदिन की बधाइयां शाहीन।
2: थैंक यू इल्मो, थैंक यू लुई चाचा। इसमें होगा कोई खिलौना, है ना?
3: अरे अभी से अंदाजा कर लोगी तो गिफ्ट खोलने का मजा कैसा।
2: एल्मो मैं इसे खोलूं?
0: हाँ, शाहीन को सरप्राइज मिलने वाला है।
2: इतनी सुंदर गुड़िया, थैंक यू एल्मो, लुई चाचा। एल्मो मैं अभी आई।
1: चलो जन्मदिन का गिफ्ट फ्लॉप तो नहीं हुआ।
3: भैया अब तो कुछ दिनों तक अब्बा अम्मा को भी अपनी बिटिया से मिलने के लिए वो क्या कहते हैं अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा।
2: चलो एल्मो, अब गुड़िया मैच के लिए तैयार है।
0: ये टोपी और बैट। गुड़िया बैटिंग करेगी या बॉलिंग, हुँ?
2: दोनों।
0: चलो चलो।
3: वाह भाई, यहाँ हम सोच रहे थे कि शाहीन अपनी नई गुड़िया के बाल बनाएगी, मेकअप करेगी, और लगता है इसे भी अपनी तरह धुआंधार बल्लेबाज बनाएगी।
1: बच्चों को खेल खिलौनों में फर्क कहाँ दिखता है, बस जहाँ जैसे मन लग गया उसी चीज से खेलने लग जाते हैं।
3: वक्त भी तो ऐसे ही है मियाँ, जब हम इनकी उम्र के थे तो खेल के कायदे साफ होते थे, खिलौनों के लिए भी।
1: वही तो, लड़के दौड़ भाग करेंगे, घास मिट्टी में लोटपोट होंगे, और लड़कियाँ गुड़ियों के साथ घर घर खेलेंगी, क्यों?
3: बिल्कुल ऐसी सोच हुआ करती थी, मगर आज के जमाने में सोच बदल तो गई है भैया, ये तो मानना पड़ेगा, और बदलनी चाहिए भी। लड़कियाँ किसी भी मामले में लड़कों से पीछे ना आए, सही कह रहा हूँ, और ना कभी थी। पता नहीं उस जमाने में ऐसा आइडिया आया भी कैसे।
1: सही कह रहे हो,
3: अब लड़का हो या लड़की कुछ भी खेल सकते हैं अपनी अपनी पसंद से। अब शाहीन क्रिकेट भी खेलती है, और जितनी भी गुड़िया है ना सबको कुछ ना कुछ बना के रखती है।
1: मतलब?
3: मतलब कोई गुड़िया बल्लेबाज तो कोई गुड़िया डॉक्टर।
1: वाह, जैसे एल्मो को भी गुड़िया के साथ वो रसोई सेट वाले खेल पसंद है।
4: वैसे देखो तो अपने बचपन में हमें जैसा घर वालों ने मोहल्ले वालों ने बताया समझाया हमारी सोच वैसी हो गई।
1: हाँ बिल्कुल, और मुझे तो अब ऐसा लगता है कि उस जमाने में जैसे तौर तरीके चल रहे थे बच्चों के खेल भी उसी हिसाब से तय किए जाते थे। जैसे मान लो लड़के ही पोस्टमैन बनेंगे क्योंकि दौड़ भाग वाले काम लड़कों को ही करना चाहिए,
3: और लड़कियों को घरेलू काम पर ध्यान देना चाहिए, दाल चढ़ाओ कपड़े तय करो, इसलिए लड़के गाड़ी या साइकिल वाले खिलौने से खेलेंगे और लड़कियां रसोई सेट से।
1: वही
3: पर लुई मियां, सच पूछो तो हमारे दादा जान घर में सबसे माहिर बावर्ची थे, वो शौक से खाना बनाते थे और खाते भी थे।
1: हवलदार, बावर्ची और खान पान के कदरदान, ऑल इन वन दादा जान। क्यों?
3: बिल्कुल, अरे दादी हमारी हिसाब किताब में एक्सपर्ट थी, पर खाना बनाने का शौक हमने दादाजी से ही पाया है।
1: भाई तुम्हारी बात से अपने बचपन का एक किस्सा याद आ गया।
3: तो ये लो चाय।

0: और सुनाओ कहानी।
1: एक बार स्कूल में आधी छुट्टी के टाइम हम सब मैदान में खेलने निकले।
0: अच्छा।
1: सबके सब फुटबॉल में लग गए, पर मेरा एक दोस्त था अनिल, वो एक कोने में गया और बड़े मजे से छोटी छोटी टहनिया बटोरी, पत्ते इकट्ठे किए और मिनटों में एक मिट्टी का शानदार किला बना दिया।
0: वाह, अरे लगता है उसके हाथों में कोई जादू था, मैजिक।
1: अरे उस किले को देखकर हम में से कुछ लड़के लड़कियां, बल्कि सभी इतने खुश हुए कि जाकर किले के इर्द गिर्द मजे से बागीचा भी बनाया, झंडी भी गाड़ दी। हाँ, सचमुच सबको इतना मजा आया। उफ, फिर बस पीटी सर ने फुर्र से सीटी बजाई और सिर्फ लड़कों को वापस फुटबॉल के पीछे दौड़ा दिया, बेचारे अनिल को भी।
0: सोचो, अगर तुम्हारे बचपन के दोस्तों ने जो मिट्टी का किला बनाया था उसमें अगर गुड्डे गुड़िया का फुटबॉल मैच ही हो जाता, नहीं
1: कितना मजा आता।
0: भैया एक बात तो साफ है, तरह तरह के खेल खिलौने, तरह तरह के शौक, उसका लड़का या लड़की होने से कोई लेना देना नहीं होता है।
1: बिल्कुल नहीं। अब एल्मो भी तो अपनी मम्मी को ऑफिस जाते हुए देखता है और पापा को रसोई में, शायद इसलिए उसके खेलों में भी लड़के और लड़की हर तरह का काम कर सकते हैं। अब जब एल्मो भी अपने गुड्डे गुड़ियों की दावत रखता है, हमें भी मेहमान बनने में मजा आता है।
2: शाहीन की नई गुड़िया ने ना ढेर सारे छक्के लगाए।
3: हाँ, और बन गई वुमन ऑफ द मैच।
0: बढ़िया है, लगता है गुड़िया ने इतनी जबरदस्त बैटिंग धुएंदार बल्लेबाज शाहीन से ही सीखी होगी।
3: हाँ बा, चलो एल्मो।
0: अरे तुम दोनों कहाँ चले, समोसे और केक का टाइम होने वाला है।
3: हाँ हाँ बा, पर पहले गुड़िया का घर बनाना है
2: और सजाना है। एल्मो भी अपने सारे गुड्डे गुड़िया यहाँ दावत पर बुलाएगा।
4: सेसेमी वर्कशॉप इंडिया द्वारा निर्मित, UBS ऑप्टिमस फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट द्वारा समर्थित।

0: क्या आपके पास भी कोई ऐसा हुनर है जो रातों की नींद उड़ा दे?
1: क्या आपका दिल भी किसी पैशन के लिए धड़कता है?
0: वो पैशन जो आपको भीड़ से अलग करता है, वो जुनून जो आपको हर मुश्किल पार करने में ताकत देता है।
1: चाहे वो गिटार के सुर हो, कठपुतलियों से कहानी हो, या फिर रूढ़ीवादी परंपरा को तोड़ा हो,
2: हम ला रहे हैं एक ऐसा शो जहां हम बात करेंगे उन जोशीले युवाओं से जिन्होंने अपने पैशन को ही अपना रास्ता बना लिया।
3: और ये जुनून जबरदस्त था हम में, तो आज हम गुणंतर 70 साल के हो गए, तो आज भी श्रमदान होता है और हमने हर गांव में 3-3 तालाब बना दिए आज भी।
4: तो सेवा तो सर, ये वास्तव में आपने इस कार्यक्रम का बहुत ही सुंदर नाम मधुबन रेडियो ने दिया है जुनून। ये वास्तव में जुनून है, ये चस्का है।
5: सुनिए उनकी कहानी, जानिए उनका सफर और महसूस कीजिए उस जुनून की आग को उन्हीं की जुबानी। पेश है रेडियो मधुबन पर एक अनोखा कार्यक्रम जुनून, हर शनिवार शाम 6 बजे सिर्फ आपके अपने रेडियो मधुबन 107.8 FM पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
6: साथियों और श्रोताओं, आज फिर से एक बार आपका होस्ट और दोस्त, बट इस बार हम लोग रिमोट से नहीं, स्टूडियोज में है, और स्टूडियोज से आपके साथ हूँ मैं, आपका होस्ट शरद। तो आपका फेवरेट प्रोग्राम है जुनून, और जुनून आप जानते ही हैं, आप सुनते हैं हर बार, हर शनिवार शाम 6 बजे आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 पर। और इस बार है दो शानदार गेस्ट हमारे साथ हमारे स्टूडियोज में, और स्टूडियोज आपको तो पता ही है आबू रोड पे है ना, मधुबन के कैंपस में हम बैठे हैं हमारे स्टूडियोज में, और हम आज स्वागत कर रहे हैं हमारे दो गेस्ट। दोनों ही यंग हैं, हमारे बिजली चैलेंज साथी हैं, कोमल और प्रतिभा। तो प्रतिभा जी, आप दोनों ही का हमारे स्टूडियोज में स्वागत है।
7: धन्यवाद सर।
6: हम जानना चाहेंगे आपके बारे में कि आप के बारे में, मैंने ये तो बताया है कि आप विजुअली चैलेंज हैं, हमारे दृष्टिबाधित साथी हैं, हमारे स्पेशल गेस्ट हैं, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि आपकी डिसेबिलिटी जो है वो क्या है, अभी उसकी क्या स्थिति है। पहले मैं कोमल आपसे जानना चाहूँगा।
7: यस, तो मेरी डिसेबिलिटी है कि मैं पार्शली ब्लाइंड हूँ
6: जी,
7: और मेरी माँ भी एक पार्शली ब्लाइंड है, इस वजह से मुझे ये डिसेबिलिटी आई
6: जी। जी जी जी हाँ, तो ये जेनेटिकली आपको ट्रांसफर हुआ है। जी जी, और प्रतिभा जी, आपकी क्या कहानी है डिसेबिलिटी एक्वायर करने की?
8: सर, मेरा बाय बर्थ ही है, मुझे ग्लूकोमा है, मैं भी पार्शियली ब्लाइंड हूँ।
6: जी जी
8: जी,
6: बहुत ही बढ़िया। तो डेफिनेटली आपने अपनी स्टडीज तो पूरी की होंगी है ना, तो थोड़ा सा आपका एक जुनून है जो मैं श्रोताओं को थोड़ी देर बाद बताऊंगा है ना। हालांकि कार्यक्रम का नाम जुनून है, लेकिन श्रोताओं को थोड़ा वेट तो करना चाहिए ना, इतना आसानी से हम नहीं बताएंगे चीजें। तो श्रोताओं, पहले हम इनके बारे में जानना चाहेंगे, तो इन दोनों ही हमारी बेहतरीन गेस्ट ने अपनी पढ़ाई कहाँ से की है? तो कोमल, आपने अपना स्टडीज कैसे किया इस डिसेबिलिटी के साथ में?
7: मैं जब 5-6 साल की थी, तब मैं पालघर जिले में से बोईसर शहर में पढ़ती थी
6: जी।
7: तो 2 साल मेरे पेरेंट्स को पता नहीं था कि मुझे दिखता नहीं है
6: जी जी जी।
7: तो 2 साल के बाद जब बोर्ड पे से लिखना होता है तो वो मैं लिख नहीं पाती थी, तो मेरे टीचर ने मेरे पेरेंट्स को बताया कि ये लिख नहीं पाती, तो आप इसका चेकअप कर लो
6: जी।
7: तो उन्होंने चेकअप किया तो पता चला कि ये विजुअली चैलेंज्ड है करके
6: जी।
7: तो उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे दादर में जो हमारी गर्ल्स स्कूल है श्रीमती कमला मेहता दादर स्कूल फॉर द ब्लाइंड, उसमें मुझे डाला। तो मैं 2006 में मैंने एडमिशन लिया स्कूल में
6: जी।
7: तब से मैंने 12th तक उधर पढ़ाई की है
6: जी।
7: तो 12th के बाद मैं बाहर आ गई
6: जी।
7: तो
6: जी,
7: 12-13 साल मैंने हॉस्टल में निकाले
6: जी जी।
7: के बाद मैंने पढ़ाई, मैंने फर्स्ट मतलब ग्रेजुएशन की पढ़ाई मैंने यूनिवर्सिटी से की है
6: जी।
7: ऑनलाइन ही सब उस पर था जब कोरोना चल रहा था तभी
6: जी।
7: में मैंने प्राइवेट कॉलेज से किया है, अंधेरी में है
6: जी,
7: ऐसी मेरी पढ़ाई अब तक हुई है।
6: पर आप अभी अंधेरी रहते हैं?
7: नहीं नहीं, मैं बोईसर रहती हूं।
6: जी जी, मुंबई का सबर्बन एरिया है ये। जी, तो हमारे साथ प्रतिभा जी भी हैं। तो प्रतिभा जी, आप थोड़ा सा बताएं ना अपनी अध्ययन की यात्रा के बारे में, आपने कैसे पढ़ाई की और यहाँ तक कैसे पहुँचे?
8: जी सर, मेरा पढ़ाई तो नॉर्मल स्कूल में हुआ है। मैं नांदेड़ जिले से एक छोटे से गांव की हूँ, बेलगुजरी, ये गांव में मेरा पढ़ाई हुआ है। तो मेरा दिखने का प्रॉब्लम है वो माता पिता को पता ही नहीं चला, और उनको इतना भी पता नहीं था कि स्पेशल, मतलब हमारे लिए स्पेशल स्कूल वगैरह होते हैं, वहाँ डालना होता है, वो सब पता नहीं था। तो मेरा पूरा पढ़ाई का जर्नी नॉर्मल स्कूल में ही हुआ है
6: जे.
8: तो मुझे बोर्ड के ऊपर का दिखता नहीं था, फिर भी मैं सुन सुन के वो पूरा किया है, तो किसी को पता ही नहीं चला कि मैं ब्लाइंड हूँ ऐसे।
6: जी जी, आशुतोष, वैसे पढ़ाई तो हमारी नॉर्मल स्कूल या जिसे कहते हैं हम सामान्य मेन स्ट्रीम स्कूल, तो मेन स्ट्रीम स्कूल में ही होनी चाहिए। और जहाँ पर चुनौती किसी दृष्टिबाधित या किसी दिव्यांग व्यक्ति को विशेष तरह की आ रही है, तो उसके लिए विशेष सेशंस या क्लासेस अलग से लगाई जानी चाहिए, ये प्रावधान है हमारे देश के कानून का। हालांकि बहुत सारे लोगों को इसकी जानकारी ना होने के कारण वो इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। अब समय आ गया है एक कुछ इंतजार के बाद जानने का हमारे दोनों ही गेस्ट के जुनून का, क्योंकि कार्यक्रम का नाम है जुनून। और श्रोता सोच रहे होंगे क्या पढ़ाई लिखाई की बातें हो रही है, आइए ना जुनून की बात करते हैं। हाँ बिल्कुल श्रोताओं, थोड़ा धैर्य तो रखिए, मैंने हर बार कहा है आप जुड़े रहें, सुनते रहें, मुस्कुराते रहें। आपके फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन पर जो आप सुनते हैं 107.8 FM पर, हमारे आबू रोड और माउंट आबू की वादियों से, और हमारे एप्लीकेशन रेडियो मधुबन पर। तो जुनून है श्रोताओं मलखम का। मलखम हमारे देश का एक इंडिजिनस गेम, इसने हजारों सालों तक हमें जीवन जीने का तरीका सिखाया, सलीका सिखाया, और मलखम अब जगह बना रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। लेकिन मलखम के साथ खास बात है इन दो जुनूनी लड़कियों और कहे कि हमारी बेटियां, ये इस तक कैसे पहुंची है, आइए ना उनके बारे में जानते हैं। तो मलखम के बारे में कोमल हम जानना चाहेंगे, मलखम क्या है, श्रोताओं को थोड़ा बताइए ना जिन्होंने नहीं देखा है या नहीं जाना है।
7: बेसिकली मलखम एक एज अ स्पोर्ट्स करके जाना जाता है अभी
6: जी,
7: और मेरी मलखम से दोस्ती मैं कहूँगी कैसे हो गई। तो बचपन से ही जब मैं स्कूल में एडमिशन लिया, एक साल हो गया, तो हमारे स्कूल में एक पीटी का क्लास होता है
6: जी।
7: तो उस पीटी में हमें मलखम भी इंट्रोड्यूस कराया गया था
6: जी।
7: जब मैं 6 साल की थी तब
6: जी।
7: तो हमारे जो मतलब श्री समर्थ व्यायाम मंदिर से सर आते थे, देशपांडे सर, तो वो हमें सुबह का 1 घंटा क्लासेस देते थे। तो उस क्लासेस में मुझे मतलब गेम्स तो हम ऐसे खेलते भी थे, भागना दौड़ना या लपन छुपाई खेलना ऐसे, पर ये मलखम एक अलग ही चीज है। तो ऐसे हमने कभी देखा नहीं था कि रस्सी पे चढ़ के भी हम कुछ कर सकते हैं। तो ये मुझे अलग लगा, और मेरे में तब भी ऐसी क्षमता थी कि मैं ऐसी भागती दौड़ती बच्ची थी
6: जी।
7: तो मुझे ऐसे पसंद था। तो सर ने मैडम ने वो मेरा जुनून देखा और मुझे वो सिखाया
6: जी।
7: तो अभी मैं 12-13 मुझे साल हो गए कि मैं इस क्षेत्र में मेरा जो योगदान है मैं देती हूँ
6: जी। जी, मलखम के बारे में आप क्या जानते हैं प्रतिभा जी, आप कैसे, देखिए हम ये रेडियो माध्यम के माध्यम से बात कर रहे हैं, तो मलखम जब कोई खेलता है तो वहां पर क्या दृश्य बन रहा होता है, हमारे श्रोताएं भी अभी हमारी तरह विजुअली चैलेंज है क्योंकि वो नहीं देख पा रहे हैं, हमें उनको इमेजिनेट करवाना है। तो मलखम कैसे खेला जाता है, थोड़ा उसके नियम भी बताइए, कुछ और बताइए मलखम के बारे में प्रतिभा जी।
8: जी सर, मलखम एक खेल है
6: जी।
8: तो मलखम यानी एक लकड़ी होती है, लकड़ी जमीन के ऊपर 6-7 फुट ऐसे एक लकड़ी होती है, उसके ऊपर अलग अलग तरह के योगा के आसन हम लोग जैसे जमीन पे करते हैं, वैसे सेम आसन वो लकड़ी पे बैठ के खड़े रह के और सब ऐसे आसन कर सकते। उनका स्पेशल ऐसा यूनिफॉर्म वगैरह ऐसा नहीं होता है, एक शॉर्ट्स पहनना होता है और एक टी शर्ट, उसके ऊपर लड़कियां करते हैं। और लड़के लोग करते हैं तो सिर्फ वो शॉर्ट्स पहनते हैं और वो कर सकते हैं। तो एक मलखम करने से उनको मतलब सबको इतनी एबिलिटी बढ़ती है, फ्लेक्सिबिलिटी और कंसंट्रेशन, एक स्ट्रेंथ भी आ जाती है, और इस मलखाम करने से और बहुत सारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ताकि तुम लोग कौन सी भी परिस्थिति को हैंडल कर सकते हैं, ये मलखाम से मिलता है।
6: जी, तो मलखाम के दो वेरिएंट बताए जाते हैं, खेलने के दो तरीके, एक रोप और एक पोल, तो दोनों में क्या अंतर देखते हैं कोमल आप?
7: बेसिकली रोप मलखाम जो होता है वो कॉटन का बना होता है
6: जी,
7: तो वो एक रस्सी जैसे रोप हम जैसे बोलते हैं ना वो होता है
6: जी,
7: और जैसे अपने प्रतिभा ने बोला है कि पोल मलखाम जो एक हमारा वुडन का खाम रहता है
6: जी, जी।
7: वो 6-8 फुट का, हाँ 8 फुट तक रहता है वो
6: जी,
7: तो उसपे सब हम योगा वगैरह करते हैं
6: जी,
7: तो ये डिफरेंस है
6: जी जी। हाँ, जो एक खंबा है उसके ऊपर फिर हम अपनी अलग तरह की पोजीशन,
7: उसमें भी क्या होता है कि खंबे में हम जब करते तो एक टॉप लेवल हमारा जैसा शरीर होता है ऊपर से लेके नीचे तक सर है, तो हम उसे एक बोंडा मतलब बोंड कहते हैं, जो हमारा गले तक का ये है उसको हम खाच कहते हैं, नीचे की पूरी बॉडी, तो टॉप पे रह के अलग अलग योगा होते है, बीच में रह के अलग अलग होता है, और नीचे एक ऐसे 3 लेवल होते हैं
6: जी, जी जी। निश्चित रूप से एक एडवेंचरस खेल है, और निश्चित ही इसमें करने के लिए हमें एक स्ट्रेंथ या कहेंगे शक्ति चाहिए होती है। तो आपने जो शुरुआत कोमल जी ने अपने बारे में बताया कि वो खेलते कूदते थे, और प्रतिभा जी आपकी यात्रा कैसे शुरू हुई इस मलखम के साथ में?
8: सर, मैं शिवाजी पार्क में एक बार रनिंग के लिए गई थी, वहाँ पे मुझे ऐसे पोल वगैरह दिखाई दिए थे, और मेरी एक रूम पार्टनर वगैरह थी, वो लोग ऐसे बात करते थे रोप मलखाम और डेमोंस्ट्रेशन वगैरह ऐसे बात करते थे, और मैं तो गांव से बिलोंग करती थी तो मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं था ये सब चीज के बारे में, तो मैं ग्राउंड पे गई थी तभी मुझे पता चला, तो मैं जाके वहाँ पे इंक्वायरी की, और देशपांडे सर ने मुझे बोला कि तू आ सकती है, तो सर ने मुझे एक शॉर्ट्स दी थी 2 साल पहले, अभी तो वो शॉर्ट्स भी मेरे पास है, और वो शॉर्ट्स से ही मैं अभी तक कर रही हूँ, तो मतलब ये है कि सर ने बहुत एफर्ट्स लेते हैं हमारे लिए, मतलब हम लोग को दिखता नहीं फिर भी लोग बोलते कि हाँ दिखता नहीं, तो मैं इतना कठिन आसन उसको कैसे सिखाऊं वगैरह ऐसे होता है, बट सर ने बहुत दिल पे लेके बहुत अच्छे से सिखाए है, तो मैंने तभी से जैसे जैसे मेरा पढ़ाई का एग्जाम का टाइम आता है तभी मैं थोड़ा छुट्टी वगैरह ले लेके और डेली आके मैं थोड़ा टाइम निकाल के वहाँ पे प्रैक्टिस करती थी
6: जी।
8: तो तभी से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ है कि पोल मलखाम और रोप मलखाम मैं करती।
6: जैसा कोमल ने बताया है कि निश्चित रूप से एक इसमें स्ट्रेंथ की आवश्यकता है, और थोड़ा सा ये कठिन खेल माना जाता है, और मुझे लगता है आप दोनों यूनिक साथी हैं, विजुअली चैलेंज साथी हैं, जो शायद इस खेल को अपने जीवन में अपना रहे हैं। आगे की दृष्टि में मुझे तो अभी उत्तर भारत में तो मेरा ऐसा संपर्क नहीं हुआ किसी विजुअली चैलेंज से, लेकिन हाँ हो सकता है हमारे और भी साथी कुछ कर रहे हो। हालांकि खेलों की दृष्टि से अभी देखा जाए कि ओलंपिक में पिछले सालों में विजुअली चैलेंज व्यक्तियों ने अच्छा परफॉर्म किया है, और चूंकि आप दोनों भी एक खिलाड़ी हैं और आप एक इंडिजिनस स्पोर्ट से जुड़े हुए हैं, खेल का भविष्य भी आपको अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं पे आगे लेके जाएगा, आपकी भी खेल की जर्नी हो सकता है शुरू हो जाए आगे। लेकिन इस अभी जो समय है, मुझे प्री इस बातचीत से पहले कुछ बातचीत जब हमारी हो रही थी तो उसमें मालूम चला कि आप लोग मुंबई के उस इलाके में रह रहे हैं, दूर के इलाके में रह रहे हैं, और जहाँ पर आपकी ट्रेनिंग हो रही है वो दादर में है, वो जगह आपका स्कूल है ना, कमला मेहता आपके स्कूल का नाम मुझे बताएंगे, कोमल मिस कर गया,
7: कमला मेहता दादर स्कूल
6: फॉर, यस यस यस। तो आपका जो स्कूल बताया आपने दादर में, तो इस स्कूल तक की लंबी यात्रा सुबह और वो भी मुंबई के ट्रैफिक में आप कैसे मैनेज करते हैं, कैसे अपने रूटीन में इसको जारी रखे हुए? कोमल मैं आपसे
7: जब मैं स्कूल में थी तब तो सब ऐसे सुलभ ही था कि स्कूल से लेने जाने के लिए बस थी, आने के लिए बस थी, जैसे कोई दिक्कत नहीं आती थी। पर जब मैंने स्कूल छोड़ा और जब खुद पे ट्रैवलिंग की बात आई तो सोचा कि अभी कैसे किया जाए, तो क्योंकि मैं बोईसर में रहती हूँ और बोईसर और दादर ट्रेन से 2 घंटा लगता है, 2 घंटा जाने में 2 घंटा आने में, तो तब मेरे ऐसे मतलब मैं ट्रैवलिंग करते करते मुझे थोड़ा सा समय लगा सब समझने में करने में, तो तब से मैंने मतलब एक जुनून तो था कि बाबा करना ही है, प्रैक्टिस तो जारी रखनी ही है, बीच में गैप नहीं आना देना है। तो मैं और एक मेरी फ्रेंड थी, वो भी पार्शियली ब्लाइंड है, तो हमने डिसाइड किया कि हम जाते हैं। तो उस तरह से मेरी ट्रैवलिंग का सफर चालू हुआ घर से शिवाजी पार्क तक का।
6: जी हाँ, मुंबई एक विजुअली चैलेंज व्यक्तियों के लिए कंसेप्ट शहर माना जाता है, और वहाँ की भगम भग वाली जिंदगी में हमें कोई इधर से टक्कर दे रहा है, कोई उधर से टक्कर दे रहा है, और अगर आपके पास स्टिक नहीं है तो और भी मुश्किल है। तो आप अपनी मोबिलिटी कैसे मैनेज करते हैं प्रतिभा जी?
8: सर मैं तो थोड़ा पार्शियली हूँ, तो इतना दिक्कत आता नहीं है, फिर भी भीड़ में होती है। तो बॉम्बे के लोग बहुत सपोर्टिव है हमारे लिए, तो कितना भी भीड़ रहने दो, कितना भी ये होने दो, हम लोग का बहुत ख्याल रखते हैं। तो बॉम्बे सिटी ब्लाइंड लोगों के लिए बहुत अच्छी सिटी है।
6: अच्छा, चाहे लोकल की बात हो चाहे BSTC की बात हो,
8: कहीं पर भी सर, कहीं पर
6: जी,
7: मतलब तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, पर इतनी दिक्कत नहीं आती कि जैसे दूसरे शहर में हम देखते हैं, तो वैसी दिक्कत नहीं आती।
6: जी जी जी, नहीं मुंबई वैसे भी 24 आवर चलता हुआ शहर है, और आपके जुनून में कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है। और मुंबई के बारे में तो कहते हैं ना कि जुनूनियों का शहर है, तो कुछ जो कुछ ना कुछ जीवन में हासिल करने आए हैं। तो आप भी वेलकम को लेकर अपने इलाके नांदेड़, और आपने बताया बोईसर, यस, तो बोईसर और नांदेड़ से आप दोनों आके और मुंबई में अपनी जगह बना रहे हैं, वो भी दादर जो कि मुझे लगता है शहर के कई बीचों बीच है। तो इस पूरी प्रक्रिया में मलखम के बारे में कुछ यूनिक बातें कोमल बताइए ना। ये जुनून देखिए क्या है ना, कि एक शौक होता है और एक जुनून होता है, तो जुनून तक की यात्रा जो है ना वो कैसे हो गई कि नहीं अब नहीं छोड़ेंगे ना, अब तो करना ही है, और इसमें आप क्या आगे प्लानिंग कर रहे हैं कुछ नया करने की, एज अ ट्रेनर और विजुअली चैलेंज लोगों के साथ जुड़ने की क्या योजना है?
7: स्कूल में थी तो ऐसे मतलब मुझे ऐसे फिजिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम ही होता था, मैं बहुत बार महीने में एक दो बार तो बीमारी पड़ जाती थी।
6: जी जी,
7: तो जब मैंने क्लास शुरू की तो सर ने थोड़ा थोड़ा हमें बताना शुरू किया कि मतलब मलखम के बारे में, कि आप जब करोगे तो थोड़ा सा जो हमारी फिजिकल जो ट्रीटमेंट है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, मतलब जब बुखार आता था, खांसी सर्दी वो लगे, इन्फेक्शन वगैरह पकड़ जाते थे, वो कम हो जाएंगे, हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी। मतलब तब ऐसा होता था कि पढ़ाई में भी हम, मैं तो इतनी अच्छी नहीं थी, एवरेज से भी थोड़ा सा कम ही थी, तो फोकस इतना नहीं था। तो जब मैंने मलखम शुरू किया तब थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट बढ़ने लगा मेरे में। तो कभी मेरे 60 से ऊपर, 70 से ऊपर, कभी 80 से ऊपर मुझे परसेंटेज आने लगे। तो ऐसा मलखम का मेरा एक अच्छा अनुभव अभी तक मेरे साथ है।
6: जी, आपने सीधा बदलाव अपनी पढ़ाई और अपनी स्टडीज में देखा
7: में और हेल्थ में देखा?
6: हेल्थ में देखा आपने, तो हेल्थ में क्या बदलाव आपने देखे? मतलब मैं देखता हूँ मलखम एक विजुअली चैलेंज व्यक्ति होने के नाते मलखम वाले जो व्यक्ति होंगे थोड़ा सा स्ट्रेंथ बढ़ जाती है ना, या बॉडी पे चेहरे पे कॉन्फिडेंस आ जाता है, कुछ ऐसे बदलाव आते हैं?
7: हाँ बदलाव तो आते हैं बहुत, मतलब मुझे पहले ना ऐसे बोलने भी दिक्कत आती थी।
6: जी,
7: स्टेज
6: जी,
7: का फियर जो होता है
6: जी,
7: कैमरे के सामने बोलना या माइक पे बोलना
6: जी,
7: तो वो बहुत मुझे डर लगता था
6: जी,
7: पर अभी
6: जी,
7: जब मैं आपसे बात कर रही हूँ या रेडियो सेशन पे बात कर रही हूँ तो उतना मुझे डर नहीं है मलखम की वजह से है।
6: जी प्रतिभा जी, आप बताइए ना आपके जुनून की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि जैसा बताया कि आप लोग सुबह सुबह मुंबई में कितने बजे उठते हैं प्रतिभा जी सुबह अपने एकेडमी पहुंचने के लिए, आप स्कूल पहुंचने के लिए जहां पर आपकी ट्रेनिंग हो रही है?
8: 4 o'clock।
6: और फिर उसके बाद आप वहां पर एक घंटे में पहुंचते हैं?
8: 4 o'clock पे उठती हूँ, उसके बाद मैंने फ्रेश होके 5 बजे ट्रेन पकड़ती हूँ, 6:30 बजे तक ग्राउंड पे पहुंच जाती हूँ श्री समर्थ व्यायाम मंदिर। वहाँ पे जाने के बाद थोड़ा खुद का एक राउंड रनिंग वगैरह करना होता है, बाद में सर 7 to 8 सर क्लास ले लेते हैं।
6: जी जी जी, कोमल आप भी ऐसे ही यात्रा कर रहे हैं सुबह?
7: हाँ, मैं तो 3:30 बजे मुझे उठना पड़ता है ट्रेन पकड़ने के लिए, तो सब खुद का टिफिन वगैरह बनाना, मतलब मैं कुक भी करती हूँ, मतलब खुद का खाना बनाना भी मुझे पसंद है।
6: जी, जी।
7: तो खाना बना के लेके जाना और 7 बजे के पहले या 7 बजे तक पहुँचना, 7 से 8, जैसे प्रतिभा ने बोला सर देशपांडे सर हमारा क्लास लेते, तो हम जब क्लास में जाते हैं तब ऐसा नहीं कि हमारा अलग और जो नॉर्मल बच्चे है उनका अलग, सबका साथ में लेते, क्योंकि पता चले कि हम भी कैसे करते हैं या सर भी हमें कैसे सिखाते हैं। तो ये अभी हम जब क्लास में जाते हैं तब लड़के लोग को पता चलता है कि हमको क्या डिफिकल्टीज आ सकती है या हम क्या फेस करते हैं, तो ये सर के वजह से पता चलता है उधर।
6: जी, और भी कुछ दिव्यांग साथी हैं आपके साथ में जो मलखाम कर रहे हैं वहाँ पर अभी?
7: ना, ऐसे बहुत सारे एक्चुअली बच्चियां हैं, पर क्या होता है कि वही कि डेली आना ये किसी को पॉसिबल नहीं होता, तो जिसको जैसा वक्त मिले वो वैसे प्रैक्टिस को आता है, प्रैक्टिस करके चला जाता है, पर है बहुत सारी लड़कियां।
6: जी जी, प्रतिभा जी, ये जो हम बात कर रहे हैं फिर से हम उसी बात पे आएंगे कि जुनून एक बात है और जुनून की ही बात हमको देखनी है, तो आप मलखम के साथ में अपना भविष्य क्या देखते हैं? मतलब आप इसको एज अ करियर अपनाना चाहेंगे या सोचते हैं कि नहीं ठीक है, हम इसको अपने फिटनेस के लिए अपने जीवन का पार्ट रखेंगे और जो हमसे सीखना चाहेगा वो उसको सिखाएंगे, आपका क्या प्लान है?
8: जी सर, मलखम ये एक स्पोर्ट्स एज अ स्पोर्ट्स या एज अ फिटनेस यहाँ तक ही सीमित रखना नहीं है, तो मलखम को आगे, मतलब आगे जैसे एशियन गेम होता है वो सब गेम में भी इसको फर्स्ट प्रायोरिटी मिलना चाहिए, बाकी खेलों जैसा वो खेल को भी प्रावीण्य मिलेगा, तो हम लोग का भी भविष्य उसमें से बन जाएगा। इसके लिए मलखाम एक बहुत अच्छा खेल है, वो खेल को मान्यता मिलनी चाहिए।
6: जी, आपने स्टूडियो से सरकार के सामने एक मांग भी रख दी है।
8: जी हाँ सर।
6: जी, निश्चित रूप से अगर हमारे नीति निर्माता सुन रहे हैं जो खेलों को देखते हैं या हमारे युवा एवं खेल मंत्रालय के जो माननीय मंत्री जी हैं, निश्चित रूप तक आपकी बात वहां तक पहुंचे और वो भी इसको लेकर कुछ प्रयास करेंगे, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं।
8: धन्यवाद सर। इसके लिए सर भी हमारे अलग अलग देशों में जाके ये पोल मलखम, रोप मलखम का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ताकि ऐसे माना जाता है कि जहाँ जहाँ खेल होता है, मतलब ऐसे खेल बहुत जगह पे जो खेल खेला जाता है उसको फर्स्ट मान्यता मिलती है, ऐसे बहुत जगह होता है, मतलब सुना है, तो इसके लिए ये स्पोर्ट्स को और ये पोल मलखम को बहुत जगह हमारे सर बहुत देशों में जाके उसका प्रचार कर रहे हैं, ताकि सबको पता चले, जल्दी वो पोल मलखम को मान्यता मिले।
6: जी, तो कोमल जी, आप कौन कौन से आसन करते हैं सुबह 7 बजे जब पहुंच जाते हैं वहां पर, तो रोप मलखम के साथ में किस किस प्रकार से मूवमेंट्स होते हैं, मूव्स कैसे होते हैं, थोड़ा सा और बताएं ना हमारे श्रोताओं को।
7: तो हमारा जब क्लास शुरू होने से पहले हम वार्म अप करते हैं, जैसे प्रतिभा ने बोला रनिंग तो कंपलसरी करना ही होता है।
6: जी।
7: रनिंग के बाद हमारा एक स्पेसिफिकली वार्म अप होता है।
6: जी।
7: तो उस वार्म अप में भी मतलब हाथ के वेरिएशंस, लोअर बॉडी के वेरिएशंस वगैरह ये सब डिसाइड होते हैं, तो वो हमें कंपलसरी करना ही रहता है। तो उससे क्या होता है कि हम मलखम करने से पहले हमारी बॉडी जो वार्म हो जाती है, तो वो करने में इजी हो जाता है।
6: जी।
7: तो वार्म अप नहीं करेंगे और सीधा सा रोप करने लगेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आती है।
6: जी।
7: ऐसा वो होता है, तो वैसे शुरुआत करते हैं हम। और रोप में जब करते हैं तब अभी मतलब मेरे लाइफ के हिसाब से देखती हूँ, तो मैं मेरे फिटनेस के हिसाब से रोप को देखती हूँ, वो तो अच्छी बात है कि वो मलखम को आगे ले जाना भी बहुत जरूरी है, लोगों तक पहुंचना। जैसे सर हमारे बहुत आउट ऑफ इंडिया या इंडिया में भी बहुत जगहों पे हमें लेके जाते हैं। स्पेसिफिकली मैं बहुत सर के साथ घूमी हूँ मलखम के लिए बचपन से ही, तो मुझे मैंने सर को बचपन से ही देखा है, तो कैसे वो दूसरों को सिखाते हैं और मुझे भी, मतलब मैं जितना सीखी हूँ तो वो मैं मेरे ब्लाइंड जो स्टूडेंट है उनको सिखाने में भी जाती हूँ। और अभी क्या है, अभी हमारे स्कूल में, मतलब मैं जहाँ पढ़ी हूँ उधर भी हमारे मंगलवार और गुरुवार मलखम के क्लासेस होते हैं, तो हमारे जो दूसरे ताई है नीता ताई ताटके, तो उनके साथ में 7:30 से 8:30 तक मलखम का क्लास लेने जाती हूँ।
6: जी जी जी, निश्चित रूप से आपने अपना रूटीन में तो शामिल किया है और आपने कुछ ऐसी बातें भी छेड़ी हैं कि विजुअली चैलेंज व्यक्तियों के साथ निश्चित रूप से एक चैलेंज है कि वो उनको कुछ भी जीवन में अपना अपनाना है या जुनून बनाना है उसमें एक उनको संघर्ष की जरूरत है, लेकिन आपने एक इंटरेस्टिंग बात बीच में रखी कि आप अपना खाना भी खुद पकाते हैं, तो जुनून में तो आपको पता है इस पर बहुत सारी बातें हम लोग भी आने वाले दिनों में बात करना चाहते हैं कि विजुअली चैलेंज व्यक्ति का खाना बनाने का मतलब है कि आग के साथ खेलना है ना, तो वो भी एक चैलेंज है और चुनौती है, तो उसको भी करते हैं आप। खैर उस पर हम कभी फिर कभी बात करेंगे। और कितनी मात्रा में हमें मसाला डालना है, कितनी मात्रा में हमें डालना है, तेल पक गया कि नहीं पक गया, ये चीज़ें तो ये सारी चीज़ें हैं। तो खैर इस रसोई पर तो भी हम जाएंगे, और एक ब्लाइंडनेस के साथ रसोई में घुसने की बात है और उससे सक्सेसफुली कुछ सुगंधित बना के बाहर लाने की बात है। तो इस यात्रा पर कभी और बातचीत होगी किसी और जुनून के शो में। लेकिन अभी तो हम बात हमारे जुनून की कर रहे हैं, जो कि मलखम से संबंधित है। और मलखम में हम ये देख रहे हैं कि हमारी कलाइयाँ और हमारे कंधे कितने मजबूत हैं, राइट? तो प्रतिभा जी, मुझे बताएं ना थोड़ा सा कि इस 7 से 8 का जो समय है, उस समय क्या हो रहा होता है? मतलब मैदान में मुझे लगता है कुछ लोग पसीना बहा रहे होते हैं, कुछ लोग इधर कसरत कर रहे हैं, कुछ लोग कुछ रस्तों के ऊपर प्रयास कर रहे हैं। तो आप जिस रोप के साथ प्रयास कर रहे होते हैं, मतलब कुछ स्पेसिफिकली एक ब्लाइंड व्यक्ति को और एक सामान्य व्यक्ति को कुछ अलग व्यवस्थाएं करने की जरूरत पड़ती है, या खेल के नियम वही रहते हैं?
8: नहीं सर, सबके लिए सेम नियम होते हैं और सबका क्लास साथ में लिया जाते हैं। और सुबह जब क्लास स्टार्ट होता है 7 to 8, तभी माहौल इतना अच्छा रहता है वहाँ पे, बहुत ऐसा दिल लगता है। और सुबह कभी 7 बजते ऐसा इसका इंतजार कर लेते हैं हम लोग, इतना अच्छा लगता है। कभी उठने का कंटाला नहीं आता, ऐसे डेली भी जाना बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे। और जाने के बाद बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है, रोज एक नया आसन सीखने के लिए मिलता है, रोज नया एक्टिविटी, रोज नए लोग, ऐसे सब सीखने के लिए मिलता है वहाँ पे। बहुत विजिटर भी आते हैं मिलने के लिए, तो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन भी मिलती है वहाँ जाने के बाद।
6: जी, तो हम लोग पिछले दिनों, कोमल जी, हम पिछले दिनों बात कर रहे थे, तो मुझसे किसी ने पूछा कि ऐसे कौन से खेल हैं जो ब्लाइंड व्यक्ति और एक सामान्य व्यक्ति साथ में खेल सकता है। तो मैंने कहा चेस। तो चेस ऐसा खेल है जो हम सामान्य रूप से दोनों अक्रॉस खेल सकते हैं, और मजा तो तब आता है जब कोई ब्लाइंड व्यक्ति सामान्य व्यक्ति को चेस में हरा दे। तो उस दिन वो मतलब कुछ ये टाइप मोमेंट होता है उसमें ना। तो मलखम भी एक ऐसा खेल है जो मुझे लगता है अब आपसे बात करने के बाद समझ में आया कि कोई अलग नियम नहीं है, और मलखम में भी एक सामान्य व्यक्ति और एक नेत्रहीन व्यक्ति साथ में इस खेल को खेल सकते हैं। ये बात मुझे समझ में आई। कोमल जी, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे? ऐसे और कौन से खेल आपको समझ में आते हैं?
7: चेस जैसे बोला आपने, खेल सकते हैं। मलखम भी वैसे तो कोई मतलब हम अपने हमने अभी ऐसे कोई टूर्नामेंट्स वगैरह नहीं खेली है। मतलब मुझे वो टूर्नामेंट्स करने में इतना कोई रस नहीं है, मुझे मेरे सिर्फ हेल्थ की वजह से मैं ये करती हूँ। और ऐसे कौन से गेम है
6: जी? खैर, लेकिन मैं इस पर आता हूँ कि ब्लाइंड व्यक्ति के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है इंडिपेंडेंट मूवमेंट, मोबिलिटी और आत्मनिर्भरता के साथ आगे बढ़ना। तो मोबिलिटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जब आप मोबिलिटी के साथ कर रहे होते हैं तो आपको बहुत सारे स्टेप्स आते हैं, या आपके साथ बहुत सारी बाधाएं बीच में आती हैं, ठोकरें आती हैं, हर्डल्स आते हैं। तो एक मलखम ने आपके जीवन में कुछ क्या बदलाव किया है जिससे आपकी मोबिलिटी अच्छी हुई है, खासतौर पर बस से चढ़ना, बस को उतरना, ट्रेन में चढ़ना, ट्रेन से उतरना?
7: मतलब मलखम के वजह से कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और इंसान में कॉन्फिडेंस होना वो तो कुछ भी कर सकता है। कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, पर ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, तो उसके वजह से क्या है, रस्ते पे चलना, ट्रेन पे ट्रेवल करना, उतरना, बस से चढ़ना उतरना, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि बाबा नहीं डर लगता। मतलब मलखम एक ऐसा है कि उसमें स्ट्रेंथ तो बहुत लगती है, ताकत बहुत लगती है, फोकस भी बहुत होना पड़ता है। जब मतलब पैर अच्छे से नहीं लगा तो गिर भी सकते हैं, ऐसा भी डर होता है। तो इस वजह से कॉन्फिडेंस तो लेवल हो जाता है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे, मुझे डेली लाइफ में ऐसे कोई दिक्कत नहीं आती ट्रैवलिंग में या किस में भी।
6: प्रतिभा जी, आपको कैसे अपनी मोबिलिटी और आपका जो डेली लाइफ है खास तौर पे, फिर आप दिन में क्या कर रहे होते हैं? आप लोग अपने कॉलेज जा रहे होते हैं या दिन में कुछ अपना अध्ययन किस प्रकार से कर रहे होते हैं?
8: जी सर, सुबह वो सब एक्टिविटी पार करके पोल मलखाम वगैरह ग्राउंड से हम लोग, मैं अभी जैसे कि पढ़ाई करने के लिए लाइब्रेरी जाती हूँ, उसके साथ साथ मैं इवनिंग में पावर लिफ्टिंग का भी प्रैक्टिस करती हूँ। दूसरा गेम है उसका भी 6 to 8 तक उसका प्रैक्टिस होता है, वो प्रैक्टिस कर लेती हूँ। तो मुझे सुबह जो मुझे जो स्ट्रेंथ मिलता है और सुबह का जो कॉन्फिडेंस है वो लेके मैं पूरा दिन भर पढ़ाई वगैरह कर लेती हूँ और शाम में भी वही वजन उठाना वगैरह होता है पावर लिफ्टिंग में वो भी कर लेती हूँ, तो इसीलिए मोबिलिटी का इतना दिक्कत नहीं होता। ताकि जब पोल मलकम करते हैं ना तभी स्टेप बाय स्टेप करना होता है। वैसे भी अपने जीवन में भी जब रास्ता चलते हैं हम लोग तभी भी खड्डा आएगा तो थोड़ा साइड में चलना होता है, कोई सामने से आएगा तो, और ऐसे रास्ता पार करते समय किसी का हेल्प लेना वो सब हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। तो इतना हम लोग को ट्रैवलिंग करते टाइम चलते टाइम इतना दिक्कत आते नहीं है।
7: और बेसिकली क्या होता है कि ब्लाइंड स्कूल में सिखाया जाता है, मतलब प्रतिभा ने वो एक्सपीरियंस नहीं किया पर मैंने किया है कि ब्लाइंड स्कूल में मोबिलिटी के क्लासेस दिए जाते हैं। तो रास्ते पे केन लेके कैसे चलना है, केन कैसे चलानी है, तो वो सब हर्डल्स है वो कैसे पार करते हैं, या किसी से मदद मांगनी हो तो वो कैसे मांगनी है, तो वो सब सिखाया जाता है। तो उसकी वजह से
6: हाँ मलकम की वजह से आप मोबिलिटी में ज़्यादा बेटर मोबिलिटी आप अपनी पाते हैं। yes. और आप देखते हैं कि जो पहले हम गिर रहे होते थे या फिर टकरा रहे होते थे उसमें काफी हद तक हमारी
7: मलकम एक हाइट का गेम है। और ये मलकम के बारे में एक विशेष बात है कि सब गेम जो होते हैं वो ग्राउंड पे खेले जाते हैं पर मलकम ऐसा गेम है कि वो हाइट पे खेला जाता है।
6: जी जी
7: तो ये एक विशेष बात है उसकी। तो डर तो होता ही है
6: जी,
7: और उस डर पे मात कैसे करनी है हमारे हाथ में।
6: और जब डर खत्म हो गया तो फिर मोबिलिटी तो अच्छी होनी है। तो ये सब मामला जो है कॉन्फिडेंस का है। हाँ मोबिलिटी में कुछ टेक्निक भी जरूरी हैं, वो आपको आनी चाहिए। टेक्निक्स के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस अगर अच्छा होगा तो आप एक अच्छी मोबिलिटी अपनी रख पाएंगे और जिससे आपको आपके शरीर को नुकसान कम होगा। तो प्रतिभा ने बताया, प्रतिभा पावर लिफ्टिंग भी कर रहे हैं जो कि एक ओलंपिक खेल है। तो आपको आपको क्या प्लानिंग कर रहे हैं, आपको जैसा भविष्य में जुनून के साथ अपने।
8: हाँ जी सर, मैंने अभी स्टेट में सिल्वर मेडल गोल्ड मेडल और नेशनल में गोल्ड मेडल मिलाया है पावर लिफ्टिंग में
6: जी।
8: तो अभी वो नेशनल का भी इंटरनेशनल का भी वो लोग प्रैक्टिस ले रहे हैं तो मैं उसकी तैयारी भी कर रही हूँ साथ साथ।
6: नेशनल पैरा गेम्स की बात कर रहे हैं आप।
8: हाँ जी सर
6: जी, बहुत बढ़िया। तो किस कैटेगरी में खेलते हैं आप? और आपको
8: B3 सर।
6: अच्छा अच्छा B3 कैटेगरी में खेलते हैं, राइट राइट। कोमल जी आप कैसे अपना दिन कर रहे होते हैं? प्रतिभा ने तो बता दिया है कि अपनी प्रतिभा का उपयोग कहीं और भी कर रही है और दो खेलों के साथ आगे बढ़ रही है जी। आप बताएं ना कोमल जी, आप कैसे कर रहे हैं शाम को?
7: तो मेरा जब प्रैक्टिस खत्म हो जाता है तो मैं ट्रेन पकड़ के पालघर जाती हूँ। पालघर में एक NGO है आनंद आश्रम करके
6: जी।
7: तो उधर जो वृद्ध लोग रहते है तो उनको मैं एक्सरसाइज सिखाती हूँ, उनसे करवाती हूँ, मतलब उनका भी दिन थोड़ा सा कट जाए ऐसा मैं ये करती हूँ। क्योंकि उसमें क्या होता है उधर जो रहते हैं वो हमारा वो कैसे भी मतलब खुद का टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ देखते हैं। पर मैं ऐसा सोचती हूँ कि बाबा उनके पास भी कोई तो ऐसा मतलब उनके हेल्थ के लिए हिसाब से, तो वो मैं उनको थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह सिखाने के लिए जाती हूँ। शाम को घर पे आती हूँ तो जब काम वगैरह करने पड़ते हैं तो खाना वगैरह बनाना मतलब सब साफ सफाई करना या कुछ भी
6: जी जी,
7: तो ऐसे मेरे दिन अभी तो कट रहा है
6: जी जी। नहीं लिख ठीक है, आप जो है दोनों जुनून के साथ में आगे बढ़ रहे हैं और एक आपने इंडिजिनस स्पोर्ट को अपने जीवन में डाला है और एक मलकम के साथ एक मलकम जैसा खेल जो ऊंचाइयों पे खेला जा रहा है और उसमें भी आप ब्लाइंडनेस के साथ या कहें कि अपनी पार्शियल ब्लाइंडनेस के साथ में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहें कि आंखों की रोशनी तो आधी है बट प्रयास पूरा है ना। तो कुछ ऐसी ही बात आप लोगों ने मैंने देखी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा प्रतिभा जी, इन दोनों ही चीज़ों के अलावा और क्या जुनून में शामिल है? मतलब जुनून में देख रहा हूँ कि सुबह सुबह रस्तों पे मलखम चल रहा है और शाम को रॉड्स के साथ पावर लिफ्टिंग। तो ये रस्ते और रॉड के साथ अलावा कुछ और भी है रास्ते में आपके?
8: हाँ जी सर, मैं साथ साथ महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन का भी प्रिपरेशन करती हूँ MPSC का
6: जी,
8: तो वो मेरा पढ़ाई भी चल रहा है
6: जी जी। लेकिन हम दोनों साथियों को कहेंगे कि जुनून के साथ में जुनून जो है वो आपका जीवन का जुनून बन जाए और हम जुनून में ऐसे ही साथियों के साथ बातचीत करते रहे हैं जिन्होंने अपने जुनून को कभी नहीं छोड़ा और उसको हमेशा अपने जीवन में बनाए रखा और उसको कंटिन्यू किया। तो आप हमारे प्रोग्राम में जुनून में शामिल हुए हैं तो जुनून में हम यही आपसे अपेक्षा करेंगे कि आप इस खेल को लेकर आप अपने जीवन में लगातार प्रयास करते रहे और क्या इसमें ऊंचाइयां बढ़ती जाती हैं कोमल जी? मैं जानना चाहूंगा खेल के साथ में।
7: यस, ऊंचाई तो बढ़नी ही चाहिए और बढ़ती ही रहती है।
6: जी,
7: जैसे मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाके मुझे मलखम डेमोन्स्ट्रेशन करने का मौका मिलेगा।
6: तो
7: 2024 में हमने जब पेरिस में ओलंपिक हुआ तब हमें मौका मिला कि उधर जाके हमें डेमोन्स्ट्रेशन करना है। तो ये हमको मतलब संधि दी वो रिलायंस फाउंडेशन ने दी। तो तब जाके हमने मेरे साथ मतलब दो लड़कियां और दो लड़के ऐसे हमारी 8 जनों की टीम थी जो पेरिस में जाके हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। और ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था आउट ऑफ इंडिया। इंडिया में तो बहुत किया है और सिखाया भी किया भी है पर आउट ऑफ इंडिया ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था।
6: ये प्रदर्शन ओलंपिक कमेटी के सामने था
7: ये मतलब वो जब मतलब इंडिया हाउस करके था
6: ना। अच्छा अच्छा जी।
7: तो उसमें हमारा हर दिन डेमोन्स्ट्रेशन रहता था
6: जी।
7: तो जो भी ओलंपिक देखने जो आते थे तो वो टिकट लेके हमारा मलखम देखते थे।
6: अच्छा अच्छा अच्छा, बढ़िया। और भारतीय खिलाड़ियों को चीयर करने का भी अवसर मिलता था। जी, तो और मुझे लगता है और उसी ओलंपिक में आपने देखा कि नीरज जी ने गोल्ड मेडल लगा दिया। खैर, तो प्रतिभा जी पावर लिफ्टिंग और मलखम के बीच में समन्वय बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पावर लिफ्टिंग के साथ में आप स्ट्रेंथ और आपकी फिटनेस दोनों ही जरूरी हैं और मलखम के साथ भी ऐसा ही है। मलखम क्या ऐड ऑन करता है पावर लिफ्टिंग के अलावा? मतलब पावर लिफ्टिंग में वो चीज नहीं जरूरत पड़ती है लेकिन मलखम में वो जरूरी है, मेरा कहने का मतलब यह है।
8: नहीं सर, साथ साथ उन पावर लिफ्टिंग कैसे जमीन पे होता है और वो लकड़ी के ऊपर जमीन के ऊपर करना होता है
6: जी।
8: तो इतना ही डिफरेंस है बट ताकत तो सेम लगती है
6: जी।
8: ताकि मेरी ताकत मलखम से आई है और मैं जब पावर लिफ्टिंग करने गई तो तभी मुझे पता चला कि मेरे में इतनी ताकत है। मैं इतना वजन उठा सकती हूँ। तो तभी से मुझे वो गेम भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो गेम को मैंने सिर्फ ट्रायल करके मैंने गई थी खेलने के लिए तो वो गेम में मुझे मेडल मिला है तो तभी से मुझे वो गेम बहुत अच्छा लग रहा है और साथ साथ वो गेम भी मैं खेल लेती हूँ
6: जी। हाँ, चुनौतियों के बाद ही मालूम चलता है कि हमारे अंदर कितना एबिलिटीज है। राइट, कोमल जी भविष्य की क्या योजनाएं हैं?
7: मेरे भविष्य की योजना तो ये कि सेहत के साथ साथ मतलब खुद की सेहत तो अच्छी रखनी है। सेहत अच्छी हो तो हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं
6: जी।
7: तो सेहत अच्छी है तो
6: सक्सेस की कहानी सेहत से शुरू होती है जी। लेकिन आपकी क्या योजनाएं हैं आने वाले दिनों में?
7: मैंने अभी जैसे मैंने एमए साइकोलॉजी में मेरा किया है और मुझे काउंसलिंग का कोर्स करके अच्छा काउंसलर बनना है
6: जी।
7: तो जैसे हम देखते हैं कि अभी के परिस्थिति में सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती रहती है, सब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम से जुड़ते हैं तो उनके साथ थोड़े से बातचीत करके या उनका कुछ सुन के या हमसे कुछ हेल्प हो सके तो ऐसा मैं करना चाहती हूँ।
6: हाँ, निश्चित रूप से आपने जो बताया है कि आप सोशल वर्क की तरफ सोच रहे हैं और उस दृष्टि से आप अपने जीवन को प्लान कर रहे हैं तो मैं कोमल जी आपने तो मुझे बोला है कि सेहत से सक्सेस की बात तो है ही है और जीवन में नई हमें योजनाएं बनानी है और प्रतिभा ने तो बताया कि वो पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं लेकिन किलो के साथ में मतलब जो फिटनेस जो जीवन में इम्पोर्टेंट है जिस हिसाब से मैंने देखा कि ब्लाइंड व्यक्तियों के साथ एक समस्या है जीवन में कि क्योंकि वो लेथार्जिक हो जाते हैं कई बार जीवन में, मोबिलिटी का लेवल उतना नहीं है, कसरत नहीं कर रहे हैं जीवन में तो उनको एक सर्टेन एज के बाद उनको चुनौतियां फील होती हैं शारीरिक रूप। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या समझ बनी है इसको लेकर कि ब्लाइंड व्यक्तियों को कैसे फिटनेस को अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण अंग बनाना चाहिए?
7: मतलब जब अभी जो स्कूल में जो जाते हैं बच्चे लोग तो उस स्कूल में उनको ट्रेनिंग या फिटनेस लेवल का महत्व समझाना जाना चाहिए जो कि उतने लेवल पे नहीं होता है
6: जी।
7: वो थोड़ी बहुत मतलब समझा कर छोड़ देते हैं
6: जी।
7: और जैसे हमें अभी जुनून था कि हमें हमारे स्कूल में तो रोप मलखम था तो उसमें से होता है ना कि बाबा स्कूल में 100 लड़की है तो 100 के 100 तो नहीं जाएंगी मलखम खेलने
6: जी।
7: तो उसमें से 10 लड़कियां या 5 लड़कियां 15 लड़कियां ही ये करेगी मूव करेगी
6: जी।
7: तो ऐसे सब नहीं होता कि बाबा सबके दिमाग में आए कि चलो हमें मलखम करना है सीखना है, ऐसा
6: जी
7: नहीं होता। तो मेंटेलिटी के हिसाब से होता है ना। किसको कुछ पसंद है, किसको क्या पसंद है, वो तो डिपेंड करता है।
6: क्योंकि हमारे आसमान में बहुत सारे फूल हैं और उसको कौन से रंग का फूल पसंद आएगा उसको उसके चॉइस है। जी जी, लेकिन मलखम के साथ में मेरा जो एक अनुभव है, एक समझ बनी है कि मलखम एक ऐसा इंडिजिनस स्पोर्ट है जो निश्चित रूप से हमें फिटनेस की तरफ तो लेके जाता ही है। और पिछले दिनों राजस्थान में भी हमने खेलो इंडिया की एक अकेडमी मलखम के साथ में हमने अटैच की थी जयपुर में, और हम लोग ये सोच रहे थे कि यहाँ पर क्यों ना ब्लाइंड व्यक्ति जुड़े, और आपने तो अपना अनुभव भी सुना दिया आज हमें, आज जुनून प्रोग्राम के माध्यम से। तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन और आपका प्रोग्राम है जुनून। और जुनून में हमारे साथ दो जुनूनी हैं आज, डेफिनेटली वो हमारे स्टूडियोज में आज आई हैं और इस हमारे स्टूडियोज में भी एक ऐसा वातावरण बन गया है मलखम वाला इसमें शायद अब बस रोप्स आनी बाकी है, और नहीं तो हम थोड़ी देर में अब हमें भी देखेंगे कि हम कुछ यहाँ पर कर गुजरे हैं, है ना। तो श्रोताओं, आप हमसे जुड़े रहिए और सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन 107.8 FM, आपका फेवरेट प्रोग्राम।

0: जी श्रोताओं, फिर से आपके साथ एक ब्रेक के बाद। और आपको तो मालूम ही है, हमारे स्टूडियोज में बैठी हैं दो महाराष्ट्र से मुंबई आए हुए प्रतिभाशाली साथी, और दोनों ही हमारी विजुअली चैलेंज साथी हैं, और दोनों ने ही जुनून प्रोग्राम में रंग भर दिया है अपने अलग अलग कौशल बता के। और अभी तो कोमल के पास बताने के लिए बहुत कुछ है। कोमल, और क्या कर रहे हैं आप इस बीच में, मतलब मलखम के अलावा और क्या कर रहे हैं अपने जीवन में?
1: मलखम के अलावा मैं टेंडम साइकिलिंग भी करती हूँ।
0: जी,
1: टेंडम साइकिलिंग एक बेसिकली ऐसा है कि जब ब्लाइंड विजुअली चैलेंज को साइकिल चलानी है
0: जी,
1: तो वो खुद मतलब सिंगल साइकिल तो नहीं चला सकता
0: जी,
1: पर ये सपोर्ट जो होता है, आधार जो होता है
0: जी,
1: तो वो टेंडम साइकिल से मिलता है कि पायलट आगे बैठता है और ब्लाइंड पीछे के सीट पे बैठते हैं, तो उस हिसाब से टेंडम साइकिल का आनंद ले सकते हैं।
0: जी जी, तो टेंडम साइकिल के साथ में आपके साथी कौन होते हैं ज्यादातर?
1: ज्यादातर हमारी जो अभी एक संस्था है जो टेंडम साइकिल चलाती है, मतलब वो भी शिवाजी पार्क में ही अभी होता है
0: जी,
1: उसका भी क्लासेस संडे टू संडे क्लासेस होते हैं उसके 7 to 9, तो उसमें भी हम पार्टिसिपेट करते हैं
0: जी।
1: और मुझे टेंडम साइकिल करते हुए अभी 4 साल हो गए, 4-5 साल, तो उसमें भी मैंने बहुत मतलब मैंने खुद से भी साइकिल चलाई है, और मैंने मतलब आगे बैठ के और पीछे सर या कोई जो होता है हमारे साथ तो वो उनको बैठकर मैंने साइकिल चलाई है, और मुंबई के सड़कों पे मैंने साइकिल चलाई है इतने मतलब ट्रैफिक में या सब इसमें सब एक्सपीरियंस किया हुआ है।
0: तो कितने किलोमीटर कर चुके हैं अपनी साइकिलिंग के साथ?
1: मैंने मेरा हाईएस्ट मतलब लॉन्गेस्ट ये था पुणे से मुंबई का 161 या 171 ऐसा किलोमीटर था साइकिल पे।
0: जी जी जी जी, हाई स्पीड ट्रैफिक के बीच आपकी टेंडम साइकिल, वाओ बहुत बढ़िया। तो एक होलिस्टिक हेल्थ के लिए, अब आप साइकोलॉजी भी पढ़ रहे हैं और आप खेलों से जुड़े हुए हैं, तो होलिस्टिक हेल्थ के फील्ड में क्यों नहीं एक आपका जुनून जो है वो पूरा किया जाए, और क्यों ना आप काउंसलिंग के साथ भी जुड़ जाएं, और ऐसी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं? और युवाओं को तो बहुत जरूरत है आजकल इस चीज की, और आप तो एक युवा हैं।
1: मेरा यही ये है कि हर किसी को कोई ना कोई एक्टिविटी करनी ही रहनी चाहिए
0: जी।
1: घर में बैठ के भी बहुत सारे काम होते हैं, पर वो फिजिकल होना वो अलग बात है
0: जी।
1: तो बाहर हम जब जाते हैं या ट्रैवलिंग करते हैं तो अलग सा हमारे विचारों में या बोलने में बिहेवियर में अलग सा चेंज होता है, तो वो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो एक्टिविटी इंसान ने करती रहनी चाहिए
0: जी। प्रतिभा जी, आप क्या इसके अलावा कर रहे होते हैं? कुछ गाना गुनगुनाना बजाना भी कर रहे हैं? कुछ मराठी कविताएं या मराठी गीत?
2: नहीं सर, मैं भी टेंडम साइकिल में भी चलाती हूँ। कोमल के साथ ही मैंने, कोमल एक बार मेरी पायलट बनी थी और मैं पीछे बैठी थी, वो मोमेंट याद आया है। तो टेंडम साइकिल भी बहुत अच्छा है, उसको भी आगे बढ़ाने के लिए हमारे सर मनोज कटारिया एक सर है, उन्होंने भी बहुत ऐसा प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि हमारे दोनों सर, जैसे उदय देशपांडे सर, मनोज सर, वो हमारे लिए बहुत अच्छे से सोचते हैं, क्योंकि हम लोग को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लिए वो सर सब स्पोर्ट्स के बारे में भी बहुत अच्छा सोचते हैं।
1: मतलब टेंडम साइकिलिंग को भी उतनी मान्यता नहीं है जैसे अभी थोड़े से मलखाम के बारे में है, तो हमारे जो सर है मनोज सर, वो भी टेंडम साइकिल को आगे बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल लेवल जाने के लिए बहुत कष्ट करते मेहनत करते है
0: जी। तो आप एकेडमी की साइकिल्स के साथ ही अपना टेंडम साइकिल, या आपने स्वयं की साइकिल भी ले ली है?
1: नहीं नहीं, अब तो नहीं
0: जी। जी, ये साइकिल्स गियर के साथ में होती हैं या?
1: यस, गियर के विद गियर के होती है
0: जी। जी जी, बहुत ही बढ़िया। तो मुंबई से पुणे की यात्रा तो बाकी आपने करी ली है, मुझे लगता है मुंबई से गोवा कब करने जा रहे हैं आप जुनून में?
1: अभी वैसा मौका तो मुझे नहीं आया है, अपकमिंग पर्पल फेस्ट में। इन फ्यूचर
0: हाँ, पर्पल फेस्टिवल में जा रहे हैं आप लोग?
2: अभी नहीं, नेक्स्ट
1: ईयर पर्पल फेस्टिवल तो शुरू हो गए है ना
0: जी,
1: तो यहाँ है।
0: नहीं, पर्पल फेस्टिवल में अभी खेलों के साथ कुछ गतिविधियां हुई हैं, लेकिन जुनून प्रोग्राम में हम लोग भी सोच रहे थे कि पर्पल फेस्टिवल के साथ बातचीत की जाए। तो पर्पल फेस्टिवल में की बात आपने याद दिलाई, तो क्या मलखम का प्रेजेंटेशन वहाँ हुआ है आने वाले दिनों में आप प्लान कर रहे हैं?
1: पिछले साल हुआ था, तब मैं नहीं गई थी, मेरे एक अजय लालवानी करके एक मेरा दोस्त है और स्वरांजलि पवले करके, तो वो सर के साथ गए थे, तो उन्होंने उधर दिया था डेमोन्स्ट्रेशन
0: जी। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि विजुअली चैलेंज या डिसेबल्ड व्यक्तियों के लिए एक बेहतरीन या उनका अपना एक फेस्टिवल उत्सव गोवा सरकार हर साल आयोजित करती है अक्टूबर से जनवरी के मध्य बीच में किसी भी महीने में। तो इस बार इस अक्टूबर के आज के दिन से ही लगभग पर्पल फेस्टिवल गोवा में चल रहा है और पर्पल फेस्टिवल में दिव्यांग व्यक्ति अपनी अपनी प्रतिभाओं के साथ वहां पहुंचते हैं हर साल और वहां पर एक उत्सव का माहौल रहता है। और पर्पल उसकी थीम है जो कि दिव्यांगता को पहचान देती है।

0: में का जो मैदान होता है वो लगभग कैसा दिख रहा होता है कोमल? थोड़ा सा आप हमारे श्रोताओं को बता पाएंगे, मतलब क्या दृश्य होता है? चारों तरफ पेविलियंस होते हैं और फिर बीच,
1: मतलब हम जहाँ प्रैक्टिस करते हैं।
0: जी जी जी जी।
1: तो वो तो शिवाजी पार्क तो बहुत बड़ा शिवाजी पार्क है, पार्क है। तो उसमें क्या है कि जो हमारी व्यायामशाला की जो जगह है तो उसपे उतना बड़ा मैदान नहीं है, क्योंकि वो बाकी का मैदान है उसपे तो क्रिकेट वगैरह चलते रहते है। तो हमारी जो जगह है उधर 8-10 ऐसे पोल मलखाम पूरे हुए हैं, और कई जगहों पे ऐसे सिंगल बार डबल बार ऐसे प्रैक्टिस के लिए करे हुए, तो वो जो है उसमें हम प्रैक्टिस करते हैं। और अलग व्यायामशाला में भी बहुत बड़ा उधर मतलब रूम है जहाँ पे मलखाम के अलावा बहुत जूडो कराटे के क्लासेस वगैरह भी होते है। तो मैंने प्रतिभा ने थोड़ा जूडो का भी थोड़ा सा ट्राई किया है, मतलब।
0: तो आप घाट घाट का पानी पीने के बाद आपको मालूम चला है कि मलखम इज अवर चॉइस, तो मलखम इज बेस्ट, इंडिया इज बेस्ट। हाँ, तो मैं ये कहना चाह रहा था आपसे कि इन खेलों के साथ में हम जब इनसे जुड़ते हैं तो आपको लगता है कि कुछ जिम्नास्टिक से मिलता जुलता ये खेल है? मतलब जिम्नास्टिक में भी कुछ ऐसे ही मूव्स या ऐसे ही स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, तो आप बार्स के साथ में जब कर रहे होते
1: हैं। एक मिश्रण है पूरे, मुझे ऐसा लगता है पूरे जो गेम्स है उसका मिश्रण मलखाम है।
0: जी जी।
1: जो स्ट्रेंथ लगती है, पावर लगती है बहुत, मतलब वो बढ़ाती है। अभी मेरे में भी उतनी ताकत नहीं थी कि मैं खुद का शरीर अपने हाथों पे उठा पाऊँ, और उसमें क्या होता है कि ग्रेविटी के मतलब विरुद्ध हमें अपना शरीर ऊपर उठाना होता है, तो वो अलग स्ट्रेंथ उसमें लगती है। तो वो प्रैक्टिस के वजह से, मतलब हम बोलते हैं ना कि प्रैक्टिस करने के साथ साथ ही मतलब हमें डेवलपमेंट मिलते जाते। और हमारे सर ऐसे एक मतलब वाक्य बोलते हैं कि नो पेन नो गेम, ऐसा बोलते हैं। तो जहाँ पेन होता है वहाँ गेम होता ही।
0: जी जी जी। जहाँ गेम होता है वहाँ पेन होता है, और पेन के साथ ही आपको कुछ गेन भी होता है, गेन भी होता है जीवन में। तो हाँ, ये बात तो हुई है, तो पेन से गेन की बात हुई है, तो आप बताएं पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में कैसे सोच रहे हैं, वहां पर कैसे जाने का प्लान बनाया है? और आपको तो मालूम ही होगा कि कुछ राज्यों ने, राज्य सरकारों ने, मैं श्रोताओं को बता दूं कि राजस्थान में, चूंकि हम राजस्थान में के में हमारे स्टूडियोज है, तो राजस्थान सरकार ने विशेष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए जो खिलाड़ी नेशनल लेवल पे मेडल लेकर आए हैं उनको आउट ऑफ द टर्न गवर्नमेंट सर्विसेज ऑफर की है, और बहुत सारे खिलाड़ियों ने बिना किसी परीक्षा के डायरेक्टली राजस्थान सरकार को ज्वाइन किया है, क्योंकि उन्होंने अपने खेल के मैदान में राजस्थान का परचम ऊंचा किया है। तो ऐसे ही कुछ राज्यों ने और किया है, महाराष्ट्र सरकार ने भी कुछ ऐसा प्लान बनाया है, योजना बनी है आपके राज्य में दोनों साथियों
2: से? बनाने का प्रयास चल रहा है सर
0: जी।
2: हम लोग ने भी जब नेशनल गेम खेल के आए थे तभी हम लोग ने भी मंत्रालय में जाके बहुत सारे प्रयास किए है, अभी तक और नहीं हुआ है, होने वाला है
0: जी।
2: तो वो प्रयास चल रहा है। तो मैंने आपके श्रोताओं को मतलब कुछ संदेश देने के लिए आप बोल रहे थे, तो मैं सबको ये कहना चाहूंगी कि डेली जब आप उठते हो तभी अपने बॉडी के लिए 1 घंटा तो डेली देना ही देना है। जब मतलब हम लोग का जब भी शरीर को तकलीफ हो जाती है तब हम लोग हॉस्पिटल में 4-4 दिन एडमिट रहते, वो न आना चाहिए। इसके वजह से सबने हमने हमारे दिन में ऐसे 1 घंटा हमारे बॉडी के लिए देना ही चाहिए, सबने एक्सरसाइज करने का, सबने प्राणायाम करने का, डेली हमारे बॉडी के लिए कुछ करने का। धन्यवाद
0: जी। जी जी। नहीं नहीं, डेफिनेटली आपने संदेश दे ही दिया है कि भैया उठो और जागो और कुछ कर गुजरो। हाँ, तो कोमल आप क्या कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं से, और आपको क्या लगता है कि भविष्य की यात्रा को लेकर या देश की में जो खेलों की जो अभी पूरा एक पैनोरमा है खेलों का, उसमें क्या ऐड करने की जरूरत है?
1: मुझे बस इतना ही कहना है कि अपने सेहत को संभालो और जो अचीव करना है वो करो।
0: हाँ, क्योंकि सेहत होगी तो आप सब कुछ कर पाएंगे,
1: हम सब कुछ हासिल कर सकते।
0: जी जी, ठीक है। तो श्रोताओं, हम हमारे कार्यक्रम को अब यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे, आपसे विदा लेना चाहेंगे, और इन दोनों साथियों से, हमारे प्रतिभा जी से और कोमल जी से भी। आप महाराष्ट्र इतनी दूर से हमारे बीच में आए, और मलखम जैसे एक इंडिजिनस स्पोर्ट के बारे में हमारी एक दृष्टि विकसित की, और आप भी हमारे प्रोग्राम से जुड़े रहे, और आपका फेवरेट प्रोग्राम जुनून सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: तहे दिल से धन्यवाद सर
0: जी। थैंक यू।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, यानी हरो गांव हरो अंचल। सही में अपना गांव और अपना अंचल नाम जब सुनते हैं, जिस गांव और अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, उस गांव को हम कभी नहीं भूल पाते जहाँ भी रहे, लेकिन अपनापन आता है क्योंकि उसमें पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे। तो खेत खलिहान, दोस्ती यारी और पढ़ाई और सभी का जो प्यार, बचपन का दिन याद आता है गांव का नाम सुनकर। कहते हैं गांव जिस स्वर्ग जैसे, हेवन जैसे लगता है, अपने बेटे मत अपना जन्म स्थान स्वर्ग जैसे लगता है। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, ढाणी ढाणी जाते हैं, सभी से मिलते हैं, सभी वर्ग से हम परिचित कराते हैं और उनका गतिविधि को सब तक पहुँचाने के लिए एक मंच, एक स्टेज देता है रेडियो मधुबन। इस मंच का माध्यम से अपना जो फायदा, जो भी गतिविधि, चाहे समस्या हो चाहे समाधान हो, समाधान स्वरूप बनते, कभी कभी समस्या स्वरूप भी बन जाते हैं। तो इस तरह कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं, हमें बहुत खुशी होता है क्योंकि सभी का बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं, क्योंकि सामुदायिक रेडियो समुदाय के लिए, सामुदायिक द्वारा और समुदाय के हित में प्रस्तुत करते हैं। तो आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज रेडियो मधुबन गाँव वासियों के साथ और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, गांववासियों को खासकर किसान भाइयों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंशा है, जो लाभ देते हैं, उसका तहत आज आपका पास रूबरू कराएंगे स्पेशलिस्ट जो कि कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन, उनका परिचय लेंगे और आज हमारा इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे। बखूब में बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा। मैं तो कहूँगा ध्यान से हमारा किसान मित्र सुने और उससे बहुत कुछ फायदा मिलेगा। तो पहले उनका परिचय लेंगे, उनका सक्सेस स्टोरी, यहाँ तक कैसे पहुँचे और उनका पोस्ट क्या है और क्या करते कितने दिन से और इसका श्रेय किसको देना चाहते, किसका बदौलत यहाँ पर पहुँचे। कृषि विभाग से जो महान अनुभवी एक्सपर्ट हैं, तो उन कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है, उनको स्वागत करते हैं ग्रामवासियों की तरफ से, सभी अधिकारियों की तरफ से आपका परिचय।
1: थैंक यू सर। सर मेरा नाम राकेश कुमार गरासिया है और मैं पिनवाड़ा तहसील के आमली गांव का रहने वाला हूं और मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो पिनवाड़ा से ही हुई है 12th तक, और उसके बाद मैंने एक एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर में BSc करने के लिए, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट JET एग्ज़ाम होता है, उसके माध्यम से है जो अपने BSc में अपने एडमिशन होता है। तो वो उस टाइम जब मैं 12th में था जब तक मुझे पता नहीं था कि ऐसे कोई, 11th में था जब पता नहीं था कि कोई जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट भी कुछ होता है। तो गाँव में ऐसे खेलते खेलते थे तो उन्होंने बताया कि भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लो 10th पास करने के बाद, तो वो ले ली। भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अच्छा है, खेती में इंटरेस्ट है, घर पे भी खेती करते हैं, तो मैंने ले ली। फिर 11th पढ़ ली और फिर कहा कि भी आप BSc करोगे तो उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, डायरेक्ट एडमिशन आपसे आपका नहीं होगा। तो फिर मैंने 11th में थोड़ा JET के बारे में पता किया और 12th में थोड़ी बहुत तैयारी करी और फिर मैं उदयपुर जो है मेरा सेंटर आया था JET का और वहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मेरे ऑल राजस्थान में ST कैटेगरी में 9th रैंक मेरे को हासिल हुई थी उस टाइम, और मेरे को राजस्थान की टॉप मोस्ट कॉलेज, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेरे को अलॉट हुई थी, और मेरी जो BSc है वो राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर से हुई है। और उसके उपरांत मेरे फादर टीचर थे जो फिर 2013 में निधन हो गया था उनका 13 में, तो उसके बाद 2014 में उनकी जगह में अनुकंपा नियुक्ति में पंचायत समिति पिंडवाड़ा में LDC के पद पे, मतलब अनुकंपा नियुक्ति में लगा था। और उसके बाद भी मैं निरंतर पढ़ाई चालू ही थी मेरी, BSc तो कंप्लीट हो चुकी थी मेरी, तो रेगुलर स्टडी चालू ही थी। उसके बाद मैंने सहायक कृषि अधिकारी 2015 वाला एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं एग्ज़ाम हाइड भी गया था, इंटरव्यू में कुछ नंबर से रह गया था लेकिन उसमें नहीं हुआ है। उसके बाद जस्ट कृषि विभाग की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 आई थी, उसमें मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद मेरा चयन हो गया। जो चयन होने के बाद मेरे को जो है आबरोड पंचायत समिति का जो आवल क्षेत्र है वहाँ पे मेरे को जो है कृषि पर्यवेक्षक पद के रूप में मेरे को जो है यहाँ पे पोस्टिंग मिली है।
0: कब तक, कौन सा ईयर में पोस्टिंग, पहला पोस्टिंग?
1: पहला पोस्टिंग सर 2014 से लेके 2020 तक मैं जो पंचायत समिति में रहा और 2020 में मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे कृषि विभाग में, और अभी भी सर निरंतर मैं आगे उच्च पद के लिए तैयारी जारी है सर मेरी।
0: तो राकेश सर बहुत धन्यवाद देते हैं इस तरह मेहनत करके, पढ़ाई और लगन एक आदिवासी जो गरासिया जाति से आप उभर कर आए हैं, ये कम बात नहीं है, क्योंकि आपका समाज के लिए आप एक उदाहरण एग्जाम्पल बन रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत कम करते हैं और उन लोग का जो आर्थिक स्तंभ बहुत कम होने के नाते पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देते, और बच्चों का भले आर्थिक रहेगा तब भी बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि संघ दोष में उनका जो रीति रिवाज संस्कृति को फॉलो करते हैं, कम समय में शादी कर देना और ड्रॉप आउट हो जाना, ये इसका मुख्य कारण होता है जिसका चलते बच्चे आगे नहीं आ पाते। कोई कोई बच्चे इससे आ निकले, इस तरह कुछ बच्चे अभी होशियार होकर निकल रहे हैं, लेकिन ये अंचल के लिए और खासकर आपका जो समाज जैसे समाज के लिए प्रेरणादायी आप बने, एक मोटिवेशनल स्पीकर जैसे आपका जो ज्वलंत एग्जाम्पल है, इससे हमारा जो श्रोता मित्र खासकर यूथ जो पढ़ाई करने के बाद क्या करेंगे इसे सोच रहे हैं, तो आपका जो प्रेरणादायी सक्सेस स्टोरी का जो आप बताए इससे जरूर फायदा लें, ये हमारा भावना है। सर जैसे आप पढ़ाई का समय में कितने घंटा मेहनत करते थे और क्या प्रिपरेशन करते हैं और आपका फोकस क्या रहता है, वो चीज के बारे में थोड़ा बताएं
1: सर,
0: इससे जो बच्चे आना चाहेंगे उनको भी प्रेरणा मिले।
1: सर ये पढ़ाई के मामले में सर देखा जाए तो अधिकतर जो ट्राइबल क्षेत्र के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो यूँ सोचते हैं कि हमें सर समय नहीं मिलता या हमें फैसिलिटी नहीं मिलती है। एक्चुअल में ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। सही बात तो है, वो पढ़ते ही नहीं है। अगर अपने पास किताब है, भले एक किताब भी हो, तो उसको ढंग से अगर पढ़ा जाए ना तो आराम से पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के लिए क्या है कि हमारे समाज में क्या लड़के ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, और वो बस जब कोई एग्ज़ाम होता है उसके 15-20 दिन पहले शुरुआत करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे अपन को टारगेट लेके चलना पड़ेगा, साल भर 6 महीने का टारगेट, उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपन को एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि भाई मेरे को इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो मैं सर क्या करता था कि बिल्कुल एकांत जगह गाय चराने चला जाता था, गाय चराने जाता था, वहाँ बिल्कुल जंगल में एकांत जैसा था, किताब लेके जाता था, जिस दिन छुट्टी होती यूँ तो फिर बढ़िया आराम से पढ़ता था, शांति से छुट्टी होती थी उस दिन। और ऑफिस वर्क में 2014 के बीच ऑफिस वर्क में दिन में तो पढ़ाई सर नहीं हो पाती थी, रात के टाइम में 2-3 घंटे सर निकाल लेता, 2-3 घंटे कभी कभी 4-5 घंटे, कभी कभी पूरी नाइट भी निकाल लेता था। शुक्रवार का दिन होता था, शनिवार को छुट्टी होती थी, तो फिर वो पूरा नाइट उसमें जी गुजर पाता था।
0: ये हो गया मेहनत और जिसका चलते जी सर। ठीक सर, तो हाँ जी, तो जैसे आपने बताया अपने समाज को देखेंगे और आप जो अनुभव किए हैं और उस तरह सिचुएशन से, उस तरह जो क्लाइमेट है, उस तरह जो परिस्थिति आता है, उस परिस्थिति से आप निकल कर अपना स्वास्थ्य स्थिति को बजाय रखें और कैसे हम पढ़ाई करके और कहाँ पर करेंगे और जिससे हमारा फायदा होगा, वो चीज को देखें। उस संघ में नहीं गए, संघ दोष में जाने से खराब हो जाते हैं, लेकिन आपको संघ भी अच्छा मिला और एकांत प्रिय भी होते थे और पढ़ाई को लगन से करते थे, दृढ़ता ले ली, ये ठान लीजिए मुझे कुछ करना है और सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन हम नहीं ले पा रहे, ये तो हमारा गलती है। इतना सुविधा है SC ST के लिए, रिजर्वेशन का कोटा, उनको छात्रवृत्ति, पढ़ाई में बहुत सुविधा मिलता है, फिर भी हम उसका फायदा तो नहीं ले पाएंगे, तो हमारा ही कमी रहेंगे। तो इस कार्यक्रम को जिसे आपने सजाया और आपने सक्सेस स्टोरी किस तरह पहुंचा, क्या मेहनत किया, क्या उतार चढ़ाव आया, जैसे आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना आज WA कौन सा पोस्ट में है
1: सर? मैं भी कृषि पर्यवेक्षक हूँ, लेकिन अतिरिक्त चार्ज मेरे को WA का दे रखा है मूंगथला का, लेकिन कृषि पर्यवेक्षक हूँ मैं।
0: जी जी, और कृषि पर्यवेक्षक में आप रह रहे हैं और फिर भी इतना मान सम्मान नहीं देखते, अपना कर्म को भगवान को जो मानते हैं और इष्ट को मानते आप चलते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो सर ये जो आज इस मंच का माध्यम से जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का बाद क्या करेंगे सोच रहे, तो उनके लिए आपका क्या की मैसेज होगा? क्या आपको जैसे आपने बताया मैं ऐसे करता था और ऐसे पाया है, तो जो बच्चे सुन रहे हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उनके लिए आपका क्या की मैसेज होगा वो स्टूडेंट के लिए?
1: सर मेरा की मैसेज यही होगा कि किसी भी सब्जेक्ट से आप हो भले, लेकिन आपको टारगेट तो बनाना ही पड़ेगा। किसी भी एग्जाम को फाइट करना है तो 5-6 महीने की तैयारी तो कम से कम चाहिए, भले छोटे से छोटे जॉब हो, 5-6 महीने की तैयारी चाहिए। उससे ज़्यादा अपन कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है, दिन का कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 घंटे तो निकालने चाहिए, 4-5 घंटे तो आपको तैयारी करनी होगी, तब जाके आजकल कंपटीशन हर जगह टाइट हो गया है। TSB क्षेत्र में भी कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि 2018 में ये और TSB क्षेत्र में दूसरे गाँव भी जुड़े हैं, तो अब और TSB में भी कंपटीशन बढ़ रहा है। इसलिए उनको कम से कम 5-6 घंटे तो डेली स्टडी करनी जरूरी है और 5-6 महीने का टारगेट जरूरी है।
0: सर इसके लिए आर्थिक संबल कुछ बैकग्राउंड में उसको सपोर्टिंग करता है, आर्थिक जिसका परिस्थिति बहुत कम है क्या वो अचीव कर सकता है?
1: बिल्कुल सर, वो भी कर सकता है अगर चाहे तो कर सकता है, क्योंकि इसमें किताबें तो हर किसी के पास आजकल मिल जाती है, ज्यादा महंगी कोई आती है नहीं किताबें, और एक दो किताबें खरीद लेता है तो भी दो तीन किताबों से वो फाइट कर सकता है। अब जैसे छोटे लेवल की तैयारी करनी है तो जैसे एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, जैसे छठी से लेके बारहवीं तक की पुस्तकें हैं, ये छोटे एग्जाम में सीधे इसमें से क्वेश्चन आता है, ये इन किताबों खरीदने जाने की जरूरत ही नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में आप लाइब्रेरी है वहाँ से आप जहाँ पढ़े हैं वहाँ से टीचर से रिक्वेस्ट करके उनकी अच्छी तरह पूरा एक एक लाइन लाइन मतलब पढ़नी जरूरी है, तब जाके वो उसका बेसिक तैयार होता है। क्योंकि जब पहले अपन पढ़ते थे छठी सातवीं जब इतना नॉलेज नहीं था, बस ऐसे ही पास हो गए और चलो, अब वो चीजें बहुत काम की है, वो चीजें इतनी काम की है, और एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं, छठी से लेके बारहवीं तक की पुस्तकों में से हर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन आते हैं,
0: मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन आप अच्छा के बता दिए।
1: और मैं सबसे ज्यादा मैं भी खुद एनसीईआरटी की बुक पढ़ता हूँ, छठी से लेकर बारहवीं तक की भी पढ़ता हूँ, बाकी हाँ उससे आता है, बाकी कोचिंग वोचिंग तो ठीक है नॉलेज के लिए कैसे क्या कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, बाकी वो पुस्तकें अगर आप पढ़ते हो आप तो उससे मतलब बहुत अच्छा आपका बैकअप तैयार हो जाता है, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए मतलब आपको
0: तकलीफ नहीं होगी,
1: कोई तकलीफ नहीं होगी।
0: तो सभी हमारा जो टैलेंट बच्चे जो सुन रहे हैं और जो क्या करेंगे आगे के लिए, उनका फ्यूचर क्या है, कौन गाइड करेगा, लेकिन रेडियो मधुबन गाइड करने के लिए इस तरह एक्सपर्ट को रखते हैं और अनुभवी को रखते हैं जिसका फायदा लेना चाहिए इस मंच के माध्यम से, जो भी श्रोता सुन रहे और अभिभावक सुन रहे होंगे, माता पिता भी सुन रहे होंगे, बच्चे तो सुन रहे लेकिन अभिभावक सुनने के बाद उनके बच्चों को ऐसे तैयारी करिए, उनको ऐसे सपोर्टिंग करिए, तो उनको समझाइए, क्योंकि माता पिता समझदार होते हैं, अभिभावक समझदार होते हैं, तो उनका बच्चों को उनका जो छोटे छोटे जो उनका डिपेंड करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको थोड़ा सलाह देकर साथ मैसेज उनका पहुँचाएंगे तो जरूर लग जाएगा किसी न किसी रूप में, लेकिन ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे, ट्राई करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं फल मिलेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर को, इस तरह कार्यक्रम में अपने सक्सेस स्टोरी का सब किस तरह मेहनत करते थे और किस तरह मेहनत करने के लिए टीम मैसेज के माध्यम से ये।
1: सर एक और मैं बताना चाहूँगा, जैसे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए जैसे जो स्टूडेंट अगर 11 12 में है, अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते हैं टेंथ के बाद में, तो उनको क्या है सर 5,000 रुपये मिलते हैं प्रति वर्ष के, 11th and 12th के लिए 5,000 रुपये, अगर वो ग्रेजुएशन करता है तो उसको 12,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे।
0: अच्छा बात बात सर, इसके ऊपर डिटेल्स बताए, क्योंकि हम तो जितने स्कूल कॉलेज में हॉस्टल में जाते हैं
1: बिल्कुल,
0: तो बच्चों को ये तो अच्छा पॉइंट मिलेगा उनको लेने के लिए एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और बच्चे कृषि में घर में किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई एडमिन बड़ा भी ऑफिसर भी होगा तो उनका जो बागवानी करते गार्डनिंग करते वो कृषि से रिलेटेड है, और बच्चों को एक अच्छा मौका मिलेगा, एक रास्ता आगे के लिए फ्यूचर के लिए काम आएगा। तो 11th में
1: सर जैसे अपन एडमिशन ले लेते हैं एग्रीकल्चर में, एडमिशन ले लिया उसके बाद या संबंधित क्षेत्र में अपने जो भी कृषि पर्यवेक्षक है या सहायक कृषि अधिकारी है उससे आप जाके मिल लो, वो फॉर्म भर देगा, और वो फॉर्म भर के जैसे ही जिला स्तर पे सबमिट के बाद उसके जो है स्कॉलरशिप जो है शुरू हो जाएगी स्कॉलरशिप, ये है कृषि विभाग में उसको एक बार एडमिशन लेने में कृषि विभाग से संपर्क करना पड़ेगा। सर
0: सर उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट जमा,
1: डॉक्यूमेंट तो सर कुछ नहीं है, जैसे स्टडी कर रहा है तो उसने 11th पास कर लिया, 11th जैसे पास कर लिया तो उसके बाद 11th किस मिलेगी,
0: 10th पास कर लिया,
1: हाँ 10th तो पास हो गया, 11th में एडमिशन ले लिया, 11th पास हो गया तो 11th की मिलेगी।
0: अच्छा पास होने के बाद 11th,
1: हाँ हाँ हाँ ओके सर, तो उसके लिए सर 11th का
0: 11th पास होने के बाद सबमिट करेगा,
1: हाँ जैसे सबमिट करेगा भाई,
0: इसका पहले एग्रीकल्चर वहाँ पर क्या सब्जेक्ट होता है
1: एग्रीकल्चर में सर,
0: 11th क्या बताना पड़ेगा,
1: जैसे 10th तो सबके कॉमन होता है
0: जी जी,
1: और 11th में सब्जेक्ट जैसे साइंस मैथमेटिक्स होता है
0: जी जी,
1: साइंस बायोलॉजी होता है
0: जी,
1: और एग्रीकल्चर भी साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस यहाँ पूरे सिरोही जिले में, सिरोही में है, भीमवाड़ा है, अबू रोड में नहीं है सर, इसीलिए यहाँ के क्षेत्र को के लोगों को अभी जानकारी नहीं है, अगर यहाँ अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मिल जाए तो लोगों को जानकारी भी हो जाए यहाँ,
0: तो आपका ऊपर अधिकार है एसडीएम साहब का पहुँचाइए बात, रेडियो के माध्यम से हमारे एसडीएम साहब भी सुन रहे हैं, तो ये
1: नहीं अभी सर एग्रीकल्चर में हो सकता है नेक्स्ट आबू रोड का नंबर आ जाए, वैसे आबू रोड बड़ी सिटी के रूप में सिरोही से बड़ा माना जाता है वैसे आबू रोड, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ये अभी साल से शायद सरकार ये इसमें कृषि विभाग में चालू कर दे स्कूलिंग,
0: 12th में भी ले सकता है,
1: हाँ 11th से 12th, और 12th के बाद में बीएससी के लिए अपन जैसे अदर सब्जेक्ट में डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसमें सर बीएससी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट जेईटी एग्जाम देना पड़ता है, हाँ उसके माध्यम से, वो स्टेट लेवल का है। अगर अपन को ये चाहते हैं कि अपन नहीं, अपन तो भारत में कहीं भी कर सकते हैं, तो इसके लिए ICAR होता है एग्जाम, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो एग्जाम देना पड़ता था। ऑल इंडिया में कहीं भी कॉलेज वो मिलती है, वो भी ग्रेजुएशन है, उसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो अलग ही है।
0: जैसे साइंस और आर्ट्स कॉमर्स होता है,
1: हाँ, तो वे साइंस एग्रीकल्चर भी होता है,
0: साइंस एग्रीकल्चर होता है, पहला बार हम सुन रहे हैं आपसे, ये भी बहुत
1: अच्छा। सब्जेक्ट दोनों में कॉमन ही होता है, साइंस में बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, और तीसरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर होता है, बाकी जो बायोलॉजी और ये केमिस्ट्री दोनों सेम होते हैं।
0: सर क्या साइंस जहाँ पर है, जैसे मावल में है, दबर स्कूल में है, गंगाते आवासीय स्कूल में साइंस है, तो साइंस एग्रीकल्चर होना चाहिए?
1: हाँ, साइंस एग्रीकल्चर,
0: मैथ फिजिक्स ऐसे नहीं, हाँ एग्रीकल्चर होना।
1: हाँ, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट दोनों सेम ही होते हैं, मैथमेटिक्स में फिजिक्स होता है, बायोलॉजी में फिजिक्स होता है, लेकिन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर होता है, बाकी दोनों सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों सेम होते ही।
0: तो स्वतंत्र जो भी हमारा अभिभावक शिक्षा विभाग में और जो प्रशासन में जो सुन रहे हैं, जरूर इस हाईलाइट करें, और आप रोड पंचायत में हो, कैसे पिंडवाड़ा में है सर?
1: हाँ, पिंडवाड़ा में है सर,
0: पिंडवाड़ा में।
2: बहुत बहुत

0: मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं, याद रखिएगा।
1: नमस्ते, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हमें बहुत खुशी है इस तरह कार्यक्रम के माध्यम से एक सक्सेस स्टोरी और एक प्रेरणादायी देखते हैं, जैसे दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए। जैसे राकेश सर अपना कार्यक्रम को सजा रहे हैं। आज कृषि ऊपर में हम बात कर रहे हैं, कृषि विभाग को ग्राम पंचायत बहादुरपुरा से आज हम लोग बात कर रहे हैं पंचायत ऑफिस में। सारा खासकर हमारा सभी किसान भाइयों के लिए और उनका तरफ से आपको स्वागत करते हैं। पुनः किसान देश का रीढ़ है, जैसे शिक्षक, कृषक और सैनिक, तीन पिलर जैसे लगता है भारत का बदलत में चले हुए हैं। और जितना राजस्व भी कृषि से ज्यादा आता है और रक्षा करने में तो सैनिक ही है और शिक्षक हमारा अवेयरनेस हमको इतना जागरूक कराते हैं जिसका बदलत हम सर्विस मिलते हैं, हम होशियार बनते हैं। तो इस सभी को तो नमन करना चाहिए। और जो अन्नदाता कहते किसान भाई, खासकर भाई, तो आज उनके लिए आप देवदूत होकर आए हैं। तो आपके पास जितना भी स्टॉक है या जितना भी जानकारी है, रेडियो का मंच के माध्यम से सबको लुटाइए और स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोजेक्ट जो कि अति सहज सहूलियत से उनको फायदा मिले। कास्कर भाई का जो गारे से समाज के लोग हित में प्राप्त हुए, क्या करने से उनका आर्थिक संबल और बढ़ेगा, दोगुना ने चार गुना बढ़ेगा उनका प्रोडक्शन। तो सरकार क्या मदद करते हैं, क्या सब्सिडी देते हैं, कब देते हैं, किस तरह देते हैं और कहां पर देते हैं, किसको देते हैं?
2: सभी किसान भाइयों का नमस्ते। मैं कृषि विभाग के बारे में योजनाओं की जानकारी दूंगा। इसमें सबसे पहले कृषि विभाग की मुख्य जानकारी है, उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना में अलग अलग है, जैसे पाइपलाइन हो गया, फव्वारा हो गया, रेनगन हो गया, खेत तलाई हो गया, जलौज हो गया, सब में अलग अलग सभी की क्राइटेरिया हैं और सब में अलग अलग सब्सिडी मिलती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पाइपलाइन के बारे में। पाइपलाइन स्कीम है, उसके अंतर्गत किसानों को 50% सब्सिडी मिलती है। पाइपलाइन 50 पाइप लेने होते हैं और 50 पाइप पे 50% लगभग 15,000 अधिकतम उनको जो है राशि मिलती है। और पाइपलाइन लगाना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि जो ट्राइबल एरिया है, जापाकर क्षेत्र में आजकल अपन देखे होंगे तो कुआं बहुत दूर होता है, कुएं से पानी लेके जाते हैं, बोरवेल से पानी लेके जाते हैं, तो क्या है वो नालियां बना रख, तो नालियों से खेत तक पानी पहुंचने में जैसे किसी का 1 किलोमीटर हो, किसी उससे कम हो, 300-400-500 मीटर तक हो, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते तो आधा पानी तो जमीन में वैसे चला जाता है, पहुंच नहीं पाता, पानी वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए जो है पाइपलाइन सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से रहेगी और है भी। उसके लिए पाइपलाइन जोड़ता सीधा खेत में पानी जो स्रोत है वहाँ से सीधा पानी फसल तक आसानी से पहुँच सकता है।
1: 100% मिलेगा,
2: हाँ 100% जितना पानी है, ज़्यादा पानी है तो वो आराम से सीधा मिलेगा, आपका पानी वेस्ट कहीं नहीं होगा। 20-20 फीट के जो पाइप होते हैं और वो आपस में जुड़ते हैं, आराम से उसको जोड़ भी सकते हैं। और कोई भी दो किसान भी हो तो भी, 1-2 किसान होंगे तो भी उसको जोड़, छोटा बच्चा भी कर सकता है ये, मतलब आराम से आसानी से कर सकता है। यूँ नहीं तो वो बिल बनाते हैं, उसमें कहीं फूट जाता है, फिर वापस जोड़ता है, फिर वापस किसान खेत में देखता है कि यार पानी आ नहीं रहा है, फिर देखता है वापस चला जाता है कि यार पानी यहाँ फूट गया है, वापस जोड़ता है, फिर वापस खेत में भागता है, तो उसको समस्या ये समान हो जाती है इससे। और दूसरा है फव्वारा यंत्र। फव्वारा में सर क्या होता है कि खेत के अंदर 6 फव्वारे लगाते हैं, मतलब 6-7 फव्वारे अलग अलग अपने उससे लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है सर कि पानी का बचत
1: होता
2: है, हाँ बचत होता है। फव्वारे में सर ये है सब्सिडी इसके अंतर्गत है, अपने लागत का 55% जो है वो सब्सिडी इसमें मिलती है फव्वारा संयंत्र में। और इसका जो आवेदन है वो भी ऑनलाइन ही होता है, किसान राज किसान साथी पोर्टल से है जो इसका ऑनलाइन आवेदन होता है। और उसके लिए सर जन आधार कार्ड आवश्यक है, जन आधार कार्ड अगर नहीं बना है तो आवेदन नहीं कर सकता है, और जन आधार कार्ड बना हुआ है तो उसके लिए आवेदन कर सकता है। और ये जितनी भी स्कीम है उसके लिए राज किसान साथी पोर्टल से ही आवेदन होगा और जन आधार कार्ड ही चाहिए, और जन आधार कार्ड में बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। और इसके लिए आप ई मित्र पे जाएंगे, जन आधार कार्ड से आवेदन करेंगे। मान लो सिंचाई पाइपलाइन का आपको आवेदन करना है तो आप जन आधार कार्ड लेके गए और आपका जो भी खेत है उसकी जमाबंदी और नक्शा जो होता है खेत का पटवारी जो है निकाल के देता है। और आजकल ऑनलाइन भी होता है तो ऑनलाइन निकाल के पटवारी से प्रमाणित करवा के और ई मित्र पे लेके जाओ। ये दो चीज़ मुख्य है और तीसरा आधार कार्ड। तो जन आधार पे ऑनलाइन करके डॉक्यूमेंट चढ़ाने होते हैं और जैसे ही वो आवेदन हो जाता है तो वो आवेदन हमारे जिला कार्यालय है एग्रीकल्चर का वहाँ चला जाता है,
3: सिरोही।
2: हाँ, सिरोही चला जाता है और वहाँ से वो आवेदन हमारे पास ऑनलाइन ही अपने आईडी पे आता है। तो जैसे आईडी पे आता है तो हम उस
3: जिसको लाभ
2: मिलता है, हाँ, किसान को संपर्क करते हैं, भैया आपको कहाँ चाहिए, तो हम वहाँ जाके प्री वेरिफिकेशन करते हैं
3: जी।
2: प्री वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद वापस ऑनलाइन ही उसकी फोटो वोटो खींचते हैं, जियो टैग करते हैं और वापस भेज देते हैं, सिरोही चला जाता है। और वहाँ से उसकी स्वीकृति जारी होती है, प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है। और प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती है तो हमारे मोबाइल में आ जाता है, हमारे पास वो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति की कॉपी आ जाती है। उसके बाद हम किसान से संपर्क करते हैं कि आप जो भी पाइपलाइन है, वारा है, जो भी है आप लेके आ जाओ और आप खुद खरीदो, क्योंकि उसको खुद ही खरीदना होता है। सब्सिडी तो बाद में जमा होती है, सामान पहले लाना पड़ता है इसमें, ये है। तो सामान वामान लेके आ जाओ और बिल ला के हमें सुपुर्द बता दो, तो वापस हम दोबारा उसके खेत पे जाते, चेक करते भाई इसमें फुवारे लगाए हैं कि नहीं लगाए, पाइप लगाई है कि नहीं लगाई है, फिर हम जाके और बिल विल चेक करते और फिर वापस उसका जो भौतिक सत्यापन ऑनलाइन ही ऐप के माध्यम से करते हैं राज किसान साथी पोर्टल से। और उसके बाद वो जैसे आवेदन हम कर लेते कंप्लीट और सत्यापन कर लेते हैं, उसके बाद वो वापस जिला कार्यालय में चला जाता है और उसके लगभग महीने भर के अंदर अंदर लगभग वो है उसका भुगतान, लगभग वो पेमेंट जमा हो जाता है खाते में सीधे।
3: बहुत अच्छा बात बताया और ये प्रोसेस बताया, लेकिन जैसे आपने बताया सब पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तो इतना पैसा लोग के पास रहता नहीं है। जैसे कम से कम तो 5-6 हज़ार मिनिमम तो सब करने के लिए तो चाहिए, तो बाद में तो सरकार देगा 50%, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में इतना जो खरीदने के लिए जो संभव होना चाहिए उनको मिलेगा, जिसके गरीब लोग को कैसे फायदा मिलेगा कहाँ से?
2: सर ये ST SC अदर जनरल सभी में सर ये अपन को इसमें एग्रीकल्चर में यही है, आपको सामान तो पहले खरीदना ही है, पहले ही आपको लाभ किसी में पैसा वगैरह नहीं मिलेगा।
3: तो मान लीजिए पैसा पहले मिल जाएगा तो क्या दिक्कत होगा सर?
2: पैसे पहले मिलते हैं तो सर क्या है कि जो ट्राइबल एरिया के जो किसान है उसका दुरुपयोग कर लेते हैं शायद, मेरे हिसाब से। पहले शायद गवर्नमेंट पहले पैसा देती थी इसलिए उसका क्या है लोग दुरुपयोग करते हैं, तो दुरुपयोग करते हैं तो उसको वास्तव में वो जो गवर्नमेंट जो चाहती है वो विजिबल नहीं हो पाता है,
3: तो नेग्लेक्ट करेगा।
2: हाँ हाँ हाँ,
3: साल करेगा दूसरा जगह में
2: इन्वेस्ट कर लेगा या फिर वो
3: आदमी दारू पी
2: हाँ
3: कर सकता है।
2: और इसमें क्या है जो वास्तविक जिसको चाहिए
3: वो करेगा,
2: वो करेगा और उसको फिर पैसा भी पूरा पूरा मिलेगा, एक भी रुपया कहीं जाता नहीं, सीधे सब्सिडी से उसके खाते में, किसी को मतलब बिचौलियों के चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं, सीधे उसके खाते में पैसे जमा होंगे और उसको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है।
3: ये खास राज है क्योंकि इससे जो जेन्युइन है, जो लाभार्थी जो करने के इच्छुक है उनको ये फायदा मिलेगा, जिसका इच्छा नहीं है इसको जबरदस्त दे देंगे पैसा, वो पैसा को दूसरा जगह में वो इन्वेस्टमेंट करने लगेगा, जिसका सबसे नुकसान भी होगा और सरकार का जो मंशा है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस तरह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सर जो पाइप का जो सिस्टम मुझे बताया, बस हमारा किसान भाई को बताया, वो क्या सेफ्टी रहता है ना चोरी वगैरह? जैसे हम पाइप लगा दिए, जैसे अपने पाइप का सिस्टम लगे पानी जो 1 किलोमीटर लेना है वहाँ से मोटर से, लेकिन पाइप को हम जो रखने हो चाहे हमको उसको सेफ्टी का चोरी भी हो जाता है खेत में जो रख
2: देंगे, बिल्कुल
3: तो फिर उसका तो दिक्कत होगा
2: सर। इसमें पाइप एक तो आता है वो बाहर ओपन लगा सकते हैं 20-20 फीट के
3: ग्राउंड में,
2: और एक ग्राउंड वाला भी आता है, वो अगर किसान चाहे तो उसको ग्राउंड के अंदर लगा दे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई चोरी भी नहीं कर सकता उसका, वो लंबा रोल आता है, रोल भी लगा सकता है। और भाई मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो वो सिंगल पाइप 20-20 फीट के है उसको लगा सकता है। जैसे कहीं 300 मीटर पानी ले 300 मीटर का पाइप लेके आ गया वो, और उसके भाई 200 तक ही पहुँचाना है तो उसमें क्या 200 तक ही पहुँचानी, तो फिर वो क्या पूरी 300 मीटर पाइप डाल दी और उसको 200 मीटर तक पानी पी लाना वापस, तो वापस वहाँ से पानी इधर लाना पड़ेगा पाइप से। और इसमें कहा जहाँ तक जितना पाइप लेके जाना है वहाँ तक अपन पाइप जोड़ सकते हैं, ये इसमें एक फायदा है सर।
3: जैसे हम करंट लेते तो अंडरलाइन करना, अंडरग्राउंड करना और ऊपर लेना में तो दिक्कत होती है, बाढ़ आता है, तूफान आता है तो गिर जाता है,
2: बिल्कुल।
3: लेकिन अंडरलाइन करते तो सेफ्टी रहता है, लेकिन जो किसान मित्र जो इस तरह परमानेंट का खेती है और उनको करना ही लाभ मिल रहा है तो एक टाइम वन टाइम इन्वेस्ट कर लीजिएगा, अंडरग्राउंड कर लेंगे तो सेफ्टी का
2: वो फिर चोरी का टेंशन नहीं है, फिर
3: इधर उधर करने का जरूरत नहीं। चोरी हो सकता है लेकिन इतना जल्दी नहीं हो पाएगा, लेकिन खोदाई करके लेना इतना लोग को इतना पैसा हो। आजकल तो चोरी बहुत कम हो गई, पहले होशियार हो गए थे, पहले कुछ पैसा नहीं था, आजकल तो दो घंटा कमाई करेंगे कहाँ भी 200-300 रुपए मिल जाता है, पैसा के लालच में कोई चोरी नहीं, पहले था ऐसी चोरी करने के, लेकिन आज सबका समाधान उन्हें सरकार भी दे रहा है, भोजन भी दे रहा है, रहने की व्यवस्था सब कुछ दे रहे हैं, बहुत अच्छा बात बताए। ये था उससे संबंधित हमारे किसान भाइयों के लटरी कहेंगे कि उनका आगे खोलेगा, जब सब्सिडी सरकार तरफ से जब मिल रहे हैं उसका सही जानकारी होना अति आवश्यकता है, और इसका उसका बात नहीं सुन के, गलत अफवाह से नहीं सुन के सरकार का जो दिशा निर्देश कृषि अधिकारी से संपर्क करें, और उसका एक पोर्टल जैसे सर ने बताया
2: राज किसान साथी पोर्टल
3: में जाकर अपना जानकारी जिस चीज में हमको चाहिए वो चीज रहता है। आप पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आपका बच्चे आज तो पढ़े लिखे ही है, क्योंकि आपके जमाने में इतना पढ़ाई नहीं था, लेकिन आज बच्चे तो फोन एंड्रॉइड फोन में सब चीज अवेलेबल है, तो बड़ा फोन में आप कर सकते हैं। लेते छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर। आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं। राकेश सर हमारा साथ जुड़े हुए हैं और सभी को अपना अनुभव आधार से जो भी सुविधाएं जो डोर टू डोर जाकर बताते थे, लेकिन आज रेडियो मंच का माध्यम से सभी किसानों दे रहे हैं, जो भी जहां पर भी सुन रहे हैं कैसे लेना है, कहां पर लेना है, किस तरह लेना है, कौन एंटाइटल, सब चीज़ बता रहे हैं। एक एक प्रोजेक्ट का बारे में, एक एक योजना का बारे में बता रहे हैं। जैसे इसका पहले हम सुन रहे थे पाइपलाइन और फुहारा का बारे में।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पाइपलाइन। हाँ, तो अभी कौन सा बारे में सुन रहे हैं सर?
1: अभी में एक कांटेदार तार बनती है, होती है, उसमें भी एग्रीकल्चर जो है सब्सिडी देती है, उसके लिए मैं आप जानकारी दे रहा हूँ। इसमें सर कृषि विभाग से जो तार बंदी लगाते हैं उसमें तीन हेक्टर मतलब 12 बीघा जो जमीन है कम से कम चाहिए, और तीन किसानों का समूह होना चाहिए और जिनके खेत पास में है, और जमीन अगर 3 बीघा सॉरी 3 हेक्टर मतलब 12 बीघा, हाँ तीनों का मिलाकर 12 बीघा होनी चाहिए और आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। न्यूनतम इतनी हो सकती है, अधिकतम हो सकती है कितनी भी, और 3 किसान न्यूनतम चाहिए ग्रुप में, और 7-8 किसान भी हो सकते हैं। कहीं जिसे कि जमीन कम पड़ रही है, 3 किसानों की नहीं हो रही 12 बीघा, तो 10 किसान भी हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं आपस में। हाँ, तो इसमें सर अधिकतम 40,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, 40,000 रुपये तक सब्सिडी मिलती है इसमें सर, और अधिकतम 400 मीटर तक की सब्सिडी मिलेगी। किसी भाई के जैसे मान लो 600 मीटर हो गया तो उसको 400 मीटर तक की सब्सिडी मिलेगी, 400 मीटर के ऊपर जो है वो खुद वहन करेगा। और इसमें भी सर ये है कि आवेदन ऑनलाइन करके और फिर तारबंदी का कार्य प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती है, और इसके बाद तारबंदी का कार्य भी पूरा अपन को ही करना है, किसान को ही सारा करना है। करने के बाद जो बिल वगैरह है वो सारा ला के हमें देगा, तो हम उसका जो है वहाँ पे आगे करेंगे, तो उसकी सब्सिडी वो पूरी उसके
0: खाते में बहुत अच्छा योजना है। और खेत को सुरक्षा रखना,
1: सुरक्षा रखनी आजकल सर वो
0: जरूरी,
1: सुअर इतने सर हो गए हैं जो मक्का एक दिन में सारी मक्का खराब कर देते पूरा खेत, इसलिए ये तारबंदी होने से सर बहुत फायदा मिलेगा किसानों को। ये
0: जैसे हम कपड़ा पहनते हैं अपना शरीर को ढकने के लिए, सेफ्टी के लिए, धूली मिट्टी नहीं लगे, हेलमेट लगा देते हैं, तो खेत को भी हेलमेट
1: लगाना
0: चार तरफ बाउंड्री लगाना जरूरी है, क्योंकि उससे किसान तरह आराम से नींद से सो पाए, तो नींद नहीं होगा,
1: नींद नहीं होगा तो
0: मन तो उधर ही है, स्वास्थ्य खराब होगा, तो स्वास्थ्य रखने के लिए डॉक्टर पैसा क्यों दे, खेत में लगा सरकार उसका भी फायदा दे रहे, करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं सर। जैसे जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे आपने बताया 3-4 प्रोजेक्ट बनाए, जो भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, पाइप हो चाहे फुहारा हो चाहे कांटा जो लेने के लिए, इसके लिए क्या कोई भी सामान को अपने हिसाब से लेंगे ना आप, उसको थोड़ा वो मटेरियल को थोड़ा स्टडी करते हैं, इस चीज मटेरियल लगाओ, आप सजेशन देते हैं, कोई भी मटेरियल जो खुद खर को लाता है उसमें आप क्या सजेशन देते हैं
1: सर? उसमें ये होता है कि ये प्रमाणित जो राजस्थान से जो ISI मार्क से जो भी है, अच्छा। राजस्थान गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड है
0: उसको
1: वही चीजें आप लाओगे तो ही सब्सिडी मिलेगी।
0: ओके,
1: ये है।
0: हाँ,
1: इसमें अगर वो राजस्थान गवर्नमेंट से अप्रूव्ड नहीं, लोकल उससे नहीं लेना है, लोकल से आप नहीं ले सकते हो, और बाकी किसी से भी ले लो, लेकिन उसमें राजस्थान गवर्नमेंट जो चीजें वो अप्रूव्ड होनी चाहिए उसमें, राजस्थान गवर्नमेंट। हाँ, उसमें जो पहले से सारी लिस्टें आ रखी होती है कि पाइप में कौन कौन सी जो कंपनीज हैं जिसमें ISI मार्क और कंपनी जो है राजस्थान गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है,
0: तो किसान को कैसे पता चलेगा सर ये मटेरियल क्या है? मैंने जो आपने बताया तो ठीक है, आप जानते हैं, लेकिन किसान भाइयों को कैसे अवगत होगा?
1: किसान भाइयों को सर इसलिए अवगत हो जाएगा क्योंकि सर यहाँ जैसे डीलर है, यहाँ आबोड में, मंडार क्षेत्र में वो काम करते हैं फील्ड में, उस सब जो किसान भी लगभग उनको जानते हैं, तो क्या है कि वो वहाँ से वो सामान खरीद सकते हैं, यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है, जैसे आबू रोड में फैसिलिटी अवेलेबल है, 3-4 डीलर्स हैं उनके पास से आप जो प्रमाणित सामान है वो आप खरीद सकते हैं।
0: तो सभी किसान भाई ध्यान से सुने, कोई भी सामान लेते हैं तो लीजिए, लेकिन उसका जो उचित जो मूल्यांकन तो उसको थोड़ा परख है, नहीं समझ में आता है तो एक बार कृषि अधिकारी भी रहता है अपना ग्राम पंचायत में, कोई ना कृषि विभाग से पता करिए, और ISI लिखा होना चाहिए तो पता चला ये अप्रूव्ड है गवर्नमेंट द्वारा, तो आप उसमें सब्सिडी मिल सकता है, नहीं तो आपने लोकल मेड में कोई आपने खुद बनाया उसमें लगा देंगे तो सब्सिडी मिलेगा नहीं। जैसे कोई भी बिल लेते, कोई सामान खाते, उसको बिल भी पक्का बिल चाहिए, क्योंकि उसको TIN
1: TIN नंबर वाला बिल वो
0: मिलेगा, बिल तब जाकर अप्रूव्ड होगा, नहीं तो अप्रूव नहीं होगा। लोकल
1: लोकल बिल
0: मान्यता नहीं है, तो लीजिए सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन आप कंजूस मत करिए पैसा का चक्कर में, थोड़ा ऐसे नहीं करने का, जो सिस्टमेटिक है उसको नहीं तो आप अपना सलाह लेकर कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या आप बताना चाहेंगे?
1: दूसरा सर ये है कि अपने यहाँ क्षेत्र में जैसे अपन बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर ये कहता है कि ब्लड टेस्ट करवाओ, तब देख के बताता है कि इसमें क्या क्या ये बीमारी है। अब सॉइल में कोई बीमारी होगी, मृदा में कोई बीमारी होगी, खेत के अंदर, तो अपन को थोड़ी ऐसे पता होगा इसमें क्या बीमारी है। तो उसके लिए भूमि का मृदा सॉइल टेस्ट करवाना अति आवश्यक है, अति आवश्यक बहुत जरूरी है, क्योंकि
0: कोई भी सॉइल,
1: हाँ सॉइल खेत में खेती करते हैं उसकी टेस्ट कराना अति आवश्यक है। अपन को क्या पता इसमें किस चीज की कमी है, कौन से खाद अपन डाल रहे हैं, हो सकता है उस खाद डाल रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं अपन डाल रहे हो, और जो चीज डालनी है उसको अपन डाल ही नहीं रहे हैं, तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। इसलिए सॉइल टेस्ट कराना अति आवश्यक है, और सॉइल टेस्ट करवाने के लिए अपने संबंधित जो क्षेत्र का जो कृषि पर्यवेक्षक है उसको बुलाएं, और वो आपका जो है सॉइल टेस्ट मृदा से ले लेगा, सैंपल ले लेगा। और आप भी अगर किसान भाई अगर जानकार हैं तो आप भी ले सकते हैं, किसान के खेत के चारों कोनों से
0: दिशा से,
1: हाँ जैसे ये खेत है 5 जगहों से मिट्टी लेनी है, 1 फीट अंदर खोद के और मिट्टी लेनी अंदर से चारों कोनों में और एक बीच में से मिट्टी लेके, और उनको मिक्स करके अच्छी तरह से
0: सभी को मिक्स,
1: हाँ आधे आधे किलो मिट्टी लेके 5 भाग से, और फिर उनको मिक्स करके उसमें से है जो पाव भर मिट्टी या आधा किलो मिट्टी है वो लेके, और फिर उसको जो कृषि विभाग में जमा करा दो, और उसके जो शुल्क है वो सिर्फ मात्र 5 रुपये है।
0: अच्छा अच्छा
1: 5 रुपये उसकी जो शुल्क है, और 5 रुपये में पूरी मिट्टी की पूरी जाँच होके आ जाती है 15-20 दिन में।
0: सुविधा अबुरोड में है?
1: अबुरोड में सर ये सुविधा नहीं है, लेकिन वो हमारे पास जैसे सैंपल आता तो हम जिला में वहाँ लैब बनी हुई है सिरोही, वहाँ जाके हम टेस्ट करवा लेते हैं और उसकी रिपोर्ट हम किसानों को देते हैं। अभी हमारे जो कृषि विभाग के जितने भी कृषि पर्यवेक्षक है उन्होंने 50-50 सॉइल सैंपल लिए थे, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, आज भी हम लेके आए हैं कार्ड, और उसमें पूरा दे रखा है कि कितना क्या क्या देना है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि अपने किसान भाई देते हैं, ज़्यादा देते हैं, उनको पता नहीं रहता, ऐसे यूरिया है DAP है वगैरह वो डालते रहते हैं, लेकिन उसमें खेत में ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे यहाँ की जो मिट्टी है उसमें थोड़ी सारी अपने जिप्सम की कमी है, मोस्टली जिप्सम की कमी है, तो जिप्सम अगर लेते हैं किस तो सोसाइटी से लेते हैं तो उसमें भी 50% आपको अनुदान पे जिप्सम मिल जाएगा, तो वो जिप्सम को आप लेके और मिला के मिट्टी मिला के आप उसका जुताई कर देते हैं तो वो फसल के प्रोडक्शन के लिए अच्छा रहेगा। और जिप्सम है, जिप्सम अगर उसमें जिंक सल्फेट है और फेरस सल्फेट है, ये दोनों भी अभी हम अनुदान पे दे रहे हैं, 50% अनुदान पे हम दे रहे हैं, तो उससे क्या है सर ये जैसे ऑयल क्रॉप से सरसों वगैरह है तो इस जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट डालने से इसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी बढ़ती है। और यहाँ इस फील्ड में जैसे है जो जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट की कमी है
0: जी।
1: तो ये अगर किसान अगर सॉइल टेस्ट करा लें तो उसका पता चल जाए तो आगे इस संबंध में उन किसानों को लाभ हो सकता है,
0: बहुत कुछ बचत भी हो सकता है, इनका खेत भी बचत कर सकते हैं और इनका जो प्रोडक्शन जो होता है उत्पादन को भी बचा सकते हैं, और हमारा वेस्टेज नहीं जाएगा।
1: नहीं नहीं सर वेस्टेज नहीं जाएगा,
0: और हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे हम कोई भी टेस्ट सामने बताए, कोई भी ऑपरेशन करने का पहले आपका ब्लड टेस्ट पूरा सब यूरिनल टेस्ट हम टेस्ट करते हैं, इसके बाद मेडिसिन देते तो काम में आता है क्या आवश्यकता है, तो खेत को भी क्या आवश्यकता है वो चीज़ हम जब जाँच करेंगे पहले शुरू में जब करेंगे तो उनको लगेगा भाई ये प्रोसेस है, फिर इसको पकड़ो उसको पकड़ो तो टाइम जाता है, लेकिन एक बार आपका खेत का पूरा पता चल जाएगा तो आपको उसी हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा।
1: सही है,
0: जैसे हमको सिर दर्द होता है, BP होता है, तो हम शुगर होता है, तो हम चीनी का थोड़ा कंट्रोल करेंगे ना, अगर टेस्ट ही नहीं करेंगे कैसे चलेगा। और उसी तरह खेत को भी अपना पहले टेस्ट कराइए, भले समय लगे, लेकिन जैसे आप टेस्ट कराने के लिए खेत को जाना पड़ेगा, 5 जगह से मिट्टी लेना पड़ेगा, फिर उसे परिवे खेत को उनको बताना पड़ेगा, ये चीज़ें जो प्रोसेस सर इसमें थोड़ा पैसा वगैरह कुछ हेर फेर होता है, जो जिसको हम बुलाएंगे वो क्या फीस लेते हैं ना, फ्री में जाते हैं?
1: नहीं सर फ्री में है, निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं हमारे को, अगर बुला ले या खुद मिट्टी लेके आ जाए तो और भी बेस्ट है
0: जी।
1: यूँ और जैसे हम क्षेत्र में खुद मिट्टी लेके आ जाते हैं किसान, एक बार बता देते हैं, समझा देते हैं कि ऐसे आप मिट्टी ले लेना, और वो खुद की मिट्टी लेके आ जाता है, उससे सिर्फ 5 रुपए की रसीद लेंगे हम बस।
0: लेकिन किसान भाई लोग बता रहे हैं हमको बहुत चक्कर लगाना पड़ता है, 2 बार गए किसान नहीं थे।
1: हाँ सर ये पहले था, लेकिन अभी क्या हम जैसे सब जगह पोस्टिंग हो चुकी है, पहले यहाँ पूरे आबुरोड क्षेत्र में 2 सुपरवाइजर थे, 15 पोस्टें हैं और सुपरवाइजर 2 थे, और पूरा 15 पोस्टों का काम संभालते थे, तो वो हो नहीं पाता था हर जगह। मतलब 10 पोस्ट तो ऑलरेडी भर चुकी है और 5 पोस्ट ही खाली है, तो अब हर जगह दिक्कत नहीं होगी। आप किसान भाइयों को जो है कृषि परिवहन समय पर हर जगह मिल जाएगा और आपका काम भी आसानी से।
0: इतना सुविधा है सरकार दे रही है और इतना पैसा तनखा आपका पीछे इतना लोग अपॉइंटमेंट किया है, कितना तनखा जा रहा है और उसका फायदा लेना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप जब नहीं लेंगे उसको काम नहीं दे रहे हैं, तो उनसे तनखा सरकार का जो राज्य के पैसा जो जा रहा है वो वेस्टेज जा रहा
1: है। सही है सर,
0: तो उनको काम दीजिए और उनको भी खुशी होगा।
1: सही है,
0: और वो पैसा भी खत्म भी होगा।
1: सही है,
0: और नहीं तो बट बट करेंगे तो मन भी इधर इधर होगा, भ्रष्टाचार में जाएगा।
1: सही है,
0: तो इसलिए हमारा किसान भाई को नम्र निवेदन है, सर से जितना फायदा लेना हो पहले जाइए, बार बार जाइए, एक बार गए कुछ उनका भी कुछ प्रॉब्लम होता होगा, मैं कहाँ ऑफिशियल ड्यूटी होते सर आज यहाँ पर, तो मान जो अपना ऑफिस में कोई ढूंढेगा तो मिलेगा नहीं ना
1: सर। हमारे ऑफिस के बाहर हमारे सबके नंबर लगा रखे हैं हमने, अगर कोई भी हम अगर फील्ड में भी जाते हैं, हमारा वैसे फील्ड का ही काम होता है पूरे दिन, अगर ऑफिस में नहीं मिलते हैं तो आप वहाँ जाके ऑफिस के बाहर नंबर से एक बार कांटेक्ट कर लें, हो सकता है आपके आसपास ही कहीं हो फील्ड में हो तो नंबर भी लिखे हुए
0: हर सेक्टर में, जैसे आपका सेक्टर कितने ग्राम पंचायत को लेकर आप सर।
1: सर मेरे जैसे मूलथला डब्ल्यू में तो जैसे 9 पंचायत आती है,
0: 9 ग्राम पंचायत,
1: 9 ग्राम पंचायत सिर्फ मैं सुपरवाइजर का काम करता हूँ, पूरे सभी मेरे अंदर 4 सुपरवाइजर है, 4 और खुद ही मैं सुपरवाइजर हूँ, तो मेरे खुद के आवल और चनार 2 ग्राम पंचायतों का काम मैं खुद देखता हूँ। इसके अलावा ओरिया है, बहादुरपुरा है, चंडेला है, मूंगथला है, क्यारिया है, दामसरा है, ये इनका सुपरविजन मैं करता हूँ। ये
0: एरिया को पूरा हरा भरा करने का दायित्व आप कप्तान गिरद करते हैं, इतने किसान को खुश रखते हैं, क्योंकि किसान जब खुश रहेगा देश खुश रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, किसान
0: और आप उसका कमान आपका हाथ में, और जो आप एक आदिवासी समाज में बिलोंग करते हैं, आदिवासियों को समझाने अपना भाषा में सहज भी होता होगा, इस तरह बहुत कम मिलता है कैंडिडेट।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ सर इस फील्ड में समस्या भी होती है, जैसे अधिकतर जो हमारे साथी लोग हैं वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं, जो किसानों को मोटिवेट करने में थोड़ी समस्या आती है, और किसान भी क्या है कि जल्दी बाहर के किसी लोग तो एकदम भरोसा नहीं करते, और मेरे यहाँ होने से क्या होता है कि जैसे मैं लोकल लैंग्वेज में बात कर लेता हूँ तो उनको मेरी खुद की भाषा में बात करता हूँ आदिवासी भाषा में, तो उनको जल्दी समझ में भी आ जाता है और वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये है
0: सही बात, इतना दायित्व लेकर फिर भी आप खुश रहते हैं और सबको देने के लिए आपको खुशी मिलता है कहीं सेवा में।
1: कृषि सर, कृषि विभाग में देने का ही है इसमें सब दे, लेकिन किसान को मोटिवेट होके हमारे संपर्क करना बहुत अति आवश्यक है। हम भी हर जगह हमारी किसान गोष्ठी होती है, अभी हाल फिलहाल में मूंगथला में किसान गोष्ठी हुई थी, 100 किसानों की हुई थी, हम हर जगह जहाँ भी गोष्ठी करते हैं किसानों को जानकारी देते रहते हैं, महिलाओं की अलग गोष्ठी होती है, पुरुषों की अलग गोष्ठी होती है, पूरी स्कीम की है लगभग, हम वहाँ जानकारी देते रहते हैं, और इस क्षेत्र से अब धीरे धीरे थोड़े किसान जागरूक हो रहे हैं और स्कीम में आवेदन भी कर रहे हैं और लाभ भी ले रहे हैं।
0: और एक तो यूथ जैसे यंग आपको अभी पोस्टिंग बहुत कम दिन हुआ रहा, यूथ कमी खून में देने के लिए भावना, बूढ़ा तो है हुआ नहीं।
1: जी जी जी,
0: लेकिन कोई जिससे सीनियर हो जाते हैं तो उनका देखा उसको इतना आता नहीं करने के, लेकिन आपका जो खून उमंग उसका फायद में देखने को मिलता है, तो इसका फायदा अंतर्वासी ले, खासकर अपना जो सेक्टर बताए इतने सेक्टर का जो आप कार्यकर्ता है कप्तान चलाते, तो इतना गांव पंचायत आपका पास है, तो खासकर यहाँ का समस्या क्या आती है और उसको आप कैसे निवारण करते हैं वो भी जानेंगे, लेकिन पहले स्कीम के बारे में कितने स्कीम है और बाकी रहा लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते।

0: पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं। राकेश सर इस कार्यक्रम को सुंदर में बखूबी से सजा रहे हैं और किसान भाइयों के लिए जितना देना चाहते हैं वो उससे ज़्यादा देने के लिए तत्पर है, तो उनको पुनः स्वागत करते हैं सर। और कौन सा स्कीम है?
1: और सर एक सबसे बड़ा स्कीम है खेती में काम आने वाले कृषि यंत्र हो गए, जैसे रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, थ्रेसर हो गया, ये सारे जो है कृषि यंत्र है उन पे भी है जो सब्सिडी मिलती है। इसके अंतर्गत कृषि यंत्र में सर है जो एक तो ट्रैक्टर, पानी का टैंकर और एक साथ ट्रॉली है, ये इनमें सर सब्सिडी नहीं मिलती है।
0: अच्छा,
1: इनमें सब्सिडी नहीं मिलती है, बाकी जितने भी उपकरण हैं उनमें सब में सब्सिडी मिलती है आपको। और जिसमें STSC को है और लघु सीमांत किसान है उनको 50% और जनरल को है 40% है जो उसका टोटल कॉस्ट का।

0: सब्सिडी मिलता है
1: वो एसटी और एससी के लिए 50 और अदर के लिए 40% टोटल कॉस्ट का है। और उसमें थोड़ा एसपी का डिफरेंस पड़ता है तो ज़्यादा फर्क नहीं आता, एचपी का पड़ता है तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 40-50 तो है ही है, ये इतनी सब्सिडी तो मिलती है।
0: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी इसका फायदा भी ले, खासकर किसान धान के लिए ये जो उपकरण जो कृषि यंत्रपाती जो आवश्यकता है उसमें भी आपको सब्सिडी गवर्नमेंट तरफ से मिलता है 50 और 40, जनरल के लिए 40 और एसटी के लिए एससी के लिए 50 मिल। सर जैसे कृषि के लिए आजकल ट्रैक्टर वगैरह आपने बता दिए, लेकिन जहाँ जहाँ अभी भी हम देख रहे हैं बलद बा जो पशु से खेत करते हैं तो उनका भी बीमारी कभी कभी होता है और डेथ भी हो जाती है, तो उसके लिए क्या सब्सिडी वगैरह सरकार तरफ से उसकी प्रॉब्लम
1: पशुओं के लिए? वैसे सर ये तो पूरा पशुपालन विभाग से है, लेकिन इसमें सर ये मेरे ध्यान में जहाँ तक इन पशुओं के भी बीमा होता है तो बीमा होता है तो बीमा तो हर इंसान भी करवाता है तो पशुओं का भी करवाना चाहिए। तो पशुओं का बीमा करवा अगर ऐसी दुर्घटना बाय चांस हो जाती है तो उससे सबसे पहले पशुपालन विभाग से संपर्क करके और उसके बारे में उनको बताना आवश्यक है।
0: चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, और कौन सा स्कीम सर? जो
1: सर ये स्कीम तो लगभग पूरी हो गई है, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ ऐसे इंटेंसिव स्कीम है जैसे छोटी छोटी स्कीम है, वैसे मिनी किट वितरण से जो इसमें क्या है गवर्नमेंट मिनी किट वितरण करती है किसानों को 10% टोकन राशि रुपये लेके, और अभी सरसों के जैसे मिनी किट आए हैं हुए हैं तो उसमें हम 2 किलो सरसों है वो 13 रुपये में हम 13 रुपये टोकन राशि लेके केवल महिला कृषकों के नाम से हम उनको देते हैं, ये है मिनी किट। और दूसरा सर ये है अपने प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स स्प्रे वगैरह होते हैं सर, जो दवाई छाटने के होते हैं ना सर स्प्रे, उनमें भी सर सब्सिडी मिलती है। तो बैटरी ऑपरेटर जो है प्लांट इक्विपमेंट प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट उसमें 1500 रुपये तक सब्सिडी है, आज हम खुद लेके भी आए हैं किसान के लिए बोला है, इसमें अपन को पहले 3000 रुपये भरने पड़ेंगे और 1500 रुपये वापस सब्सिडी के रूप में खाते में जमा होंगे। और एक दूसरा होता है जो केवल हाथ से चलाते हैं दवाई छाटने वाला, उसमें 750 रुपये तक सब्सिडी मिलती है।
0: ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएं और किसानों का हित के लिए हम सब तत्पर हैं, और रेडियो मधुबन एक मंच देता है जिस मंच का माध्यम से किसान का समस्या सुनते भी है, और आज समस्या को समाधान करने के लिए रेडियो मधुबन का मंच का माध्यम से राकेश सर ने पूरा डिटेल जितना उनका पास है सरकार का जो गाइडलाइन है दिशा निर्देश को लेकर जो सब्सिडी से लेकर सब चीज़ रखें, बहुत अच्छा लगा इस तरह कार्यक्रम में सुंदर रूप में सजाने के लिए। राकेश सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और समय मिलेगा तो कभी पुनः उनसे मुखातिब होंगे, रूबरू होंगे, और किसान भाइयों के लिए जितना जानकारी समय प्रति समय आपके पास पहुंचता रहेगा ये हमारा सुभावना है। सर जाते जाते क्या कहना चाहेंगे
1: किसानों के लिए? कहना चाहता हूं कि आप कृषि विभाग में जितनी मैंने स्कीम्स बताई है और आगे भी कैंप हैं उनमें आप अगर ये सुनते हो तो हर जगह आपको आवेदन तो एक बार करना ही है, हर स्कीम में भले लो या मत लो लेकिन आवेदन करोगे तो आपको जानकारी भी मिलेगी और उसके बारे में उससे जो फ़ायदे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होगी। धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे लिए पहला अवसर है कि मेरी जो बात है जो मतलब मैं सोच रहा था पहले कि कहीं मेरी बात भी ऐसे मैंने YouTube पे ऐसे डालूं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आज आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ रेडियो मधुबन को कि जो मेरी बात है किसानों तक पहुँचाएंगे आप। धन्यवाद सर।
0: आज तो ट्रायल सर था, हमेशा आपका साथ हम रहेंगे, और जितना आप डोर टू डोर देते थे लेकिन कभी भी मौका मिलेगा तो आपसे संपर्क करके उनका हित में किसानों का हित में जरूर संपर्क रखेंगे जिसका चलते हमारा किसानों को जल्दी फायदा मिले, और जो भी समस्या है कभी कभी लाइव में अभी आप आ सकते हैं जिसका चलते डायरेक्ट आप किसान से बात कर सकते हैं, जिसका चलते आपको भी लगेगा चलो आज मेरा जो मंशा जो सपना था आज हमारे कास्कर भाइयों के लिए कुछ कर रहे हैं तो बहुत खुशी लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तरह कार्यक्रम में सजाने के लिए,
1: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, धन्यवाद सर।
0: तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। हमारा श्रोता मित्र खासकर कास्कर भाई लोग इसका जरूर फायदा लें, कोई भी समझ में दिक्कत होता है तो नज़दीक आपका लोकल जो कृषि अधिकारी है बा कृषि पर्यवेक्षक है तो उनसे संपर्क करके इसका जानकारियाँ लीजिए। जरूर प्रशासन आपका साथ है, कृषि विभाग आपका साथ है, और रेडियो मधुबन आपका साथ है। सभी को नाम का साथ सुनने वाले सुनाने वालों को धन्यवाद, आभार।

0: नमस्कार साथियों, हेलो, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। और आज है आपके होस्ट आपके साथ अपने फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। मैं मन की आंखों में से आज है एक शानदार आवाज जो अपने गिटार के माध्यम से आपके बीच लाती है जिंदगी की मुस्कुराहट और एक जिंदगी की सुंदर आवाज जो भर देती है हमारे जीवन में मधुर संगीत। लेकिन कहते हैं ना कि मन की आंखों से में हम हर बार टटोलने की कोशिश करते हैं मन की आंखों को, कि मन की आंखें कैसे जीवन को आगे ले जाती हैं, चाहे आपकी जिंदगी में अंधेरा हो या प्रकाश। और रियली में आज हमारे साथ हैं प्रकाश। प्रकाश डायरेक्टली कमिंग फ्रॉम जयपुर, पिंक सिटी ऑफ राजस्थान एंड पैलेस ऑफ इंडिया। सो वेलकम प्रकाश इन अवर शो मन की आंखों से विद दिस
1: हेलो
0: ओन फेवरेट
1: शरद।
0: रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 107.8 FM। वेलकम प्रकाश।
1: हेलो फ्रेंड्स और हेलो शरद, कैसे हैं आप? और थैंक्स फॉर वेलकमिंग मी।
0: मैं अच्छा हूं प्रकाश, और आपकी आवाज सुन के और अच्छा हो गया हूं। श्रोताओं जो भी माउंट आबू से हमें सुन रहे हैं हमारे रेडियो वेव पे 107.8 FM पे, वो हमारे सुन सकते हैं हमारे ऐप पर भी, रेडियो मधुबन पर। डाउनलोड करें अपने फोन में और सुनते रहें जीवन की आवाज, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी प्रकाश,
1: हेलो
0: प्रकाश
1: सर।
0: हम लोग जानना चाहते हैं आपकी लाइफ के बारे में, आपकी बचपन की यादों के बारे में। उस पर तो आएंगे ही, और रंगों की इस दुनिया में प्रोमिनेंट कलर ब्लैक के बारे में भी। तो हालांकि मैं ब्लैक की बात कर रहा हूं, एक फिल्म भी थी
1: इट्स
0: ब्लैक,
1: माय फेवरेट कलर मैन, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कलर है वो यूनिवर्स का।
0: लेकिन
1: यूनिवर्स का कलर ही ब्लैक है।
0: यस यस, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, दैट्स ट्रू। तो आप प्रकाश जो है एक बिजली चैलेंज साथी हैं और FCI में अफसर हैं, इसके साथ साथ एक म्यूजिक के लर्नर हैं, स्टूडेंट हैं, और रॉक स्कूल से गिटार में भी एक अच्छी क्वालिफिकेशंस के साथ अपने संगीत को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं आपकी शुरुआत की स्कूलिंग के बारे में जानना चाहूंगा प्रकाश।
1: स्कूलिंग एक्चुअली मेरी बहुत अच्छी रही है, क्योंकि डैड आर्मी में थे तो हर 3 साल मेरा चेंज होता था। जैसे मेरा होम टाउन जयपुर है, बट मेरा मेरा बॉर्न गुवाहाटी में हुआ,
0: जी
1: तो 2 साल बाद फिर मैं उत्तराखंड चला गया। तो मेरी स्कूलिंग स्टार्ट हुई उत्तराखंड रानीखेत में, बहुत खूबसूरत जगह है वो। तो
0: जी जी
1: वो इतनी खूबसूरत जगह है, वहाँ पे वन एट अ टाइम 7 रेनबो एक साथ दिखते थे, बहुत खूबसूरत जगह है वो।
0: क्या बात है, क्या बात है,
1: तो
0: बहुत
1: वो उसकी यादें अभी भी ब्रेन में है, बर्फ पड़ना, वो कलर दिखना, फिर केदारनाथ बद्रीनाथ जाना। तो वो 3 साल मेरे लाइफ के सबसे खूबसूरत थे। सीढ़ी नुमा खेत देखना, तो रानीखेत बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद हम जयपुर, फिर इंदौर, फिर बॉम्बे, फिर लास्ट में जयपुर। ऐसे मतलब सारी डिफरेंट जगह देखने का मौका मिला था बचपन में, थैंक्स टू मॉम माई डैड।
0: अपने पेरेंट्स के साथ आपने पूरे देश की यात्रा की, और इस हमारे देश के एक वृहद इलाके को आपने देखा है, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट की यादें हों या चाहे हमारे नॉर्थ के एक्सट्रीम हिमालय के पहाड़ हों
1: और सबसे
0: या
1: खूबसूरत तो केदारनाथ था। जब मैं 4 साल का था तो मैं केदारनाथ गया था, मुझे अब भी याद है, इतना खूबसूरत था। पर और उसमें मेरे को अभी भी याद है, मैं खाई में गिरते गिरते बचा था, घोड़ा जब उतर रहा था तो ऑलमोस्ट ही कॉलैप्स, बट बच गया।
0: हाँ, कुछ ऐसी ही घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी जो है वो कांची है, कुछ पल में भी रह सकती है और जा भी सकती है
1: हाँ,
0: ना।
1: उस दिन रियलाइज हुआ था कि हाँ भगवान होते हैं, भोलेनाथ हैं, जब
0: क्या बात।
1: बचा, कि मुसीबत में ही तो पता चलता है भगवान का।
0: बहुत बढ़िया। तो स्कूलिंग करने के बाद आपने इंजीनियरिंग किया, दैट इज कंप्यूटर साइंस,
1: हाँ
0: और
1: सर।
0: कंप्यूटर साइंस की ब्रांच का सिलेक्शन कैसे किया आपने?
1: एक्चुअली वो मेरे को बचपन से सॉफ्टवेयर पसंद थे, और मेरे बड़े भैया हैं, ही इज ऑल्सो सॉफ्टवेयर इंजीनियर। तो मुझे बचपन से कंप्यूटर गेम्स खेलना, कंप्यूटर पे काम करना बहुत पसंद था, तो सॉफ्टवेयर बहुत पसंद थे। मेरे भैया ने भी किया, तो वही जो होता है ना कि पसंद, भैया मेरी एक जैसी थी, तो वही मेरे को भी प्रोग्रामिंग करना पसंद था कि कंप्यूटर के गेम्स बनाऊँ और इंटरेक्ट करूँ, कंप्यूटर को और एक्सप्लोर करूँ। तो इसके लिए मैंने फिर मुझे यही ब्रांच अच्छी लगी कि जिससे मैं जो मेरे सवाल हैं जवाब हैं वो मिले मुझे, इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस करी थी कि
0: क्या बात
1: प्रोग्रामिंग कर
0: है,
1: सकूं,
0: क्या बात है,
1: गेम बना सकूं। मुझे गेम बनाने का बहुत शौक था कि खुद का गेम हो।
0: बिल्कुल अपने खुद के एप्लीकेशन हो, अपनी दुनिया हो ना।
1: हाँ बिल्कुल।
0: लेकिन इन इस कंप्यूटर साइंस की दुनिया नहीं, जो आपने चुनाव तो किसी और कारण से किया था आपकी जिंदगी में, तो आप गेम बनाना चाहते थे, लेकिन जिंदगी के इस खेल में आपको एक गोल किस्मत ने किया,
1: हाँ सही
0: और
1: कह रहे हैं आप।
0: वो गोल ऐसा था जिसने आपको सामने वाली जिंदगी के खेल में डी में जाके खेलने के लिए मजबूर किया, और बताने का चैलेंज दिया आपको, डेयर दिया कि जी ले तेरी जिंदगी। तो फिर कैसे ये घटना हुई और आप कैसे मैदान में पहुंच गए इस खेल के?
1: वो एक्चुअली जो जिस सिचुएशन में है वो कभी पता था नहीं। स्कूल टाइम से था गेम्स खेलना है, गेम्स में खेलता था, एक्सप्लोर ट्रैवल करना मुझे पसंद था, तो इसलिए मैंने कंप्यूटर साइंस करी। यही चलता रहा, जब इंजीनियरिंग खत्म हो गई तब भी मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक अच्छी जॉब लग गई मल्टीनेशनल कंपनी में, और तब भी कुछ नहीं पता था हो रहा क्या है, तब भी ये सोचता था कि जो प्लान कर रहा हूँ वही लाइफ में चल रहा है। और एक होता है ना, आप अपना स्केल बना देते हैं कि मेरे को ये करना है ये करना है, तो जो जो मैं सोच रहा था वही हो रहा था। और एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई, और फिर दुबई की कंपनी में मेरा इंटरव्यू हुआ था, तो मेरे को जाने था, बट तभी सडनली पता चला कि आई हैड अ ब्रेन ट्यूमर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्रेन ट्यूमर आई हैव लॉस्ट माय आईसाइट। तो फिर इतना आगे जाने के बाद लाइफ वापस जीरो से स्टार्ट करनी पड़ी, तो फिर जब जीरो से करी तो लाइफ चेंज, तो उसके हिसाब से फिर नई लाइफ बनाई है, अभी भी चली रही है।
0: और उस लाइफ में लगा कि जो डगर को आपने चुना था, जो ब्रांच आपने इंजीनियरिंग की चुनी थी, कभी नहीं सोचा होगा कि ये विजुअली चैलेंज लोगों के लिए फेवरेबल ब्रांच है, और
1: है
0: ये ऐसी
1: बिल्कुल सही
0: ब्रांच
1: कह रहे
0: है,
1: हैं आप।
0: और ऐसी ब्रांच है जिस ब्रांच में एक विजुअली चैलेंज सामान्य व्यक्ति को भी कॉम्पीट कर सकता है, बराबरी के साथ खेल सकता है।
1: श्योर बिल्कुल सही है सर, कोई इशू ही नहीं है, ये मैं फील कर रहा हूँ ना सर, मैंने तो दोनों लाइफ जी है, तो थैंक गॉड मैंने कंप्यूटर साइंस ब्रांच करी, तो वो मुझे फिर, मैं अभी भी कह रहा हूँ, मैं जब अब अगर मैं कंपेयर करूँ कि अगर मेरी ये ना होता तो मैं अपनी इंजीनियरिंग को इतना एक्सप्लोर नहीं कर पाता जितना अब मैं कर पा रहा हूँ उसको, जो अपनी क्वालिफिकेशन को, क्योंकि उसकी वो जो मैंने क्वालिफिकेशन ली वो अब मैं ज़्यादा यूटिलाइज कर पा रहा हूँ, मुझे लगता है कि थैंक गॉड मैं ये कर पाया, वरना एहसास मुझे कभी नहीं होता कि मैंने ये क्यों किया वो कंप्यूटर साइंस ब्रांच से एजुकेशन।
0: साथियों, सर श्रोताओं, आप सुन रहे हैं जयपुर से प्रकाश चौधरी को। प्रकाश फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में आईटी डिपार्टमेंट में मैनेजर की पोस्ट पे काम करते हैं, और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के सॉफ्टवेयर्स, पोर्टल्स या व्हाट्स एवर, हम जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग उनके ऑर्गेनाइजेशन में होता है, उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका में कार्यरत हैं। तो वो भूमिका क्या है प्रकाश, जो
1: हाँ
0: आपको FCI के लिए उपयोगी बनाती है दिव्यांग होने के बावजूद?
1: एक्चुअली मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि देखो ऑनेस्टली, अब जैसे पहले मेरी आईसेट है तब भी मैं आईफोन यूज करता था, बट मुझे वो पता नहीं था उसके अंदर वॉइस ओवर नाम की कोई चीज है जिससे लाइफ इतनी अच्छी चीज है। पर जब मेरी ये हुआ और जब मेरे को पता चला, डॉक्टर ने बताया कि टेक्स्ट टू स्पीच सॉफ्टवेयर होता है, तो तब पता चला कि मैं कितना चीजें यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो ऐसा कोई इशू नहीं आता सिर्फ। अब मैंने जैसे टेक्स्ट टू स्पीच का है तो हम इंडिपेंडेंटली मोबाइल लैपटॉप ये सब यूज कर रहे हैं, तो कोई इशू नहीं है, बाकी जो नॉर्मल लोग काम कर रहे हैं हम भी कर पा रहे हैं, ऐसा कुछ एडवांस नहीं हो पा रहा, कोई इशू नहीं आ रहा।
0: जी, ये बात तो है कि आप किसी तरह की बाधा महसूस नहीं कर रहे हैं अपने काम में, क्योंकि कंप्यूटर साइंस या वो या कहें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमारा दखल उतना ही महत्वपूर्ण और इतना ही शानदार है जितना कि एक सामान्य व्यक्ति का, बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर्स ने या टेक्स्ट टू स्पीच टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बदला है, और
1: बिल्कुल सर,
0: आप जैसे डेवलपर्स दुनिया की जिंदगी को आसान बना रहे हैं। तो हम आपसे यह भी जानना चाहेंगे कि यह जो घटना आपके साथ हुई, ये कॉलेज के दौरान हुई, लेकिन वो झटका कितना बड़ा झटका था, कैसे आप इस आपने इसका ओवरकम किया, क्या मानसिक प्रभाव आपके मानसिक मानस पटल पर रहे?
1: ऑफिस सर वो तो रहता ही है कि आपकी इंजीनियरिंग हो गई, आप बस अपनी ड्रीम जॉब के पास जा रहे हो, सब कुछ होने वाला है और एकदम से पता चला कि अब आप कर ही नहीं सकते। आप जितना आपने किया वापस जीरो पे आ गए, तो ऑफिस सर उस वक्त लगता है, बट एक वो होता है सर जीने की चाह और थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है, तो इसलिए सर फिर उसके
0: जी
1: बाद धीरे धीरे किया। लगा तो था सर, बट अब सोचता हूँ कि हाँ लगा था, बट थैंक्स टू गॉड मैं आगे मैंने कोशिश करी तो आगे मैं चल पाया और अभी सीख रहे हैं सर। शौक तो लगा था सर, बट
0: ये
1: दैट्स
0: कुछ वैसा
1: लाइफ।
0: ही शौक है, यह कुछ वैसा ही शौक है जो आपको संगीत के शौक की तरफ ले गया। इस शौक ने आपको संगीत का शौक दे दिया। तो ये
1: श्योर
0: संगीत का
1: सर।
0: शौक कैसे मिला आपको?
1: एक्चुअली क्या म्यूजिक मुझे बचपन से बहुत पसंद था सर, बट वो ही ना हम लाइफ में इतने बिजी रहते हैं, जैसे मुझे गिटार बचपन से सीखना था, बट वही पढ़ाई एजुकेशन आपके और हॉबीज की वजह से कभी मौका नहीं मिल पाता था। तो जब ये हुआ तब लाइफ में वापस सोचने का मौका मिला कि अब मैं लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, कि तो लाइफ ने मौका दिया तो मैंने सोचा कि जो मुझे पसंद है मुझे वो भी करना चाहिए। तो फ्री टाइम मिला, वापस से जीरो से स्टार्ट करने का मौका मिला, तो मैंने गिटार सीखना स्टार्ट किया। और ऑनेस्टली मैं स्टार्टिंग में मेरा बस यही सीन था कि ऑब्वियसली बहुत सी चीजें आप नहीं कर पाते स्टार्टिंग में, यू कॉन्ट ट्रेवल, यू कॉन्ट राइड अ बाइक, तो वो जो एनर्जी जनरेट हो रही है वो कहाँ मैं डाइवर्ट करूँ,
0: जी
1: तब तो वो फ्री स्पेस में मैं क्या करूँ, क्योंकि एक होती है ना सर कि जब आप पहले थे तो आप डे टू डे लाइफ में इतना अपनी एनर्जी एग्जॉस्ट करते थे, तो एकदम से आप स्टॉप हो जाए तो यू फील ना कि आपकी वो एनर्जी एग्जॉस्ट कहाँ करें, कि वही जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है कुछ करने का वो मैं कहाँ से लूँ। तो फिर तो मैंने सोचा कि गिटार सीखते हैं, बट मगर फर्स्ट टाइम उस दिन मेरे को शॉक लगा कि स्टेट ऑफ माइंड लोगों का क्या होता है। जो मेरा पहला टीचर आया, उसने जब मैं उसके सामने बैठा और उसको जैसे ही पता चला आई एम अ VI, अगले दिन गायब। फिर उस दिन
0: जी
1: एहसास हुआ कि देखो आई एम नॉट ब्लेमिंग द कंट्री, बट उस वक्त पता चला कि डिफिकल्टी क्या होती है, मतलब उस वक्त महसूस हुआ कि परसेप्शन कई कुछ लोगों का कितना आसानी से बदल जाता है। वो ना ऑनेस्टली मेरा उस टाइम में ये नहीं था, बस मेरा ये था कि कुछ गाने कर लूँ, फिंगर कर लूँ, टाइम पास हो जाए। फिर जब उन्होंने वो ऐसा किया, फिर एक और टीचर ढूंढा, उनका भी यही बिहेवियर, तब मेरा था कि अब प्ले करूंगा तो एक प्रो लेवल का ही मतलब प्ले करूंगा तो एक प्रोफेशनल लेवल की डिग्री करके ही रहूंगा। बस ये मैंने एक मन में था करने का, कि मैंने गॉड
0: जी
1: से कहा था कि यार गॉड इतना हो रहा है, इतना मेरे को तो बस सीखना है, फिर भी ऐसा परसेप्शन मिला है तो कुछ करके ही दिखाना है। और फिर मैं वही थैंक्स टू गॉड मेरे पापा की मेहनत से, और जो मेरे बाद में मुझे टीचर मिले, लकीली मेरे पापा ने ढूंढा और लकीली वो टीचर मिले। मैं ये नहीं करके मैंने कुछ किया, मैं उन्होंने एफर्ट
0: जी
1: डाला जो मुझे, देखिए मैं आपको ये नहीं कह रहा कि लोग बुरे हैं, बट वो जो स्टार्टिंग के दो जो मिले उनका जो मैंने परसेप्शन देखा तो थोड़ा फील हुआ, बट थर्ड अटेम्प्ट में मुझे फिर जो टीचर मिले उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी, हेल्प मी मतलब उन्होंने मुझे सिखाया। फिर उन्होंने कहा कि तुम अच्छा करना चाहते हो तो प्रो लेवल की डिग्री लो, जैसे आपने उसका कुछ नहीं पता था, बस ये था कि अच्छा करना है, बस चाह थी, पता नहीं था कैसे करना है। वो मौका मेरे पेरेंट्स और गॉड ने दिया मुझे, तो मेरे टीचर ने बताया कि देखिए VI भी ये गिटार की डिग्री ले सकता है, और मुझे पहले कुछ आइडिया नहीं था, तो पता
0: जी
1: चला कि जैसे हम इंजीनियरिंग करते हैं उसके सेमेस्टर होते हैं, तो म्यूजिक की भी डिग्री होती है उसके सेमेस्टर होते हैं, एग्जाम होते हैं, जैसे इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर होते हैं। तो जो मैंने डिग्री ली रॉक स्कूल लंदन से इलेक्ट्रिक गिटार रॉक एंड पॉप जेनर में, तो इसके भी 8 सेमेस्टर होते हैं। तो फिर
0: जी
1: मैंने फिर वन बाय वन सीखना स्टार्ट किया, उन्होंने हेल्प करी, तो थैंक्स टू गॉड कि फिर वो फिर एक अच्छा सफर स्टार्ट हुआ, और भाई वन बाय वन सेमेस्टर क्लियर होते रहे, और लकीली मैं अब मैं कह सकता हूँ कि थैंक्स टू गॉड कि उस वक्त जो मुझे बुरा फील हुआ था कि मैं क्या कर पाऊंगा अगर ऐसा रहा तो, बट अगेन समय बीतने के बाद थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू माई पेरेंट्स, कि अब मैं कह सकता हूँ यार थैंक गॉड मैं कम से कम एक डिग्री तो कर पाया गिटार की और मैं सीख पाया।
0: जी कितने साल का समय लगा आपको 8वें ग्रेड का सेमेस्टर का?
1: एक्चुअली सर ये साल में 2 बार एग्जाम होते हैं, तो हर सेमेस्टर का होता है वन बाय वन, तो मेरे को 4 साल लगे सर 8 सेमेस्टर कंप्लीट करने में। मैंने 2016 से स्टार्ट किया था सर, तो 2020 में मेरा कंप्लीट हो गया। और किस्मत देखिए, जैसी मेरा जिस ईयर 2020 में मेरा ये डिग्री कंप्लीट हो गई, उसी साल मेरी ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया मेरी FCI के लिए। तो मतलब एक जैसी कंप्लीट हुई, एक नई जर्नी वापस स्टार्ट हो गई प्रोफेशनल लाइफ की, तो वो कोइंसिडेंस इतना अच्छा था सर।
0: बहुत बढ़िया। तो जर्नी स्टार्ट हुई तो पहले तो आपकी जिंदगी कुछ मेटालिक सी हुई और फिर बाद में एकदम से रॉक आ गया कुछ।
1: हाँ सर वो तो चल, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, ऐसा ही रहा है। और एक्चुअली मेरे को जैनर भी ये पसंद है, मेटल रॉक सूफी, जो मैंने वहाँ पे रॉक एंड पॉप में सीखा भी है, तो अलग अलग जैनर के मेरे को सीखने का मौका मिला।
0: तो आप, मुझे मालूम है कि आप बॉडी बिल्डिंग भी करते हैं, तो बॉडी बिल्डिंग करते समय आपका, आप क्या जिंदगी ब्लूज में ले जाते हैं?
1: नहीं सर उस टाइम आपको मेटल चाहिए सर, यू हैव टू फील ना पम्प्ड अप, तो उस वक्त
0: अच्छा
1: में मेटल, उसमें आप ब्लूज में सुकून में नहीं जा सकते। अगर आप सुकून में जाएंगे तो यू कांट लिफ्ट ना,
0: राइट
1: तो उस टाइम यू हैव टू लिसन रॉक म्यूजिक, में हैवी मेटल, जो रश ऑफ ब्लड हो, तब आपको
0: जी
1: एनर्जेटिक फील हो।
0: जी तो कुछ मेटल सुना दें आप हमारे श्रोताओं को।
1: श्योर सर, जैसे मेरे ग्रेड 8 के जो एग्जाम के थे पीसेस, वो मैंने किए थे। जैसे मेरा ये मेटल सॉन्ग है मीट डार्क ईयर, ये बिल्कुल प्रोग्रेसिव मेटल है, आप सुनेंगे तो यू फील ना रश ऑफ ब्लड, ये
0: जी
1: ई माइनर स्केल का है। और प्रोग्रेसिव मेटल, जैसे मेटल के बहुत डिफरेंट होते हैं, डेफ मेटल, हैवी मेटल, तो ये प्रोग्रेसिव मेटल है अल्टरनेट पिकिंग का, तो अभी आप ये
0: जी
1: सुन रहे होंगे। और इनमें एक सबसे खासियत क्या है, अभी इसमें एग्जाम में

0: की कंपोजिशन भी आप करते हैं, गिटार सोलो होता है तो इसमें मैंने खुद की कंपोजिशन भी ऐड करी है, जो गिटार सोलो होता है, आप इम्प्रोवाइज करते हैं म्यूजिक के साथ।
1: जी बहुत बढ़िया श्रोताओं। तो मैं श्रोताओं को पेश करता हूं हमारे आज के प्रकाश, मन की आंखों के प्रकाश का यह मेटल म्यूजिक।

0: जी प्रकाश, श्रोताओं मजा आ गया ना कि प्रकाश की आवाज में ही नहीं उंगलियां भी मेटलिक हैं,
1: थैंक
0: और
1: यू।
0: इस मेटल के साथ इस डायमंड के पास क्या है और जानते हैं ये। प्रकाश, आपकी जिंदगी में एक अंधेरा है जो शायद कलर्स से आपका रास्ता
1: ऐसा
0: मालूम नहीं
1: कुछ,
0: कैसे कैसे होता है।
1: अरे
0: आपकी मन
1: मैं
0: की
1: ऐसे
0: आंखें क्या देखती हैं,
1: देखिए
0: बताइए
1: ये
0: ना।
1: नहीं कह सकते सर। देखिए सर, ब्लैक इज ऑल्सो कलर, तो आप ये हम ये कह सोच ही मैं ये नहीं सोच ही नहीं सकता कि आई डोंट हैव कलर। सर ब्लैक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कलर, इज ऑल्सो वन कलर, तो मैं ये
0: जी
1: नहीं कह सकता ना कि मेरी बकेट एम्प्टी है।
0: जी
1: तो स्टिल आई हैव वन कलर, ब्लैक। एंड और आप देखिए, ये यूनिवर्स का कलर ब्लैक है और ब्लैक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कलर। आप ये सोचिए ना सर, हम ये क्यों सोचते हैं कि हमारे पास नहीं। आप ये सोचिए, ब्लैक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कलर, जिस कलर से लोग भागते हैं उस कलर के साथ हम जी रहे हैं, तो हम कितने वो हैं। हमें भगवान ने कितना मौका दिया है कि यू कैन ना
0: हम
1: लिव
0: कितने
1: विद कलर।
0: स्ट्रॉन्ग है ना।
1: हाँ भगवान, क्योंकि ऊपर वाला मुसीबत उसी को देता है ना, कि उसके पहले उसको तैयार करता है कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। जैसे मैं अपने बारे में बताऊंगा, जैसे बचपन से मुझे भागवत गीता, महाभारत, स्पिरिचुअल चीजें ये सब सुनने का बहुत शौक था। बट मुझे पता नहीं था कि मैं बचपन से मुझे मोटिवेशन बातें क्यों अट्रैक्ट करती हैं। वो मुझे पता नहीं, एक होती ना अपनी पसंद, आप दौड़े जाते हैं उसके पास, तो ये मैं सुनता रहता था। मुझे फील नहीं होता था कि मैं क्यों सुन रहा हूँ, ये मुझे क्यों पसंद है। बट जब ये हादसा हुआ तब थोड़ा रियलाइज हुआ कि आई थिंक गॉड इज प्रिपेयरिंग मी फॉर दिस मोमेंट। तो जो मैंने पहले ये स्पिरिचुअल चीजें, मोटिवेशन चीजें सुनी, वो मैं अब उस चीज को मैं इम्प्लीमेंट यहाँ कर पा रहा हूँ। तो मेरा ये मानना है, मैं किसी और को कहूंगा नहीं, मेरी लाइफ का तो यही एक्सपीरियंस है कि जो भी सिचुएशन आती है उससे पहले गॉड हमें प्रिपेयर करता है। तो मे बी मेरा फेवरेट कलर ब्लैक है और ये स्पिरिचुअल चीज है, तो हमें प्रिपेयर किया सर।
0: बेहतरीन। श्रोताओं, हमारे साथी प्रकाश का कहना है कि उनके पास एक कलर है, चाहे वो काला ही क्यों नहीं। तो प्रकाश, और भी बहुत
1: स्ट्रॉन्गेस्ट कलर है सर, चाहे नहीं, ब्लैक इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कलर।
0: यस, मैं कह सकता हूं कि आप काले में भी कूल लगते हैं, राइट? तो
1: थैंक यू सर।
0: मैं
1: काले हुए तो
0: आपसे,
1: क्या हुआ, दिल वाले हैं।
0: क्या बात है, क्या बात है श्रोताओं, मजा आ गया ना। तो आइए ना, इस बात पे हो जाए गीत।
1: हाँ सर, ये सेकंड सॉन्ग है जो मेरा लीड सीट, ये रॉक फ्लेवर का है सर। इसमें रॉक जेनर है, यूवे आप इसकी बीट्स फील करेंगे तो इट्स आप वर्कआउट करते हैं, यू फील पम्प्ड अप। तो ये रॉक जेनर का है प्रॉपर लीड शीट। आई होप आप लोगों को पसंद आए।

0: श्रोताओं, क्या बात है प्रकाश, आपने तो जिंदगी में अपने संगीत का रंग भर दिया है हमारे श्रोताओं को। मजा आ रहा है ना श्रोताओं बात करने में और साथ साथ ये बीट सुनने में। 1 2 3 4
1: जी
0: तो प्रकाश,
1: सर।
0: मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि इस पूरी बातचीत के बीच आपका क्या रास्ता कुछ और कलर से भी है? कुछ यादें हैं आपकी पुरानी बचपन की कलर्स को लेकर?
1: ऑफिस ऐसे कलर तो है सर, बहुत अच्छी यादें हैं सर।
0: और आपका तो मानना है कि कलर्स हमारे दिमाग में होते हैं, आंखों में नहीं, राइट?
1: सर आप जैसे, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, आप बहुत लोग सोचते हैं कि हम देखते हैं, एक्चुअली ये हम देखते नहीं है। साइंस के हिसाब से जैसे बॉडी वर्क करती है, ये आंख आंख इज जस्ट लाइक अ मिरर, जो हमारे ब्रेन में फोटो बनती है ना, वो हमें दिखता है। ये
0: जी
1: एक मिरर है। अब जिसी ने मेरे को अब जैसे पहले मेरा ये मिरर काम कर रहा था तो मैंने देख लिया, तो ब्रेन में जो फोटो बनती है वो कलर हमें पता
0: जी
1: चलता है। अब जैसे पहले मेरी जो लाइफ थी वो मेरे को सारे कलर पता है, तो इस समवन से ना दिस इज रेड, तो वो रेड कलर मेरे ब्रेन में दिख जाएगा एंड आई कैन ना वो एक पता चल जाएगा हाँ रेड ऐसा होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। और इस चीज में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब मेरा यह हादसा हुआ तो मैंने पहले एक चीज पढ़ी थी, जैसे चमगादड़ होते हैं, देखा वो अपनी आंखों का यूज नहीं करते हैं बिकॉज दे कांट, वो फिर भी जब वो उड़ते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट उड़ते हैं। आप पता है वो कैसे उड़ पाते हैं सर?
0: जी
1: वो जब उड़ते हैं तो वो, जब मैं पहले सोचता था कि ये आवाज इतना क्यों करते हैं, बट सर वो आवाज करते हैं अपने, वो एक वेव्स बनाते हैं, और जैसे वेव्स होती हैं वो वेव्स अगर सामने पहाड़ है वो आवाज करते करते आगे जाते रहते हैं, फिर वो वेव्स वापस जब पलट के आती है तो कान से सुनते हैं और कान अपने कान से सुन के ये फोटो बनाते हैं कि सामने है क्या क्या नहीं। तो दे विल गेट, वो देखिए आईसेडी वो नेविगेशन करने का यूज करते हैं, दे कांट सी बट वो इतने एक्यूरेट होते हैं।
0: जी
1: ये तो एक बस ये पैरामीटर है कि हमने मिरर के थ्रू ऐसा कर लिया, बाकी हम सुन के और इसके थ्रू भी नेविगेशन आराम से कर सकते हैं सर।
0: हाँ, हमारी जिंदगी ने या हमारी प्रकृति ने हमें 5 इंद्रियां दी हैं और हर इंद्री अपने आप में विशेष है, और किसी इंद्री में कुछ कमी भी है तो बाकी 4 तो आपको सपोर्ट करने के लिए है ना। तो प्रकाश, अपने थोड़े ठोकरों के ढाबों के बारे में बताइए ना, आपने ठोकरों के ढाबों में भूखे रहे या मस्त होके खाया?
1: क्या किसमें सर?
0: आपकी जिंदगी में कुछ, आपको कुछ ठोकरों के ढाबों से भी मुलाकात हुई होगी
1: अरे
0: आपसे?
1: सर वो तो सर, ये तो ठोकर तो सर वो है, बेस्ट फ्रेंड है सर, आज नहीं तो कल आएगी आएगी।
0: हाँ, तो ऐसे ढाबे जहां पर आपको ठोकरों का खाना मिला है तो बताइए ना, वो कैसी ठोकरें थी या?
1: वो ठोकरी तो सर ऑब्वियस है, ठोकर तो हमें सिखाती है, तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। जब जब हमें ठोकर मिलती है हमें अपने आप को अपग्रेड करने का मौका मिलता है सर। तो जो जो ठोकरें आई, जैसे फर्स्ट टाइम जब कोई मैंने गिटार का था तो ठोकर आई, तो वो जब वो मुझको ठोकर फील हुई तो मुझे मौका अच्छा सीखने को मिलता। अगर मुझे वो ठोकर नहीं मिलती तो मैं सिर्फ 2 या 3 गाने करके लाइफ में आगे बढ़ जाता।
0: जहां पर आपको आपके विजुअल चैलेंज ने उनको चैलेंज दे दिया और
1: नहीं
0: वो डेयर नहीं ले पाए।
1: तो वही सर, वही ठोकरें आई हैं वो, उससे हमें सीखने को मिलता है, इट्स अ वेरी गुड थिंग सर। जिस इंसान को जितनी ठोकर मिलती है ना सर वो उतना तरक्की करता है, और मैं भी उतना ही कर पाया, यानी मेरी लाइफ में मेरे को कम ठोकर मिली है। अगर मेरे को और ज्यादा मिलती तो शायद मैं और अच्छा कर पाता जीवन।
0: जी, बहुत बढ़िया। हमारे एक शानदार क्रांतिकारी लाला हरदयाल, उन्होंने भी युवाओं के लिए बहुत शानदार किताब लिखी है, हिंट्स ऑफ सेल्फ कल्चर, सेल्फ डेवलपमेंट बाय योर स्ट्रगल एंड सक्सेस। आप सभी युवाओं को पढ़ना चाहिए। उसमें उन्होंने यही बताया है कि अपने हम कैसे आप की संघर्षों और सफलताओं से सीख सकते हैं। इसका मतलब संघर्ष भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी सफलताओं की सीख। तो खैर, हम श्रोताओं इस मोमेंट पे प्रकाश से कहेंगे कि वो कुछ और भी सुनाए हमारे श्रोताओं को।
1: अब सर ये जो सॉन्ग है इसका नाम है डार्क मैटर, इट्स अ प्रॉपर जैज म्यूजिक। इसमें आपको डिफरेंट बीट्स दिखेंगी, डिफरेंट फ्लेवर दिखेगा क्योंकि जैज है, तो इसको आपको गिटार के साथ साथ बैकिंग ट्रैक में भी डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट मिलेंगे, तो इट्स ऑसम सॉन्ग। आई होप आपको ये जैज फ्लेवर मेरा पसंद आएगा।

0: क्या बात है प्रकाश, आप तो छा गए हैं और हमारे माउंट आबू की वादियों में आपकी गिटार की आवाज पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गूंज रही है, और इस वादी को आपके संगीत ने और खूबसूरत बना दिया है।
1: थैंक यू सर।
0: प्रकाश, हम हमारे श्रोताओं से बात कर रहे हैं हमारे मन की आंखों से शो में, और मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं एज अ विजुअली चैलेंज पर्सन कि क्या मन की आंखें होती हैं। आपका क्या मानना है प्रकाश इस
1: बिल्कुल
0: पर,
1: होती हैं सर।
0: और ये कैसे काम करती हैं, कहाँ होती हैं
1: सर
0: आपको?
1: ये मन की आंखें, आप देखिए, अकॉर्डिंग टू, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ तो मैं थोड़ा इसमें, मन की आंखें सर ब्रेन होता है, लाइफ क्या है, जैसे मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, जैसे आप, मेरे लिए लाइफ क्या है, जो मेरे दिमाग में चल रहा है, तो जो हमारे ब्रेन में चल रहा है वही सब कुछ है सर, वही सच है। तो हमारे ब्रेन में, अगर हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन के थॉट्स अच्छे हैं, हम पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं तो हमारी लाइफ वैसे ही पॉजिटिव है, अगर हम नेगेटिव एनर्जी ले रहे हैं तो हमारे ब्रेन में फिर वो नेगेटिव ही चलता रहता है सर। तो वही, जैसे मैंने आपको कहा ना, जैसे चमगादड़ है, वो नेविगेशन कैसे करता है, वो फोटो अपनी साउंड वेव सुन के सामने फोटो बना लेता है कि ये पहाड़ है क्या है। तो वही है कि हमने एक चीज चली गई तो बाकी की चीजों से कैसे नेविगेशन करके हम अपने ब्रेन में इमेज बना रहे हैं।
0: जी
1: हाँ, तो ये सर, बाकी ये सब इंद्रियां हैं, इन सब इंद्रियों का काम है इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में देना। तो सब कुछ है सर, कुछ चेंज नहीं होता, एक चीज हो जाती है, बट वही है, जैसे बाकी जो लोग हैं उनके जो थॉट प्रोसेस है वही हमारा रहता है, बट हमें थोड़ा सा नेविगेशन अलग करना पड़ता है, बाकी खुशी सुकून सब ऐसा ही होता है सर।
0: क्या बात, बिल्कुल खुशी और सुकून बना रहे इसलिए हम लेकर आते हैं आपके लिए हमारा फेवरेट प्रोग्राम मन की आंखों से। और इस रेडियो स्टेशन यानी कि हमारे रेडियो मधुबन पर हम हमेशा ही कहते हैं, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए 107.8 FM। और मेरे साथ हैं प्रकाश, वो रियली एक प्रकाश हैं, उनका फेवरेट कलर ब्लैक है, और वो रॉक स्कूल से गिटार में, खास तौर पे रॉक एंड पॉप जॉनर में ग्रेजुएट हैं, और हम चाहते हैं कि वे अपने इस फन का फिर से हमारे सामने एक गीत के साथ पेश करें, अपने फन को फिर से एक गीत के साथ हमारे सामने पेश करें।
1: सर, अब ये जो मेरा अगला सॉन्ग है, इस सॉन्ग का नाम है क्राइमिया रिवर। इसमें एक प्रॉपर रॉक म्यूजिक है जिसमें थोड़ा आपको पेन, हार्ट ब्रोकन जैसा फील होगा, क्योंकि इसमें सिंगर भी है, और इस सॉन्ग में मैंने अपना गिटार सोलो भी ऐड किया है। आई होप आपको ये थोड़ा ना हार्ट ब्रेकिंग सॉन्ग पसंद आएगा।

0: लेकिन आज तो हम बात कर रहे थे दिल से दिल जोड़ने की, लेकिन प्रकाश ने गीत दिया है ब्रेकिंग, बट डेफिनेटली ये ब्रेकिंग तो नहीं था, ये शेकिंग था हमारे लिए। और हमने जैसे प्रकाश के गीत की बात की कि प्रकाश ने किस प्रकार से जिंदगी में अंधेरा आने के बाद गिटार उठाया, और मुझे तो मालूम चला है कि प्रकाश डंबल्स के साथ क्या कभी फंबल भी करते हैं।
1: बिल्कुल सर, वो तो मेरा सबसे पहले उठता हूँ तो यही है
0: बोलो
1: सर, मेरा फ्रेंड।
0: क्यों।
1: मैं तो एक्टिविटी मॉर्निंग में डंबल से ही स्टार्ट होती है सर। आई डू वर्कआउट अर्ली इन द मॉर्निंग पहले, बट हाँ ये है कि पहले आई कैन गो जिम, बट अब मैंने अपने पूरे जिम का सेटअप घर पे ही कर लिया, तो मॉर्निंग में उठ के मैं घर पे करता हूँ सर वर्कआउट, और योगा भी करता हूँ सर, अष्टांगा योगा के कुछ। मैंने पहले मुझे योगा जब ये हुआ तो मैंने एक टीचर से सीखा था प्रॉपर योगा, अष्टांगा योगा की प्राइमरी सीरीज, तो उसके भी सर कुछ पोजेस करता हूँ, जैसे हेड स्टैंड हो गया सर, उत्थिता पदोत्तानासन हो गया, ये मैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी करता हूँ एंडिंग में, और स्टार्टिंग में मेरा वही प्रॉपर हैवी वेट लिफ्टिंग होता है, चेस्ट बैक वर्कआउट वो मैं करता हूँ सर।
0: जी, बहुत बढ़िया। और देखिए ना, प्रकाश एक चैलेंज के साथ हैं, पर जिंदगी के सारे कलर्स हैं। मॉर्निंग में योगा से लेकर अपने कार्यालय में अपने डिपार्टमेंट की वेबसाइट को मैनेज करना, हैंडल करना, और लोगों तक या सरकार की खाद्य सुरक्षा के संबंध में या सरकार की फूड मैनेजमेंट के संबंध में सही जानकारी अपने निगम की वेबसाइट के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना। देखिए ना, कंट्रीब्यूशन भी कर रहे हैं और पे बैक कर रहे हैं सोसाइटी को। तो क्या ये जज्बा हम में भी नहीं रह सकता? और क्या हम अपने देश को विकसित भारत बनाने की यात्रा में प्रकाश की तरह आगे नहीं बढ़ सकते हैं? प्रकाश पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, पर अपने जज्बे के साथ, अपने जज्बातों के साथ देश की

0: को उर्वरा बना रहे हैं। प्रकाश, हम ऐसे ही आपसे जुड़े रहेंगे, लेकिन एक गीत हो जाए ना, और इस मोमेंट पे मुझे लगता है कि ब्लूज कैसा रहेगा।
1: बिल्कुल सर, ब्लूज। आप ये जो नेक्स्ट सॉन्ग है ये स्पेनिश जॉइंट है, इसमें आपको जैज और ब्लूज दोनों का फ्लेवर आएगा और इसमें आपको प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटल फ्लेवर आएगा जिसमें सूदिंग साउंड होता है ना, जैसे हम सूदिंग साउंड जिसे हम कहते हैं, वो साउंड आपको इसमें मिलेगा सर।

0: निश्चित रूप से इस गीत के बाद तो पूरा माहौल ही खुशनुमा हो चुका है, इस बातचीत का अंदाज ही बदल गया है, और मुझे तो लगता है कि आपसे बातें करता रहूं और ऐसे ही एक
1: सेम
0: संगीत
1: ये
0: करता
1: सर।
0: रहे, और जिंदगी का जो संगीत है वो ऐसे ही बसता रहे। संगीत देखिए ना कितना शानदार माध्यम है कि कितनी भी बड़ी समस्या हमारी जिंदगी में आ जाए, हम संगीत के माध्यम से एक शक्ति पाते हैं, और संगीत ही वो माध्यम है जो शायद हमें ईश्वर से सीधे जोड़ने की ताकत रखता है, और वो फन आपको ईश्वर ने दिया है। प्रकाश, हम
1: सर
0: और भी कुछ चीजें जानना चाहेंगे कि जब कैसा कभी ऐसा कभी होता है कि आपको लो फील होता हो, या कुछ लोगों के व्यवहार से, या लोगों के स्मार्ट प्ले की हरकतों की वजह से कभी ऐसा आपको लगता हो कि ये क्या दुनिया है, हम कहाँ आ गए, हम कौन सी गाड़ी में चढ़ गए।
1: सर, वो तो होता है सर, ह्यूमन बीइंग है, हार्ट ब्रेक होगा, फ्रस्ट्रेशन होगी, क्योंकि हमारा दिल है हर इमोशन से भरा होता है। मेरे साथ भी होता है सर, बहुत बार होता है। और बट मेरा हार्ट ब्रेक हमेशा तभी होता है जब कोई चीज अटकती है ना, और फिर वो फील होता है कि हाँ थोड़ा ये काम अटका है, तो फील होता है। बट सर हर चीज की खूबसूरत चीज होती है कि हम जिस चीज में अटके हैं, यानी हम उस चीज के लिए कैपेबल नहीं हुए हैं। जैसे मोबाइल होता है ना सर, मोबाइल क्यों सॉफ्टवेयर अपडेट मांगता है? क्योंकि हर टाइम एक नया फर्मवेयर आता है, अगर हमने अपने आप को अपडेट नहीं किया तो कोई वायरस आ जाएगा। तो हमें, मैं मानता हूं कि हमें उस चीज में ही दर्द होता है असलियत में, क्योंकि हम उस चीज से लड़ने के लिए कैपेबल नहीं हो पाए हैं अभी, हमें उसको अपग्रेड करना है। तो जब भी फील होता है तो यही एहसास होता है कि मैं उस चीज के लिए अपग्रेड नहीं हुआ हूँ, मुझे अपग्रेड होना है और उस चीज को डील करना है। यही तो लाइफ है सर, सबके साथ होता है, इट्स नॉट अ बिग डील। ऐसा नहीं है, कईयों को, जो बहुत से लोग हैं वो ये सोचते हैं कि हमारे साथ ज्यादा पेन है। ऐसा नहीं है सर, सबकी लाइफ में वही धूप छांव है, वही पेन है, पेन का पैरामीटर अलग है। मैं ये नहीं कह रहा, आप जैसे कोई और सक्सेसफुल है, कोई भी एक्साइटेड है, जॉब कर रहा है, उसकी लाइफ में भी सर पेन है। ऐसा नहीं है कि उसकी लाइफ में पेन नहीं है, सबकी लाइफ में पेन है। बट बॉटम लाइन ये होती है कि मैं अपने, अगर मुझे अपने आप को सुकून पाना है तो मुझे अपने पेन पे ध्यान देना है, एज कंपेयर टू किसी और से मुझे कंपेयर करना। तो ये सर जो मेरे पाती में पेन आया है उसको कैसे डील करना है, उस पर ध्यान दे तो सॉल्यूशन निकलता है सर। बाकी तो सर फील होता ही है।
0: प्रकाश, हम कार्यक्रम के लास्ट में आपके पेन को कम करने के लिए क्यों नहीं एक जैज पंख गीत ले आए आपके गिटार से, आपकी उंगलियों के माध्यम से।
1: सर ये सॉन्ग है स्पेनिश जॉइंट सर, इसमें आपको वो रिदम फील होगी, फील पम्प्ड अप सर।
0: श्रोताओं, हमें इसका आभास है कि समय भी गुजर रहा है और बातचीत भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, और बातचीत के इस पड़ाव पर हम प्रकाश के शौक और प्रकाश के जीवन में रहे कुछ हॉबीज के बारे में बात करना चाहेंगे कि वो अपने इस व्यस्त समय में से, अपने शेड्यूल में से क्या वो खास चीजें हैं जो करना पसंद करते हैं, और अपनी दोस्ती यारी और अपने उस समय के बारे में बताएं जब अपने दोस्तों के साथ होते हैं।
1: बिफोर या अभी का सर?
0: हाँ, हम एक कंपैरिजन तो चाहेंगे ही आपकी जिंदगी में कि पहले कैसा था और अब कैसा है, दोस्तों में क्या बदलाव है यार।
1: पहले तो सर इतना रश ऑफ ब्लड होता था कॉलेज टाइम में। हम दोस्त होते थे कि चलो दिल्ली चलते हैं, हम बाइक से दिल्ली चले जाते हैं। मतलब मेरे को ड्राइव करना, बाइक राइड करना, एक्सप्लोर करना बहुत पसंद था। तो हम जैसे बैठे हैं कॉलेज में, होता है यार दिल्ली चलते, दिल्ली के दोस्त से मिलना है, तो बस बाइक में बैठे और चले जाते थे हम। रोड ट्रिप करना मुझे बहुत पसंद था, जैसे हम लद्दाख गए बाइक से, आई लव रॉयल इनफील्ड जो बाइक थी, तो वो पहले हम बहुत ट्रैवल करते थे। बट अब इसके बाद भी चेंज नहीं आया सर, आई लव, जैसे अभी आप कहेंगे तो आई लव ट्रैवलिंग। पहले मैं खुद चलाता था, अब किसी और को कहता हूँ। जैसे मुझे अभी ट्रैवल करना सर बहुत पसंद है, अभी भी जैसे मेरी फर्स्ट पोस्टिंग गुवाहाटी हुई थी, तो मेरा लाइफ में नॉर्थ ईस्ट मुझे कभी जाने का मौका नहीं मिला था, बट थैंक्स टू माय जॉब मेरी वहाँ पोस्टिंग हुई, तो मैं शिलोंग ये सब अभी ट्रैवल कर पाया। तो आई लव ट्रैवलिंग, लिसनिंग म्यूजिक, रीडिंग बुक्स, और सर आई लव शॉपिंग। एक्सप्लोरिंग न्यू फूड, मुझे आई एम अ फूडी पर्सन, तो मुझे फूड एक्सप्लोर करना, और मुझे कुकिंग भी बहुत पसंद है सर।
0: आपके सबसे फेवरेट टेस्ट कौन सा है? आप क्या पसंद करते हैं? थाई, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज?
1: सर मुझे तो प्रॉपर इंडियन फूड, भले ही वो साउथ इंडियन हो, होम मेड होना चाहिए। जैसे साउथ का अगर इडली डोसा अगर किसी ने घर में बनाया तो ऑसम है सर। मैं तो पूरे इंडिया का फूड मुझे बहुत पसंद है सर। जैसे साउथ का अगर घर में होम मेड है इडली डोसा, भले ही साउथ का राइस हो, बिरयानी हो, आई लव। नॉर्थ जोन का पराठा हो, आई लव। बस वो होम मेड हो, बस मुझे वो अच्छा लगता है सर। होम मेड होना चाहिए।
0: जी, बिल्कुल। तो कहें कि केरल से लेकर कश्मीर तक के सभी टेस्ट आपके करीब हैं।
1: बिल्कुल सर, मुझे कुकिंग करना ही बहुत पसंद है, तो कभी टाइम मिलता है तो आई ऑल्सो कुक सर।
0: ग्रेट। तो ये तो बातें हैं, आप एनफील्ड पे तो अभी भी जा सकते हैं, बस बात
1: बिल्कुल
0: है कि
1: सर, बिल्कुल
0: आपको
1: वही है,
0: केरल
1: बस
0: के करीब
1: पैरामीटर
0: है।
1: चेंज हुआ। अभी भी जाते हैं सर, बाइक राइड पे जाते हैं, हमारे फ्रेंड्स हैं, तो अभी भी सर वो मैं जाता हूँ।
0: क्या बात है। तो आपने अपने रोड्स के प्यार को रॉक पे आप ले आए हैं, तो दिस इज द जर्नी ऑफ रोड टू द रॉक, राइट?
1: बिल्कुल
0: और हमने एक रॉक में एक कहें कि हमने पॉप

0: वो ही है सर, एक हम वो मॉरली देखें तो सर एक्चुअली खाली आता है खाली आ जाएंगे, बट मेरा तो हमेशा सर यही रहा है कि कोई भी सिचुएशन हो उसको मैं कितना काम और कंपोज तरीके से टैकल करूं सर, और एक वैल्यूएबल इंसान बनूं सर, मेरी तो यही चाहत है।
1: जी बेहतरीन। और इस पूरी बातचीत की जर्नी में आपके कुछ कॉलेज डेज भी रहे, वो भी हमने आपने बीच बीच में बताए हैं,
0: हाँ सर, रोड
1: परंतु
0: ट्रिप हम
1: अपने
0: बहुत
1: कॉलेज
0: करते थे
1: की कोई
0: कॉलेज टाइम
1: ऐसी
0: में सर।
1: बात जो हमारे यूथ लिसनर्स को आप शेयर करना चाहें।
0: सर कॉलेज ट्रिप का तो सबसे एक ऑसम होता है सर, जैसे हम स्कूल में होते हैं तो कॉलेज में एकदम से फ्रीडम फील सा होता है क्योंकि हम इतना एक्सप्लोर नहीं करते, तो ही सर कॉलेज में तो सर वो फ्रेंड्स होते हैं हमारे, मैं बताऊँ हमारे 25 जनों का ग्रुप था, तो आप इमेजिन करें कि 25 जने अजमेर हाईवे से अजमेर जा रहे हैं तो कितना ऑसम फील होगा, 25 जने 25 बाइक सर, हम ऐसे इतने एक साथ जाते, तो बहुत मतलब हमने इतना ट्रैवल किया है तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि कॉलेज में सर वही सर रोड ट्रिप्स बहुत पसंद थी मुझे, तो हमारा ग्रुप पहले भी वो था और अभी भी मेरा है सर, ऐसा नहीं है कि दे हैव चेंज्ड, अभी भी मेरे वो सारे फ्रेंड्स हैं, जब रोड ट्रिप होती है। हाँ अब हम थोड़े वो जॉब वॉब ये सब कर रहे हैं तो बाइक इट्स डजंट शूट अस, तो वही सर हम अपना व्हीकल करके वैसे जाते हैं सर।
1: क्या बात है। तो आप तो रोड्स पे भी रॉक कर चुके हैं और अब तो गिटार पे कर रहे हैं, और हम चाहेंगे कि आने वाले दिनों में आप ऐसे ही कुछ नए मकाम भी करें। आप ये अभी क्या विशेष हैं, आप चाहते हैं कि ऐसे कुछ नए टारगेट्स जो आप सोचते हैं कि मुझे करना बाकी है।
0: अभी सर जैसे अभी जैसे म्यूजिक है गिटार है, क्योंकि म्यूजिक सर इज जस्ट लाइक अ सर सागर, मैंने देखी सर मैंने अभी ये कर लिया, इट डजेंट मीन कि आई एम द लेजेंड, तो मेरे को अपने म्यूजिक में और इम्प्रूव करना है कि जितना मतलब लाइफ ने मुझे टाइम दिया है जीने का उसमें मैं कितना म्यूजिक ग्रहण कर सकूँ, क्योंकि म्यूजिक इज नेवर एंडिंग ना सर, कोई नहीं कह सकता कि यू आर द परफेक्ट, तो अभी एक ये जर्नी है कि म्यूजिक को मैं कितना समझ सकता हूँ, अभी मैंने बस एक समुद्र का एक बूंद को महसूस किया है, मतलब मैं कैपेबल हो पाया कि इस बूंद को समझ पाऊँ, तो अभी सर म्यूजिक में मैं कितना समझ सकता हूँ, आई लाइक वर्कआउट तो बॉडी को हम आई डू मेडिटेशन तो उसको मैं कितना समझ सकता हूँ, तो यही टारगेट है सर। और अभी जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है टेक्स्ट टू स्पीच में, इट डजेंट मीन सर मैं आपको कह रहा हूँ कि स्क्रीन रीडर अच्छा है बट अभी भी बहुत से वेबसाइट हैं उसमें फिर अपग्रेड नहीं हुए, तो उस चीज पे काम करना है हमें कि हम चीजों को और कितना एक्सेसिबल बना पाए, क्योंकि एज अ वीआई बंदा इज कैपेबल इनफ सर, कमी उसमें नहीं है, बंदा अटकता तब है जब स्क्रीन रीडर अटक गया है अटक जाता है, इट मींस कि जो जो प्रेजेंट हो रही है वेबसाइट या कोई भी सॉफ्टवेयर है वो उसके लिए प्रोग्रामिंग नहीं हुई है स्क्रीन रीडर के लिए, तो बस तो सर अब मेरी तो बस यही चाहत है कि जितनी भी हमारे एप्स हैं सॉफ्टवेयर हैं वो सारे सब में प्रोग्रामिंग हो स्क्रीन रीडर रीडर के लिए, ताकि हमारा काम अटके ना सर, बस यही चाहत है कि इसमें मैं और काम कर सकूं सर, और बस यही
1: जी
0: ख्वाहिश है कि जितने भी अभी फ्यूचर में और जितने भी एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर हैं सर, ये तो आपको भी बहुत पहले से अभी भी पता होगा कि बहुत कम है अभी भी एप्लीकेशन जो एक्सेसिबल हैं, बहुत सी चीजें हैं वेबसाइट हैं जो अभी प्रोग्रामिंग नहीं हुई है और हो नहीं रही है, बस सर मैं तो यही चाहते कि जितने भी अभी फ्यूचर में सॉफ्टवेयर आए वेबसाइट हो वो सारी एक्सेसिबल हो, और उसमें मैं कितना कर सकता हूँ सर, बस यही चाहते हैं सर कि ये काम हो जाए जो भी आए एक्सेसिबल हो गया है।
1: एक्सेसिबिलिटी एक बड़ा चैलेंज है, और हमारे देश का कानून भी इस बारे में बात करता है कि एक्सेसिबिलिटी 100% होनी चाहिए, जहां पर भी संभव हो फिजिकल वर्चुअल टोटल एक्सेसिबिलिटी की बात करता है। और आप जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स उस एक्सेसिबिलिटी के को आसान बनाते हैं, तो शायद हम आज इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को भी सलाम करते हैं कि वे हमारी जिंदगी को आसान बनाने में लगे हुए हैं, और
0: बिल्कुल
1: इस
0: सर,
1: पूरे पूरे हालात को बेहतर बनाने की, या क्या कहें, बेहतर दुनिया हमारे लिए बनाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, और हम भी उनके साथ हैं। इस प्रोग्राम में श्रोताओं, हमने प्रकाश के जीवन पर प्रकाश डाला, और आशा है कि आपको इस पूरे कार्यक्रम के माध्यम से, इस पूरे आज मन की आंखों के शो ने अपने मन के में जाने का मौका दिया होगा। और मन के अंदर जब जब हम जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि कोशिश करने वाले की

0: कभी हार नहीं होती। तो आप भी चाहे कैसा भी चुनौती आपकी जिंदगी में हो, आप लगे रहें, आगे बढ़ते रहें, जीत आपकी ही होगी। प्रकाश, आप हमारे शो में आए और आपने हमें समय दिया, हम
1: अरे
0: उसके
1: सर, थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और आपसे बात करने का मौका मिला। थैंक यू सो मच सर। और कुछ नया आपसे सीखने को मिला सर? और आपसे तो सीखने का मौका मिलता ही रहता है सर, तो थैंक यू सो मच सर।
0: जी थैंक यू प्रकाश, हम आपके आभारी हैं। और ऐसे ही श्रोताओं हम लाते रहेंगे किसी न किसी नई शख्सियत को आपके बीच। और आज की शख्सियत ने बताया कि रुके नहीं, लड़ते रहें, और इस जद्दोजहद के बीच ही ना हमारा शो आपके लिए लेकर आता है ऐसे ही किसी सितारे को। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 107.8 FM आपका फेवरेट रेडियो स्टेशन, रेडियो मधुबन। हियर इज योर आरजे शरद साइनिंग आउट। थैंक यू कृष्णा बहन, मुझे लगता है कि अभी एडिटिंग के बाद अच्छा हो जाएगा।
1: हाँ, कुछ अपन पुराने वाले से भी ले सकते हैं। वो बस आपने जो आखिरी वाला बोला था ना ब्लूज का, वो शायद हटा देना, क्योंकि अपन 5 पहले डिस्कस कर चुके हैं।
0: ठीक है,
1: बाकी मैं वो 5 के लिंक आपको भेज दूंगा, जो जिन जिनके एक तो मैंने आपको भेज दिया लीड शीट का। बाकी वो पहला मीट डाकिया, स्पेनिश जॉइंट, डार्क मैटर और क्राइमिया रिवर, ये 4 के हैं। मैं आपको यूट्यूब के लिंक भेज दूंगा, आप वो MP3 में कर लीजिए कन्वर्ट।
0: जी
1: बाकी और भी आपको करना हो तो मेरे YouTube में और भी वीडियोस हैं, अगर
0: कृष्णा
1: आपको
0: बहन,
1: लगे
0: अभी
1: तो आप देख लीजिएगा।
2: बजे हैं रात के 9। 1 मिनट का समय स्वयं को दे।

0: कार्यक्रम गुलदस्ता लेकर हम आ चुके हैं और आपके दिल में छा भी चुके हैं। चांदनी रात है, तारों की बरसात है, सुरीली मुलाकात है, मशहूर गीत की सौगात है। गीत संगीत की जानकारी रखना भी एक आर्ट है। जैसे खुद से दोस्ती करना एक आर्ट है, वैसे ही गीत संगीत के बारे में नॉलेज रखना भी एक आर्ट है। जिस कार्य को हम शौक से करते हैं, जिसको हम बहुत चाव से करते हैं, वह कार्य हमारे अंदर ग्रो करने लगता है और वही एक दिन आर्ट भी बन जाता है। तो ओल्ड इज गोल्ड आपने सुना ही होगा, तो ओल्ड गीतों के सौगात आप सभी के लिए कार्यक्रम है गुलदस्ता। डोंट मिस दी शो एंड डोंट मिस दी सॉन्ग्स। इन गीतों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी और मत भरी एहसास। फिल्म मधुमति का आपने गीत सुना, संगीतकार थे सलील चौधरी और इस गीत को गाया था मुकेश और लता जी ने। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप हैं स्वर्ण लता के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता में रेडियो मधुबन।
1: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
2: गाड़ी में सफर करते समय कोई भी अनजान व्यक्ति से किसी भी प्रकार के खाने पीने की चीजें स्वीकार न करें, इससे आपकी जान व माल दोनों का नुकसान हो सकता है।
1: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जो अपनी धुन में मगन रहता है वही जिंदगी का असली मजा ले सकता है। ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज एवर ग्रीन एंड एवर फ्रेश। तो एवर ग्रीन गीत और उसमें कुछ जादुई तड़का अलग आवाजों का। फ्रेंड्स, अभी आपने सुना किशोरदा की आवाज में एक बहुत ही सुंदर गीत, जिसे सुन करके लगा ना कि इसमें भावनाओं की सरगम बोल रही हैं। तो इन भावनाओं की सरगम को आप कबूल कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ आज के इस सुहावने सफर को। हिंदी सिनेमा के सुनहरे दौर, किशोर कुमार की आवाज प्यार और भावनाओं की एक मधुर धारा बनकर बही। उनकी आवाज में ऐसा जादू था जो आज भी हमारे दिलों को दस्तक देता है। तो आज कई आवाजें होंगी और कई फिल्में हैं, एल्बम के गीत भी हैं। इन गीतों को आप कबूल कीजिएगा और एंजॉय कीजिएगा हमारे साथ। सुनते हुए मुस्कुराते हुए जानकारी के संग आप हैं रेडियो मधुबन पर।
1: वो पहाड़ देख रहे हो?
2: हाँ, कितना सुंदर है।
1: और उनको देख रहे हो?
2: वो तो रतन मोहिनी दादी है ना।
1: वो इस पर्वत से भी ज्यादा अपने नियमों पे अडिग, उसकी चोटी से भी उच्च स्थिति वाली है। उस पर्वत से जैसे सूर्य दिखाई देता है ना, ऐसे ही दादी जी ज्ञान सूर्य यानी परमात्मा से मिलवाती है।
3: ऐसी असीम शक्ति जिन्होंने समाज कल्याण में समर्पित कर दिया अपना जीवन, आइए सुने उनकी कहानी। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर हर शुक्रवार रात 9:30 बजे कार्यक्रम शक्ति वंदन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: साथियों, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज एवर फ्रेश। जब क्रिएटिविटी पर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और अननोन सॉन्ग्स आपके सामने पेश होते हैं, ऐसा करते करते मुझे कई बार ये ओल्ड मेलोडी की जो फीलिंग्स है, ओल्ड वाइब्स जो है, उसे मैं बहुत मिस करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जो श्रोता बंधु जो इस फीलिंग को मिस कर रहे हैं, और जो नए श्रोता बंधु जो आज की जनरेशन के हैं और जिन्हें पता ही नहीं कि हमने कौन से गीत सुने, किन गीतों का आनंद लिया और उन गीतों ने हमें कितनी खुशी दी, उन खुशियों को आप तक हम पहुंचाना चाहते हैं, इसी मकसद से आज का कार्यक्रम है। तो आप इसे कबूल कीजिएगा दिल से। और जैसा कि हमने कहा, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड इज एवर फ्रेश, मत भरे एहसास गुलदस्ता कार्यक्रम के फ्रेश एपिसोड में। तो इन एपिसोड्स में हमारा प्यार छुपा हुआ है आपके लिए, दिलो जान से सुनते हुए मुस्कुराते हुए। आइए सुनते हैं नेक्स्ट सॉन्ग।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: साथियों, कहते हैं जिंदगी एक आईना है, जितना मुस्कुराओगे उतना ही खूबसूरत दिखेगा। जितना हम आशावादी रहेंगे उतने ही अवसर भी मिलेंगे। ओल्ड एंड स्टेल फीलिंग्स को रिप्लेस कीजिए फ्रेश फीलिंग से। फील फैक्टर एक डस्टिंग की तरह होता है जिसकी नित आवश्यकता होती है, जिसके बगैर बहुत ही फीका सा लगता है घर, है ना। अभी आपने सुना फिल्म आंधी से, इस मोड से जाते हैं, इस मोड से जाते हैं कुछ सुस्त कदम रस्ते। तो यह बहुत ही ब्यूटीफुल सॉन्ग है जिसमें जो है पुरानी यादें, इमोशंस, प्यार सब कुछ कैद किया हुआ है। रिश्तों की जो ब्यूटी है, रिश्तों की सुंदरता इस अनफॉरगेटेबल सॉन्ग में है। तो आज के प्रोग्राम में हम ऐसी छोटी छोटी जानकारी के साथ सुन रहे हैं तरोताजा कर देने वाले गीत। और इस गीत से पहले हमने सुना था फिल्म चिच्चोर से जब दीप जले आना, जिस गीत को एक हम सेमी क्लासिकल नंबर भी कह सकते हैं। और इस फिल्म में संगीत दिया था रविंद्र जैन ने, और गीत के बोल भी थे रविंद्र जैन साहब के, और गाया था हेमलता के साथ यसुदास जी ने। तो जो लोग इन्हें नहीं जानते उनको आज एक मौका मिल गया इन फनकारों को जानने का, बहुत खूबसूरत लम्हा है। तो शामिल हो जाइए फटाफट जिन्होंने अभी तक ट्यून नहीं किया कार्यक्रम गुलदस्ता।
1: क्या आपका फोन चोरी हो गया है? क्या आप जानते हैं कि अपना मोबाइल फोन कैसे ब्लॉक करें और ट्रेस करें? आप संचारसाथी.gov.in पर संचार साथी की मदद ले सकते हैं। सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज के अंदर ब्लॉक योर लॉस्ट स्टोलन मोबाइल CEIR पर क्लिक करें। आपको केवल फोन नंबर, फोन का ब्रांड, फोन बिल, FIR कॉपी, फोन का IMEI नंबर की जरूरत है। पूरी जानकारी भरें और अपने चोरी हुए फोन के दुरुपयोग से बचें। किसी भी साइबर अपराध की रिपोर्ट cybercrime.gov.in पर करें। सतर्क रहें, साइबर सुरक्षित रहें।

0: के सावन में और उमंगों की बहारों में आप झूम रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम है गुलदस्ता, जिसे आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन पर सुनते हुए मुस्कुराते हुए। सावन का रुत चला गया पर आशाओं के सावन में झूमने का तो समय ऑल टाइम है। थ्रू आउट द ईयर आप आशाओं के सावन में झूम सकते हैं। आशाओं के सावन में खुशी के फूल खिलाते जाओ, हौसले की सांस से जीने की आस को बढ़ाए जाओ, उम्मीद के पंख लगाकर उड़ते रहो। वैसे आपने सुना फिल्म आशा से लता जी और रफी साहब की आवाजों को, और इस गीत के बोलों को लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने और धुन है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी की। तो ऐसी ही जानकारी आपके लिए, जो आपकी जानकारी के पिटारे को बढ़ाता चला जाएगा, आपको उमंग आएगा कि ये कौन है, उनकी जानकारी आप प्राप्त करेंगे और समय भी सफल होगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: ओम शांति, मैं हूँ ग्रेसी सिंह और आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0: खूबसूरत गीतों की बरसात हो रही है कार्यक्रम गुलदस्ता में, और आज के कार्यक्रम में ओल्ड वाइब्स है, ओल्ड सॉन्ग के रूप में, ओल्ड मेलोडीज के रूप में, और इसमें गजलें भी हैं, सेमी क्लासिकल नंबर्स भी हैं, तो आपके लिए टोटल पैकेज है एंटरटेनमेंट का। तो सरगम की इन हवाओं को आप कबूल कर रहे होंगे खुशी से और एंजॉय भी कर रहे होंगे। दोस्तों, हमारा इस कार्यक्रम का जो मकसद यही होता है कि सप्ताह भर जो स्टूडेंट्स हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, वो घर में आके थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हैं, जो कहीं अपने परिवार से दूर जाके कार्य कर रहे होते हैं वो घर में आकर रिलैक्स कर रहे होते हैं। तो ऐसे मुसाफिरों के लिए, ऐसे संगीत के लवर्स के लिए आज का कार्यक्रम है, और थोड़ी बहुत जानकारी भी है ना। सुनते रहिएगा, मुस्कुराते भी रहिए, आपके लिए आ रही है एक बहुत सुंदर कव्वाली।
1: रेडियो मधुबन पर आइए सुनते हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी के प्रेरणादायी विचार।
2: आदत बनी कैसे, करते करते करते करते आदत बनी, अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है, किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

गुलदस्ता कार्यक्रम के गीतों की हवाओं में एक सुरूर है, कशिश है और इन गीतों को और भी सुनने को जी चाहता है ना। यही कमाल है ओल्ड मेलेडीज के कि इनको आप सुनते रहते हैं और इनके बारे में जानकारी भी हासिल करते हैं थोड़ी थोड़ी। फिल्म का नाम दिल ही तो है और इस फिल्म में संगीत था रोशन का और बोल थे साहिर लुधियानवी जी के। आशा भोसले जी की आवाज में हमने इस गीत को सुना और हम चले गए थे बिल्कुल पुराने दौर में और देखा साथियों कि इसमें उर्दू शब्द भरे पड़े थे और इस गीत को समझने के लिए एक छोटी सी कोशिश करनी होगी कि हमें उर्दू शब्द भी थोड़े थोड़े सीखने होंगे, है ना, क्योंकि ये सारी भाषाएं हमारी ही तो हैं। तो लीजिए, पेश है अगला गीत आपके लिए लता जी की आवाज में। रेडियो मधुबन पर कार्यक्रम है गुलदस्ता।

या फिल्मी गीत के रूप में या नॉन फिल्मी गीतों के रूप में, क्योंकि गुलदस्ता कार्यक्रम जो है सभी तरह के गीतों को आत्मसात करता है। इसमें हम जो है ईश्वरीय गीत भी शामिल करते हैं। तो ऐसे ही हमारा जो यह खूबसूरत सफर है वह जारी रहेगा गीतों और बातों के साथ। तो अपनी जिंदगी को कभी मुरझाने न दें, जिंदगी को साथी बना लें और जिंदगी से खूब प्यार करें और जिंदगी को अपने घर में आने दें। सो डोंट मिस एनी शो ऑफ गुलदस्ता, कीप लिसनिंग, कीप स्माइलिंग। रेडियो मधुबन 107.8 FM पर आज स्वर्णलता कह रही है बाय, फिर मिलेंगे।

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में, नई दुनिया नया जमाना। इस कार्यक्रम में आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। साथियों, आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए हम इस कार्यक्रम को प्रमोट करते हैं। आप सभी को हर शनिवार ये कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते हैं, जिसमें हम लोग पर्यावरण को लेकर बातें करते हैं। पर्यावरण में जैव विविधता जो है, उसको कैसे हम सही उपयोग करके, उसको छोटी छोटी जीव कितना काम करते हैं, और हम उनके अगर सहयोग करें, उनकी रक्षा करें, तो हमारा पर्यावरण कितना अच्छा हो सकता है, और जब पर्यावरण अच्छा होगा तो हमारा जीवन कितना बेहतर हो सकता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इसी बात को हम लोग समाज में एक जागृति लाने के लिए नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम में पर्यावरण पर बातें करते हैं। तो आज के हमारे खास मेहमान हैं, वैसे आप हिंदी लिटरेचर में विशेषज्ञ हैं, और साथ ही साथ आपने जो है खास पत्रकारिता और पर्यावरण को लेकर काम किया है, और महाराष्ट्र में आप रहते हैं, और अभी मीडिया कॉन्फ्रेंस में आपका आना हुआ, और आते ही हमारी मुलाकात हुई और आपसे बातचीत हुई, तो मुझे अच्छा लगा कि आप पर्यावरण विशेषज्ञ भी हैं। तो हम चाहेंगे कि आज के इस एपिसोड में आपसे ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करूं, क्योंकि महाराष्ट्र भर में आप जो है पर्यावरण पर अपनी वक्तव्य देते हैं, और पत्रकार बंधुओं के साथ आपका हमेशा जुड़ाव रहता है। तो जयपाल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: धन्यवाद। ओम शांति।
0: ओम शांति जी, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में, और हमारे सभी श्रोता बंधुओं को अपना परिचय दीजिए।
1: मधुबन जो FM चैनल है, उसके सभी श्रोताओं को मैं सत श्री अकाल
0: जी, जी
1: सलाम वालेकुम और नमस्कार कहता हूँ।
0: नमस्कार।
1: मैं प्राध्यापक डॉक्टर जयपाल पाटिल, मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के जिला रायगढ़ से हूँ, और समंदर के बगल में सरखेल कान्हू जी आंगरे करके जो अरमाल के प्रमुख थे शिवाजी महाराज के, उन्हीं के गांव का अलीबाग का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं पत्रकारिता 40 साल से कर रहा हूँ, लेकिन मैं निजी किसान हूँ। मेरी खेती है, आम की खेती है, सब्जी लगाते हैं हम लोग, धान बनाते हैं, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कि हम लोग पेड़ लगाते हैं।
0: जी जी जी।
1: मेरी हर साल जहाँ भी मेरा बर्थडे रहता है, तो मैं स्कूल के बच्चे लोगों को बीज लगाने के लिए देता हूँ, पौधा लगाओ। हर घर के सामने, हर गांव के बाजू में, स्कूल के बगल में आप पेड़ लगा दीजिए, ताकि आगे के लिए, पर्यावरण के लिए भी, और अपने को जरूरत है प्राणवायु, वो मुफ्त में मिलेगा। तो इसीलिए बच्चों को सिखावट देता हूँ कि पेड़ लगाओ, उनकी निगरानी करो, और यही माता पिता इन लोगों ने अपने बच्चों को यही सिखावट देना चाहिए कि जीवन में एक बार तो एक पेड़ लगा दीजिए, ताकि पर्यावरण को हानि न पहुंचे। ये सब लोगों ने ध्यान में रखना चाहिए कि जहां भी मौका मिले, हमारे यहाँ की जो सरकार है, केंद्र की सरकार है, वो अनगिनत योजना देती है किसान भाइयों को, उसका लाभ लेके पौधे लगाओ। जहां भी जमीन अपनी उजाड़ है वो मत रखो, ताकि पौधे लगा के, बीज लगा के, उससे कमाई भी ले लो, आमदनी भी बढ़ाओ, और प्रसन्नता भी मिल सकती है। एक बार प्राणवायु काफी उत्पन्न हो गया तो अपने को जरूरत नहीं, धान तो पिकती है, फल फ्रूट तो होते हैं, तो पर्यावरण का महत्व हर जगह में होना चाहिए, ऐसे का सुझाव है।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, आशा करूंगा हमारे सभी श्रोताओं को अच्छा लग रहा है। तो आइए, जैसे कि आज के समय में हम लोग इस नए टेक्नोलॉजी के ज़माने में जी रहे हैं, मोबाइल वर्ल्ड में जी रहे हैं, एप्लीकेशन वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो ऐसे में पर्यावरण की तरफ कहीं ना कहीं हमारा जो है ध्यान कम है, आकर्षण कम है, तो इसको लेकर आपका क्या विचार है, बताइए जयपाल सर।
1: इसलिए क्या करना चाहिए
0: जी,
1: मैं स्कूली के बच्चों को सिखाता हूँ आपदा प्रबंधन। यही भी मैं आदिवासी बंधुओं का जो आश्रम शाला बोला जाता है, आदिवासी शाला, उसमें कई हजारों लोगों को मैंने सिखावट दी है। वो जंगल में रहते हैं, और उनके माता और पिता वो काम के वास्ते जंगल, उनकी मकाने जंगल में रहती है, वो काम के वास्ते नीचे आते हैं, और जब भी जाते हैं घर में तो बच्चों को खाऊं लेके जाते हैं, फिर मछली लेके जाते हैं, सामान लेके जाते हैं। तो जाते समय क्या होता है, उनके जो पिताजी है उनको थोड़ा आदत रहता है बीड़ी सिगरेट पीने की, तो मैं बच्चे लोगों को सिखाता हूँ कि देखो पिताजी अगर खाऊ लेके ऊपर आते हैं जंगल के ओर से तो उनको क्या बताने का, आप वो जो शर्म परिहार के लिए बीड़ी पीते हो कोई बात नहीं, लेकिन घर में आके पियो, क्योंकि जंगल का एरिया जब रहता है साहब तो उसमें होता है जो माचिस है उसकी तिल्ली जब ऐसी काड़ी पिट्टी उगाते हैं तो बुझती नहीं है, वो घर जाने के दौर में वो नीचे डाल देते हैं और यही गड़बड़ होता है पूरे जंगल में, जो आग लग जाती है छोटी छोटी और बड़ी हो जाती है, तो ये पर्यावरण को प्राणी मात्र को और सभी को नुकसान होता है। तो मैं आदिवासी लोगों को बच्चों को यही सिखाता हूँ कि पिताजी को यही कहना है आप जब भी घर में आओ तो आपका जो क्या वो बचपन से जो आदत है वो छूट नहीं सकती, तो वो करो प्यार भरा, लेकिन बच्चे लोगों को यह सिखावट देना चाहिए कि पर्यावरण के लिए हित के लिए हर माँ बाप ने उनको सिखाना चाहिए, स्कूल के टीचर लोगों ने यही बताना चाहिए कि पेड़ लगाओ। ये अभी बारिश के मौसम में हमारे महाराष्ट्र की सरकार तो पेड़ की झाड़ ही देती है उगाने के लिए, तो उनको वो लगाओ ताकि पर्यावरण ठीक रहेगा, ऐसा मेरा कहना है। और ये मोबाइल के जमाने में आजकल हर आदमी बंदा ये मोबाइल से बच्चे लोगों को इतनी परेशानी है कि पूछो मत, कि पिताजी को एक ऐसा उनको तकलीफ होता है, आंखों का तकलीफ होता है। हमारे जमाने में हम 70 साल के उम्र के हो गए तो आईना कम 50 साल के बाद लगती थी, अभी आप मानोगे नहीं कि छोटा बच्चा वो मोबाइल यूज करता है तो उनको इतना बड़ा बड़ा कांच का आईना लगाना पड़ता है। तो ये सुविधा हर बच्चे को हर माता पिता ने ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है सबके लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने बताया, और जिस तरह से आप बच्चों को गाइड करते हैं और प्राध्यापक रहे हैं आप, तो निश्चित तौर पे बच्चों को बताना आपका फर्ज बनता है। और पर्यावरण को लेकर आज के समय में टेक्नोलॉजी को देखते हुए जैसे कि हमने बातें की हैं, तो पेड़ लगाना सब चाहते हैं लेकिन ये अब जो है मुमकिन क्यों नहीं है?
1: जी
0: जी जी, जी, जी बताइए।
1: तो एक तो मैंने आश्रम स्कूल के बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तो उनको एक सुझाव दिया है, जो भी बाउंड्री के ऊपर पेड़ लगाया जाते हैं, जब बच्चा खाना खाता है साहब और वो उसका वो जो प्लेट है ना वो धोता है, तो मैंने सुझाव दिया है कि जो भी प्लेट धोना है तो जहाँ आपने पेड़ लगाया है वहीं जाके वो पेड़ अपना थाली धो ला दो, ताकि वो पूरा एक कटोरा भर पानी आराम से वो पेड़ को मिलता है। आपने बताया कि पानी की बहुत दिक्कत है कई जगह में, तो पानी का यूज कम करो लेकिन पेड़ में ज्यादा लगाओ, पेड़ के लिए पानी का यूज ज्यादा करो ताकि आगे के लिए वो अपना अच्छा है, पर्यावरण के लिए बहुत मेहनत हो सकती है, ऐसा मेरा सुझाव मैं देता हूँ। अभी मानना न मानना यह काम हर स्कूल के टीचर लोगों ने करना चाहिए कि बच्चों लोगों को हाथ भी धोना है तो कोई फूल का पेड़ है, कोई आम का झाड़ है, इमली का झाड़ है, तो उसी से हाथ जाके धो लो उसके नीचे में, ताकि पानी का सही उपयोग हो सकता है।
0: जी जी जी, एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि आप पर्यावरण के प्रति जो है जागरूकता आपको कब आई, कब ऐसा एहसास हुआ कि हाँ ये चीजें पर्यावरण से जुड़ी हुई है? जी
1: मैं पत्रकारिता के जरिए में कोंकण में हमेशा घूमता हूँ लेक्चर देने के लिए, तो रास्ते में एक बुढ़ा आदमी एसटी जो हमारे रहते थे महामार्ग में, वो जेब से ऐसा ये निकालता था बीज और ऐसा फेंक देता था। मैं पत्रकार होने के नाते मैं गौर से देखा, बाबूजी ये आप क्या डालते हैं? तो बोलते ये काजू है ना, हमारे कोकण में कैसी हो काजू बहुत होता है, तो घर में जब भी हम काजू खाते हैं लोगों के परिसर के लोगों को उनके घर से भी मैं बटरों के लाता हूँ और ये मेरे थैली में रहता है, और जब भी मैं जंगल के बाजू से जाता हूँ तो यही काजू फेंक देता हूँ, और आप यकीन नहीं करोगे ये चिपलून करके गांव है उसके जंगल में काफी काजू लगे कैसे, तो लोग बताते ये भाई साहब ने काजू फेंक दिए थे ना, ये भी होते हैं। ये जब मैंने गौर से देखा क्यों ना अपन कॉलेज में स्कूल में लड़के लोगों को सिखाते, तो उनको बता देने का है कि हर बीज जमा करो, यानी हमारे यहाँ आम है हापुस आम फेमस रहता है और काजू फेमस रहता है, तो उसके बीज रहता है, तो उसका सही उपयोग करना है कि वो डालो जहाँ जहाँ खाली जगह है वहाँ डालते रहो ताकि वो पौधे उग जाते हैं। और जिस दिन मेरी 60 साल की उम्र हो गई तो मेरा जो बर्थडे का कार्यक्रम रहता है उसमें डिजास्टर लोगों को मैं सिखाता हूँ।
0: अरे वाह।
1: तो जो भी लोग आता है तो उनको वो गुलाब ये फूल जो रहता है ना सर, वो गुलाब का फूल 10 रुपए को होता है। तो मैंने क्या कर्म सुना कि हर बंदा कोई आएगा उसको पेड़ देना है लगाने के लिए।
0: जी जी।
1: हमारे यहाँ महाराष्ट्र गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो इतना बेहतरीन काम करता है। अब पत्रकार होने के नाते बड़े बड़े अफसर बोलते पाटिल साहब आपका कार्यक्रम रहता है ना, ये पेड़ लेके जाओ सबको दे। और मुझे मैं सब मेरे पत्रकार वकील सब भाइयों को बताता है, एक तो तुम ये फेंकने वाले जो गुलदस्ता रहता है काफी महंगा रहता है 150-200 रुपए का, आप ये मतलब एक तो बच्चे लोगों को किताब दे दो पढ़ने के लिए, आइदर एक झाड़ दे दो। आजकल हमारे जिला में सब अफसर लोग हर कार्यक्रम के लिए
0: एक पेड़ देते हैं।
1: इतना बढ़िया काम हो रहा है। मैं नाम मात्र था बताने वाला, लेकिन आज हर बंदा वो आपका स्वागत, आप आए तो आपको पेड़ ही देगा। तो इतना अच्छा हो गया कि लोगों को मालूम पड़ता है कि पर्यावरण कितना महत्वपूर्ण है, भारत सरकार पर्यावरण के बारे हित के लिए कितना काम करती है। तो हम पढ़े लिखे जो लोग हैं उन्होंने ये सोचना चाहिए आगे की सोच कि अगर सुजलाम सुफलाम देश करना है तो पौधा लगाना जरूरी है। और हर आदमी ने जहाँ भी कार्यक्रम हो, क्या होता है स्वागत समारंभ रहता है, कहीं बर्थडे रहता है, शादी का माहौल रहता है, तो पैसे का पॉकेट देने के वजह से एक अगर उनको
0: पौधा दे दे
1: उसमें तो भी ऑक्सीजन देने वाले पौधे हैं।
0: हाँ, हाँ।
1: वो अगर लगा देना तो अपना काम देश के हित का काम हो जाएगा।
0: बिल्कुल।
1: और हमारे हम कोकण में रहते हैं महाराष्ट्र में, तो हमारे यहाँ इमली का एक पेड़ है जो आप हमेशा दाल में
0: सब्जी भाजी में डालते हैं।
1: वो एक इमली अगर पेड़ लगावे तो आपका 3 पीढ़ी के लिए उसका फायदा होता है। तो इमली का झाड़ लगाओ ऐसा लोगों को हम लोग कह लेते हैं। तो पौधे लगाओ और आनंद ले लो ताकि देश के पर्यावरण के हित में अपना भी एक छोटा सा समाज हित हो जाएगा, एक काम हो जाएगा। ऐसा हर बंदे ने करना चाहिए ऐसा मेरा ख्वाहिश है पर्यावरण के लिए।
0: जयपाल सर बहुत ही अच्छी बातें आप बता रहे हैं और आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से हम जो है पर्यावरण को समृद्ध कर सकते हैं। और पर्यावरण को समृद्ध करना हमारे अपने ही हाथों में है। हम कई बार ये सोचते हैं कि भाई पर्यावरण को तो भगवान करेगा या फिर कुदरत अपने आप जो है करेगा। बिल्कुल कुदरत अपने आप भी करता है और भगवान का भी ब्लेसिंग मिलता है, लेकिन जब तक हम इस धरती पर रहने वाले अगर उसकी रक्षा नहीं करेंगे तो भगवान और या कुदरत चाहे भी तो पनपेगा नहीं। इसलिए हमें जो है हमको जागरूक होना है। जब हम इस विषय को लेकर थोड़ा चिंतन करेंगे, मनन करेंगे और साथ में मिलकर जब काम करना शुरू करेंगे तब जाके हम पर्यावरण को बचा सकते हैं। क्योंकि आज हमने पर्यावरण की चिंता छोड़ दी है, उसके बारे में मंथन नहीं करते हैं, हम मिलकर बात नहीं करते हैं। आप देखिए कितने सारे लोग नुक्कड़ पे बैठते होंगे, पानी पीते होंगे, चाय पीते होंगे या बातें करते होंगे, लेकिन पर्यावरण की बातें करते हैं क्या? पर्यावरण की रक्षा की बातें करते हैं क्या? क्या चलो आज संडे का दिन छुट्टी है, चलो हम मिलके 1-8-10 पेड़ अपने गांव के आंगन में लगाते हैं, अपने शहर के किनारे पे लगाते हैं, क्या ऐसी बातें होती है क्या? अगर नहीं होती हैं तो हम और आप सब दोषी है इसके, क्योंकि हमने कभी पर्यावरण पर चर्चा ही नहीं की, हमने कभी बातें ही नहीं की और हमने कभी उसको अमल में लाया ही नहीं। इस वजह से आज अकाल, बाढ़, इन सभी सिचुएशन को हम फेस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे ये हमारे हाथ में है कि हमें बाढ़ जैसे सिचुएशन में रहना है या फिर अकाल जैसे सिचुएशन में रहना है, या हमें एक समतुल वातावरण में रहना है जहाँ पर हवा, पानी, पेड़ पौधे सब कुछ उपलब्ध हो और सब हरा भरा हो। ये निर्भर करता है हमारी सोच पर, हमारी एटीट्यूड पर, हमारे विचारधाराओं में। तो इस कार्यक्रम का मकसद ही हमारा ये है, नई दुनिया नया जमाना, जिसमें हम पर्यावरण को लेकर चर्चा करते हैं और आपके लिए खास जयपाल सर जैसे महान व्यक्तियों को जो पर्यावरण पे काम किया है उनको लेकर आते हैं ताकि उनके आइडियाज, उनके विचार आप तक पहुंचें और आप भी चाय नुक्कड़ पर जब बैठेंगे या नुक्कड़ पर बैठकर जब चाय पीते होंगे तब इस चर्चा को ज़रूर आप भी शुरू करें और आपस में शेयरिंग करें कि अगर कोई बंदा चिपलून गोवा के पास में जो काजू फल खाने के बाद उसके जो बीज बसते हैं उसको अपने साथ लेकर घूमता हो और वो पेड़ लगाने के लिए वो बीजों को ट्रेन से या फिर अपने रास्ते में जाते समय जो फेंक कर वो ये शुभकामना करता है कि भाई ये पेड़ हो जाए और लोगों को सुख दे, तो अगर कोई एक बंदा भी पहल करता है तो अगर उससे जंगल में अच्छे पेड़ निर्माण होते हैं या अच्छे पेड़ लग जाते हैं तो आप और हम क्यों नहीं। ऐसा कहा जाता है जो हमारी चिमनी होती है स्पैरो वो भी तो काम करता है पेड़ लगाने का, वो बीज खाती हैं और बीज का वेट करती हैं और उससे पेड़ उग जाते हैं। आप देखते हैं कभी कभी बारिश के बाद जो है आपके खिड़की पर ग्रीनरी आ जाती है, तो ये किसने किया कारोबार है ना, क्या आपने तो नहीं सोचा होगा पर्यावरण को, खिड़की के ऊपर पेड़ आना या ग्रीनरी आना ये काम है हमारे स्पैरो का या चिमनी का। तो पक्षियों को हमारा ख्याल है, भगवान ने देखो वो खुद आके लगा नहीं सकते, अदृश्य शक्ति है, लेकिन उन्होंने ऐसे पक्षियों का निर्माण किया जो पेड़ लगाकर आपको और हमको जीवित रख रहा है। भाई हमसे ज्यादा हमारे जीवन का जो रक्षक है वो चिमनियां हैं, पौधे हैं, और ये सारे जो जीवन रक्षक पशु जो है ईश्वर ने पहले से निर्मित करके रखा है। उनको पता है मनुष्य इतना जो है कब भटक जाएगा, तो उसका जीवन सत्यानाश ना हो, उसको जो है फिर भी सब कुछ मिले, इसके लिए उन्होंने पहले से छिपा के ये सारे खजाने रखे। तो हमें भारत देश या फिर पर्यावरण में कितनी विविधता है, फिर की जैव विविधता है, उसको हमें रक्षित करना है। आज हम लोग ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पर आंगन नहीं कुछ नहीं, तो वहाँ पर पेड़ तो पनपेगा नहीं लेकिन पक्षी भी नहीं आता है ना। पहले तो आंगन में पक्षियाँ चहचहाती थी, बच्चे पक्षियों के साथ खेलते थे, वो जमाना कहीं ना कहीं ऐसा लगता है बीता हुआ जमाना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जयपाल सर से फिर बातें करते हैं, लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत प्यारा सा गीत, तब तक आप और हम मिलकर चर्चा करेंगे, चिंतन करेंगे कि कैसे हम पेड़ों को और ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हैं और पक्षियों को ज्यादा से ज्यादा जो है स्पेस दे सके हम, उनको जीवित रहने के लिए उनको भी स्पेस दे सके और आने वाली पीढ़ी को भी स्पेस दे सके ताकि वो भी अच्छा जीवन बेहतर जीवन जी सके। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मस्त।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम में। और आशा करूंगा आप बिल्कुल अच्छा फील कर रहे हैं। शायद गाने के साथ साथ आपने चिंतन मनन किया होगा कि कैसे हम अपने पर्यावरण को समृद्ध कर सकते हैं, पेड़ पौधों को हरियाली जो है बना के रख सकते हैं। ये हम जो है अगर पेड़ पौधे हैं तो उसको अगर थोड़ा सा भी बारिश के पहले जब अकाल जैसा सिचुएशन आता है तो अगर पानी देते हैं तो वो पेड़ हरा भरा रहता है, लेकिन पानी देने का काम भी हमें ही करना है, तब हम जो है पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो आइए बात करते हैं इसी विषय को लेकर। रायगढ़ और चिपलून और अलग अलग जगह पे हमारे जयपाल सर ने काम किया है पर्यावरण पर, वह अनुभव सुनते हैं। तो आप सभी की तरफ से फिर एक बार जयपाल जी को सुनते हैं। जी स्वागत है आपका।
1: नमस्कार भाई बहनों।
0: हाँ हाँ,
1: मैं रायगढ़ जिले का अलीबाग का किसान हूँ।
0: जी जी जी,
1: मेरी खुद की खेती है। उसमें मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के तरफ से हम लोग को आम के पेड़ दिए जाते हैं। तो काम ही करना है तो अपने खुद के तरफ से करना चाहिए। लोगों को सिखावट देना तो काम रहता है, लेकिन अपना खेत में हम लोगों ने मेरे एक जगह में 60 नारियल के झाड़ लगा दिए। हर महीने में हम लोग खेती भी बनाते हैं सब्जी की। दूसरी जगह में भी हमने 18 आम के झाड़ लगा दिए। लोग कृषि डिपार्टमेंट के लिए देखने को आते हैं कि कहाँ लगाए, तो हम लोग आपस में दिखाते हैं यहीं से शुरुआत करो। अपने को सरकार अगर सब देती है, पेड़ देती है, उसके लिए खत देती है, कंपाउंड के लिए वॉल कंपाउंड के लिए पैसे देती है, सब काफी योजना भारत सरकार और महाराष्ट्र सरकार से हम लोग को दी जाती है। तो हमने खुद के खेती में पहला काम किया, फिर लोगों को सिखावट देना चालू किया। स्कूल के बच्चे लोगों को जब बातें देते, अभी देखो बारिश में अपना जो खेत का कंपाउंड रहता है उसी में अगर फूलों की काटेरी झाड़ रहते हैं।
0: जी जी जी, काटे वाले पेड़,
1: उसको लाल पीला कलर के ऐसे
0: फूल लगते हैं।
1: तो जैसे ही आप खेत पे कोई भी बंदा आए तो उसको अच्छा लगता है। अपने खेती में अगर हरा भरा माहौल दिखाई पड़ा तो दिन के काम करने में नई उम्मीद आती है। तो ये प्रैक्टिकल होता है।
0: बिल्कुल,
1: जिस दिन मैं खेती मेरा डेवलप चालू किया तो मेरे एक भाई जो विज्ञान के ओपन कृषि विद्यापीठ में कार्यरत है, उन्होंने बताया भैया ये जो पेड़ है ना, ये जैसे ही इंसान के मापस है, क्यों इसको अगर संगीत लगाएंगे हरिनाम भजन तो वो पेड़ ऐसे डुलते हिलते है। मैं पत्रकार हूँ, हम नारद मुनि, मैं यकीन नहीं किया, लेकिन वो काफी पढ़े लिखे, डॉक्टरेट किया उन्होंने कोकण कृषि विद्यापीठ में, मतलब करेंगे। तो मैं भी सुबह में अपना बड़ा स्पीकर लगा देता भगवान का नाम, हमारे यहाँ विठल माउलू को हम लोग ज्यादा मानते
0: हैं,
1: तो उसके गाने काफी रहते हैं, तो दिल को उमंग आती है, अच्छा लगता है, दिमाग प्रसन्न हो जाता है। वो बड़ी जोर से वो खेत में लगा देने का, तो उस गाने से पशु पक्षी वो भी आते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। वो पर्यावरण में आपने जो बताया है पक्षियों, वो बीज लेके इनके खेत पे उनके खेत में जहाँ भी जाओ वहाँ पे बरसात में आती है। तो सर जी, आप खेत में संगीत सुनने में लगेंगे तो पौधे जो हमारा जो काम है तो बढ़ जाते हैं, उसकी अच्छी तरह से प्रगति हो जाती है और फल भी ज्यादा मिलते हैं। तो ये लोगों को हम लोग सिखाते हैं, स्कूल में जाते हैं, बच्चे लोगों को वही नारा देते हैं, और आज के लोगों को शिक्षा में हम लोग बताते हैं कि बच्चे लोग को चित्रकला स्पर्धा आप लेते हैं।
0: जी जी,
1: तो उसमें एक हम लोग हमारे जमाने में 40 साल पहले 50 साल पहले स्कूल में हम चित्रकला करते थे तो टीचर महोदय क्या बोलते थे, अरे पेड़ पे पंछी बैठा है ऐसा चित्र निकालो। हमारे दिमाग में हम कैसे भी, अभी भी मैं आपको निकाल ले सकता हूँ। तो ये बच्चों आजकल मोबाइल के जमाने में
0: वो चीज है,
1: मोबाइल लेके वो किधर पंछी और पेड़ देखता है, वो तो गूगल पे ही देखते रहता है। हर बंदे ने बच्चे लोगों को चित्रकला स्पर्धा लेना चाहिए, उनको अवार्ड दे दो ताकि उनके दिल में पेड़ के पौधे के लिए बारे में, अरे ये है क्या। आप अंग्रेजी स्कूल के बच्चों को अगर आप ये नारियल का देश नारियल का पेड़ है बोले कैसा है क्या है। हम लोग जब बच्चे थे तो हमको हर हमारे दादाजी माताजी सब सिखाते थे, इस पेड़ को ये बोला जाता है, इस पेड़ को ये बोला जाता है। अब मैं मेरा फार्म हाउस में लोगों को इनवाइट करता हूँ तो पर्यावरण के लिए ये पेड़ का नाम ये है, इसको तुलसी बोला जाता है, इसको ये बोला जाता है, हर चीज लोगों को हम लोग बताते हैं ताकि हम लोग अगर गुजर जावे, हमारी दादी दादा थे वो फौरन इस पेड़ में जरा कुछ लगा है, चाकू लगा है, उस जमाने में डॉक्टर नहीं थी 40 साल पहले, लेकिन माता जी वो चूना लगा के ऐसा करेगी, जैसे खांसी हो तो इधर चूना लगाती थी, खांसी 2 दिन में जाती थी। तो ये पौधे का जो क्या यूज है, वापर है, वो लोगों को जानकारी होना चाहिए आज के जमाने के लोगों को, ताकि पर्यावरण ठीक से रह सकता है। और आप यह भी करो, सब लोगों को उसमें आपने जैसा बताया कि सब गपशप लगाने बैठते हैं, तो मैं हर सीनियर लोगों को बताना चाहता हूँ, आपका जिस दिन बर्थडे रहता है उस दिन आपके जितने भी रिश्तेदार आते हैं, जितने भी फ्रेंड लोग आते हैं, उनको उनको एक छोटा पौधा दे दो। मैं गर्व के साथ करूंगा कि अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब है, इनका काफी ध्यान रहता है। हमारे महाराष्ट्र में एक बहना है वो फेरे करके मैडम, उसको पद्मश्री से नवाजा है, उसके घर में पूरे बीज ही बीज, मानो कि आप मधुबन के संपादक आ गए तो चाय के साथ आपको वो बीज ही देगी।
0: अच्छा,
1: हाँ आप जाएंगे तो ये जरा पौधे लगा देना दो चार। तो ऐसे भी काम करने वाले लोग
0: हैं।
1: हाँ जी, तो हर आदमी, हम सीनियर सिटीजन लोगों ने ये काम, अभी पेंशन मिलता है, शाम के कोने पे बैठते हैं, टंगल मंगल करते हैं, चाय पीते चले जाते हैं, ऐसा मत करो। जितने भी नौजवान आते काफी पढ़े लिखे, उनको बुलाओ, उनको पर्यावरण का महत्व बता दो कि पेड़ लगाने से क्या होता है, ये सिखावट दे दो, तो तुम्हारा काम देश के हित के लिए हो जाएगा, ऐसा मेरा खुद का कहना है।
0: बिल्कुल,
1: मुझे जब समय मिलता है तो कोई भी बोलेगा, हो सकता है आप भी अभी बुजुर्ग है तो लोग क्या बोलेंगे, आगे हम कुछ हमारे मराठी में बोलते शानपन सिखाने के लिए आ गया। ऐसा मत करो, लेकिन ये जो देश के हित के लिए ही अपने के अपने प्राणवायु जो चाहिए अपने को, वो बचत होना चाहिए। प्रदूषण काफी हो गया, डेवलपमेंट होता है वो देश के हित का है, लेकिन उसमें पानी खराब हो जाता है, हवा भी खराब हो जाती है। अभी देखो कल परसों नेपाल में जो हादसा हो गया, काफी लोग रोना आता है, काफी लोग, मैं डिजास्टर का काम करता, पानी में बह गए, कई लोग मरे, मुंबई के सब लोग जा गए, हमारे साथी आप उन 3 साथ में है तो एक चला गया, ऐसे दुर्भाग्य पर घटना होती है। तो ये पर्यावरण के हित के लिए सभी लोगों ने अभी जागरूक होना चाहिए। अरे मेरा निजी काम है, मैं देश में रहा हूँ, मैं कसम देश कर करके बताना चाहिए, और ये पर्यावरण का काम हर बंदे ने करना चाहिए, ऐसा मेरा खुद का सब लोगों को सुझाव है।
0: जी जी जी, कोई एग्जाम्पल वगैरह दो ना, जैसे कि आप महाराष्ट्र में जो काम किया है अलीबाग में वगैरह, तो इस तरह से कोई बच्चे, स्कूल के बच्चे कुछ एग्जाम्पल स्थापित किया हो आपके लेक्चर के बाद, ऐसे कुछ उदाहरण हो तो वो बताइए, ताकि प्रैक्टिकल हमारे यहाँ भी कुछ कर सके बच्चे।
1: मैं स्कूल में ज्यादा लेक्चर देता हूँ, मैं शिक्षक बहना और बहनों को ये सुझाव दूंगा कि पर्यावरण हित के लिए आप स्कूल में चित्रकला स्पर्धा जो आयोजित किया जाता है, तो उसमें पेड़ पौधे जिनकी नाम लोगों को मालूम नहीं, गांव के किसान भाइयों को, किसान बहनों को मिलो, इस पेड़ को क्या बोला जाता है, वड़ बोला जाता है, इसको क्या बोलता है, इमली बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, ये सब आप उनसे सीखो, उसका यादी करो, और बच्चे लोग को सिखाओ, उनको चित्रकला स्पर्धा, वक्तृत्व स्पर्धा ले लो कि हमने अगर पेड़ नहीं लगाए तो क्या हो जाएगा, ऐसी ऐसे ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर बच्चों में बढ़ोतरी करो, ताकि वो बड़े जब जब हो जाएंगे तो अपना काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मैं यही भी स्कूल में जाता हूँ तो पहले उनको, कभी कभी टीचर लोग को गुस्सा आता है, पेड़ के नाम जानकारी चाहिए, हर बंदे को जो ज्यादा मुझे पेड़ के नाम बताए उनको मैं चॉकलेट खिला देता हूँ, बहुत अच्छा लड़की है, बहुत अच्छा लड़का है, हाँ ये जानकारी है। अब क्या हो गया, हमारे जिला परिषद के स्कूल है, वो हर गांव में रहते हैं, खेड़े गांव में, तो वहां का जो माहौल है, वहां की जो जमीन है, उसके बगल में हमारे कई आदर्श शिक्षक पुरस्कार प्राप्त रहते हैं, वो क्या करते हैं, बच्चे लोगों को, किसान के लड़के होते हैं तो जो खाली जमीन में सब्जी उगाते हैं वो बच्चे लोगों को सिखाते हैं, तुम उगाओ, सर को तो मालूम रहता है, टीचर को मालूम रहता है, तो वो काम करना है, उनको बढ़ोतरी दे दो कि छोटा सब्जी कैसा उगाने का, कैसा बीज डालने का, क्या क्या करने का, ये बच्चे को अगर सिखाएंगे हम लोग, क्यों बच्चा सर आता है पहली कक्षा में तो सातवीं कक्षा सात साल तो रहता ही उधर,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो एक तो पेड़ लगाओ, उसको बोलेगा लोटा भर पानी, जैसा तुम आओगे पानी पीने का समय हो गया, एक ही लोटा खाली जाके वो पेड़ को लगाओ और वो पेड़ को वो बच्चे का नाम देने का साथ, वो जब भी बड़ा हो जाएगा
0: जी,
1: तो
0: जी,
1: कभी कभी सर वो स्कूल में आएगा और मैंने लगाया हुआ पेड़ कितना बड़ा हो गया, कितना मोटा हो गया, फल लग गए क्या, ये सब आने वाले जो स्कूल में बच्चे हैं उनको सिखाएगा, ताकि उनमें भी बढ़ोतरी हो जाए कि हम लोग ने भी एक पेड़ लगाना चाहिए, चाहे कहीं भी लगाओ, मंदिर के पास लगाओ, स्कूल में लगाओ, घर के बाजू में लगाओ, लेकिन हर साल में एक पेड़ लगाना चाहिए,
0: बिल्कुल,
1: तो ही पर्यावरण के लिए। सरकारी अफसर तो काम करते हैं, वो अपने को बताते हैं, लेकिन मैं मेरा देश के हित के लिए और मेरे प्राणवायु मेरे खुद के लिए मैं अगर काम करूं तो बहुत बढ़िया हो सकता है, ऐसा मेरा खुद का सुझाव सर है।
0: जी जी जी जी, चलिए जयपाल सर, बहुत ही अच्छी बात है आपने बता दिया, और मुझे लगता है कि हमारे सभी जो श्रोता बंधु हैं, जो विद्यार्थी मित्र हैं, टीचर हैं, वो अगर सुन रहे हैं तो वो इस तरह का जो है एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। जब दूसरी कक्षा या पहली कक्षा में बच्चे आते हैं तो उनके हाथों से पेड़ लगाना, बीज देना, उन्हें बीज लगा देना और उनको फिर उसकी जिम्मेवारी देना, जब तक वो स्कूल पढ़ रहे हैं तब तक जो है निश्चित तौर पर अपना काम करते रहे और पानी देते रहे, तो सात साल में वो पेड़ भी बड़ा हो जाएगा, उसको भी खुशी होगा और बच्चे को उसके लिए आप सम्मानित भी कर सकते हैं कि इस बच्चे ने इस तरह से मेहनत किया करके। आइए साथियों, यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुनाए हैं रेडियो मधुबन पर नई दुनिया नया जमाना, इस कार्यक्रम को आप सुनाए हैं और निश्चित तौर पर आपको अच्छा लग रहा है, सुनते रहो मुस्कराते रहो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 एफएम। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं और हमारे साथ जयपाल सर हैं जिनसे बातें हो रही हैं। नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं जहाँ पर हम लोग पर्यावरण को लेकर बातचीत करते हैं। और पर्यावरण में आप चाहे ना चाहे लेकिन आपको कभी ना कभी पर्यावरण के लिए काम करना ही होगा, क्योंकि अगर हम नहीं करेंगे तो पर्यावरण की मार भी हमें ही मिलने वाली है। जिस तरह से आज सिचुएशन है पूरे राजस्थान में, अभी 2026 चल रहा है, 2 महीने से बिल्कुल बारिश नहीं है, जबकि इस समय बारिश का टाइम है। और देखेंगे न्यूज़ में हम लोग की चारों तरफ पानी ही पानी है, नेपाल में पानी और भी दिल्ली में अभी भी बारिश अच्छी हो रही है, महाराष्ट्र में बारिश हो रही है, लेकिन राजस्थान के कुछ बनासकांठा के एरिया में बिल्कुल 2 महीने से पानी नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ, हो सकता है कि अगर पानी बरसे नहीं तो अकाल सिचुएशन भी हो सकता है। तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा नौबत हम सभी को ना मिले या ना आए, इसके लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। तो पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाना होगा, और अगर हम स्कूल टाइम से ही पेड़ लगाने की आदती हो जाते हैं तो वो हमारे आदत में एक, जैसे ना हर व्यक्ति को कोई ना कोई आदत होती है, किसी को ज़्यादा बोलने की आदत होती है, किसी को कम बोलने की आदत होती है, किसी को चाय पीने की आदत होती है, किसी को नहीं होती, कोई गुटखा खाता है कोई नहीं खाता है, तो इस तरह की आदतें हैं हमारी। तो वैसे ही हमें जो है, हमें अपने जीवन में एक आदत बना लेनी चाहिए कि जहाँ भी खाली जगह दिखे वहाँ पेड़ लगाए बस। तो आप देखेंगे कि पूरा ऐसा करने से हम भारत को जो है समृद्ध कर सकते हैं और अकाल जैसी नौबत को बचा सकते हैं। तो आइए जयपाल सर, मैं चाहूँगा कि पर्यावरण के लिए और क्या बताना चाहेंगे आप।
2: जी, भारत देश तो आपको जानकारी है कृषि प्रधान देश है। हर बंदे का अपना अपना गांव में निजी खेती रहता है।
1: जी जी जी।
2: पढ़े लिखे होने के नाते हम गांव छोड़ के शहर में जाते हैं, कहीं दूरी पे भी जाते हैं।
1: जी
2: तो
1: जी।
2: गांव में हमारे माताजी और पिताजी रहते हैं, हो सकते वो बूढ़े होते हैं, लेकिन अपनी जो खेती है वो ऐसे ही ओसार मत रखो। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय और आपके निजी राजस्थान सरकार के कृषि मंत्रालय के तरफ से हर किसान भाई को अपनी खेती डेवलप करने के लिए कई योजना रखे हैं। अपनी मेहनत करो और उसके साथ चंदा की जो जरूरत है वो सरकार आपको देती है, लेकिन आपके खेती में आप पेड़ लगाओ। पेड़ लगाने के लिए आपको वो गड्ढा मारने के लिए, तार कंपाउंड के लिए और पेड़ भी खरीदने के लिए चंदा दिया जाता है सरकार के तरफ से। तो ये करो, आप नौकरी के लिए कहीं लंबे हो तो भी वहां से जरा अपना गांव में आओ और अपने खेती में वो पेड़ लगाने का काम करो। और आपको इतना आनंद मिलेगा कि पूछो मत। आप सभी को मालूम है जो इजराइल देश है, अपने पड़ोसी खास दोस्त है, वहाँ पानी नहीं, कम पानी पड़ता है। और अपने देश में दिल्ली में महाराष्ट्र में इधर बाढ़ आई उधर बाढ़ आई, कई जगह में पानी नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन पानी का सही इस्तेमाल करना सीखो। क्या होता है आज के जमाने में आप पढ़े लिखे होने से

0: कई दो चार चाकी, चार चाकी वाहन, दो चाकी वाहन हर एक बंगले के, हर मकान के बाहर चार चार खड़ी रहती है। आपको ध्यान आता है कि आप सुबह में जब बेबी को बोलते हैं जरा गाड़ी साफ करना है, तो आपके नल में आप पाइप लगाते हो और नल पाइप से गाड़ी धोना चालू करते हो। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे हिंदुस्तान में पारसी समाज के बहुत पैसे वाले लोग रहते हैं, पैसे वाले, और उनके पास कई गाड़ियां रहती है, कई नौकर भी रहते हैं। आप उन गौर से देखेंगे तो सुबह में वो पारसी भाई खुद बाल्टी लेके अपनी गाड़ी खुद साफ करता है एक बाल्टी से। हम लोग क्या करते हैं, राजस्थान के भाई हो, महाराष्ट्र के हो, सभी वो पाइप से पानी का बहुत अपव्यय करते हैं, वो ठीक करना नहीं चाहिए। पानी का सही उपयोग करो, जैसा इसराइल में, पूरा वर्ल्ड में इसराइल के जो ये है खेती का प्रयोग वो बहुत बढ़िया है, और हमारे भी, हमारी जमीन बहुत बढ़िया है। आप नौकरी के साथ में अगर किसान अपना पारंपरिक जो बिजनेस है धान लगाने का, पेड़ लगाने का, ये काम करो ना, आपको आमदनी हो जाएगा। ये मैं क्यों बताता सर, मैं भी नौकरी करता था, मैं गवर्नमेंट का रेलवे पायलट था, मेरी खेती से लंबा रहता था, लेकिन मुझे खेती से इतना लगाव है, बाप जादे की खेती है, हम मछली की भी खेती करते हैं, हम आम की भी खेती करते हैं, उससे इतना आनंद मिलता है कि खुद ने उगाया हुआ खाना सेहत के लिए बहुत बढ़िया रहता है। अभी आजकल क्या होता है, खाद भी न डालना उसको सेहत के लिए ठीक नहीं। मैं आपके सामने बैठा हूँ कि तंदुरुस्त आदमी, आपके खेत में उगाया हुआ सब्जी आप खाएंगे, जैसे मैं माउंट आबू में आया हूँ, आज मैं यहाँ रोजाना 5 दिन से खाना खाता हूँ, यहाँ की सब्जी खाता हूँ, दाल खाता हूँ, ये सब यही उगाया जाती है। ये आप सब लोग मेरे पत्रकार भाइयों को मैंने बताया, अब जाके जाके खेती देखो, अंगूर देखो, सब्जी देखो, माउंट आबू की बाहर से नहीं आते, तो यही का उपयोग हम लोग किसान करके करना करेंगे घर में अपना, तो ये देश के पर्यावरण के हित का ही काम है ना। और आपका आरोग्यम धन संपदा, आप खुद किसान ने वो पौड़ा लेके अगर खेती में काम करोगे, आपका एक्सरसाइज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली व्यायाम हो जाएगा, आप तंदुरुस्त होते जाओगे, खाना भी बढ़िया खाओगे। और इसीलिए आप सभी को बता सकते हैं कि मैंने ये आम लगाया है, मैं जो मेरे दोस्त लोगों को, पत्रकार लोगों को हर साल मेरे घर के आम में जब देता हूँ तो उनको कितना आनंद होता है, वो देखने के लिए आते हैं। क्या होता है, आदमी का भी आदमी है, वो सोचता है सही में है क्या, आप भी हमारे इधर अगर महाराष्ट्र में आवे तो मेरा अलीबाग, मेरा नाम यहाँ से ले लो, मधुबन से आपका स्वागत है हमारे खेत पे, हमारे यहाँ काजू बोला जाता है, 2000 काजू का झाड़ है मेरे मौसी के लड़के के खेती में, मेरे पास आम है, आपको खिला देंगे। हमारा खुद का सब्जी हम बनाते हैं, उगाते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। तो मैं लोगों को सुझाव दूंगा कि आप जमीन खाली मत रखो। आपके राजस्थान गवर्नमेंट आपको पैसा देती है बीज के लिए, सब्जी के लिए, भारत सरकार भी देती है, उसका सही उपयोग करके आप अपना खेती हरियाली से एक हरियाली करो, ताकि आपको भी आनंद मिलेगा और आपका देश के हित के लिए काम भी हो जाएगा ना,
1: बिल्कुल
0: चंदा भी मिलेगा आपको, और आनंद जो है हरियाली देख के आपके आंखों को, आंखों में इतना बढ़पन आता है, अरे क्या सब हरा भरा है, अब भी आपका जमीन हरा भरा कर सकते हैं। ये लोगों को सिखावट देने के वजह से आप अपना खुद का काम करो और सरकार को नमस्ते करो, सरकार भले कोई हो लेकिन योजना किसानों की है। अभी वे कल आया तो हमारे यहाँ के किसान भाई जो है सब आनंदी है, हमारे यहाँ स्पर्धा रहती है, हमारे गवर्नमेंट स्पर्धा करती है कि आपने कितना भात उगाया है, कितने फल उगाए हैं, सरकार हमारी बड़प्पन से सम्मान करती है, ये सम्मान लोगों के लिए अच्छा रहता है। क्यों? कि उनको इनको सम्मान मिला, मुझे भी ज्यादा काम करना चाहिए, तो अपना खेती डेवलप करो सरकार के जरिए से, और लोगों को भी बताओ कि ये काम करने से पर्यावरण को तुम्हारा ही छोटा सा हित शामिल हो जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: जी।
1: चलिए जयपाल जी, बहुत ही अच्छी बातें आपने बता दिया, आशा करूंगा हमारे सभी किसान भाइयों को और जो विद्यार्थी मित्र हैं उनके लिए आपका ये आज का ये कार्यक्रम, आपकी बातें उनके काम की है, और जो लोग काम करेंगे उनको पर्यावरण के प्रति जो है अच्छा काम तो कर सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ हम पूरे भारत के लोगों के लिए भी एक शुद्ध हवा यानी एक ऑक्सीजन जो है निर्माण करने में सहयोगी बनते हैं। तो मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, और जाते जाते जयपाल सर से कहूंगा एक छोटा सा मैसेज क्या देना चाहेंगे, एक संदेश क्या देना चाहेंगे।
0: संदेश ऐसा है कि आप जब भी मौका मिले तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी का जो सेंटर है
1: जी जी जी
0: माउंट आबू में एक बार जरूर आना। क्या होता है कि आदमी बात करता है, कई लोगों को आदमी का विश्वास नहीं रहता है, तो यहाँ आके प्रैक्टिकल देखो यहाँ के कैसी खेती किया जाता है। मैं तो सबका अनुरोध करूंगा और धन्यवाद दूंगा पंत प्रधान महोदय को
1: जी जी जी
0: कि यहाँ जो अपने जो बाबा है उन्होंने आगे की सोच करके जो सोलर प्रोजेक्ट यहाँ बिठा है जर्मन कंपनियों के जरिए से
1: जी जी
0: वो देश का पहला प्रोजेक्ट है। और यही मैं हमेशा कहता था कि हमारे किसान भाइयों को अगर ये पॉलिटिकल लोग करेंगे सुविधा तो अच्छा रहेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने ये अयोध्या जन्मभूमि का जिस दिन इनॉग्रेशन हो गया उसी दिन हमारे किसान भाइयों को सोलर का योजना पूरे देशवासियों को अनाउंसमेंट की। ये देखने के लिए भाई और बहनों आप माउंट आबू, मानो कि आप पत्रकार हो तो पत्रकार सम्मेलन में आओ, नहीं तो हमारे आपके गांव में जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी का जो सेंटर है
1: उसमें
0: वहाँ के हमारे बहनों हैं उनको मिलो और उनको आशा व्यक्त करो कि मुझे एक बार माउंट आबू जाना है। आप हमारे यहाँ हर कैटेगरी के सम्मेलन यहाँ होते हैं, तो आपको अनुरोध है आप एक बार राजस्थान में आइएगा और यहाँ का अनुभव लीजिएगा, ऐसा ही मैं आपको कहूँगा। ओम शांति।
1: ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जयपाल जी, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया, बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया, जहाँ से आप सीख रहे हैं, जहाँ से आपको अच्छी अनुभूति हो रही है। आपने सबको आह्वान किया कि यहाँ पर आएं और यहाँ पर किसी भी तरह से आएं, चाहे किसान सम्मेलन में आएं या मीडिया सम्मेलन में आएं, लेकिन आकर जो है अनुभव करके जाइए और पर्यावरण के लिए काम करें, ऐसी शुभ आशा के साथ फिर मिलते हैं साथियों अगले शनिवार को नई दुनिया नया जमाना इस कार्यक्रम में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते खमा गणिसा, जय हिंद जय भारत, ओम शांति, सुनते रहो।

0: नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम सा, शनिवार की सुप्रभातम। परमा पंडिताइन, आपका प्रोग्राम पंडिताइन में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत दिल से स्वागत करती है। आज शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम बहुत सुंदर एक कहानी से, दिल की दूरी। गंगा नदी के तट पर एक शांत सुबह थी, हल्की हल्की हवा बह रही थी। अब सूर्य की सुनहरी किरणें जल की लहरों पर चमक रही थी। पंछियों की मधुर आवाज वातावरण को दिव्य बना रही थी। यही शांत माहौल में एक सन्यासी अपने कई शिष्यों के साथ स्नान करने आए। सभी ध्यान और साधना के भाव में डूबे रहे, तभी अचानक वातावरण में एक कर्कश शोर गूंज उठा। पासी को एक परिवार के कुछ सदस्य, जो अभी कुछ क्षण पहले हंसते बोलते थे, अचानक किसी छोटी सी बात पर क्रोधित हो उठे। बात बढ़े लगी और फिर वो एक दूसरे पर जोर जोर से चिल्लाए लगे। तट का सारा सन्नाटा और शांति जैसे टूट गई। सन्यासी ने ये दृश्य देखा और ठहर गया। उसने अपने शिष्यों की ओर मुड़कर कहा, क्या तुम बता सकते हो कि लोग अब क्रोधित होते हैं तो इतना जोर जोर से काहे चिल्लाते हैं? शिष्य कुछ देर सोच में पड़ गए, फिर एक ने सावधानी से उत्तर दिया, गुरुदेव, शायद इसलिए क्योंकि क्रोध में हमारी शांति खो जाती है। सन्यासी मुस्कुराया, परंतु उसने पुनः प्रश्न किया, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति खड़ा है तो उस पर चिल्लाकर काहे बात की जाए? वो तो बिना चिल्लाए भी सुन सकता है। इस बार शिष्य एक दूसरे को देखे लगे। कुछ ने उत्तर देना चाहा, लेकिन कोई भी उत्तर संतोषजनक नहीं रहा। वो और भी उलझ गए। सन्यासी ने तट की ओर देखा, कुछ कदम आगे चला, फिर शांत आवाज में बोला, जब दो लोग क्रोधित होते हैं तो उनके दिल एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। ये दूरी दिखाई नहीं देती, लेकिन दिलों के बीच एक मानसिक खाई पैदा हो जाती है। वो जितने अधिक क्रोधित होते जाते हैं, दिल उतने ही दूर होते जाते हैं। और जब दिल दूर होते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि सामने वाले को सुनाने के लिए उसे जोर से बोलना पड़ेगा, इसलिए क्रोध में मनुष्य चिल्लाता है। शिष्य ध्यान से सुन रहे थे, वो प्रत्येक शब्द अपने अंतर में उतार रहे थे। सन्यासी ने अपनी बात आगे बढ़ाई, अब सोचो, जब लोग प्रेम में होते हैं तो क्या वो चिल्लाते हैं? नहीं, वो धीरे धीरे बोलते हैं। कहे कि उस समय उनके दिल करीब होते हैं, उनके बीच कोई दूरी नहीं होती। कभी कभी तो वो बस फुसफुसा कर भी एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। और जब प्रेम अत्यधिक बढ़ जाता है, जब दो हृदय पूर्णतः एक हो जाते हैं, तब उन्हें बोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल एक दूसरे को देख कर ही वे सब कह देते हैं। कारण ये कि तब दिलों के बीच की दूरी शून्य हो जाती है। शिष्य मौन हो गए। उन्हें ये शिक्षा अत्यंत सुंदर, सरल और गहरी लगी। वो कुछ समझते हुए एक दूसरे की ओर देखने लगे, जैसे पहली बार उन्होंने दिलों की दूरी का अर्थ समझा हो। इस बीच तट पर चिल्ला रहा परिवार भी धीरे धीरे शांत हुई गवा। कुछ देर बाद वो लोग एक दूसरे से क्षमा मांगते नजर आए। शायद प्रकृति ने उनके लिए भी कोई संदेश भेज दिया था। सन्यासी ने जल में कदम रखते हुए कहा, जीवन में किसी से प्रेम, सम्मान और शांति बनाए रखने का आधार यही है कि दिलों के बीच दूरी न बनने पाए। जब भी क्रोध आए तो इस सोचो कि कहीं ये दूरी बढ़ तो नहीं रही, और यदि दूरी बढ़ने लगे तो तुरंत स्वयं को संभाल लेना चाहिए। काहे कि चिल्लाने से समस्या हल नहीं होती, केवल दिल और दूर हो जाते हैं। शिष्यों ने हाथ जोड़कर गुरु को नमन किया। आदि हेलो,
1: ओम शांति, गुड मॉर्निंग जी, दी, कैसे हो?
0: गुड मॉर्निंग भैया, एकदम ठीक हूँ, आप कैसे हो?

0: तो पूरा मौन में चला जाता था, नहीं तो किला में लग जाता था। पर अभी रेडियो मधुबन के प्रोग्राम सुनते सुनते दिल का प्यार बढ़ने लगा और शांत रहने लगा, क्रोध में भी।
1: क्या बात है।
0: और बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। और यदि आपको रेडियो मधुबन परिवार सभी छोटे भाई बहनों को राधे अष्टमी, राधा का जन्मदिन और गणपति बाप्पा मोरिया पुरचा वर्षी लौकरिया और सभी को बधाई शुभ भावना। ओम शांति
1: भैया। तो शिष्यों ने हाथ जोड़कर गुरु को नमन किया। आज उन्हें क्रोध का सबसे सरल और शानदार सिद्धांत समझ आया था। गंगा का पवित्र जल तट पर लहरें मार रहा था, मानो स्वयं भी कह रहा हो, जहां मन शांत वहीं जीवन सुगंधित। जब दिल करीब होते हैं आवाज धीमी हो जाती है, और जब दिल दूर होते हैं आवाज ऊंची हो जाती है। इसलिए जीवन में क्रोध से पहले दिलों की दूरी को समझो, क्योंकि रिश्तों को बचाने के लिए आवाज नहीं दिल की निकटता चाहिए। आप क्या समझते हैं? हम समझते हैं कि साधु संन्यासी अपने जीवन में जो जप तप करते हैं उसके अनुसार ही तो उनके जीवन में ऐसी सत्यता घटती है, और इस सत्यता हमारे लिए सही में जीवन में बहुत उपयोगी होती है। बीता हुआ समय सीख है, आने वाला समय नई संभावना, दोनों को गहराई से सोचे और जीवन में आगे कदम बढ़ाएं। जिंदगी में जो है उसकी कद्र करना सीखो, क्योंकि वक्त के पास हर चीज को याद बना देने की ताकत है। कल को कहेंगे वो फोटो टंगी है ना, वो हमारे दादाजी थे। अरे आज दादाजी है, तब तक तो उनका मान सम्मान कर लो। तो भाई वक्त के पास हर चीज को याद बना देने की ताकत है। जो स्वयं को जीत लेता है वो जीवन के हर चुनौती जीत सकता है। समय कभी किसी के लिए नहीं रोकता, इसलिए हर पल को संयम सत्य और आत्म कल्याण में लगाओ। परमात्मा का सच्चा प्यार उही महसूस कर सकता है जिसके दिल आईने की तरह साफ और हर प्रकार के छल कपट से दूर हो। हर अधूरी इच्छा दुख नहीं होती, हर अधूरी इच्छा दुख नहीं होती। कभी कभी वही हमें मिली हुई खुशियों की कीमत समझाती है। देखिए भाई बहन, छोटी छोटी बात है लेकिन जीवन में गौर करने लायक है। हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा छिपा होता है। शिकायत करने वाला कमी देखता है और शुक्रगुजार इंसान कृपा देखता है। मन शांत हो, विचार सकारात्मक हो और कर्म श्रेष्ठ हो तो जीवन अपने आप सुंदर बन जाता है। रिश्तों में मिठास बनाए रखने के लिए सुनना सीखिए, समझना सीखिए और सबसे बढ़कर छोड़ना सीखिए। क्या छोड़ना है? लेट गो, जाने दो। बात कोई बात हुई है, अहंकार लेके ना बैठो। दो चीजें कभी मत छोड़ना, उम्मीद और प्रयास। एक रास्ता दिखाती है का उम्मीद, और दूसरा मंजिल तक पहुंचाती है का प्रयास। तो ये दो बातें कभी छोड़िएगा नहीं जिंदगी से। कीचड़ का कारण भी जल है, कीचड़ का कारण भी जल है, कीचड़ का निवारण भी जल है। उही तरह मन को दूषित करने वाला भी मन है और मन को पवित्र करने वाला भी मन है। प्यार सम्मान और अपमान, प्यार सम्मान और अपमान तीनों एक प्रकार का निवेश है। जितना आप दूसरों को दीजिएगा आपको उससे कई गुना अधिक वापस मिलेगा। समझ गए तो? अरे भाई काहे नहीं समझेंगे, हमारे भाई बहन तो बहुत समझदार है और इतने सालों से रेडियो मधुबन से जुड़े हैं, तो कहीं ना कहीं तो बाबा की शिक्षा से और 24 घंटे अच्छी अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं तो बहुत समझदार हो गए। चलिए भाई ये बात पे एक गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बतियाएंगे। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पे, सुनते रहें मुस्कुराते रहें। सुनिएगा ये गीत बहन जी को, निनु

0: नासिका, जीना सीखा। रेडियो मधुबन की छोटी सी पाठशाला।
1: हमारी मन की क्वालिटी कैसी है, और अक्सर करके डॉक्टर्स कहते हैं मोर देन 85% डिजीजेस है वो साइकोसोमैटिक है, मन से आरंभ होता है। और अक्सर करके जो तनाव भी होता है इट इज देयर इन द माइंड। और अक्सर करके देखते हैं कि पेरेंट्स को अपने बच्चों के प्रति इतनी शुभ भावना होती है कि जब बच्चों का एग्जाम्स होता ना तो उस समय मम्मी डैडी का प्यार बच्चों के प्रति कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। और एग्जाम के दिन में मम्मी डैडी आकर कहेंगे बच्चा आज तेरा एग्जाम है तो है ना हॉर्लिक्स भी पी, बॉर्नविटा भी खा, ये भी कर वो भी कर, है ना, उसको बहुत जबरदस्ती खिलाएंगे। शरीर को तो हमने बहुत भोजन दिया, जरूरत है उसको मन को अच्छा भोजन देने के लिए। और मन का भोजन क्या है? विचार। मन का भोजन है विचार, बहुत पुराने विचार, बासी विचार। अगर उसको बार बार हम अपने मन में लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे मन जो है वो कमजोर हो जाता है, धीरे धीरे द माइंड विल ऑल्सो बिकम वीक। तो फ्रेंड्स इस बात को चेक करना है कि सारे दिन में हमने अपने मन में जो विचार आ रहे हैं उसके क्वालिटी कैसी है। देखिए सोचने की बात है, आज हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हम बहुत ध्यान रखते हैं कि मोबाइल को चार्ज करना है। और जिस दिन रात को सोए और मोबाइल चार्ज करना भूल गए तो रात के 2 बजे उठेंगे और उसको चार्ज करेंगे, क्योंकि हमको ये बात महसूस होती है कि अगर हमने मोबाइल को चार्ज नहीं किया तो शायद दूसरे दिन हमारा कम्युनिकेशन नहीं हो सकेगा। उसी तरह हमें अपने मन को भी अच्छे विचार से सुबह सुबह चार्ज करना बहुत बहुत जरूरी है।
2: एक कॉलेज का छात्र रहा, जेका नाम रहा रवि। हमेशा वो बहुत चुपचाप सा रहता रहा, किसी से ज्यादा बात नहीं करता रहा, इसलिए उका कोनो दोस्त भी नहीं रहा। वो हमेशा कुछ परेशान सा रहता था, पर लोग उस पर कोनो ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन वो क्लास में पढ़ रहा था, उसे गुमसुम बैठा देखकर अध्यापक महोदय उसके पास आए और क्लास के बाद मिलने को कहा। क्लास खत्म होते ही रवि अध्यापक महोदय के कमरे में पहुंचा। रवि मैं देखता हूँ कि तुम अक्सर बड़े गुमसुम और शांत बैठे रहते हो, न किसी से बात करते हो और ना ही किसी चीज में रुचि दिखाते हो, इसलिए इसका सीधा असर तुम्हारी पढ़ाई

0: आई पे भी साफ नजर आ रहा है, इसका क्या कारण है? अध्यापक महोदय ने पूछा। रवि बोला, मेरा भूतकाल का जीवन बहुत ही खराब रहा है। मेरी जिंदगी में कुछ बड़ी ही दुखदायी घटनाएं हुई हैं, मैं उन्हीं के बारे में सोचकर परेशान रहता हूँ और किसी चीज में ध्यान केंद्रित नहीं न कर पाता हूँ। अध्यापक महोदय ने ध्यान से रवि की बातें सुनी और मानी मन उसे फिर से सही रास्ते पर लाए का विचार करके रविवार को घर पे बुलाया। रवि निश्चित समय पर अध्यापक महोदय के घर पहुंच गवा। रवि का तुम नींबू शरबत पीना पसंद करोगे? अध्यापक ने पूछा। जी, रवि ने झिझकते हुए कहा। अध्यापक महोदय ने नींबू शरबत बनाते वक्त जानबूझकर नमक अधिक डाल दिया और चीनी की मात्रा कम ही रखी। शरबत का हेलो,
1: पालनपुर से सूरज भाई बोल रहा हूँ। ओम शांति।
0: ओम शांति सूरज भाई, कैसे हैं?
1: एकदम अच्छे। और आपने जो किया कि क्रोध क्रोध क्रोध में हमेशा को शांत रहना है, क्रोध भी चढ़े तो भी अपने को सामने वाले को अपने इसको अच्छा लगे ऐसा बर्ताव करना है,
0: चिल्ला के नहीं है। चिल्ला के नहीं बोलना है।
1: कैसा है कि बहन जी के बनी के चेहरे पर लाखों निशान होते हैं, जब बनी बन के बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं।
0: क्या बात है।
1: भले हजार होते लेकिन अपने को शांत रहना है और उसको सामने वाले को अच्छा लगे ऐसा अपने को बर्ताव करना है।
0: जी बिल्कुल सही बात।
1: सामने वाला भी वो समझ जाएगा नहीं भाई अपन गलत है।
0: हाँ, नहीं तो बात और बढ़ जाती है, हम जवाब देते हैं तो, और फिर हमारा सुर बोलने का वो भी ऊँचा होते जाता है।
1: जी
0: जी बहुत अच्छा।
1: ओम शांति। और सभी रेडियो मधुबन परिवार को आगे राधे छठ की राधे राधे अष्टम की शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और एक गणपति जी का एक गीत बोलता हूँ कि गणपति आयो बापा विभूति दिलायो, गजानंद आयो निधि दिलायो। जी
0: बहुत अच्छे बहुत अच्छे, थैंक यू भैया। तो सुना भाई, सभी भाई आज राधा जयंती की हम भी आप सबको को बहुत बहुत बधाई देते हैं। और गणपति बप्पा के दिन तो चल ही रहे हैं, सभी गणपति बप्पा के ये 10 दिन की जो उत्सव चल रही है उसकी भी दिल से बहुत बहुत बधाई आप सबको। तो हम सुना रहे थे कि रवि को उन्होंने शरबत दिया तो अध्यापक महोदय पूछे, क्या हुआ तुम्हें ये पसंद नहीं आया का? जी वो इसमें नमक थोड़ा अधिक पड़ गया है। रवि अपनी बात कह ही रहा था कि अध्यापक महोदय ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, ओहो कोनो बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ, अब ये कोनो काम का नहीं रहा। ऐसा कहकर अध्यापक महोदय गिलास उठा ही रहते कि रवि ने उन्हें रोकते हुए कहा, नमक थोड़ा सा अधिक हो गया है तो क्या, हम इसमें थोड़ी और चीनी मिला दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक रवि, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। इस स्थिति की तुम अपनी जिंदगी से तुलना करो। शरबत में नमक का ज्यादा होना जिंदगी में हमारे साथ हुए बुरे अनुभव की तरह है। और अब इस बात को समझो, शरबत का स्वाद ठीक करने के लिए हम उसमें से नमक नहीं निकाल सकते, इसी तरह हम अपने साथ हो चुकी दुखद घटनाओं को भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते। पर जिस तरह हम चीनी डालकर शरबत का स्वाद ठीक कर सकते हैं, उसी तरह पुरानी कड़वाहट और दुखों को मिटाए के लिए जिंदगी में भी अच्छे अनुभव की मिठास घोलनी पड़ती है। यदि तुम अपने अतीत का ही रोना रोते रहोगे तो ना तुम्हारा वर्तमान सही होगा और ना ही भविष्य उज्जवल हो पाएगा। अध्यापक महोदय जी ने अपनी बात पूरी की। रवि को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने मन ही मन एक बार फिर अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रण लिया। अक्सर बंद होते हुए दरवाजे की तरफ इतनी देर तक देखते रहते हैं कि हमें खुलते हुए अच्छे दरवाजों की भनक तक नहीं लगती और हमारा जीवन दुखों के सागर में ही डूबा रह जाता है। जरूरी है कि हम अपनी पुरानी गलतियों या फिर तकलीफों को भूलना सीखें और जिंदगी को फिर से नई दिशा की ओर मोड़ें। आशा करते हैं आप भी पुरानी बातों को भुलाकर कहीं ना कहीं जिंदगी में नई मिठास को खोलेंगे। बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले, जो हो गया सो हो गया, नए से शुरू करें। उसे तो नहीं मिटाया जा सकता, लेकिन अच्छी बातें सोचेंगे तो वो बुरी बातें या दुखी वाली बातें हल्की हो जाएगी। जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है, जब कुछ ना हो तो धैर्य की परीक्षा होती है और जब सब कुछ होता है तो व्यवहार की परीक्षा होती है। आपके पास कुछ नहीं, इंसान देखता है इसमें कितनी धैर्यता है, ये उबलता तो नहीं, खोलता तो नहीं, बिगड़ता तो नहीं। और जब आपके पास सब कुछ होता है तो इंसान देखता है इसके पास सब कुछ है लेकिन इसका व्यवहार कैसा है। ये दोनों परीक्षा होती है ऐसे वक्त में। रिश्ते जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं, रिश्ते जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं। जोड़ने से पहले दो बार सोचे और तोड़ने से पहले 100 बार। फिर से सुन लीजिएगा, रिश्ते जिंदगी में बड़ी अहमियत रखते हैं, जोड़ने से पहले दो बार सोचे और तोड़ने से पहले 100 बार। कहे कि एक बार टूट गया कच्चा धागा प्रेम का तो फिर वो नहीं जुड़ता, और मिलता भी है तो गठान पड़ जाती है। सुनाए है ना रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए, मिलेगा भी तो गांठ पड़ी होगी। हमारे पास का है ये महत्वपूर्ण नहीं ना है, लेकिन हमारे साथ कौन है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम तो कहते हैं भगवान जी से परमात्मा जी से ज़्यादा कौनो इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो परमात्मा को खुदा को अपना दोस्त बना लीजिए जिंदगी में, देखिएगा कदम कदम पे वो आपके साथ चलता है कि नहीं। जीवन में निरंतर नेक कार्य करते रहें, कोई आपका सम्मान करे या ना करे, आपकी अंतरात्मा सदा आपको सम्मानित करेगी। इससे बड़ा सुख जीवन में और कुछ नहीं है। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। देखिए भाई, आज शनिवार है, हनुमान बाबा का दिन है, तो हे अंजनी पुत्र, सुख देना तो इतना देना कि मन में अहंकार ना आ जाए, दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। कई बार दुख में इंसान परमात्मा को भूल जाता है, इसलिए ऐसी प्रार्थना करें। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचिए, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है कि नहीं। इस दुनिया में सबसे बड़ा टैलेंट है अपने आप को शांत रखना किसी भी परिस्थिति में। हेलो,
2: हाँ दीदी, आपका राठौड़ परिवार का प्रोग्राम का एक खेल किशन भाई का याद आ गया।
0: अच्छा,
2: रिश्तों की पंखुड़ियाँ,
0: रिश्तों की पंखुड़ियाँ
2: खूबसूरत होती है
0: जी।
2: एक साथ मिल गए तो सुंदर फूल बन जाता है, जो नीचे से सारा और ऊपर से उजाला देता है
0: जी।
2: धन्यवाद दीदी, नमस्कार।
0: नमस्कार भैया, नमस्कार, थैंक यू। चलिए भाई, ये बात है, गीत सुन लेते हैं, उसके बाद फिर आपसे बतियाएंगे। बहन जी ने कहा गीतवा

0: आप सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन।
1: कृपया प्लेटफॉर्म पर साफ सफाई रखें, कचरा कचरे के डिब्बे में ही डालें व स्टेशन परिसर को साफ सुथरा रखने में रेलवे को मदद करें। धन्यवाद।
0: रेडियो मधुबन द्वारा जनहित में जारी, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
2: इंसान उसी पर गुस्सा करता है, लड़ता है, टोकता है और रोकता है जिसे वो प्यार करता है। वरना इस मतलबी दुनिया में आप सही करते हो या गलत, किसी को क्या फर्क पड़ता है। बच्चों को सिर्फ सुख नहीं, संस्कार की विरासत भी दें। बड़ों का दिया हुआ आशीर्वाद और अपनों की दी हुई शुभकामनाओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन जब ये रंग लाते हैं तो जीवन में रंग भर जाते हैं। संस्कार भी एक वसीयत है जो दुनिया को बताती है कि हमारे पूर्वजों ने हमें का दिया है। मौत के बाद स्वर्ग मिलेगा इस उम्मीद से इंसान पूरी जिंदगी बहुत प्रयास करता है। कोई उपवास करता है, कोई दान धर्म करता है, कोई तीर्थ यात्रा करता है, तो कुछ लोग भगवान से मन्नतें मांगते हैं। स्वर्ग जैसे कोई नई हाउसिंग सोसाइटी जैसा लगता है, जहां एक छोटा सा फ्लैट पाने के लिए पुण्य के अंक पॉइंट्स जमा करने पड़ते हैं। लेकिन एक पल ठहर कर ये भी तो सोच लीजिए, का पता शायद हम पहले से ही स्वर्ग में जी रहे हों। सुबह उठते ही एक बार अपने आसपास ध्यान दीजिए, एक बटन दबाओ तो अंधेरा रोशनी में बदल जाता है, दूसरा बटन दबाओ तो पंखा घूमने लगता है, तीसरा बटन दबाओ तो ठंडी हवा पूरे कमरे में भर जाती है, नल खोलो तो पानी बहने लगता है, गैस जलाओ तो कुछ ही मिनटों में खाना तैयार, जेब से मोबाइल निकालो तो पूरी दुनिया आपकी हथेली में आ जाती है, हजारों किलोमीटर दूर रहे वाले आपके प्रिय लोग भी कुछ ही सेकंड में आपके सामने दिखाई देते हैं। इतनी सारी अद्भुत सुविधाएं, लेकिन हम इसे बहुत सामान्य समझते हैं। हम ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे ये सब हमारा जन्मसिद्ध अधिकार हो। अरे भाई, एक बार कल्पना कीजिए, 200 साल पहले का कोई राजा आज आपके घर आए तो शायद वो अपने राजमहल में वापस भी ना जाना चाहे। वो आश्चर्य से पूछेगा, एका गर्म पानी और एका ठंडी हवा, एका है पूरी दुनिया की जानकारी, एका 10 मिनट में घर आने वाला खाना। तब वो हंसकर कहेगा, मैंने पूरी जिंदगी राज किया, युद्ध जीते, बेहिसाब संपत्ति हासिल की, लेकिन ऐसी सुविधाएं मुझे कभी नहीं मिली। ये बिल्कुल सच है। आज एक आम इंसान भी कई सुविधाओं के मामले में पुराने जमाने के सबसे शक्तिशाली राजाओं से भी ज्यादा अमीर है। फिर भी हम खुश नहीं है, क्यों? क्योंकि इंसान को जो मिल जाता है उसकी कीमत धीरे धीरे कम हो जाती है। एसी चालू है, आनंद नहीं है, बंद होता है तभी तकलीफ होती है, मोबाइल है आनंद नहीं है, नेटवर्क चला जाए तो लगता है दुनिया ही खत्म हो गई, अपना घर है संतोष नहीं है, पड़ोसी का घर बड़ा है इसका दुख है, अपनी गाड़ी है तृप्ति नहीं है, दूसरे की गाड़ी बड़ी है उसकी चिंता है। यानी इंसान अपने स्वर्ग में खड़ा होकर दूसरे के स्वर्ग से अपनी तुलना करके दुखी होता है। लेकिन इसी पृथ्वी पर एक दूसरी दुनिया भी है। आज भी लाखों लोग एक घड़े पानी के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं। लाखों परिवारों के पास पक्का मकान तक नहीं है। दिन में दो वक्त का खाना भी तय नहीं है। बच्चों के सपने स्कूल की चौखट तक पहुंचने से पहले ही टूट जाते हैं। शरीर ढकने के लिए ठीक से कपड़े भी नहीं हैं। हम जिसे सामान्य समझते हैं वे सुविधाएं ही दूसरों के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। हमें एसी का रिमोट न मिले तो गुस्सा आता है। उन्हें धूप से बचने के लिए पेड़ की छांव तक नहीं मिलती। हम डाइट चार्ट ढूंढते हैं, वे लोग अगले वक्त का खाना कैसे मिलेगा ये सोचते सोचते सो जाते हैं। तब समझ आता है स्वर्ग और नर्क मौत के बाद मिलने वाली जगह नहीं है, वे यही हैं, इसी पृथ्वी पर, इसी शहर में, इसी सड़क पर। कभी कभी एक ही दीवार की दो तरफ। एक घर का बच्चा अपना नया मोबाइल थोड़ा स्लो होने पर चिड़चिड़ाता है। सामने के घर का बच्चा ऑनलाइन पढ़ने के लिए मोबाइल ना होने पर रोता है। एक आदमी गर्म पानी 5 मिनट देर से आने पर शिकायत करता है। दूसरा आदमी आज पानी मिल गया बस यही काफी है कहकर ईश्वर से प्रार्थना करता है। फर्क सिर्फ परिस्थिति में नहीं है, फर्क दृष्टिकोण में भी है। कुछ लोग खराब परिस्थिति में भी मुस्कुराना सीख गए हैं तो कुछ लोग तमाम सुविधाएं होने के बावजूद शिकायतों से बाहर नहीं निकल पाते। इंसान की सबसे अजीब आदत ये है कि उसके पास जो नहीं है उसका हिसाब वो रोज करता है, लेकिन उसके पास जो है उसका हिसाब वो कभी नहीं करता। हर रात सोने से पहले बस 5 बातें लिखकर देखिए। पहला, आज मैं सांस ले रहा हूँ, आज मैं सांस ले रहा हूँ। दूसरा, आज मेरे पास पीने के लिए पानी है। तीसरा, आज मुझे खाना मिला। चौथा, आज मेरे पास रहने के लिए एक घर है। पांचवा, आज मेरे अपने मेरे साथ हैं। शायद हमारी जिंदगी ही बदल जाएगी। शायद स्वर्ग कोई जगह नहीं है, वो एक अनुभव है। वैसे नरक भी कोई जगह नहीं है, उस अनुभव को भूल जाना ही नरक है। हमारे पास जो है उसके लिए कृतज्ञ होना ही स्वर्ग है। जो मिला है उसे भूलकर शिकायतों में जीना ही नरक है। मौत के बाद क्या होता है ये कोई पक्के तौर पर नहीं जानता, लेकिन जीते जी हमें ये सुंदर पृथ्वी, सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी, खाने के लिए अन्न, प्यार करने वाले हमारे लोग और एक बटन दबाने से मिलने वाली अनगिनत सुविधाएं मिली हैं। इतना सब होने के बावजूद अगर हम हमेशा दुखी रहें तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और का होगा। शायद ईश्वर भी हंसकर कहता होगा, मैंने तुझे स्वर्ग में ही रखा है लेकिन तू वहां भी शिकायतों का दफ्तर ही खोल कर बैठा है। इसलिए आज से शिकायतें मत कीजिए, कृतज्ञता गिनिए, क्योंकि कृतज्ञता वाले दिल में ही सच्चा स्वर्ग होता है। देखिए भाई, सारा कुछ खेल हमारे सोच का है। अगर सोचे तो इन गहरी बातों को सही में, इसमें बहुत बहुत यह है। हम खुद जब इन बातों को पढ़ रहे थे तो हम कहा कि सही, जिस किसी ने लिखा उसको 1000 से लूट करते हैं कि सही में आज हमारा जीवन स्वर्ग है। 200 साल पहले बैलगाड़ियों में चलते थे, कुछ मील जाने के लिए कितने दिन लगते थे, आज हजारों किलोमीटर 2 घंटा में हवाई जहाज में पहुंच जाते हैं। और सब चीज साइंस ने कितनी सुखमय कर दी है कि शायद स्वर्ग में भी इतना सुख होगा कि नहीं, अभी ये कम है स्वर्ग से। लेकिन इंसान जो मिल जाता है उसकी वैल्यू नहीं करता है, कीमत नहीं करता है, जो चीज नहीं है उसके पीछे भागते रहता है, दौड़ते रहता है। ईश्वर का शुक्रिया करने के लिए 10 नायाब कारण, 10 कारणों से उस परमात्मा का धन्यवाद कीजिए। पैर चलने पर घिसते हैं, लेकिन पैर के तलवे जीवन भर दौड़ने के बाद भी नए जैसे रहते हैं। इसके लिए क्या करिए, परमात्मा जी को शुक्रिया अदा करिए। दूसरी बात, शरीर में 75% ये जो शरीर है हमारा 75% पानी से बना है, 75% पानी शरीर में है। फिर भी लाखों रोम कूपों के बावजूद एक बूंद भी लीक नहीं होता। कितने लाखों हमारे शरीर में छेद है, लेकिन वो पानी एक बूंद भी कहीं से नहीं टपकता। इसके लिए क्या करिए, परमात्मा जी का शुक्रिया अदा करिए। तीसरा, कोई भी वस्तु बिना सहारे नहीं खड़ी रह सकती, लेकिन ये शरीर खुद को संतुलित रखता है। इसके लिए परमात्मा जी को शुक्रिया अदा कीजिए। चौथा, कोई बैटरी बिना चार्जिंग के नहीं चलती, लेकिन हृदय जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना रुके धड़कता है। इसलिए परमात्मा जी का शुक्रिया अदा कीजिए। हेलो,
3: हाँ नमस्ते दीदी, सरद भाई बोलता हूँ, बताना कैसे हो दीदी?
2: एकदम ठीक है, आप कैसे हैं?
3: सब अच्छे हैं, आप भी अच्छे होंगे और हमारे सभी साथी मित्र भी सब अच्छे होंगे
2: जी।
3: और बहुत अच्छी बात बताई दीदी कि हम देखो इतने साल भी हम चलते फिरते रहते, कई सारे हमारे जूते घिस गए हैं, टूट गए हैं, घिस गए हैं
2: जी।
3: क्योंकि हमारा जो पैर है, हाथ है, वही ना वही पे। तो इतनी परमात्मा की कितनी कृपा है, फिर भी हम परमात्मा को याद नहीं करते, परमात्मा का धन्यवाद नहीं मानते। जैसे आपने बताया कि हमारे शरीर में कितना ही पानी है, पानी ही पानी भरा है, लेकिन एक टिंपो भी बाहर नहीं आता
2: जी।
3: तो ये भी तो परमात्मा की कृपा है दीदी। तो बस हम इतनी सुविधा है, फिर भी हम तो जिसका है इसकी कदर नहीं करते और
2: जो नहीं है उसके पीछे दौड़ते हैं,
3: भाग रहे हैं। कितनी सुविधा है आज हमारे, जैसे आपने कई सारी बातें बताई, हजारों किलोमीटर दूर है फिर भी हम अभी सामने देख पाते हैं
2: जी,
3: और बात भी कर सकते हैं।
2: बिल्कुल,
3: कहीं जाना है तो हम 1 घंटे में कहीं हजारों किलोमीटर दूर चले जाते हैं।
2: अरे ज्यादा तो साल नहीं, 30-40 साल पहले ये मोबाइल नहीं निकला था तो टेलीग्राम आता था, तार आता था, कोई भी बात में हमारे सामने ही सामने की बात है।
3: बिल्कुल सही बात है, हमारे तो बताता था जब पोस्ट कार्ड आता था, दो टपाल तार में आते थे, तो 8 दिन के बाद
2: पूरा गांव घबरा जाता था,
3: जवाब मिलता था
2: कि तार आना मतलब किसी की डेथ हुई, ये ज्यादा समझते थे।
3: हाँ, समझते थे। तो ये इतनी सुविधा आज आ गई है कि हम 1 सेकंड में यहाँ हम समाचार देख लेते हैं, सामने वाले को भी देख लेते हैं
2: जी।
3: तो परमात्मा का शुक्रिया,
2: शुक्रिया, हम स्वर्ग में रह रहे हैं अभी।
3: नमस्ते,
2: ओम शांति। थैंक यू भैया। तो देखिए भाई, आज हमारे सभी भाई बहन सुन भी रहे हैं और फुनवा भी करके बता रहे हैं, बहुत खुशी होती है। इसलिए तो और नई नई बात सोचते हैं, ढूंढ ढूंढ के लाएं और वो बात हम आपस में शेयर करें। तो कोई भी वस्तु बिना सहारे नहीं खड़ी रह सकती, लेकिन ये शरीर खुद को संतुलित रखता है। ईवी के लिए परमात्मा का धन्यवाद अदा करें। कोई बैटरी बिना चार्जिंग के नहीं चलती, लेकिन हृदय जन्म से लेकर मृत्यु तक बिना रुके धड़कता है। इसके लिए परमात्मा जी का धन्यवाद अदा करें। कोई पंप हमेशा नहीं चल सकता, लेकिन रक्त पूरे जीवन भर बिना रुके शरीर में बहता रहता है। इसके लिए परमात्मा जी का शुक्रिया अदा करें। छठवीं बात, दुनिया के सबसे महंगे कैमरे भी सीमित हैं, लेकिन आंखें हजारों मेगापिक्सल की गुणवत्ता से हर दृश्य कैद कर सकती है। इसके लिए परमात्मा जी का धन्यवाद अदा करिए। कोई लैब हर स्वाद टेस्ट नहीं कर सकती, लेकिन जीभ बिना किसी उपकरण के हजारों स्वाद पहचान सकती है। इसके लिए भी परमात्मा जी का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद अदा करें। आठवीं बात, सबसे एडवांस सेंसर भी सीमित होते हैं, लेकिन त्वचा हर हल्की से हल्की संवेदना को महसूस कर सकती है। वो परमात्मा जी का धन्यवाद अदा कीजिए। कोई भी यंत्र हर ध्वनि नहीं निकाल सकता, लेकिन कंठ से हजारों फ्रिक्वेंसी की आवाजें पैदा हो सकती है। इसके लिए भी परमात्मा का शुक्रिया अदा करें, धन्यवाद अदा करें। कोई डिवाइस पूरी तरह ध्वनियों को डिकोड नहीं कर सकती, लेकिन कान हर ध्वनि को समझकर अर्थ निकाल लेते हैं। इसके लिए भी उस ईश्वर का शुक्रिया अदा करें। ईश्वर ने हमें जो अमूल्य वस्तुएं दी हैं, उनके लिए उसका आभार मानिए और उससे शिकायत करने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हर रोज सुबह हमारा जागना अपने आप में एक चमत्कार है, इसलिए उस सर्वशक्तिवान ईश्वर का धन्यवाद करें। ये तो कुछ बातें, 10 बातें हम सुनाए, लेकिन अगर गिनिएगा तो हजारों बातें ऐसी होगी जिसके लिए हमें परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? फिर वही बात, जो चीज़ मिल गई उसकी वैल्यू नहीं, जो चीज़ नहीं है उसके लिए भागते रहते हैं। जब कुछ ना हो तो हमने कहा धैर्य की परीक्षा होती है, जब सब कुछ होता है तो व्यवहार की परीक्षा होती है। जिंदगी में इन बातों को अपनाइए और जीवन को सुखमय बनाए। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरे के लिए और करुणा सबके लिए, यही जीवन का व्याकरण है। आशा करते हैं आप इन सब बातों पे सुन तो रहे हैं, और हम तो जानते हैं बहुत सारे भाई बहन लोग तो फिर हमको सुनाते भी हैं, काहे कि उनको याद रहता, फिर वो दूसरों को सुनाते हैं, तो ऐसे ही तो अच्छी अच्छी बातें दूसरों तक पहुंचती है। और ये तो हम सोच कर तो आपको हम सुनाते हैं कि ये बात आप याद कर लें और दूसरों को भी शेयर करें, जिन्होंने ये प्रोग्राम नहीं सुना हो तो उनका भी भला हो जाए। ये अच्छी खाना देंगे तो एक टाइम पेट भर जाएगा, लेकिन अच्छी बात देंगे तो ज़िंदगी सुधर जाएगी। इसलिए जितनी अच्छी अच्छी बात कर सकते उतनी अच्छी अच्छी बात कर ले, अच्छी बात किसी को सुना दें ताकि उनके जीवन में कोई चेंज आ जाए, और वही चेंज तो इंसान को आगे बढ़ाता। तो भाई टाइम हो गया है और घड़ी कह रही परमा पंडितान अपनी कथा को अभी यहीं पर विराम दो, तो कल 11 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।

0: नमस्ते, राम राम और ओम शांति। मेरा नाम पवित्र मल्लिक और आप सुन रहे हैं प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय का सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल, यानी हरो गांव हरो अंचल। सही में अपना गांव और अपना अंचल नाम जब सुनते हैं, जिस गांव और अंचल में पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे, उस गांव को हम कभी नहीं भूल पाते जहाँ भी रहे, लेकिन अपनापन आता है क्योंकि उसमें पले बड़े और यहाँ तक पहुंचे। वो खेत खलिहान, वो दोस्ती यारी, वो पढ़ाई और सभी का जो प्यार, बचपन का दिन याद आता है गांव का नाम सुनते। कहते हैं गांव स्वर्ग जैसे, हेवन जैसे लगता है, अपने बेटे मत अपना जन्म स्थान स्वर्ग जैसे लगता है। तो इस कार्यक्रम को सजाने के लिए जब हम गांव और अंचल में जाते हैं, ढाणी ढाणी जाते हैं, सभी से मिलते हैं, सभी वर्ग से हम परिचित कराते हैं और उनका गतिविधि को सब तक पहुँचाने के लिए एक मंच, एक स्टेज देता है रेडियो मधुबन। इस मंच का माध्यम से अपना जो फायदा, जो भी गतिविधि, चाहे समस्या हो चाहे समाधान हो, समाधान स्वरूप बनते, कभी कभी समस्या स्वरूप भी बन जाते हैं। तो इस तरह कार्यक्रम को लेकर जब गांव और अंचल में जाते हैं, हमें बहुत खुशी होता है क्योंकि सभी का बढ़ चढ़ हिस्सा लेते हैं, क्योंकि सामुदायिक रेडियो समुदाय के लिए, सामुदायिक द्वारा और समुदाय के हित में प्रस्तुत करते हैं। तो आज बहुत खुशी का दिन है क्योंकि आज रेडियो मधुबन गाँव वासियों के साथ और इस कार्यक्रम को सजाने के लिए, गांववासियों को खासकर किसान भाइयों लाभ पहुंचाने के लिए सरकार का जो मंशा है, जो लाभ देते हैं, उसका तहत आज आपका पास रूबरू कराएंगे स्पेशलिस्ट जो कि कृषि विभाग से जुड़े हुए हैं। तो उनका इंट्रोडक्शन, उनका परिचय लेंगे और आज हमारा इस कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएंगे। बखूब में बहुत सारा जानकारी आपको मिलेगा। मैं तो कहूँगा ध्यान से हमारा किसान मित्र सुने और इससे बहुत कुछ फायदा मिलेगा। तो पहले उनका परिचय लेंगे, उनका सक्सेस स्टोरी, यहाँ तक कैसे पहुँचे और उनका पोस्ट क्या है और क्या करते हैं कितने दिन से, और इसका श्रेय किसको देना चाहते, किसका बदौलत यहाँ पर पहुँचे। कृषि विभाग से जो महान अनुभवी एक्सपर्ट हैं, तो उन कार्यक्रम को सजाने के लिए उपस्थित है, उनको स्वागत करते हैं ग्रामवासियों की तरफ से, सभी अधिकारियों की तरफ से आपका परिचय।
1: थैंक यू सर। सर मेरा नाम राकेश कुमार गरासिया है और मैं पिनवाड़ा तहसील के आमली गांव का रहने वाला हूं और मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो पिनवाड़ा से ही हुई है, जी सर, 12th तक। और उसके बाद मैंने एक एग्ज़ाम होता है एग्रीकल्चर में, BSc करने के लिए जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट JET एग्ज़ाम होता है, उसके माध्यम से है जो अपने BSc में अपने एडमिशन होता है। तो वो उस टाइम जब मैं 12th में था, जब तक मुझे पता नहीं था कि ऐसे कोई, 11th में था जब पता नहीं था कि कोई जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट भी कुछ होता है। तो गाँव में ऐसे खेलते खेलते थे, तो उन्होंने बताया कि भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ले लो 10th पास करने के बाद। तो वो ले ली, भाई एग्रीकल्चर सब्जेक्ट अच्छा है, खेती में इंटरेस्ट है, घर पे भी खेती करते हैं, तो मैंने ले ली। फिर 11th पढ़ ली और फिर कहा कि भाई आप BSc करोगे तो उसके लिए आपको टेस्ट देना पड़ेगा, डायरेक्ट एडमिशन आपसे आपका नहीं होगा। तो फिर मैंने 11th में थोड़ा JET के बारे में पता किया और 12th में थोड़ी बहुत तैयारी करी और फिर मैं उदयपुर जो है मेरा सेंटर आया था JET का और वहाँ मैंने एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मेरे ऑल राजस्थान में ST कैटेगरी में 9th रैंक मेरे को हासिल हुई थी उस टाइम, और मेरे को राजस्थान की टॉप मोस्ट कॉलेज, राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर मेरे को अलॉट हुई थी, और मेरी जो BSc है वो राजस्थान कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर उदयपुर से हुई है। और उसके उपरांत मेरे फादर टीचर थे, जो फिर 2013 में निधन हो गया था उनका 13 में, तो उसके बाद 2014 में उनकी जगह में अनुकंपा नियुक्ति में पंचायत समिति पिंडवाड़ा में LDC के पद पे, मतलब अनुकंपा नियुक्ति में लगा था। और उसके बाद भी मैं निरंतर पढ़ाई चालू ही थी मेरी, BSc तो कंप्लीट हो चुकी थी मेरी, तो रेगुलर स्टडी चालू ही थी। उसके बाद मैंने सहायक कृषि अधिकारी 2015 वाला एग्ज़ाम दिया था, उसमें मैं एग्ज़ाम हाइड भी गया था, इंटरव्यू में कुछ नंबर से रह गया था लेकिन उसमें नहीं हुआ है। उसके बाद जस्ट कृषि विभाग की कृषि पर्यवेक्षक भर्ती 2018 आई थी, उसमें मैंने फॉर्म भरा और उसके बाद मेरा चयन हो गया। जो चयन होने के बाद मेरे को जो है आबरोड पंचायत समिति का जो आवल क्षेत्र है वहाँ पे मेरे को जो है कृषि पर्यवेक्षक पद के रूप में मेरे को जो है यहाँ पे पोस्टिंग मिली है।
0: कब तक, कौन सा ईयर में पोस्टिंग, पहला पोस्टिंग?
1: पहला पोस्टिंग सर 2014 से लेके 2020 तक मैं जो पंचायत समिति में रहा और 2020 में मैंने ज्वाइन किया यहाँ पे कृषि विभाग में, और अभी भी सर निरंतर मैं आगे उच्च पद के लिए तैयारी जारी है सर मेरी।
0: तो राकेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस तरह मेहनत करके, पढ़ाई और लगन, एक का आदिवासी जो गरासिया जाति से आप उभर कर आए हैं, ये कम बात नहीं है, क्योंकि आपका समाज के लिए आप एक उदाहरण एग्जाम्पल बन रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई लिखाई बहुत कम करते हैं और उन लोग का जो आर्थिक स्तंभ बहुत कम होने के नाते पढ़ाई में इतना ध्यान नहीं देते, और बच्चों का भले आर्थिक रहेगा तब भी बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, क्योंकि संघ दोष में उनका जो रीति रिवाज संस्कृति को फॉलो करते हैं, कम समय में शादी कर देना और ड्रॉप आउट हो जाना, ये इसका मुख्य कारण होता है जिसका चलते बच्चे आगे नहीं आ पाए। कोई कोई बच्चे आ निकले, इस तरह कुछ बच्चे अभी होशियार होकर निकल रहे हैं, लेकिन ये अंचल के लिए और खासकर आपका जो समाज से समाज के लिए प्रेरणा गई, आप बने एक मोटिवेशनल स्पीकर जैसे, आपका जो ज्वलंत एग्जाम्पल है इससे हमारा जो श्रोता मित्र खासकर यूथ जो पढ़ाई करने के बाद क्या करेंगे इसे सोच रहे हैं, तो आपका जो प्रेरणा दे सक्सेस स्टोरी का जो आप बताए इससे जरूर फायदा ले, ये हमारा भावना है। सर जैसे आप पढ़ाई का समय में कितने घंटा मेहनत करते थे और क्या प्रिपरेशन करते हैं और आपका फोकस क्या रहता है, वो चीज के बारे में थोड़ा बताएं सर, इससे जो बच्चे आना चाहेंगे उनको भी प्रेरणा मिले।
1: सर ये पढ़ाई के मामले में सर देखा जाए तो अधिकतर जो ट्राइबल क्षेत्र के जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, वो यूँ सोचते हैं कि हमें सर समय नहीं मिलता या हमें फैसिलिटी नहीं मिलती है। एक्चुअल में ये गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि वो पढ़ते ही नहीं है। सही बात तो है, वो पढ़ते ही नहीं है। अगर अपने पास किताब है, भले एक किताब भी हो, तो उसको ढंग से अगर पढ़ा जाए ना तो आराम से पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के लिए क्या है कि हमारे समाज में क्या लड़के ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं, और वो बस यूँ जब कोई एग्ज़ाम होता है उसके 15-20 दिन पहले शुरुआत करते हैं, वैसा नहीं करना चाहिए। जैसे अपन को टारगेट लेके चलना पड़ेगा, साल भर 6 महीने का टारगेट, उस टारगेट को पूरा करने के लिए अपन को एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि भाई मेरे को इतने घंटे पढ़ना है तो पढ़ना ही है। तो मैं सर क्या करता था कि बिल्कुल एकांत जगह गाय चराने चला जाता था, गाय चराने जाता था, वहाँ बिल्कुल जंगल में एकांत जैसा था, किताब लेके जाता था, जिस दिन छुट्टी होती यूँ तो फिर बढ़िया आराम से पढ़ता था, शांति से छुट्टी होती थी उस दिन। और ऑफिस वर्क में 2014 के बीच ऑफिस वर्क में दिन में तो पढ़ाई सर नहीं हो पाती थी, रात के टाइम में 2-3 घंटे सर निकाल लेता, 2-3 घंटे कभी कभी 4-5 घंटे, कभी कभी पूरी नाइट भी निकाल लेता था। शुक्रवार का दिन होता था, शनिवार को छुट्टी होती थी, तो फिर वो पूरा नाइट उसमें जी गुजरता था।
0: ये हो गया मेहनत और जिसका चल रहा है जी सर। ठीक सर, तो हाँ जी, तो जैसे आपने बताया अपने समाज को देखेंगे और आप जो अनुभव किए हैं और उस तरह सिचुएशन से, उस तरह जो क्लाइमेट है, उस तरह जो परिस्थिति आता है, उसी परिस्थिति से आप निकल कर अपना स्वास्थ्य नीति को बजाय रखें और कैसे हम पढ़ाई करके और कहाँ पर करेंगे और जिससे हमारा फायदा होगा, वो चीज को देखें। उस संघ में नहीं गए, संघ दोष में जाने से खराब हो जाते हैं, लेकिन आपको संघ भी अच्छा मिला और एकांत प्रिय भी होते थे और पढ़ाई को लगन से करते थे, दृढ़ता ले ली, ये ठान लीजिए मुझे कुछ करना है और सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन हम नहीं ले पा रहे, ये तो हमारा गलती है। इतना सुविधा है SC ST के लिए, रिजर्वेशन का कोटा, उनको छात्रवृत्ति, पढ़ाई में बहुत सुविधा मिलता है, फिर भी हम उसका फायदा तो नहीं ले पाएंगे, तो हमारा ही कमी रहेंगे। तो इस कार्यक्रम को जिसे आपने सजाया और आपने सक्सेस स्टोरी किस तरह पहुँचा, क्या मेहनत किया, क्या उतार चढ़ाव आया, जैसे आपने बताया मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना आज AA कौन सा पोस्ट में है
1: सर? मैं भी कृषि पर्यवेक्षक हूँ, लेकिन अतिरिक्त चार्ज मेरे को AA का दे रखा है मूंगथला का, लेकिन कृषि पर्यवेक्षक हूँ मैं।
0: जी जी, और कृषि पर्यवेक्षक में आप रह रहे हैं और फिर भी इतना मान सम्मान नहीं देखते, अपना कर्म को भगवान को जो मानते हैं और इष्ट को मानते आप करते हैं, बहुत अच्छा लगा। तो सर ये जो आज इस मंच का माध्यम से जो हमारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, पढ़ाई का बात क्या करेंगे सोच रहे, तो उनके लिए आपका क्या की मैसेज होगा, क्या आपको जैसे आपने बताया मैं ऐसे करता था और ऐसे पाया है, तो जो बच्चे सुन रहे हैं
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो उनके लिए आपका क्या की मैसेज होगा वो स्टूडेंट के लिए?
1: सर मेरा की मैसेज यही होगा कि किसी भी सब्जेक्ट से आप हो भले, लेकिन आपको टारगेट तो बनाना ही पड़ेगा, किसी भी एग्जाम को फाइट करना है तो 5-6 महीने की तैयारी तो कम से कम चाहिए, भले छोटे से छोटे जॉब हो 5-6 महीने की तैयारी चाहिए, उससे ज़्यादा अपन कर सकते हैं तो वो अच्छी बात है, तो दिन का कम से कम ज़्यादा नहीं तो 4-5 घंटे तो निकालने चाहिए, 4-5 घंटे तो आपको तैयारी करनी होगी, तब जाके आजकल कंपटीशन हर जगह टाइट हो गया है, PSB क्षेत्र में भी कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि 2018 में ये और PSB क्षेत्र में दूसरे गाँव भी जुड़े हैं, तो अब और PSP में भी कंपटीशन बढ़ रहा है, इसलिए उनको कम से कम 5-6 घंटे तो डेली स्टडी करनी जरूरी है और 5-6 महीने का टारगेट जरूरी है।
0: सर इसके लिए आर्थिक संबल कुछ बैकग्राउंड में उसको सपोर्टिंग करता है, आर्थिक जिसका परिस्थिति बहुत कम है क्या वो अचीव कर सकता है?
1: बिल्कुल सर, वो भी कर सकता है, अगर चाहे तो कर सकता है, क्योंकि इसमें किताबें तो हर किसी के पास आजकल मिल जाती है, ज्यादा महंगी कोई हाथी है नहीं किताबें, और एक दो किताबें खरीद लेता है तो भी दो तीन किताबों से वो फाइट कर सकता है। अब जैसे छोटे लेवल की तैयारी करनी है तो जैसे अब एनसीईआरटी की पुस्तकें हैं, जैसे छठी से लेकर बारहवीं तक की पुस्तकें हैं, ये छोटे एग्जाम में सीधे इसमें से क्वेश्चन आता है, ये इन किताबों को खरीदने जाने की जरूरत ही नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में आप लाइब्रेरी है, वहाँ से आप जहाँ पढ़े हैं वहाँ से टीचर से रिक्वेस्ट करके उनकी अच्छी तरह पूरा एक एक लाइन लाइन मतलब पढ़नी जरूरी है, तब जाके वो उसका बेसिक तैयार होता है। क्योंकि जब पहले अपन पढ़ते थे छठी सातवीं जब उतना नॉलेज नहीं था, बस ऐसे ही पास हो गए और चलो, अब वो चीजें बहुत काम की है, वो चीजें इतनी काम की है, और एग्जाम में क्वेश्चन वहीं से आते हैं, छठी से लेके बारहवीं तक की पुस्तकों में से हर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में सीधे के सीधे क्वेश्चन आते हैं,
0: मुझे तो मालूम नहीं था, लेकिन आप अच्छा के बता दिए।
1: और मैं सबसे ज्यादा मैं भी खुद एनसीईआरटी की बुक पढ़ता हूँ, छठी से लेकर बारहवीं तक की भी पढ़ता हूँ, बाकी हाँ उससे आता है, बाकी कोचिंग वोचिंग तो ठीक है नॉलेज के लिए कैसे क्या कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, बाकी वो पुस्तकें अगर आप पढ़ते हो आप तो उससे मतलब बहुत अच्छा आपका बैकअप तैयार हो जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम को फाइट करने के लिए, मतलब आपको
0: तकलीफ नहीं हो,
1: कोई तकलीफ नहीं होगी।
0: तो सभी हमारा जो टैलेंट बच्चे जो सुन रहे हैं और जो क्या करेंगे आगे के लिए, उनका फ्यूचर क्या है, कौन गाइड करेगा, लेकिन रेडियो मधुबन गाइड करने के लिए इस तरह एक्सपर्ट को रखते हैं और अनुभवी को रखते हैं जिसका फायदा लेना चाहिए इस मंच के माध्यम से, जो भी श्रोता सुन रहे और अभिभावक सुन रहे होंगे, माता पिता भी सुन रहे होंगे, बच्चे तो सुन रहे लेकिन अभिभावक सुनने के बाद उनके बच्चों को ऐसे तैयारी करिए, उनको ऐसे सपोर्टिंग करिए, तो उनको समझाइए, क्योंकि माता पिता समझदार होते हैं, अभिभावक समझदार होते हैं, तो उनका बच्चों को उनका जो छोटे छोटे जो उनका डिपेंड करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उनको थोड़ा सलाह देकर छाता मैसेज उन तक पहुँचाएंगे तो जरूर लग जाएगा किसी न किसी रूप में, लेकिन ट्राई नहीं करेंगे तो कैसे, ट्राई करना पड़ेगा और मेहनत करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं फल मिलेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर को इस तरह कार्यक्रम में अपना सक्सेस स्टोरी का, सब किस तरह मेहनत करते थे और किस तरह मेहनत करने के सजेशन दिए मैसेज के माध्यम से।
1: ये सर एक और मैं बताना चाहूँगा, जैसे एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के लिए जैसे जो स्टूडेंट अगर 11 12 में है, अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते हैं टेंथ के बाद में, तो उनको क्या है सर 5,000 रुपये मिलते हैं प्रति वर्ष के, 11 एंड 12 के लिए 5,000 रुपये, अगर वो ग्रेजुएशन करता है तो उसको 12,000 रुपये पर ईयर मिलेंगे।
0: अच्छा बात सर, इसके ऊपर डिटेल्स बताए, क्योंकि हम तो जितने स्कूल कॉलेज में हॉस्टल में जाते हैं
1: बिल्कुल,
0: तो बच्चों को ये अच्छा पॉइंट मिलेगा उनको लेने के लिए एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा कृषि प्रधान देश है और बच्चे कृषि में घर में किसी ना किसी रूप में जुड़े हुए हैं, कोई ना कोई एडमिन बड़ा भी ऑफिसर भी होगा तो उनका जो बागवानी करते गार्डनिंग करते वो कृषि से रिलेटेड है, और बच्चों को एक अच्छा मौका मिलेगा, एक रास्ता आगे के लिए फ्यूचर के लिए काम आएगा। तो 11th में
1: सर जैसे अपन एडमिशन ले लेते हैं एग्रीकल्चर में, एडमिशन ले लिया उसके बाद या संबंधित क्षेत्र में अपने जो भी कृषि पर वेक्षक है या सहायक कृषि अधिकारी है उससे आप जाके मिल लो, वो फॉर्म भर देगा और वो फॉर्म भर के जैसे ही जिला स्तर पर सबमिट के बाद उसके जो है स्कॉलरशिप जो है शुरू हो जाएगी स्कॉलरशिप, ये है कृषि विभाग में उसको एक बार एडमिशन लेने में कृषि विभाग से संपर्क करना पड़ेगा सर।
0: सर उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट जमा,
1: डॉक्यूमेंट तो सर कुछ नहीं है, जैसे स्टडी कर रहा है तो उसने इलेवंथ पास कर लिया, 11th जैसे पास कर लिया तो उसके बाद 11th किस मिलेगी,
0: 10th पास कर लिया,
1: हाँ 10th तो पास हो गया, 11th में एडमिशन ले लिया, 11th पास हो गया तो 11th की मिलेगी।
0: अच्छा पास होने के बाद 11th,
1: हाँ हाँ हाँ
0: ओके
1: सर, तो उसके लिए सर 11th
0: पास होने के बाद सबमिट करेगा,
1: हाँ जैसे सबमिट करेगा भाई ये,
0: इसका पहले एग्रीकल्चर वहाँ पर क्या सब्जेक्ट होता है
1: एग्रीकल्चर में सर,
0: 11th क्या बताना पड़ेगा,
1: जैसे 10th तो सबके कॉमन होता है
0: जी,
1: और 11th में सब्जेक्ट जैसे साइंस मैथमेटिक्स होता है
0: जी जी,
1: साइंस बायोलॉजी होता है
0: जी,
1: और एग्रीकल्चर भी साइंस है, एग्रीकल्चर साइंस, एग्रीकल्चर साइंस यहाँ पूरे सिरोही जिले में, सिरोही में है, भीलवाड़ा है, अबू रोड में नहीं है सर, इसीलिए यहाँ के क्षेत्र को के लोगों को अभी जानकारी नहीं है, अगर यहाँ अगर एग्रीकल्चर सब्जेक्ट मिल जाए तो लोगों को जानकारी भी हो जाए यहाँ,
0: तो आपका पूरा अधिकार है एसडीएम साहब तक पहुँचाइए, बाकी रेडियो के माध्यम से हमारे एसडीएम साहब भी सुन रहे हैं, तो ये
1: नहीं अभी सर एग्रीकल्चर में हो सकता है नेक्स्ट आबरू का नंबर आ जाए, वैसे आबरू बड़ी सिटी के रूप में सिरोही से बड़ा माना जाता है वैसे आबरू, इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ये अभी साल से शायद सरकार ये इसमें कृषि विभाग में चालू कर दें स्कूल
0: में, तो 12th में भी ले सकता है,
1: हाँ 11th से
0: शुरू कभी
1: 11th 12th, और 12th के बाद में बीएससी के लिए अपन जैसे अदर सब्जेक्ट में डायरेक्ट एडमिशन होता है, इसमें सर बीएससी में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट JET एग्जाम देना पड़ता है, हाँ उसके माध्यम से, वो स्टेट लेवल का है। अगर अपन को ये चाहते हैं कि अपन नहीं, अपन तो भारत में कहीं भी कर सकते हैं, तो इसके लिए ICAR होता है एग्जाम, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, वो एग्जाम देना पड़ता था। ऑल इंडिया में कहीं भी कॉलेज वो मिलती है, वो भी ग्रेजुएशन है, उसमें स्कॉलरशिप भी मिलती है, वो अलग ही है।
0: जैसे साइंस और आर्ट्स कॉमर्स होता है,
1: हाँ तो वे साइंस एग्रीकल्चर भी होता है,
0: साइंस एग्रीकल्चर होता है, पहला बार हम सुन रहे हैं आपसे, ये भी बहुत
1: सब्जेक्ट तो कॉमन कॉमन ही होता है साइंस में, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री और तीसरा सब्जेक्ट एग्रीकल्चर होता है, बाकी जो बायोलॉजी और ये केमिस्ट्री दोनों सेम होते हैं।
0: सर क्या साइंस जहाँ पर है जैसे मावल में है, दरबार स्कूल में है, गंगाते आवासीय स्कूल में साइंस है, तो साइंस एग्रीकल्चर होना चाहिए।
1: हाँ साइंस एग्रीकल्चर,
0: मैथ फिजिक्स ऐसे नहीं,
1: हाँ
0: एग्रीकल्चर,
1: हाँ एग्रीकल्चर सब्जेक्ट दोनों सेम ही होते हैं। मैथमेटिक्स में फिजिक्स होता है, बायोलॉजी में फिजिक्स होता है, लेकिन एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर होता है, बाकी दोनों सब्जेक्ट सेम ही होते हैं, बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री दोनों सेम होते ही।
0: तो स्वतंत्र जो भी हमारा अभिभावक जो शिक्षा वर्ग में और जो प्रशासन में जो सुन रहे हैं जरूर हाईलाइट करें, और आप रोड पंचायत में हो जैसे
2: बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहिए कार्यक्रम मेरा गांव मेरा अंचल रेडियो मधुबन।

0: मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,
1: नमस्ते। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमें बहुत खुशी है। इस तरह कार्यक्रम के माध्यम से एक सक्सेस स्टोरी और एक प्रेरणादायी देखते हैं, जैसे दूसरों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे राकेश सर अपना कार्यक्रम को सजा रहे हैं। आज कृषि ऊपर में हम बात कर रहे हैं, कृषि विभाग ग्राम पंचायत बहादुरपुरा से आज हम लोग बात कर रहे हैं पंचायत ऑफिस में। सारा खासकर हमारा सभी किसान भाइयों के लिए और उनका तरफ से आपको स्वागत करते हैं। पुनः किसान देश का रीढ़ है, जैसे शिक्षक, कृषक और सैनिक, तीन पिलर जैसे लगता है। भारत उन्हीं का बदौलत में चला हुए है और जितना राजस्व भी कृषि से ज्यादा आता है और रक्षा करने में तो सैनिक ही है और शिक्षक हमारा अवेयरनेस हमको इतना जागरूक कराते हैं, जिसका बदौलत हम सर्विस मिलते हैं, होशियार बनते हैं। तो इस सभी को तो नमन करना चाहिए और जो अन्नदाता कहते किसान भाइयों, खासकर भाइयों, तो आज उनके लिए आप देवदूत होकर आए हैं। तो आपके पास जितना भी स्टॉक है या जितना भी जानकारी है, रेडियो का मंच के माध्यम से सबको लुटाइए और स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोजेक्ट जो कि अति सहज सहूलियत से उनको फायदा मिले। कास्कर भाई का जो गारे से समाज के लोग हित में रखते हुए क्या करने से उनका आर्थिक संबल और बढ़ेगा, दोगुना ने चार गुना बढ़ेगा उनका प्रोडक्शन, तो सरकार क्या मदद करते हैं, क्या सब्सिडी देती है, कब देती है, किस तरह देती है और कहां पर देते हैं, किसको देते हैं।
2: सभी किसान भाइयों का नमस्ते। मैं कृषि विभाग के बारे में योजनाओं की जानकारी दूंगा। इसमें सबसे पहले कृषि विभाग की मुख्य जानकारी है, उसमें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। कृषि सिंचाई योजना में अलग अलग है, जैसे पाइपलाइन हो गया, फव्वारा हो गया, रेन गन हो गया, खेत तलाई हो गया, जलौज हो गया, सब में अलग अलग सभी की क्राइटेरिया हैं और सब में अलग अलग सब्सिडी मिलती है। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पाइपलाइन के बारे में। पाइपलाइन स्कीम है, उसके अंतर्गत किसानों को 50% सब्सिडी मिलती है। पाइपलाइन 50 पाइप लेने होते हैं और 50 पाइप पे 50% लगभग 15,000 अधिकतम उनको जो है राशि मिलती है। और पाइपलाइन लगाना इसलिए अति आवश्यक है क्योंकि जो ट्राइबल एरिया या पाकर क्षेत्र में आजकल अपन देखे होंगे तो कुआं बहुत दूर होता है, कुएं से पानी लेके जाते हैं, बोरवेल से पानी लेके जाते हैं, तो क्या है वो नालियां बना रखते हैं, तो नालियों से खेत तक पानी पहुंचने में जैसे किसी का 1 किलोमीटर हो, किसी उससे कम हो, 300-400-500 मीटर तक हो, तो वहां तक पहुंचते पहुंचते तो आधा पानी तो जमीन में वैसे चला जाता है, पहुंच नहीं पाता, पानी वेस्ट हो जाता है। तो उसके लिए जो है पाइपलाइन सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से रहेगी और है भी। उसके लिए पाइपलाइन जोड़ते सीधा खेत में पानी जो स्रोत है वहां से सीधा पानी फसल तक आसानी से पहुंच सकता है,
1: 100% मिलेगा।
2: हाँ, 100% जितना पानी है, ज्यादा पानी है तो वो आराम से सीधा मिलेगा, आपका पानी वेस्ट कहीं नहीं होगा। 20-20 फीट के जो पाइप होते हैं और वो आपस में जुड़ते हैं, आराम से उसको जोड़ भी सकते हैं और कोई भी दो किसान भी हो तो भी, एक दो किसान होंगे तो भी उसको जोड़, छोटा बच्चा भी कर सकता है ये, मतलब आराम से आसानी से कर सकता है यूं। नहीं तो वो बिल बनाते हैं उसमें कहीं फूट जाता है, फिर वापस जोड़ता है, फिर वापस किसान खेत में देखता है कि यार पानी आ नहीं रहा है, फिर देखता है वापस चला जाता है कि यार पानी यहाँ फूट गया है, वापस जोड़ता है, फिर वापस खेत में भागता है, तो उसको समस्या ये समाधान हो जाती है इससे। और दूसरा है फव्वारा यंत्र। फव्वारा में सर क्या होता है कि खेत के अंदर 6 फव्वारे लगाते हैं, मतलब 6-7 फव्वारे अलग अलग अपने से लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है सर कि पानी का बचत
1: होता
2: है। हाँ, बचत होता है फव्वारे में सर। ये है सब्सिडी इसके अंतर्गत है, अपने लागत का 55% जो है वो सब्सिडी इसमें मिलती है फव्वारा संयंत्र में। और इसका जो आवेदन है वो भी ऑनलाइन ही होता है, किसान राज किसान साथी पोर्टल से है जो इसका ऑनलाइन आवेदन होता है। और उसके लिए सर जन आधार कार्ड आवश्यक है, जन आधार कार्ड अगर नहीं बना है तो आवेदन नहीं कर सकता है, और जन आधार कार्ड बना हुआ है तो वो उसके लिए आवेदन कर सकता है। और ये जितनी भी स्कीम है उसके लिए राज किसान साथी पोर्टल से ही आवेदन होगा, जन आधार कार्ड ही चाहिए, और जन आधार कार्ड में बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ होना चाहिए। अगर बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ नहीं है तो आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। और इसके लिए आप ई मित्र पे जाएंगे, जन आधार कार्ड से आवेदन करेंगे। मान लो सिंचाई पाइपलाइन का आपको आवेदन करना है तो आप जन आधार कार्ड लेके गए और आपका जो भी खेत है उसकी जमाबंदी और नक्शा जो होता है खेत का, पटवारी जो है निकाल के देता है। और आजकल ऑनलाइन भी होता है तो ऑनलाइन निकाल के पटवारी से प्रमाणित करवा के और ई मित्र पे लेके जाओ। ये दो चीज मुख्य है और तीसरा आधार कार्ड। तो जन आधार पे ऑनलाइन करके डॉक्यूमेंट चढ़ाने होते हैं और जैसे ही वो आवेदन हो जाता है तो वो आवेदन हमारे जिला कार्यालय है एग्रीकल्चर का, वहाँ चला जाता है सिरो चला जाता है और वहाँ से वो आवेदन हमारे पास ऑनलाइन ही अपने आईडी पे आता है। तो जैसे आईडी पे आता है तो हम
3: उसको लाभ
2: किसान को संपर्क करते हैं, भाई आपको कहाँ चाहिए, तो हम वहाँ जाके प्री वेरिफिकेशन करते हैं और उसके बाद वापस ऑनलाइन ही उसकी फोटो वोटो खींचते हैं, जियो टैग करते हैं और वापस भेज देते हैं, सिरोई चला जाता है। और वहाँ से उसकी स्वीकृति जारी होती है, प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है और प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती है तो हमारे मोबाइल में आ जाता है, हमारे पास वो उसकी प्रशासनिक स्वीकृति की कॉपी आ जाती है। उसके बाद हम किसान से संपर्क करते हैं कि आप जो भी पाइपलाइन है, वारा है, जो भी है आप लेके आ जाओ और आप खुद खरीदो, क्योंकि उसको खुद ही खरीदना होता है। सब्सिडी तो बाद में जमा होती है, सामान पहले लाना पड़ता है इसमें, ये है। तो सामान वामान लेके आ जाओ और बिल ला के हमें सुपुर्द बता दो, तो वापस हम दोबारा उसके खेत में जाते, चेक करते इसने फुवारे लगाए हैं कि नहीं लगाए, पाइप लगाई है कि नहीं लगाई है, फिर हम जाके और बिल विल चेक करते और फिर वापस उसका जो भौतिक सत्यापन ऑनलाइन ही ऐप के माध्यम से करते हैं, राज किसान साथी पोर्टल से। और उसके बाद वो जैसे आवेदन हम कर लेते हैं कम्प्लीट और सत्यापन कर लेते हैं, उसके बाद वो वापस जिला कार्यालय में चला जाता है और उसके लगभग महीने भर के अंदर अंदर लगभग वो है उसका भुगतान, लगभग वो पेमेंट जमा हो जाता है खाते में सीधे ही।
3: बहुत अच्छा बात बताया और ये प्रोसेस बताया, लेकिन जैसे आपने बताया सब पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा, तो इतना पैसा लोग के पास रहता नहीं है, जैसे कम से कम तो 5-6 हज़ार मिनिमम तो सब करने के लिए तो चाहिए, तो बाद में तो सरकार देगा 50%, लेकिन पहले जो स्टार्टिंग में इतना जो खरीदने के लिए जो संभव होना चाहिए उनको मिलेगा, जिसके गरीब लोग को कैसे फायदा मिलेगा कहाँ
2: सर? ये ST SC अदर जनरल सभी में सर ये अपन को इसमें एग्रीकल्चर में यही है, आपको सामान तो पहले खरीदना ही है, पहले ही आपको लाभ किसी में पैसा वगैरह नहीं मिलेगा।
3: तो मान लो पैसा पहले मिल जाएगा तो क्या दिक्कत होगा सर?
2: पैसे पहले मिलते हैं तो सर क्या है कि जो ट्राइबल एरिया के जो किसान है उसका दुरुपयोग कर लेते हैं शायद, मेरे हिसाब से पहले शायद गवर्नमेंट पहले पैसा देती थी इसलिए उसका क्या है लोग दुरुपयोग करते हैं, तो दुरुपयोग करते हैं तो उसको वास्तव में वो जो गवर्नमेंट जो चाहती है वो नहीं हो पाता है,
3: तो नेग्लेक्ट करेगा, दूसरा टाइम में
2: इन्वेस्ट कर लेगा या फिर वो दारू पी
3: कर सकता है।
2: और इसमें क्या है जो वास्तविक जिसको चाहिए
3: वो करेगा,
2: और उसको फिर पैसा भी पूरा पूरा मिलेगा, एक भी रुपया कहीं जाता नहीं, सीधे सब्सिडी से उसके खाते में, किसी को मतलब बिचौलियों के चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं, सीधे उसके खाते में पैसे जमा होंगे और उसको कहीं भटकने की भी जरूरत नहीं है।
3: ये खास राज है क्योंकि इससे जो जेन्युइन है, जो लाभार्थी है, जो करने के इच्छुक है उनको ये फायदा मिलेगा, जिसका इच्छा नहीं है इसको जबरदस्त दे देंगे पैसा, वो पैसा को दूसरा जगह में वो इन्वेस्टमेंट करने लगेगा, जिसका सबसे नुकसान भी होगा और सरकार का जो मंशा है वो सक्सेस नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस तरह कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और सर जो पाइप का जो सिस्टम मुझे बताया, बस हमारे किसान भाई को बताया, वो क्या सेफ्टी रहता है ना चोरी वगैरह, जैसे हम पाइप लगा दिए, जैसे अपने पाइप का सिस्टम जैसे पानी जो 1 किलोमीटर लेना है वहाँ से मोटर से, लेकिन पाइप को हम जो रखने हो चाहे हमको उसको सेफ्टी का चोरी भी हो जाता है खेत में जो रख देंगे,
2: बिल्कुल
3: तो फिर उसका तो दिक्कत होगा
2: सर। इसमें पाइप एक तो आता है वो बाहर ओपन लगा सकते हैं 20-20 फीट के, और एक ग्राउंड वाला भी आता है, वो अगर किसान चाहे तो उसको ग्राउंड के अंदर लगा दे तो फिर कोई दिक्कत नहीं, कोई चोरी भी नहीं कर सकता उसका, वो लंबा रोल आता है, रोल भी लगा सकता है। और भाई मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है तो वो सिंगल पाइप 20-20 फीट के है उसको लगा सकता है, जैसे कहीं 300 मीटर पानी ले 300 मीटर पाइप लेके आ गया वो और उसके भाई 200 तक ही पहुँचाना है तो उसमें क्या 200 तक ही पहुँचा, नहीं तो फिर वो क्या पूरी 300 मीटर पाइप डाल दी और उसको 200 मीटर तक पानी पिलाना वापस, तो वापस वहाँ से पानी इधर लाना पड़ेगा पाइप से। और इसमें कहा जहाँ तक जितना पाइप लेके जाना है वहाँ तक अपन पाइप जोड़ सकते हैं, ये इसमें एक फायदा है सर।
3: जैसे हम करंट लेते तो अंडरलाइन करना अंडरग्राउंड करना ऊपर लेना में तो दिक्कत होती है, बाढ़ आता है तूफान आता है तो गिर जाता है,
2: बिल्कुल
3: लेकिन अंडरलाइन करते तो सेफ्टी कर। लेकिन जो किसान मित्र जो इस तरह परमानेंट का खेती है और उनको करना ही लाभ मिल रहा है तो एक टाइम वन टाइम इन्वेस्ट कर लीजिएगा, अंडरग्राउंड कर लेंगे तो सेफ्टी का
2: वो फिर चोरी का टेंशन नहीं है, फिर
3: इधर उधर करने का जरूरत नहीं। चोरी हो सकता है लेकिन इतना जल्दी नहीं हो पाएगा,
2: लेकिन
3: खोदाई करके लेना इतना लोग को इतना पैसा हो। आजकल तो चोरी बहुत कम हो गया, पहले होशियार हो गए थे, पहले कुछ पैसा नहीं था, आजकल तो दो घंटा कमाई करेंगे कहाँ भी 200-300 रुपए मिल जाता है, पैसा के लालच में कोई चोरी नहीं, पहले था ऐसे चोरी करने को, लेकिन आज सबका समाधान मैंने सरकार भी दे रहा है, भोजन भी दे रहा है, रहने के लिए व्यवस्था सब कुछ दे रहे हैं, बहुत अच्छा बात बताए।
4: ये था उससे संबंधित हमारे किसान भाइयों के लॉटरी लॉटरी कहेंगे कि उनका खाद्य खोलेगा जब सब्सिडी सरकार तरफ से जब मिल रहे हैं उसका सही जानकारी होना अति आवश्यकता है, और इसका उसका बात नहीं सुन के गलत अफवाह से नहीं सुन के सरकार का जो दिशा निर्देश कृषि अधिकारी से संपर्क करें, और उसका एक पोर्टल जैसे सर ने बताया
2: राज किसान साथी पोर्टल,
4: राज किसान साथी पोर्टल में जाकर अपना जानकारी जिस चीज़ में हमको पूछाई वो चीज़ रहता है। आप पढ़े लिखे नहीं है लेकिन आपका बच्चे आज तो पढ़े लिखे ही है, क्योंकि आपके जमाने में इतना पढ़ाई नहीं था, लेकिन आज बच्चे तो फोन एंड्रॉइड फोन में सब चीज़ अवेलेबल है, तो बड़ा फोन में आप कर सकते हैं।
0: लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गांव मेरा आंचल रेडियो मधुबन।

ओम शांति। नमस्कार, मैं आकाश मानिसार से नेशनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन का एक वॉलंटियर मेंबर, आप सभी को आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8।

0: नमस्ते कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं। राकेश सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी को अपना अनुभव आधार से जो भी सुविधाएं जो डोर टू डोर जाकर बताते थे, लेकिन आज रेडियो मंच का माध्यम से सभी किसानों दे रहे हैं, जो भी जहां पर भी सुन रहे हैं कैसे लेना है, कहां पर लेना है, किस तरह लेना है, कौन एंटाइटल, सब चीज़ बता रहे हैं। एक एक प्रोजेक्ट के बारे में, एक एक योजना के बारे में बता रहे हैं। जैसे इसका पहले हम सुन रहे थे पाइपलाइन और फुहारा के बारे में।
1: बिल्कुल पाइपलाइन।
0: हाँ, तो अभी कौन सा बारे में सुना?
1: अभी में एक कांटेदार तार बनती है। अच्छा। होती है, उसमें भी एग्रीकल्चर जो है सब्सिडी देती है, उसके लिए मैं आप जानकारी दे रहा हूँ। इसमें सर कृषि विभाग से जो तार बंदी लगाते हैं उसमें तीन हेक्टर मतलब 12 बीघा जो जमीन है कम से कम चाहिए, और तीन किसानों का समूह होना चाहिए, और जिनके खेत पास में है, और जमीन अगर तीनों का मिलाकर 12 बीघा होनी चाहिए, और आपस में जुड़ी हुई होनी चाहिए। न्यूनतम इतनी हो सकती है, अधिकतम हो सकती है कितनी भी, और तीन किसान न्यूनतम चाहिए ग्रुप में, और 7-8 किसान भी हो सकते हैं। कहीं जिसे कि जमीन कम पड़ रही है, तीन किसानों की नहीं हो रही 12 बीघा, तो 10 किसान भी हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं आपस में। हाँ, तो इसमें सर अधिकतम 40,000 रुपये की सब्सिडी मिलती है, 40,000 रुपये तक सब्सिडी मिलती है इसमें सर, और अधिकतम 400 मीटर तक की सब्सिडी मिलेगी किसी भाई के। जैसे मान लो 600 मीटर हो गया तो उसको 400 मीटर तक की सब्सिडी मिलेगी, 400 मीटर के ऊपर जो है वो खुद वहन करेगा। और इसमें भी सर ये है कि आवेदन ऑनलाइन करके और फिर तारबंदी का कार्य प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती है, और इसके बाद तारबंदी का कार्य भी पूरा अपन को ही करना है, किसान को ही सारा करना है। करने के बाद जो बिल वगैरह है वो सारा ला के हमें देगा, तो हम उसका जो है वहाँ पे आगे करेंगे, तो उसकी सब्सिडी वो पूरी उसकी
0: अच्छा योजना है। और खेत को सुरक्षा रखने के लिए,
1: सुरक्षा रखने आजकल सर जो सुअर इतने सर हो गए हैं जो मक्का एक दिन में सारी मक्का खराब कर देते पूरा खेत, इसलिए ये तारबंदी होने से सर बहुत फायदा मिलेगा किसानों को।
0: जैसे हम कपड़ा पहनते हैं अपना शरीर को ढकने के लिए, सेफ्टी के लिए, धूली मिट्टी नहीं लगे, हेलमेट लगा देते हैं, तो खेत को भी हेलमेट लगा देते हैं।
1: बिल्कुल जरूरी है,
0: उसका चार तरफ बाउंड्री लगाना जरूरी है, क्योंकि उससे किसान तरह आराम से नींद से सो पाए, नहीं तो नींद नहीं होगा,
1: नींद नहीं होगा तो
0: उसका मन तो उधर ही है, स्वास्थ्य खराब होगा। तो स्वास्थ्य रखने के लिए डॉक्टर पैसा क्यों दे, खेत में लगा, सरकार उसका भी फायदा दे रहे, करने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर जैसे जो प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे आपने बताया 3-4 प्रोजेक्ट बना, जो भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, पाइप हो चाहे फुहारा हो चाहे कांटा जो लेने के लिए, इसके लिए क्या कोई भी सामान को अपने हिसाब से लेंगे ना आप, उसको थोड़ा वो मटेरियल को थोड़ा स्टडी करते हैं, इस मटेरियल लगाओ, आप सजेशन देते हैं? कोई भी मटेरियल जो खुद खर्च लाता है उसमें आप क्या सजेशन देते हैं?
1: सर उसमें ये होता है कि ये प्रमाणित जो राजस्थान से जो ISI मार्क से जो भी है, अच्छा। राजस्थान गवर्नमेंट जो अप्रूव्ड है
0: उसको
1: वही चीजें आप लाओगे तो ही सब्सिडी मिलेगी।
0: ओके।
1: ये है।
0: हाँ।
1: इसमें अगर वो राजस्थान गवर्नमेंट अप्रूव्ड नहीं, लोकल उससे नहीं लेना है, लोकल से आप नहीं ले सकते हो। हाँ। और बाकी किसी से भी ले लो, लेकिन उसमें राजस्थान गवर्नमेंट जो चीजें वो अप्रूव्ड होनी चाहिए उसमें, राजस्थान गवर्नमेंट। हाँ, उसमें जो पहले से सारी लिस्टें आ रखी होती है कि पाइप में कौन कौन सी जो कंपनीज है जिसमें ISI मार्क और कंपनी जो है राजस्थान गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है,
0: तो किसान को कैसे पता चलेगा सर ये मटेरियल क्या है? मैंने जो आपने बताया तो ठीक है आप जानते हैं, लेकिन किसान भाइयों को कैसे अवगत होगा?
1: किसान भाइयों को सर इसलिए अवगत हो जाएगा क्योंकि सर यहाँ जैसे डीलर है यहाँ रोड में मंडार क्षेत्र में वो काम करते हैं फील्ड में, उस सब जो किसान भी लगभग उनको जानते हैं, तो क्या है कि वो वहाँ से वो सामान खरीद सकते हैं, यहाँ फैसिलिटी अवेलेबल है। जैसे आबू रोड में फैसिलिटी अवेलेबल है, 3-4 डीलर्स हैं उनके पास से आप जो प्रमाणित सामान है वो आप खरीद सकते हैं।
0: तो सभी किसान भाई ध्यान से सुने, कभी सामान लेते हैं तो लीजिए, लेकिन उसका जो उचित जो मूल्यांकन तो उसको थोड़ा फर्क है, नहीं समझ में आता है तो एक बार उसी अधिकारी आता है अपना ग्राम पंचायत में, कोई ना कोई कृषि विभाग से पता करिए, और ISI लिखा होना चाहिए तो पता चला ये अप्रूव्ड है गवर्नमेंट द्वारा, तो आप उसमें सब्सिडी मिल सकता है, नहीं तो आपने लोकल मेड में कोई आपने खुद बनाए उसमें लगा देंगे तो सब्सिडी मिलेगा नहीं। जैसे कोई भी बिल लेते कोई सामान खाते उसको बिल भी पक्का बिल चाहिए, क्योंकि उसको टीन बोल TIN
1: टीन नंबर वाला बिल वो मिलेगा,
0: तब जाकर अप्रूवल होगा, नहीं तो अप्रूवल नहीं होगा। लोकल
1: लोकल बिल मान्यता
0: नहीं तो लीजिए, सरकार देने के लिए तैयार है, लेकिन आप कंजूस मत करिए पैसा का चक्कर में, थोड़ा ऐसे नहीं करने का, जो सिस्टमेटिक है उसको नहीं तो आप अपना सलाह लेकर कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या और बताना चाहेंगे?
1: दूसरा सर ये है कि अपने यहाँ क्षेत्र में जैसे अपन बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर ये कहता है कि ब्लड टेस्ट करवाओ, तब देख के बताता है कि इसमें क्या क्या ये बीमारी है। अब सॉइल में कोई बीमारी होगी, मृदा में कोई बीमारी होगी, खेत के अंदर, तो अपन को थोड़ी ऐसे पता होगा इसमें क्या बीमारी है। तो उसके लिए भूमि का मृदा सॉइल टेस्ट करवाना अति आवश्यक है, अति आवश्यक बहुत जरूरी है, क्योंकि
0: कोई भी सॉइल,
1: हाँ सॉइल खेत में खेती करते हैं उसकी टेस्ट कराना अति आवश्यक है। अपन को क्या पता इसमें किस चीज की कमी है, कौन से खाद अपन डाल रहे हैं, हो सकता है उस खाद डाल रहे हैं उसकी जरूरत ही नहीं अपन डाल रहे हो, और जो चीज डालनी है उसको अपन डाल ही नहीं रहे हैं, तो प्रोडक्शन कहाँ से होगा। इसलिए सॉइल टेस्ट कराना अति आवश्यक है, और सॉइल टेस्ट करवाने के लिए अपने संबंधित जो क्षेत्र का जो कृषि पर्यवेक्षक है उसको बुलाएं, और वो आपका जो है सॉइल टेस्ट मृदा से ले लेगा, सैंपल ले लेगा। और आप भी अगर किसान भाई अगर जानकार हैं तो आप भी ले सकते हैं, किसान के खेत के चारों कोनों से,
0: दिशा से,
1: हाँ जैसे ये खेत है 5 जगहों से मिट्टी लेनी है, 1 फीट अंदर खोद के और मिट्टी लेनी है अंदर से चारों कोनों में, और एक बीच में से मिट्टी लेके और उनको मिक्स करके अच्छी तरह से
0: सभी को मिक्स,
1: हाँ आधे आधे किलो मिट्टी लेके पांचों भाग से, और फिर उनको मिक्स करके उसमें से है जो पाप भर मिट्टी या आधा किलो मिट्टी है वो लेके, और फिर उसको जो कृषि विभाग में जमा करा दो, और उसके जो शुल्क है वो सिर्फ मात्र 5 रुपए है।
0: अच्छा अच्छा,
1: 5 रुपए उसकी जो शुल्क है, और 5 रुपए में पूरी मिट्टी की पूरी जाँच होके आ जाती है 15-20 दिन में।
0: क्या सुविधा आबू रोड में है?
1: आबू रोड में सर ये सुविधा नहीं है, लेकिन वो हमारे पास जैसे सैंपल आता तो हम जिला में वहाँ लैब बनी हुई है सिरोही, वहाँ जाके हम टेस्ट करवा लेते हैं और उसकी रिपोर्ट हम किसानों को देते हैं। अभी हमारे जो कृषि विभाग के जितने भी कृषि पर्यवेक्षक है उन्होंने 50-50 सॉइल सैंपल लिए थे, उसकी रिपोर्ट भी आ गई, आज भी हम लेके आए हैं कार्ड, और उसमें पूरा दे रखा है कि कितना क्या क्या देना है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि अपने किसान भाई देते हैं, ज़्यादा देते हैं, उनको पता नहीं रहता, ऐसे यूरिया है, DAP है वगैरह वो डालते रहते हैं, लेकिन उसमें खेत में ज़रूरत नहीं होती है। अब जैसे यहाँ की जो मिट्टी है उसमें थोड़ी सारी अपने जिप्सम की कमी है, मोस्टली जिप्सम की कमी है, तो जिप्सम अगर लेते हैं किस तो सोसाइटी से लेते हैं तो उसमें भी 50% आपको अनुदान पे जिप्सम मिल जाएगा, तो वो जिप्सम को आप लेके और मिला के मिट्टी मिला के आप उसका जुताई कर देते हैं तो वो फसल के प्रोडक्शन के लिए अच्छा रहेगा। और जिप्सम है, जिप्सम अगर उसमें जिंक सल्फेट है और फेरस सल्फेट है, ये दोनों भी अभी हम अनुदान पे दे रहे हैं, 50% अनुदान पे हम दे रहे हैं, तो उससे क्या है सर ये जैसे ऑयल क्रॉप से सरसों वगैरह है तो इस जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट डालने से इसके अंदर ऑयल की क्वांटिटी बढ़ती है। और यहाँ इस फील्ड में जैसे है जो जिंक सल्फेट और फेरस सल्फेट की कमी है, तो ये अगर किसान अगर सॉइल टेस्ट करा लें तो उसका पता चल जाए तो आगे इस संबंध में उन किसानों को लाभ हो सकता है,
0: बहुत कुछ बचत भी हो सकता है, इनका खेत भी बचत कर सकते हैं, और इनका जो प्रोडक्शन जो होता है उत्पादन को भी बचा सकते हैं, और हमारा वेस्टेज नहीं जाएगा।
1: नहीं नहीं सर, वेस्टेज नहीं,
0: और हम सुरक्षित रहेंगे। जैसे हम कोई भी टेस्ट सामने बताए, कोई भी ऑपरेशन करने का पहले आपका ब्लड टेस्ट पूरा सब यूरिनल टेस्ट हम टेस्ट करते हैं, इसके बाद मेडिसिन देते तो काम में आता है क्या आवश्यकता है, तो खेत को भी क्या आवश्यकता है वो चीज़ हम जब जाँच करेंगे भले पहले शुरू में जब करेंगे तो उनको लगेगा भाई इनकी प्रोसेस है, फिर उसको पकड़ो तो टाइम जाता है, लेकिन एक बार आपका खेत का पूरा पता चल जाएगा तो आपको उसी हिसाब से ध्यान देना पड़ेगा।
1: सही है,
0: जैसे हमको सिर दर्द होता है, BP होता है, तो हम शुगर होता है, तो हम चीनी का थोड़ा कंट्रोल करेंगे ना, हम टेस्ट ही नहीं करेंगे, कैसे चलेगा। और उसी तरह खेत को भी अपना पहले टेस्ट कराइए, भले समय लगे, लेकिन जैसे आप टेस्ट कराने के लिए खेत को जाना पड़ेगा, 5 जगह से मिट्टी लेना पड़ेगा, फिर उसे परिवेक को उनको बताना पड़ेगा, छह चीज़ें तो प्रोसेस सर, इसमें थोड़ा पैसा वगैरह कुछ हेर फेर होता है क्या, जो जिसको हम बुलाएंगे वो क्या फीस लेते हैं ना, फ्री में जाते हैं?
1: नहीं सर, फ्री में है, निःशुल्क है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे को अगर बुला ले या खुद मिट्टी लेके आ जाए तो और भी बेस्ट है
0: जी।
1: और जैसे हम क्षेत्र में खुद मिट्टी लेके आ जाते हैं किसान, एक बार बता देते हैं, समझा देते हैं कि भाई ऐसे आप मिट्टी ले लेना, और वो खुद की मिट्टी लेके आ जाता है, उससे सिर्फ 5 रुपए की रसीद लेंगे हम बस।
0: लेकिन किसान भाई लोग बता रहे हैं हमको बहुत चक्कर लगाना पड़ता, 2 बार गए तो सारे नहीं थे।
1: हाँ सर, ये पहले था, लेकिन अभी क्या हम जैसे सब जगह पोस्टिंग हो चुकी है, पहले यहाँ पूरे आबू रोड क्षेत्र में 2 सुपरवाइजर थे, 15 पोस्टें हैं और सुपरवाइजर 2 थे, और पूरा 15 पोस्टों का काम संभालते थे तो वो हो नहीं पाता था। हर जगह मतलब 10 पोस्ट तो ऑलरेडी भर चुकी है और 5 पोस्ट ही खाली है, तो अब हर जगह आपको दिक्कत नहीं होगी। आप किसान भाइयों को जो है कृषि परिवहन समय पर हर जगह मिल जाएगा और आपका काम भी आसानी से
0: इतना सुविधा है सरकार दे रही है और इतना पैसा तनखा आपका पीछे इतना लोग अपॉइंटमेंट किया है कितना तनखा जा रहा है और उसका फायदा लेना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: आप जब नहीं लेंगे उसको काम नहीं दे रहे नहीं। तो मुझे तनखा सरकार का जो राज्य के पैसा जो जा रहा है वो वेस्टेज जा रहा है।
1: सही है सर,
0: तो उनको काम दीजिए और उनको भी खुशी होगा।
1: सही है सर,
0: और वो पैसा भी खत्म भी होगा।
1: सही है,
0: और फट फट करेंगे तो मन भी इधर उधर का भ्रष्टाचार में जाएगा।
1: सही है,
0: तो इसलिए हमारा किसान भाई को निवेदन है सर से जितना फायदा लेना हो पहले जाइए, बार बार जाइए, एक बार गए कुछ उनका भी कुछ प्रॉब्लम होता होगा। मैंने कहा ऑफिशियल ड्यूटी होते सर आज यहाँ पर है तो मान जा अपना ऑफिस में कोई ढूंढेगा तो मिलेगा नहीं ना
1: सर। हमारे ऑफिस के बाहर हमारे सबके नंबर लगा रखे हैं हमने, अगर कोई भी हम अगर फील्ड में भी जाते हैं हमारा वैसे फील्ड का ही काम होता है पूरे दिन, अगर ऑफिस में नहीं मिलते हैं तो आप वहाँ जाके ऑफिस के बाहर नंबर से एक बार कॉन्टेक्ट कर लें, हो सकता है आपके आसपास ही कहीं हो फील्ड में हो तो नंबर भी लिखे हुए हैं।
0: हर सेक्टर में जैसे आपका सेक्टर कितने ग्राम पंचायत को लेकर आप सर?
1: सर मेरे जैसे मुंथला डब्ल्यू में तो जैसे 9 पंचायतें आती है,
0: 9 ग्राम पंचायत
1: सिर्फ मैं सुपरवाइजर का काम करता हूँ, पूरे सभी मेरे अंदर 4 सुपरवाइजर है, 4 और खुद ही मैं सुपरवाइजर हूँ, तो मेरे खुद के आवल और चनार 2 ग्राम पंचायतों का काम मैं खुद देखता हूँ। इसके अलावा ओरिया है, बहादुरपुरा है, चंडेला है, मुंथला है, क्यारिया है, दामसरा है, ये इनका सुपरविजन मैं करता हूँ।
0: ये एरिया को पूरा हरा भरा करने का दायित्व आप लिए हैं, कप्तान गिरिद करते हैं, इतने किसान को खुश रखते हैं क्योंकि किसान जब खुश रहेगा देश खुश रहेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, किसान
0: और आप उसका कमान आपका हाथ में, और जो आप एक आदिवासी समाज में बिलोंग करते हैं आदिवासी लोगों को समझाने अपना भाषा में आपको सहज भी होता होगा, इस तरह बहुत कम मिलता है कैंडिडेट।
1: बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ सर इस फील्ड में समस्या भी होती है, जैसे अधिकतर जो हमारे साथी लोग हैं वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज नहीं समझ पाते
0: जी।
1: जो किसानों को मोटिवेट करने में थोड़ी समस्या आती है, और किसान भी क्या है कि जल्दी बाहर के किसी लोग तो एकदम भरोसा नहीं करते, और मेरे यहाँ होने से क्या होता है कि जैसे मैं लोकल लैंग्वेज में बात कर लेता हूँ तो उनको मेरी खुद की भाषा में बात करता हूँ आदिवासी भाषा में तो उनको जल्दी समझ में भी आ जाता है और वो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ये है सर,
0: सही बात, इतना दायित्व लेकर फिर भी आप खुश रहते हैं और सबको देने के लिए आपको खुशी मिलता होगा कहीं सेवा में।
1: कृषि सर, कृषि विभाग में देने देने गई है इसमें सब दे, लेकिन किसान को मोटिवेट होके हमारे संपर्क करना बहुत अति आवश्यक है। हम भी हर जगह हमारी किसान गोष्ठी होती है, अभी हाल फिलहाल में मुंथला में किसान गोष्ठी हुई थी, 100 किसानों की हुई थी, हम हर जगह जहाँ भी गोष्ठी करते हैं किसानों को जानकारी देते रहते हैं, महिलाओं की अलग गोष्ठी होती है, पुरुषों की अलग गोष्ठी होती है, पूरी स्कीम की है लगभग, हम वहाँ जानकारी देते रहते हैं और इस क्षेत्र से अब धीरे धीरे थोड़े किसान जागरूक हो रहे हैं और स्कीम में आवेदन भी कर रहे हैं और लाभ भी ले रहे हैं।
0: और ये तो यूथ जैसे यंग आपको अभी पोस्टिंग बहुत कम दिन हुआ है, यह तो खून में देने के लिए भावना बूढ़ा तो है हुआ नहीं
1: जी जी जी,
0: लेकिन कोई जिससे सीनियर हो जाते हैं तो उनका देखा उसको इतना आता नहीं करने के, लेकिन आपका जो खून उमंग उसका फायद में देखने को मिलता है तो इसका फायदा अंतर्वासी ले, खासकर अपना जो सेक्टर बताए इतने सेक्टर का जो आप कार्यकर्ता है कप्तान चलाते हैं तो इतना गांव पंचायत आपका पास है तो खासकर यहाँ का समस्या क्या आती है और उसको आप कैसे निवारण करते हैं वो भी जानेंगे, लेकिन पहले स्कीम के बारे में कितने स्कीम है और बाकी रहा लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद पुनः मिलेंगे, सुनते रहे कार्यक्रम मेरा गाँव मेरा अंचल।

लोग ये कहते बिन बेटे के कैसे वंश चलेगा, पर मैं कहता बिन बेटी के दूल्हा कैसे बनेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित मनीष शर्मा, आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन, सुनते रहो मुस्कुराते।

0: पहले कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए ब्रेक के बाद हम पुनः मिल रहे हैं। राकेश सर इस कार्यक्रम को सुंदर में बखूबी से सजा रहे हैं और किसान भाइयों के लिए जितना देना चाहते हैं वो उससे ज़्यादा देने के लिए तत्पर है, तो उनको पुनः स्वागत करते हैं सर। और कौन सा स्कीम है?
1: और सर एक सबसे बड़ा स्कीम है खेती में काम आने वाले कृषि यंत्र हो गए, जैसे रोटावेटर हो गया, कल्टीवेटर हो गया, थ्रेसर हो गया, ये सारे जो है कृषि यंत्र है उन पे भी है जो सब्सिडी मिलती है। इसके अंतर्गत कृषि यंत्र में सर है जो एक तो ट्रैक्टर, पानी का टैंकर और एक साथ ट्रॉली है, ये इनमें सर सब्सिडी नहीं मिलती है।
0: अच्छा,
1: इनमें सब्सिडी तो नहीं मिलती है, बाकी जितने भी उपकरण हैं उनमें सब में सब्सिडी मिलती है आपको। और इसमें STSC को है और लघु सीमांत किसान है उनको 50% और जनरल को है 40% है, जो उसका टोटल कॉस्ट का है वो इतना है जो सब्सिडी मिलती है।
0: सर इसमें ग्रामवासियों की तरफ से और खासकर किसान भाइयों की तरफ से जैसे आपने सब्सिडी बताई इंस्ट्रूमेंट लेने में जो कृषि उपकरण ट्रैक्टर वगैरह छोड़ के और बाकी जो चीज़ और क्या रह गया जो इसमें आप सब्सिडी देते हैं?
1: इसमें सर देखो इसमें है डिस्क प्लाव है, मल्टी क्रॉप थ्रेसर है, ट्रैक्टर ऑपरेटर रीपर है, रिज फेरो प्लांटर है, मल्टी क्रॉप प्लांटर है, चीजल प्लाव है, इतने सारे सर ये उपकरण हैं जिसमें ये जो सब्सिडी अवेलेबल है।
0: कितना परसेंट उसमें सब्सिडी मिलता है?
1: वो ST और SC के लिए 50 और अदर के लिए 40% टोटल कॉस्ट का है। और उसमें थोड़ा SP का डिफरेंस पड़ता है तो ज़्यादा फर्क नहीं आता, HP का पड़ता है तो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन 40-50 तो है ही है, ये इतनी सब्सिडी तो मिलती है।
0: तो श्रोता मित्र ग्रामवासी इसका फायदा भी ले, खासकर किसान धान के लिए ये जो उपकरण जो कृषि यंत्रपाती जो आवश्यकता है उसमें भी आपको सब्सिडी गवर्नमेंट तरफ से मिलता है 50 और 40, जनरल के लिए 40 और ST के लिए SC के लिए 50 मिल। सर जैसे कृषि के लिए आजकल ट्रैक्टर वगैरह आपने बता दिए, लेकिन जहाँ जहाँ अभी भी हम देख रहे हैं बलद बा जो पशु से खेत करते हैं तो उनका भी बीमारी कभी कभी होता है और डेथ भी हो जाती है, तो उसके लिए क्या सब्सिडी वगैरह सरकार तरफ से
1: पशुओं के लिए? वैसे सर ये तो पूरा पशुपालन विभाग से है, लेकिन इसमें सर ये मेरे ध्यान में जहाँ तक इन पशुओं के भी बीमा होता है तो बीमा होता है तो बीमा तो हर इंसान भी करवाता है तो पशुओं का भी करवाना चाहिए। तो पशुओं का बीमा करवा अगर ऐसी दुर्घटना बाय चांस हो जाती है तो उससे सबसे पहले पशुपालन विभाग से संपर्क करके और उसके बारे में उनको बताना आवश्यक है।
0: चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, और कौन सा स्कीम सर? जो
1: सर ये स्कीम तो लगभग पूरी हो गई है, लेकिन थोड़ी बहुत कुछ ऐसे इंटेंसिव स्कीम है जैसे छोटी छोटी स्कीम है, वैसे मिनी किट वितरण से जो इसमें क्या है गवर्नमेंट मिनी किट वितरण करती है किसानों को 10% टोकन राशि रुपये लेके, और अभी सरसों के जैसे मिनी किट आए हैं हुए हैं तो उसमें हम 2 किलो सरसों है वो 13 रुपये में हम 13 रुपये टोकन राशि लेके केवल महिला कृषकों के नाम से हम उनको देते हैं, ये है मिनी किट। और दूसरा सर ये है अपने प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स, स्प्रे वगैरह होते हैं सर जो दवाई छाटने के होते हैं ना सर स्प्रे, उनमें भी सर सब्सिडी मिलती है। तो बैटरी ऑपरेटर जो है प्लांट इक्विपमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, उसमें 1500 रुपये तक सब्सिडी है। आज हम खुद लेके भी आए हैं, यहाँ किसान के लिए बोला है, इसमें हम अपन को पहले 3000 रुपये भरने पड़ेंगे और 1500 रुपये वापस सब्सिडी के रूप में खाते में जमा होंगे। और एक दूसरा होता है जो केवल हाथ से चलाते हैं दवाई छाटने वाला, उसमें 750 रुपये तक सब्सिडी मिलती है।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर कार्यक्रम को सुंदर रूप में सजाएं और किसानों का हित के लिए हम सब तत्पर हैं, और रेडियो मधुबन एक मंच देता है जिस मंच के माध्यम से किसान का समस्या

0: कृषि विभाग में जितनी मैंने स्कीम्स बताई है और आगे भी कैंप हैं, उनमें आप अगर ये सुनते हो तो हर जगह आपको आवेदन तो एक बार करना ही है। हर स्कीम में भले लो या मत लो, लेकिन आवेदन करोगे तो आपको जानकारी भी मिलेगी और उसके बारे में, उससे जो फ़ायदे हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी होगी। धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे लिए पहला अवसर है कि मेरी जो बात है, जो मतलब मैं सोच रहा था पहले कि कहीं मेरी बात भी ऐसे मैंने YouTube पे ऐसे डालूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज आपको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, रेडियो मधुबन को, कि जो मेरी बात है किसानों तक पहुँचाएंगे आप। धन्यवाद सर।
1: आज तो ट्रायल सर था, हमेशा आपका साथ हम रहेंगे और जितना आप डोर टू डोर देते थे, लेकिन कभी भी मौका मिलेगा तो आपसे संपर्क करके उनका हित में, किसानों का हित में जरूर संपर्क रखेंगे
0: जी,
1: जिसका चलते हमारा किसानों को जल्दी फायदा मिले और जो भी समस्या है कभी कभी लाइव में अभी आप आ सकते हैं, जिसका चलते डायरेक्ट आप किसान से बात कर सकते हैं, जिसका चलते आपको भी लगेगा चलो आज मेरा जो मंशा जो सपना था आज हमारे कास्कर भाइयों के लिए कुछ कर रहे हैं, तो बहुत खुशी लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस तरह कार्यक्रम में सजाने के लिए।
0: थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, धन्यवाद सर।
1: तो आज के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर कल मिलेंगे इसी वक्त इसी समय और किसी बात को लेकर। हमारा श्रोता मित्र, खासकर कास्तकार भाई लोग इसका जरूर फायदा लें। कोई भी समझ में दिक्कत होता है तो नज़दीक आपका लोकल जो कृषि अधिकारी है या कृषि पर्यवेक्षक है, तो उनसे संपर्क करके इसका जानकारियाँ लीजिए। जरूर प्रशासन आपका साथ है, कृषि विभाग आपका साथ है और रेडियो मधुबन आपका साथ है। सभी को नाम का साथ, सुनने वाले सुनाने वाले को धन्यवाद, आभार।

0: राम राम रतन भाई, राम राम।
1: ओहो राम राम भाई कंचन, राम राम। आप भाई आओ, तबियत तो हाउ है?
0: हाँ तबियत तो हाउ है। और थारे लहर जीव राजी, और थारे लहरिया ने सुन और भी गणे होगी बारे हो राजी।
1: बात है ओला दो मारे लेरियो लिया दो आज, लेरिया पे लगा दो जालर, लगा दो लूमा चार लिया।
0: वाह वाह, लगा दो लूमा चार, यानी खाली लेरियो नहीं लानो है बल्कि लूमा भी लगा,
1: लूमा भी लगानी
0: है। वाह वाह, बहुत सुंदर। ज्ञान की अपना गीत है जहाँ संस्कृति और संस्कृति की झलक दिखाई दे।
1: बिल्कुल कंचन। तो गावरी बाता कार्यक्रम में अपना सगला श्रोता बंधु रो स्वागत करा हा। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.8 FM,
1: सुनता रहो
0: मुस्कुराता रहो।
1: तो कंचन, तो बिल्कुल सही क्यों है कि अपनी संस्कृति की पहचान गीता रा माध्यम से केड़ो बढ़िया तरीको हो गए है।
0: बिल्कुल, और अपनी राजस्थान की धरा तो ज्ञान है कि अठे की हर चीज पे एक अनेक तो गीत बने हुई है।
1: हाँ, हर चीज पे। वो लेरिया को तो भाई अपने महत्व है भाई, लेरिया तो राजस्थान की पहचान है,
0: अपनी जीवन शैली में एक अंग है।
1: अंग है, है? जान अपने नहीं कहवा कि भाई उदयपुर है, जयपुर है, जोधपुर है, ये अपने राजस्थान का नाक है। हाँ? राजस्थान का नाक है, वैसे नहीं लेरियो भी अपने राजस्थान के पेरवेश में नाक है।
0: बिल्कुल, लेरियो बंदेज ये सब का ये राजस्थान की शान है। यानी जठे भी बंदेज हो लेरियो दिखाई दे जावे, कोठे भी आपा गएड़ा हो तो पत्तो लागी जावे कि अमुक अमुक व्यक्ति तो राजस्थानी दिखे।
1: हाँ,
0: पैरवेश से इठा पड़ जावे।
1: पर देख कंचन, मतलब खाई बात करा आपा, आपा कटी घ्यावा, चलो अपना घावरा महीने तो अपना लोगा की कदर नहीं होवे।
0: हम्म,
1: नहीं कहवे के बेटी परानंद ससुराल में जावे, पियर को कुत्तो दिखे तो भी ना होला।
0: कई कावत कही है तू भी।
1: तो विदेश या एडी जगह पे चले जावा जटे अपना पियर उन ससुराल खूब दूर है, बटे अपना पियर को या अपना ससुराल को कोई मल जावे तो केड़ो जीव राज्य हो जावे। पेरवेश आपा परिचय करवा की कोशिश करा रहे हैं।
0: हाँ।
1: तो साड़ी लिंगो पेर रखे या को परिचय कराए तो अपना राजस्थान रहा,
0: अपने राजस्थान का है। बिल्कुल सही कही भाई। और देखो आपने लहरियो और बंदेश की बात खाली अपने राजस्थान में और हिंदुस्तान में ही नहीं हुआ, विदेश में भी मैं कई बार देखूं कि भी आजकल तो कई यूट्यूब और इंस्टाग्राम को जमानो है, मीडिया पे देखूं मैं।
1: हाँ।
0: ये सब राजस्थानी लोग जो बाहर चले गए नहीं, बाहर चार भी मैं देखूं कि कई जना तो लहरियरी साड़ी नहीं पहने, ओढ़नी पहने पूरी, पूरी ढाई पटकी वाली।
1: जबकि देख कंचन, ओढ़नी छोड़न साड़ी भी छूट गई, ड्रेसा और ड्रेसा भी छूट गई, जेंसन एड़ा पेरा लाग गया।
0: सही बात, आपने अठा परिवर्तन आ गया।
1: हाँ।
0: पर वे विदेश में जाकर भी अपनी संस्कृति बारे अच्छी लाग रही है, ये वास्ते वे आज भी उन्हें एक्सप्लोर कर रहा है।
1: देख कंचन, जैसे मुगी विदेश के थूकी चाल विदेश, ठीक है, वो तो पूरा राजस्थानी परिवेश में जीन की तो थाने अतरो नहीं लागी, पर थारे जैसे बहु आई के बच्चे बेटी है जो वटी नहीं बड़ी भी वटीली संस्कृति देखी तो विने राजस्थानी कल्चर घणो हाउ लागी।
0: वो बिल्कुल सही बात है।
1: डाले क्यों नहीं लेरियो पहनो, साड़ी पहनो, घर में अच्छो लागे, चनिया चोली पहनो, साड़ी लेंगो पहनो, वाने हो लागे, क्योंकि आपा तो जी चुक्या,
0: आपा जी चुक्या,
1: आपा ने ठा है कि आपनो पेरवेश का ही है, आपने तो खून में बसोड़ो है, तो वटी ने आपा ने अतरो नहीं लागे पहना, पर अपनी आवा वाली पीढ़ी ने लागे कि नहीं नहीं वो वेणो छावे तो कह रही विदेश में अतरो क्रेज है तो क्रेज हो ही ना भाई, वह संस्कृति देखी नहीं तो वे देखोगो और अपनाओ को घणो शौक रहे,
0: अपनाओ को घणो शौक रहे। और देखे मैं देखिए कि ज्ञान भी कहे कि ई ओढ़नी ने आप सामान्य नहीं मानो।
1: हाँ,
0: जिन्हें आप जान भी इच्छा हो व्या नहीं पहन लेवा,
1: अपना राजस्थान की शान है भाई, लेरियो
0: लेरियो शान है। और वो ओढ़वा की तरीका पे बात कर रही है कि इको अदब है कि भाई हाँ आप ये मत मानो कि मैं सिर पर ओढ़ रखी हूँ तो मैं पर्दा प्रथा ने महत्व दे रही हूँ। अठे पर्दा प्रथा ने महत्व देने वाली बात नहीं है, आ मर्यादा की प्रतीक है, आ संस्कृति की प्रतीक है। और मैं देखूं कि भाई कतरी मोटी बात कही है। तो
1: है।
0: बोले ओ ओढ़नी नहीं है, जिन्हें इच्छा हो तो थे गले में डाल लो और इच्छा हो तो चाहे साड़ी की तरह पहन लो। आ एक अटूटे राजस्थानी संस्कृति के रिश्ता ने व्यक्त करवा को माध्यम है।
1: बिल्कुल, तो कंचन पहले थन ठाए केड़ा लेरिया चलता। हाँ, मैंने आज भी याद है क्योंकि मोटी मम्मी दादी सान सब पेरता एक जेड़ो कलर गुलाबी कलर डार्क गुलाबी कलर अनवी का महीने सफेद
0: सफेद लहरिया होता ओ बिल्कुल सही कही
1: साड़िया भी एड़ी चाली लुगड़ा भी एड़ी चालिया पहले कंचन पॉलिस्टर को ज्यादा चालता पॉलिस्टर सिफोन पॉलिस्टर हाँ यहाँ पे लेरिया वेता
0: अच्छा
1: पचे धीरे धीरे अमेरिकन चालियो
0: अच्छा
1: अमेरिकन की साड़िया पे चालियो ठीक है आज तो आप खरीदो प्योर पे कई अच्छो लागे ले रहे हो प्योर पे जो आज का समय में जो प्योर की साड़ी पे ले रहे हो चाले ना मैं तो कहूँ सब बेस्ट
0: सही बात
1: आप पहना तो ये अपने शरीर के वो कहिए न तो सर के फिसलन नहीं है भी पे प्योर में मैंगो आवे भाई प्योर
0: प्योर मैंगो अपना
1: शरीर लागे का आप कहीं पेन रखे और बिल्कुल लाइट वेट वर्क वाली भी खरीद लो फिर भी सोबर
0: बिल्कुल सही और देखो भाई पहले तो कही है लाल पीला गुलाबी यही रंग होता ज्यादातर है
1: और लेरिया में ज्यादा गुलाबी कलर पसंद करता
0: गुलाबी रंग पसंद करता लेकिन अब का ये कि नई जनरेशन के फैशन के वास्ते की भी ठीक है कि सब लोग गुलाबी रंग नहीं नहीं पसंद करे ये वास्ते अभी तो इंग्लिश कलर भी आ गया
1: इंग्लिश कलर मिक्सिंग कलर मस्त मस्त कलर चल
0: हाँ
1: नहीं वास्ते ले जाना पड़े छोरियान लारे के लो भाई था के पसंद कर लो
0: सही बात है
1: क्योंकि पहले तो कटे 100-200 में अच्छो अच्छे ले रहे आ जाता आज 100-200 में तो एक ब्लाउज पीस ही नहीं आवे ब्लाउज पीस का ही 1000-1000 रुपया ब्लाउज का लागे
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल
1: और ले तो 10-10, 12-12 हजार का ले रहा वे
0: बिल्कुल सही है अब तो कही है की समय बदल गयो महंगाई होगी पर अपनी संस्कृति जान की त्यान
1: संस्कृति आज भी अपने जो कल्चर जिंदा है
0: अब देख
1: को है चुंदड़ी को है
0: सही बात है देखे नई नवेली ने आपा वो लहरियों को कतरो क्रेज हुआ नई नवेली के वास्ते
1: अरे नई नवेली भाई सावन महीनो आवे अदरत्यो रखो अबे अदरत्या में तो लेरियो रखे
0: लेरियो रखे
1: क्योंकि क्रेज तो है ही है कि भाई हाँ अब त्योहार पे सब पहले के दे रहे भाई माँ के तो अदरत्यो आई छोरी के लेरियो आई
0: ओ लहरिया की जिक्र बहुत बड़ो हुआ है वो भी देखो है मारी ससुराल से लहरियो आये हो है मारी बेटी को लहरियो आये हो
1: देखो तो सुनीता ये भी अपनी परंपरा देखो पढ़ने जदि पड़ला में चुंदड़ आवे और पचे पढ़ने बाद जो अदरत्यो रखे सावन का अदरत्या में आवे लहरियो
0: लहरियो आवे
1: और कणगोर का अदरत्या में आवे मोटड़ो
0: मोटड़ो सही बात
1: मोटड़ो जिन्हें बंदेज भी कहवा तो मतलब केड अच्छी परंपरा है हरेक का नाम है
0: हाँ।
1: और कनी त्योहार पे कई रखनो या ठा है
0: और जब टाबर होवे तो
1: टाबर होवे तो वो तो पियर आवे पीलियो
0: पीलियो
1: हाँ, वो पियर को होवे
0: वो तो पियर को
1: हाँ। वो ससुराल को नहीं आवे और ससुराल वाला जो अदरत्यो रखे बहू के वो तो बहू के रेवे पाछो घर को घर में आवे बहू का माँ बाप ने तो पाछो अदरत्यो भेजनो पड़े ससुराल में तो सासु ननन का लिए जमाई का लिए सब का लिए कपड़ा लगता घणो खर्चो हो जावे
0: घणो ही खर्चो हो जावे भाई और देखो अपनी बेटी ना आपा अच्छा देवे और सास ननन दे वाने आपा हल्का नहीं दे सका अच्छो ही को नहीं लागे अपनी बेटी ने तो पछे भी आपा थोड़ा सोचन दे देवा पर भाई सास को भी बड़ो भारी काम हुआ
1: बिल्कुल सही बात है और भाई आपने बेटी ने तो फिर भी हल्को दे दो
0: वो वही तो
1: सासू नंदा ने अगर आप हाउ नहीं देवो तो पहले तो नाराजी घना वेतन भेज देता अगले जो माँ के तो नहीं छावे
0: और भी आपा भी जाना कि भी मन में कठे ने कठे तो वो भावना आई जावे
1: हाँ, हाँ।
0: तो ये वास्ते अच्छे से अच्छे देवा की कोशिश करा
1: अरे कंचन पहले तो संयुक्त परिवार वेता माँ बाप को तो गणी टाट पोली वेती
0: सही बात
1: ताकि सबकी रोको परिवार में नानी सास मामी सास वो लगान घर का सब परिवार
0: सब परिवार
1: सासू जी नंदा देरानी जेठानी पाचा हौजी के देरानी जेठानी काक्या सासू जी बढ़िया सासू जी चाचा सासू जी मामिया सासू जी
0: बताओ कतरा हो जातो
1: आगे हुई है कि हो दो साड़ी नहीं छावे कतरी छाई जावे पहले तो संयुक्त परिवार आज तो वही एक बेटो ने एक बेटी ज्यादा ज्यादा के तो दो बेटा के दो बेटी ये कहो होता तो बेबी कोई नहीं
0: सही बात
1: और पहले तो छह छह सात सात बेटा बेटी है हर एक के मान लो मारो उदाहरण देव मारे पांच भाई तो मारे पांच ही भाई और पांच ही भाभी के कपड़ा लाना था के ठीक है
0: और माता जी के
1: बेना तो मारी बेना के लाना पचम मारा माँ बाप के लाना अभी मारा हारा में पांच का क्या हौजी है दो का क्या हौजी है तो वाके सबके लाना पाचा दादिया हौजी है वाके भी लाना पाचा बुआ हाउजी है, मासिया हाउजी है, मामिया हाउजी है, वाके भी लाना
0: बोलो कतरो जीण
1: कतरो
0: कतरो
1: मारा पियर को अन खुद का घर को।
0: मैं तो ज्ञान को भी धीरे धीरे थोड़े से कम तो हुई हो है,
1: घणो कम हो
0: है ना,
1: घणो कम अबे तो घर वाला के रख दे तो मोटी बात है।
0: हाँ, और बस अतरो ही होने चाहिए। हाँ। ठीक है कि जो बिल्कुल नजदीक नजदीक का रिश्ता है वाने अपनी हाँ। भावना से लाना चाहो तो वो बात दूसरी है।
1: हाँ।
0: और भी नहीं तो तीसरी चौथी ने पीढ़ी ने आपा देवा की बात करे तो भाई वो थे, अगर आपकी भावना ही है तो थे खरीदन पे ना दो,
1: आप रख दो ना सामने वाला पे, क्यों अतरो डालो,
0: क्यों अतरो डालो,
1: बेटी दीदी वो कोई कम है,
0: बस वही तो।
1: चलो भाई कंचन आप ही थोड़ा भावना में बह गया, आ जाओ एक आचो गीत सुन ला।
0: सही बात है भाई, थोड़ा भावना का विषय हो।
1: हाँ, तो आप सुन रहे रेडियो मधुबन
0: 107.4।

0: रोहा भाई कंचन पाचा स्वागत कर रहा हूँ अपना सगला श्रोता बंधु और गावरी बात है कार्यक्रम में। आप सुन रहे रेडियो मधुबन
1: 107.8 FM,
0: सुनता रहो
1: मुस्कुराता रहो।
0: केड़ा केड़ा गीत चालिया है
1: खेर केड़ा केड़ा का ही है। कोई पत्नी अपने पति से मनुहार कर रही है, इच्छा व्यक्त कर रही है, एक आग्रह कर रही है।
0: तेरे लावो तो थाने पलका पे राका, लावो तो बचे थाने पलका पे को नहीं राका मतलब ये में सब पॉजिटिव बोल रहे हैं, नहीं राखवा को नहीं कह रहा, पर मेरे को अर्थ समझ जाओ।
1: हाँ सही बात है। हाँ, मन चुनर मंगा दे ओ नंदी के बीरा,
0: नंदी का बीरा।
1: कई जना तो श्रोता बंधु जो नई पीढ़ी है वो नंदी का बीरा भी नहीं समझी, छोटा अपना टाबर ही नहीं समझे।
0: हाँ,
1: तो वो तो बता देवा भैया अपन कौन नंदी को बीरो है। अरे बीरा यानी भाई, नंदी यानी ननंदे, ननंद का भाई
0: यानी खुद का हस्बैंड,
1: खुद के हस्बैंड तो ज्ञान है।
0: सही बात है। और आप लेरिया की बात कर रहे हैं तो भाई लेरियो देख, पहला तो केड़ा केड़ा लेरिया चलता सिंपल आप बात की थी, गुलाबी पोलिस्टर पे, पचे सिफोन पोलिस्टर पे चालू हुए, पचे अमेरिकन पे, अमेरिकन का कपड़ा को आज भी मैंने नाम याद है, शांतिनाथ को पोत।
1: शांतिनाथ को पोत,
0: शांतिनाथ को पोत अमेरिकन को 60 रुपया की आती साड़ी।
1: ओ पूरा ही विश्लेषण कर दियो वाह भाई वाह।
0: पचे धीरे धीरे और भी अलग अलग कपड़ों चालवा लागे
1: खेर,
0: और हाँ पचे डिजाइन चाला लागे, और आज तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा मिले। आज तो देखो प्योर में भी मिले, तो आज
1: पॉलिस्टर में भी मिले
0: कपड़ो वे न, जेना आप कही के वाह पीलिया को कपड़ा आवे, चंदर को कपड़ा आवे,
1: जोरजट
0: जोरजट वहाँ में भी चाल रहे, वहाँ में भी चाल रहे जोरजट में भी, तो तरह तरह का लेरिया चल रहा।
1: सही बात है।
0: और लेरिया पहली प्लेन चलता जिमे खाली कोर का फूल वे था, मोगरा का फूल वे था, और नीचे के तो लपो वे तो के बीजो वे तो, पचे धीरे धीरे बदलाव आयो, आरी तारी को काम चालवा लाग्यो,
1: लपो बीजो आरी तारी ये सब हो काई वो भी बता।
0: देखिए कोर की वेराइटी है।
1: हाँ
0: कोर में लपो वे वे थोड़ा चोड़ो वे वे
1: चोड़ो वे
0: बीजो वे जो कंगूरा वालों
1: यानी गोटा वे। लपो यानी गोटा।
0: हाँ गोटा की न्यानी लपो वे तो
1: ओ मैं हाँ, समझ गई।
0: सिंपल प्लेन पट्टो वे तो
1: हाँ
0: बारीक बारीक डिजाइन वे थी वाणी में
1: मारे वटे इन्हें पेमक का वे।
0: अच्छा
1: पेमक गोटो। हाँ थोड़े थोड़े चेंज हो जावे नी भाषा को।
0: और बीजो जी में त्रिकोण डिजाइन वे।
1: हाँ पाजेब जान की हुआ थोड़ी।
0: हाँ, हाँ,
1: हाँ,
0: सकड़ो हुए वो
1: सकड़ो हुआ है।
0: बीच में फूल आवे तो पहले तो फूल भी हाथों बनाता कोर।
1: अरे वो पांच पत्ती का फूल।
0: हाँ पांच पत्ती छह पत्ती का फूल।
1: हाँ
0: तो नहीं तो
1: सही बात है, पहले घड़ा ही बनता।
0: हाँ अरे आज भी याद आवे तो फूल याद हुआ दे दो तो भी आप यू मोड़ता
1: तिकोणा तिकोणा बना वो गोटा का फूल।
0: बीच में एक गांठ लगाता,
1: बीच में एक गांठ लगाता भाई। चल माने तुम्हारा बचपन याद आ गया। और एक बात बता दू तो नहीं
0: बता दे
1: कहीं हुए कि मारे पड़ोस में ज्ञान के गोटा पत्ती को काम करता कठे सिलाता हो और बेचारे अपने जीवन निर्वाह के वास्ते कोई कुछ करे कोई कुछ करे टाइम पास भी हो जावे। और तो भाई मन ने भी और वे सब छोरिया राख दिया आपने करने पीसा। तुम्हारी भी इच्छा हुई है कि मैं भी गोटू किनारी को काम कर लू और मन भी पीसा मिली सी।
0: हाँ।
1: पर कहिए मैं भी थोड़ा बहुत बना देती और वाने भी सहयोग लाग जातो और मन तो इंटरेस्ट डेवलप हो गयो। देती रहो एक दो दिन चालियो मैं थोड़ा थोड़ा पीसा कमान ले आई। चल भाई ठीक है छुट्टी आए तो घर में कोई बात नहीं। धीरे धीरे कर कमारो तो लोभ लालच बढ़ गयो कठे पढ़ाई कठे अपनी सब। अरे भाई लेकिन मारे तो घर वाला कही है कि एजुकेशन के प्रति खास अवेयरनेस ही। एक दिन तो मारी माँ धीरे से जार मारे कान के चुटकी भरी और मैंने उठा लेना की। वो दिन मैंने आज भी याद है।
0: अच्छा
1: और बड़ी होगी मैं तब तक सोचती कि देखो वाह वे सब भी तो घनी जनी छोरिया करती ज्ञान को काम।
0: हाँ।
1: बाकी माँ ने इतना ध्यान नहीं दियो पढ़ाई पे तो ये वास्ते में घोटा में और यहाँ इनकी छोटे छोटे काम में रह गया। पर मारी माँ एजुकेशन में ध्यान दी तो आज मैं सब ने पढ़ा कुछ न कुछ बना दिया।
0: बिल्कुल खुद ही शिक्षिका बन गए
1: हैं वो ही।
0: सही है
1: तो
0: वो क्या मैं थोड़ी चीज में आप अटक गया।
1: हाँ।
0: आप ऊपर नहीं आ सका।
1: ऊपर नहीं आ सका
0: तो बहुत बढ़िया है कि पढ़ाई के प्रति अवेयरनेस रहे और आज तो भाई छोप कर रही तो माने भी गर्व है। तो आप बात कर रहे हैं भाई पहली देखो तो ग्रहणी आज भी देखो लेडीज घर बैठन कतरे काम कर रही
1: हाँ,
0: की कई मजबूरी वे की कई मजबूरी वे
1: बिल्कुल सही बात है। घरेलू उद्योग कई जना का रोजगार को माध्यम भी है।
0: घर चल रो भैया को
1: घर चाल
0: 10,000 धामड़ा में जो आपने लेडीज कमा रही है वहाँ को
1: घर चाल रो सही बात है।
0: क्योंकि अति आवश्यकता तो है नहीं है, रोटी कपड़ा मकान में निकल जावे, लाइट बिल निकल जावे, लाइट बिल ही असल है सरकार 200 यूनिट के छूट दे रखी जो भाई फर्क भी पड़ गयो।
1: बिल्कुल सही बात है, सरकार भी खेरा अच्छा कदम उठावे विकास के वास्ते।
0: बिल्कुल, तो 8-10 हजार आराम कर खर्चो चल जावे।
1: बिल्कुल,
0: यह बात अच्छी लगी कि चलो कहीं नहीं तो आप कहीं भी करो पर फ्री मत बैठा रहो आप आर्टी ने बैठा वो क्या खाली दिमाग शैतान को घर
1: और कहिए भी टाबरा ने तो पढ़ानो भी जरूरी है। देखो
0: बिल्कुल बहुत जरूरी है
1: यानी आप छोटे छोटे लालच के वास्ते कई बार कही है कि भाई यहाँ बांध देवा है वाने टारगेट दे देवा कि भी तूने भी वो करना है तो भी बालक को जो एक विकास है वो तो अवरुद्ध हो जावे
0: आजकल कंपटीशन को जमाना है। पढ़ाई कर रहे तो बस पढ़ाई पे फोकस देवो
1: बस
0: और कहीं नहीं करना,
1: पढ़ाई पे ध्यान देना है,
0: दूसरी बात पे नहीं, नवरी बात पे नहीं। तो ऐसा ना फिर राजस्थान का महीने ले रहा की खूब वेल्यू है, सावन महीना में ससुरालू बहु के लेरियो भेजे
1: लेरियो
0: जना के ओक वे वाह बात अलग वे वो सोम एक आधा किस वे
1: हाँ, हाँ, हाँ।
0: बाकी भेजी है तो पच वे लेरियो नहीं पेरे मने याद आवे वाके रिश्तेदार में वाके पीलो नहीं पेरे छापा में जो पीलो देवे और वाके मीना ने पीला को उतरो शौक है वाके सारो पीलो छूट गयो वाको नहीं तो पीलिया को घणो ही शौक है वाके कई खबर कई पड़ी हुई
1: कई बार डेथ हो जावे या कोई ऐसी अनहोनी घटना हो जावे तो वे
0: कहे काके आनो करन आई पियर में और पियर में ससुरा जी बीमार हो जो
1: चलता बने
0: हाँ चलता बने पेरियो भी नहीं पीलियो पीलियो कहे सब क्यों पीलियो पेरन लेवना भट्टियो जापा को आनो आवे तो अड़ोस पड़ोस में सब जगह पे अपने मिठाई बाटी है इन्हें राजस्थान में लेवना कहवे तो सासू जी को तैयार हो जाओ आप दो ही चालिया लेवना दे जावा तो भी इन्होंने पीलियो पेरियो और हाथ में लड्डू की तपेली ली थी और उठी ना ससुरा जी की डेथ हुई की तो क्या बस ओ पड़ की पीलियो नहीं पहना
1: कई बार कही है कि देखो एक ज्ञान की सोच

0: के भी बात की थी, और ब्यापा बांधनी की, चुंदर की, पेलिया की, सब की बात करा। पर आज के लिए सगला श्रोता बंधु इजाजत छावा और थारो भी भाई आओ जय राम राम
1: राम राम।
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए।

0: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सफलता का आधार मूल्य शिक्षा इस एपिसोड में। आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। आइए आज हम लोग, जैसे कि कल हमने मैं ही सफलता हूँ इसका दूसरा पार्ट सुना, आज हम लोग सेल्फ जो खुद से बातचीत करने की जो आदत है उसको बनाए रखने के लिए आज का जो विषय है सेल्फ टॉक कैसे करें, खुद से खुद कैसे बात करें, इस विषय को लेकर बातचीत करने वाले हैं। तो आइए एक एक्सपीरियंस आज करेंगे हम लोग, जैसे कि हम टॉक नहीं, आज एक अनुभूति आप करने वाले हैं, क्योंकि एक प्रोसेस है मेडिटेशन का खुद से बात करने का, वो प्रोसेस को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज के इस एपिसोड को सजाने के लिए फिर से राजेश जी हमारे साथ हैं। राजेश जी बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: जी जी, और मैं चाहूँगा कि आज जो आप विशेष प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयरिंग करने वाले हैं कि खुद से कैसे बातचीत करें। जी,
1: हम पिछले दिनों से बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर ही खुशी है, आनंद है, प्यार है, लेकिन उसको अनुभव कैसे किया जाए। अपने मैसेजेस में हमने कुछ थॉट्स दिए, जब हम उन थॉट्स को करते हैं, थॉट्स क्या हैं, एक शब्दों का समूह है, और हमने ये भी जान लिया है कि शब्द हमारे मन को प्रभावित करते हैं, हमारे ब्रेन के ऊपर इफेक्ट करते हैं। पॉजिटिव वर्ड्स पॉजिटिव इफेक्ट लाते हैं, खुशी मिलती है, शांति मिलती है, नेगेटिव शब्द बुरा प्रभाव डालते हैं दिमाग के ऊपर भी, शरीर के ऊपर भी। तो एक तो प्रयोग शायद आप लोग कर भी रहे होंगे या कईयों ने किए भी होंगे कि एक विचार के द्वारा हम अपने में उस खुशी का आह्वान करें, शांति का आह्वान करें। लेकिन कई तरह के व्यक्तित्व होते हैं, उनमें एक तरह की विधि काम नहीं करती है, लेकिन दूसरी विधि अपने अंदर उस सफलता, खुशी, आनंद को प्राप्त करने की है, सेल्फ पॉजिटिव टॉक, जिसे हम आत्म सकारात्मक बात भी कहते हैं। तो चलेंगे आज हम आपको स्वयं से स्वयं कैसे बात करना, अपने आप से बात करके अपने अंदर उस खुशी को, आनंद को, शांति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, वो केवल और केवल आपके ऊपर ही निर्भर करता है। आइए आज हम ये एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक प्रयोग करेंगे। जैसे साइंस के स्टूडेंट होते हैं, उनको थ्योरी बताई जाती है, थ्योरी के बाद वो लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो थ्योरी तो आप सब लोग जान ही गए हैं कि हम कौन हैं, मेरा वास्तविक अनादि स्वरूप क्या है, अनादि गुण क्या हैं, लेकिन अभी हमें आज उनको अनुभव करना है दूसरी विधि के द्वारा। तो हम चलेंगे इस यात्रा के ऊपर जिसको हम सेल्फ पॉजिटिव टॉक कहते हैं। उसके लिए आप थोड़ा अपने आप को तैयार कर लीजिए, अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए। हम जब प्रयोग करते हैं तो उसके लिए कुछ तैयारी करते हैं, तो इसके लिए तो मैं समझता हूँ आपको विशेष तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसा अनुभव मैं समझता हूँ शायद ही ज़िंदगी में कभी किसी ने किया होगा। उसके लिए पहले अपने आप को अलर्ट कर लीजिए, अगर मन में कोई आलस आ रहा है या आपको नींद आ रही है तो पानी पी लीजिए, आँखों में छींटे मार लीजिए और कोशिश कीजिए कमर को सीधा रखें। कोई भी काम कर रहे हों तो उस काम को छोड़ करके बैठ जाएँ केवल अगले 10 और 15 मिनटों में, और आप स्वयं एक साइंसदान बनकर स्वयं के ऊपर ही प्रयोग करेंगे। शरीर आपका एक लैब का काम करेगा और आपका मन जो है वो आपका साइंटिस्ट का काम करेगा। तो अपने मन के द्वारा

अपने ऊपर आप प्रयोग करेंगे। तो चलते हैं हम इस प्रयोग की ओर, आगे बढ़ते हैं। हम म्यूजिक भी चलाएंगे, ये म्यूजिक आपको मदद करेगा एकाग्रता लाने में, और आप अगर इसे रोज सुबह शाम करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपनी कमर को सीधा रखिए। अगर किसी को भी कमर में प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है तो बल्कि आप लेट के भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने स्वयं से बात करनी है। तो सबसे पहले आप अपने ध्यान को अपने पैरों की ओर लेके आएं। फर्स्ट ऑफ ऑल पे अटेंशन टू योर फीट, और ऐसा अनुभव करें कि मेरे पांव बिल्कुल हल्के हो रहे हैं। हल्का छोड़ दें अपने पैरों को।

ये हल्कापन पैरों से होते हुए धीरे धीरे मेरे टांगों के नीचे वाले हिस्से की ओर बढ़ रहा है और मेरे काफ मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, टांगों के नीचे वाला हिस्सा हल्का हो रहा है।

ये हल्कापन टांगों के ऊपर वाले हिस्से की ओर बढ़ रहा है। अनुभव करें दैट माय थाइज आर रिलैक्सिंग। हल्कापन पेट के नीचे वाले हिस्से की ओर बढ़ रहा है। एंड नाउ यू फील दैट माय एब्डोमेन इज रिलैक्सिंग। पेट के नीचे वाला हिस्सा बिल्कुल हल्का हो गया। यह हल्कापन धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रहा है। अनुभव करें दैट माई चेस्ट एरिया, मेरा छाती वाला हिस्सा बिल्कुल हल्का हो गया है। अपने कंधों को ढीला छोड़ दीजिए। रिलैक्स योर शोल्डर्स। अनुभव करें कि मेरे गर्दन के मसल्स बिल्कुल हल्के हो गए, रिलैक्स हो गए हैं।

अनुभव करें कि गर्दन के मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं, फेस मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। ढीला छोड़ दें अपने सारे शरीर को, मेरा सारा शरीर बिल्कुल हल्का हो गया। Now you feel that my whole body has completely relaxed. I'm very calm, very quiet, very cool. जैसे हवा बिल्कुल हल्की होती है, ऐसा मेरा शरीर भी हवा की तरह बिल्कुल हल्का हो गया।

मेरे शरीर का कोई भार नहीं, आई एम वेटलेस। अभी अपने ध्यान को अपने मस्तिष्क के मध्य में एकाग्र करें और देखें अपनी सांसों को। जैसे आप सांस को अंदर ले रहे हैं, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं। जैसे ही आप सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, आपके मन में कोई भी तनाव, चिंता, परेशानी, दुख सांसों के द्वारा बाहर जा रहा है। If there is any tension, pressure in your mind, it's going out as your

और जैसे ही आप सांस को अंदर ले रहे हैं, आपको गहन शांति की अनुभूति हो रही है। As you are breathing in a cool breeze,

अभी अपने ध्यान को प्रकृति के मध्य में एकाग्र करेंगे. ट्राई टू कंसंट्रेट इन द सेंटर ऑफ योर फोरहेड. देखें अपने आप को मस्तिष्क के मध्य में. मैं एक चमकता हुआ बहुत सुंदर दिव्य सितारा हूं. आई एम ए ब्यूटिफुल डिवाइन शाइनिंग स्टार इन द सेंटर ऑफ माय फोरहेड. जैसे सितारे सबको शांति देते हैं, ऐसे मैं भी एक शांति का सितारा हूं.

कम से कम 30 सेकंड तक इसी संकल्प में रहेंगे, मैं बहुत सुंदर दिव्य शांति का सितारा हूँ। देखें उस सितारे को,

अगर आपका मन कहीं और जा रहा है तो वापस उसे इसी विचार में लेके आए, अपने मन से बात करें, ऐ मन आज तू मेरा दोस्त बन जा, तुझे जीवन में वास्तविकता में जो चाहिए शांति आनंद प्रेम, आज मैं तुझे वो देने वाला हूं, इसलिए तू आज मेरे साथ रह। अगर आपको नींद आ रही है तो आंखों को खोलें और अपने मन को इसी विचार में रमन करें कि मैं बहुत सुंदर दिव्य चमकता हुआ शांति का सितारा हूं।

जैसे ही 10 से लेकर 1 तक काउंट किया जाएगा, 10 से लेकर 1 गिनती की जाएगी, आप अपने अंदर उस गहर शांति में, परम शांति में खो जाएंगे, समा जाएंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 आप अपने अंदर उस गहन शांति में समाते जा रहे हैं, समाते जा रहे हैं। 4, 3, 2, and 1 आप खो गए उस गहन शांति में, परम शांति में जो आपके अंदर है, जो कि आप स्वयं खुद हैं। That's what I am, that's what is my reality.

मजाले इस शांति का, एक अजब सी शांति जो जिंदगी में आपने अभी तक कभी अनुभव नहीं की। वाहरे मैं आहा

अभी ऐसा अनुभव करें कि एक बहुत बड़ा दिव्य सा सुंदर सितारा आपकी आंखों के बिल्कुल सामने है। जैसे आप एक सितारे हैं, वो भी एक बहुत सुंदर दिव्य सितारा है, बहुत बड़ा सितारा है। उससे सात रंगों की तरंगे निकलकर आप में समा रही हैं। जैसे आप अपने मन की बात अपने दोस्त से करते हैं, अपने संबंधी से करते हैं, अपने माता पिता से, घर वालों से, पति से, पत्नी से, बच्चों से, ऐसे ही आज हम उस सितारे से अपने मन की बात करेंगे। किसी भी संबंध के साथ जो आपको अच्छा लगता है या अपने जीवन में मिस करते हैं, अगर किसी की मदर नहीं है उसको माँ बनाकर उससे बात करेंगे, किसी का सच्चा दोस्त नहीं है, सच्चा साथी नहीं है, उससे दोस्त बनाकर बात करेंगे। जैसे मैं शांति का सितारा हूं, मेरा दोस्त मेरी माँ, या मेरा बच्चा, जिन माताओं बहनों का कोई बच्चा नहीं है उसको बच्चा बनाकर उससे बात कर सकते हैं। जैसे मैं शांति का सितारा हूं, वो भी शांति का सागर है, उससे मन की बातें करेंगे। ऐसी बात जो जिंदगी में आज तक आपने किसी से भी शेयर नहीं की, किसी को बताया नहीं उसके बारे में, जिसको सोचकर आपके मन में चिंता परेशानी हो जाती, या उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसने आपको जिंदगी में बहुत दुख दिया, चिंता दी, परेशान किया, जिसके बारे में सोचते ही आपका मन दुखी हो जाता, परेशान हो जाता, वो कोई भी हो सकता, बचपन से लेके अब तक, घर में आपके माँ बाप, भाई या बहन, आपके रिश्तेदारों में से कोई भी, या स्कूल में टीचर, कॉलेज में प्रोफेसर, आपके पड़ोसी, आपके बिजनेस में आपका बिजनेस पार्टनर, नौकरी पर आपका बॉस, कोई भी हो सकता है, उसके बारे में उस दिव्य सितारे को सब कुछ बता दें। टेक योर ओन टाइम, समय लें कम से कम एक मिनट, अपने मन की बात सब उसको बता दें।

जैसे जैसे आप अपने मन की बात उस सितारे को बताते जा रहे हैं, आपका मन हल्का होता जा रहा है। ऐसा अनुभव करें कि मन से कोई बहुत बड़ा बोझ, बहुत बड़ा कोई पत्थर पड़ा हुआ था, उतर गया, बोझ उतर गया, बिल्कुल हल्के हो गए आप। और उस सितारे से प्यार की तरंगें निकलकर आप में समा रही, वो सितारा आपको बहुत प्यार कर रहा है, क्योंकि जिससे आप मन की बात करते हैं उसका प्यार हमें नेचुरली मिलता है। जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, ऐसे वो सितारा भी मुझे बहुत प्यार कर रहा है। और उसी प्यार के कारण जिस व्यक्ति ने मुझे दुख दिया, तंग किया, परेशान किया, उसको भी दिल से माफ कर देंगे कि उसने जाने अनजाने में मुझे तंग किया। अगर पिताजी ने आपको दुख दिया, मारा बचपन में, तो शायद वो भी मेरा भला ही चाहते थे, अज्ञानवश उन्होंने ऐसा किया, लेकिन मन में उनके ऐसा नहीं था। किसी टीचर ने मेरे को बहुत बुरी तरह मारा तो वो भी अज्ञानवश, क्योंकि वो भी शायद मेरी भलाई ही चाहते थे कि मैं जीवन में अच्छा बनूं। या अगर किसी ने जानबूझकर भी किया तो उसको ये जानकर के जैसे मैं शांति का सितारा हूं, वो भी शांति का सितारा है, उसको दिल से माफ कर देंगे। जैसे ही आपने उसको माफ किया, वो सितारा आपको और प्यार कर रहा है, और उसके प्यार में खो गए आप।

अभी चलेंगे और देखेंगे मेरे पास क्या क्या भौतिक वस्तुएं हैं, मेरे पास क्या क्या मटेरियल गुड्स हैं। मेरा घर है, चाहे अपना है, किराए पर है, एक कमरे का है, दो कमरे का है। मेरे पास मोटरसाइकिल है, साइकिल है, गाड़ी है, जो भी है। मेरे वस्त्र हैं, मेरे पास मोबाइल है। जो भी मेरे पास भौतिक वस्तुएं हैं, मैं सबसे संतुष्ट हूं। सब बहुत अच्छी हैं। मैं सबसे संतुष्ट हूं। जैसे ही आपने ये संकल्प किया, वो खुशी का सितारा आपको खुशी से भरपूर कर रहा है। आप में एक अजब तरह की खुशी, ऐसी खुशी जो आपने जीवन में कभी अनुभव नहीं की, उसका मस्तिष्क से लेकर पूरे शरीर में खुशी का संचार हो रहा है। वाह रे मैं ही शांति हूं, मैं ही प्रेम हूं। खुशी मेरा निज गुण है।

मेरे पास सब वस्तुएं प्राप्त हैं जो मुझे जीवन जीने के लिए चाहिए। मेरे जो भी रिश्तेदार हैं, जो भी सगे संबंधी हैं, दोस्त हैं, क्लास फेलोज हैं, मेरे टीचर्स, वर्क प्लेस पे मेरे साथी सब अच्छे हैं। जैसे मैं शांति का सितारा हूं, ऐसे सभी शांति के सितारे हैं। जैसे ही आपने ये संकल्प किया, आप में खुशी और बढ़ गई। मैं

रोज अगर हम शाम को 10 से 15 मिनट और सुबह जब हमें समय मिले स्नान के बाद या उठते ही आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इस अभ्यास के द्वारा अपने आप में शांति, प्यार और खुशी का अनुभव कर सकते हैं।

व्यक्ति धीरे धीरे अभी अपने पाँव की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे। अगर आपकी आंखें बंद है तो आंखों को खोलेंगे और सारा दिन इसी याद में, इसी स्मृति से काम करेंगे। कि मैं शांति का सितारा हूँ, प्यार का सितारा हूँ, खुशी का सितारा हूँ। और इस प्रयोग को सारा दिन करते रहेंगे और जो अनुभव होगा उसको डायरी पे लिखेंगे। थैंक यू। ओम शांति।

नमस्कार। चलिए, आशा करूंगा कि आप सभी को बड़ा ही अच्छा लगा होगा इस यात्रा में। खुद से कैसे बात करें और खुद की यात्रा कैसे करें, ये सारी बातें आपको प्रैक्टिकली राजेश जी ने करके बताया। तो इसका अब रोज आप प्रैक्टिस करें, सुबह या शाम जैसा भी आपको टाइम मिलता है, और देखिए 21 दिन में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। प्रयोग करते रहें और अनुभव करते रहें। इन्हीं शुभ आशाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो मुस्कुराते।

नमस्कार, मेरा नाम है अमन वर्मा और इस समय आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि आपका अपने घर पर कोई इंतज़ार कर रहा है, इसलिए कृपया हेलमेट लगाकर अपनी मोटरसाइकिल चलाएं। याद रखिएगा,

0: नमस्कार, मैं हूं अनूप जलोटा और आप मुझे इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो मधुबन में। भक्ति भजन आप सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। एक भजन जो मैं बहुत प्रेम से गाता हूं, उसकी एक लाइन आपको सुनाता हूं।
1: मैया मोरी मैं नहीं माखने खायो,
0: ये भजन मुझे बहुत प्रिय है, आप भी सुनिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

ओम शांति। आज 20 सितंबर 2026 और आज हम सभी अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 30 नवंबर 2011 को सुनाए थे, जिसमें आज बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में भाग्य के चमकते हुए सितारे देख रहे हैं। उसमें भी विशेष 3 भाग्य के सितारे देख रहे हैं। पहला जन्म का भाग्य, दूसरा संबंध का भाग्य और तीसरा प्राप्तियों का भाग्य। तो बाबा कहते, जन्म का भाग्य तो आप जानते हो कि आप सबको ये दिव्य जन्म ब्राह्मण जन्म देने वाला कौन, स्वयं भाग्य विधाता है। साथ साथ संबंध का भाग्य, तो तीनों संबंध बाप शिक्षक सदगुरु एक बाप से है। प्राप्तियों को भी जानते हो कि जहां बाप है वहां सर्व और बेहद की प्राप्तियां है ही है।

तो बाबा कहते एक में तीनों संबंध होने कारण याद भी और अनुभव भी सहज हो जाता है। सब तीनों संबंध के अनुभवी है। बाप द्वारा क्या मिलता है? वर्षा। और वो वर्षा भी कितना ऊंचा और कितने समय तक चलता है। दूसरा संबंध है शिक्षक का, तो शिक्षा के लिए कहा जाता सोर्स ऑफ इनकम है। दूसरा, शिक्षा से पद की प्राप्ति होती है और उसमें भी सर्वश्रेष्ठ पद, राज्य पद, अभी के भी स्वराज्य अधिकारी राजा है। और बाबा कहते हैं कर्मेंद्रिय के भी मालिक हो, राजा बन जाते हो, तो अभी का स्वराज्य और भविष्य में भी राज्य भाग्य प्राप्त होता है। और तीसरा संबंध है सतगुरु का, सतगुरु के द्वारा श्रीमत मिलती है और वो भी कितनी श्रेष्ठ मत। तो बाबा कहते देखो श्रीमत पर चलते हैं या कभी कभी मन मत पर मत की तरफ भी बुद्धि जाती है, क्योंकि पर मत मन मत तो धोखा देती है। और बाबा की श्रीमत है भी क्या, कितनी सहज, कौन सी, अपने को आत्म समझ मुझ बाप को याद करो, यही श्रीमत है। बाप यही चाहते हैं कि अब सदा इन तीनों संबंध से हर बच्चे आगे से आगे उड़ते चले। अभी संगम का समय अति वैल्यूबल है, वर्तमान समय के प्रमाण सब कुछ अचानक होना है, इसलिए बाबा कहते एवर रेडी बनना है। इस एक जन्म में 21 जन्म की प्रारब्ध बनानी है तो कितना अटेंशन देना पड़े। बाबा कहते आप साथ चलने के लिए बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनेंगे तब तो साथ चलेंगे। तो संगम का छोटा सा जन्म, एक एक मिनट कितना महान है। और उसमें बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं, दो बातों का विशेष अटेंशन दो, जो पहले भी बाबा ने सुनाया, एक समय, दूसरा संकल्प। समय व्यर्थ न जाए, संकल्प व्यर्थ न जाए, एक एक सेकंड सफल हो। बाबा कहते संगम युग ही भाग्यवान युग है, जितना भाग्य बनाना चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन बहुत समय का अटेंशन चाहिए। बाबा कहे पुरुषार्थी तो हो, अभी सभी का तीव्रता पुरुषार्थ में होना चाहिए। बाप दादा हर बच्चे को क्या देखना चाहते हैं? बालक सो मालिक देखना चाहते हैं। किसका मालिक? सर्व खजानों का मालिक। लेकिन बाबा ने देखा कई बच्चे उलाहना देते हैं कि बाबा कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता होती है वो समय पर आती नहीं है। तो बाबा कहते क्यों नहीं आती है? जब बाबा ने सर्व शक्तियों का खजाना बच्चों को वर्षे में दिया है तो समय पर शक्ति क्यों नहीं आती है? उसका कारण क्या है? कि आप जो मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट नहीं होते हैं। बाबा ने कहा कारण क्या है? आप अपने मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट नहीं होते, इसलिए बिना सीट के ऑर्डर कोई मानते नहीं है। और सेट क्यों नहीं होते? उसका कारण है कभी वेस्ट थॉट्स चलते हैं, कभी टेंशन आता है, तो उससे स्वमान की सीट छूट जाती है। और जहां स्वमान नहीं तो वहां क्या होगा? देह अभिमान आता है। तो देह अभिमान की सीट पर रहकर ऑर्डर करेंगे तो शक्ति नहीं मानती है। सीट पर सेट है तो सर्व शक्तियां हाजिर है। बाबा कहे चेक करके देखो। आज बाप दादा ने विशेष अमृत वेले चक्कर लगाया और सारा समय देखा कि बच्चे अनुभवी मूरत होकर बैठे हो, अनुभवी स्वरूप, सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप,
बाबा कहे उसमें अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ कमी दिखाई दी बाबा को। बाप दादा तो यही चाहते हैं कि लाइट माइट स्वरूप के अनुभवी मूरत बन बैठे। जैसे ब्रह्मा बाबा को देखा कितने पावरफुल फरिश्ते स्वरूप की स्थिति रही, लाइट माइट रूप में भी बैठते हैं, तो बाप दादा यही चाहते हैं कि उसके लिए मन को बिजी रखो और मन को चाहे मनसा सेवा में मनन शक्ति में बिजी कर दो। फिर बाबा ने देखा बच्चों ने 75 वर्ष की जुबिली प्लैटिनम जुबिली मनाई, तो बाबा कहते बच्चों की वृद्धि तो होनी ही है। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा फॉलो फादर करते हुए बाप समान संपन्न जरूर बने। पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, परंतु पुरुषार्थ में दृढ़ता कम है, बीच बीच में अलबेलापन आ जाता है और अलबेलापन पुरुषार्थ को ढीला कर देता है। इसलिए बाबा कहते हैं अभी मन को बिजी रखते हुए तीव्र पुरुषार्थी बने। क्यों? ब्रह्मा बाप भी आपका इंतजार कर रहे हैं और एडवांस पार्टी भी आपका इंतजार कर रही है। अपने को संपन्न बनाना अर्थात समय को समीप लाना। तो बाबा कहते हैं अभी समय की पुकार है तीव्र पुरुषार्थी भव, तीव्र पुरुषार्थी बनो। तो बाबा यही बच्चों को आज टाइटल दे रहे हैं कि एक एक बच्चा तीव्र पुरुषार्थी है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है अमृत वेले विशेष सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप बन, योग की सकाश वायुमंडल में फैलाओ। मन को सदा बिजी रखो, समय की पुकार है तीव्र पुरुषार्थी भव। आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के मस्तक में भाग्य के चमकते हुए सितारे देख रहे हैं। कौन सा भाग्य का सितारा देख रहे हैं? एक जन्म का, दूसरा संबंध का और तीसरा प्राप्तियों का। ये तीन भाग्य का सितारा बाबा हरेक के मस्तक पर देख रहे हैं। तीनों भाग्य को देख हर्षित हो रहे हैं। जन्म का भाग्य तो आप जानते हो कि आप सबको यह दिव्य जन्म ब्राह्मण जन्म देने वाला स्वयं भाग्य विधाता है। ये दिव्य जन्म ब्राह्मण जन्म देने वाला कौन? स्वयं भाग्य विधाता है। तो सोचो कितना बड़ा भाग्य है। साथ साथ संबंध, इसकी विशेषता जानते हो कि तीनों संबंध बाप शिक्षक सतगुरु, तीनों संबंध एक बाप से है। एक में ही तीन संबंध है। प्राप्तियों को भी जानते हो, जहां बाप है वहां प्राप्तियां तो सर्व और बेहद की है। तो बाबा कहते हैं संबंध को भी जानते हो और प्राप्तियों को भी जानते हो और ये दिव्य जन्म देने वाला विधाता को भी जानते हो। तो प्राप्तियों को भी जानते हो, जहां बाप है वहां प्राप्तियां तो सर्व और बेहद की है। एक में ही तीनों संबंध है। वैसे भी जीवन में यह तीन संबंध आवश्यक है, लेकिन दुनिया वालों के हरेक संबंध अलग अलग है और आपके तीनों संबंध एक में है। एक में तीनों संबंध होने के कारण याद भी अनुभव भी सहज होता है। सब तीनों संबंध के अनुभवी है ना? पूछते बाबा,
तीनों संबंध के अनुभवी है ना। बाप द्वारा क्या मिलता है? वर्षा। वर्षा भी कितना ऊंचा, और ये वर्षा कितना समय चलता है? आधा कल्प चलता है, क्योंकि परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होता है, कोई साधारण वर्षा नहीं है। दूसरा संबंध है शिक्षक का। शिक्षा को कहा जाता है सोर्स ऑफ इनकम। तो आप सबको शिक्षक द्वारा कितना उच्च प्राप्ति हुई है, जानते हो ना? ऐसी ऊंची प्राप्ति सिवाय परमात्मा पिता के और किससे हो नहीं सकती। शिक्षा से पद की भी प्राप्ति होती है, तो इनकम भी है, पद भी है। और आप सबको सबसे श्रेष्ठ प्राप्ति है, दुनिया में भी श्रेष्ठ प्राप्ति राज्य पद को कहा जाता है। तो आपको भी शिक्षक द्वारा राज्य पद की प्राप्ति हुई है। अभी भी स्वराज्य के राजा हो, क्यों? आत्मा राजयोगी होने के कारण स्वराज्य अधिकारी बनती है, स्व पर राज्य करती है, कर्मेंद्रिय के वशीभूत नहीं होती है। आत्मा मालिक होके इन कर्मेंद्रिय की राजा बन जाती है। तो शिक्षा द्वारा इनकम भी, पद भी, और पद में भी सर्वश्रेष्ठ पद राज्य पद। स्वराज्य अधिकारी वर्तमान में भी बनते हैं और भविष्य में भी। तो अभी का स्वराज्य और भविष्य में भी राज्य भाग्य प्राप्त होता है। तो डबल राज्य, अभी भी और भविष्य में भी पद की प्राप्ति होती है। और तीसरा संबंध है सतगुरु का। तीनों संबंध प्राप्त है ना, बाप का, शिक्षक का, और तीसरा है सतगुरु का। सतगुरु द्वारा गुरु की श्रीमत मिलती है। कितनी श्रेष्ठ मत मिली है, तो अपने को चेक करो कि सदा श्रीमत पर चलते हैं। वह कभी मन मत पर मत के तरफ तो बुद्धि नहीं जाती है। चेक किया? जो समझते हैं कि सतगुरु द्वारा सदा ही श्रीमत श्रेष्ठ मत पर चलने वाले हैं, मन मत पर मत पर कभी भी स्वप्न में भी नहीं जाते, वह हाथ उठाओ। जो सदा श्रीमत पर ही चलते हैं, पर मत मन मत नहीं, वह हाथ उठाओ। देखो माताओं ने उठाया, थोड़े थोड़े उठा रहे हैं, कभी कभी चली जाती है ना। बाबा कहते कभी कभी चली जाती है पर मत मन मत के तरफ, और पर मत मन मत धोखा दे देती है। और विशेष श्रीमत क्या है, और बाबा की विशेष श्रीमत क्या है? अपने को आत्म समझ मुझ बाप को याद करो, कितनी सहज श्रीमत है। अपने को आत्म समझ मुझ बाप को याद करो, तो सहज है या मुश्किल है? कभी कभी मुश्किल हो जाती है, लेकिन बाप यही चाहते हैं कि सदा इन तीन संबंधों से हर बच्चा आगे से आगे उड़ता चले। कितनी ऊंची भावना है बाबा की। तो बाप दादा पूछते हैं कि जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, वह अब से मनमत परमत का त्याग कर सकते हैं? कर सकते हैं? वह हाथ उठाओ। अच्छा, क्योंकि बाप दादा ने समय का इशारा दे दिया है। अभी संगम का समय अति वैल्यूबल है, और बाप दादा ने यह भी इशारा दे दिया है कि वर्तमान समय के प्रमाण सब अचानक होना है, इसलिए सदा एवर रेडी बनना है ना। सभी साथ चलेंगे ना कि पीछे पीछे आएंगे? बाप दादा के साथ अपने घर चलना है ना, रेडी हो ना, साथ चलने के लिए रेडी हो, एवर रेडी। रेडी भी नहीं, एवर रेडी। तो
तो बाप दादा समय का इशारा दे रहे हैं। इस एक जन्म में 21 जन्मों की प्रालब्ध बनानी है, तो सोचो कितना अटेंशन देना है। बाप का हर बच्चे के साथ प्यार है। बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा बाप के साथ साथ चले और साथ साथ राज्य अधिकारी बने। ये बाबा की चाहना है हम बच्चों के प्रति। तो आप साथ चलने के लिए बाप समान संपूर्ण और संपन्न बनेंगे तब तो साथ चलेंगे। इस समय इस छोटे से जन्म में 21 जन्म की प्राप्ति निश्चित है। तो सोचो संगम का छोटा सा जन्म, एक एक मिनट कितना महान है। हिसाब लगाओ, इस जन्म में 21 जन्म का राज्य भाग्य लेना है तो संगम का एक मिनट भी कितना वैल्यूएबल है। तो इस वैल्यू को जान क्या करना पड़ेगा, पूछते बाबा, इस वैल्यू को जान क्या करना पड़ेगा। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि दो बातों का विशेष अटेंशन दो। कौन सी दो बातें? दो बातें कौन सी, याद है ना? एक समय और दूसरा संकल्प। संकल्प व्यर्थ न जाए, समय व्यर्थ न जाए, एक एक सेकंड सफल हो। तो बोलो इतना अटेंशन देना पड़ेगा ना। बाप दादा का तो सभी बच्चों से प्यार है। बाप दादा यही चाहते हैं कि एक बच्चा भी साथ से रह नहीं जाए, एक बच्चा भी बाबा के साथ से रह नहीं जाए। साथ है, साथ चलेंगे, साथ राज्य अधिकारी बन सदा जीवन में सुख शांति का अनुभव करेंगे। तो बोलो साथ चलेंगे ना, चलेंगे, रह तो नहीं जाएंगे। देखो तीन भाग्य तो हर एक के मस्तक में चमक रहा है, तीन भाग्य तो हर एक के मस्तक में चमक रहा है। अपने मस्तक में ये तीनों ही भाग्य दिखाई देता है ना, पूछते बाबा। संगम युग ही भाग्यवान युग है, जो जितना भाग्य बनाना चाहे उतना बना सकते हैं, लेकिन बहुत समय का अटेंशन चाहिए। तो सभी बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ में अभी तीव्रता लाओ। बाबा कहते सभी बच्चे अपने अपने पुरुषार्थ में क्या करो, तीव्रता लाओ। पुरुषार्थी है, बाप दादा देखते हैं पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन सभी का तीव्रता का पुरुषार्थ भी होना है। तीव्र पुरुषार्थी नहीं बने हैं। बाप दादा हर बच्चे को किस रूप में देखना चाहते हैं? हर बच्चे को बालक सो मालिक देखना चाहते हैं। किसका मालिक? सर्व खजानों का मालिक। कभी कभी कोई बच्चे बाप दादा को कहते हैं कि बाबा आपने तो सर्व शक्तियां दी है और हम भी अपने को मास्टर सर्वशक्तिमान मानते हैं। लेकिन कई बच्चे उलहना देते हैं कि कभी कभी जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता होती है वह समय पर नहीं आती है। लेकिन इसका कारण क्या? तो बाबा पूछते इसका कारण क्या, बाप ने हर एक को सर्व शक्तियां दी है ना, कि किसको कम दी है किसको ज्यादा, सर्व शक्तियां मिली है? हाथ उठाओ, सभी को मिली है, लेकिन समय पर क्यों नहीं काम पर आती है? इसका कारण को जानते भी हो लेकिन उस समय भूल जाते हो कि सर्व शक्तियों का खजाना हर बच्चे को वर्षे में मिला है। बाप ने सभी को सर्व शक्तियों का वर्षा दिया है,
कोई को कम कोई को ज्यादा नहीं दिया है, सर्व शक्तियां दी है, लेकिन समय पर क्यों नहीं आती है? आप सोचो, कोई भी अगर अपने स्वमान की सीट पर नहीं होता तो उसका ऑर्डर कौन मानता है? तो जिस समय शक्ति नहीं आती है उसका कारण है कि आप अपने मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट नहीं होते, इसलिए बिना सीट के ऑर्डर कोई मानते नहीं, शक्तियां भी नहीं मानते। तो सदा अपनी सीट पर सेट रहो। सीट पर सेट क्यों नहीं होते उसका भी कारण, कभी वेस्ट थॉट्स चलते हैं व कभी टेंशन आता है, तो उससे ही स्वमान की सीट छूट जाती है। बाप दादा ने हर एक को कितने स्वमान दिए हैं, कितनी बड़ी स्वमान की लिस्ट है, गिनती करो, कितने स्वमान बाप ने दिए हैं। स्वमान में सेट नहीं होते तो जहां स्वमान नहीं वहां क्या होता है? जहां स्वमान नहीं वहां क्या होता है जानते हो ना? देहाभिमान आता है। या तो स्वमान है या तो देहभान है। तो देहभान की सीट पर ऑर्डर करेंगे तो शक्ति नहीं मानती है, नहीं तो मास्टर सर्वशक्तिवान का शक्ति नहीं माने ये हो नहीं सकता है। मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट पर सेट होकर शक्ति को ऑर्डर किया और वो न माने, ये हो नहीं सकता। सीट पर सेट होना, इसका अभ्यास सदा करो, चेक करो, चाहे कर्म योग में हो, चाहे सेवा में हो, चाहे अपने मनन मंथन में हो, लेकिन सीट पर सेट है तो सर्व शक्तियां हाजिर होती है। चेक करो, बाबा कहते हैं। आज बाप दादा ने देखा, अमृत वेले चक्कर लगाया, चारों ओर का चक्कर लगाया, चाहे देश चाहे विदेश, बाप दादा को चक्कर लगाने में समय नहीं लगता है। तो क्या देखा बताएं? सभी मेजॉरिटी बैठे तो थे, उठकर अपने अपने स्थानों पर बैठे थे, पुरुषार्थ भी कर रहे थे कि सारा समय सर्व अनुभवी मूरत होकर के बैठे। लेकिन क्या देखा? अनुभवी मूरत कोई कोई थे, क्योंकि सबसे बड़ी शक्ति अनुभव की है। अनुभवी स्वरूप, सर्व शक्तियों के अनुभवी स्वरूप, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर सर्व शक्ति स्वरूप, तो अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ कमी दिखाई दी। बाबा को क्या दिखाई दिया? अनुभवी स्वरूप बनने में कुछ कमी दिखाई दी। पुरुषार्थ करते हैं, बाप दादा ने फिर भी मुबारक दी, जो पुरुषार्थ करके मेजॉरिटी आते हैं, बैठते मेजॉरिटी है, लेकिन बाप दादा यही चाहते हैं कि लाइट माइट स्वरूप के अनुभवी मूरत बन बैठे, क्योंकि ये अमृत वेले के योग की सकाश सारे वायुमंडल में फैलती है। इस अनुभव को और आगे बढ़ाओ। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कितनी पावरफुल फरिश्ते स्वरूप की स्थिति रही, ऐसे ही इस अमृत वेले को अभी अपने अपने रूप से अटेंशन और अथक होकर दो। बाप दादा ने देखा, क्या देखा? कई बच्चे लाइट माइट रूप में भी बैठते हैं, ना नहीं है, हां भी है, लेकिन इस समय के पुरुषार्थ को और भी अटेंशन देना होगा। अमृत वेले के पुरुषार्थ को और भी अटेंशन देना होगा। और बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया कि अपने मन को सदा बिजी रखो, चाहे मनसा सेवा में, चाहे वाचा से, चाहे मनन शक्ति में बिजी रखो, मनन करो। मनन शक्ति मन को एकाग्र बना देती है।
कोई कोई बच्चे मनन अच्छा करते भी है, लेकिन मनन शक्ति को भी सारे दिन में बढ़ाओ, क्योंकि बाप दादा को लास्ट बच्चे से भी प्यार है। लास्ट बच्चे को भी बाप दादा यही चाहते कि साथ चले, रह नहीं जाए, पीछे पीछे नहीं रह जाए। तो क्या करेंगे? अटेंशन। बाबा कहते अटेंशन। आज बाप दादा सभा को देख जानते हैं कि बच्चों की वृद्धि होनी ही है। 75 वर्ष की जुबिली मनाई, प्लैटिनम जुबिली मनाई, उसकी तो बाप दादा बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा ने सेवा की लगन भी देखी, हर एक स्थान वालों को उमंग है, और सेवा का फल और सेवा का बल वह भी दिखाई दे रहा है। विशेष बाप दादा ने देखा कि जहां भी बच्चों ने सेवा की है, वहां इस बारी गवर्नमेंट के निमित्त बनी हुई आत्माएं ज्यादा आई है, और रिजल्ट में मानते भी है कि अभी के समय अनुसार जबकि दुख और अशांति बढ़ रही है, तो यह जो टॉपिक रखी है वह आवश्यक है, क्योंकि जितना ही शांति चाहते हैं उतनी अशांति बढ़ रही है। कोई ना कोई बात अशांति की आ ही जाती है। इसके लिए चारों ओर टेंशन बढ़ रहा है, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि भारत टेंशन फ्री हो जाए। तो सभी ने, जिन बच्चों ने सेवा की है, उन सभी बच्चों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, और जो करने वाले हैं उन्हों को भी एडवांस में मुबारक दे रहे हैं। बाप दादा अभी यही चाहते हैं कि एक एक बच्चा फॉलो फादर करते हुए बाप समान संपन्न जरूर बने। बाप समान संपन्न जरूर बने। बाप दादा ने देखा कि पुरुषार्थ भी सब बच्चे करते हैं, पुरुषार्थ की लगन भी है, अपने से प्रॉमिस भी बहुत करते हैं, अब नहीं करेंगे, अब नहीं करेंगे, लेकिन कारण क्या होता है? कारण है पुरुषार्थ में दृढ़ता कम है, बीच बीच में अलबेलापन आ जाता है, हो जाएंगे, बन जाएंगे। यह अलबेलापन पुरुषार्थ को ढीला कर देता है। तो अब क्या करेंगे? अभी यही विशेष अटेंशन दो, अपने आप अपना प्रोग्राम बनाओ जिसमें सारा दिन मन को बिजी रखो। अपना प्रोग्राम आप बनाओ, टाइम टेबल अपना आप बनाओ, मन को बिजी रखने का। चाहे मनन करो, चाहे सेवा करो, चाहे एक दो को अटेंशन खिंचवाओ, लेकिन बिजी रखो। मन से बिजी, शरीर से बिजी तो होते हो, लेकिन मन से बिजी रहो। बाबा कहे शरीर से तो बिजी रहते हो, लेकिन मन से भी बिजी रहो। मन के बिजी रहने में बिजनेसमैन नंबर 1 बनो। ये कर सकते हो? करेंगे? पूछते बाबा, करेंगे, क्योंकि आप जानते हो ब्रह्मा बाप भी आपका इंतजार कर रहा है, और आपकी एडवांस पार्टी भी आपका इंतजार कर रही है। कब समय को समीप लाते हैं? क्योंकि समय को समीप लाने के जिम्मेवार आप हो। अपने को संपन्न बनाना अर्थात समय को समीप लाना। तो बाप दादा विशेष एक मास दे चुका है। इस एक मास में हर एक को तीव्र पुरुषार्थी बन, पुरुषार्थी नहीं, तीव्र पुरुषार्थी बनना ही है। मंजूर है? मंजूर है? हाथ उठाओ। अच्छा, सभी ने हाथ उठाए, तो बाबा कहते मुबारक हो। अभी हर एक को दृढ़ संकल्प कर रोज बाप दादा को अपनी रिजल्ट सारे दिन की कैसे देनी है।
तीव्र पुरुषार्थ की।